0: टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
0: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी
2: Stay in the game with TuneIn. Hear non-stop sports talk, live games, and coverage that never slows down. Keep up with your favorite teams from every play to every post-game breakdown. Listen to sports stations like ESPN Radio, NBC Sports Radio, Big 12 Radio, Talk Sport, and more. Plus, catch live games all year round, so you never miss a moment of sports action. Start listening on TuneIn.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
4: TIT भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स।
5: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
6: रात्रि विश्राम के बाद आज विधि विधान से आगे बढ़ेगी पुरी में श्री जगन्नाथ रथ यात्रा। भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मौसी के घर पहुंचेंगे भगवान। लाखों देसी विदेशी श्रद्धालु मौजूद। आज पहली हाइड्रोजन ट्रेन सेवा का होगा शुभारंभ। प्रधानमंत्री मोदी हरियाणा के जिंद में दिखाएंगे हरी झंडी। जिंद से सोनीपत के बीच चलेगी हाइड्रोजन रेल। आज चंडीगढ़ और पंजाब को भी प्रधानमंत्री देंगे सौगात। चंडीगढ़ पीजीआई में 1250 करोड़ की हेल्थ केयर सुविधाओं का करेंगे उद्घाटन। कायाकल्प के बाद जालंधर सहित कई रेलवे स्टेशन का करेंगे लोकार्पण। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश। दिल्ली एनसीआर में भी मौसम ने ली करवट। गर्मी और उमस से राहत की उम्मीद। मेडिकल में दाखिले के लिए नीट यूजी 2026 का रिजल्ट जारी। 720 में से 715 अंक हासिल कर पंजाब के आर्यन गुप्ता हरियाणा के पंशुल बंसल बने संयुक्त टॉपर। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। और चलिए अब देख लेते हैं अच्छी बात पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ।
7: आज का सूत्र है धर्म क्या है और अधर्म क्या है, और हनुमान जी की भूमिका क्या है धर्म में और अधर्म। प्रायः हम लोग कई बार धर्म को अधर्म समझ लेते हैं और अधर्म को धर्म समझ। बुरा न मानना, शास्त्रों में धार्यति धर्म, शास्त्रों ने कहा जिसको धारण किया जा सके वो धर्म। पर धर्म की व्याख्या कोई हमारी मति से पूछे क्या है, जिसके धारण करने से, जिस कर्म के करने से आत्मा की उन्नति हो वो धर्म है, और जिस कर्म के करने से आत्मा की अधोगति हो वो अधर्म है। जिसको करने से आत्मोन्नति हो, जीवात्मा महात्मा बन जाए, महात्मा परमात्मा बन जाए वो धर्म है, और जिससे अवनति हो, अधोगति हो, ऊर्ध्वगति ना होकर के अधोगति हो वो अधर्म। एक दूसरा उदाहरण, धर्म क्या है अधर्म क्या है। इस लोक का सुख भोग कर परलोक की प्राप्ति के मार्ग पर जो चले वो धर्म है, और केवल भोग भोगने के लिए जो जीवन जिए वो अधर्म। धर्म और अधर्म की यदि तीसरी व्याख्या देखी जाए तो तीसरी व्याख्या यह है, जिससे किसी को भी जीव मात्र को पीड़ा पहुंचे वो अधर्म है, और जिससे सबको पीड़ा ना पहुंच करके सबको आनंद पहुंचे वो धर्म है। धर्म की चौथी व्याख्या देखी जाए तो किसी की तुम शांति छीन लो ये अधर्म है, और किसी को शांति दे दो ये धर्म। रावण ने यही तो किया, माता जानकी जी का हरण किया। एक दक्षिण भारत के बहुत अच्छे कवि हैं, उन्होंने लिखा कि माता जानकी जी शांति का प्रतीक है, और शांति का हरण रावण ने किया। रावण ने शांति का हरण किया तो किसी ने पूछा कि रावण के 10 सिर थे तो रावण सोता कैसे होगा। बोले क्यों, बोले जब सोता होगा वो करवट बदलना होता होगा तो स्प्रिंग तो होंगे नहीं 10 सिर, पहले वो खड़ा होता होगा फिर करवट बदलता होगा। तो किसी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि जो दूसरों की शांति चोरी करता है वो सोता ही नहीं। जो दूसरों की शांति छीन लेता है उसे फिर नींद नहीं आती, वो खुद अशांत हो जाता। तो धर्म की व्याख्या यदि कहा जाए, ये भी बड़ी प्यारी धर्म की व्याख्या है, जो दूसरों की अशांति का हरण करे वो अधार्मिक है, अधर्मी है, जो दूसरों को शांति दे वो धार्मिक। धर्म का अर्थ है दूसरों को प्रेम देना। धर्म का अर्थ है, धर्म के कुछ लक्षण भी बताए। वैसे धर्म के तो 10 लक्षण है, कृति क्षमा शौच इंद्रिय निग्रह आदि आदि 10 लक्षण बताए, इस पर कल चर्चा करेंगे आज। पर धर्म के बारे में यदि कहा जाए कि आप धार्मिक हैं कि नहीं, इसका पता कैसे लगे, तो बोले सत्य आपके अंदर है, संवेदना आपके अंदर है, करुणा आपके अंदर है, और उसके साथ साथ बोले एक बात और ध्यान रखनी पड़ती है, धर्म के मार्ग में। बोले क्या? राम जी के जीवन में एक विचित्र बात यह थी कि वो जन को तारते रहे पर मन को मारते रहे। हमारे द्वारा, हमारे किसी कर्तव्य के द्वारा किसी को यदि पीड़ा पहुंची तो हम धार्मिक ना हो पाए। पहला लक्षण धर्म का सत्य है, सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलो और प्रिय बोलो। इसलिए संतों ने कहा, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। सत्य बराबर कोई पुण्य नहीं है और झूठ बराबर कोई पाप नहीं। लेकिन कई लोग ऐसा सत्य बोल देते हैं कि बड़ा कड़वा लगता है। सच बोलना ही चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए, लेकिन कई बार किसी के अपने सच बोलने से किसी की मृत्यु हो जाए तो वो सच भी खतरनाक है, उसका पाप तुम्हें लगे। तुम्हारे सच बोलने से कोई आदमी निपट जाए फिर क्या होगा? तो सच बोलो भाई। उसके कई उपाय होते हैं कि भाई कुत्ता को कुत्ता मत कहो, डॉग जी कह दो। भाई किसी को कुत्ता कुत्ता कहने में बुराई लगती हो, बुरा लगता हो तो उसको कुछ नहीं, डॉग जी कह दो। कुत्ता नहीं तो भाई डॉग जी है। और ऐसा होता भी है भाई, अंधे को अंधा कह दो तो बुरा मान जाता है, और सूरदास जी कह दो तो हाँ बताओ। और सूरदास का अर्थ भी अंधा है, लेकिन तुम कहे अंधे इधर बुरा लगता है। एक हमारे गांव के बगल में चौबे जी थे, उनसे कोई कहे चौबे जी तो वो कहते थे हाँ जी, और उनसे कोई कहते चौबे वो कहते हाँ बे। तो सठे सात्यम समाचरे थे, वो जैसे को तैसा जवाब देते थे। तो सत्य बोलो, पर सत्य बोलने के तरीके थोड़ा ठीक रखो। सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलो पर प्रिय बोलो। ऐसा बोलो कि काम भी हो जाए, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ऐसा काम करो। तो धर्म का अर्थ पहला सत्य, सत्यवादी रहो। और सत्यवादी में एक बड़ी दिक्कत है, एकदम सच ही सच बोलोगे तो सब छोड़ के भग जाएंगे। ये भी बड़ी दिक्कत है, अब तुम सच ही सच बोलो तो तुम्हारा पहला तो घरवाली भग जाएगी, घरवाली भग जाएगी, झंझट लपड़ा। कल हम जब भभूति बांट रहे थे तो एक आदमी हमारे पास आया, बोले गुरुजी घरवाली को बस में करने का उपाय बताओ। ये कल की बात है, वो आज आए हो पता नहीं है, कल की बात, यही जकार्ता की बात है, भभूति बांटते बांटते कल की बात है, शायद यहां कहीं बैठे ही होंगे। आए नीचे है, नीचे है वो आए हैं। हाँ, तो हमसे पूछ रहे थे घरवाली को बस में करने का उपाय बताओ, तो हमने भी जवाब दे दिया कि ये तो शंकर जी पे भी नहीं है। आओ, तुम्हारी तो छोड़ो, फिर भी अब वो आज है नहीं, नहीं तो हम उनको आज उपाय लिख के लाए स्पेशली उनके लिए, उनको घरवाली में बस में करने का उपाय बताना होगा, तो हम जो है उपाय हम लाए हैं उनके लिए। खैर ये तो बाद में बताएंगे, खैर छोड़ो ये बाद में बताएंगे। तो धर्म का पहला अर्थ सत्य है, और सत्य देखो सबका अपना अपना धर्म। अग्नि का धर्म ताप है, जल का धर्म शीतलता है, सूर्य का धर्म तेज है, चंद्रमा का धर्म शीतलता, हिंसक जानवरों का धर्म हिंसा है, वैसे मनुष्य का धर्म मानवता है। वैसे ही मनुष्य का धर्म मानवता, सबका धर्म है। और ये इसलिए है ताकि एक दूसरे की बाउंड्री पार ना करे। सिंह का धर्म क्या है? हिंसा करके मांस खाना। लेकिन ये गाय का धर्म नहीं है, गाय का धर्म घास खाना, सिंह का धर्म मांस खाना और गाय का धर्म मांस खाना। और देखो विचार बुरा ना मानना, आजकल वर्तमान में इंसान तो बहुत है, इंसानियत खोल दी। आज के जमाने में लोग वायदे के लिए या कायदे के लिए नहीं जीते, फायदे के लिए जीते। पहले के जमाने में लोग फायदे के लिए नहीं, वादे वायदे और कायदे से रहते थे, कायदे के लिए जीते थे, वायदे के लिए। आज के जमाने में फायदे के लिए जीते हैं। बुरा ना मानना, दुनिया जितनी ऑनलाइन होती जा रही इंसानियत उतनी ही ऑफलाइन होती जा रही। हाँ, ये हाल हो गया है, जितनी दुनिया ऑनलाइन होती जा रही इंसानियत और मानवता उतनी। एक ही कमरे में पति पत्नी रहते हैं, 6 महीने बात नहीं होती, और बात भी होती तो व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम, वो उसको मैसेज देते हाँ भाई पानी ले आना, वो उधर से मैं नहीं जाऊंगी तू खुद उठा ले, और दोनों जो कि तब तक बगल में बेटा बेटा मम्मी, वो भी ग्रुप में लिख रहा मम्मी यदि जा रही हो तो थोड़ा सैंडविच ले आओ, हाँ वो भी बगल में ही, बगल के कमरे में, और गजब गए। तो इतने ऑनलाइन हो गए, अब आजकल हमारे जमाने में तो ऑनलाइन वाला सिस्टम ही नहीं था हमारे। अब ऐसे हम कोई खास पुराने नहीं हुए हैं, आप हमको बिल्कुल, तुम बिल्कुल ओल्ड ही समझ लो, आई एम ओनली 29 ईयर ओल्ड। हाँ तो आप इतना पुराना भी हमको मत समझ लेना, फिर भी बता रहे कि हम जिस गांव में रहते वहां इतना ऑनलाइन फोन लाइन तो होता नहीं था। पहले तो ऑनलाइन तो रपाटा ही होता था हमारे यहां पर, तो कोई बात कहनी हो नहीं मानो तो दे पटाक। और पिताजी तो बिना बात की, हमारा गांव में जब तक बाप अपने बेटे को बिना बात का मान ना ले तब तक बाप को संतुष्टि नहीं होती थी कि हम बाप, उनको संतुष्टि तब होती थी कि हम बाप हैं, जब बिना बात के मारो दे पटा। अब पूछो क्यों मारा, जवान लड़ाता है दे पटा, एक बिना बात के पर दूसरा जवान लड़ाने का। तो आजकल जितने रिश्ते ऑनलाइन हो गए हैं, इंसानियत उतनी ही ऑफलाइन हो गई, बड़ा बुरा जमाना। तो धर्म सबका मर्यादित है, सबका अपना अपना धर्म है। राजा का धर्म सेवा, साधु का धर्म सहना, नदी का धर्म बहना है, तरुवर फल।

0: 18 पुराणों में एक बात लिखी, दो बातें विशेष रूप से, पाप आए, बोले पाप क्या है, दूसरों को पीड़ा देने से बड़ा कोई पाप नहीं और दूसरों को प्रसन्नता देने से बड़ा कोई पुण्य नहीं। तो सबका धर्म, अग्नि का धर्म ताप है, जल का धर्म शीतलता है, नदी का धर्म बहना है, साधु का धर्म सहना है, राजा का धर्म न्याय है, व्यापारी का धर्म ईमानदारी पूर्वक व्यापार करना है, बिजनेसमैन का भी धर्म।
1: बुरा ना मानना, हम एक बात अक्सर अपने चेलों को बोलते हैं, आपको भी बोलते,
0: कोई भी व्यक्ति जो जिस पथ का पथिक है, जो कर रहा, आप जो भी कर रहे, बिजनेस करते हो, नौकरी करते हो, या फिर ट्रेडिंग करते हो, मार्केटिंग करते हो, आप जो भी करते हो, एनी हाउ आप जो भी करो, वो यदि आप ईमानदारी से करो तो आपको साधु बनने की आवश्यकता नहीं। ये हमारा मानना है, आप जो भी करो वो यदि ईमानदारी पूर्वक करो, न्याय पूर्वक करो, धर्म पूर्वक करो, तो आपको साधु बनने की आवश्यकता नहीं। शायद साधु भगवान को ना पा पाए, और तुम वो ईमानदारी से जीवन भर करोगे तो भगवान को पा पाओ, ये तय है। तो राजा का धर्म न्याय, साधु का धर्म सहना, व्यापारी का धर्म ईमानदारी पूर्वक व्यापार करना, सेवक का धर्म सेवा, सबते सेवक धर्म कठोर, सबसे कठोर धर्म सेवक का। गाय का भोजन घास और सिंह का भोजन मांस। अच्छा, सिंह को मांस की जगह पिज्जा खिलाया जाए,
1: एक महीने का भूखा हो, उसको कोई मांस मिला ना हो, हिरण वगैरह ना मिली हो, और फिर भयंकर भूखा हो और तुम ले जाओ जकार्ता की नूडल्स, चाउमीन, इंडोमी को ले जाओ और पिज्जा ले जाओ, क्या शेर खाएगा? बोलो
0: खाएगा? गाय दो माह से भूखी हो, शेर का भोजन ले जाओ, खाएगी?
1: और आदमी
0: गाय का भी भोजन पा जाता और शेर का भी पा जाता, और ज्यादा समझाओ वो तुम्हारा भेजा खा जाएगा, हाँ तब भी वो नहीं रोकेगा, तुम्हारा भेजा खा जाएगा ज्यादा यदि तुमने समझाने का। मनुष्यता का धर्म
1: मानवता, और वर्तमान में इसकी सबसे बड़ी कमी हो गई, आदमी ही आदमी को खा रहा है,
0: आदमी ही आदमी का हिंसक हो,
1: मानवता बची नहीं, सड़कों पे लोग गिर जाते, कोई उठाने वाला नहीं।
0: हमारे गांव में कोई एक के घर बरात आती थी, पूरा गांव सजावट करता था, एक के घर पर कोई विपदा आपदा आ जाती थी, पूरा गांव तैयारी करके भोजन देता था। आज का जमाना बड़ा गजब, आज के जमाने में लोग सिर्फ मरे हुए लोगों को उठाते, जिंदों को नहीं उठाते, केवल मरे लोगों को उठाते, किसी को टाइम नहीं, ना पति को टाइम, ना पत्नी को, ना भाइयों को, ना मित्र को। पैसा ना बड़ा विचित्र हो गया,
1: बुरा ना मानना, पैसा जेब में हो तो तुम बड़े आदमी हो, लेकिन पैसा दिमाग में हो तो तुम गरीब आदमी हो।
0: पैसा जेब में तो ठीक है, लेकिन दिमाग में मनी बहुत खतरनाक है। इसलिए हमने पुरानी कथाओं में अक्सर एक बात कही, कुंडली में शनि और दिमाग में मनी, और मूर्ख से दुश्मनी बड़ी खराब।
1: आज के जमाने में एक सबसे बड़ी कमी आ गई है,
0: मानवता के धर्म की। यदि पूरी दुनिया की सभ्यता हमसे पूछे कि पूरे विश्व में शांति लाने का उपाय क्या है, तो सबसे पहला हमारे पास यही सॉल्यूशन होगा,
1: मानवता को मानव से जोड़ा जाए।
0: आज के जमाने में इंसान तो बहुत है, इंसानियत बहुत घट। पहले के जमाने में सांप ज्यादा काटते थे, अब सांपों ने काटना बंद कर दिया, क्योंकि आदमी ही आदमी को काट रहा है, आदमी ही आदमी को खाया जा रहा है, एक दूसरे को देख नहीं सकता, भाई भाई को नहीं देख रहे। पहले के जमाने में जब भाइयों का बंटवारा होता था तो संपत्ति का बंटवारा नहीं होता था, विपत्ति का बंटवारा होता था। भगवान राम जब अयोध्या जाने लगे तो मां कैकेयी ने कहा, राम मैंने तुम्हारे पिता से वरदान मांगा। क्या वरदान मांगा मां? पहला
1: भरत को तिलक, और दूसरा तुम्हारा वरदान मांगा, तुम्हें वनवास मांगा।
0: तीन बार भगवान राम ने रामचरितमानस में कैकेयी मां को जननी जननी जननी कहा, मां मां मां। कैकेयी चौंक गई, अरे तुम वरदान सुन करके भी मुझे मां कह रहे, तुम्हें पता भी है मैंने वरदान क्या मांगा? भगवान राम कहते, मां भला हुआ जो तूने वरदान मांगा, वरना अन्याय हो जाता। क्या?
1: पहला वरदान
0: मेरे भाई को तूने राजा बनाने का। मैं भरत को बहुत प्यार करता, जिस दिन मेरा भाई राजगद्दी पर बैठेगा, मां जितना मुझे अपने बैठने का सुख नहीं होगा, उस दिन भरत के बैठने पर अनंत सुख की प्राप्ति होगी। और दूसरा, तूने भला किया मुझे वनवास मांगा। कैकेयी बोली, इसमें भला क्या है? आपके वनवास जाने में भला क्या है? राम जी ने कहा, मां यहां रहता तो ना जाने क्या क्या करना पड़ता। तू बड़ी चतुर है, तू बड़ी बुद्धिमान है, तूने मुझ पर उपकार किया, भरत को अयोध्या का राजा राज्य दे दिया जहां झंझट ज्यादा है, और मुझे वन का राजा बना दिया जहां झंझट नहीं। अच्छा लिया तूने मुझ पर कृपा कर। ये भाई का बंटवारा, जरा देखना भ्रातृ का प्रेम, भाई का प्रेम कितना प्रबल होता है। हमारे त्रेता की रामचरितमानस है सनातन, कथा पुरातन है पर सनातन है, मतलब पुरानी कथा है पर आज के जमाने में बहुत उपयोगी है, इसलिए सनातन। धन्य है राम जब चित्रकूट में भगवान श्री रघुनंदन राम, कौशल्यानंदन राम बैठे और भरत जी मिलने के लिए गए, तो भरत की आंखों से आंसू बंद नहीं हुए। भरत ने मां कैकेयी से कहा, आज के बाद मैं तुम्हें मां नहीं कहूंगा। तो बगल में खड़े हुए शत्रुघ्न ने कहा कि इन्होंने क्या गलती की? सबसे बड़ी गलती इन्होंने की, अरे मुझे तो राजा बनाया, ये वर क्यों मांगा? मुझे राजा बनाने का वर मांग भी लिया, तो मेरे प्राण प्यारे राम को बन क्यों भेजे? उधर राम को देखो, वो कहते भरत को राजा बनाया मुझे अनंत सुख होगा, इधर भरत को देखो, मैं राज्य पे बैठूंगा कदापि नहीं, राज सुख नहीं भोग सकता। विह्वल होकर के भरत जी राम जी से मिलने चित्रकूट आए, और दशा ऐसी शरीर की, आंखों से आंसू बंद नहीं होते। राम जी के पद चिन्हों पर भरत जी चल रहे, जहां जहां से राम जी गए वहां वहां से भरत जी जब चलते हैं तो पैरों को बचा बचा करके रखते हैं, उस पैर पर राम जी के चरण के चिन्ह के ऊपर हमारे पैर ना पड़ जाए। तो किसी ने कहा भरत जी से कि राम जी तो गए रथ से पहले दिन, आगे वन में पैदल गए, आप भी रथ से चलो। भरत कहते, मैं और रथ पे जाऊं? मैंने तो वो पाप किया है कि मैं सिर भल जाऊं, सिर के भल बैठ करके जाऊं, रथ पे बैठ जाऊं। भरत जी गए चित्रकूट में, कथा आती है कि जब भरत जी चित्रकूट पहुंचने के पहले प्रयागराज पहुंचे, और प्रयागराज में महात्माओं ने देखा भरत इस दशा के साथ राम जी को लेने जा रहे, तो पहले तो महात्माओं ने सोचा कि यदि ये चले गए और राम जी कहीं भरत जी की दशा देख लेंगे तो वापस ना लौटा। लेकिन जब भरत की दशा को देखा, जैसे जंगल के बीच में गाय का बछड़ा अपनी मां से बिछड़ जाता तो बछड़ा यहां वहां भागता,
1: जैसे मेले में छोटा सा बालक अपनी मां के लिए रोता,
0: जैसे परदेश गए हुए कई वर्ष बाद पति का खबर आकर के पत्नी अपने पति को मिलने के लिए दौड़ती, जैसे छोटे से बालक से मां मिलने के लिए दौड़ती, जैसे समुद्र को पाने के लिए नदियां दौड़ती, जैसे बिजली चमकती वो पाताल की तरफ दौड़ती, वैसी भरत राम से मिलने के लिए दौड़े
1: चले जा रहे। उस अवस्था में जब राम को मिलने के लिए भरत प्रयागराज पहुंचे, तो प्रयागराज के महात्मा कहते हैं, हमने तप किया तो तप का फल यह हुआ कि हमें राम के दर्शन, हमने तप किया तो तप का फल, जब तप ध्यान का फल राम के दर्शन हुए। लेकिन हम लोग सोच रहे थे कि जब तप ध्यान का फल यदि भगवान राम के दर्शन है तो राम जी के दर्शन का फल क्या होगा। महात्माओं ने जैसी भरत जी को देखा तो बोले, यदि जब तप का फल।
2: Jack FM is now streaming commercial-free on TuneIn Premium.
3: Jack, come home. It's supper time.
2: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
4: Hey, Jack, could you play that one song with the words?
2: Jack FM, playing what we want.
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती।
1: ज्योतिष का सबसे शुभ ग्रह बृहस्पति, क्या ये विवाह नहीं होने देता है? क्या कभी कभी विवाह होना असंभव कर देता है? क्या ये वैवाहिक जीवन में बड़ी दिक्कतें भी ले आता है? बृहस्पति किस प्रकार देता है विवाह में बाधा, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: When it comes to your favorite podcasts, missing an episode isn't an option. Luckily, TuneIn's got you covered. Start by creating a free TuneIn account and keep everything synced across your devices. Then favorite the shows you love. We'll bring new episodes right to your homepage, so they're always easy to find. And with notifications turned on, you'll get a heads up when new episodes drop. Stay in the loop effortlessly.
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: रात्रि विश्राम के बाद आज विधि विधान से आगे बढ़ेगी पुरी में श्री जगन्नाथ रथ यात्रा। भाई बलभद्र, बहन सुभद्रा के साथ मौसी के घर पहुंचेंगे भगवान, लाखों देसी विदेशी श्रद्धालु मौजूद। देश में आज पहली हाइड्रोजन ट्रेन सेवा का होगा शुभारंभ। प्रधानमंत्री मोदी हरियाणा के जिंद में दिखाएंगे हरी झंडी। जिंद से सोनीपत के बीच चलेगी हाइड्रोजन रेल। आज चंडीगढ़ और पंजाब को भी प्रधानमंत्री देंगे सौगात। चंडीगढ़ पीजीआई में 1250 करोड़ की हेल्थ केयर सुविधाओं का करेंगे उद्घाटन। कायाकल्प के बाद जालंधर सहित कई रेलवे स्टेशन का करेंगे लोकार्पण। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश। दिल्ली एनसीआर में भी मौसम ने ली करवट, गर्मी और उमस से राहत की उम्मीद। मेडिकल में दाखिले के लिए नीट यूजी 2026 का रिजल्ट जारी। 720 में से 715 अंक हासिल कर पंजाब के आरएन गुप्ता और हरियाणा के पंशुल बंसल बने संयुक्त टॉपर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
2: पुरी में रथ यात्रा का आज दूसरा दिन, भगवान का रथ खींचने उमड़े लाखों श्रद्धालु। आज मौसी के घर गुंडीचा मंदिर पहुंचेंगे भगवान जगन्नाथ। भाई बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा भी साथ। गुंडीचा मंदिर महाप्रभु का माना जाता है जन्म स्थान। 7 दिनों तक भगवान जगन्नाथ गुंडीचा मंदिर में ही रहेंगे। इस दौरान गुंडीचा मंदिर में विशेष पूजा दर्शन के कई पवित्र अनुष्ठान होंगे। 7 दिन गुंडीचा मंदिर में विश्राम करने के बाद भगवान अपने मुख्य मंदिर के लिए वापसी की यात्रा शुरू करेंगे। इसी बहुधा यात्रा को कहा जाता है। सदियों पुरानी है महाप्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा निकालने की परंपरा। 27 जुलाई को होगा यात्रा का समापन। देश को आज मिलेगी पहली हाइड्रोजन ट्रेन सेवा का तोहफा। हरियाणा के जिंद में प्रधानमंत्री मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। पॉल्यूशन फ्री और पर्यावरण के अनुकूल है हाइड्रोजन ट्रेन। मल्टी लेयर सेफ्टी सिस्टम होने से हाइड्रोजन लीक आग धुएं का पता लगाने में भी सक्षम। जिंद और सोनीपत के बीच 89 किलोमीटर रूट पर चलेगी हाइड्रोजन ट्रेन। 75 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी रफ्तार। जिंद सोनीपत रूट पर 11 स्टेशन पर रुकेगी हाइड्रोजन ट्रेन। करीब 2 घंटे का होगा सफर। हाइड्रोजन ट्रेन को 10 कोच वाली ट्रेन के रूप में किया गया तैयार। 2600 यात्रियों के बैठने की है क्षमता। आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब दौरे पर होंगे प्रधानमंत्री मोदी। 25,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की देंगे सौगात। जिंद के एकलव्य स्टेडियम में होगा करीब 14,700 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास लोकार्पण। रैली को भी करेंगे संबोधित। जिन दौरे के बाद चंडीगढ़ पीजीआई जाएंगे प्रधानमंत्री। 1250 करोड़ की हेल्थ केयर से जुड़ी अहम सुविधाओं का करेंगे उद्घाटन। जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन का भी पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 125 करोड़ रुपए में हुआ पुनर्विकास। अमृतसर से वाराणसी के बीच शुरू होगी नई ट्रेन सेवा। संत रविदास एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे प्रधानमंत्री। दिल्ली एनसीआर में 18 जुलाई तक रहेगा गर्मी उमस वाला मौसम। 20 जुलाई से हो सकती है बारिश। हिमाचल प्रदेश में 19 जुलाई से भारी बारिश का अनुमान। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। कोलकाता समेत आसपास के जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। 19 जुलाई तक भारी बारिश का अनुमान। नेपाल में लगातार हो रही बारिश से बिहार के सीमावर्ती इलाकों की नदियों में बड़ा जलस्तर। प्रशासन अलर्ट मोड पर। बाढ़ की संभावना के चलते एनडीआरएफ की टीमों को भी जगह जगह तैनात कर दिया गया। नदियों के तटबंध की सुरक्षा को लेकर भी निर्देश जारी। महाराष्ट्र के अकोला में 7 सितंबर को निकलेगी भव्य राजराजेश्वर कावड़ यात्रा, 50 वर्षों से चली आ रही है परंपरा। सावन में कावड़ यात्रा के लिए की जा रही है तैयारियां। पूर्णा नदी में पवित्र जल लेकर भगवान श्री राजराजेश्वर का जलाभिषेक करते हैं हजारों श्रद्धालु। अकोला से 20 किलोमीटर दूर है पूर्णा नदी का तट। कावड़ यात्रा मार्ग पर मेडिकल सुविधा समेत इमरजेंसी सेवाओं के पुख्ता इंतजामों पर जोर। बिहार के मुजफ्फरपुर में श्रावणी मेले की तैयारियां तेज। बाबा गरीबनाथ धाम में बैरिगेटिंग और अतिक्रमण हटाने के निर्देश। कावड़ यात्रा मार्ग पर विशेष सफाई अभियान चलेगा। सुरक्षा के लिए सीसीटीवी और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर में तमिलनाडु की 80 साल की महिला श्रद्धालु ने दान किए 3.5 करोड़ रुपए। बेटों की स्मृति में बाबा विश्वनाथ को अर्पित किया चढ़ावा। मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए एनटीए ने जारी किया नीट यूजी 2026 का रिजल्ट। 720 में से 715 अंक हासिल कर पंजाब के आर एन गुप्ता और हरियाणा के पंशुल बंसल बने संयुक्त टॉपर। श्रीनगर के सुहाने मौसम में बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं पर्यटक। डल लेक में शिकारा राइड का ले रहे हैं आनंद। टू व्हीलर से नैनीताल जाने वाले पर्यटकों पर भी अब लगेगा 100 रुपए एंट्री टैक्स। बाहरी जिलों और राज्य से आने वाले टू व्हीलर लागू किया नया फैसला। जम्मू कश्मीर के डोडा में बारिश के मौसम में तोतों के रंग बिरंगे झुंडों से बड़ी प्रकृति की सुंदरता। नजारा देखने के लिए जमा हो रहे हैं पर्यावरण प्रेमी। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में हुई शुरुआत। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सोनार बंगला होगा इस बार की थीम। हरिद्वार के विश्वविख्यात मां मनसा देवी मंदिर में शुरू हुई एक नई पहल। अब पॉकेटलेस कपड़ों में नजर आएंगे मंदिर में काम करने वाले सभी कर्मचारी, पुजारी और पंडित। उज्जैन के विश्वविख्यात मंदिर श्री महाकालेश्वर में अब दान में दिए जाने वाले आभूषणों की भी होगी जांच। लगाई जाएगी कैरेट मीटर मशीन। चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध सावलिया सेठ को एक भक्त ने चढ़ाया सोने से निर्मित बांसुरी। 20 लाख बताई जा रही है बांसुरी की कीमत। सावलिया सेठ के दर्शन के लिए उमड़ा आस्था का जनसैलाब। बड़ी संख्या में भक्तों ने किए सावलिया सेठ के दर्शन। खुल गए पवित्र फयूला नारायण मंदिर के कपाट। चमोली जनपद के लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है ये मंदिर। अपनी अनूठी परंपरा के लिए प्रसिद्ध है घने जंगलों के बीच स्थित ये प्राचीन मंदिर, जहां पुरुष पुजारी के साथ महिला पुजारी भी करती हैं भगवान नारायण की सेवा और श्रृंगार। मंदिर में भगवान चतुर्भुज स्वरूप में नारायण, माता महालक्ष्मी, जय विजय, घंटा कर्ण, नंदा सुनंदा सहित अन्य देवताओं की होती है पूजा। ऋषि परंपरा के अनुसार पूजा अर्चना की मान्यता। सिक्किम में नामची रांकी मेला की रौनक। प्रदेश की सबसे मशहूर परंपराओं में से एक है ये पारंपरिक मेला। इस जश्न में रांकी भूत को प्रतीकात्मक रूप से जलाने से पहले मशाल रैली के लिए इकट्ठा होते हैं सैकड़ों लोग। फसलों को नष्ट करने वाली बुरी शक्ति का प्रतीक माना जाता है रांकी भूत। दिल्ली गाजियाबाद सीमा पर बनाया जा रहा है भव्य प्रवेश द्वार। धनुष बाण से सुसज्ज श्रीराम सेतु प्रवेश द्वार से संस्कृति और आस्था का संदेश। गाजियाबाद में 11 किलोमीटर लंबे हिंडन एलिवेटेड रोड को मिलेगा नया नाम। श्रीराम सेतु नाम से होगी आधिकारिक पहचान। झारखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहल। पतरातु डैम में पर्यटकों के लिए 2 फ्लोटिंग रेस्टोरेंट और म्यूजिकल फाउंटेन की सौगात। पतरातु की झील में मयूराक्षी और कोयल फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का शुभारंभ। प्राकृतिक सौंदर्य के बीच करीब 60 मिनट की राइड का आनंद ले सकेंगे पर्यटक। शाम के समय बदलेगा पतरातू झील का नजारा, म्यूजिकल लेजर फाउंडेशन शो बढ़ाएगा पर्यटकों का रोमांच। हरिद्वार में कावड़ यात्रा शुरू होने से पहले गढ़वाल कमिश्नर ने यात्रा मार्ग का जायजा लिया, श्रद्धालुओं के लिए यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश के बागपत में महिलाओं की सुरक्षा के लिए की चेन अलार्म अभियान शुरू, स्कूली छात्राओं और कामकाजी महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ाने का मकसद। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत महिलाओं को सुरक्षित महसूस कराने के लिए पहल, की चेन अलार्म से 50 मीटर दूर तक सुनी जा सकती है आवाज। रेल यात्रियों के लिए गुड न्यूज, मऊ से कोलकाता के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, 22 जुलाई से 24 सितंबर तक मिलेगी सुरक्षा। गुजरात के वडोदरा रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान सामने आई हादसे की तस्वीर, ट्रेन को तुरंत रोककर बचाई गई रेल यात्री की जान। भारत यूके के बीच व्यापार समझौता लागू होने के बाद पहली बार जयपुर से आभूषणों का कंसाइनमेंट रवाना, सांगानेर एयरपोर्ट पर दिखाई हरी झंडी। भारतीय आभूषण पहली बार ब्रिटेन के बाजार में जीरो ड्यूटी के साथ प्रवेश करेंगे, भारतीय व्यापार को इससे बढ़ावा मिलेगा। जयपुर के कंसाइनमेंट में सोना हीरा और प्लैटिनम जड़ित गहने शामिल, करीब 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर है कीमत। मध्य प्रदेश के कटनी जिले में देश की सबसे बड़ी जल सुरंग का निर्माण संपन्न होने के करीब, तकरीबन 12 किलोमीटर लंबी है सुरंग। जल सुरंग के जरिए नर्मदा नदी का पानी बिना किसी पंप टैंक के विंध्य क्षेत्र तक पहुंचा, 5 जिलों में करीब 2 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई के लिए मिल सकेगा पानी।
0: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
3: ज्योतिष का सबसे शुभ ग्रह बृहस्पति, क्या ये विवाह नहीं होने देता है? क्या कभी कभी विवाह होना असंभव कर देता है? क्या ये वैवाहिक जीवन में बड़ी दिक्कतें भी ले आता है? बृहस्पति किस प्रकार देता है विवाह में बाधा, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
4: What's Spectrum Internet? It's the most reliable internet to stream, game, and browse the way you want. It's also security to keep your whole family safe online. And it's adding the power of Wi-Fi 7 to your home, so you're ready for today and tomorrow. That's fast, secure, and future-ready internet for your family. So what's Spectrum Internet? It's everything you want it to be. Switch today at Spectrum.com. Services not available in all areas. Restrictions apply.
5: Turn it up with today's hits on TuneIn. We're bringing you the songs everyone's talking about, all in one place. Hear the biggest tracks right now. From today's top artists. Day or night, today's hits keeps the energy going. Start listening now. Just search today's hits or ask your device to play today's hits on TuneIn.
6: खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
10: गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोर
1: ऑल स्पोर्ट्स ऑल द टाइम राइट हियर ऑन ट्यून इन। कैच लाइव स्पोर्ट्स टॉक, एक्सपर्ट एनालिसिस एंड नॉनस्टॉप डिस्कशन फ्रॉम योर फेवरेट स्टेशंस लाइक ESPN Radio.
2: Not missed out on one player that the Yankees wanted.
1: Big 12 Radio.
3: Today is Big 12 Insiders game day. We're breaking
1: and
3: down.
1: Talk sports.
4: I just can't see a turnaround in the way that we're going to perform and result.
1: And much more. Get your head in the game and never miss a minute of the action. Just search sports or ask your device to play your favorite sports talk station on TuneIn.
5: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु

में दिक्कत आती है और विवाह में बाधा पैदा होती है। क्या वाकई में ऐसा होता है? पहले ये समझते हैं कि बृहस्पति विवाह के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है, और क्या बृहस्पति विवाह में समस्या देता है। देखिए, बृहस्पति किसी महिला के विवाह का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, महिला के विवाह का कारक है। बिना बृहस्पति के किसी महिला का विवाह नहीं हो सकता, और बृहस्पति किसी पुरुष के जीवन में उसके जीवन साथी के बारे में बताता है। बृहस्पति ही पुरुष के वैवाहिक जीवन को संतुलित करता है, बैलेंस करता है। लेकिन अगर बृहस्पति विवाह में बाधा देने लगे तो पहले तो विवाह का होना ही मुश्किल होगा, और अगर विवाह किसी तरीके से हो गया तो विवाह का निभना और चल पाना भी बहुत कठिन होगा। बृहस्पति की कुछ स्थितियां व्यक्ति के विवाह के लिए काफी समस्या पैदा करती हैं। बृहस्पति कुछ स्थितियों में विवाह होने में और विवाह चलने में काफी मुश्किल पैदा करता है। देखिए, बृहस्पति की पहली स्थिति पर चर्चा करते हैं जो विवाह में बाधा पैदा करती है, और फिर उससे निपटने के उपाय जानेंगे। बृहस्पति की पहली स्थिति है नीच का बृहस्पति। बृहस्पति अगर मकर राशि में बैठे हों, 10 नंबर के खाने में बैठे हों, जहां 10 नंबर लिखा है, तो बृहस्पति नीच का हो जाता है। और अगर नवमांश में ऐसा बृहस्पति है तो ये गुरु का बड़ा दोष है। ऐसी स्थिति में जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और विवाह में काफी विलंब होता है, और कभी कभी लोग देरी से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, देरी से उनके अंदर असंतोष का भाव आ जाता है और वो शादी करना ही नहीं चाहते। अगर ऐसा बृहस्पति कुंडली में है और शादी हुई, तो विवाह के बाद शुरू में वैवाहिक तालमेल में दिक्कत आती है, लेकिन अगर शुरुआती समय निकल जाए तो आगे विवाह चल जाता है। क्या उपाय करें अगर कुंडली में नीच का बृहस्पति हो, विवाह होने में या विवाह चलने में दिक्कत दे रहा हो? रोज सवेरे स्नान और उपासना यानी पूजा जरूर करें। चंदन की सुगंध नियमित रूप से लगाएं, नियमित रूप से प्रयोग करें। अपने दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में एक सोने का या एक पीतल का छल्ला धारण करें। बृहस्पतिवार को एक हल्दी की गांठ ले लें, पीले धागे में बांधकर इसको गले में धारण करें और हर 6 महीने पे इसको बदलते रहें। अगर कुंडली में बृहस्पति नीच राशि में बैठा है तो नीलम या शनि का रत्न बिल्कुल धारण

0: ना करें नीलम पहनना या शनि का रत्न पहनना, ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा निगेटिव हो सकता है। अब बृहस्पति की दूसरी स्थिति पर चर्चा करते हैं जो विवाह होने में बाधा पैदा करती है, और फिर आगे जानेंगे उसको दूर करने के उपाय क्या हैं। देखिए, बृहस्पति की दूसरी स्थिति है गुरु चांडाल योग। अगर कुंडली में राहु और बृहस्पति का योग है तो इसको गुरु चांडाल योग कहा जाता है। अगर कुंडली में गुरु चांडाल योग है तो ये व्यक्ति को उत्श्रृंखल बना देता है, अत्यंत चंचल दिल दिमाग का कर देता है। ऐसे लोग गंभीर नहीं होते और इनके विवाह का समय बीतता चला जाता है, और विवाह हो जाने के बाद जिनकी कुंडलियों में गुरु चांडाल योग होता है वो अपने लाइफ पार्टनर के प्रति, अपने जीवन साथी के प्रति ईमानदार नहीं रहते, उनकी लॉयल्टी का इशू बना रहता है। गुरु चांडाल योग वालों की अगर शादी जल्दी हो गई तो शुरुआत में बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, पति पत्नी दोनों के जीवन में मुश्किलों का अंत नहीं होता। क्या उपाय करें अगर गुरु चांडाल की वजह से विवाह नहीं हो पा रहा या वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ रही हैं? रोज सवेरे सूर्य देव को हल्दी मिला करके जल अर्पित करिएगा। इसके बाद सुबह के समय 27 बार या 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिएगा। मांस मदिरा आदि का सेवन नहीं करेंगे। अगर कुंडली में गुरु चांडाल योग है तो सलाह लेकर एक पन्ना या एक मोती धारण करें, बिल्कुल पवित्रता से साफ सफाई से रहें, दाढ़ी और बाल ये बड़े बिल्कुल ना रखें। अब जानते हैं बृहस्पति की तीसरी कौन सी स्थिति है जिसकी वजह से विवाह नहीं होता, और फिर जानेंगे उस स्थिति को बेहतर करने के उपाय क्या हैं। देखिए, बृहस्पति की तीसरी स्थिति है सप्तम भाव में बृहस्पति। सामान्यतः ये समझिए कि बृहस्पति जिस भाव में रहता है उसका नाश कर देता है। सप्तम भाव का बृहस्पति विवाह के लिए काफी खराब देखा गया है। सातवें स्थान में अगर बृहस्पति हो तो विवाह होने में अत्यंत विलंब हो जाता है और कभी कभी विवाह नहीं हो पाता। महिला की कुंडली के सातवें स्थान में बृहस्पति हो तो उनका विवाह होना लगभग असंभव सा हो जाता है, और अगर किसी तरह से शादी हो गई तो वैवाहिक जीवन में ईगो प्रॉब्लम, अहंकार की समस्या पैदा हो जाती है। अगर महिला की कुंडली में सप्तम में गुरु है, सतर्क हो जाइए विवाह के मामले में। पुरुष की कुंडली में सप्तम का बृहस्पति दिक्कत तो देगा, लेकिन उतनी दिक्कत नहीं देगा जितना ये महिला की कुंडली में देता है। क्या उपाय करेंगे? देर रात तक जगने से बचिएगा। माथे पर या कंठ पर तिलक जरूर लगाएं, और अगर पीला चंदन लगाएं या केसर का तिलक लगाएं तो अच्छा होगा। सप्ताह में एक दिन गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें, खास तौर से बृहस्पतिवार के दिन। भूल कर भी पीला पुखराज मत पहनिएगा। अगर सातवें स्थान में गुरु है और विवाह नहीं हो पा रहा है, पीला पुखराज मत पहनिए, अगर पहना है तो निकाल दीजिए। एक ओपल ऐसी स्थिति में सलाह लेकर पहन सकते हैं, उससे काफी लाभ होगा। जिन लोगों को रोजगार की समस्या हमेशा बनी रहती है, करियर में बार बार उतार चढ़ाव आते हैं, ऐसे लोगों को काली स्याही से ब्लैक इंक वाली पेन से लिखना चाहिए, ऐसा करना उनके लिए बेहतर होगा। आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि अगर आप शेयर बाजार में काम करते हैं, कुंडली आपको सपोर्ट करती है और आप लाभ लेना चाहते हैं तो क्या करेंगे? स्नान करते समय प्रातः काल जल में जरा सा गोमूत्र डालकर नहाइए। इसके बाद ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए और नीले कपड़े में लपेटकर सफेद चंदन की लकड़ी अपने पास रखिए, अपनी बाजू में बांध लें या गले में पहन लें। आप अगर ऐसा करते हैं तो आपको लाभ जरूर होगा और आप नुकसान से बचे रहेंगे। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements. Sage University, transforming your passion into profession.
4: रात्रि विश्राम के बाद आज विधि विधान से आगे बढ़ेगी पुरी में श्री जगन्नाथ रथ यात्रा। भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मौसी के घर पहुंचेंगे भगवान, लाखों देसी विदेशी श्रद्धालु मौजूद। देश में आज पहली हाइड्रोजन ट्रेन सेवा का होगा शुभारंभ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के जिंद में दिखाएंगे हरी झंडी। जिंद से सोनीपत के बीच चलेगी हाइड्रोजन रेल। आज चंडीगढ़ और पंजाब को भी प्रधानमंत्री देंगे सौगात। चंडीगढ़ PGI में 1250 करोड़ की हेल्थ केयर सुविधाओं का करेंगे उद्घाटन। कायाकल्प के बाद जालंधर सहित कई रेलवे स्टेशन का करेंगे लोकार्पण। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश, दिल्ली एनसीआर में भी मौसम ने ली करवट, गर्मी और उमस से राहत की उम्मीद। मेडिकल में दाखिले के लिए नीट यूजी 2026 का रिजल्ट जारी, 720 में से 715 अंक हासिल कर पंजाब के आर्यन गुप्ता और हरियाणा के पंशुल बंसल बने संयुक्त टॉपर। आज है फिल्मी फ्राइडे, क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म द ओडिसी और आर माधवन की जीडीएन हो रही है रिलीज, ओटीटी पर भी कई फिल्में और वेब सीरीज की दस्तक।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।

0: नमस्कार, गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार।
0: तो चलिए आपको जानकारी देते हैं कि आज के इस शो में मैं पंडित जी के साथ क्या चर्चा करने वाली हूँ। चर्चा का विषय है बृहस्पति। अगर आपके विवाह में किसी प्रकार की कोई परेशानी दे रहा है, आपके विवाह में कोई बाधा आ रही है, तो उससे बचने के लिए आपको कौन से अचूक उपाय करने हैं ताकि आपका विवाहित जीवन जो है वो अच्छे से चलता रहे, इसके बारे में तमाम जानकारियां पंडित जी आपके साथ साझा करेंगे। साथ ही आपके तमाम सवाल भी पंडित जी लेंगे, उसके जवाब भी देंगे। और शुरुआत कर लेते हैं आज के गुड लक मंत्र के साथ।
1: जिन लोगों को रोजगार की समस्या हमेशा बनी रहती है, करियर में बार बार उतार चढ़ाव आते हैं, ऐसे लोगों को काली स्याही से ब्लैक इंक वाली पेन से लिखना चाहिए। ऐसा करना उनके लिए बेहतर होगा।
0: चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं 17 जुलाई 2026 शुक्रवार के पंचांग के बारे में।
1: दिनांक 17 जुलाई 2026 दिन शुक्रवार, तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, प्रातः 6:27 तक। नक्षत्र है मघा नक्षत्र, शाम के 6:34 तक। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः 10:30 से लगभग 12 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: चलिए शुरुआत करते हैं आज के विषय की। शुरुआत में हमने आपको जानकारी दी है बृहस्पति के विवाह में क्या भूमिका होती है, उसके बारे में आपको तमाम जानकारियां देंगे। लेकिन पहला प्रश्न ये बनता है कि बृहस्पति के विवाह में भूमिका क्या होती है, क्या बृहस्पति भी विवाह में दिक्कत या समस्याएं पंडित जी पैदा करता है, ऐसा है
1: जी? देखिए, आज हम ये बता रहे हैं कि बृहस्पति की वजह से भी विवाह होने में दिक्कत आती है और विवाह में बाधा पैदा होती है। क्या वाकई में ऐसा होता है? पहले ये समझते हैं कि बृहस्पति विवाह के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है, और क्या बृहस्पति विवाह में समस्या देता है। देखिए, बृहस्पति किसी महिला के विवाह का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, महिला के विवाह का कारक है। बिना बृहस्पति के किसी महिला का विवाह नहीं हो सकता, और बृहस्पति किसी पुरुष के जीवन में उसके जीवन साथी के बारे में बताता है। बृहस्पति ही पुरुष के वैवाहिक जीवन को संतुलित करता है, बैलेंस करता है। लेकिन अगर बृहस्पति विवाह में बाधा देने लगे तो पहले तो विवाह का होना ही मुश्किल होगा, और अगर विवाह किसी तरीके से हो गया तो विवाह का निभना और चल पाना भी बहुत कठिन होगा। बृहस्पति की कुछ स्थितियां व्यक्ति के विवाह के लिए काफी समस्या पैदा करती हैं, बृहस्पति कुछ स्थितियों में विवाह होने में और विवाह चलने में काफी मुश्किल पैदा करता है।
0: चलिए, इसी विषय से जुड़े हुए और भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो पंडित जी से हम आगे पूछेंगे। बारी आती है राशिफल पर आने की और पहली तीन राशियों का हाल आपको बता देते हैं। सबसे पहली बारी है मेष, वृष और मिथुन वालों की। जानते हैं इनके भाग्यफल में आज क्या लिखा है।
1: मेष राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा, कार्य क्षेत्र में लाभ की संभावना बन रही है, लेकिन दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचें, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें, दही का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में कुछ बदलाव होगा, कोई यात्रा इस समय हो सकती है। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: चलिए, अगला प्रश्न पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, सवाल आपसे ये है कि बृहस्पति की पहली स्थिति वो कौन सी है जो आपके विवाह में बाधा या फिर समस्या पैदा कर सकती है, किस तरह से समझा जाए इसको।
1: देखिए, बृहस्पति की पहली स्थिति पर चर्चा करते हैं जो विवाह में बाधा पैदा करती है और फिर उससे निपटने के उपाय जानेंगे। बृहस्पति की पहली स्थिति है नीच का बृहस्पति। बृहस्पति अगर मकर राशि में बैठे हों, 10 नंबर के खाने में बैठे हों, जहां 10 नंबर लिखा है, तो बृहस्पति नीच का हो जाता है। और अगर नवमांश में ऐसा बृहस्पति है तो ये गुरु का बड़ा दोष है। ऐसी स्थिति में जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और विवाह में काफी विलंब होता है और कभी कभी लोग देरी से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, देरी से उनके अंदर असंतोष का भाव आ जाता है और वो शादी करना ही नहीं चाहते। अगर ऐसा बृहस्पति कुंडली में है और शादी हुई तो विवाह के बाद शुरू में वैवाहिक तालमेल में दिक्कत आती है, लेकिन अगर शुरुआती समय निकल जाए तो आगे विवाह चल जाता है। क्या उपाय करें अगर कुंडली में नीच का बृहस्पति हो विवाह होने में या विवाह चलने में दिक्कत दे रहा हो, रोज सवेरे स्नान और उपासना यानी पूजा जरूर करें। चंदन की सुगंध नियमित रूप से लगाएं, नियमित रूप से प्रयोग करें। अपने दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में एक सोने का या एक पीतल का छल्ला धारण करें। बृहस्पतिवार को एक हल्दी की गांठ ले लें, पीले धागे में बांधकर इसको गले में धारण करें और हर 6 महीने पे इसको बदलते रहें। अगर कुंडली में बृहस्पति नीच राशि में बैठा है तो नीलम या शनि का रत्न बिल्कुल धारण ना करें। नीलम पहनना या शनि का रत्न पहनना ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा निगेटिव हो सकता है।
0: चलिए और भी बहुत सारे प्रश्न पंडित जी से पूछेंगे, महा उपाय के बारे में आपको जानकारी देंगे, अगली 3 राशियों का हाल। उससे पहले आपको बता देते हैं कर्क सिंह और कन्या वालों के भाग्यफल में क्या लिखा है, पंडित जी आपको जानकारी देंगे।
1: कर्क राशि, धन लाभ के योग आपके लिए इस समय बने हुए हैं। करियर में सफलता मिलेगी, किसी मित्र की सहायता से लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।

0: ठीक रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, मानसिक चिंता हो सकती है, धन हानि से बचाव करें। दही का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
1: चलिए सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं, यानी आप सब दर्शकों के सवाल और पंडित जी के जवाब। इससे पहले कि आपके पहले प्रश्न की तरफ मैं बढ़ूं, आपको सूचित कर देते हैं कि कोई भी प्रश्न है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, उसका सोल्यूशन आप चाहते हैं तो अपने तमाम सवाल जो है वो लिख कर ईमेल के माध्यम से इस शो में भेज सकते हैं। ईमेल आईडी आपके टीवी स्क्रीन पर है, आप नोट डाउन कर लीजिए। पंडित जी, पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं किसका है पहला सवाल।
0: जी, आज का पहला प्रश्न अभिजीत वर्मा जी ने प्रयागराज से हमें लिखा है। 30 अप्रैल 1975 का जन्म है। 3:40 AM अर्ली मॉर्निंग, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मेरी जीवन में उन्नति कब तक होगी, मेरी आर्थिक चिंताएं कब तक समाप्त होंगी, और मैं व्यवसाय करता हूं, स्टाफ की तरफ से हमेशा परेशानियां बनी रहती हैं, तो कब तक इसका निवारण हो पाएगा। अभिजीत, आपकी कुंडली बनती है मीन लग्न की और आपकी राशि बनती है धनु, महादशा राहु की और अंतर दशा शनि की चल रही है। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि अभी 1.5 साल तक आप अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान दें और व्यापार के मामले में महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सावधानी रखें। आपका जीवन 2028 के अप्रैल तक मुश्किलें दिखा रहा है, इसके बाद से आपकी स्थितियां बेहतर होनी शुरू होंगी और जीवन में पूरी तरह से ऊंचाइयों पर अप्रैल 2029 के बाद पहुंच पाएंगे। विदेश से संबंधित अगर कोई काम करें, फॉरेन से संबंधित अगर कोई काम करें, तो उसमें लाभ होने की संभावना ज्यादा दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य और जीवन को बेहतर करने के लिए, स्टाफ की समस्याओं को दूर करने के लिए एक पीला पुखराज बनवा करके पहनिए। लगभग 6-8 रत्ती का पीला पुखराज सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार को प्रातः धारण करें और रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: चलिए, बृहस्पति की पहली स्थिति कौन सी है उसके बारे में तो पंडित जी ने आपको जानकारी दे दी, उस सिचुएशन में आपको क्या करना है वो भी बता दिया। अब बृहस्पति की पंडित जी दूसरी स्थिति कौन सी होती है जो विवाह में दिक्कतें पैदा कर सकती है, उसके बारे में भी जानकारी दीजिए।
0: अब बृहस्पति की दूसरी स्थिति पर चर्चा करते हैं जो विवाह होने में बाधा पैदा करती है, और फिर आगे जानेंगे उसको दूर करने के उपाय क्या हैं। देखिए, बृहस्पति की दूसरी स्थिति है गुरु चांडाल योग। अगर कुंडली में राहु और बृहस्पति का योग है तो इसको गुरु चांडाल योग कहा जाता है। अगर कुंडली में गुरु चांडाल योग है तो ये व्यक्ति को उत्श्रृंखल बना देता है, अत्यंत चंचल दिल दिमाग का कर देता है। ऐसे लोग गंभीर नहीं होते और इनके विवाह का समय बीतता चला जाता है, और विवाह हो जाने के बाद जिनकी कुंडलियों में गुरु चांडाल योग होता है वो अपने लाइफ पार्टनर के प्रति, अपने जीवन साथी के प्रति ईमानदार नहीं रहते, उनकी लॉयल्टी का इशू बना रहता है। गुरु चांडाल योग वालों की अगर शादी जल्दी हो गई तो शुरुआत में बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, पति पत्नी दोनों के जीवन में मुश्किलों का अंत नहीं होता। क्या उपाय करें अगर गुरु चांडाल की वजह से विवाह नहीं हो पा रहा या वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ रही हैं? रोज सवेरे सूर्य देव को हल्दी मिला करके जल अर्पित करिएगा। इसके बाद सुबह के समय 27 बार या 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिएगा। मांस मदिरा आदि का सेवन नहीं करेंगे। अगर कुंडली में गुरु चांडाल योग है तो सलाह लेकर एक पन्ना या एक मोती धारण करें, बिल्कुल पवित्रता से साफ सफाई से रहें। दाढ़ी और बाल ये बड़े बिल्कुल ना रखें।
1: चलिए आगे बढ़ते हैं राशिफल के साथ, और तुला, वृश्चिक और धनु वालों के भाग्यफल में आज क्या लिखा है पंडित जी आपको विस्तार से बताएंगे।
0: तुला राशि, धन की समस्या आपकी दूर होती दिख रही है, संपत्ति की समस्या हल होगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, नौकरी में लाभ के योग बन रहे हैं, धन की स्थिति में सुधार होगा, संपत्ति का लाभ हो सकता है। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: चलिए पहली और दूसरी स्थिति के बारे में तो पंडित जी ने आपको जानकारी दे दी, अब बृहस्पति की तीसरी स्थिति वो कौन सी होती है जिसकी वजह से आपके विवाह में, वैवाहिक जीवन में दिक्कतें पैदा होती हैं, बाधा आती है, वो भी पंडित जी से जान लेते हैं।
0: अब जानते हैं बृहस्पति की तीसरी कौन सी स्थिति है जिसकी वजह से विवाह नहीं होता, और फिर जानेंगे उस स्थिति को बेहतर करने के उपाय क्या हैं। देखिए बृहस्पति की तीसरी स्थिति है सप्तम भाव में बृहस्पति। सामान्यतः ये समझिए कि बृहस्पति जिस भाव में रहता है उसका नाश कर देता है। सप्तम भाव का बृहस्पति विवाह के लिए काफी खराब देखा गया है। सातवें स्थान में अगर बृहस्पति हो तो विवाह होने में अत्यंत विलंब हो जाता है और कभी कभी विवाह नहीं हो पाता। महिला की कुंडली के सातवें स्थान में बृहस्पति हो तो उनका विवाह होना लगभग असंभव सा हो जाता है, और अगर किसी तरह से शादी हो गई तो वैवाहिक जीवन में ईगो प्रॉब्लम, अहंकार की समस्या पैदा हो जाती है। अगर महिला की कुंडली में सप्तम में गुरु है, सतर्क हो जाइए विवाह के मामले में। पुरुष की कुंडली में सप्तम का बृहस्पति दिक्कत तो देगा, लेकिन उतनी दिक्कत नहीं देगा जितना ये महिला की कुंडली में देता है। क्या उपाय करें अगर सप्तम स्थान में बृहस्पति है, विवाह में या वैवाहिक जीवन में बहुत समस्या है या विवाह बिल्कुल नहीं हो पा रहा है? देर रात तक जगने से बचिएगा। माथे पर या कंठ पर तिलक जरूर लगाएं, और अगर पीला चंदन लगाएं या केसर का तिलक लगाएं तो अच्छा होगा। सप्ताह में एक दिन गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें, खास तौर से बृहस्पतिवार के दिन। भूल कर भी पीला पुखराज मत पहनिएगा। अगर सातवें स्थान में गुरु है और विवाह नहीं हो पा रहा है, पीला पुखराज मत पहनिए, अगर पहना है तो निकाल दीजिए। एक ओपल ऐसी स्थिति में सलाह लेकर पहन सकते हैं, उससे काफी लाभ होगा।
1: और चलिए इसी के साथ पहुंच गए हैं राशिफल के अंत की तरफ। अंतिम तीन राशियों का हाल भी पंडित जी से ही जान लेते हैं कि कैसा रहने वाला है। बारी है अब मकर, कुंभ और मीन वालों की। जानते हैं इनके भाग्यफल में आज क्या लिखा है।
0: मकर राशि, महत्वपूर्ण काम इस समय आपका रुक सकता है, बेवजह की दौड़ भाग हो सकती है, स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है। दही का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60% मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में शुभ कार्य होंगे, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।

0: बन रहे हैं, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: चलिए आपके सवालों की तरफ ही बढ़ते हुए अगले दर्शक का भी प्रश्न पंडित जी से ही जान लेते हैं कि कौन सी समस्या का निवारण पंडित जी करने जा रहे हैं।
0: जी अगला प्रश्न राहुल शॉ ने हमें लिखा है, कोलकाता से लिखते हैं, 23 जुलाई 1993 का जन्म है, मध्य रात्रि में 12:28 चिंसुरा हुगली पश्चिम बंगाल। ये कह रहे हैं कि मैं कोलकाता में फ्लैट लेना चाहता हूं, कब तक ले पाऊंगा, क्या मेरी कुंडली मांगलिक है? राहुल आपकी कुंडली बनती है वृषभ लग्न की और आपकी राशि बनती है सिंह, महादशा राहु की और अंतर दशा भी राहु की चल रही है। सबसे पहले बता दूं, साल 2027 में प्रॉपर्टी ले पाएंगे और जून 2027 के बाद प्रॉपर्टी ले सकेंगे, फ्लैट ले सकेंगे, ये संभावना बन रही है। जब भी आप फ्लैट लें सिर्फ इतना ध्यान रखें कि फ्लैट का टोटल नंबर 8 नहीं होना चाहिए, बाकी आप किसी भी डायरेक्शन का फ्लैट ले सकते हैं। कुंडली के चतुर्थ भाव में मंगल बैठा है तो कुंडली आपकी पूरी तरह से मांगलिक है, हालांकि मंगल लक्ष्मी योग बना रहा है तो मंगल आपके लिए फायदेमंद दिखाई दे रहा है। प्रॉपर्टी के लिए, जीवन में उन्नति के लिए एक ओपल बनवा करके पहन लें, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहने और शिव जी की उपासना करें, सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपको लाभ होगा।
1: चलिए बृहस्पति से जुड़े हुए तमाम सवाल और जवाब तो पंडित जी ने आपको बता दिए हैं। पंडित जी एक और सवाल बताइए, सवाल मेरा ये है कि क्या बृहस्पति महिलाओं के विवाह के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पुरुषों के लिए कम होता है, ऐसा है क्या?
0: जी देखिए, महिलाओं के विवाह होने से लेकर के विवाह चलने तक सारी जिम्मेदारी बृहस्पति की ही होती है और उसमें सारी भूमिका बृहस्पति ही निभाते हैं। उसमें सिर्फ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि पुरुषों के लिए वो भूमिका शुक्र निभाते हैं जो भूमिका महिलाओं के लिए बृहस्पति निभाएंगे। तो अगर किसी पुरुष की कुंडली में बृहस्पति गड़बड़ है तो पुरुष के जीवन पर उसका प्रभाव दूसरी तरह पड़ेगा, और अगर किसी महिला की कुंडली में बृहस्पति गड़बड़ है तो सबसे पहले उसके विवाह और वैवाहिक जीवन पर समस्या आएगी और महिला के जीवन पर बृहस्पति के निगेटिव होने का प्रभाव दूसरा पड़ेगा।
1: और चलिए आगे बढ़ते हुए अब पंडित जी से जान लेते हैं कि जिन तमाम लोगों का जन्मदिन है 17 जुलाई को, सबसे पहले आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। पंडित जी आपको बताएंगे कि आपका हैप्पी बर्थडे आपके लिए क्या कुछ लेकर आया है।

0: जन्मदिन 17 जुलाई को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर कुल मिलाकर मध्यम रहेगा, धन की स्थिति ठीक बनी रहेगी। अविवाहितों का विवाह इस साल हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर शनि देव की अगर उपासना करें तो बहुत बेहतर होगा।
1: चलिए आगे बढ़ते हुए पंडित जी से ही जान लेते हैं आज के शो की जिज्ञासा क्या कहती है।
0: आज की जिज्ञासा है कि क्या स्वास्थ्य खराब होने पर पलंग पर लेट कर भी मंत्र जप कर सकते हैं? लेट कर मंत्र जप करना उचित है? देखिए, विशेष स्थितियों में लेट कर भी मंत्र जप किया जा सकता है। केवल ये ध्यान रखिए कि जप करते समय आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए।
1: अब पंडित जी आपको जानकारी देंगे 17 जुलाई 2026 शुक्रवार के शुभ पहर के बारे में।
0: दिनांक 17 जुलाई 2026 दिन शुक्रवार, शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में माता लक्ष्मी की कपूर से आरती करिएगा, आपकी धन संबंधी समस्याओं में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 17 जुलाई शुक्रवार रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में।
1: जैसा कि आप सभी जानते हैं, शो के अंत की तरफ बढ़ते हुए हम बात करते हैं गुडलक राशि के बारे में। तो आज की गुडलक राशि यानी आपकी गुडलक राशि कौन सी है वो पंडित जी आपको बताएंगे।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग किस ग्रह का दान करेंगे। आज की गुडलक राशि है मिथुन। इनको मंगल और बृहस्पति ग्रह का दान करना चाहिए। ऐसा करने से ये स्वास्थ्य और वैवाहिक जीवन की समस्याओं से बचे रहेंगे।
1: चलिए, तमाम उपाय और जानकारियां तो आपने प्राप्त कर ली हैं इस शो से जुड़ी हुई। अब बारी आती है खास उपाय के बारे में आपको ज्ञान देने की। तो पंडित जी ही आपको बताएंगे कि आज का खास उपाय, पंडित जी, महा उपाय क्या है।
0: जी, आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि अगर आप शेयर बाजार में काम करते हैं, कुंडली आपको सपोर्ट करती है और आप लाभ लेना चाहते हैं तो क्या करेंगे? स्नान करते समय प्रातः काल जल में जरा सा गोमूत्र डालकर नहाइए। इसके बाद ओम राम राहवे नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए और नीले कपड़े में लपेटकर सफेद चंदन की लकड़ी अपने पास रखिए, अपनी बाजू में बांध लें या गले में पहन लें। आप अगर ऐसा करते हैं तो आपको लाभ जरूर होगा और आप नुकसान से बचे रहेंगे।
1: तो पंडित जी, इस महा उपाय के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: तो चलिए, इसी के साथ आज के इस खास एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए जीएनटी। नमस्कार।
0: ज्योतिष का सबसे शुभ ग्रह बृहस्पति क्या ये विवाह नहीं होने देता है? क्या कभी कभी विवाह होना असंभव कर देता है? क्या ये वैवाहिक जीवन में बड़ी दिक्कतें भी ले आता है? बृहस्पति किस प्रकार देता है विवाह में बाधा, जानिए मेरे साथ।
2: The Sherwin-Williams Summer Sale is here. Get 30% off select paints and stains or 35% off our newest product, Emerald Symmetry, July 17th through the 27th. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
3: There's a wild world waiting on Earth Day 365. Hunt with predators. Dive with sharks. Explore the unexplored. From nature, science, and space. To premiere original series and exclusive IMAX theatre documentary films. Watch Earth Day 365 free now on the Roku channel.
4: I'm Pamela Anderson. Explore your world every day on Earth Day 365.
1: अब मुझ में ही है
5: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
5: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज़ टुडे पर।

गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: पत्रकारिता करते हैं, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे,
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: और अब बात उस खबर की जो पिछले कुछ महीनों से सुर्खियों में छाई हुई है। गाड़ी चलाने वाला हर व्यक्ति E20 से जुड़ा सच जानना चाहता है। इंजन, इसके पार्ट्स और माइलेज पर E20 पेट्रोल का कितना असर पड़ता है, ये जानने को हर कोई आतुर है। IIT कानपुर के इंजन रिसर्च लेबोरेटरी ने E20 पेट्रोल से जुड़े हर भ्रम को दूर करने की कोशिश की है। IIT कानपुर ने अपनी रिसर्च का हवाला देते हुए दावा किया है कि E20 पेट्रोल से ना तो गाड़ियों के इंजन पर कोई बुरा असर पड़ता है और ना ही माइलेज में कोई बड़ी गिरावट आती है। दरअसल IIT कानपुर की इंजन रिसर्च लैब ने E20 पेट्रोल को लेकर कई स्टेज में शोध किया गया है। इसके बाद ही संस्थान की तरफ से E20 पेट्रोल का सच सामने रखा गया है।

0: पिछले कुछ हफ्तों से हर तरफ E20 पेट्रोल को लेकर चर्चा है। सोशल मीडिया पर कुछ वाहन मालिकों और मैकेनिकों की तरफ से गाड़ियों के पार्ट्स खराब होने के दावे की वजह से भ्रम फैला है। इंजन में खराबी, कम माइलेज और खराब परफॉर्मेंस के दावे के बीच IIT कानपुर ने इंजन पर E20 पेट्रोल के असर पर रिसर्च की है।
1: इस वक्त मैं मौजूद हूँ IIT कानपुर कैंपस में, उसी लैब में जहाँ पर ये पूरी स्टडी की गई है। आप विजुअल्स में अगर आप देखेंगे तो पूरी इस लैबोरेटरी में वो मशीन्स लगाई गई हैं, इंजन्स लगाए गए हैं जो एक प्रॉपर कार में यूज होते हैं, और सभी एक्सटर्नल फैक्टर्स को इसमें प्रयोग करके इस कंक्लूजन पे पहुंचा गया है कि फिलहाल E20 पेट्रोल से किसी भी तरीके से इंजन या उसके एवरेज पे फर्क नहीं करता। आप देखेंगे इस विजुअल्स में ये BS6 इंजन है जो कि गाड़ियों में इस्तेमाल होता है, उसी इंजन को यहाँ पर प्लेस कर दिया गया है ताकि इस पर E20 पेट्रोल डालकर इसके इफेक्ट्स को कहीं ना कहीं मॉनिटर किया जा सके। सालों साल ये पूरी रिसर्च चली है जिसके बाद आखिरकार इस नतीजे पे IIT कानपुर जो है वो पहुंचा है।
0: IIT कानपुर के इंजन रिसर्च लेबोरेटरी में BS6 मानकों वाले वाहनों के इंजन को E20 से कोई नुकसान नहीं पहुंचा। वाहनों के इंजन को ओवरहीटिंग से बचाने वाले कूलेंट के अलावा इंजन ऑयल की भी मॉनिटरिंग की गई। BS6 वाहनों के इंजन में फ्यूल लेवल को भी मशीनों की मदद से लगातार नापा गया ताकि एवरेज में गिरावट के दावे को परखा जा सके। IIT कानपुर के इंजन रिसर्च लेबोरेटरी में पता चला कि E20 पेट्रोल की तुलना में पारंपरिक पेट्रोल की वजह से पिस्टन पर ज्यादा कार्बन डिपॉजिट यानी कचरा दिखा।
1: मैं दिखाऊंगा आपको, ये कार का एक पार्ट है और
2: बोलते हैं ये पिस्टन है, यहाँ पे हम लोग इसमें कार्बन डिपॉजिट जो बोल रहे हैं लोग, कार्बन डिपॉजिट चेक करने के लिए ये गैसोलीन से निकले पिस्टन है। आप देख सकते हैं इस पे कितना कार्बन डिपॉजिट है।
1: बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि मैं आपको बताऊं, लोगों के मन में जो एक सवाल है वो अपनी गाड़ी में बता रहे हैं कार्बन जम रहा है। ये E20 पेट्रोल से इस्तेमाल हुआ इंजन है या नॉर्मल पेट्रोल?
2: नहीं, ये गैसोलीन वाला है, प्योर गैसोलीन वाला है।
1: उसके बाद भी इतना कार्बन?
2: हाँ, प्योर पेट्रोल में ज़्यादा कार्बन डिपॉजिट है क्योंकि उस फ्यूल की क्वालिटी ही ऐसी है कि उसमें कार्बन बहुत ज्यादा होता है।
1: आपका कहना है कि E20 में कम कार्बन जमा होता है, नॉर्मल पेट्रोल में ज्यादा कार्बन जमा?
2: जी बिल्कुल, E20 में फ्यूल में कम कार्बन जमता है एज कम्पेयर टू प्योर पेट्रोल।
1: आपको इंजन का पार्ट है, कितने साल पुरानी इंजन है
2: ये? डेढ़ साल
1: पुरानी गाड़ी का ये इंजन है, इसमें नॉर्मल पेट्रोल डाला गया है और कभी भी इंजन का पार्ट है और E20 नहीं इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद भी आप यहाँ देखेंगे तो अच्छा खासा कार्बन यहाँ पर जमा है।
0: रिसर्च में फोर व्हीलर से जुड़े BS6 इंजन या उसके पार्ट्स खराब होने या जंग लगने जैसे दावे भी गलत साबित हुए।
1: इंजन पर जो दबाव है, लोग बता रहे हैं कि इंजन खराब हो रहा है, आप लोगों ने क्या इंजन के पार्ट्स भी मॉनिटर करे, क्या उस पर भी कोई इफेक्ट आया?
2: जी बिल्कुल, हमारा इंजन, हमारे जो टेस्ट होते हैं वो काफ़ी टाइप के इंजन पे होते हैं, सिर्फ एक इंजन पे हम लोग ये कंक्लूजन नहीं कर सकते कि E20 से खराब हो रहा है इंजन। तो एक्सटेंसिव टेस्ट के बाद में आपको मैं उधर उस लैब में दिखाऊंगा कि मोटरसाइकिल के हमने एक्सटेंसिव टेस्टिंग की है, पार्ट्स को काट के देखा है कि अगर कोई करोजन सिम्टम्स हैं उसमें, करोजन के कई ट्रेस मौजूद हैं, कई फ्यूल के कारण से नहीं है, तो ये सब हमने टेस्ट करके देखा है, उसके बाद मैं आपको ये बोल सकता हूँ।
1: ठीक है, अगर आप देखेंगे तो इस पूरी बड़ी लैब में जो IIT कानपुर के कैंपस में है सभी मशीनरीज मौजूद हैं ताकि सभी फैक्टर्स को जो भारी इस गाड़ियों में जो एप्लीकेबल होते हैं उसको इस्तेमाल किया जाए। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एक बड़ा यंत्र, क्या बोलते हैं इसको?
2: ये ब्लोअर है, जैसे चलती हुई गाड़ी को सिमुलेट, हवा के दबाव को सिमुलेट करने के लिए ये मशीन इक्विपमेंट यूज होता है।
1: तो हवा का दबाव?
2: जी जी।
1: तो आप यहाँ देखेंगे कि गाड़ी जब चलती है तो बाहर से कितनी हवा आती है, कितना प्रेशर इंजन पे पड़ता है, कितने लोग बैठे होते हैं, कूलेंट कितना गर्म होता है, कितना ज़्यादा होता है, सभी फैक्टर्स को यहाँ पर अकाउंट में रखा गया और इसी लेबोरेटरी में सालों साल रिसर्च करके इस कंक्लूजन में पहुँचा गया कि फिलहाल E20 पेट्रोल से वो साइड इफेक्ट्स नहीं है कि जैसा कि क्लेम किया जा रहा है।
0: IIT कानपुर की टू व्हीलर टेस्टिंग फैसिलिटी में मोटरसाइकिलों को अलग अलग स्पीड, लोड और राइडिंग पैटर्न पर चलाकर परखा गया। इस दौरान बाइक के इंजन और फ्यूल टैंक में कोई खराबी या जंग के निशान नहीं दिखे।
1: जो लोगों द्वारा दावा किया जाता है कि उनके इंजन खराब हो जाते हैं, कहीं उसमें जंग लग जाती है, कहीं कार्बन लगता है, इसीलिए इंजन को, क्या यही रीजन है आप लोगों ने काटा भी है इस इंजन को?
2: जी जी, हमने जैसे करोजन जैसी समस्या अगर जो रिपोर्ट की जाती है अल्कोहल वाले फ्यूल्स में, तो हमने इसीलिए इसको काट के देखा है कि उसमें करोजन जैसी समस्या है 100% पेट्रोल में और बाकी मिथेनॉल इथेनॉल ब्लेंड्स में कि उसमें करोजन जैसी समस्या। आप देखेंगे जैसे फ्यूल पंप का जो पार्ट है ये डिफरेंट डिफरेंट, उससे फ्यूल मोटर खराब तो नहीं होती,
3: डिफरेंट सिस्टम्स जैसे हो गया स्पार्क प्लग, जो जो भी ऐसे पार्ट्स हैं जो कि इथेनॉल के कॉन्टैक्ट में आते हैं,
1: सभी इंजन में इथेनॉल कहीं ना कहीं कभी ना कभी यूज हुआ है, उसके बाद यहाँ पे रखे। तो आप यहाँ देखेंगे किस तरीके से इंजन को जो है वो काट के उसकी भी मॉनिटरिंग की गई है, जो टंकी है पानी की उसकी भी मॉनिटरिंग की गई है। ये फ्यूल की, हाँ, जो यहाँ पे फ्यूल के जो आप देखेंगे पार्ट्स हैं यहाँ पे इंजन के, ये सब रखे गए हैं। तमाम इस तरीके के जो फैक्टर्स हैं इन सभी को दिमाग में रखा गया है और यहाँ पे किसी तरीके से फिलहाल इंजन आपको कार्बन जो है वो जमा होता और नहीं दिख रहा।
0: 25 साल तक IIT कानपुर में वैकल्पिक ईंधन पर रिसर्च कर चुके रिसर्चर प्रोफेसर अविनाश अग्रवाल का कहना है कि पेट्रोल ग्रेड इथेनॉल में कोई समस्या नहीं है।
4: मुझे लगता है कि इसमें अपने को एक चीज समझनी पड़ेगी कि इथेनॉल जो है उसके अंदर कितना पानी है उस चीज पर डिपेंड करता है। इथेनॉल जो पेट्रोल ग्रेड में होना चाहिए वो 99.9% प्योरिटी का होना चाहिए। मॉइस्चर कंटेंट जो है वो 0.01% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जब इथेनॉल जब आप फ्यूल में डालते हैं और जब उसमें मॉइस्चर कंटेंट 0.9% 0.8% हो जाता है, या किसी वजह से जो है जहां पर इथेनॉल प्रोड्यूस हो रही है वहां पर वाटर का इंग्रेस किसी वजह से हो जाता है।
0: E20 फ्यूल में 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल का मिश्रण होता है। वाहन निर्माताओं के अलावा अब IIT कानपुर की तरफ से भी इस ईंधन को पूरी तरह से सुरक्षित होने का दावा किया गया है। कानपुर से सिमर चावला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: ज्योतिष का सबसे शुभ ग्रह बृहस्पति, क्या ये विवाह नहीं होने देता है? क्या कभी कभी विवाह होना असंभव कर देता है? क्या ये वैवाहिक जीवन में बड़ी दिक्कतें भी ले आता है? बृहस्पति किस प्रकार देता है विवाह में बाधा, जानिए मेरे साथ।
7: Stay in the game with TuneIn. Hear non-stop sports talk, live games, and coverage that never slows down. Keep up with your favorite teams from every play to every post-game breakdown. Listen to sports stations like ESPN Radio, NBC Sports Radio, Big 12 Radio, Talk Sport, and more. Plus, catch live games all year round, so you never miss a moment of sports action. Start listening on TuneIn.
8: के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements. Sage University, transforming your passion into profession.
3: पुरी में श्री जगन्नाथ रथ यात्रा का दूसरा दिन, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मौसी के घर पहुंचेंगे भगवान, लाखों देसी विदेशी श्रद्धालु मौजूद। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में भगवान जगन्नाथ को लगाया गया 108 प्रकार के 11,000 किलो आम का भोग, बड़ी संख्या में भक्तों ने किए भगवान के दर्शन, श्रद्धालुओं में बांटा प्रसाद। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में निकाली गई ऐतिहासिक गोंजा रथ यात्रा, 3 रथों पर सवार हुए भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा समेत 22 देवी देवता, 616 वर्षों से चली आ रही है परंपरा। तमिलनाडु की थूथुकुड़ी में अया वैकुंदर अवतारपति पर ध्वजारोहण के साथ आदि उत्सव की शुरुआत, विधि विधान से श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की, केले के पत्ते से सजाया गया मंदिर। देश में आज पहली हाइड्रोजन ट्रेन सेवा का होगा शुभारंभ, प्रधानमंत्री मोदी हरियाणा के जिंद में दिखाएंगे हरी झंडी, जिंद से सोनीपत के बीच दौड़ेगी ये रेल। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश, दिल्ली एनसीआर में भी मौसम ने करवट ली, गर्मी और उमस से राहत की उम्मीद। मेडिकल में दाखिले के लिए नीट यूजी 2026 का रिजल्ट जारी, 720 में से 715 अंक हासिल कर पंजाब के आर्यन गुप्ता और हरियाणा के पंचुल बंसल बने टॉपर। आज फिल्मी फ्राइडे, क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म द ओडिसी और आर माधवन की GDN हो रही है रिलीज, OTT पर भी कई फिल्में और वेब सीरीज की दस्तक।
2: टेस्ट में बेस्ट एवरेस्ट।
3: उम्मीदों भरे पहर की खुशियों भरी शुरुआत, सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत, नई सुबह नई आशा और गुड न्यूज का मॉर्निंग डोज लेकर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। बिना रुके बिना थमे अगले एक घंटे में गुड न्यूज की मैराथन दौड़ होगी, लेकिन सबसे पहले नजर आज की 5 उन खबरों पर जिनमें है इंडिया के लिए शुभ समाचार।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: शुभ समाचार की शुरुआत जगन्नाथ रथ यात्रा के साथ होगी, आज यात्रा का दूसरा दिन है, पूरी नगरी जय जगन्नाथ के उद्घोष से गूंज रही है और ये नजारा इतना भव्य दिव्य और अलौकिक दिखाई दे रहा है कि हर श्रद्धालु अपने आप को काफी खुशकिस्मत मान रहा है। कल महाप्रभु अपनी मौसी के घर के लिए प्रस्थान कर चुके हैं और वो आज अपनी मौसी के घर पहुंच जाएंगे, जहां से अगले 7 दिन भक्तों को दर्शन देंगे, वो पुरी भी आपको लिए चलेंगे।
4: और बात हाइड्रोजन ट्रेन की भी होगी, आज का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रहा है, भारतीय रेलवे आज हरित और स्वच्छ परिवहन की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाने वाला है। पीएम मोदी हरियाणा के जींद से देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और इसके साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिन्होंने रेल परिवहन में हाइड्रोजन तकनीक को अपनाया है, इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे।
3: तो साथ ही बात रोहित शर्मा की भी होगी, जिनके रिटायरमेंट की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है, पूछा जा रहा है कि क्या लॉर्ड्स में खेला जाने वाला ये तीसरा वनडे रोहित शर्मा के वनडे करियर का आखिरी मैच साबित होगा। दरअसल खबर आ रही है कि रोहित शर्मा के रिटायरमेंट की तैयारी हो चुकी है, हालांकि इस बात की पक्के तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि सिलेक्टर के फ्यूचर प्लान में रोहित का नाम नहीं है, तो इस पर भी आगे हम करेंगे बात।
4: और साथ ही आज फिल्मी फ्राइडे है, क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म द ओडिसी और आर माधवन की जीडीएन आज रिलीज हो रही है। आपको बता दें आज देश भर के सिनेमाघरों में भगवान जगन्नाथ पर बनी फिल्म भी रिलीज होगी, तो इन सभी के बारे में आगे विस्तार से बात होगी।
3: तो इसके अलावा आपको ब्रिटेन लिए चलेंगे, जहां जू में 7 नन्हे चीते शावकों का जन्म हुआ है। ये शावक नॉर्दर्न चीता प्रजाति के हैं, जो बेहद दुर्लभ माने जाते हैं। इनकी तस्वीरें भी आपको थोड़ी देर में हम दिखाएंगे, लेकिन अभी वक्त हो चला है फटाफट अंदाज में सुबह 9 बजे की नॉर्दर्न न्यूज का।
4: भगवान जगन्नाथ की कल शुरू हुई पवित्र रथ यात्रा रात्रि विश्राम के बाद आज सुबह आगे बढ़ चली है। भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर भगवान जगन्नाथ इस वक्त अपनी मौसी के घर जा रहे हैं। भगवान मौसी के घर यानी कि गुंडेचा मंदिर जाएंगे। जगन्नाथ मंदिर से शुरू हुई ये रथ यात्रा 3 किलोमीटर दूर गुंडेचा मंदिर जाकर पूरी होगी और इसके बाद 9 दिनों तक भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी के यहाँ ठहरेंगे। बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ 5 जुलाई को भगवान वापस मुख्य मंदिर लौट जाएंगे।
3: दिल्ली इस्कॉन द्वारका में जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें भगवान जगन्नाथ को 108 प्रकार के 11,000 किलोग्राम आम का भोग लगाया गया। वहीं सुबह से भगवान के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतार लगी हुई है।
4: हरिद्वार की विश्व विख्यात मां मनसा देवी मंदिर में एक नई पहल शुरू हुई है। मंदिर में काम करने वाले सभी कर्मचारी, पुजारी, पंडित सभी बिना जेब के कुर्ता पैजामा धोती पहनकर यहां पर पहुंचेंगे और किसी भी तरह की मंदिर के चढ़ावे या दान को लेकर कोई चोरी ना हो, इसके लिए पहल की गई।
3: उज्जैन के विश्व विख्यात श्री महाकालेश्वर मंदिर में जल्द ही एक हाईटेक कैरेट मीटर मशीन स्थापित की जाएगी। इस मशीन की मदद से चढ़ावे में आने वाले सोने और चांदी के असली या नकली होने का तुरंत पता लगाया जा सकेगा। साथ ही सोनारों की 3 सदस्यीय टीम पहले की तरह आभूषणों की जांच का काम जारी रखेगी।
4: भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च के लिए तैयार है। पीएम मोदी आज पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। ये ट्रेन आज से जींद सोनीपत रूट पर दौड़ती हुई नजर आएगी और इसके अलावा पीएम जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन करेंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इस स्टेशन का पुनर्विकास 125 करोड़ रूपए में हुआ।
3: मध्य प्रदेश के कटनी जिले में 11.95 किलोमीटर लंबी स्लिम नबाद जल सुरंग बनकर तैयार हो गई है। देश की सबसे लंबी सिंचाई सुरंग है। इस सुरंग के जरिए नर्मदा नदी का पानी विंध्य क्षेत्र तक पहुंचेगा। इसके निर्माण से 6 जिलों के 1450 गांवों को सिंचाई में इससे लाभ मिलेगा।
4: झारखंड के रामगढ़ के पतरालू लेक रिजॉर्ट को नई पर्यटन पहचान मिली है, जहां मंत्री सुदिव्य कुमार ने अब फ्लोटिंग रेस्टोरेंट और म्यूजिकल फाउंटेन का उद्घाटन किया है। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट में एक बार में कुल 30 पर्यटक बैठ सकेंगे। सुरक्षा मानकों के तहत इसमें लाइफ जैकेट पहनना जरूरी होगा।
3: गया में बोरवेल में गिरे बच्चे के लिए एनडीआरएफ की टीम देवदूत बनी है। एनडीआरएफ की टीम ने 7 घंटे कड़ी मशक्कत के बाद बोरवेल में गिरे बच्चे को सुरक्षित निकाला। एम्बुलेंस से बच्चे को स्वास्थ्य जांच के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा है। बच्चा बिल्कुल ठीक है। वहीं परिसर ने और परिवार ने प्रशासन को धन्यवाद दिया।
4: बोलिविया में परंपरा और नए जमाने का अनोखा मेल देखने को मिल रहा है। यहाँ पर युवा महिलाएं पारंपरिक पोलेरा स्कर्ट पहनकर स्केटबोर्डिंग करती हुई दिखाई दी। वामिस सोब्रे रुएदास ग्रुप खेल के साथ आयमारा संस्कृति को आगे बढ़ा रहा है और ये पहल महिलाओं में आत्मविश्वास, अपनी पहचान और सशक्तिकरण का संदेश दे रही है।

तो अशुभ समाचार की शुरुआत नाथों के नाथ श्री भगवान जगन्नाथ के साथ। कहते हैं भगवान हर जगह है, लेकिन पुरी नगरी में साल में एक बार ऐसा होता है जब स्वयं महाप्रभु अपने भक्तों के बीच आने के लिए मंदिर से बाहर निकलते हैं और पुरी नगरी जय जगन्नाथ के उद्घोष से गूंज उठती है। और ये नजारा इतना भव्य, दिव्य और अलौकिक होता है कि हर श्रद्धालु की आंखें श्रद्धा से नम हो जाती हैं। हर दिल में प्रभु जगन्नाथ के प्रति अटूट विश्वास और भक्ति का भाव उमड़ पड़ता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं भगवान अपने भक्तों को दर्शन देकर उनके जीवन को धन्य कर रहे हों। इसी आस्था की अद्भुत तस्वीर इन दिनों पूरी नगरी में देखने को मिल रही है, क्योंकि महाप्रभु अपनी मौसी के घर के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। आज जगन्नाथ प्रभु अपनी मौसी के घर पहुंच जाएंगे और वहां भक्तों को दर्शन देंगे।

0: रथ यात्रा की सबसे ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रात्रि विश्राम के बाद रथ यात्रा फिर से शुरू हो रही है। आज भक्त अब जो हैं वो रथ को खींचते हुए गुंडिचा मंदिर तक जाएंगे और इस मंदिर को भगवान जगन्नाथ की मौसी का घर माना जाता है। ये रथ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, इसका बहुत गहरा आध्यात्मिक महत्व है। धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि ये आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। आध्यात्मिक नजरिए से रथ को मानव शरीर, रथ के स्वामी को आत्मा और रथ की डोर को भक्ति और समर्पण का प्रतीक माना गया है। ये महापर्व भक्त और भगवान के अद्भुत मिलन का साक्षी है और यही वजह है कि बड़ी संख्या में हर साल श्रद्धालु इस पावन परंपरा के साक्षी बनने पूरी जगन्नाथ धाम पहुंचते हैं। 9 दिनों के रथ महोत्सव की हर तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। GNT पर रथ यात्रा की 200 घंटे की महाकवरेज लगातार जारी है। ये भव्य तस्वीरें आपके सामने हैं। आपको बता दें अब रथ यात्रा एक बार फिर से कल रात्रि विश्राम के बाद शुरू हो चुकी है और भगवान जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ रथ पर सवार होकर आगे बढ़ चुके हैं गुंडिचा मंदिर के लिए, जो कि उनकी मौसी का घर माना जाता है।
1: इस बार बहुत अच्छे से हम सबका दर्शन हुआ और बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग सवेरे 4 बजे से निकले थे भुवनेश्वर से और यहाँ आके बहुत अच्छे से हम लोग का दर्शन हो गया। पूरे परिवार के साथ हम लोग आए थे और बहुत खुशी लग रहा है।
2: विश्व में ऐसे भगवान हैं जो खुद अपनी प्रजा, अपने भक्तों को देखने आते हैं साल में एक बार और अपनी मातृभूमि में रह कर फिर वापसी करते हैं। भगवान जगन्नाथ का, बड़े भाई बलभद्र का, बहन सुभद्रा का दर्शन हुआ। हम लोग सब अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं। हम सब परिवार आके आज प्रभु के दर्शन किए हैं और निश्चित रूप से इससे विश्व का कल्याण होगा, विश्व में शांति आएगी, लोगों का भला होगा।
3: बहुत अच्छा दर्शन मिला है मुझे, बहुत खुशी है, आनंद भी है जगन्नाथ का, बहुत ज्यादा खुशी है महाप्रभु का। जगन्नाथ नाम भज बार बार बार, चैन मिलेगा परम पार भाई, चैन मिलेगा परम पार। जड़ चेतन में जग सहर में जगन्नाथ ही सार सार सार, चैन मिलेगा परम पार भाई, चैन मिलेगा परम पार। जगन्नाथ नाम भज, जगन्नाथ नाम भज बार बार बार, चैन मिलेगा परम पार भाई, चैन मिलेगा परम पार।
4: हाउ दे लव टू लॉर्ड जगन्नाथ, ही इज देयर, दे लव इज सो ब्यूटीफुल, सो फॉर मी इज द ब्यूटी, द मोस्ट ब्यूटीफुल गिफ्ट, लव, द प्रेमा, द भक्ति। जय जगन्नाथ।
0: तो हर साल की तरह इस साल भी पुरी में रथ यात्रा उत्सव की रौनक है। रथ यात्रा शुरू हो चुकी है। भगवान जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ अपनी मौसी के घर जाने के लिए निकल चुके हैं। आज से अगले 7 दिनों तक महाप्रभु गुंडिचा मंदिर में ही प्रवास करेंगे, यहीं भक्तों को दर्शन देंगे।

0: जहाँ तक नजर फेरिए रंग ही रंग है। भक्ति का, प्रेम का, जगत के पालनहार स्वयं चलकर आए हैं भक्तों के बीच, उन लोगों के बीच जिनके आस्था की डोर महाप्रभु से बंधी है। पुरी की पवित्र भूमि उत्सव के रंग में रंगी है। एक बार फिर आस्था और भक्ति का सागर उमड़ा है। जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और पूरा पुरी शहर भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की भव्य रथ यात्रा का गवाह बन गया है। भगवान जगन्नाथ अपने भाई और बहन के साथ रथ पर सवार होकर गुंडीचा मंदिर के लिए रवाना हो चुके हैं। गुंडीचा मंदिर, जिसे महाप्रभु जगन्नाथ का जन्म स्थान माना जाता है, पुरी में जगन्नाथ मंदिर के निर्माण से जुड़ी कहानी बताती है कि भगवान की मूर्ति का निर्माण गुंडीचा मंदिर में ही शुरू हुआ था और गुंडीचा, जिसे भगवान की मौसी का दर्जा मिला है, वो और कोई नहीं भगवान के परम भक्त राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी थी, जिन्होंने सबसे पहले भगवान के इस रूप के दर्शन किए थे और उन्हें देखते ही उनका वात्सल्य भाव उमड़ आया था। कहानी बताती है कि जब से रानी गुंडीचा ने भगवान की अधूरी मूर्तियों को देखा था, वे उनसे संतान की तरह स्नेह करने लगी थीं। और जब भगवान उनके महल को छोड़ शिव मंदिर के गर्भगृह में स्थापित हो रहे थे, तो उन्हें लग रहा था मानो उनका पुत्र ही उनसे दूर जा रहा हो। कहते हैं रानी गुंडीचा के वात्सल्य भाव और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें वरदान दिया था कि वे हर वर्ष आषाढ़ माह में अपने भाई और बहन के साथ उनसे मिलने जरूर आएंगे और 7 दिनों के लिए पुत्र की तरह उनके साथ रहेंगे। अपना यही वचन निभाने महाप्रभु हर साल गुंडीचा मंदिर आते हैं। इस साल भी भाई बहन के साथ भगवान जगन्नाथ मौसी के घर जा रहे हैं। सात दिनों तक भगवान जगन्नाथ गुंडीचा मंदिर में ही रहेंगे। इस दौरान गुंडीचा मंदिर में विशेष पूजा, दर्शन और कई पवित्र अनुष्ठान होंगे। 7 दिनों तक भगवान अपने भक्तों को यहीं दर्शन देंगे। गुंडीचा मंदिर में भगवान के इस प्रवास को अड़ाप्पा मंडप भी कहा जाता है और यहां उनके दर्शन को अड़ाप्पा मंडप दर्शन कहा जाता है। इसमें मुख्य मंदिर की तुलना में गुंडीचा मंदिर में भक्तों को भगवान के बहुत करीब जाने का मौका मिलता है। 5वें दिन हेरा पंचमी का उत्सव मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन माता लक्ष्मी, जो मुख्य मंदिर में छूट जाती हैं, भगवान को खोजने गुंडीचा मंदिर आती हैं और गुस्से में अपने पति भगवान जगन्नाथ के रथ का एक हिस्सा तोड़कर वापस लौट जाती हैं। इन 7 दिनों में भगवान को मीठा चावल, दाल, पीठा और कई पारंपरिक उड़िया व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। सात दिन गुंडीचा मंदिर में विश्राम करने के बाद भगवान अपने मुख्य मंदिर के लिए वापसी की यात्रा शुरू करेंगे, जिसे बहुधा यात्रा भी कहा जाता है। उनकी ये वापसी यात्रा भी उतनी ही भव्य होगी जितनी भव्य है गुंडीचा मंदिर के लिए प्रस्थान की यात्रा। रथ फिर से हजारों भक्तों द्वारा खींचे जाएंगे और पुरी की गलियां एक बार फिर जयकारों से गूंज उठेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो देखिए, सनातन के इस पर्व को मनाया जा रहा है। पुरी में एक बार फिर से यात्रा शुरू हो चुकी है और इस बीच वहां से तस्वीरें दिखाने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय जुड़े हुए हैं। अजय, क्या कुछ वहां की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं? कल रात्रि विश्राम हुआ, उसके बाद आज फिर से रथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है।
2: देखिए, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा अब सारे तीनों भगवान अब रास्ते पर हैं। जाते जाते देर हो गई है, रात हो गई है, अब तीनों भाई बहन रास्ते पर हैं और रथ पर कल रात में विश्राम हुई है और आज सुबह 9:30 जो बताया जा रहा है आसपास 9:30 के आसपास रथ खींचना फिर से शुरू हो जाएगा और तीनों भगवान आज जाके उनके गंतव्य स्थल पर पहुंच जाएंगे। जैसे ही देख रहे थे, कल से भगवान बलभद्र का रथ आगे ही है, इसके पीछे माँ सुभद्रा की रथ है और सबसे पीछे अगर हम बोलेंगे तो भगवान जगन्नाथ का ये नंदीघोष रथ है। नंदीघोष रथ शिव मंदिर से बस कुछ ही देर, अगर हम बोलेंगे तो शिव मंदिर के पूरा एकदम नजदीक में ही है, ज्यादा दूर नहीं गए, लेकिन आगे बड़े भाई और बहन चल गए हैं, वो आगे पहुंचेंगे वो, और फिर इसके बाद जगन्नाथ पहुंचेंगे। रथ के ऊपर जो जो नीति होता है, जैसे जो सुबह का धूप होता है, तड़प लगी होता है, मैलम होता है, ये सारा जो रीति रिवाज होता है, रीति रिवाज के हिसाब से भगवान का जो भोग होता है, ये सारा इसी रथ के ऊपर ही होगा। और इसके बाद भगवान का जो जो रेगुलर रीति रिवाज है, ये खत्म होने के बाद फिर से आज 9:30 से ये रथ खींचने का काम शुरू होगा। अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा, जो मार्केट चौक है, मार्केट चौक से पहले तालध्वज रथ रखा हुआ है, मार्केट चौक से तालध्वज रथ को खींचा जाएगा, फिर बाद में माँ सुभद्रा का दर्पदलन रथ जो है वो मरीचकोट चौक, पुरी का जो मरीचकोट चौक है वहां पे रुका हुआ है, उसको मरीचकोट चौक से वो रथ को खींचा जाएगा, फिर लास्ट में सिंहद्वार से नंदीघोष रथ को खींचा जाएगा। तीनों रथ अब रास्ते के रास्ते में अटके हुए हैं, एक के बाद एक आज जाके गुंडीचा मंदिर में पहुंचेंगे। गुंडीचा मंदिर में पहुंचने के बाद गुंडीचा मंदिर को अंदर लिया जाएगा और रीति रिवाज के हिसाब से तीनों भगवान को एक के बाद एक फिर से पांडी होगा और पांडी के हिसाब से वो अंदर जाएंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है, कल जैसे लोग जा रहे थे, कल जैसे लोग रथ यात्रा में शामिल हो रहे थे, आज भी सुबह से वैसे ही लोग फिर से जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को खबर है कि भगवान अब भी रास्ते पर हैं। लोगों का मन में अभी भी विश्वास है कि हम अभी भी जाएंगे तो भी रास्ते पर भगवान को मिलेंगे, एक झलक दूर से देख लेंगे। जो लोग कल नहीं जा पा रहे थे, कल भारी बारिश की वजह से जो लोग नहीं जा पा रहे थे, वो लोग आज थोड़ा बारिश कम है इसलिए आज दूर दूर से फिर वही रास्ता, रास्ते में लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, कोई बाइक से, कोई कार से, कोई बस, भारी भीड़ सब फिर से जा रहे हैं।
3: जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय इस जानकारी के लिए। और रथ यात्रा भक्त भगवान के मिलन की यात्रा है, जब भगवान भक्तों से मिलने आते हैं तो शब्द गुम हो जाते हैं, सिर्फ भाव रह जाते हैं, आंखें नम हो जाती हैं और जुबान नहीं कह पाती वो आंखों से बहते आंसू कह जाते हैं। तो देखिए किस तरह से इस वक्त पुरी में जय जगन्नाथ के जय घोष से पूरी नगरी जो है वो गूंज रही है। जगन्नाथ रथ यात्रा की कल से शुरुआत हो चुकी है और लगातार भक्त जो है वो जगन्नाथ में प्रभु के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। अब से कुछ ही देर में जो है भगवान का जो रथ है वो गुंडीचा मंदिर पहुंच जाएगा और उसके बाद कुछ दिन वहीं विश्राम करेंगे महाप्रभु। और जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत से ही भक्तों का तांता पुरी में लगा हुआ है, लाखों की संख्या में भक्त वहां भगवान के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। सिर्फ देश से ही नहीं, आपको बता दें कि विदेश से भी जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो जगन्नाथ के दर्शन के लिए इस वक्त पुरी पहुंचे हुए हैं, इसलिए जो संख्या है वो लाखों में है। तो देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जगन्नाथ की और पुरी से ये तस्वीरें, जब भगवान की रथ यात्रा का शुभारंभ हो चुका है और लगभग 9 दिन जो है ये रथ यात्रा जो चलती है और उसके बाद 28 जुलाई को इस यात्रा का समापन होगा। आज थोड़ी ही देर में महाप्रभु की जो यात्रा है। तो देखिए गुजरात के वडोदरा में बच्चों ने रथ यात्रा निकाली, स्कूल के बच्चों ने बढ़ चढ़कर इस रथ यात्रा में हिस्सा लिया, रथ खींचा और सजावट का जिम्मा भी इन्हीं बच्चों ने संभाला था। रथ यात्रा के दौरान जमकर नृत्य भी हुआ जिसकी ये तस्वीरें आपके सामने। दिल्ली के स्कॉन द्वारका में आयोजित भव जगन्नाथ रथ यात्रा में आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। जय जगन्नाथ रथ यात्रा के मौके पर इस अवसर पर भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को 11,000 किलोग्राम आम का विशेष महाभोग अर्पित किया गया। हजारों श्रद्धालुओं ने रथ यात्रा में शामिल होकर भगवान के दर्शन किए और प्रसाद ग्रहण कर स्वयं को धन्य महसूस किया। भजन कीर्तन नृत्य और धार्मिक उत्साह के बीच निकली ये शोभा यात्रा श्रद्धा सेवा और सनातन संस्कृति का भव्य प्रतीक बन गई। और चलिए बुलेटिन में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद देखिए अब पटरी पर आ रही है हाइड्रोजन ट्रेन।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
5: ज्योतिष का सबसे शुभ ग्रह बृहस्पति, क्या ये विवाह नहीं होने देता है? क्या कभी कभी विवाह होना असंभव कर देता है? क्या ये वैवाहिक जीवन में बड़ी दिक्कतें भी ले आता है? बृहस्पति किस प्रकार देता है विवाह में बाधा, जानिए मेरे साथ।
6: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
7: Step into timeless classical music. Works from the masters. Brought to life by world-class orchestras, conductors, and soloists. From past to present. Every performance played with depth, precision, and care. Music that has lasted for generations and still feels just as powerful today. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search classical hits and start listening now.
8: Good news today. अच्छी खबर, सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव
12: खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
12: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: पुरी में श्री जगन्नाथ रथ यात्रा का दूसरा दिन, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मौसी के घर पहुंचेंगे भगवान, लाखों देसी विदेशी श्रद्धालु मौजूद। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में भगवान जगन्नाथ को लगाया गया 108 तरह के 11,000 किलो आमों का भोग, बड़ी संख्या में भक्तों ने किए भगवान के दर्शन, श्रद्धालुओं में बांटा प्रसाद। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में निकाली गई ऐतिहासिक गोंजा रथ यात्रा, 3 रथों पर सवार हुए भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा समेत 22 देवी देवता, 616 वर्षों से चली आ रही है परंपरा। तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में आया वैकुंदर अवतार पति पर ध्वजारोहण के साथ आदि उत्सव की शुरुआत, विधि विधान से श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की, केले के पत्ते से सजाया गया मंदिर। देश में आज पहली हाइड्रोजन ट्रेन सेवा का होगा शुभारंभ, प्रधानमंत्री मोदी हरियाणा के जिंद में दिखाएंगे हरी झंडी, जिंद से सोनीपत के बीच दौड़ेगी ये रेल। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश, दिल्ली एनसीआर में भी मौसम ने करवट ली गर्मी और उमस से राहत की उम्मीद।
3: मेडिकल में दाखिले के लिए नीट यूजी 2026 का रिजल्ट जारी, 720 में से 715 अंक हासिल कर पंजाब के आर्यन गुप्ता और हरियाणा के पंशुल बंसल बने टॉपर।
2: आज है फिल्मी फ्राइडे, क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म द ओडिसी और आर माधवन की जीडीएन हो रही है रिलीज, ओटीटी पर भी कई फिल्मों और वेब सीरीज की दस्तक।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम

और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका शुभ समाचार में। आज का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रहा है। भारतीय रेलवे आज हरित और स्वच्छ परिवहन की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के जिंद से देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिन्होंने रेल परिवहन में हाइड्रोजन टेक्निक को अपनाया है। जिंद से सोनीपत के बीच चलने वाली ये ट्रेन यात्रियों को हरियाणा के कई महत्वपूर्ण गांव, कस्बों और शहरों से जोड़ते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचाएगी। इस रूट पर ट्रेन कुल 12 स्टेशन पर निर्धारित ठहराव करेगी, जिससे स्थानीय यात्रियों के साथ साथ विद्यार्थियों, नौकरी पेशा लोगों, व्यापारियों और किसानों को भी बड़ी सुविधा मिलेगी।

0: हिंदुस्तान के लिए आज का दिन ऐतिहासिक होने वाला है। आज देश के पहले हाइड्रोजन ट्रेन का शुभारंभ होने जा रहा है। भारतीय रेलवे आज एक और बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी हरियाणा के जिंद सोनीपत रेलवे ट्रैक पर देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन सिर्फ एक ट्रेन नहीं बल्कि पर्यावरण के अनुकूल और स्वच्छ भारत का प्रतीक है। जब ये ट्रेन हरियाणा के जिंद सोनीपत रूट पर चलेगी तो बिजली या डीजल की जगह हाइड्रोजन गैस से पानी की भाप छोड़ते हुए दौड़ेगी। करीब 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसे करीब 2 घंटे लगेंगे। रास्ते में ये 11 स्टेशनों पर रुकेगी। ये 10 डिब्बों वाली ट्रेन है। इसमें 8 यात्री डिब्बे और 2 इंजन वाली पावर कार है। इसकी कुल क्षमता करीब 2400 किलोवाट है। यात्री क्षमता करीब 2600 है। आधुनिक सुविधाओं की बात करें तो इसमें ऑटोमेटिक दरवाजे, डीसी एयर कंडीशनिंग और आरामदायक सीटें हैं। सामान्य तौर पर यह 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। रेल मंत्रालय के मुताबिक ये दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक है। इसे चेन्नई के ICF यानी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में बनाया गया है। टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स ने इसका फ्यूल सेल सिस्टम तैयार किया है। हाइड्रोजन बहुत ज्वलनशील होती है, इसलिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हाइड्रोजन को हाई प्रेशर में स्टोर किया जाता है और रिफ्यूलिंग स्टेशन भी तैयार है। अब ये भी जान लेते हैं कि हाइड्रोजन ट्रेन की तकनीक कैसे काम करती है। सामान्य ट्रेन डीजल से या बिजली से चलती है, लेकिन हाइड्रोजन ट्रेन बिल्कुल अलग तरीके से काम करती है। इसके लिए ट्रेन में खास टैंकों में हाइड्रोजन गैस भरी जाती है। इसके लिए जिंद में एक विशेष प्लांट बनाया गया है, जहां बिजली से पानी को इलेक्ट्रोलिसिस करके हाइड्रोजन बनाया जाता है। फिर हाइड्रोजन को फ्यूल सेल डिवाइस में ऑक्सीजन यानी हवा के साथ मिलाया जाता है। इस रासायनिक प्रतिक्रिया से बिजली बनती है। बनी हुई बिजली ट्रेन की मोटर को चलाती है और ट्रेन पटरी पर दौड़ती है। इस ट्रेन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इस पूरे प्रोसेस से कोई धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड या प्रदूषण नहीं निकलता, सिर्फ वाटर वेपर और गर्मी निकलती है। यानी इस ट्रेन के चलने से हवा प्रदूषित नहीं होगी। डीजल ट्रेनों की तुलना में ये जीरो एमिशन यानी शून्य उत्सर्जन वाली है। इससे ग्लोबल वार्मिंग कम करने में मदद मिलेगी। यानी ये ट्रेन पूरी तरह पर्यावरण के अनुकूल है। आज जब ये ट्रेन जिंद की पटरी से अपनी पहली रफ्तार भरेगी, तब सिर्फ एक नई रेल सेवा शुरू नहीं होगी बल्कि भारतीय रेलवे के इतिहास में हरित तकनीक का नया अध्याय भी जुड़ जाएगा। हाइड्रोजन ट्रेन भारत की तकनीकी क्षमता, आत्मनिर्भरता और स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में बढ़ते कदम का प्रतीक बनेगी। हाइड्रोजन ट्रेन में सफर करने का लोगों का सपना भी पूरा होगा और भारत जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और चीन जैसे देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जो हाइड्रोजन ट्रेन चला रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जिंद सोनीपत रूट पर दौड़ेगी और आपको बता दें 79 किलोमीटर का ये रेल मार्ग उत्तरी रेलवे के दिल्ली डिवीजन के अंदर आता है। जिंद से सोनीपत की अपनी यात्रा में ट्रेन 12 स्टेशन्स पर रुकेगी और इनके नाम क्या क्या हैं वो भी आपको बता दें। यात्रा की शुरुआत जिंद सिटी रेलवे स्टेशन से होगी। यहां से ट्रेन रवाना होकर सबसे पहले पांडू पिंडारा स्टेशन पहुंचेगी, जो आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लोगों के लिए प्रमुख रेलवे स्टेशन है।
2: इसके बाद ट्रेन ललितखेड़ा स्टेशन पर रुकेगी, जहां आसपास के गांव के यात्रियों को ट्रेन सेवा का लाभ मिलेगा। आगे बढ़ते हुए ट्रेन भांबेवा स्टेशन पर रुकेगी।
1: आपको बता दें इसके बाद ईशापुर खेरी स्टेशन आएगा, जहां से स्थानीय यात्रियों को जिंद और सोनीपत की ओर यात्रा करने की सुविधा मिलेगी।
2: इसके बाद ट्रेन बुटाना स्टेशन पहुंचेगी, जो इस मार्ग का एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। बुटाना के बाद ट्रेन खंदराय स्टेशन पर रुकेगी।
1: तो वहीं इसके बाद ये गोहाना रेलवे स्टेशन पहुंचेगी, जो इस रूट का सबसे प्रमुख और व्यस्त स्टेशन है। गोहाना से बड़ी संख्या में यात्री दिल्ली, सोनीपत और जींद की ओर सफर करते हैं और इसलिए स्टेशन अहम माना जा रहा है।
2: गोहाना से आगे ट्रेन राबड़ा स्टेशन पर पहुंचेगी। इसके बाद लाट स्टेशन पर ठहराव होगा, जो आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए रेल संपर्क का महत्वपूर्ण केंद्र है।
1: फिर ट्रेन मोहना स्टेशन पहुंचेगी, जहां से भी स्थानीय यात्रियों को यात्रा की सुविधा मिल सकेगी। मोहना के बाद ट्रेन का अंतिम ठहराव बड़वासनी स्टेशन पर होगा।
2: इसके बाद ट्रेन अपनी यात्रा पूरी करते हुए सोनीपत रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। सोनीपत उत्तर भारत का एक प्रमुख रेलवे जंक्शन है, जहां से दिल्ली, पानीपत, अंबाला, चंडीगढ़ और अन्य कई शहरों के लिए रेल सेवाएं उपलब्ध हैं।
1: आपको बता दें इन जींस सोनीपत के बीच यात्रा करने वाले रेल यात्रियों के लिए ट्रेन बेहद सुविधाजनक साबित होगी। अपने पूरे सफर के दौरान ट्रेन कुल 12 स्टेशन पर ठहराव करेगी, जिससे मार्ग में पड़ने वाले कस्बों और गांव के लोगों को भी सीधे रेल सेवा का लाभ मिलने वाला है।
2: तो अब से थोड़ी देर में करीब 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो जिंद पहुंचेंगे और पहले हाइड्रोजन ट्रेन देश को समर्पित करेंगे। सीधे आपको हरियाणा के जिंद जंक्शन पर लिए चलते हैं, देखिए इस भव्य कार्यक्रम के लिए क्या क्या तैयारियां की गई हैं।
3: विश्व की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन जो बनकर तैयार है, जिसका निर्माण भारत में ही हुआ है, वो आज से देश को समर्पित होने जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी लगभग 11 बजे के आसपास जींद रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे और इस वक्त हमारी मौजूदगी उसी रेलवे स्टेशन के ठीक बाहर है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे यहां पर सुरक्षा के सारे इंतजाम कर लिए गए हैं। जो लोग इस वक्त रेलवे स्टेशन के अंदर पहुंच रहे हैं, उनकी पूरी सुरक्षा जांच होने के बाद ही उनको रेलवे स्टेशन के अंदर जो है एंट्री दी जा रही है। यहाँ पर बड़े बड़े पोस्टर लग गए हैं जिसमें भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में जानकारी दी गई है। यहाँ पर बताया गया है कि इसका शुभारंभ पीएम नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर करेंगे। एक बड़ा सा यहाँ पर बैनर लगा है जिस पर लिखा हुआ है 14,700 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी है, साथ साथ भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो जींद और सोनीपत के बीच में चलेगी वो भी आज प्रधानमंत्री देश को समर्पित करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कैसे इस रेलवे स्टेशन को पूरी तरह से जो है सजा दिया गया है। दुल्हन की तरह कई अलग हरियाणा के अलग अलग कोनों से जो है यहाँ पर कलाकार आए हैं जो इस वक्त लोक नृत्य करते हुए आपको यहाँ पर नजर भी आ जाएंगे और सभी तैयारियां जो है वो यहाँ पर कर ली गई है। तो विश्व की सबसे ताकतवर सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन जो भारत की अब नई पहचान बन चुकी है वो जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली है। इसका शुभारंभ पीएम नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं और हम आपको जींद रेलवे स्टेशन का वो नजारा पूरा दिखा रहे हैं जहां पर सारी तैयारियां भी कर ली गई हैं। आप देखिए कैसे जो कलाकार हैं वो यहां पर मौजूद हैं, लगातार जो कलाकार हैं वो नृत्य करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं क्योंकि ये देश ही नहीं बल्कि जींद के लिए हरियाणा के लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि ये वो हाइड्रोजन ट्रेन है जो जीरो कार्बन उत्सर्जन में डीजल और इलेक्ट्रिक से बेहतर है। भारतीय रेलवे में नवाचार और अत्याधुनिक तकनीक का ये उत्कृष्ट उदाहरण है। और सामने देखिए, सामने की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये है जींद जंक्शन और इस जींद जंक्शन को जो है पूरी तरह से सजा दिया गया है। कुछ देर में पीएम नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचने वाले हैं और जब प्रधानमंत्री यहां पर आएंगे तो उनका स्वागत भी यहां के जो कलाकार हैं वो करने जा रहे हैं। भारी संख्या में जींद निवासी, हरियाणा के निवासी यहां पर आए हैं, कलाकार भी

0: तो क्या है ये पूरी कहानी, चलिए आपको दिखाते हैं।
1: 2007 में खींची गई तस्वीर फुटबॉल के इतिहास का सबसे बड़ा इत्तेफाक बन गई है। ये तस्वीर एक चैरिटी कैलेंडर के लिए खींची गई थी। तब स्पेन के प्लेयर लामिन यमाल का परिवार लॉटरी जीतकर मेसी के साथ फोटोशूट तक पहुंचा था। उस दिन कैमरे में सिर्फ एक तस्वीर ही नहीं बल्कि फुटबॉल की दो पीढ़ियों का भविष्य कैद हो गया था। तब लामिन यमाल के पिता ने उसी तस्वीर के साथ लिखा था, दो लीजेंड्स की शुरुआत। आज वही तस्वीर हकीकत बन चुकी है। फाइनल मुकाबले में लामिन यमाल उसी खिलाड़ी के सामने हैं जिसने 20 साल पहले उन्हें नहलाया था और जिसे वो अपना आदर्श मानते हैं। आज दुनिया स्पेन के लामिन यमाल को फुटबॉल का चमकता सितारा मानती है, लेकिन इस चमक के पीछे संघर्ष का एक लंबा अंधेरा सफर छिपा है। यमाल का बचपन तंगी और अभावों के बीच बीता। उनके माता पिता बेहतर भविष्य की उम्मीद लेकर गिनी से स्पेन के कैटालोनिया पहुंचे थे, लेकिन नई जिंदगी की शुरुआत आसान नहीं थी। आर्थिक हालात इतने कठिन थे कि कई बार उनके पिता को पेट भरने के लिए सड़कों और फुटपाथों पर खाना तलाशना पड़ता था। यमाल को आज भी लगता है कि असली दबाव फुटबॉल के मैदान पर नहीं बल्कि वो था जो उनके माता पिता ने हर दिन झेला। इस तस्वीर के इत्तेफाक के आगे अब सवाल महज वर्ल्ड कप ट्रॉफी का नहीं है, सवाल है कि क्या स्पेन के लामिन यमाल अपने आदर्श मेसी को हराकर नई विरासत की शुरुआत करेंगे या फिर मेसी एक और विश्व कप जीतकर अपनी महान कहानी में एक और सुनहरा अध्याय जोड़ेंगे। दुनिया भर के फुटबॉल फैंस इसी सवाल का जवाब तलाश रहे हैं। अगर फाइनल में पहुंची दोनों टीमों की बात करें तो स्पेन पूरे टूर्नामेंट की सबसे संतुलित टीम बनकर उभरी है, जबकि फाइनल में पहुंची अर्जेंटीना का सफर टूर्नामेंट से आसान नहीं रहा है। अर्जेंटीना के हर एक जीत में मेसी का फैक्टर काम आया है। अब सबकी नजरें फाइनल पर हैं और माना जा रहा है कि फुटबॉल की ये महाटक्कर दिल थाम देने वाली साबित होगी। फाइनल सिर्फ खिलाड़ियों की वजह से ही खास नहीं होगा, दुनिया की निगाहें वीआईपी गैलरी पर भी होंगी, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस महामुकाबले को स्टेडियम में बैठकर देखेंगे। व्हाइट हाउस इसकी पुष्टि कर चुका है। मैच से पहले ट्रंप न्यूयॉर्क स्थित ट्रंप टावर में फीफा रिसेप्शन में भी शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: और अब बात करते हैं रोहित शर्मा की, जिनके रिटायरमेंट की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। पूछा जा रहा है कि क्या लॉर्ड्स में खेला जाने वाला तीसरा वनडे रोहित शर्मा के वनडे करियर का आखिरी मैच साबित होगा। दरअसल खबर ये आ रही है कि रोहित शर्मा के रिटायरमेंट की तैयारी हो चुकी है। हालांकि इस बात की पक्के तौर पर पुष्टि अब तक नहीं हुई है, लेकिन तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि सिलेक्टर के फ्यूचर प्लान में रोहित का नाम नहीं है।

लॉर्ड्स का ऐतिहासिक मैदान, जहां कई बड़े बड़े इतिहास और रिकॉर्ड बने। लेकिन इस बार कहानी सिर्फ जीत हार की नहीं है, बल्कि एक ऐसे सितारे की है जिसने भारतीय क्रिकेट को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। रिपोर्ट्स कह रही है, इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा वनडे रोहित शर्मा के इंटरनेशनल करियर का आखिरी मैच हो सकता है। रोहित पहले ही T20 इंटरनेशनल को अलविदा कह चुके हैं, टेस्ट क्रिकेट भी पीछे छोड़ चुके हैं, अब सिर्फ वनडे बचा है और उसी वनडे से भी रोहित की विदाई की आहट सुनाई दे रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चयनकर्ता अब 2027 वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी में जुट चुके हैं। सेलेक्टर्स का प्लान साफ है, युवा खिलाड़ियों को मौका देना और यशस्वी जायसवाल जैसे बल्लेबाजों को लंबी रेस के लिए तैयार करना। हालांकि कोई भी रोहित शर्मा से संन्यास लेने के लिए नहीं कह सकता। BCCI के सूत्रों का कहना है, अंतिम फैसला सिर्फ और सिर्फ रोहित शर्मा का होगा, लेकिन संकेत यही है कि अब भारतीय क्रिकेट भविष्य की तरफ कदम बढ़ाना चाहता है और उनके फ्यूचर प्लान में फिलहाल तो रोहित दूर दूर तक नहीं है। रोहित के हाले प्रदर्शन भी अब बहस का हिस्सा बन चुका है। पिछले 8 वनडे पारियों में सिर्फ उनके बल्ले से महज 241 रन निकले हैं, औसत 30 के करीब है और जिसमें महज एक अर्धशतक है। यही नहीं, इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में भी रोहित केवल 47 गेंदों पर 26 रन ही जोड़ पाए। यानी जिस बल्ले से कभी गेंदबाज कांपते थे, वो बल्ला इन दिनों खामोश है। दिलचस्प बात ये भी है कि विराट कोहली को लेकर तस्वीर अलग है। टीम मैनेजमेंट मानता है विराट 2027 वर्ल्ड कप की योजना का हिस्सा हैं, लेकिन रोहित के भविष्य पर

0: अब सवाल है, अगर लॉर्ड्स सचमुच रोहित शर्मा का आखिरी इंटरनेशनल मैच बना तो सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक दौर का विदा होना होगा। जहां तक रोहित के फैंस का सवाल है, वो अपने चहेते खिलाड़ी को और खेलते देखना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गर्मी जब 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच जाए तो राहत की हर कोशिश किसी वरदान से कम नहीं होती। चाइना में इन दिनों भीषण गर्मी लोगों के साथ साथ जानवरों की भी परीक्षा ले रही है, लेकिन इस चुनौती से निपटने के लिए अलग अलग शहरों में अनोखे इंतजाम किए गए हैं। देखिए,
2: कोई बर्फ की सिल्लियों के बीच रखे ताजा फलों के मजे ले रहा है तो कोई बढ़ती तपिश में राहत की फुहार का आनंद ले रहा है, और तो और कहीं तो गलियारा ही गर्मी में सर्दी वाला एहसास करा रहा है। दरअसल चीन के कई हिस्सों में गर्मी की तपिश बढ़ी है, तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। ऐसे में लोगों और बेजुबानों को राहत देने के नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। अब जरा चीन के चोंगकिंग शहर के मशहूर शान चेंग लेन को देखिए। यहाँ 400 मीटर लंबा मिस्टिंग सिस्टम शुरू किया गया है। इस रास्ते पर हवा में बेहद महीन पानी के फुहारे फैल जाती हैं, जो पल भर में गर्मी में कूल कूल एहसास कराती हैं। सिर्फ इंसानों ही नहीं बल्कि हेफेई के चिड़ियाघर में जानवरों के लिए भी गर्मी से बचाव के खास इंतजाम किए गए हैं। यहाँ रेड पांडा को बर्फ की सिल्ली पर रखे ठंडे फल परोसे जा रहे हैं। बंदर बर्फ के बड़े टुकड़ों के साथ खेलते हुए गर्मी से राहत पा रहे हैं, तो वहीं हाथियों के लिए ठंडे पानी की फुहार चलाई जा रही है। इतना ही नहीं, जानवरों को ताजे फल और सब्जियां भी दी जा रही हैं, ताकि उनके शरीर में पानी की कमी न हो और वो इस भीषण गर्मी का सामना आसानी से कर सकें। कुल मिलाकर चाहे ऐतिहासिक गलियों में घूमते सैलानी हो या फिर पिंजरे के भीतर मजे लेते ये बेजुबान, गर्मी से निपटने के इन अनोखे और ठंडे ठंडे तरीकों ने सबका दिल जीत लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और चलिए बात करते हैं इंस्टा स्टोरी की। अब आपको उन कलाकारों की इंस्टा रील दिखाते हैं जो अभिनय की दुनिया में तो कमाल कर ही रहे हैं और साथ ही सोशल मीडिया पर अपने फैंस को हंसाने और गुदगुदाने में भी पीछे नहीं है। देखिए डॉली चावला की फनी इंस्टा स्टोरी।
3: ये तो बोलता कुछ नहीं बोला, तो तू क्यों बोला कि वो बोला?
4: मैंने नहीं बोला कि वो बोला।
3: तो तूने क्या बोला?
4: मैंने बोला कि वो बोला।
3: लेकिन मैंने जब उससे पूछा कि वो बोला तो तू बोलता कि वो नहीं बोला।
4: हाँ वो नहीं बोला।
3: और तूने मुझे बोला कि वो बोला।
4: मैंने नहीं बोला कि वो बोला, मैंने बोला कि वो बोला। मरोगे, आज मरोगे।
5: मैंने 2 रुपए का सिक्का समंदर में फेंका और एक अच्छे दोस्त की विश की, तो आप जैसा दोस्त मिला। और समंदर ने जवाब दिया, 2 रुपए में ऐसा ही मिलता है।
1: और इसी के साथ शुभ समाचार में इतना है।
6: बाकी तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
8: ज्योतिष का सबसे शुभ ग्रह बृहस्पति क्या ये विवाह नहीं होने देता है? क्या कभी कभी विवाह होना असंभव कर देता है? क्या ये वैवाहिक जीवन में बड़ी दिक्कतें भी ले आता है? बृहस्पति किस प्रकार देता है विवाह में बाधा, जानिए मेरे साथ।
9: At Byers Volkswagen, we've been family-owned since 1897, built on trust, driven by innovation, and now buying your next Volkswagen is easier than ever at ColumbusVW.com. Shop online, customize your deal, and finalize everything from home. Just stop by to pick up the keys. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
10: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
11: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
12: खबरों को परख कर परोसना।
6: हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
12: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
13: और दुर्भाग्य कहता है
14: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
12: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
12: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements. Sage University, transforming your passion into profession.
15: पुरी में श्री जगन्नाथ रथ यात्रा का आज दूसरा दिन, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मौसी के घर पहुंचेंगे भगवान, लाखों देशी विदेशी श्रद्धालु मौजूद। तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में आया वैकुंदर अवतार, पति पर ध्वजारोहण के साथ आदि उत्सव की शुरुआत, विधि विधान से श्रद्धालुओं ने पूजा की, केले के पत्ते से सजाया गया मंदिर। प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू, सावन में महिलाएं साड़ी सूट और पुरुष धोती कुर्ता पहनकर करेंगे रुद्राभिषेक, जीन्स टी शर्ट में गर्भगृह में नो एंट्री। देश में आज पहली हाइड्रोजन ट्रेन सेवा का होगा शुभारंभ, पीएम मोदी हरियाणा के जींद में दिखाएंगे हरी झंडी, जींद से सोनीपत के बीच दौड़ेगी रेल।
1: दमन से नई दिल्ली के लिए सीधी हवाई सेवा का शुभारंभ, तो वहीं पर्यटन, व्यापार, निवेश, विकास को नई गति मिलेगी। आने वाले दिनों में कई शहरों में शुरू होंगी सेवाएं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश, दिल्ली एनसीआर में भी मौसम ने करवट ली गर्मी और उमस से राहत की उम्मीद। मेडिकल में दाखिले के लिए नीट यूजी 2026 का रिजल्ट जारी, 720 में से 715 अंक हासिल कर पंजाब के आर्यन गुप्ता और हरियाणा के पंशुल बंसल बने टॉपर। आज है फिल्मी फ्राइडे, क्रिस्टोफर नॉलन की फिल्म द ओडिसी और आर माधवन की जीडीएन रिलीज, ओटीटी पर भी कई फिल्में और वेब सीरीज की दस्तक।

0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 17 जुलाई 2026, दिन शुक्रवार, तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, प्रातः 6:27 तक। नक्षत्र है मघा नक्षत्र, शाम के 6:34 तक। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः 10:30 से लगभग 12 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम ये बता रहे हैं कि बृहस्पति की वजह से भी विवाह होने में दिक्कत आती है और विवाह में बाधा पैदा होती है। क्या वाकई में ऐसा होता है? पहले ये समझते हैं कि बृहस्पति विवाह के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है, और क्या बृहस्पति विवाह में समस्या देता है। देखिए, बृहस्पति किसी महिला के विवाह का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, महिला के विवाह का कारक है। बिना बृहस्पति के किसी महिला का विवाह नहीं हो सकता, और बृहस्पति किसी पुरुष के जीवन में उसके जीवन साथी के बारे में बताता है। बृहस्पति ही पुरुष के वैवाहिक जीवन को संतुलित करता है, बैलेंस करता है। लेकिन अगर बृहस्पति विवाह में बाधा देने लगे तो पहले तो विवाह का होना ही मुश्किल होगा, और अगर विवाह किसी तरीके से हो गया तो विवाह का निभना और चल पाना भी बहुत कठिन होगा। बृहस्पति की कुछ स्थितियां व्यक्ति के विवाह के लिए काफी समस्या पैदा करती हैं। बृहस्पति कुछ स्थितियों में विवाह होने में और विवाह चलने में काफी मुश्किल पैदा करता है। मेष राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा, कार्यक्षेत्र में लाभ की संभावना बन रही है, लेकिन दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचें, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें, दही का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में कुछ बदलाव होगा, कोई यात्रा इस समय हो सकती है। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, धन लाभ के योग आपके लिए इस समय बने हुए हैं। करियर में सफलता मिलेगी, किसी मित्र की सहायता से लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, बृहस्पति की पहली स्थिति पर चर्चा करते हैं, जो विवाह में बाधा पैदा करती है और फिर उससे निपटने के उपाय जानेंगे। बृहस्पति की पहली स्थिति है नीच का बृहस्पति। बृहस्पति अगर मकर राशि में बैठे हों, 10 नंबर के खाने में बैठे हों, जहां 10 नंबर लिखा है, तो बृहस्पति नीच का हो जाता है। और अगर नवमांश में ऐसा बृहस्पति है तो ये गुरु का बड़ा दोष है। ऐसी स्थिति में जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और विवाह में काफी विलंब होता है और कभी कभी लोग देरी से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। देरी से उनके अंदर असंतोष का भाव आ जाता है और वो शादी करना ही नहीं चाहते। अगर ऐसा बृहस्पति कुंडली में है और शादी हुई, तो विवाह के बाद शुरू में वैवाहिक तालमेल में दिक्कत आती है, लेकिन अगर शुरुआती समय निकल जाए तो आगे विवाह चल जाता है। क्या उपाय करें अगर कुंडली में नीच का बृहस्पति हो, विवाह होने में या विवाह चलने में दिक्कत दे रहा हो? रोज सवेरे स्नान और उपासना यानी पूजा जरूर करें। चंदन की सुगंध नियमित रूप से लगाएं, नियमित रूप से प्रयोग करें। अपने दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में एक सोने का या एक पीतल का छल्ला धारण करें। बृहस्पतिवार को एक हल्दी की गांठ ले लें, पीले धागे में बांध कर इसको गले में धारण करें और हर 6 महीने पे इसको बदलते रहें। अगर कुंडली में बृहस्पति नीच राशि में बैठा है तो नीलम या शनि का रत्न बिल्कुल धारण ना करें। नीलम पहनना या शनि का रत्न पहनना ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा निगेटिव हो सकता है। सिंह राशि, करियर की स्थिति ठीक रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, मानसिक चिंता हो सकती है, धन हानि से बचाव करें। दही का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, धन की समस्या आपकी दूर होती दिख रही है, संपत्ति की समस्या हल होगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, नौकरी में लाभ के योग बन रहे हैं, धन की स्थिति में सुधार होगा, संपत्ति का लाभ हो सकता है। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। अब बृहस्पति की दूसरी स्थिति पर चर्चा करते हैं, जो विवाह होने में बाधा पैदा करती है, और फिर आगे जानेंगे उसको दूर करने के उपाय क्या हैं। देखिए, बृहस्पति की दूसरी स्थिति है गुरु चांडाल योग। अगर कुंडली में राहु और बृहस्पति का योग है तो इसको गुरु चांडाल योग कहा जाता है। अगर कुंडली में गुरु चांडाल योग है तो ये व्यक्ति को उत्श्रृंखल बना देता है, अत्यंत चंचल दिल दिमाग का कर देता है। ऐसे लोग गंभीर नहीं होते और इनके विवाह का समय बीतता चला जाता है, और विवाह हो जाने के बाद जिनकी कुंडलियों में गुरु चांडाल योग होता है वो अपने लाइफ पार्टनर के प्रति, अपने जीवन साथी के प्रति ईमानदार नहीं रहते, उनकी लॉयल्टी का इशू बना रहता है। गुरु चांडाल योग वालों की अगर शादी जल्दी हो गई तो शुरुआत में बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, पति पत्नी दोनों के जीवन में मुश्किलों का अंत नहीं होता। क्या उपाय करें अगर गुरु चांडाल की वजह से विवाह नहीं हो पा रहा या वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ रही हैं? रोज सवेरे सूर्य देव को हल्दी मिला करके जल अर्पित करिएगा। इसके बाद सुबह के समय 27 बार या 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिएगा। मांस मदिरा आदि का सेवन नहीं करेंगे। अगर कुंडली में गुरु चांडाल योग है तो सलाह लेकर एक पन्ना या एक मोती धारण करें, बिल्कुल पवित्रता से, साफ सफाई से रहें। दाढ़ी और बाल ये बड़े बिल्कुल ना रखें। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, काम की अधिकता रहेगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, महत्वपूर्ण काम इस समय आपका रुक सकता है, बेवजह की दौड़ भाग हो सकती है, स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है। दही का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में शुभ कार्य होंगे, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब जानते हैं बृहस्पति की तीसरी कौन सी स्थिति है जिसकी वजह से विवाह नहीं होता, और फिर जानेंगे उस स्थिति को बेहतर करने के उपाय क्या हैं। देखिए, बृहस्पति की तीसरी स्थिति है सप्तम भाव में बृहस्पति। सामान्यतः ये समझिए कि बृहस्पति जिस भाव में रहता है उसका नाश कर देता है। सप्तम भाव का बृहस्पति विवाह के लिए काफी खराब देखा गया है। सातवें स्थान में अगर बृहस्पति हो तो विवाह होने में अत्यंत विलंब हो जाता है और कभी कभी विवाह नहीं हो पाता। महिला की कुंडली के सातवें स्थान में बृहस्पति हो तो उनका विवाह होना लगभग असंभव सा हो जाता है, और अगर किसी तरह से शादी हो गई तो वैवाहिक जीवन में ईगो प्रॉब्लम, अहंकार की समस्या पैदा हो जाती है। अगर महिला की कुंडली में सप्तम में गुरु है, सतर्क हो जाइए विवाह के मामले में। पुरुष की कुंडली में सप्तम का बृहस्पति दिक्कत तो देगा, लेकिन उतनी दिक्कत नहीं देगा जितना ये महिला की कुंडली में देता है। क्या उपाय करेंगे? देर रात तक जगने से बचिएगा। माथे पर या कंठ पर तिलक जरूर लगाएं, और अगर पीला चंदन लगाएं या केसर का तिलक लगाएं तो अच्छा होगा। सप्ताह में एक दिन गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें, खास तौर से बृहस्पतिवार के दिन। भूल कर भी पीला पुखराज मत पहनिएगा। अगर सातवें स्थान में गुरु है और विवाह नहीं हो पा रहा है, पीला पुखराज मत पहनिए। अगर पहना है तो निकाल दीजिए। एक ओपल ऐसी स्थिति में सलाह लेकर पहन सकते हैं, उससे काफी लाभ होगा। जिन लोगों को रोजगार की समस्या हमेशा बनी रहती है, करियर में बार बार उतार चढ़ाव आते हैं, ऐसे लोगों को काली स्याही से ब्लैक इंक वाली पेन से लिखना चाहिए। ऐसा करना उनके लिए बेहतर होगा। आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि अगर आप शेयर बाजार में काम करते हैं, कुंडली आपको सपोर्ट करती है और आप लाभ लेना चाहते हैं तो क्या करेंगे? स्नान करते समय प्रातः काल जल में जरा सा गोमूत्र डालकर नहाइए। इसके बाद ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए, और नीले कपड़े में लपेटकर सफेद चंदन की लकड़ी अपने पास रखिए, अपनी बाजू में बांध लें या गले में पहन लें। आप अगर ऐसा करते हैं तो आपको लाभ जरूर होगा और आप नुकसान से बचे रहेंगे। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
1: Stormy Warren, and on my podcast called The Stormy Cast, I talk to artists like Luke Bryan, Tim McGraw, and Miranda Lambert about their journey from their hometowns to their first big break in Nashville. Thomas Rhett called his episode of The Stormy Cast the best therapy session he's ever had. And during my conversation with Little Big Town, he needed tissues and a lot of them. Yeah, the conversations go that deep. You'll find The Stormy Cast wherever you listen to your favorite podcast, in the TuneIn app or at TuneIn.com.
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

आज का सूत्र है धर्म क्या है और अधर्म क्या है, और हनुमान जी की भूमिका क्या है धर्म में और अधर्म। प्रायः हम लोग कई बार धर्म को अधर्म समझ लेते हैं और अधर्म को धर्म समझ, बुरा न मानना। शास्त्रों में धार्यति धर्मः, शास्त्रों ने कहा जिसको धारण किया जा सके वो धर्म। और धर्म की व्याख्या कोई हमारी मति से पूछे क्या है, जिसके धारण करने से, जिस कर्म के करने से आत्मा की उन्नति हो वो धर्म है, और जिस कर्म के करने से आत्मा की अधोगति हो वो अधर्म है। जिसको करने से आत्म उन्नति हो, जीवात्मा महात्मा बन जाए, महात्मा परमात्मा बन जाए वो धर्म है, और जिससे अवनति हो, अधोगति हो, ऊर्ध्वगति ना होकर के अधोगति हो वो अधर्म। एक दूसरा उदाहरण, धर्म क्या है अधर्म क्या है। इस लोक का सुख भोग कर परलोक की प्राप्ति के मार्ग पर जो चले वो धर्म है, और केवल भोग भोगने के लिए जो जीवन जिए वो अधर्म। धर्म और अधर्म की यदि तीसरी व्याख्या देखी जाए तो तीसरी व्याख्या ये है, जिससे किसी को भी जीव मात्र को पीड़ा पहुंचे वो अधर्म है, और जिससे सबको पीड़ा ना पहुंच करके सबको आनंद पहुंचे वो धर्म है। धर्म की चौथी व्याख्या देखी जाए तो किसी की तुम शांति छीन लो ये अधर्म है, और किसी को शांति दे दो ये धर्म। रावण ने यही तो किया, माता जानकी जी का हरण किया। एक दक्षिण भारत के बहुत अच्छे कवि हैं, उन्होंने लिखा कि माता जानकी जी शांति का प्रतीक है, और शांति का हरण रावण ने किया। रावण ने शांति का हरण किया तो किसी ने पूछा कि रावण के 10 सिर थे तो रावण सोता कैसे होगा। बोले क्यों, बोले जब सोता होगा वो करवट बदलना होता होगा तो स्प्रिंग तो होंगे नहीं 10 सिर, पहले वो खड़ा होता होगा फिर करवट बदलता होगा। तो किसी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि जो दूसरों की शांति चोरी करता है वो सोता ही नहीं, जो दूसरों की शांति छीन लेता है उसे फिर नींद नहीं आती, वो खुद अशांत हो जाता। तो धर्म की व्याख्या यदि कहा जाए, ये भी बड़ी प्यारी धर्म की व्याख्या है, जो दूसरों की अशांति का हरण करे वो अधार्मिक है, अधर्मी है, जो दूसरों को शांति दे वो धार्मिक है। धर्म का अर्थ है दूसरों को प्रेम देना, धर्म का अर्थ है, धर्म के कुछ लक्षण भी बताए। वैसे धर्म के तो 10 लक्षण है, कृति क्षमा शौचिन इंद्रिय निग्रह आदि आदि 10 लक्षण बताए, इस पर कल चर्चा करेंगे आज। पर धर्म के बारे में यदि कहा जाए कि आप धार्मिक हैं कि नहीं इसका पता कैसे लगे, तो बोले सत्य आपके अंदर है, संवेदना आपके अंदर है, करुणा आपके अंदर है, और उसके साथ साथ बोले एक बात और ध्यान रखनी पड़ती है धर्म के मार्ग में। बोले क्या, राम जी के जीवन में एक विचित्र बात यह थी कि वो जन को तारते रहे पर मन को मारते रहे। हमारे द्वारा, हमारे किसी कर्तव्य के द्वारा किसी को यदि पीड़ा पहुंची तो हम धार्मिक ना हो पाए। पहला लक्षण धर्म का सत्य है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलो और प्रिय बोलो। इसलिए संतों ने कहा सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। सत्य बराबर कोई पुण्य नहीं है और झूठ बराबर कोई पाप नहीं, लेकिन कई लोग ऐसा सत्य बोल देते हैं कि बड़ा कड़वा लगता है। सच बोलना ही चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए, लेकिन कई बार किसी के अपने सच बोलने से किसी की मृत्यु हो जाए तो वो सच भी खतरनाक है, उसका पाप तुम्हें लगे, तुम्हारे सच बोलने से कोई आदमी निपट जाए फिर क्या होगा। तो सच बोलो भाई, उसके कई उपाय होते हैं कि भाई कुत्ता को कुत्ता मत कहो, डॉग जी कह दो। भाई किसी को कुत्ता कुत्ता कहने में बुरा ही लगती है, बुरा लगता हो तो उसको कुछ नहीं, डॉग जी कह दो, कुत्ता नहीं तो भाई डॉग जी है। और ऐसा होता भी है भाई, अंधे को अंधा कह दो तो बुरा मान जाता है, और सूरदास जी कह दो तो हाँ बताओ, सूरदास का अर्थ भी अंधा है, लेकिन तुम कहे अंधे इधर बुरा लगता है। एक हमारे गांव के बगल में चौबे जी थे, उनसे कोई कहे चौबे जी तो वो कहते थे हाँ जी,
उनसे कोई कहते चौबे, वो कहते हां बे। और सठे सत्यम समाचरे, वो जैसे को तैसा जवाब देते। तो सत्य बोलो, पर सत्य बोलने के तरीके थोड़ा ठीक रखो। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलो पर प्रिय बोलो। ऐसा बोलो कि काम भी हो जाए, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ऐसा काम करो। तो धर्म का अर्थ पहला सत्य, सत्यवादी रहो। पर सत्यवादी में एक बड़ी दिक्कत है, एकदम सच ही सच बोलोगे तो सब छोड़ के भग जाएंगे। ये भी बड़ी दिक्कत है, अब तुम सच ही सच बोलो तो तुम्हारा पहला तो घरवाली भग जाएगी, घरवाली भग जाएगी, झंझट लपड़ा। कल हम जब भभूति बांट रहे थे तो एक आदमी हमारे पास आया, बोले गुरुजी घरवाली को बस में करने का उपाय बताओ। ये कल की बात है, वो आज आए हो पता नहीं है, कल की बात, यही जकार्ता की बात है, भभूति बांटते बांटते कल की बात है, शायद यहां कहीं बैठे ही होंगे। आए नीचे है, नीचे है वो, आए हैं। हाँ, तो हमसे पूछ रहे थे घरवाली को बस में करने का उपाय बताओ, तो हमने भी जवाब दे दिया कि ये तो शंकर जी पे भी नहीं है। आओ, तुम्हारी तो छोड़ो, फिर भी अब वो आज है नहीं, नहीं तो हम उनको आज उपाय लिख के लाए स्पेशली उनके लिए, उनको घरवाली में बस में करने का उपाय बताना होगा, तो हम जो है उपाय हम लाए हैं उनके लिए। खैर ये तो बाद में बताएंगे, खैर छोड़ो ये बाद में बताएंगे। तो धर्म का पहला अर्थ सत्य है, और सत्य देखो सबका अपना अपना धर्म है। अग्नि का धर्म ताप है, जल का धर्म शीतलता है, सूर्य का धर्म तेज है, चंद्रमा का धर्म शीतलता, हिंसक जानवरों का धर्म हिंसा है, वैसे मनुष्य का धर्म मानवता है। वैसे ही मनुष्य का धर्म मानवता, सबका धर्म है। और ये इसलिए है ताकि एक दूसरे की बाउंड्री पार ना हो। सिंह का धर्म क्या है? हिंसा करके मांस खाना। लेकिन ये गाय का धर्म नहीं, गाय का धर्म घास खाना, सिंह का धर्म मांस खाना और गाय का धर्म मांस खाना। और देखो विचार बुरा ना मानना, आजकल वर्तमान में इंसान तो बहुत है, इंसानियत खोल दी। आज के जमाने में लोग वायदे के लिए या कायदे के लिए नहीं जीते, फायदे के लिए जीते। पहले के जमाने में लोग फायदे के लिए नहीं, वादे वायदे और कायदे से रहते थे, कायदे के लिए जीते थे, वायदे के लिए। आज के जमाने में फायदे के लिए जीते हैं। बुरा ना मानना, दुनिया जितनी ऑनलाइन होती जा रही, इंसानियत उतनी ही ऑफलाइन होती जा रही। हाँ, ये हाल हो गया है, जितनी दुनिया ऑनलाइन होती जा रही, इंसानियत और मानवता उतनी। एक ही कमरे में पति पत्नी रहते हैं, 6 महीने बात नहीं होती, और बात भी होती तो व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम, वो उसको मैसेज देते हाँ भाई पानी ले आना, वो उधर से मैं नहीं जाऊंगी तू खुद उठा ले, और दोनों जुटे तब तक बगल में बेटा बेटा मम्मी, वो भी ग्रुप में लिख रहा मम्मी यदि जा रही हो तो थोड़ा सैंडविच ले आओ, वो भी बगल में ही बगल के कमरे में, और गजब गए। तो इतने ऑनलाइन हो गए, अब आजकल हमारे जमाने में तो ऑनलाइन वाला सिस्टम ही नहीं था हमारे, अब ऐसे हम कोई खास पुराने नहीं हुए हैं, तो आप हमको बिल्कुल, तुम बिल्कुल ओल्ड ही समझ लो, आई एम ओनली 29 ईयर ओल्ड। हाँ, तो आप इतना पुराना भी हमको मत समझ लेना, फिर भी बता रहे कि हम जिस गांव में रहते वहां इतना ऑनलाइन फोन लाइन तो होता नहीं था, पहले तो ऑनलाइन तो रपाटा ही होता था। हमारे यहां पर तो कोई बात कहनी हो नहीं मानो तो दे पटाक, और पिताजी तो बिना बात की, हमारा एक गांव में जब तक बाप अपने बेटे को बिना बात का मान ना ले तब तक बाप को संतुष्टि नहीं होती थी कि हम बाप, उनको संतुष्टि तब होती थी कि हम बाप हैं, जब बिना बात के मारो दे पटाक। अब पूछो क्यों मारा, जवान लड़ाता है दे पटाक, एक बिना बात के तो दूसरा जवान लड़ाने का। तो आजकल जितने रिश्ते ऑनलाइन हो गए हैं, इंसानियत उतनी ही ऑफलाइन हो गई, बड़ा बुरा जमाना। तो धर्म सबका मर्यादित है, सबका अपना अपना धर्म है। राजा का धर्म सेवा, साधु का धर्म सहना, नदी का धर्म बहना, तरुवर फल नहीं।

18 पुराणों में एक बात लिखी, दो बातें विशेष रूप से, पापाय, बोले पाप क्या है, दूसरों को पीड़ा देने से बड़ा कोई पाप नहीं और दूसरों को प्रसन्नता देने से बड़ा कोई पुण्य नहीं। तो सबका धर्म, अग्नि का धर्म ताप है, जल का धर्म शीतलता है, नदी का धर्म बहना है, साधु का धर्म सहना है, राजा का धर्म न्याय है, व्यापारी का धर्म ईमानदारी पूर्वक व्यापार करना है, बिजनेसमैन का भी धर्म। बुरा ना मानो, हम एक बात अक्सर अपने चेलों को बोलते हैं, आपको भी बोलते, कोई भी व्यक्ति जो जिस पथ का पथिक है, जो कर रहा, आप जो भी कर रहे, बिजनेस करते हो, नौकरी करते हो, या फिर ट्रेडिंग करते हो, मार्केटिंग करते हो, आप जो भी करते हो, एनी हाउ आप जो भी करो, वो यदि आप ईमानदारी से करो तो आपको साधु बनने की आवश्यकता नहीं। ये हमारा मानना है, आप जो भी करो वो यदि ईमानदारी पूर्वक करो, न्याय पूर्वक करो, धर्म पूर्वक करो, तो आपको साधु बनने की आवश्यकता नहीं। शायद साधु भगवान को ना पा पाए, पर तुम वो ईमानदारी से जीवन भर करोगे तो भगवान को पा पाओगे, ये तय। तो राजा का धर्म न्याय, साधु का धर्म सहना, व्यापारी का धर्म ईमानदारी पूर्वक व्यापार करना, सेवक का धर्म सेवा, सबते सेवक धर्म कठोर, सबसे कठोर धर्म सेवक का। गाय का भोजन घास और सिंह का भोजन मांस। अच्छा, सिंह को मांस की जगह पिज्जा खिलाया जाए, एक महीने का भूखा हो, उसको कोई मांस मिला ना हो, हिरण वगैरह ना मिली हो, और फिर भयंकर भूखा हो और तुम ले जाओ जकार्ता की नूडल्स, चाउमीन, इंडोमी, इंडोमी को ले जाओ और पिज्जा ले जाओ, क्या शेर खाएगा? हाँ बोलो बोलो बोलो बोलो, खाएगा? गाय दो माह से भूखी हो, शेर का भोजन ले जाओ, खाएगी? और आदमी गाय का भी भोजन पा जाता और शेर का भी पा जाता, और ज्यादा समझाओ वो तुम्हारा भेजा खा जाएगा, हाँ तब भी वो नहीं रोकेगा, तुम्हारा भेजा खा जाएगा ज्यादा यदि तुमने समझाने का। मनुष्यता का धर्म मानवता, और वर्तमान में इसकी सबसे बड़ी कमी हो गई, आदमी ही आदमी को खा रहा है, आदमी ही आदमी का हिंसक हो, मानवता बची नहीं, सड़कों पे लोग गिर जाते, कोई उठाने वाला नहीं। हमारे गांवों में कोई एक के घर बारात आती थी, पूरा गांव सजावट करता था, एक के घर पर कोई विपदा आपदा आ जाती थी, पूरा गांव तैयारी करके भोजन देता था। आज का जमाना बड़ा गजब, आज के जमाने में लोग सिर्फ मरे हुए लोगों को उठाते, जिंदों को नहीं उठाते, केवल मरे लोगों को उठाते, किसी को टाइम नहीं, ना पति को टाइम, ना पत्नी को, ना भाइयों को, ना मित्र को। पैसा ना बड़ा विचित्र, बुरा ना मानना, पैसा जेब में हो तो तुम बड़े आदमी हो, लेकिन पैसा दिमाग में हो तो तुम गरीब आदमी हो। हाँ पैसा जेब में तो ठीक है, लेकिन दिमाग में मनी बहुत खतरनाक है। इसलिए हमने पुरानी कथाओं में अक्सर एक बात कही, कुंडली में शनि और दिमाग में मणि और मूर्ख से दुश्मनी, बड़ी खराब। आज के जमाने में एक सबसे बड़ी कमी आ गई है मानवता के धर्म की। यदि पूरी दुनिया की सभ्यता हमसे पूछे कि पूरे विश्व में शांति लाने का उपाय क्या है, तो सबसे पहला हमारे पास यही सॉल्यूशन होगा, मानवता को मानव से जोड़ा जाए। आज के जमाने में इंसान तो बहुत है, इंसानियत बहुत घट। पहले के जमाने में सांप ज्यादा काटते थे, अब सांपों ने काटना बंद कर दिया, क्योंकि आदमी ही आदमी को काट रहा है, आदमी ही आदमी को खाए जा रहा है, एक दूसरे को देख नहीं सकता, भाई भाई को नहीं देख रहे। पहले के जमाने में जब भाइयों का बंटवारा होता था तो संपत्ति का बंटवारा नहीं होता था, विपत्ति का बंटवारा होता था। भगवान राम जब अयोध्या जाने लगे तो मां कैकेयी ने कहा, राम मैंने तुम्हारे पिता से वरदान मांगा। क्या वरदान मांगा मां? पहला भरत को तिलक, और दूसरा तुम्हारा वरदान मांगा, तुम्हें वनवास मांगा। तीन बार भगवान राम ने रामचरितमानस में कैकेयी मां को जननी जननी जननी कहा, मां मां मां। कैकेयी चौंक गई, अरे तुम वरदान सुनकर के भी मुझे मां कह रहे,
तुम्हें पता भी है मैंने वरदान क्या मांगा? भगवान राम कहते मां भला हुआ जो तूने वरदान मांगा, वरना अन्याय हो जाता। क्या पहला वरदान? मेरे भाई को तूने राजा बनाने का। मैं भरत को बहुत प्यार करता, जिस दिन मेरा भाई राजगद्दी पर बैठेगा मां जितना मुझे अपने बैठने का सुख नहीं होगा, उस दिन भरत के बैठने पर अनंत सुख की प्राप्ति होगी। और दूसरा, तूने भला किया मुझे वनवास मांगा। कैकेयी बोली इसमें भला क्या है, आपके वनवास जाने में भला क्या है? राम जी ने कहा मां यहां रहता तो ना जाने क्या क्या करना पड़ता, तू बड़ी चतुर है, तू बड़ी बुद्धिमान है, तूने मुझ पर उपकार किया, भरत को अयोध्या का राजा राज्य दे दिया जहां झंझट ज्यादा है, और मुझे वन का राजा बना दिया जहां झंझट नहीं। अच्छा लिया तूने मुझ पर कृपा करके। ये भाई का बंटवारा, जरा देखना भ्रातृ का प्रेम, भाई का प्रेम कितना प्रबल होता है। हमारे त्रेता की रामचरितमानस है सनातन, कथा पुरातन है पर सनातन है, मतलब पुरानी कथा है पर आज के जमाने में बहुत उपयोगी है, इसलिए सनातन। धन्य है राम जब चित्रकूट में भगवान श्री रघुनंदन राम कौशल्यानंदन राम बैठे और भरत जी मिलने के लिए गए, तो भरत की आंखों से आंसू बंद नहीं हुए। भरत ने मां कैकेयी से कहा आज के बाद मैं तुम्हें मां नहीं कहूंगा। तो बगल में खड़े हुए शत्रुघ्न ने कहा कि इन्होंने क्या गलती की? सबसे बड़ी गलती इन्होंने ही की, अरे मुझे तो राजा बनाया, ये वर क्यों मांगा? अब मुझे राजा बनाने का वर मांग भी लिया तो मेरे प्राण प्यारे राम को बन क्यों भेजे? उधर राम को देखो, वो कहते भरत को राजा बनाया मुझे अनंत सुख होगा, इधर भरत को देखो मैं राज्य पे बैठूंगा कदापि नहीं, राज सुख नहीं भोग सकता,

0: राह सच्चाई की।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी जोड़ों का दर्द है, यानी घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द, तो ये शो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनकी उम्र 70 साल से 100 साल तक है, और इस उम्र में भी इन लोगों को जरा भी जोड़ों का दर्द नहीं है। यानी ये लोग इस उम्र में भी कहीं जाने के लिए, उठने बैठने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है। एक लाइन में कहें तो ये लोग इस उम्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर है।
3: मैं पिछले एक साल से आयुर्वेदिक महाशक्तिशाली फॉर्मूला ले रहा हूँ, फौजी 360 इसका नाम है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
4: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
5: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैनू जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
2: फौजी 360 को अब तक जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है, उन सभी लोगों को जोड़ों के पुराने से पुराने दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे के दर्द से पूरी तरह आजादी मिली है। और ये दावा हम नहीं, वो लोग खुद कर रहे हैं जो फौजी 360 इस्तेमाल कर चुके हैं।
6: इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं, और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
7: और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसे हर बंदा ले सकता है, डायबिटीज वाला मरीज ले सकता है, ब्लड प्रेशर वाला मरीज ले सकता है, और मेरा खुद का दर्द खत्म हुआ यार। इसीलिए मैं खुल के बताता हूँ कि ये फौजी गजब की चीज है।
2: फौजी 360 के सिर्फ एक कोर्स के बाद 80-90 साल के बुजुर्ग भी जवानों की तरह सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पोते पोतियों को गोदी में लिए घंटों उनके साथ खेल रहे हैं।
8: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने।
2: ये बात सुनने में बड़ी हैरान करने वाली है, पर इन बुजुर्गों ने इंटरनेट पर प्रूफ के साथ वीडियोस भी अपलोड हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। और जोड़ों के दर्द के तेल और स्प्रे बेचने वाले दुकानदार परेशान है, क्योंकि फौजी 360 लेने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी इन जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली दवाएं, जैसे तेल, गोली और स्प्रे के चक्कर में दोबारा कभी नहीं फंसेगा।
9: 3 साल से आंटी जी के घुटनों में इतना दर्द था कि इनका घुटना मुड़ता भी नहीं था, जरा भी नहीं मुड़ता था। और आज की स्थिति देखते हैं आप, ये देखिए इनका पूरा घुटना मुड़ रहा है, हॉस्पिटल खुद चल के आई हैं, और ये सब कमाल हुआ है फौजी 360 से। हम रिपोर्ट से समझते हैं, देखिए इनके पुरानी रिपोर्ट है, पूरी घुटने जकड़ चुके थे, जाम हो चुके थे, जिसके कारण घुटनों में पूरी तरीके से मूवमेंट खत्म हो गया था। और आज की डेट है, जब से इन्होंने फौजी 360 यूज करना शुरू किया है, उसके बाद उनके घुटनों में एक तरीके से नई जान आई है। और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि लोगों के पैसे बच रहे हैं और लोगों को फौजी 360 जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से आराम मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है, एक बार फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
2: फौजी 360 के इफेक्ट्स और रिजल्ट्स को जानने के लिए हमने बहुत से एक्सपर्ट से बात करी, और लगभग सभी का यही कहना था कि फौजी 360 जोड़ों के दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे के दर्द के लिए राम बाण की तरह काम करता है।
10: किट में मिलने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे तेल, स्प्रे, ये सिर्फ ऊपरी और टेम्परेरी राहत देते हैं, और वहीं फौजी 360 शरीर के अंदर जाकर जोड़ों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
11: ये साहिल जी हैं, 2 महीने पहले आए थे, कह रहे थे मेरे दोनों घुटने बदल दो क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी इन्हें चलने फिरने में। मैंने कहा हम पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, आप फौजी 360 का एक कोर्स लेके देखिए, फिर मिलते हैं। आज आए हैं, बताइए सर कैसे रिजल्ट मिले आपको, क्या स्थिति है अभी?
10: पहले तो जितना धन्यवाद आपको दूं उतना कम है डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरा चल लेता हूं मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा हूं वापस से अपनी, अब बिल्कुल भी

0: लंग पे हो रहा था, जरा भी नहीं चल पाता था। 3 महीने से ये फौजी 360 पाउडर ले रहा हूँ, अब खुद से उठ जाता हूँ, बाथरूम हो जाता हूँ, चल फिर लेता हूँ, बहुत आराम है, बहुत राहत है।
1: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
2: रोज 150 सीढ़ी चढ़कर मैं मेरे भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है मेरे घुटनों में। और ये कमाल किसी तेल या स्प्रे से नहीं हुआ है, क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं है। मुझे तो फायदा हुआ है फौजी 360 से। अरे कमाल का ट्रीटमेंट है, इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
1: दुनिया के किसी भी तेल या स्प्रे के साथ कभी भी कोई गारंटी नहीं मिलती, यानी दर्द खत्म होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं, लेकिन फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है। यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
3: 15 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, तब से शरीर के हर कोने में दर्द बना रहता था। होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ये तेल, वो स्प्रे, सब ट्राई कर लिया मगर आराम मिला 3 महीने पहले इस फौजी 360 से। अब कसम खा के बता रहा हूँ, जरा भी दर्द नहीं है शरीर में।
2: घुटने के दर्द के कारण मैं चल भी नहीं पाती थी, पर ये जब से फौजी 360 लिया है ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। अब आप देखो, मैं घर का पूरा काम खुद कर लेती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है।
4: 5 साल से तो मैंने नमाज भी अदा नहीं की थी क्योंकि घुटना मेरा मुड़ता ही नहीं था। अब घुटने बदलवाने के लिए जितने पैसे भी नहीं थे कि घुटने बदलवा लें इस उम्र में, फिर ये फौजी 360 जब से लेना शुरू किया है, अब मैं खुद चल लेता हूँ, खुद का काम पूरी तरीके से कर लेता हूँ। और जो मैंने पलंग पकड़ लिया था ना, वो वहाँ से बच गया हूँ मैं। अब ये तो ताकत है फौजी 360 की, ये अल्लाह की दुआ से कम नहीं है फौजी 360। अब खुद का काम मैं खुद से करता हूँ बिल्कुल।
5: हमारे नेपाल में पहाड़ी इलाका है तो चलना फिरना बहुत होता है, जोड़ों में बहुत दर्द का प्रॉब्लम शाप को रहता है, पर हमने कभी तेल या स्प्रे नहीं लगाते, कुछ नहीं होता उससे। सारे लोग मेरी उम्र के यहाँ फौजी 360 लेते हैं, बहुत कमाल का दवाई है, बिल्कुल भी जोड़ों में दर्द नहीं है इसको लेने से।
1: अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द अंदर से पूरी तरह ठीक हो सके और आपको पूरी तरह आराम मिल सके, तो सिर्फ एक कॉल करके इस कमाल के आयुर्वेदिक फॉर्मूले फौजी 360 को अपने घर मंगा सकते हैं और जोड़ों के दर्द से पूरी तरह आजादी पा सकते हैं।
6: बॉलीवुड का एक गाना है ना, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। तो मेरी कहानी भी ऐसी है कि मैं दुनिया के लगभग बहुत से बड़े बड़े देशों में रहा हूँ और मैंने सब जगह ये जोड़ों के दर्द, स्पेशली घुटने के दर्द का इलाज कराया, बट कहीं भी वैसा रिजल्ट नहीं मिला। 2 years बैक व्हेन वी शिफ्टेड टू इंडिया, तब ये फौजी 360 के बारे में पता पड़ा, वी स्टार्टेड यूजिंग इट। मुझे और मेरी वाइफ दोनों को इतना कमाल का रिलीफ मिला कि ऐसा रिलीफ किसी भी ट्रीटमेंट से आज तक नहीं हुआ था।
1: फौजी 360 के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी टीम उस आयुर्वेदिक आश्रम तक पहुंची जहां फौजी 360 बनाया जाता है और उन एक्सपर्ट से बात करी और वो सीक्रेट जानने की कोशिश करी कि कैसे सिर्फ एक फॉर्मूले से लोगों के जोड़ों का दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, पूरी तरह ठीक हो रहा है।
7: इसमें कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है, जो आपके लिगामेंट में जो फ्लूइड की कमी हो गई है ये उसे दोबारा रिस्टोर करने में मदद करता है। और साथ ही दूसरी दवाओं से ये बेहतर इसीलिए है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, इसे ब्लड प्रेशर का मरीज ले सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित है और आपको पहले दिन से फायदा दिखने लगेगा। ये ताकत है फौजी 360 की। बस यही कारण था कि हमने सोचा कि अब समय आ चुका है लोगों की, जनता की सेवा करने का और घर घर इसे भिजवाने का। तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, आप इस पर फोन कर सकते हैं, हमारे केंद्र पर डायरेक्ट फोन होगा, आप अपनी समस्या बताइए। अगर आपको बात सही लगती है, फौजी 360 आपको लगता है कि हाँ अब समय है कि जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक करना है, तो आप इसे मंगा सकते हैं। और साथ ही इसमें कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो आपको पूरे समय आपके शरीर में चुस्ती बनाए रखता है।
1: फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
8: फौजी 360 मार्केट में मिलने वाले दूसरे जो पेन किलर ऑयल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, उनसे कैसे अलग है, मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूं कि ऐसा क्या है इस ट्रीटमेंट में जो इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है। देखिए, कोई भी तेल या स्प्रे कैसे काम करता है सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आपके दर्द वाले हिस्से पे जब आप तेल लगाते हैं तो ये बाहर से आपके उस पर्टिकुलर एरिया को सुन्न कर देता है,

0: मतलब आपके बॉडी के अंदर दर्द तो रहता है, उस जोड़ के अंदर दर्द तो है, और वहीं फौजी 360 जो है ये अंदर से काम करता है, क्योंकि जब आप इसे कंज्यूम करते हैं बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो जोड़ों को मजबूत बनाता है अंदर से, जो जोड़ों की चिकनाहट कम हो गई है ना, ये उसको दोबारा लौटाता है। तो ये एक अंदर से काम करने वाली चीज है, यानी ये पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से ठीक करता है, और वहीं तेल और स्प्रे सिर्फ टेम्परेरी राहत देते हैं। तो आप अगर अभी भी जोड़ों के दर्द के लिए तेल या स्प्रे यूज कर रहे हैं तो आप आज से ही वो सब बंद कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे बर्बाद करने की बात है और टेम्परेरी रिलीफ की बात है। अगर आप पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आप एक बार ये फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
1: पिछले महीने मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी तो बहुत दर्द रहता था पेट में। डॉक्टर ने कहा कुछ L1 L2 का कुछ तो बताया था, पर इन्होंने फौजी 360 लाके दिया और उससे इतना आराम हुआ है कि अब जरा भी दर्द नहीं है। मम्मी पापा जी ने भी लेना शुरू किया है और उनको भी जो घुटनों में दर्द था उन्हें भी राहत मिली है। तो हर घर में मुझे लगता है ये फौजी 360 होना ही चाहिए।
2: मैं तो 12 महीने ही केदारनाथ बाबा के चरणों में ही रहता हूँ, और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि ठंड के चक्कर में पूरे समय शरीर अकड़ा हुआ रहता है, सारे जोड़ में बड़ा दर्द बना रहता था, पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता, बर्फ में भी चल लेता हूँ, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। ये ताकत है इस आयुर्वेदिक फौजी 360 की।
3: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
4: टीवी पे फौजी के बारे में देखा तो मैंने फोन करके फौजी 360 को सीधा घर मंगा लिया, क्योंकि 3 साल से कमर में इतना भयंकर दर्द था कि घर के सारे कामों के लिए मैं पूरी तरीके से बाइयों पे निर्भर हो चुकी थी। सिर्फ 15 दिन हुए हैं और अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है, कमर में जरा भी दर्द नहीं है। इतना शक्तिशाली है ये फौजी 360।
5: बिना सहारे के मैं 2 कदम भी नहीं चल पाती थी, पूरे समय बहू और बेटे की मदद ही लेनी पड़ती थी, पर जब से ये फौजी 360 लिया है कमर में घुटने में जरा भी दर्द नहीं है। अब सीढ़ियां चढ़ जाती हूँ, उतर जाती हूँ, चल लेती हूँ आराम से, इधर का सारा काम कर लेती हूँ, अब दर्द में पूरी तरीके से राहत है।
6: मेरी उम्र 88 साल है, रोज 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, लेकिन फिर भी जरा भी दर्द नहीं है। ये शक्ति है फौजी 360 की।
3: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
7: 1 साल पहले दोनों घुटने बदलने के लिए बोल दिया था, मगर मैंने घर बैठे आयुर्वेद के एक फॉर्मूले से अपने घुटने और जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक किया है, और अब मैं वो सब कर सकता हूँ जो जवान आदमी भी नहीं कर सकता। आप में दम हो, आप करके बताओ। जोड़ों के दर्द के लिए जो भी लोग तेल या स्प्रे लगाते हैं ना, उन्हें आज से ही ये सब बकवास चीजें बंद करना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि जोड़ों के दर्द का इलाज अंदर से होता है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
3: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है, और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
2: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
8: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैंने जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
3: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
5: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में
9: दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने का।
3: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 अपने घर मंगा सकते।
10: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल
11: Fill your day with podcasts on TuneIn. Whether you're passing the time on your commute, catching up on your workouts, or just tuning in while hanging out, all your favorite podcasts are all here on TuneIn. The Daily.
12: From the New York Times, I'm Michael Barbaro. This is The Daily.
11: Smartless.
13: Hey guys, I got a mouthful of English muffin with a glass full of
11: Marketplace.
14: Big three on the program today, or... You know, the big three of them.
11: And more. Just search podcasts or tell your device to play your favorite podcast on TuneIn.
15: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
16: और दुर्भाग्य कहता है
15: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
17: अविश्वास में विश्वास बसता है,
15: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: Good news today.
15: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
15: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
17: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
15: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
16: और दुर्भाग्य कहता है
15: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
17: अविश्वास में विश्वास बसता है,
15: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
15: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
15: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
18: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements. Sage University, transforming your passion into profession.
19: पुरी में श्री जगन्नाथ रथ यात्रा का आज दूसरा दिन, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मौसी के घर पहुंचेंगे भगवान, लाखों देशी विदेशी श्रद्धालु मौजूद। तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में अय्या वैकुंदर अवतार पति पर ध्वजारोहण के साथ आदि उत्सव की हुई शुरुआत, विधि विधान से श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना, केले के पत्ते से सजाया गया मंदिर। प्रयागराज के मन कामेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू, सावन में महिलाएं साड़ी सूट और पुरुष धोती कुर्ता पहनकर करेंगे रुद्राभिषेक, जीन्स टी शर्ट में गर्भगृह में नो एंट्री। देश में आज पहली हाइड्रोजन ट्रेन सेवा का होगा शुभारंभ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के जींद में दिखाएंगे इसे हरी झंडी, जींद से सोनीपत के बीच दौड़ेगी ये ट्रेन। दमन से नई दिल्ली के लिए सीधे हवाई सेवा का हुआ शुभारंभ, पर्यटन व्यापार निवेश और विकास को मिलेगी नई गति, आने वाले दिनों में कई शहरों में शुरू होंगी सेवाएं। झारखंड के पतरालू लेक रिजॉर्ट को मिली नई पर्यटन पहचान, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट और म्यूजिकल फाउंटेन का हुआ उद्घाटन, पर्यटन को मिलेगा इससे बढ़ावा। मेडिकल में दाखिल के लिए नीट यूजी 2026 का रिजल्ट जारी, 720 में से 715 अंक हासिल कर पंजाब के आर्यन गुप्ता और हरियाणा के पंशुल बंसल बने टॉपर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
19: पुरी में रथ यात्रा उत्सव का आज दूसरा दिन, भगवान का रथ खींचने उमड़े लाखों श्रद्धालु। आज मौसी के घर गुंडीचा मंदिर पहुंचेंगे भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा भी साथ होंगे। गुंडीचा मंदिर महाप्रभु का माना जाता है जन्म स्थान। अगले 7 दिनों तक भगवान जगन्नाथ गुंडीचा मंदिर में ही रहेंगे, इस दौरान गुंडीचा मंदिर में विशेष पूजा दर्शन और कई पवित्र अनुष्ठान होंगे। 7 दिन गुंडीचा मंदिर में विश्राम करने के बाद भगवान अपने मुख्य मंदिर के लिए वापसी की यात्रा शुरू करेंगे, इसे बहुधा यात्रा कहा जाता है। पुरी के जगन्नाथ रथ यात्रा में आस्था के साथ साथ मानवीय संवेदनाओं की भी दिखी तस्वीर, मानव श्रृंखला बनाकर एम्बुलेंस को दिया गया रास्ता। दिल्ली के द्वारका स्थित इस्कॉन मंदिर में भव्य जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगवान को 11,000 किलो आमों का भोग किया गया अर्पित, ये आम का भोग पारंपरिक आरती के बाद श्रद्धालुओं के बीच महाप्रसाद के रूप में बांटा गया। भगवान जगन्नाथ को एक विशाल मैंगो फेस्टिवल में 108 विभिन्न किस्मों वाले आमों का लगा भोग, भक्तों ने पूरे उत्साह के साथ निकाली रथ यात्रा। रथ यात्रा में हजारों की संख्या में भक्त हुए शामिल, भक्तों की सुविधा के लिए जगह जगह लगाए गए स्टॉल्स। रथ यात्रा कल शाम 4 बजे मंदिर परिसर से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से गुजरी, जहां भक्तों ने उत्साह से रथ की रस्सियां खींची। इस रथ यात्रा में दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद हुए शामिल, भगवान की आस्था में रमे नजर आए आशीष सूद। ओडिशा के अंगुल में धूमधाम से निकाली गई भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, जिंदल नगर के देवभूमि मंदिर में हजारों भक्तों और कर्मचारियों के साथ मिलकर रथ को खींचा गया। सांसद और उद्योगपति नवीन जिंदल ने निभाई छेरा पहरा की रस्म, देशवासियों को इस पावन पर्व की दी शुभकामनाएं। आस्था और उल्लास के बीच थूथुकुड़ी में आदि उत्सव की भव्य शुरुआत, पारंपरिक अनुष्ठानों के बीच खोले गए मंदिर के पट। थूथुकुड़ी में आदि उत्सव के पहले दिन भक्तों ने बड़ी संख्या में किए दर्शन, धार्मिक आयोजनों से माहौल भक्तिमय हो गया। संगम नगरी प्रयागराज के मन कामेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए लागू हुए ड्रेस कोड, महिलाएं साड़ी और सूट, वहीं पुरुष धोती कुर्ता पहनकर कर सकेंगे रुद्राभिषेक। देश को आज मिलेगी पहली हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन की सेवा, हरियाणा के जींद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। दिल्ली पॉल्यूशन फ्री और पर्यावरण के अनुकूल है यह हाइड्रोजन ट्रेन, मल्टी लेयर सेफ्टी सिस्टम होने से हाइड्रोजन लीक आग धुएं का पता लगाने में भी है सक्षम। जींद और सोनीपत के बीच 89 किलोमीटर रूट पर चलेगी ये हाइड्रोजन पावर ट्रेन, 75 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी इसकी रफ्तार। जींद सोनीपत रूट पर 11 स्टेशनों पर रुकेगी ये हाइड्रोजन ट्रेन, करीब 2 घंटे का होगा इसका सफर। हाइड्रोजन ट्रेन को 10 कोच वाली ट्रेन के रूप में किया जा रहा है तैयार, 2600 यात्रियों के बैठने की है इसमें क्षमता। आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 25,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की देंगे सौगात। जींद के एकलव्य स्टेडियम में होगा करीब 14,700 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण, रैली को भी करेंगे संबोधित। जींद दौरे के बाद चंडीगढ़ पीजीआई जाएंगे प्रधानमंत्री, 1250 करोड़ रुपए की हेल्थ केयर से जुड़ी अहम सुविधाओं का करेंगे उद्घाटन। जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 125 करोड़ रुपए में हुआ है इसका पुनर्विकास। अमृतसर से वाराणसी के बीच शुरू होगी नई ट्रेन सेवा, संत रविदास एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली एनसीआर में 18 जुलाई तक रहेगा गर्मी उमस वाला मौसम, 20 जुलाई से हो सकती है बारिश। हिमाचल प्रदेश में 19 जुलाई से भारी बारिश का अनुमान, मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट किया जारी। कोलकाता समेत आसपास के जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी, 19 जुलाई तक भारी बारिश का अनुमान। नेपाल में लगातार हो रही बारिश से बिहार के सीमावर्ती इलाकों की नदियों में बढ़ा जलस्तर, प्रशासन अलर्ट मोड पर। बाढ़ की संभावना के चलते एनडीआरएफ की टीमों को भी जगह जगह कर दिया गया है तैनात, नदियों के तटबंध की सुरक्षा को लेकर भी निर्देश जारी। जम्मू कश्मीर के उदयपुर से सामने आई प्राकृतिक सौंदर्य की मनमोहक तस्वीर, हरियाली पहाड़ और बादलों का संगम पर्यटकों का मन मोह रहा है। उदयपुर की खूबसूरत वादियां और प्राकृतिक नजारे पर्यटकों को कर रहे हैं अपनी ओर आकर्षित, सुबह की इन तस्वीरों ने किया सभी को मंत्रमुग्ध। दमन से नई दिल्ली के लिए सीधी हवाई सेवा का हुआ शुभारंभ, पर्यटन व्यापार निवेश और विकास को मिलेगी नई गति, आने वाले दिनों में कई शहरों में शुरू होंगी सेवाएं। बलरामपुर की लखपति दीदी दिलमती की बदली तकदीर, सुअर पालन और खेती के दम पर दिलमती बनी आत्मनिर्भर। दिलमती ने कृषि और पशुपालन से रचा सफलता का नया अध्याय, बड़ी आमदनी और परिवार की आर्थिक स्थिति हुई मजबूत। महाराष्ट्र के अकोला में 7 सितंबर को निकलेगी भव्य राज राजेश्वर कावड़ यात्रा, 50 वर्षों से चली आ रही है ये परंपरा। सावन में कावड़ यात्रा के लिए की जा रही है तैयारियां, पूना नदी से पवित्र जल लेकर भगवान श्री राजराजेश्वर का जलाभिषेक करते हैं हजारों श्रद्धालु। अकोला से 20 किलोमीटर दूर है पूना नदी का तट, कावड़ यात्रा मार्ग पर मेडिकल सुविधा समेत इमरजेंसी सेवाओं के पुख्ता इंतजामों पर जोर। बिहार के मुजफ्फरपुर में श्रावणी मेले की तैयारियां तेज, बाबा गरीबनाथ धाम में बैरिकेडिंग और अतिक्रमण हटाने के निर्देश। बिहार के मुजफ्फरपुर में श्रावणी मेले की तैयारियां तेज, बाबा गरीबनाथ धाम में बैरिकेडिंग और अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए।

0: काशी विश्वनाथ मंदिर में तमिलनाडु की 80 साल की महिला श्रद्धालुओं ने दान किए 3.5 करोड़ रुपए। बेटों की स्मृति में बाबा विश्वनाथ को अर्पित किया चढ़ावा। मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए एनटीए ने जारी किए नीट यूजी 2026 का रिजल्ट। 720 में से 715 अंक हासिल कर पंजाब के आर्यन गुप्ता और हरियाणा के पंचुल बंसल बने संयुक्त टॉपर। श्रीनगर के सुहाने मौसम में बड़ी तादाद में पहुंच रहे पर्यटक डल लेक में शिकारा राइड का ले रहे हैं आनंद। टू व्हीलर से नैनीताल जाने वाले पर्यटकों पर भी अब लगेगा 100 रुपए एंट्री टैक्स। बाहरी जिलों और राज्यों से आने वाले टू व्हीलर लागू किए गए फैसला। जम्मू कश्मीर के डोडा में बारिश के मौसम में तोतों के रंग बिरंगे झुंडों से बड़ी प्रकृति की सुंदरता नजारा देखने के लिए जमा हो रहे हैं पर्यावरण प्रेमी। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में दुर्गा पूजा की हुई शुरुआत। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सोनार बांग्ला होगी इस बार की थीम। हरिद्वार के विश्वविख्यात मां मनसा देवी मंदिर में शुरू हुई एक नई पहल। अब पॉकेटलेस कपड़ों में नजर आएंगे मंदिर में काम करने वाले सभी कर्मचारी पुजारी और पंडित। उज्जैन के विश्वविख्यात मंदिर श्री महाकालेश्वर में अब दान में दिए जाने वाले आभूषणों की भी होगी जांच। लगाई जाएगी कैरेट मीटर मशीन। चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध सावलिया सेठ को एक भक्त ने चढ़ाया सोने की निर्मित बांसुरी। 20 लाख बताई जा रही है बांसुरी की कीमत। सावलिया सेठ के दर्शन के लिए उमड़ा आस्था का जनसैलाब। बड़ी संख्या में भक्तों ने किए सावलिया सेठ के दर्शन।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में बनते बिगड़ते रिश्ते। 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रवि गिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रवि गिरी है। मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है। और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है, और सबसे ज़्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूँ गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयां खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रवि गिरी आपसे वादा करता हूँ कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस। इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो 2-3 बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती, और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है, रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा। ये कोई मामूली, लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाई और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाई और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूर्यकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणु रोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हरड़। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा, जो छोंक में यूज करते हैं, ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो, इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लेटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च, जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक, चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है। यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लेटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूर्यकंद, ये है सूर्यकंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और ये है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास, अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में, और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है। पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालु। लज्जालु पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो, सब पर यह काम करता है। इसके बाद में है कचनार। कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है। वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में। ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन। यह है इंद्रायन की जड़। इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हैं वो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: Hey Buzz, you hear about the switch?
5: He's right over there.
4: Not that switch, our switch to APG&E.
5: Well, we can do that?
4: Customers can switch electric suppliers anytime to find a better rate, lock in pricing.
5: I don't want new wires. I'm very attached to ours.
4: Only the part of the bill that covers electricity supply changes.
5: To APG&E?
4: People love their flexible, affordable electricity.
5: Nice. Learn more at APGE.com.
6: Summer Hits blends old school jams with fresh favorites so you can get the party started. Listen to your summer soundtrack made for sunshine, vibes, and summer heat. Hear all your favorites and more right here on TuneIn. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Summer Hits and start listening now.
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
13: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे।
12: अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
13: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद से हरी झंडी दिखाकर किए इसे रवाना। जींद से सोनीपत के बीच दौड़ेगी ये रेल। पुरी में श्री जगन्नाथ रथ यात्रा का आज दूसरा दिन। भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मौसी के घर पहुंचेंगे भगवान। लाखों देशी विदेशी श्रद्धालु मौजूद। तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में अय्या वे कुंदर अवतार पति पर ध्वजारोहण के साथ आदि उत्सव की हुई शुरुआत। विधि विधान से श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। केले के पत्ते से सजाया गया मंदिर। प्रयागराज के मन कामेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड हुआ लागू। सावन में महिलाएं साड़ी सूट और पुरुष धोती कुर्ता पहनकर ही कर सकेंगे रुद्राभिषेक। जीन्स टी शर्ट में गर्भगृह में नो एंट्री। दमन से नई दिल्ली के लिए सीधी हवाई सेवा का हुआ शुभारंभ। पर्यटन व्यापार निवेश और विकास को मिलेगी नई गति। आने वाले दिनों में कई शहरों में शुरू होंगी सेवाएं। झारखंड के पतरातू लेक रिजॉर्ट को मिली नई पर्यटन पहचान। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट और म्यूजिकल फाउंटेन का हुआ उद्घाटन। पर्यटन को मिलेगा इससे बढ़ावा। मेडिकल में दाखिल के लिए नीट यूजी 2026 का रिजल्ट जारी। 720 में से 715 अंक हासिल कर पंजाब के आर्यन गुप्ता और हरियाणा के पंचुल बंसल बने टॉपर्स।

0: आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव। जीएनटी स्पेशल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज जीएनटी स्पेशल में हम बात करेंगे हाइड्रोजन रफ्तार की। जी हाँ, देखिए कल्पना कीजिए ऐसी ट्रेन, बस, कार, जहाज और यहां तक कि विमान जो बिना धुआं छोड़े दौड़े, ना कार्बन उत्सर्जन, ना प्रदूषण और ना ही पर्यावरण पर बोझ। वैसे ये कोई सपना नहीं बल्कि हाइड्रोजन ईंधन की ताकत है जिसके एक अध्याय की शुरुआत आज हो गई है। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के जींद से सोनीपत के लिए हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी है। दुनिया के कई देश अब हाइड्रोजन आधारित परिवहन और उद्योगों की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं और इस लिस्ट में, इस फेहरिस्ट में अब भारत भी शुमार हो गया है। हाइड्रोजन तकनीक अपनाने वाले देशों में जापान सबसे आगे है। यहां हाइड्रोजन से चलने वाली कारें सड़कों पर दौड़ रही हैं, हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन बनाए जा चुके हैं और सरकार अब इस तकनीक को बढ़ावा देने के लिए लगातार निवेश भी कर रही है। कई शहरों में हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली बसें भी सार्वजनिक परिवहन का हिस्सा बन चुकी हैं। ऐसे कई देश है जहां हाइड्रोजन की मदद से प्रदूषण को शून्य तक पहुंचाया जा रहा है। देखिए कौन कौन से हैं वो देश बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि भारत भी अब हाइड्रोजन क्रांति की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, कदम बढ़ा रहा है। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत स्वच्छ हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। देखिए देश में हाइड्रोजन से चलने वाली बसों और ट्रकों के परीक्षण हो चुके हैं। भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन ट्रेन परियोजना पर काम भी शुरू कर दिया है और भविष्य की अगर हम बात करें, फ्यूचर में कई रेल मार्गों पर हाइड्रोजन ट्रेन चलाने की योजना है और इस कड़ी में सबसे पहली ट्रेन आज पटरी पर चल चुकी है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा की जींद से हरी झंडी दिखा दी है। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आज का इंतजार पिछले कुछ दिनों से सभी को था और आखिरकार वो दिन आ गया है। देखिए पीएम मोदी ने थोड़ी देर पहले ही हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। ये ट्रेन जींद और सोनीपत के बीच 89 किलोमीटर के रूट पर चलेगी। इस ट्रेन के पहले सफर में स्कूली बच्चे भी सवार हुए और मोबिलिटी में क्लीन और ग्रीन एनर्जी के इस्तेमाल पर उन्होंने खुशी जाहिर की। दो तस्वीरें हम आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक तरफ आप देख सकते हैं जींद रेलवे स्टेशन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और स्कूली बच्चे भी इस दौरान शामिल हुए। और आपको बता दें कि आम इलेक्ट्रिक ट्रेन की तरह ये ट्रेन ऊपर लगी बिजली की लाइनों से पावर नहीं लेती है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक प्रक्रिया से ट्रेन के अंदर ही बिजली बनती है। तो हमारे संवाददाता कमलजीत संधू हमारे साथ जुड़ गए हैं जींद से। कमलजीत, हरियाणा जो है एक नया अध्याय लिख चुका है, क्या ये कहना गलत होगा? क्योंकि कई देश हम लगातार इसके बारे में बात कर रहे हैं कि जापान है, वहां तो हाइड्रोजन पावर्ड कार्स हैं, लेकिन भारत भी इस दिशा में लगातार काम कर रहा है और आज एक महत्वपूर्ण दिन मैं इसे कहूंगी क्योंकि जींद रेलवे स्टेशन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये काफी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था, इसे हरी झंडी दिखा दी है, तो हाइड्रोजन से भी ट्रेन चल सकती है, इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से एक नई सौगात पूरे देश को, हरियाणा वासियों को। और आपको बता दें ग्रीन एनर्जी के तहत, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तहत ये पूरा प्रोजेक्ट है। और आपको बता दें पिछले 6-8 महीने से लगातार ट्रायल चल रहा था और आपको बता दें 90 किलोमीटर पर आवर के इसमें अगर हम बात करें जींद से सोनीपत की कनेक्टिविटी है। और यहाँ पे अहम बात यह है कि 2600 लोग एक बार में बैठ सकेंगे और खास तौर पे जो इसकी का अमाउंट है वो 5 से 25 रुपए के बीच में है, तो यानी किफायती भी है और खास तौर पे ग्रीन एनर्जी के तहत एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है। और आपको बता दें चाहे जर्मनी हो, यूके, फ्रांस, अमेरिका, जापान, इस तरह की बड़ी देश हैं जहां पर इस तरह के हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स चलते हैं, लेकिन अब ये जींद में भी इसकी शुरुआत की गई है। अब इसका अगर हम बात करें जो एरिया है ये 33 किलोमीटर दूर है पंजाब से, तो कई बार बोल रहे हैं कि जो आज का दिन है जहां पे प्रधानमंत्री जा रहे हैं हरियाणा में, पंजाब में, चंडीगढ़ में, तो कई लोग खासतौर पर विपक्षी पार्टियां देख रही हैं उसे इलेक्शन से जोड़ते हुए, पर अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। और हाइड्रोजन ट्रेन अपने आप में, क्योंकि अगर हम बात करें इसमें कोई किसी तरह का प्रदूषण नहीं है, जो हाइड्रोजन है उससे वेपर्स आएंगे, तो यानी कोई भी पोल्यूशन बाहर नहीं आएगा। अभी प्रधानमंत्री मोदी किसी वक्त भी पहुंच सकते हैं जहां पे हम इस वक्त खड़े हैं। आपको बता दें हम इस वक्त मीडिया सेंटर में हैं और यहां पर बीएसएनएल की कनेक्टिविटी लगाई गई है सारे कंप्यूटर्स में ताकि कनेक्टिविटी बनती रहे। तो कनेक्शन एक ऐसी चीज है जहां से सब कुछ शुरू होता है। और अब हम बात कर रहे हैं कि एक नॉर्मल जिस तरह से हम फॉसिल फ्यूल की बात करते, कोयला की बात करते, वो अब पुरानी बातें हो गई है। बिजली संकट जिस तरह से आ रहा है, बिजली भी पुरानी बात होगी। तो अब हाइड्रोजन ट्रेन की बात है, वहां से हम बात कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। इसके अलावा अगर हम बात करें मेडिकल कॉलेजेस हैं भिवानी में, नरनौल में, इसके अलावा सिख म्यूजियम है कुरुक्षेत्र में। तो एक बड़ा सौगात लेकर आए हैं प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन देश के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हाइड्रोजन ट्रेन, और ये कोई बड़ी सिटी में नहीं आए हैं। जींद और सोनीपत दो ऐसे एरियाज हैं जिन्हें कनेक्ट किया गया है, और भाजपा के नेताओं का कहना है कि ये स्मॉल टाइम किसान हैं, फार्मर्स हैं, उनको इससे काफी किफायती, काफी इससे जिस तरह से उनका पैसा पहले खर्चा हो रहा था, अब एक कनेक्टिविटी जो बनेगी और यहाँ से सस्टेनेबल डेवलपमेंट और किफायती, ये दोनों ही चीजें हैं जो एक साथ जुड़कर आती हैं। और जिस तरह से हमने देखा कि स्कूल के बच्चे झंडे लेके खड़े हुए थे, और प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से एक बड़ी सौगात देशवासियों के लिए, हरियाणा वासियों के लिए ये अब दी गई है।
0: और एक नई शुरुआत है। एक और आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी, और यहाँ पर बड़ा जरूरी सवाल हो जाता है ये पूछना कमल जीत, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से ही कहते आए हैं आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत। तो उनका जो सपना है, ये जो विजन है, इस दिशा में इसे महत्वपूर्ण कदम कहा जा सकता है, क्योंकि ये जो ट्रेन है, बताया जा रहा है कि इसे डिजाइन भी भारत में किया गया है और भारत में ही इसे बनाया भी गया है।
1: मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, यही एक दो शब्द हैं जो कि बहुत अहम हो जाते हैं, क्योंकि इसी वजह से काफी समय लगा है, क्योंकि ये प्रपोजल काफी समय से था, लेकिन इसे पटरी पे उतारना, इसको सही तरीके से संचालित करना, क्योंकि जब हाइड्रोजन के जो सेल प्रोजेक्ट है वो लगाए जाते हैं तो उससे गर्मी भी पैदा होती है और आग लगने की पूरी इसमें स्कोप रहता है। तो वहां पे सेफ्टी मेजर्स को करने के लिए कि किस तरह से हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करते हुए ये पूरी ट्रेन चलाई जाए, और खासतौर पर जो इसके वेपर्स हैं वो अब वापस एनवायरमेंट में जाते हैं, इससे कोई पोल्यूशन नहीं होता और ये अपने आप में सस्टेनेबल डेवलपमेंट रहता है। तो रेलवे के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, और खासतौर पर जैसे हम कह रहे हैं कि कनेक्टिविटी के लिए अहम है। और आपको बता दें हमने देखा है कि किस दशा में जैसे वंदे भारत है, आज स्लीपर ट्रेन हम देख रहे हैं किस तरह से जलंधर से वाराणसी भी कनेक्ट की जाएगी। तो लगातार भारत अपने आप से कदम बढ़ाकर, और आपको बता दें कि रेलवे अपने आप में सबसे बड़ी एम्प्लॉयमेंट का केंद्र बनी हुई है आज तक, और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह आती है वहां पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना अहम हो जाता है। और इसी वजह से जो हाइड्रोजन का पावर प्लांट है वो भी जींद में लगाया गया है, और इसके तहत हम देखेंगे कि देश भर में इस तरह के प्रोजेक्ट्स अब आएंगे, और यहाँ पे जो सफलता का स्तंभ है एक कायम किया गया है जो कि जिसकी शुरुआत जींद से की गई है।
0: बिल्कुल कमल जी, तो और जैसे कि बताया जा रहा है कि 2600 यात्री इसमें बैठ सकते हैं, और काफी लंबी ये ट्रेन है। अगर बाकी देशों से अगर हम तुलना करें तो उनके पास इतनी लंबी ट्रेन नहीं है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। और जैसे आपने बताया कि जो हमारे कन्वेंशनल लोकोमोटिव्स थे, यानी इलेक्ट्रिसिटी से चलना या फिर ईंधन से चलना, डीजल से चलना, अब ये तो पुरानी बात हो गई है, अब तो हाइड्रोजन की बात यहां पर हो रही है। लेकिन उसके साथ ही जैसे आपने बताया कि बहुत ज्यादा ज्वलनशील होती है तो लीक होने का खतरा भी होता है, क्या सुरक्षा के मेजर्स लिए गए हैं?
1: देखिए, ये जब ट्रायल हो रहा था तभी ये सारी चीजें देखी गई थी, और क्योंकि जिस तरह से हमारी जनसंख्या है, 2600 लोग एक साथ बैठेंगे, तो वहां पे कोशिश ये की गई है कि सारे सेफ्टी मेजर्स इसको फैक्टर इन किया जाएगा, और ये एक तरह से अगर बोला जाए अग्नि परीक्षा भी है रेलवेज के लिए, और यहाँ पे पूरा ध्यान दिया गया है ताकि एकदम कूल डाउन किया जाए, क्योंकि हाइड्रोजन के आने से जिस तरह से टेम्परेचर्स अप हो जाते हैं, तो कूलिंग फैसिलिटी वो भी रखी गई है। और यहाँ पर जो बात आ रही है वो यही है कि दो बार ट्रेन आवाजाही करेगी जींद से सोनीपत, और 2600 लोग एक बार में बैठ सकेंगे, 10 कोचेस हैं, और बात करें साथ में इंजन भी है, और 11 इसमें कुल मिला के स्टॉप्स हैं, और तकरीबन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की इस रफ्तार पे चलेगी, यानी 2.5 घंटे का सफर है वो ये ट्रेन तय करेगी। तो अपने आप में मुकाम हासिल जरूर किया गया है और इसी वजह से पूरी देश की नजरें इस वक्त जींद पर बनी हुई है। और जिस तरह से आप देख रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी ने इसे हरी झंडी दी है, छोटे बच्चे मुस्कुराते हुए झंडा फहराते हुए नजर जरूर आए हैं, लेकिन अपने आप में सिर्फ यही एक चरम सीमा नहीं है रेलवे के लिए। अब इस तरह की जो सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स हैं वो देश भर में खड़े करने हैं, वो बहुत अहम हो जाता है।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए कमल जी। तो देखिए भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कैसी है, इसमें क्या खासियत है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता पीयूष मिश्रा ने, यहाँ पे देखिए।
2: ट्रेन जो है वो सबसे शक्तिशाली फ्यूल यानी हाइड्रोजन फ्यूल पर चलने वाली ट्रेन है। अंदर ये जो इसका इंजन है उसकी तस्वीर हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और ये देखिए इसके अंदर हाइड्रोजन है। यहाँ पर साफ लिखा भी हुआ है हाइड्रोजन, नो स्मोकिंग, नो ओपन फ्लेम्स यहाँ पर है। और साथ साथ वार्निंग भी दी गई है क्योंकि पूरी ट्रेन में जो है हाइड्रोजन भरा हुआ है। इस ट्रेन का नाम है तो ये हाइड्रोजन पर चलने वाली, लेकिन इस ट्रेन का नाम है नमो ग्रीन रेल, यानी कि दुनिया की पहली नमो ग्रीन रेल जो जींद से लेकर सोनीपत तक चलने वाली है। और इसके ठीक बाहर यहाँ पर लिखा भी हुआ है H2 जीरो एमिशन, यानी कि किसी भी तरह का कोई भी जो हानिकारक पदार्थ है जो पॉल्यूशन क्रिएट कर सकता है उसके बारे में कुछ भी वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये पूरी की पूरी ट्रेन है जो इंजन है ये

0: काफी उत्साह है। क्या नाम हुआ मैम आपका?
1: सर मेरा नाम श्रीमती सुनीता रानोली है। मैं हाइड्रोजन ट्रेन में पहली बार सफर कर रही हूँ, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और भारत देश ऐसा देश है जो कई देशों को पीछे छोड़कर पहली हाइड्रोजन ट्रेन बिना कार्बन छोड़े, बिना किसी पोल्यूशन के चल रही है। तो मैं इस चीज को लेकर बहुत खुश हूँ और मेरे साथ मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं।
0: अच्छा, बच्चे भी आए हुए हैं। आप लोगों को कैसा लग रहा है इस ट्रेन में चढ़के?
2: हम बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि हमारे इंडिया में ये ट्रेन चल रही है एंड वी आर वेरी हैप्पी टुडे।
0: अच्छा, अजीन से सोनीपत तक आप जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे? सोनीपत जाएंगे, बीच में जाएंगे?
1: जिस नहीं सर, सोनीपत तक का सफर करेंगे।
0: अच्छा, सफर करेंगे। आप चाहेंगे कि और भी जगह पूरे हरियाणा में अलग अलग जगह पर ये ट्रेन चले?
1: हाँ सर, मैं बिल्कुल चाहूंगी कि पोल्यूशन मुक्त हो,
2: पूरे इंडिया में चले,
0: पूरे इंडिया में चले हर जगह हाइड्रोजन ट्रेन। जो है वो कहीं ना कहीं मांग भी है। जो यात्री इस ट्रेन में पहले यात्री हैं जो सफर करने जा रहे हैं, तो आप देखिए कि कैसे तैयारियां यहां पर पूरी कर ली गई है। हाइड्रोजन ट्रेन की तैयारी पूरी हो गई है। आगे पीछे जो है वो सिलेंडर लगाए गए हैं। लगभग दो हाइड्रोजन सिलेंडर से युक्त जो ट्रेन है वो यहाँ पर लगाई गई है। दो बड़े बड़े इंजन्स लगाए गए हैं और आठ बीच में जो ट्रेलर का कार है वो लगाए गए हैं।
3: तो हरियाणा के जींद से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत हुई है। इसमें सफर करने वाले लोगों का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं।
4: मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी जींद का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मोदी जी ने हमारे जींद को चूज किया और फर्स्ट ट्रेन यहाँ से चल रही है। यहाँ का रेलवे स्टेशन हमने पहले पुराने भी देखे हुए हैं, उसके आज सब कुछ चेंज हो गया।
5: आज हम जो इस ट्रेन में बैठे और देख रहे बगैर एसी के, बिल्कुल क्रॉस वेंटिलेशन है इसके अंदर। और ये हिंदुस्तान की पहली ट्रेन जो है जींद से या सोनीपत के बीच में 89 किलोमीटर का सफर तय करेगी। और जींद के लिए नहीं, पूरे हरियाणा के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए ये पूरे गर्व की बात है। और इसका जो है क्रेडिट जो है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है।
6: और पहले का स्टेशन और आज के स्टेशन में कितना अंतर है। ये प्लेटफार्म हमारे जो लो लेवल के हुआ करते थे, चढ़ने में भी बड़ी दिक्कत हुआ करती थी। अब ये हमारे हाई लेवल रेल मतलब डिब्बे के बराबर के वो बन गए हैं प्लेटफार्म, तो हमें बहुत सहूलियत दी है। ये स्टेशन की हालात देख रहे हैं, कितने शेड लग गए, कितना एफओबी बना है, बहुत चौड़ा 12 मीटर का एफओबी बना है, एक्सकलेटर लगा है, लिफ्ट लगी है। तो सभी को इतनी सहूलियत दे दी हमारे जींद को, प्रधानमंत्री का हम धन्यवाद करते हैं।
7: जींद वासियों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जींद पे इतनी बड़ी ट्रेन, हालांकि एशिया की सबसे लॉन्गेस्ट और सबसे स्ट्रांगेस्ट ट्रेन है, इसका हर एक पार्ट इंडिया में बनाया गया है, इसका डिजाइन लखनऊ में हुआ है और ये चेन्नई में बनाई गई है। इतनी लोकल डिस्ट्रिक्ट में इतनी बड़ी ट्रेन का एक लॉन्च हुआ है, ये बहुत बड़ी गर्व की बात है।
3: तो भारत को मिल गई है सबसे पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जींद स्टेशन से आज इसे हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया है। इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। हमारी नजर इस बड़ी खबर पर लगातार बनी हुई है।

0: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy nonstop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार

0: रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
6: गर्मी जब 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच जाए तो राहत की हर कोशिश किसी वरदान से कम नहीं होती। चीन में इन दिनों भीषण गर्मी लोगों के साथ साथ जानवरों की भी परीक्षा ले रही है, लेकिन इस चुनौती से निपटने के लिए अलग अलग शहरों में अनोखे इंतजाम किए गए हैं। क्या ये हैं इंतजाम, आइए देखते हैं।
7: कोई बर्फ की सिल्लियों के बीच रखे ताजा फलों के मजे ले रहा है, तो कोई बढ़ती तपिश में राहत की फुहार का आनंद ले रहा है, और तो और कहीं तो गलियारा ही गर्मी में सर्दी वाला एहसास करा रहा है। दरअसल चीन के कई हिस्सों में गर्मी की तपिश बढ़ी है, तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। ऐसे में लोगों और बेजुबानों को राहत देने के नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। अब जरा चीन के चोंगकिंग शहर के मशहूर शान चेंग लेन को देखिए। यहाँ 400 मीटर लंबा मिस्टिंग सिस्टम शुरू किया गया है। इस रास्ते पर हवा में बेहद महीन पानी के फुहारे फैल जाती हैं, जो पल भर में गर्मी में कूल कूल एहसास कराती हैं। सिर्फ इंसानों ही नहीं बल्कि हेफेई के चिड़ियाघर में जानवरों के लिए भी गर्मी से बचाव के खास इंतजाम किए गए हैं। यहाँ रेड पांडा को बर्फ की सिल्ली पर रखे ठंडे फल परोसे जा रहे हैं। बंदर बर्फ के बड़े टुकड़ों के साथ खेलते हुए गर्मी से राहत पा रहे हैं, तो वहीं हाथियों के लिए ठंडे पानी की फुहार चलाई जा रही है। इतना ही नहीं, जानवरों को ताजे फल और सब्जियां भी दी जा रही हैं, ताकि उनके शरीर में पानी की कमी न हो और वो इस भीषण गर्मी का सामना आसानी से कर सकें। कुल मिलाकर चाहे ऐतिहासिक गलियों में घूमते सैलानी हो या फिर पिंजरे के भीतर मजे लेते ये बेजुबान, गर्मी से निपटने के इन अनोखे और ठंडे ठंडे तरीकों ने सबका दिल जीत लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
8: What's up, baby? It's Bretzky, and I'm here to tell you that SpinQuest.com is giving out free sweeps coins. All you gotta do is purchase a $10 coin pack, and guess what? They're gonna give you the coins from a $30 coin pack. That lets you play all your favorite games like Blackjack, Wanted, Dead or Wild, and we're talking real cash prizes, baby. SpinQuest.com.
9: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
10: You're listening Uninterrupted. With TuneIn Premium, enjoy commercial-free news and music, plus ad-free ESPN Radio, and fewer ads across other stations. Whether you're listening for the latest news or the next big game, never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go, so you can hear more. Ready to upgrade your listening? Upgrade to TuneIn Premium now.
11: Good news today.
12: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
13: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में बनते बिगड़ते रिश्ते। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements, Sage University, transforming your passion into profession।
6: देश को मिली पहली हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात, प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा के जींद में हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, जींद से सोनीपत के बीच में दौड़ेगी ये रेल। पुरी में श्री जगन्नाथ रथ यात्रा का आज दूसरा दिन, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मौसी के घर पहुंचेंगे भगवान, लाखों देश विदेश के श्रद्धालु मौजूद। तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में अय्या वैकुंदर अवतार पति पर ध्वजारोहण के साथ आदि उत्सव की शुरुआत, विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना, केले के पत्ते से सजाया गया मंदिर को। पंढरपुर में भगवान विट्ठल के चरणों में एक भक्त ने दान की सोने की पादुकाएं, 57 लाख बताई जा रही है इसकी कीमत। प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू, सावन में महिलाएं साड़ी सूट और पुरुष धोती कुर्ता पहनकर करेंगे रुद्राभिषेक, जीन्स टी शर्ट में गर्भगृह में नो एंट्री। दमन से नई दिल्ली के लिए सीधी हवाई सेवा का शुभारंभ, पर्यटन व्यापार निवेश और विकास को मिलेगी नई गति, आने वाले दिनों में कई शहरों में शुरू हुई थी सेवाएं। झारखंड के पतरातू लेक रिजॉर्ट को मिली नई पर्यटन पहचान, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट और म्यूजिकल फाउंटेन का हुआ उद्घाटन, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम
6: सज गई है खबरों की प्लेट, तैयार है गुड न्यूज का मेन्यू। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शगुफ्ता साहिंदे। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ पूजा पराशर। खबरों की रफ्तार वही है, बस परिभाषा नहीं है, आपको ट्रेंडिंग न्यूज से लेकर हर अहम खबर दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 अच्छी खबरों के साथ।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ रहा।
6: देश को आज मिला पहली हाइड्रोजन ट्रेन रेल सेवा का तोहफा, हरियाणा के जींद में प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, पॉल्यूशन फ्री और पर्यावरण के अनुकूल है हाइड्रोजन ट्रेन, मल्टी लेयर सेफ्टी सिस्टम होने से हाइड्रोजन लीक आग धुएं का पता लगाने में सक्षम। दिल्ली गाजियाबाद सीमा पर बनाया जा रहा भव्य प्रवेश द्वार, धनुष बाण से सुसज्जित श्री राम सेतु प्रवेश द्वार से संस्कृति और आस्था का संदेश। झारखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहल, पतरातू डैम में पर्यटकों के लिए 2 फ्लोटिंग रेस्टोरेंट और म्यूजिकल फाउंटेन की सौगात। पतरातू की झील में मयूराक्षी और कोयल फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का शुभारंभ, प्राकृतिक सौंदर्य के बीच में करीब 60 मिनट की राइड का आनंद ले सकेंगे पर्यटक। शाम के समय बदलेगा पतरातू झील का नजारा, म्यूजिकल लेजर फाउंटेन शो बढ़ाएगा पर्यटकों का रोमांच।
15: पुरी में रथ यात्रा उत्सव का आज दूसरा दिन, भगवान का रथ खींचने उमड़े लाखों श्रद्धालु। आज मौसी के घर गुंडीचा मंदिर पहुंचेंगे भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा के साथ गुंडीचा मंदिर महाप्रभु का माना जाता है जन्म स्थान। सात दिनों तक भगवान जगन्नाथ गुंडीचा मंदिर में ही रहेंगे, इस दौरान गुंडीचा मंदिर में विशेष पूजा दर्शन और कई पवित्र अनुष्ठान होंगे। 7 दिन गुंडीचा मंदिर में विश्राम करने के बाद भगवान अपने मुख्य मंदिर के लिए वापसी की यात्रा शुरू करेंगे, इसे बहुधा यात्रा भी कहा जाता है। पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा में आस्था के साथ साथ मानवीय संवेदनाओं की तस्वीरें भी दिखी। मानव श्रृंखला बनाकर एम्बुलेंस को दिया गया रास्ता।
16: ओडिशा के अंगुल में धूमधाम से निकाली गई भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। जिंदल नगर के देवभूमि मंदिर में हजारों भक्तों कर्मचारियों के साथ मिलकर रथ को खींचा गया। सांसद उद्योगपति नवीन जिंदल ने निभाई छेरा पहरा की रस्म। देशवासियों को इस पावन पर्व की दी शुभकामनाएं। आस्था उल्लास के बीच में थूथुकुड़ी में आदि उत्सव की भव्य शुरुआत। पारंपरिक अनुष्ठानों के बीच में खोले गए मंदिर के कपाट। थूथुकुड़ी में आदि उत्सव के पहले दिन भक्तों ने बड़ी संख्या में दर्शन किए। धार्मिक आयोजनों से माहौल भक्तिमय हुआ। संगम नगरी प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए लागू हुए ड्रेस कोड। महिलाएं साड़ी और सूट, वहीं पुरुष धोती कुर्ता पहनकर करेंगे रुद्राभिषेक।
15: जम्मू कश्मीर के उदयपुर से सामने आई प्राकृतिक सौंदर्य की मनमोहक तस्वीरें। हरियाली, पहाड़ और बादलों का संगम मोह रहा है पर्यटकों का मन। उदयपुर की खूबसूरत वादियों और प्राकृतिक नजारे पर्यटकों को कर रहे हैं आकर्षित। सुबह की इन तस्वीरों को ने किया मंत्रमुग्ध। दमन से नई दिल्ली के लिए सीधी हवाई सेवा का शुभारंभ। पर्यटन, व्यापार, निवेश और विकास को मिलेगी नई गति। आने वाले दिनों में कई शहरों में शुरू होगी सेवाएं। बलरामपुर की लखपति दीदी दिलमती की बदली तकदीर। दरअसल सुअर पालन और खेती के दम पर दिलमती बनी आत्मनिर्भर। दिलमती ने कृषि और पशुपालन से रचा सफलता का नया अध्याय। बढ़ी आमदनी और परिवार की आर्थिक स्थिति हुई मजबूत।
16: प्रभास की पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म फौजी का पोस्टर रिलीज डेट आउट हो गई है। 3 दिसंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी ये फिल्म। कार्तिक की नागजिला में हुई एक्टर रवि किशन की एंट्री। इच्छाधारी नाग के साथ मिलकर लड़ाएगा कॉमेडी का तड़का। बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ कमाने के बाद ओटीटी पर आ रही समंथा रूद प्रभु की हिट तेलुगु एक्शन कॉमेडी फिल्म मां इंटी बगारम कल से जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी। के ड्रामा के शौकीनों के लिए द ईस्ट पैलेस हो रही रिलीज। चो सियोंग वू नाम के एक राजा की कहानी है ये डार्क फैंटेसी के ड्रामा। नेटफ्लिक्स पर आज से स्ट्रीम होगी 23,000 लाइव्स जुगेंड वेटेड की सच्ची कहानी से इंस्पायर है ये फिल्म।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
15: 25 अच्छी खबरों के बाद खबरें विस्तार से आपके लिए खबरों की प्लेट तैयार है।
16: तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की ट्रेंडिंग न्यूज के साथ।
15: पुरी में श्री जगन्नाथ रथ यात्रा का आज दूसरा दिन। भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मौसी के घर पहुंचेंगे भगवान। लाखों देशी विदेशी श्रद्धालु शामिल।
16: देश में पहली हाइड्रोजन ट्रेन सेवा की सौगात। प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जींद में हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। जींद से सोनीपत के बीच में दौड़ेगी ये रेल।
15: दमन से नई दिल्ली के लिए सीधी हवाई सेवा का शुभारंभ। पर्यटन, व्यापार, निवेश और विकास को मिलेगी नई गति। आने वाले दिनों में कई शहरों में शुरू होगी सेवाएं।
16: मेडिकल में दाखिले के लिए नीट यूजी 2026 का रिजल्ट जारी। 720 में से 715 अंक हासिल कर पंजाब के आरएन गुप्ता हरियाणा के पंशुल बंसल बने टॉपर।
15: इसके साथ क्रिस्टोफर नोलन की मोस्ट अवेटेड फिल्म द ओडिसी रिलीज हुई। मुंबई से दिल्ली तक फिल्म के शोज हाउसफुल।
16: और चलिए लंच टाइम की शुरुआत कर लेते हैं फिल्मी सफर के साथ। और सबसे पहले बात करते हैं इस साल की मोस्ट अवेटेड माइथोलॉजिकल फिल्म रामायण की, जिसका ट्रेलर 24 जुलाई को अमेरिका के सैन डिएगो में ग्लोबल लेवल पर लॉन्च किया जाएगा।
15: उससे पहले सीबीएफसी ने रामायण के 2 ट्रेलर भी पास कर दिए हैं। ट्रेलर की लंबाई 4 मिनट से ज्यादा है और बॉलीवुड का दूसरा सबसे लंबा ट्रेलर है। आखिर क्या है रामायण के मेकर्स की प्लानिंग, देखिए।

0: भारतीय सिनेमा के सबसे ग्रैंड प्रोजेक्ट्स में से एक रामायण, जिसने रिलीज से अरसे पहले ही सुर्खियां बटोरना शुरू कर दिया है। देश से लेकर विदेश तक, आम जन से लेकर खास तक, समाज के हर तबके, हर वर्ग तक रामायण पहुंच सके, इसके लिए मेकर से खास प्लानिंग के तहत काम कर रहे हैं। मेकर्स की प्लानिंग का एक अहम हिस्सा है कि इसके ट्रेलर की लॉन्चिंग 24 जुलाई को अमेरिका के सैन डिएगो कॉमिक कॉन 2026 के बड़े मंच पर ट्रेलर पेश किया जाएगा, जिसे सेंसर बोर्ड ने बिना किसी काट छाट के पास कर दिया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी CBFC ने रामायण के दो ट्रेलर पास किए हैं। दोनों ही ट्रेलर को यू रेटिंग के साथ पास किया गया है। एक का नाम ट्रेलर रामायण 3D है तो दूसरे का नाम थिएट्रिकल ट्रेलर रामायण 3D है। दोनों का रन टाइम अलग अलग है। एक ट्रेलर 4 मिनट 15 सेकंड का है जबकि दूसरा 4 मिनट का है। दोनों ही ट्रेलर 3D वर्जन में है। सवाल है कि रामायण के दो ट्रेलर रिलीज करने के पीछे मेकर्स की मंशा क्या है। इसका सीधा जवाब है कि एक ट्रेलर थिएटर्स में प्ले किया जाएगा और दूसरा डिजिटल रिलीज होगा। मतलब ये कि 4 मिनट वाला थिएट्रिकल ट्रेलर रामायण 3D थिएटर में दिखाया जाएगा और 4 मिनट 15 सेकंड वाला ट्रेलर रामायण 3D डिजिटल रिलीज होगा। गौर करने वाली बात ये भी है कि रामायण का ये ट्रेलर बॉलीवुड के सबसे लंबे फिल्म ट्रेलर्स में से एक होगा। हिंदी फिल्मों में सबसे लंबे ट्रेलर का रिकॉर्ड अजय देवगन स्टारर सिंघम अगेन के नाम पर है। सिंघम अगेन के ट्रेलर की लंबाई 4 मिनट 58 सेकंड की थी। अब 4 मिनट 15 सेकंड की लंबाई के साथ रामायण पार्ट 1 दूसरे नंबर पर है। अक्षय कुमार की सूर्यवंशी भी इतनी ही लंबी थी। सूर्यवंशी ऐसी पहली बॉलीवुड मूवी थी जिसका ट्रेलर 4 मिनट से अधिक का था। चौथे नंबर पर वेलकम टू द जंगल है जिसका ट्रेलर 4 मिनट 10 सेकंड लंबा था। पांचवें स्थान पर रणवीर सिंह की धुरंधर है जिसके ट्रेलर की लंबाई 4 मिनट 8 सेकंड थी। इंतजार अब रामायण के ट्रेलर का है, जिसे भारतीय समय के हिसाब से 24 जुलाई को अमेरिका के सैन डिएगो में होने वाले कॉमिक कॉन इवेंट में लॉन्च किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस इवेंट में रामायण के दो अहम किरदार निभाने वाले रणबीर कपूर और यश के साथ डायरेक्टर नितेश तिवारी और प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा भी मौजूद होंगे। ये पूरा इवेंट बॉलरूम 20 में होगा, जो सैन डिएगो कन्वेंशन सेंटर का दूसरा सबसे बड़ा वेन्यू है और इसमें 4,800 लोगों के बैठने की क्षमता है। रामायण को ग्रैंड स्केल पर बनाया जा रहा है तो दोनों पार्ट को मिलाकर बजट 4,000 करोड़ से भी ज्यादा का बताया जा रहा है। जाहिर है ऐसे में मेकर्स रामायण के प्रमोशन को लेकर कोई कमी नहीं रखना चाहते। रिपोर्ट्स के मुताबिक सैन डिएगो के बाद मेकर्स की योजना रामायण के स्पेशल प्रीव्यू को सितंबर में होने वाले टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाने की है। इतना ही नहीं, आमिर खान की लगान को चीन में मिली बम्पर कामयाबी को देखते हुए मेकर्स की प्लानिंग रामायण को भी वहां रिलीज और प्रमोट करने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: देखिए, कुछ लव स्टोरी मिसाल बन जाती हैं और कुछ इतिहास। ऐसी ही एक बॉर्डर पार की प्यार की कहानी लेकर पर्दे पर शहनाज गिल और पंजाबी एक्टर जय रंधावा लौट रहे हैं, जिसमें एक पंजाबी लड़के और पाकिस्तानी लड़की की दर्द भरी प्रेम कहानी को दिखाया जाएगा।
2: और देखिए, हम बात कर रहे हैं शहनाज गिल की अपकमिंग फिल्म जिसका नाम है इश्कनामा। इसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है। फिल्म में क्या कुछ खास होगा, इश्कनामा के स्टारकास्ट के साथ बातचीत की है हमारे सहयोगी प्रांजलि ने।
3: पहली बार मैंने पाकिस्तान मेरी किस्मत लेके गई, पर उस तो बाद तेती बार मैं सिर्फ ओदे ली गया।
4: किधर हो गया फिरदा तितरा, सीधा दस कौन हो तुम?
5: आपके साथ मैं हूँ प्रांजलि सेठी। जब मोहब्बतें सरहदों से टकराती हैं तो एक कहानी नहीं बल्कि एक दास्तां का जन्म होता है, और ऐसी ही एक दास्तां हमारे सामने आज लेके आ रहे हैं दो कलाकार, शहनाज और जय। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पे।
6: थैंक यू।
5: पहले तो आप दोनों को मेरी सत श्रीकाल। कैसे हैं आप लोग?
6: बढ़िया
7: बढ़िया बढ़िया।
5: बहुत ही सुंदर ट्रेलर है शहनाज और जय, बहुत ही प्यारा ट्रेलर। एक रियल लाइफ स्टोरी आप हमारे सामने लेके आ रहे हैं। शहनाज, आपका कैरेक्टर जो है नसीमा का, एक स्ट्रॉन्ग बोल्ड कैरेक्टर, एंड आई एम वेरी श्योर इमोशनली एग्जॉस्टिंग भी आपके लिए बहुत होगा। आप रियल लाइफ से कितना कनेक्ट करती हैं, आपके इस अपने रियल लाइफ पर्सनैलिटी को और उस कैरेक्टर को?
6: मेरी रियल लाइफ पर्सनैलिटी में भी बहुत सारे, मेरे अंदर बहुत सारे इमोशंस हैं। मैं हंसती हूँ, रोती हूँ, सब इमोशंस हैं जो आप भी फील करते
5: हैं।
6: तो मैं ज़्यादातर खुश रहने की कोशिश करती हूँ। सो ये तो हो गया मेरा
5: द रियल लाइफ।
6: हाँ बट ये जो कैरेक्टर है वो थोड़ा नसीमा के अकॉर्डिंगली प्ले करना पड़ा, बिकॉज मैं तो देखो बॉर्डर पार नहीं करूंगी।
5: नहीं करोगे?
6: बिल्कुल नहीं करूंगी, क्योंकि मैं बॉर्डर तक पहुंचूंगी। तो मैं आई प्रेफर कि मैं इधर ही अपने हिंदुस्तान में ही प्यार करूं जिसको भी करूं, क्योंकि इधर भी बहुत प्यार मिल सकता है. तो ये फर्क है.
5: जय आपके लिए. हमने आपके एक्शन फिल्म हमेशा एक्शन हीरो के तौर पे आपको देखा है. इसमें आप एक पोएट हैं, अपनी जिनसे आप प्यार करते हैं किसी भी हद तक जा सकते हैं उनके लिए, तो ये एक्सपीरियंस कैसा रहा है कि एक्शन रोल से लेके पोएट है, ये वाला एक्सपीरियंस कैसा रहा है, कि इमेज ब्रेक आपकी हुई कि नहीं हुई?
7: इमेज ब्रेक तो देखो ऑडियंस नहीं करनी है, वो देखेंगे उस प्यार करेंगे फिर पता चलता है बंदे को. लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि थोड़ा पिछली फिल्म से अलग हो, कुछ नया हो जिसमें आप डाइव इन करो, आपको कुछ नया एक्सपीरियंस हो. तो सारी टीम मेरे लिए बहुत ही अच्छी थी. आई बी ब्लेस्ड कि सब लोग जितने भी इस फिल्म में हैं, खैराबा जी, शहनाज, अंजुम, सौरभ, सेवा, सब इतने अच्छे एक्टर थे और ऐसे लोगों के बीच में काम करके मैंने खुद ने बहुत सीखा.
5: जैसे हमने आपकी हमेशा एक बबली इमेज देखी है ना, इसमें काफी इंटेंस रोल आपका लग रहा है.
6: तो इंटेंस रोल मैंने करना था, मुझे मौका मिला तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से मैं कर पाई वो रोल. तो मुझे अपने आप पे बिलीव हुआ अंदर से कि तुम कुछ भी कर सकती हो मैडम.
5: नसीमा लाहौर की है, अब
6: नहीं सॉरी
5: सियालकोट की है. अब आपको इस फिल्म कैरेक्टर के लिए आई एम वेरी श्योर डायलेक्ट पे काम करना होगा या आपने किया होगा, एक मुस्लिम लुक के लिए आपने काम किया होगा, कितनी रिसर्च करी है ना उस तहजीब
6: को हमने करने के लिए. ज्यादा लैंग्वेज उधर की नहीं पकड़ी है.
5: ओके.
6: वो हम सब ने डिसाइड किया था.
7: हाँ. म्यूचुअल.
6: सो हमने बहुत नॉर्मल उसको रखा है. बट हमने जो सॉफ्टनेस है वो जरूर डाली है और कुछ कुछ वर्ड जो
5: तहजीब जैसे हम बोलते हैं उसेरा की जरूरी
6: जैसे है, नाटक हो गया तो हाँ. ड्रामा कर दिया, ये सब चीजें मतलब हमने जो पाकिस्तानी हाँ जो है उधर का लैंग्वेज थोड़ा थोड़ा टच दिया.
5: ये दोनों से सवाल है मेरा. आज मैं जेंजी ट्विस्ट देती हूँ आपकी फिल्म को. आपने टर्म्स सुने होंगे, अलग अलग तरह के शिप्स आ गए हैं, सिचुएशनशिप, नैनोशिप, ब्रेड क्रम्पिंग, क्या नहीं है, पर आपकी फिल्म सिखाती है कमिटमेंट.
7: yes.
5: जो 40 साल से एक इंसान वेट कर रहा है. आपको लगता है कि आपकी फिल्म हमारी जेंजी को, ऑडियंस को कमिटमेंट सिखा पाएगी, कि जो आज की डेट में मुझे लगता है बीइंग अ जेंजी इट्स मिसिंग?
6: आई थिंक आजकल के जेंजी ज्यादा लॉयल है.
5: लॉयल है आपको ऐसे लगता है?
6: yes.
7: और समझदार भी,
6: बहुत ज्यादा मैच्योर है.
5: बट आई थिंक सो कि यहाँ पे एक दिन अगर टेक्स्ट ना आए तो भाई ब्लॉक हो जाते हैं लोग. यहाँ पे इतने वर्ड्स इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया उन्होंने प्यार को.
6: मुझे लगता है कि इट्स नॉट ओनली अबाउट जेन ज़ी. ये वैसे ही हम नॉर्मल लाइफ में बात करें अगर कि ब्लॉक ये हाँ. एक दिन मैसेज नहीं किया, वो ना ईगो होता है.
5: हाँ जी,
6: वो तुम्हारा ईगो है, वो ईगो सब में होती है. तो वो ईगो क्लैश जब हो जाती है ना तो फिर जेंजी क्या, आजकल की जनरेशन क्या, सब एक जैसे ही है.
5: अगर हमारी ऑडियंस को इस फिल्म से रिलेटेड आखिरी मैसेज देना हो तो आप क्या देंगे?
6: ऑडियंस को ये मैसेज देंगे कि अभी 24 जुलाई को हमारी फिल्म आ रही है, प्लीज सब देख के आओ. एंड मुझे लगता है ये फिल्म जेंजी ज्यादा
5: रिलेट कर पाएंगे
6: क्योंकि इट्स रियल स्टोरी
5: है.
6: बहुत
5: बहुत सारी आपको विशेज आपकी फिल्म के लिए. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए.
2: और चलिए अब बात वेब सीरीज रक्तांचल सीजन 3 की कर लेते हैं, जो ओटीटी पर एक दिन पहले रिलीज हुई. रक्तांचल के पहले 2 सीजन को दर्शकों से अच्छी खासी तारीफ मिली थी. कहानी का फोकस इस बार इलाके पर कब्जे से कहीं ज्यादा निजी दुश्मनी पर है. वसीम खान और विजय सिंह के बीच बदले की कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई जारी है. और क्या कुछ खास है इस नए सीजन में, चलिए आपको दिखाते हैं.
8: मैं हूं आपके साथ रोहित सिंह और आज हम पटना में मौजूद हैं. और आज पटना में एक कुछ विशेष मेहमान यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं. इस वक्त पटना में प्रमोशन के लिए रक्तांचल 3 की पूरी टीम जो है हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं. और आपको हम सब का परिचय एक एक करके करवाते हैं. सबसे महत्वपूर्ण किरदार इस वेब सीरीज के 2 शख्स, निकितिन धीर, इनको आपने देखा होगा रक्तांचल 1-2 और अब सीजन 3 में भी, और साथ ही लोकल बिहारी बॉय क्रांति प्रकाश झा, और इस सीरीज के डायरेक्टर रिदम श्रीवास्तव, जो कि पटना के नहीं है, लखनऊ के हैं. रिदम
9: लखनऊ के हैं लेकिन हाँ,
8: लेकिन मिजाज तो यूपी बिहार वाला ही है.
9: बहुत थोड़ा सा ही फर्क है. आए थे क्या फर्क है, मतलब है तो सब देश का हिस्सा, सब सेम है ऑलमोस्ट।
8: चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो दो मुख्य किरदार हैं इस वेब सीरीज के, निकितिन से सबसे पहले बात करेंगे क्योंकि पहली बार निकितिन आप पटना में आए हुए हैं। पहले बताइए क्या लग रहा है, क्या माहौल लग रहा है आपको? पहले
9: बहुत अच्छा, ये देखिए जैसे ऋतम ने कहा हमारा ही देश है, आप जहां भी जाएंगे आपको रस तो देश का ही आएगा। और नॉर्थ की खासियत होती है कि एक अलग किस्म की मेहमान नवाजी होती है, तो बहुत अच्छा, बहुत वार्म्थ, बहुत बढ़िया। और यहाँ पहली बार आए हैं और बहुत जल्द फिर आएंगे और फिर आएंगे। तो हाँ, यहाँ पहली मर्तबा हम क्रांति के साथ आए तो एक अलग किस्म का दर्शन भी हो रहा है इस जगह का। और यहाँ हम आप सभी से आशीर्वाद लेने आए हैं हमारे नए शो के लिए, नया सीजन जो आने वाला है। और बस यही आशा है कि आप लोगों को सीजन 3 भी अच्छा लगे, जैसे आप लोगों ने रक्तांचल के पहले सीजन को आशीर्वाद दिया है, इस सीजन को भी आशीर्वाद दें।
8: चलिए बिहारी बॉय क्रांति प्रकाश झा
10: जी सर,
8: निकितिन को लेके आए हैं पटना, घुमाया उमाया है कि नहीं इनको जरा?
10: नहीं, हम लेके नहीं आए, हम माध्यम है इनको पटना के। मैं कह सकता हूँ कि पटना ने इनको बुलाया दोनों को, और दोनों पहली बार यहाँ पे आए हैं, रीतम सर और निकितिन हमारे। तो जब ये प्लान बन रहा था हमारी टीम का, तो मैंने पूछा कि मैं दोनों से पूछ के बताता हूँ, एंड हिम बींग सो ग्रेशियस और रीतम सर भी, कि मैंने एक बार कहा कि भाई पटना चलना है यार एक बार, तो बोला ब्रो चलते हैं। तो अभी यहाँ से पटना साहिब लेके जाएंगे, और सबसे जो अच्छा दोनों को लग रहा है, दोनों मेहमानों को, हमारे मेहमान नहीं कहेंगे अपने घर के लोग हैं, तो ये है कि यहाँ का जो वार्म्थ है ना हम बिहारियों का, तो वो इन दोनों को इतना अच्छा लग रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। और पुनः रवा सबसे आग्रह बा, विनती बा, भोजपुरी चली ना
8: एकदम
10: खड़का के चली, MX प्लेयर पर बाय प्राइम वीडियो रवा सब देखी, एकरा बार बार के प्यार दें, कहेगी अपन घर के बाद बा।
8: निकितिन जैसे बता रहे थे कि इनका रोल और ज्यादा लीथल और ब्रूटल होने वाला है, विजय सिंह का क्या होने वाला है? विजय सिंह भी एकदम खूंखार इस बार।
10: देखिए हम लोगों की, अगर मैं आपको कहूं तो जब किरदार आपके यहाँ रहते हैं ना तभी किरदार याद भी रहते हैं, तो अगर विजय यहाँ रहेगा तो वसीम भी यहाँ रहेगा, और वसीम यहाँ रहेगा तो विजय भी यहाँ रहेगा, तभी तो मोगैम्बो को आज तक लोग याद करते हैं, गब्बर को आज तक लोग याद करते हैं। तो वैसे ही वसीम खान और विजय सिंह को लोग याद करेंगे क्योंकि दोनों टक्कर गए।
8: अब पूर्वांचल पे पूरा ये जो कहानी है वो बेस्ड है, तो पटना आना तो बनता ही था।
10: पटना आना तो बनता, पटना घर है, पटना क्या है कि घर है, माता जी यहाँ पे रहती हैं, तो मैं कल घर भी ले गया था तो बड़ा अच्छा लगा था। और मेरे लिए बहुत ही, ये एक कह सकते हैं कि बहुत ही आत्मिक जो पल है कि मैं पटना दोनों को ला सका और दोनों को इतना अच्छा लग रहा है। तो
8: लिट्टी चोखा खिलाया कि नहीं? बड़ा फेमस
10: जी, मटन भी खिलाया
8: है,
10: चंपारण मटन।
8: लिट्टी चोखा खाया आपने?
9: जी मैंने खाया, हमने पहले भी खाया हुआ है लेकिन यहाँ का भी हमने टेस्ट किया, और चंपारण मटन भी खाया, बहुत बढ़िया। तो हाँ, आई थिंक हमारे देश की जो है खाना पीना सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, आप कहीं भी जाएं जब तक आपका खाना पीना ना हो आपको लगता नहीं कि हम उस जगह जाकर आए हैं। तो आई थिंक हर जगह का एक अपना फ्लेवर है और यहाँ का भी हम फ्लेवर एंजॉय कर रहे हैं।
8: डायरेक्टर से बात करते हैं, निकितिन सॉरी माफ कीजिएगा, रितम हमारे साथ हैं। रितम, ये बहुत कम होता है कि एक वेब सीरीज जो चलती है 1, 2, 3 जो भी आए, डायरेक्टर जो है लगभग अमूमन देखा जाता है वो बदल जाते हैं, कैसे आपने ये कंटिन्यूटी मेंटेन किया कि आप ही इसको फॉलोअप कर रहे हैं Part 1 से बाद 2 सीजन से 3?
11: आई थिंक इसके लिए मैं बस ग्रेटफुल हूँ और थैंकफुल हूँ, मैं यही बोलूँगा। और सब लोगों के साथ एक सामंजस्य अच्छा बना है, क्रू और कास्ट के साथ बहुत अच्छा सामंजस्य बना हुआ है, और कहानी अच्छी लगती गई लोगों को, तो शायद प्लेटफॉर्म ने भी सोचा होगा या बाकी लोगों ने, कि जो जो जो प्रैक्टिकल बात है जो सोचा होगा कि इस कारवां को इसी तरह चलने देते हैं आई थिंक, और ये ज़्यादा वर्क कर रहा, और क्योंकि वर्क करता रहा इसलिए शायद ये था। और थोड़ा सा मेरा एंथुजियाज्म भी उसमें था कि ये जो कहानी थी ये थी लगभग 3 से 4 सीजन की।
8: तो ये थे रक्तांचल 3 की पूरी टीम, जो मेन कैरेक्टर्स हैं, पटना आए हुए हैं और इस वेब सीरीज को लेकर काफ़ी ये लोग उत्साहित भी हैं, और जाहिर सी बात है पटना में है तो सभी किरदार जो बाहर के रहने वाले हैं, मुंबई से आए हैं, वो लोग यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना।
1: रवा आपको लेकर चलते हैं आस्था के सफर पर, बात जगन्नाथ रथ यात्रा की।

0: देखिए, कहते हैं भगवान हर जगह है, लेकिन पूरी नगरी में साल में एक बार ऐसा होता है जब स्वयं महाप्रभु अपने भक्तों के बीच आने के लिए मंदिर से बाहर निकलते हैं और पूरी नगरी जय जगन्नाथ के उद्घोष के साथ गूंज उठती है। ये नजारा इतना भव्य, दिव्य और अलौकिक होता है कि हर श्रद्धालु की आंखें श्रद्धा से नम हो जाती है।
1: और देखिए, हर दिल में प्रभु जगन्नाथ के प्रति अटूट विश्वास और भक्ति का भाव उमड़ पड़ता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं भगवान अपने भक्तों को दर्शन देकर उनके जीवन को धन्य कर रहे हों। इसी आस्था की अद्भुत तस्वीर इन दिनों पूरी नगरी में देखने को मिल रही है, क्योंकि महाप्रभु अपने मौसी के घर के लिए प्रस्थान कर चुके हैं और आज जगन्नाथ प्रभु अपनी मौसी के घर पहुंच जाएंगे और वहां भक्तों को दर्शन देंगे।

0: चलिए रथ यात्रा की तस्वीर तो आपको सुबह से हम दिखा ही रहे हैं। रात्रि विश्राम के बाद रथ यात्रा एक बार फिर से चल पड़ी है। आज भक्त रथ को खींचते हुए गुंडिचा मंदिर तक जाएंगे। इस मंदिर को भगवान जगन्नाथ की मौसी का घर मानते हैं।
1: ये रथ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, इसका बहुत गहरा आध्यात्मिक महत्व है। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। आध्यात्मिक नजरिए से रथ को मानव शरीर, रथ के स्वामी को आत्मा और रथ की डोर को भक्ति और समर्पण का प्रतीक माना गया है। ये महापर्व भक्त और भगवान के अद्भुत मिलन का भी साक्षी माना जाता है।
0: और देखिए, यही वजह है कि बड़ी संख्या में हर साल श्रद्धालु इस पावन परंपरा के साक्षी बनने पूरी जगन्नाथ धाम आते हैं। 9 दिन के रथ महोत्सव को हर तस्वीर, इन 9 दिनों के उत्सव की हर तस्वीर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। GNT पर रथ यात्रा की 200 घंटे की ये महा कवरेज लगातार जारी है।

0: जहाँ तक नजर फेरिए रंग ही रंग है, भक्ति का, प्रेम का। जगत के पालनहार स्वयं चलकर आए हैं भक्तों के बीच, उन लोगों के बीच जिनके आस्था के डोर महाप्रभु से बंधी है। पुरी की पवित्र भूमि उत्सव के रंग में रंगी है। एक बार फिर आस्था और भक्ति का सागर उमड़ा है। जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और पूरा पुरी शहर भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की भव्य रथ यात्रा का गवाह बन गया है। भगवान जगन्नाथ अपने भाई और बहन के साथ रथ पर सवार होकर गुंडिचा मंदिर के लिए रवाना हो चुके हैं। गुंडिचा मंदिर, जिसे महाप्रभु जगन्नाथ का जन्म स्थान माना जाता है, पुरी में जगन्नाथ मंदिर के निर्माण से जुड़ी कहानी बताती है कि भगवान की मूर्ति का निर्माण गुंडिचा मंदिर में ही शुरू हुआ था और गुंडिचा, जिसे भगवान की मौसी का दर्जा मिला है, वो और कोई नहीं भगवान के परम भक्त राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी थी, जिन्होंने सबसे पहले भगवान के इस रूप के दर्शन किए थे और उन्हें देखते ही उनका वात्सल्य भाव उमड़ आया था। कहानी बताती है कि जब से रानी गुंडिचा ने भगवान की अधूरी मूर्तियों को देखा था, वे उनसे संतान की तरह स्नेह करने लगी थीं। और जब भगवान उनके महल को छोड़ श्री मंदिर के गर्भगृह में स्थापित हो रहे थे, तो उन्हें लग रहा था मानो उनका पुत्र ही उनसे दूर जा रहा हो। कहते हैं रानी गुंडिचा के वात्सल्य भाव और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें वरदान दिया था कि वे हर वर्ष आषाढ़ माह में अपने भाई और बहन के साथ उनसे मिलने जरूर आएंगे और 7 दिनों के लिए पुत्र की तरह उनके साथ रहेंगे। अपना यही वचन निभाने महाप्रभु हर साल गुंडिचा मंदिर आते हैं। इस साल भी भाई बहन के साथ भगवान जगन्नाथ मौसी के घर जा रहे हैं। सात दिनों तक भगवान जगन्नाथ गुंडिचा मंदिर में ही रहेंगे। इस दौरान गुंडिचा मंदिर में विशेष पूजा, दर्शन और कई पवित्र अनुष्ठान होंगे। 7 दिनों तक भगवान अपने भक्तों को यहीं दर्शन देंगे। गुंडिचा मंदिर में भगवान के इस प्रवास को अड़ाप्पा मंडप भी कहा जाता है और यहां उनके दर्शन को अड़ाप्पा मंडप दर्शन कहा जाता है। इसमें मुख्य मंदिर की तुलना में गुंडिचा मंदिर में भक्तों को भगवान के बहुत करीब जाने का मौका मिलता है। 5वें दिन हेरा पंचमी का उत्सव मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन माता लक्ष्मी, जो मुख्य मंदिर में छूट जाती हैं, भगवान को खोजने गुंडिचा मंदिर आती हैं और गुस्से में अपने पति भगवान जगन्नाथ के रथ का एक हिस्सा तोड़कर वापस लौट जाती हैं। इन 7 दिनों में भगवान को मीठा चावल, दाल, पीठा और कई पारंपरिक उड़िया व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। सात दिन गुंडिचा मंदिर में विश्राम करने के बाद भगवान अपने मुख्य मंदिर के लिए वापसी की यात्रा शुरू करेंगे, जिसे बहुधा यात्रा भी कहा जाता है। उनकी ये वापसी यात्रा भी उतनी ही भव्य होगी जितनी भव्य है गुंडिचा मंदिर के लिए प्रस्थान की यात्रा। रथ फिर से हजारों भक्तों द्वारा खींचे जाएंगे और पुरी की गलियां एक बार फिर जयकारों से गूंज उठेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: अब आपको लेकर चलते हैं उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर, जहां हर दिन हजारों श्रद्धालु भगवान महाकाल के दर्शन के साथ अपनी श्रद्धा भी अर्पित करते हैं। कोई नगदी दान करता है तो कोई सोना चांदी और कीमती आभूषण चढ़ाता है। हाल के दिनों में कुछ मंदिरों में दान और चढ़ावे को लेकर उठे विवादों के बीच महाकाल मंदिर की दान व्यवस्था भी चर्चा में है
2: और यहाँ चढ़ावे में आई हर चीज का न सिर्फ रिकॉर्ड रखा जाता है बल्कि उसकी गुणवत्ता की जांच भी की जाती है। मंदिर समिति के अनुसार चढ़ावे में मिले सोने और चांदी के आभूषणों की जांच के लिए सोनारों की 3 सदस्यों वाली विशेषज्ञ टीम है। ये टीम सोने चांदी की शुद्धता, उसकी गुणवत्ता और कैरेट की बारीकी से जांच करती है। जांच पूरी होने के बाद उसका लिखित रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। दानदाता को मंदिर समिति की ओर से रसीद भी जारी की जाती है, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहती है।

0: उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल के दर्शन के लिए रोजाना देश विदेश से हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं। भक्त यहां दिल खोलकर सोना, चांदी, नकदी और बहुमूल्य आभूषण दान करते हैं। हाल ही में कुछ मंदिरों में चढ़ावे और दान की राशि को लेकर सामने आए विवादों के बीच महाकाल मंदिर की सुरक्षा और दान व्यवस्था एक आदर्श मिसाल बनकर उभरी है। मंदिर प्रशासन का दावा है कि यहां आने वाले चढ़ावे की एक एक चीज का रिकॉर्ड रखा जाता है और उसकी गुणवत्ता की वैज्ञानिक जांच की जाती है।
1: बाबा महाकाल की सेवा में जो सेवार्थी लगे हुए हैं उसमें सीसीटीवी कैमरे की निगरानी के साथ 3 लोगों की समितियां भी है। स्वर्ण का समाज के पारखी जोरिया है, वो पूरा जांच करने के बाद ही और प्रत्येक चढ़ावे की राशि का पूर्णता पारदर्शिता के साथ में सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में जांच होती है। बाबा महाकाल का आशीर्वाद पूरी सृष्टि के ऊपर तो है, उज्जैन वासियों के ऊपर भी है और उसी के कारण प्रतिदिन मेरे बाबा के दर्शन करने लगभग 2.25 लाख दर्शनार्थी प्रतिदिन दर्शन करने के लिए आते हैं। उज्जैन के निवासी उनकी सेवा के लिए, उज्जैन के सेवक उनकी सेवा के लिए तत्पर रहते हैं और पूरी पारदर्शिता के साथ में आने पाई का पूर्णता व्यवस्थित हिसाब होता है।
0: मंदिर समिति के अनुसार चढ़ावे में मिले सोने और चांदी के आभूषणों की जांच के लिए सुनारों की 3 सदस्यों वाली विशेषज्ञ टीम है। ये टीम सोने चांदी की शुद्धता, गुणवत्ता और कैरेट की बारीकी से जांच करती है। जांच पूरी होने के बाद उसका लिखित रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। दानदाता को मंदिर समिति की ओर से रसीद भी जारी की जाती है जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहती है।
2: देखिए, मैं 2020-21 से मैं यहाँ मूल्यांकन समिति में काम कर रहा हूँ और मुझे ये देखने में आया है कि कोई छोटी मोटी धातु कभी कोई गलती से कोई चढ़ा जाता है वही आती है, लेकिन जो बड़े मुकुट होते हैं, कुंडल होते हैं, तो वो तो सब असली पाए जाते हैं और जो नकली होते हैं वो या तो कोई ऐसे फ्रॉड जेलर्स के यहाँ से परचेसिंग कर लेता है श्रद्धालु तो आ जाती है, या फिर अन्य कोई खोया पाया विभाग से जो प्राप्त होती है, जैसे किसी का गुम हो जाता है, कोई नकली पायल पहन के आया, कोई नकली सामग्री रहती है, तो इस प्रकार से कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है नकली का। वहाँ पर जितने भी धातु आती है लगभग असली ही आती है।
0: मंदिर में दान से जुड़ी हर गतिविधि सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होती है। आभूषणों की जांच के दौरान मंदिर समिति के प्रभारी, संबंधित कर्मचारी और डिप्टी कलेक्टर स्तर का अधिकारी मौजूद रहते हैं। जांच पूरी होने के बाद दान की चीजों को मंदिर के सुरक्षित खजाने यानी स्ट्रॉन्ग रूम में जमा कर दिया जाता है। साथ ही उसका पूरा विवरण कंप्यूटर और सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है। दान व्यवस्था को और आधुनिक और सुरक्षित बनाने के लिए जल्द ही मंदिर में हाईटेक मशीन लगाई जाएगी। इस मशीन की मदद से सोने और चांदी के असली या नकली होने की तुरंत पहचान की जा सकेगी। इसके बावजूद सुनारों की विशेषज्ञ टीम पहले की तरह जांच का कार्य जारी रखेगी।
3: स्वर्ण और जो रजत के आभूषण हैं, उनका ऑन द स्पॉट जो है वो हम उसको वेरीफाई कर सके, उसमें शुद्धता का परसेंट ऑन द स्पॉट नाप चुके। इसके लिए हम जो है अभी वर्तमान में जो बहुत ही अच्छी कैरेटोमीटर जिसको मशीन बोलते हैं वो लेकर आ रहे हैं, जो हमारे बड़े बड़े जो शोरूम वगैरह है सुनार इसका प्रयोग करते हैं। इसके माध्यम से हम तत्कालिक रूप से जो है वो सोने चांदी का टंच पता कर सकते हैं कि जो दान में दी गई सामग्री है वो खरी है कि खोटी है।
0: हाल के दिनों में कुछ मंदिरों में दान को लेकर सामने आए विवादों के बीच महाकाल मंदिर प्रशासन यह आश्वस्त करता है कि यहाँ पारदर्शिता और सुरक्षा के सभी मानकों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। भक्तों की आस्था और उनके द्वारा दिए गए दान का यहाँ पूरा सम्मान किया जाता है और पूरी सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ, गुड न्यूज टुडे।
4: चलिए इसी के साथ यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए आस्था की सबसे बड़ी पद यात्रा की तैयारी।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
4: देश को मिली पहली हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात, प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा के जींद में हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। जींद से सोनीपत के बीच में दौड़ेगी ये रेल।
7: पुरी में श्री जगन्नाथ रथ यात्रा का आज दूसरा दिन, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मौसी के घर पहुंचेंगे भगवान, लाखों देशी विदेशी श्रद्धालु मौजूद।
4: बद्रीनाथ धाम यात्रा ने रचा नया इतिहास, अब तक 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन पूजन, जुलाई के मध्य में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा।
7: तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में आया वैकुंदर अवतार पति पर ध्वजारोहण के साथ आदि उत्सव की शुरुआत, विधि विधान से श्रद्धालुओं ने की पूजा, केले के पत्ते से सजाया गया मंदिर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
7: सावन का महीना बस आने को है, इस साल 30 जुलाई से कांवड़ मेले की शुरुआत होने जा रही है, तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं, प्रशासन 25 जुलाई तक सभी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है।
4: इसी बीच पहाड़ों में सावन की शुरुआत हो गई है, इसके साथ ही शिवालयों में भी भक्तों के पहुंचने का सिलसिला शुरू है।
0: आस्था की सबसे बड़ी पदयात्रा की तैयारी शुरू हो गई है, सावन का पवित्र महीना बसाने को है। भोलेनाथ के भक्तों का उत्साह चरम पर है, क्योंकि ये महीना महादेव के भक्तों के लिए खास है। सावन में लाखों शिव भक्त कांवड़ यात्रा पर निकलते हैं और गंगा जल लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। इस बार 30 जुलाई से कांवड़ यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है, ऐसे में भक्तों के साथ साथ प्रशासन भी अपनी तैयारियों में जुट गया है। कांवड़ यात्रा के लिए रूट तय किए जा रहे हैं, कांवड़ियों की सुरक्षा और सुविधा के लिहाज से तमाम इंतजामों पर भी काम शुरू हो गया है। हरिद्वार हो कि मेरठ, कांवड़ मेला की तैयारियां जोरों पर है, चाक चौबंद व्यवस्था के लिए प्रशासन मुस्तैद है, अधिकारी मौके पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं।
8: कांवड़ मेला 2026 के लिए सभी तैयारियां हमारी युद्ध स्तर पर चल रही हैं और इन तैयारियों में जितने भी हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, सभी के द्वारा कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में मॉनसून भी चल रहा है और साथ ही कुंभ मेले और एनएच के कार्य भी चल रहे हैं, उन कार्यों के साथ साथ कांवड़ मेला को संपन्न कराने के लिए सभी के साथ बैठक कर ली गई है, कार्य योजना बना ली गई है। किसी भी तरह की दुर्घटना को रोकने के लिए जरूरी है कि एक एडवाइजरी जारी की जाए और जिला प्रशासन हरिद्वार और राज्य सरकार के द्वारा एक एडवाइजरी जारी की जाएगी।
0: कांवड़ यात्रा भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और समर्पण की अनूठी मिसाल है। मान्यता है कि श्रद्धा और नियमों के साथ गंगा जल लाकर भगवान शिव का अभिषेक करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। बहरहाल मैदानी इलाकों में भले ही अभी सावन के आने का इंतजार हो, पहाड़ों में सावन की शुरुआत हो चुकी है और महादेव के मंदिरों में भक्तों की भीड़ का उमड़ना भी। असल में उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में सावन का आरंभ चंद्रमास के अनुसार होता है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में सूर्यमास के आधार पर सावन मनाया जाता है। ऐसे में यहाँ गुरुवार से ही सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है और सावन के पहले दिन यहाँ के आदि केदार मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। आदि केदार को भगवान केदारनाथ का ही स्वरूप माना जाता है। आदि केदार के अलावा जोशीमठ के पौराणिक ज्योतिर्मठ महादेव मंदिर और गोपेश्वर के ऐतिहासिक गोपीनाथ मंदिर में भी सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल और चमोली से कमल नैन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: अब बात फीफा वर्ल्ड कप की, जिसका फाइनल मुकाबले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लेकिन स्पेन और अर्जेंटीना के इस मुकाबले से पहले एक तस्वीर वायरल है। ये तस्वीर 2007 की है, जिसमें मेसी एक बच्चे को नहलाते हुए नजर आते हैं। ये बच्चा आज बड़ा हो चुका है और स्पेन की तरफ से मेसी की टीम से भिड़ने को तैयार है।
0: 2007 में खींची गई तस्वीर फुटबॉल के इतिहास का सबसे बड़ा इत्तेफाक बन गई है। ये तस्वीर एक चैरिटी कैलेंडर के लिए खींची गई थी। तब स्पेन के प्लेयर लामिन यमाल का परिवार लॉटरी जीतकर मेसी के साथ फोटोशूट तक पहुंचा था। उस दिन कैमरे में सिर्फ एक तस्वीर ही नहीं, बल्कि फुटबॉल की दो पीढ़ियों का भविष्य कैद हो गया था। तब लामिन यमाल के पिता ने उसी तस्वीर के साथ लिखा था, दो लीजेंड्स की शुरुआत। आज वही तस्वीर हकीकत बन चुकी है। फाइनल मुकाबले में लामिन यमाल उसी खिलाड़ी के सामने हैं जिसने 20 साल पहले उन्हें नहलाया था और जिसे वो अपना आदर्श मानते हैं। आज दुनिया स्पेन के लामिन यमाल को फुटबॉल का चमकता सितारा मानती है, लेकिन इस चमक के पीछे संघर्ष का एक लंबा अंधेरा सफर छिपा है। यमाल का बचपन तंगी और अभावों के बीच बीता। उनके माता पिता बेहतर भविष्य की उम्मीद लेकर गिनी से स्पेन के कैटालोनिया पहुंचे थे, लेकिन नई जिंदगी की शुरुआत आसान नहीं थी। आर्थिक हालात इतने कठिन थे कि कई बार उनके पिता को पेट भरने के लिए सड़कों और फुटपाथों पर खाना तलाशना पड़ता था। यमाल को आज भी लगता है कि असली दबाव फुटबॉल के मैदान पर नहीं बल्कि वो था जो उनके माता पिता ने हर दिन झेला। इस तस्वीर के इत्तेफाक के आगे अब सवाल महज वर्ल्ड कप ट्रॉफी का नहीं है, सवाल है कि क्या स्पेन के लामिन यमाल अपने आदर्श मेसी को हराकर नई विरासत की शुरुआत करेंगे, या फिर मेसी एक और विश्व कप जीतकर अपनी महान कहानी में एक और सुनहरा अध्याय जोड़ेंगे। दुनिया भर के फुटबॉल फैंस इसी सवाल का जवाब तलाश रहे हैं। अगर फाइनल में पहुंची दोनों टीमों की बात करें तो स्पेन पूरे टूर्नामेंट की सबसे संतुलित टीम बनकर उभरी है, जबकि फाइनल में पहुंची अर्जेंटीना का सफर टूर्नामेंट से आसान नहीं रहा है। अर्जेंटीना के हर एक जीत में मेसी का फैक्टर काम आया है। अब सबकी नजरें फाइनल पर हैं और माना जा रहा है कि फुटबॉल की ये महाटक्कर दिल थाम देने वाली साबित होगी। फाइनल सिर्फ खिलाड़ियों की वजह से ही खास नहीं होगा, दुनिया की निगाहें वीआईपी गैलरी पर भी होंगी, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस महामुकाबले को स्टेडियम में बैठकर देखेंगे। व्हाइट हाउस इसकी पुष्टि कर चुका है। मैच से पहले ट्रंप न्यूयॉर्क स्थित ट्रंप टावर में फीफा रिसेप्शन में भी शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
9: चलिए अब बात कर लेते हैं रोहित शर्मा की, जिनके रिटायरमेंट की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। पूछा जा रहा है कि क्या लॉर्ड्स में खेला जाने वाला तीसरा वनडे रोहित शर्मा के वनडे करियर का आखिरी मैच साबित होगा। दरअसल खबर आ रही है कि रोहित शर्मा के रिटायरमेंट की तैयारियां अब पूरी हो चुकी हैं।
10: हालांकि देखिए, इस बात की पक्के तौर पर तो पुष्टि नहीं हुई, लेकिन तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा गया कि सिलेक्टर के फ्यूचर प्लान में रोहित का नाम नहीं है।

लॉर्ड्स का ऐतिहासिक मैदान, जहां कई बड़े बड़े इतिहास और रिकॉर्ड बने। लेकिन इस बार कहानी सिर्फ जीत हार की नहीं है, बल्कि एक ऐसे सितारे की है

0: हालांकि कोई भी रोहित शर्मा से संन्यास लेने के लिए नहीं कह सकता। बीसीसीआई के सूत्रों का कहना है अंतिम फैसला सिर्फ और सिर्फ रोहित शर्मा का होगा, लेकिन संकेत यही है कि अब भारतीय क्रिकेट भविष्य की तरफ कदम बढ़ाना चाहता है और उनके फ्यूचर प्लान में फिलहाल तो रोहित दूर दूर तक नहीं है। रोहित के हाले प्रदर्शन भी अब बहस का हिस्सा बन चुका है। पिछले 8 वनडे पारियों में सिर्फ उनके बल्ले से महज 241 रन निकले हैं, औसत 30 के करीब है और जिसमें महज एक अर्धशतक है। यही नहीं, इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में भी रोहित केवल 47 गेंदों पर 26 रन ही जोड़ पाए, यानी जिस बल्ले से कभी गेंदबाज कांपते थे वो बल्ला इन दिनों खामोश है। दिलचस्प बात ये भी है कि विराट कोहली को लेकर तस्वीर अलग है। टीम मैनेजमेंट मानता है विराट 2027 वर्ल्ड कप की योजना का हिस्सा हैं, लेकिन रोहित के भविष्य पर अब सवाल है। अगर लॉर्ड्स सचमुच रोहित शर्मा का आखिरी इंटरनेशनल मैच बना तो सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक दौर का विदा होना होगा। जहां तक रोहित के फैंस का सवाल है, वो अपने चहेते खिलाड़ी को और खेलते देखना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: चलिए इसी के साथ लंच टाइम में रुकेंगे, यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए जीएनटी।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: At Byers Volkswagen, we've been family owned since 1897, built on trust, driven by innovation, and now buying your next Volkswagen is easier than ever at columbusvw.com. Shop online, customize your deal, and finalize everything from home. Just stop by to pick up the keys. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
4: Hey, it's Stormy, and previously on my show, Riley Green shared that he's motivated to make more music as he sees his audience size grow while he's on tour.
5: You know, when I started out, I was very southeastern. You know, I was down there in Alabama, and I've gone to a lot of places that I've never been. It's kind of motivation for me to keep writing music and keep traveling because there's country music fans everywhere.
4: Listen to the Stormy Warren Show on the Big 615 weekdays 7 a.m. to 1 p.m. Central right here on TuneIn.
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना

0: और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम
3: दुनिया में खुशियां बांटना भी एक खूबसूरत सेवा है। मेक्सिको सिटी की सड़कें इस बात का गवाह बनी। दरअसल यहां पर हर साल जोकर यानी कि क्लाउन अपनी कला के साथ श्रद्धा जताने सड़कों पर निकलते हैं।
4: एक ऐसी यात्रा जिसमें हंसी बांटने वाले कलाकार अपने विश्वास और परंपरा को निभाने के लिए हजारों की संख्या में एक साथ आते हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट।
5: चेहरे पर चटक लाल रंग, बड़ी सी मुस्कान, दिल में श्रद्धा और कदमों में विश्वास, ये कोई सर्कस का मंच नहीं बल्कि आस्था का रंगमंच है। रंग बिरंगे कपड़ों में मैक्सिको सिटी की सड़कों पर जब एक साथ सैकड़ों क्लाउन उतरे तो हर तरफ खुशी, उत्साह और श्रद्धा का अनोखा संगम दिखाई दिया। हर साल की तरह इस बार भी वर्जिन ऑफ ग्वाडालूपा की सालाना यात्रा बड़े ही धूमधाम से निकली। रंग बिरंगी पोशाक में पहुंचे क्लाउन वर्जिन ऑफ ग्वाडालूपा की प्रतिमा और तस्वीरें लेकर मेक्सिको के सबसे बड़े धार्मिक स्थल ग्वाडालूपे बेसिलिका पहुंचे। कलाकारों की इस अनोखी यात्रा में किसी ने करतब दिखाए, किसी ने गेंदों से जुगलबंदी की, तो किसी ने अपनी मासूम अदाओं से बच्चों और बड़ों दोनों के चेहरे पर मुस्कान ला दी। माहौल ऐसा था जहां मनोरंजन और श्रद्धा एक साथ नजर आई।
6: El motivo de la peregrinación es porque se fundó el Club Payasos Mexicanos de Circo en 1979. En el primer año del aniversario se propuso festejarlo con una peregrinación, dando gracias por los favores recibidos durante el año.
5: चर्च की चौखट पर पहुंचते ही पवित्र जल से जब इन मुस्कुराते चेहरों पर आशीर्वाद की बूंदें पड़ी तो इनका विश्वास और मजबूत हुआ, क्योंकि कला जब आस्था से जुड़ जाती है तो हर मुस्कान इबादत बन जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: इसी के साथ इन तमाम खबरों के बाद लंच टाइम में आज के लिए बस इतना ही।
4: हम दोनों को इजाजत दीजिए, अच्छी और पॉजिटिव खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
7: और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में बनते बिगड़ते रिश्ते। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
8: It's Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
9: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
8: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of the action.
9: They score!
8: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
10: दिल को छू जाती है ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर। जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
12: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है।
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
2: देश को मिली पहली हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात, प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा के जिंद में हरी झंडी दिखाकर सोनीपत के लिए रवाना किया। पुरी में श्री जगन्नाथ रथ यात्रा का दूसरा दिन, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मौसी के घर पहुंचेंगे भगवान। बद्रीनाथ धाम में अब तक 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, जुलाई के मध्य तक दर्शन का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा। तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में आदि उत्सव की शुरुआत, मंदिर में ध्वजारोहण के साथ विधि विधान से श्रद्धालुओं ने की पूजा, केले के पत्ते से सजाया गया मंदिर। पंढरपुर में भगवान विट्ठल के चरणों में एक भक्त ने अर्पित की सोने की पादुकाएं, 57 लाख बताई जा रही है कीमत। प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए नया ड्रेस कोड लागू, सावन में महिलाएं साड़ी सूट और पुरुष धोती कुर्ता पहनकर करेंगे रुद्राभिषेक, जींस टी शर्ट में गर्भगृह में नो एंट्री। आंध्र प्रदेश में अनोखा संयुक्त परिवार, 6 पीढ़ियों के 83 सदस्य एक ही छत के नीचे रहते हैं एक साथ।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जिंद स्टेशन से भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। ये ट्रेन जिंद और सोनीपत के बीच 89 किलोमीटर के रूट पर चलेगी। इस ट्रेन में हाइड्रोजन लीक, गर्मी, आग और धुएं का पत्ता लगाने वाले लगाए गए हैं कई सुरक्षा सिस्टम। आम इलेक्ट्रिक ट्रेनों की तरह ये ट्रेन ऊपर लगी बिजली की लाइनों से पावर नहीं लेती। जिंद सोनीपत रूट पर 11 स्टेशन पर रुकेगी हाइड्रोजन ट्रेन, करीब 2 घंटे का होगा जिंद से सोनीपत का सफर। पचहत्तर किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगी हाइड्रोजन ट्रेन, जबकि इसकी डिजाइन स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस ट्रेन में लगे हैं 10 डब्बे, करीब 2600 यात्री कर सकेंगे सफर। दुनिया में सबसे बड़ी हाइड्रोजन ट्रेन में हुई शुमार। आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी, 25,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की देंगे सौगात। जिंद के एकलव्य स्टेडियम में करीब 14,700 करोड़ के विकास कार्यों का पीएम मोदी ने किया शिलान्यास और लोकार्पण, रैली को भी संबोधित किया। जिन दौरे के बाद चंडीगढ़ पीजीआई जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, 1250 करोड़ की हेल्थ केयर से जुड़ी अहम सुविधाओं का करेंगे उद्घाटन। जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन का भी पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 125 करोड़ रुपए में हुआ पुनर्विकास। अमृतसर से वाराणसी के बीच शुरू होगी नई ट्रेन सेवा, संत रविदास एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे प्रधानमंत्री। पुरी में रथ यात्रा उत्सव का दूसरा दिन, भगवान का रथ खींचने उमड़े लाखों श्रद्धालु। आज मौसी के घर गुंडीचा मंदिर पहुंचेंगे भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा भी साथ। गुंडीचा मंदिर महाप्रभु का माना जाता है जन्म स्थान। 7 दिनों तक भगवान जगन्नाथ गुंडीचा मंदिर में ही रहेंगे, इस दौरान गुंडीचा मंदिर में विशेष पूजा, दर्शन और कई पवित्र अनुष्ठान होंगे। सात दिन गुंडीचा मंदिर में विश्वास करने के बाद भगवान अपने मुख्य मंदिर के लिए वापसी की यात्रा शुरू करेंगे। इसे बहुधा यात्रा कहा जाता है। पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा में आस्था के साथ साथ मानवीय संवेदनाओं की भी दिखी तस्वीर। मानव श्रृंखला बनाकर एम्बुलेंस को दिया गया रास्ता। दिल्ली के द्वारका इस्कॉन मंदिर में भव्य जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगवान को 11,000 किलो आमों का भोग किया गया अर्पित। पारंपरिक आरती के बाद श्रद्धालुओं के बीच महाप्रसाद के रूप में बांटा गया आम। भगवान जगन्नाथ को एक विशाल मैंगो फेस्टिवल में 108 विभिन्न किस्मों वाले आमों का लगा भोग। भक्तों ने पूरे उत्साह के साथ निकाली रथ यात्रा। रथ यात्रा में हजारों की संख्या में भक्त हुए शामिल। भक्तों की सुविधाओं के लिए जगह जगह लगाए गए स्टॉल। रथ यात्रा कल शाम 4 बजे मंदिर परिसर से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से गुजरी, जहां भक्तों ने उत्साह से रथ की रस्सियां खींची। इस रथ यात्रा में दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद भी हुए शामिल। भगवान की आस्था में रमे नजर आए आशीष सूद। ओडिशा के अंगुल में धूमधाम से निकाली गई भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। जिंदल नगर के देवभूमि मंदिर में हजारों भक्तों और कर्मचारियों के साथ मिलकर रथ खींचा। सांसद और उद्योगपति नवीन जिंदल ने निभाई छेरा पहरा की रस्म। देशवासियों को इस पावन पर्व की शुभकामनाएं दी। आस्था और उल्लास के बीच थूथुकुड़ी में आदि उत्सव की भव्य शुरुआत। पारंपरिक अनुष्ठानों के बीच खोले गए मंदिर के पट। थूथुकुड़ी में आदि उत्सव के पहले दिन भक्तों ने बड़ी संख्या में दर्शन किए। धार्मिक आयोजन से माहौल भक्तिमय हो गया। संगम नगरी प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए लागू हुए ड्रेस कोड। महिलाएं साड़ी या सूट, वहीं पुरुष धोती कुर्ता पहनकर करेंगे रुद्राभिषेक। दिल्ली एनसीआर में 18 जुलाई तक रहेगा गर्मी उमस वाला मौसम। 20 जुलाई से हो सकती है बारिश। हिमाचल प्रदेश में 19 जुलाई से भारी बारिश का अनुमान। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। कोलकाता समेत आसपास के जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। 19 जुलाई तक भारी बारिश का अनुमान। नेपाल में लगातार हो रही बारिश से बिहार के सीमावर्ती इलाकों की नदियों में बड़ा जलस्तर। प्रशासन अलर्ट मोड पर। बाढ़ की संभावना के चलते एनडीआरएफ की टीमों को भी जगह जगह तैनात कर दिया गया। नदियों के तटबंध की सुरक्षा को लेकर भी निर्देश जारी। जम्मू कश्मीर के उदयपुर से सामने आई प्राकृतिक सौंदर्य की मनमोहक तस्वीरें। हरियाली, पहाड़ और बादलों का संगम पर्यटकों का मन मोह रहा है। उदयपुर की खूबसूरत वादियां और प्राकृतिक नजारे पर्यटकों को कर रहे हैं आकर्षित। सुबह की इन तस्वीरों ने किया मंत्रमुग्ध। दमन से नई दिल्ली के लिए सीधी हवाई सेवा का शुभारंभ। पर्यटन, व्यापार, निवेश और विकास को मिलेगी नई गति। आने वाले दिनों में कई शहरों में शुरू होगी सेवाएं। बलरामपुर की लखपति दीदी दिलमती की बदली तकदीर। सुअर पालन और खेती के दम पर दिलमती बनी आत्मनिर्भर। दिलमती ने कृषि और पशुपालन से रचा सफलता का नया अध्याय। बड़ी आमदनी और परिवार की आर्थिक स्थिति हुई मजबूत। महाराष्ट्र के अकोला में 7 सितंबर को निकलेगी भव्य राजराजेश्वर कावड़ यात्रा। 50 वर्षों से चली आ रही है परंपरा। सावन में कावड़ यात्रा के लिए की जा रही है तैयारी। पूर्णा नदी से पवित्र जल लेकर भगवान श्री राजराजेश्वर का जलाभिषेक करते हैं हजारों श्रद्धालु। अकोला से 20 किलोमीटर दूर है पूर्णा नदी का तट। कावड़ यात्रा मार्ग पर मेडिकल सुविधा समेत इमरजेंसी सेवाओं के पुख्ता इंतजामों पर जोर। बिहार के मुजफ्फरपुर में श्रावणी मेले की तैयारियां तेज, बाबा गरीबनाथ धाम में बैरिगेटिंग और अतिक्रमण हटाने के निर्देश। कावड़ यात्रा मार्ग पर विशेष सफाई अभियान चलेगा, सुरक्षा के लिए सीसीटीवी और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर में तमिलनाडु की 80 साल की महिला श्रद्धालु ने दान किए 3.5 करोड़ रुपए, बेटे की स्मृति में बाबा विश्वनाथ को अर्पित किया चढ़ावा। मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए एनटीए ने जारी किया नीट यूजी 2026 का रिजल्ट, 720 में से 715 अंक हासिल कर पंजाब के आर्यन गुप्ता और हरियाणा के पंशुल बंसल बने संयुक्त टॉपर। श्रीनगर के सुहाने मौसम में बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं पर्यटक, डल लेक में शिकारा राइड का ले रहे हैं आनंद। टू व्हीलर से नैनीताल जाने वाले पर्यटकों पर भी अब लगेगा 100 रुपए एंट्री टैक्स, बाहरी जिलों और राज्यों से आने वाले टू व्हीलर लागू का नया नियम, नया फैसला। जम्मू कश्मीर के डोडा में बारिश के मौसम में तोतों के रंग बिरंगे झुंडों से बड़ी प्रकृति की सुंदरता, नजारा देखने के लिए जमा हो रहे हैं पर्यावरण प्रेमी। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में दुर्गा पूजा की शुरुआत, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सोनार बांग्ला होगी इस बार की थीम। हरिद्वार के विश्वविख्यात मां मनसा देवी मंदिर में शुरू हुई एक नई पहल, अब पॉकेटलेस कपड़ों में नजर आएंगे मंदिर में काम करने वाले सभी कर्मचारी, पुजारी और पंडित। उज्जैन के विश्वविख्यात मंदिर श्री महाकालेश्वर में अब दान में दिए जाने वाले आभूषणों की भी होगी जांच, लगाई जाएगी कैरेट मीटर मशीन। चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध सावलिया सेठ को एक भक्त ने चढ़ाया सोने से निर्मित बांसुरी, 20 लाख बताई जा रही है बांसुरी की कीमत। सावलिया सेठ के दर्शन के लिए उमड़ा आस्था का जनसैलाब, बड़ी संख्या में भक्तों ने किए सावलिया सेठ के दर्शन। खुल गए पवित्र फयूला नारायण मंदिर के कपाट, चमोली जनपद के लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है ये मंदिर। अपनी अनूठी परंपरा के लिए प्रसिद्ध है घने जंगलों के बीच स्थित प्राचीन मंदिर, जहां पुरुष पुजारी के साथ महिला पुजारी भी करती हैं भगवान नारायण की सेवा और श्रृंगार। मंदिर में भगवान चतुर्भुज स्वरूप में नारायण, माता लक्ष्मी, जय विजय, घंटा कर्ण, नंदा सुनंदा सहित अन्य देवताओं की होती है पूजा, ऋषि परंपरा के अनुसार पूजा अर्चना की है मान्यता। सिक्किम में नामची रांकी मेला की रौनक, प्रदेश की सबसे मशहूर परंपराओं में से एक है ये पारंपरिक मेला। इस जश्न में रांकी भूत को प्रतीकात्मक रूप से जलाने से पहले मशाल रैली के लिए इकट्ठा होते हैं सैकड़ों लोग, फसलों को नष्ट करने वाली बुरी शक्ति का प्रतीक माना जाता है रांकी भूत। दिल्ली गाजियाबाद सीमा पर बनाया जा रहा है भव्य प्रवेश द्वार, धनुष बाण से सुसज्जित श्रीराम सेतु प्रवेश द्वार से संस्कृति और आस्था का संदेश। गाजियाबाद में 11 किलोमीटर लंबे हिंडन एलिवेटेड रोड को मिलेगा नया नाम, श्रीराम सेतु नाम से होगी आधिकारिक पहचान। झारखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहल, पतरातू डैम में पर्यटकों के लिए 2 फ्लोटिंग रेस्टोरेंट्स और म्यूजिकल फाउंटेन की सौगात। पतरातू की झील में मयूराक्षी और कोयल फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का शुभारंभ, प्राकृतिक सौंदर्य के बीच करीब 60 मिनट की राइड का आनंद ले सकेंगे पर्यटक। शाम के समय बदलेगा पतरातू झील का नजारा, म्यूजिकल लेजर फाउंटेन शो बढ़ाएगा पर्यटकों का रोमांच। हरिद्वार में कावड़ यात्रा शुरू होने से पहले गढ़वाल कमिश्नर ने यात्रा मार्ग का जायजा लिया, श्रद्धालुओं के लिए यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश के बागपत में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कीचे नलाम अभियान शुरू, स्कूली छात्राओं और कामकाजी महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ाने का मकसद। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत महिलाओं को सुरक्षित महसूस कराने के लिए पहल, कीचे नलाम से 50 मीटर दूरी तक सुनी जा सकती है आवाज। रेल यात्रियों के लिए गुड न्यूज, मऊ से कोलकाता के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, 22 जुलाई से 24 सितंबर तक मिलेगी सुविधा। गुजरात के वडोदरा रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान सामने आई हादसे की तस्वीर, ट्रेन को तुरंत रोककर बचाई गई रेल यात्री की जान।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
3: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में बनते बिगड़ते रिश्ते। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
4: Oh, hey, Watson. Just getting jacked up for the summer with my pull-up routine.
5: No, Buzz. We get jacked up because electric rates often go up during the hot summer months. Good thing people can lock in an affordable electric plan with APG&E.
6: Learn more at APGE.com.
7: You shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने रीनीट यूजी 2026 का परिणाम घोषित कर दिया है। पंजाब के आर्यन गुप्ता ने ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक हासिल किया। उन्होंने 720 में से 715 अंक हासिल किए। पहली परीक्षा में उनके 5 सवाल गलत हो गए थे, लेकिन जब री एग्जाम का मौका मिला तो उन्होंने इसे पूरी तरह से भुनाया। आर्यन ने कैसे की तैयारी और कैसे इस मकाम को हासिल किया, आइए उन्हीं से जानते हैं।
8: कितनी मेहनत की रीनीट में एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए? पहले अटैम्प में भी मेहनत की होगी, दूसरा अटैम्प मिला उसमें कितनी और मेहनत की?
9: ये नहीं था कि ज़्यादा मेहनत करी मैंने, जितनी तैयारी मेरी थर्ड मई को थी उतनी तैयारी मेरी 21 जून को थी। जितना मैंने पहले पढ़ रखा था तब भी, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि मैं ज़्यादा पढ़ लिया 30 दिनों में 40 दिनों में। पहले भी जेई में भी मेरा 99.6% आई थी, ओलंपियाड एनएससी एनएससीपी एनएससीबी में टॉप 10 ऑल इंडिया रैंक आया था। तो बस ये था कि अपने आप से नीट 1 के बाद रीनीट के पहले अपने आप से एक्सपेक्टेशन रखना बंद कर दी थी कि नीट के पहले तो इधर 2 साल की मेहनत है, मुझे तो यही कॉलेज चाहिए, एम्स दिल्ली चाहिए, ऑल इंडिया रैंक 1 चाहिए। इसकी कहीं ना कहीं टेंशन के चक्कर में मेरे 5 क्वेश्चन गलत हो गए थे, 4 क्वेश्चन गलत, 1 क्वेश्चन छोड़ दिया, तो आई वाज स्कोरिंग 696 एंड इट वाज क्वाइट एन ईजी पेपर द फर्स्ट वन। अब सेकेंड पेपर में एक्सपेक्टेशन छोड़ दी कि मुझे नहीं सोचना है क्या कॉलेज चाहिए, और मुझे याद है मैंने अपने आप को इतना फोर्स किया पेपर देते वक्त सोचने के लिए कि यार मैंने घर आके बायो पढ़नी है, कि नॉर्मल मॉक टेस्ट है जो हर दिन देते हैं इंस्टीट्यूट में, वो वैसा ही एक नॉर्मल मॉक टेस्ट है। अपने आप को सोचा ये और फिर पेपर दिया शांति से और अच्छा चला गया।
8: कितनी मेहनत की, क्योंकि 22 लाख बच्चों का सपना था कि हाँ भी इसको टॉप करना है, हर एक ने सपना देखा होता है कि हाँ भी अगर कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसको अच्छे मार्क्स के साथ उसको क्लियर किया जाए। कितनी मेहनत की और इस मेहनत के पीछे कौन कौन आपका साथ था?
9: देखो मेहनत तो करी है, जब मैं पढ़ता था तब लगता था और मेहनत कर सकता हूँ, बट हाँ पेरेंट्स ने कहा, मम्मा पापा ने कहा कि बहुत मेहनत करी है, और ये है कि पढ़ने का टाइम ज़्यादा होना इतना ज़रूरी नहीं होता, तुम कितना टाइम इफेक्टिवली पढ़ रहे हो। देर पढ़ाई में हमेशा क्वालिटी इज़ बेटर देन क्वांटिटी। तुम ऐसे ही बैठे हो, तुम ये सोच रहे हो उसने स्टोरी पे क्या डाला अपनी, मेरे दोस्त खेलने जा रहे हैं, ये वो आज टीवी पे क्या देखा, तो एट दिन पढ़ तो नहीं रहे ना आप लोग। आप अगर पढ़ाई करते वक्त सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हो, चाहे कम भी पढ़ो, सिर्फ पढ़ो, फोकस से पढ़ो, वो बहुत हेल्प होती है। चाहे हल्का सा कम भी पढ़ लो पर बिल्कुल फोकस से क्लैरिटी से पढ़ना, जब पढ़ाई कर रहे हो सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना, उसकी बहुत मदद हुई। मेरे घर वालों ने, मैं स्ट्रेस ले लेता था तो मेरे पेरेंट्स ने, मम्मा पापा ने और स्पेशली मेरे बड़े भाई ने बहुत मदद करी मुझे इमोशनली शांत करने के लिए और मेंटली स्टेबल और बहुत ज़्यादा साउंड रखने के लिए।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
10: Hey everybody, Lady Luck here, and we're celebrating America's 250th birthday. Now all summer long, I'm going to be celebrating by playing on FinQuest.com, which is an American-owned social casino. It obviously features over 1,000 slot games and live blackjack, live craps, live bubble craps. Head on over to SpinQuest.com, get yourself a $30 coin pack for just $10.
11: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
12: Step into timeless classical music. Works from the masters. Brought to life by world-class orchestras, conductors, and soloists. From past to present. Every performance played with depth, precision, and care. Music that has lasted for generations and still feels just as powerful today. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Classical Hits and start listening now.

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: देश को मिली पहली हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात, प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा के जिंद में हरी झंडी दिखाकर सोनीपत के लिए किया रवाना। पुरी में श्री जगन्नाथ रथ यात्रा का दूसरा दिन, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मौसी के घर पहुंचेंगे भगवान। बद्रीनाथ धाम में अब तक 15 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, जुलाई के मध्य तक दर्शन का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा। तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में आदि उत्सव की शुरुआत, मंदिर में ध्वजारोहण के साथ विधि विधान से श्रद्धालुओं ने की पूजा, केले के पत्ते से सजाया गया मंदिर। पंढरपुर में भगवान विट्ठल के चरणों में एक भक्त ने अर्पित की सोने की पादुकाएं, 57 लाख बताई जा रही है कीमत। प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए नया ड्रेस कोड लागू, सावन में महिलाएं साड़ी सूट और पुरुष धोती कुर्ता पहनकर करेंगे रुद्राभिषेक, जीन्स और टी शर्ट में गर्भगृह में नो एंट्री। आंध्र प्रदेश में अनोखा संयुक्त परिवार, 6 पीढ़ियों के 83 सदस्य एक ही छत के नीचे रहते हैं एक साथ।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: टैटू एक ऐसा माध्यम जिससे लोग अपने शरीर पर कलाकृतियां बनाते हैं, ये तो एक बहुत पुरानी कला है जिसका इतिहास हजारों साल पुराना है। टैटू बनाने की प्रक्रिया में रंगीन स्याही को सुई के माध्यम से त्वचा के अंदर डाला जाता है जो स्थायी रूप से दिखती है। तो आज तो टैटू के आसपास ही हम करेंगे एंटरटेनमेंट की बातें और उसके साथ साथ लेकर हाजिर हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से हर अपडेट। तो चलिए फिर फटाफट शुरू करते हैं एंटरटेनमेंट का ये सफर हेडलाइंस के साथ।
4: मैं तुम्हारी बॉस हूँ, मैं हूँ तुम्हारी नई बॉस।
5: सास बहू और बेटियां की एंटरटेनमेंट से भरी गुड न्यूज में आज देखिए, आएगी जगधात्री की सौतन, शुरू होगा नया तमाशा।
4: शिवाय वेलकम नहीं करोगे हमारा?
6: छुटे आना छुटे मुंह से रंग तेरा डोलना।
5: फिर जुड़ेगा रूहानी और गुरु का किस्मत कनेक्शन।

0: भर लिया वे।
1: ईशा को लगेगी चोट, सूरज को होगा दर्द।
0: गहरा सा तूने रख दिया।
1: सीरियल मन सुंदर में आएगा भूत वाला ट्विस्ट, शुरू होगा नया तमाशा। वृंदा पर होगा हमला, संजय होगा परेशान। मान्यता और अभिमन्यु की शादी में पहुंचेगी मन्नत।

दिखेगी ध्रुव और आरंभी की टशनेबाजी। और क्योंकि सास भी कभी बहू थी में नंदिनी और करण की बिटिया रानी समायरा यानी कि जिया संग करेंगे डे आउट, जानेंगे उनके बारे में कई सारी बातें सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: ईशा तो हमसे कह रही हैं कि टैटू कितने दिन लास्ट करता है ये कई कारणों पर निर्भर करता है, जैसे टैटू किस तरीके का है, टैटू की देखभाल कितने अच्छी तरह की गई है और जो टैटू की इंक है ना उसकी गुणवत्ता कितनी है। एक्चुअली बात तो सही कह रही हैं आप, वैसे हम तो चाहते हैं यहाँ पर आपके और सूरज के प्यार का टैटू हमेशा रहे परमानेंट। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको पति ब्रह्मचारी के सेट पर और देखते हैं क्या कुछ एंटरटेनिंग हो रहा है इस कहानी में आज।
1: चेहरा भी तेरा पढ़ लिया, नजरों में तुझको भर लिया वे, अब मांगो अब मांगो।
2: कभी नजदीकियाँ तो कभी नाराजगी,
1: गहरा सा तूने रख दिया, हर ख्वाब पूरा कर दिया वे, अब मांगो मैं और क्या।
2: कभी प्यार भरी नोकझोंक तो कभी तीखी तकरार,
1: मैं उतारूं कुछ और काम क्यों करूं, तुझको ही निहारूं मैं तो वर्गाए रब वर्गाए।
2: सूरज और ईशा का अजब गजब प्यार।

0: मंगल टीवी के सीरियल पति ब्रह्मचारी में आज सूरज को आ रहा है ईशा पर गुस्सा। असल में ईशा अपनी मनमानी कर रही है। सूरज के लाख मना करने पर भी वो जबरन अपने हाथों में की लिए उसे सीधा करने की कोशिश में लगी है, जिसके चलते उसकी उंगलियों में बार बार चोट आ रही है और उस दर्द को देखकर कहीं न कहीं सूरज को दर्द हो रहा है। तभी तो वो उसे बार बार रोक रहा है।
1: किसी ने कहा है गुस्से और सिर में सिर्फ नुकसान होता है, इसलिए बोल रहा हूँ लाइए थोड़ा मुझे दिखिए मैं करता हूँ।
2: कुछ और काम क्यों करूं तुझको ही निहार।
1: दिमाग खराब हो गया ईशा जी आपका, बार बार हथौड़ा आपकी उंगलियों पे लग रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है आपको।
3: नहीं रॉक मुझे मत शहर में डरते होंगे तुमसे।
1: डरने और बेवकूफी में फर्क होता है, और आप जो कर रही है ये बेवकूफी है ईशा जी।
4: या पहले से डिवाइड तो था, मतलब जो बिस्तर था हमारा वो पहले से डिवाइड था। ब्रह्मचारी है ये, तो ऑफ कोर्स नो टच वाली चीज़ है, तो इसलिए कर्टेन डाला था। लेकिन अब वो दायरा कम होने के बजाय और ज़्यादा बढ़ गया है, मतलब कि कमरे में अब दो डिवाइड हो गए हैं, कि मतलब एक तरफ तुम रहो, इस तरफ आने की कोशिश भी मत करना, एक तरफ मैं रहूँगी, जब तक मैं हूँ तब तक तो इस तरफ नहीं आओगे, ऐसा वाला रूल बन गया है। अब ईशा जी गुस्से में कर्टेन लगाने की कोशिश करती हैं, किल ठोकते रहती हैं, और गुस्से में वो किल अपने उंगलियों पे भी मार रही हैं, और सूरज जैसे ही कमरे में जाता है उसे देखा नहीं जाता, और वो गुस्से में जाता है ईशा जी को समझाता है कि क्यों कर रही हैं आप ऐसा ये वो।
0: भाई गुस्से में आकर ईशा ने कमरे का बंटवारा कर दिया है और वो उसी बंटवारे के तहत पर्दा लगाना चाहती है, इसलिए देखिए कैसे सूरज जबरन उसके हाथों से वो हथौड़ा छीन लेता है और खुद जाकर वो पर्दा लगा लेता है ताकि ईशा और उसके बीच की दूरियां बनी रहे। इतना ही नहीं, दूरियां तो है ही, लेकिन सूरज ने ईशा की तस्वीर को अपने बिस्तर के बगल में ही रखा हुआ है, और देखिए कैसे सोते वक्त वो सिर्फ ईशा की तस्वीर ही देखते हैं, क्योंकि भले ही दूरियां बढ़ रही हो लेकिन प्यार दिल में अब भी बरकरार है। वहीं दूसरी ओर ईशा भी सोने के लिए बिस्तर पर लेटने गई है कि तभी उसका हाथ तकिए के नीचे जाता है, जहां पर उसी की ही तस्वीर है, और उसे देखकर वो हो रही है इमोशनल, क्योंकि वो साइड सूरज की है और सूरज उसकी तस्वीर लेकर सोया करता था जब ईशा आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए ट्रेनिंग के लिए गई थी। ऐसे में ईशा इमोशनल हो रही है और देखिए कैसे दर्द अपने दिल में लिए वो भी सोने के लिए चली गई है, और दोनों ही सपनों की दुनिया में खो रहे हैं।
4: तो ये दोनों के बीच में अब दूरियां यही आई है, ये कर्टेन यही दर्शा रहा है कि इन दोनों के बीच दूरियां और ज्यादा बढ़ गई हैं। अब दूरियां जितनी बढ़ी हैं उतना इमोशनल अटैचमेंट और प्यार उस लेवल का ही होगा, क्योंकि हमारा शो हमेशा से यही है कि जितनी दूरियां बढ़ी हैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार भी बढ़ा है दोनों को एक दूसरे के लिए लेके। तो अब देखने की बात ये कि क्या दादा भाई को आईपीएस ईशा सिंह मतलब एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, क्योंकि सूरज को तो ऑलरेडी ईशा जी ने एक्सेप्ट किया ही है कि तुम मेरे हस्बैंड हो, और सूरज ने ये बोला है कि जब ईशा जी आप मेरी पत्नी बन के मेरे सामने आएंगी मैं पति की तरह बिहेव करूंगा, लेकिन जब आईपीएस बन के आएंगी तो मैं दादा भाई की तरह बिहेव करूंगा। सो दैट्स ऑल।
0: अब दोनों के बीच टेंशन भले ही चल रहा हो लेकिन इनकी बीती यादें बार बार इन्हें याद आती हैं। तभी तो देखिए कैसे सपनों में ये अपने उन दिनों को याद कर रहे हैं जब ईशा और सूरज आईपीएस के एग्जाम के लिए एग्जाम देने की तैयारी कर रहे थे, दोनों एक साथ बैठकर पढ़ाई करते थे, दोनों का रिश्ता मजबूत हो रहा था, और तो और दोनों एक दूसरे का एग्जाम पेपर भी चेक किया करते थे और उसमें हमेशा सूरज को हार मिलती थी। ऐसे में सूरज ने हमेशा ही ईशा को कहा है कि वो हमेशा ऐसा ही रहेगा, यानी कि गुंडा, जिसे सुनकर ईशा को भी गुस्सा आ जाता था।
3: और अगर मेरी मेहनत पर पानी फेरा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
1: देख रही है ना ईशा जी, भगवान जी भी यही चाहते हैं कि मैं आपका पति बन के रहूं, आईएएस बनने के पीछे ना गुंडा ही ब्रह्मचारी सही था।
3: अगर मैं आईएएस बन गई और तुम गुंडे बने तो हम आमने सामने हो जाएंगे, फिर हमारा साथ होना मुश्किल होगा।
4: ये एक्चुअली हाँ ये पुराना लुक मैंने गेटअप किया है, लोगों को बहुत खुशी होती है ये वाले गेटअप में क्योंकि पुराना सूरज याद आता है। मुझे भी बहुत ज़्यादा प्यार है ये वाले कॉस्ट्यूम से, तो जब भी पहनता हूँ इजी गो हो जाता हूँ। तो कहीं ना कहीं ये फ्लैश ये दिखाएगा कि सूरज और ईशा जब पढ़ते थे मतलब कि यू नो एक दूसरे का यूनिट टेस्ट एंड ऑल लेना या आईएएस के ऊपर, तो वो वाला एक छोटा सा फ्लैश एक सीन के बीच में आता है कि जब हम दोनों साथ में पढ़ा करते थे, ईशा जी कुछ बोलती हैं तो उसका फ्लैश है कि साथ में जब पढ़ते थे तो मार्क्स कैसे डिवाइड करते थे, कैसे बातें करते थे, तो उससे ही रिलेटेड ये फ्लैश क्रिएट होगा।
0: अब फ्लैश में ईशा ने तब भी कहा था कि दोनों का साथ रहना मुश्किल होगा, लेकिन सूरज ने कहीं ना कहीं से हल ढूंढ ही निकाला था ईशा को अपने करीब रखने का। जरा देखिए कैसे उसे अपने घेरे में ले लेते हैं और उसे बताने की कोशिश करते हैं कि भले ही रिश्तों में दूरियां आए लेकिन प्यार हमेशा बरकरार रहेगा। अब देखना होगा कि दोनों का ये प्यार जो कहीं ना कहीं छिप गया है वो कैसे बाहर आएगा। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
5: और रूहानी की जिंदगी में ये जो तेजू है ना, ये तो वेल लेकर आती हैं इस कहानी में षड्यंत्र, प्लानिंग, प्लॉटिंग, जाल बिछाने वाले टैटूज, क्योंकि कुछ ऐसा ही चलता है इनके दिमाग में। अब देखिए ये तो सौतन है तो इनका तो यही काम है। तो चलिए लेकर चलते हैं अब आपको इस जुनूनी के सेट पर और देखते हैं क्या है यहाँ पर, किसी नए इश्क का जुनून या फिर किसी नए ट्विस्ट का।

गौतम लाया पुलिस वाला ट्विस्ट। दंगल टीवी के सीरियल इश्क जुनूनी में गुरु जेल में था, लेकिन जैसे तैसे वो जेल से भागकर रूहानी से मिलने घर पहुंच गया है। लेकिन यहां पर रूहानी को हो रही है चिंता, क्योंकि गौतम तो घात लगाए बैठा है कि जैसे ही गुरु जेल से भागे और वो उसका एनकाउंटर करे। ऐसे में गुरु रूहानी को बता रहा है कि वो सब कुछ सेट कर कर आया है, लेकिन कहीं ना कहीं रूहानी को शक हो रहा है। को जिस बात का डर था वही हुआ। गौतम ने ये चाल चली है गुरु को फंसाने की, और रूहानी को सच भी पता चल गया है कि गौतम का पीए जिंदा है, मरा नहीं है। ऐसे में गौतम की चाल में गुरु और रूहानी दोनों ही फंस गए हैं। और देखिए गौतम भी पहुंच गया है पुलिस को लेकर गुरु को पकड़ने के लिए। ऐसे में गुरु का साथ दे रही है रूहानी। दोनों ने हाथ पकड़ा और वहां से भाग गए, लेकिन पूरे घर में पुलिस के साथ गौतम पहुंचा है हाथ में बंदूक लेकर, जो गुरु को ढूंढ रहा है। भाई गौतम के सर पर तो खून सवार है। ऐसे में रूहानी पूरी कोशिश कर रही है गुरु को बचाने की। भाई गुरु भी गुस्से में आ जाता है और देखिए कैसे वो भी बंदूक निकाल लेता है, लेकिन रूहानी गुरु को ऐसा करने से रोकती है, और इसी बीच दोनों की नजदीकियां भी बढ़ जाती है।

0: वहीं दूसरी तरफ रूहानी पहुंच गई है अस्पताल में डॉक्टर बन, और अब डॉक्टर साहिबा यानी कि रूहानी करेगी गौतम के पीए का इलाज। ऐसे में उसकी बीवी से गुहार कर रही है कि वो रूहानी को इलाज करने दे ताकि वो अपने पति गुरु को भी बचा सके, और ऐसे में पीए की वाइफ मान भी जाती है।
1: अब से तुम ये केस अगर आप मेरी पति की जान बचा सकती तो मैं आपका साथ दूंगी।
0: जहाँ गुरु और रूहानी इन सब चीजों में फंसे हैं और परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ घर में चल रहा है तेजस्वी का ड्रामा, जहाँ निक्की पर तेजस्वी हाथ उठाने जाती है लेकिन खुद को कंट्रोल भी कर लेती है।
2: आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है भाभी, गुरु की चिंता करने के लिए मेरी दी है।
1: तुम्हारी दी?
0: तो भाई अब इन सब ड्रामों के बीच कैसे रूहानी गुरु को बेगुनाह साबित कर उसे बचाएगी, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।

0: जगदात्री, ऑनेस्टली अगर आप हमसे पूछें तो हम तो यही कहेंगे कि आप करवाइएगा सुपर वूमन का टैटू, क्योंकि आप तो हैं हमारे लिए कंप्लीट सुपर वूमन। देखिए, घर को भी इतना अच्छी तरह संभालती हैं और अपने वर्क कमिटमेंट्स को भी उतनी ही अच्छी तरह, और माय गॉड आपके एक्शन सीक्वेंसेस तो होते हैं कमाल। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको जगदात्री के सेट पर और देखते हैं किस तरह आगे बढ़ रही है आज ये कहानी।
1: मैं तुम्हारी बॉस हूँ।
2: मैं हूँ तुम्हारी नई बॉस।
3: नई बॉस लेडी की एंट्री।
2: SSP जानवी गांगुली, आज से इस यूनिट की बॉस तुम नहीं हो। शिवाय वेलकम।
3: आई जगदात्री की सौतन।
2: रिपोर्ट्स के मुताबिक पूरी टीम सेम प्रेमिस पे मौजूद थी, फिर मूसा को मारने तुम अकेली क्यों गई थी?
3: शुरू हुआ जगदात्री और जानवी में टेंशन।
2: तुम्हारे लिए प्रोफेशनल कम और पर्सनल ज्यादा है।
3: टीवी के सीरियल जगधात्री में हो गई है मिश्मी दास की एंट्री, जो बनकर आ गई है SSP जानवी। और अब आते ही देखिए कैसे उन्होंने जगधात्री के ऊपर हुक्म झाड़ना शुरू कर दिया। असल में वो जगधात्री की बॉस बनकर आई है, या यूँ कह लो वो जगधात्री के पीछे हाथ धोकर पड़ी है। तभी तो देखिए कैसे आते के साथ ही उसने जगधात्री के सामने ऐसे सवाल रख दिए जिसे सुनकर जगधात्री न सिर्फ हैरान है बल्कि वो ये भी जान रही है कि जानवी क्या करना चाहती है।
4: इस केस में तुमने जो कुछ भी किया है इट्स हाईली इमोशनल एंड पर्सनल। डिपार्टमेंट के कंधे पे बंदूक रखकर तुमने अपना पतला पूरा किया है।
2: डिपार्टमेंट के कंधे पर बंदूक रख के तो वो करने की कोशिश कर दू तो तुम सालों तक नहीं कर अपना पर्सनल एजेंडा प्रूव करने की कोशिश कर रहे। जेलेसी कहते हैं
4: तुम अपने बॉस से बात कर रही हो।
2: लगाना भूल जाते हो। मैं फिलहाल एक इनसिक्योर औरत से बात कर रही हूँ जो अपनी सीनियोरिटी का एक्सक्यूज दे मुझे पिन डाउन करने की कोशिश कर रही हूँ। क्या मुझे दिखाई नहीं देता पावर ऑफ यूज कहते हैं इससे पोजिशन ऑफ यूज बट यू नो वॉट तुम्हें ये इंक्वायरी का शो करना है तो तुम करो आई ऑल मीन्स पर सच क्या है तुम्हें भी पता है और मुझे।
5: जैसे कि हमने देखा है कि जानवी शिवाय और जगधात्री की बॉस है और मूसा की जो डेथ हुई है वो जगधात्री से हुई है और वो क्यों हुआ ये वो जानने की कोशिश कर रही है, क्योंकि हम जानते हैं कि मूसा ने जगधात्री की माँ को मारा था। तो वो यही जानने की कोशिश कर रही है कि ये कोई पर्सनल एजेंडा था या ड्यूटी की वजह से उसने उसको मारा। तो सिंस जानवी इज जगधात्री सीनियर ऑफिसर, उसे ये इन्वेस्टिगेट वो करिए। एंड शायद इसमें कोई बैक स्टोरी भी है, क्योंकि हमने देखा कि फर्स्ट एपिसोड में आपको पता चलेगा कि ये जानवी जो है ये शिवाय और जगधात्री के साथ कॉलेज में भी थी। तो कॉलेज मतलब एकेडमी, उनकी ट्रेनिंग जहाँ पे हुई थी, तो वहाँ पे कोई बैक स्टोरी है जिसकी वजह से जानवी इतनी स्ट्रिक्ट है जगधात्री के साथ, या आगे कुछ

0: के बीच दीवार खड़ी करेगी, क्योंकि वो कहीं न कहीं शिवाय को पसंद जो करती है।
1: ये प्रोमो में थोड़ा विजुअल गले में लगती वाला चंग लगा रहा है।
2: कैसा लग रहा है? मतलब जगधात्री एक्चुअली उसने मिशन के लिए शादी की है, लेकिन हम देखते हैं कि जाह्नवी शिवाय के प्रति थोड़ा सा सॉफ्ट है, तो शायद मतलब जाह्नवी को ऐसे लग रहा है कि जगधात्री शिवाय की बॉस है, तो उसने ये शादी करी मिशन से बाहर जाकर, उसकी कोई वेस्टेड इंटरेस्ट होगी। सो ये सब वो अभी जानने की कोशिश कर रही है, क्यों जानने की कोशिश कर रही है, क्यों उसको इन सब में पढ़ना है, ये तो हम आगे एपिसोड्स जैसे जाएंगे वैसे ही पता चलेगा।
3: देशमुख फैमिली का हर एक मेंबर हमारा सस्पेक्ट है, और इस केस पे लास्ट कॉल मेरा ही होगा। भूलो मत, मैं तुम्हारी बॉस हूँ। मैं हूँ तुम्हारी नई बॉस।
0: फिलहाल तो जाह्नवी और जगधात्री के बीच की टशनेबाजी शुरू हो चुकी है, और कहीं न कहीं जगधात्री की टीम भी बखूबी समझ रही है, लेकिन जगधात्री की टीम हमेशा जगधात्री के साथ खड़ी है, और जगधात्री को पूरा यकीन है कि वो सच सबके सामने लाएगी, लेकिन जाह्नवी उसके रास्ते में क्या अड़चने लाएगी ये देखना काफी दिलचस्प होगा।
3: SSP जाह्नवी गांगुली, आज से इस यूनिट की बॉस तुम नहीं हो, शिवाय वेलकम नहीं करोगे हमारा।
0: मुंबई से कैमरामैन अजय उगरेजा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
3: टीम सेम प्रेमिस पे मौजूद थी, फिर मूसा को मारने तुम अकेली क्यों गई थी? जैसा क्यों लग रहा है कि ये केस तुम्हारे लिए प्रोफेशनल कम और पर्सनल ज्यादा है?
1: देखिए, आम की कहानी में तो चला है ये याददाश्त जाने वाला ड्रामा, जहां विक्रांत बन गए हैं अभिमन्यु, लेकिन अगर आप करवा लेती ना विक्रांत के नाम का टैटू, तो मुझे लग रहा है शायद ऐसा नहीं होता। तो चलिए लेकर चलते हैं अब आपको मन्नत के सेट पर, और देखते हैं किस तरह आगे बढ़ रही है अब ये कहानी, क्योंकि मन्नत की जिंदगी में भी हैं ये सुपर विलन्स जो नहीं लेने देते हैं मन्नत को चैन की सांस। लेकर चलते हैं आपको मन्नत के पास।

0: मान्यता और अभिमन्यु की संगीत की रस्म। खास मेहमान बनकर पहुंची मन्नत। देखिए मन्नत और अभिमन्यु की तशनेबाजी। कलर्स टीवी के सीरियल मन्नत में जल्द ही मान्यता और अभिमन्यु शादी के बंधन में बंधने वाले हैं और ऐसे में शुरू हो चुकी हैं शादी की सभी रस्में और मान्यता चाहती थी इन शादी की रस्मों में मन्नत भी शामिल हो, क्योंकि मन्नत को केटरिंग का ऑर्डर जो दिया है, ऐसे में जैसे तैसे मान्यता के कहने पर मान्यता की बहन मन्नत को वापस शादी के फंक्शन में ले आई है। और देखिए मन्नत इन फंक्शंस में पहुंच भी गई है अपने तीनों बच्चों संग, और मन्नत को देखकर मान्यता काफी खुश हो गई है। वही दूसरी तरफ अभिमन्यु को लग रहा है कि मन्नत उसके लिए यहाँ आई है, लेकिन मन्नत अभिमन्यु की ये गलतफहमी भी दूर कर देती है। ऐसे में दोनों के बीच की ये टशन साफ देखने को जाहिर है।
1: मैं चाहता हूँ दीदी,
2: मैं आई माधुसा जी के कहने पर। आपको क्या लगा? आपके बुलाने पर
3: ये लगा ना?
2: आपको थोड़ा कुछ ज्यादा ही सच।
0: यहाँ केटरिंग के ऑर्डर को लेकर भी बहसबाजी चल रही होती है कि अभिमन्यु बीच में आ जाता है, लेकिन मान्यता और मन्नत मिलकर सिचुएशन को संभाल लेते हैं।
2: और ना अब आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब अभी आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं। मान्यता जी,

0: आपने बिल्कुल लोड ना लो, ऐसा पहली बार थोड़ी हुआ है मेरे साथ, पहले भी हो चुका है। ये ताने मारना और रिजेक्शन, नौकरी से निकाल देना, अरे बहुत बार मुझे अपनी काबिलियत साबित करनी पड़ी है बहुत मेहनत से।
1: मैंने ऐसा कब किया?
2: अभी ये तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रही है, इन जनरल बोल रही है कि इनको इनकी लाइफ में ऐसे लोग मिले हैं, है ना मैंने जी?
1: मैंने तो मुझे बुला रखी, मैं आता हूँ।
3: इसी के साथ देखिए कैसे मान्यता अपने और अभिमन्यु के रिलेशन के बारे में झूठ पर झूठ बोले जा रही है, कहानियाँ बनाई जा रही है और ये सारी झूठी कहानियाँ वो मन्नत को सुना रही है। ऐसे में बच्चे कह देते हैं मान्यता को झूठा, लेकिन दुआ सिचुएशन को संभाल लेती है और मान्यता को लगता है कि बच्चे आपस में ही लड़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन्नत और बच्चों को पता चल चुका है कि मान्यता कितनी झूठी है। तो भाई मन्नत और बच्चे शादी के फंक्शंस में तो पहुंच गए हैं, अब शादी में यहाँ कौन कौन से तमाशे होंगे, क्या अभिमन्यु की याददाश्त लौट कर आएगी, क्या वो जान जाएगा कि वही विक्रांत है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा।
4: ऐसा क्या बोलूँ क्या करूँ जिससे आपको यकीन हो जाए कि आप मेरे पति और मैं आपकी पत्नी मिसेस मन्नत विक्रांत सलूजा, और ये लोग आपसे झूठ बोल रहे हैं, आपको अंधेरे में रखा हुआ है इन्होंने।
3: मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
5: मैं इन दोनों को एक नहीं होने दूंगी।
6: अब तो एंटरटेनमेंट का टैटू लेकर हाजिर है आपके लिए ये अगला सितारा, जिससे कि है हमारी टीम सास बहू और बेटिया ने एक प्यारी सी मुलाकात। हमने तो जाना है इन्हें अप क्लोज एंड पर्सनल, क्या आपको भी करनी है इनसे ये प्यारी सी मुलाकात? तो चलिए हम नहीं करवाएंगे आपको और इंतजार, लेकर चलते हैं आपको इनके पास।

0: मिली है टीवी की जैन अल्फा बेटी से, जो डांस करती है, मम्मी से प्यार करती है, जिसे टेरिस का शौक है लेकिन मैथ्स की भी उतनी ही शौकीन है, पढ़ाई में एकदम फिट और साथ में एक अभिनेत्री भी। ये पढ़ती है 8th स्टैंडर्ड में लेकिन साथ साथ सीरियल में अभिनय करती है। फिर चाहे वो क्योंकि सास भी कभी बहू थी की समायरा हो, या फिर हो कसौटी जिंदगी की, या फिर हो झनक, या फिर हो ढेरों एड्स और वेब सीरीज। मिली है समायरा नारिकारा से, यानी क्योंकि साथ भी कभी बहू थी में करण और नंदिनी की बेटी समायरा, और इसके साथ कसौटी जिंदगी की में प्रेरणा और बजाज की बेटी भी। भाई ये है आज के जमाने की लड़की जिसे कहा जाता है जैन अल्फा। भाई आज हम कर रहे हैं समायरा के साथ जैन अल्फा डे आउट। साथ में ये है अपनी मम्मी की दुलारी और स्पोर्ट्स की शौकीन, फिर चाहे फुटबॉल हो या फिर हो ये पजल गेम छठ से सुलझाती है, मैथ्स के सम हो या पर्दे पर एक्टिंग के लाइन्स बोलना, ये सब करती है। तो आज समायरा के साथ करेंगे हम एक जैन अल्फा डे आउट, जहां हम देखेंगे कि उनका घर कैसा है, कौन है उनकी फैमिली में, कौन सी है उनकी फेवरेट चीजें। तो सीधा चलते हैं क्योंकि साथ भी कभी भूत के समायरा यानी जिया के घर पर।
1: सास बहू और बेटिया की आज की खास मेहमान है जिया, और जो जैन अल्फा रिप्रेजेंट करती है, तो ये जो है जैन अल्फा वाला डे आउट होने वाला है हमारा। तो जिया वेलकम,
2: थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी कम इन टू योर आजकल वाला वीडियो, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी विथ यू ऑल, एंड आई होप कि ये वीडियो अच्छा जाए, एक्साइटिंग जाए फॉर द पीपल हु आर वॉचिंग दिस वीडियो। यस यस, आई एम वेरी एक्साइटेड।
1: चलो,
0: जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड एक्टर की थी और ढेरों सीरियल्स और एड्स और वेब सीरीज के साथ, वो है एक चाइल्ड प्रोडिजी। भाई डांसिंग इनका पैशन है और सुबह सुबह ये खुद को रिचार्ज करते हैं अपने फेवरेट गाने पर डांस करके।
2: आज मैंने डांस की बात की है, एक सॉन्ग पे एक डांस भी हो जाता है, क्योंकि मुझे डांस बहुत पसंद है। चलो,
3: नैन मिलाए हमने एक दूजे से यूं।
0: और देखिए इन्होंने अपना एलेक्सा ऑन किया और शुरू किया अपने फेवरेट गाने पर डांस मूव्स। समर आज के ट्रेंडिंग गाने पर डांस कर रही हैं और ये है शरारत गाना। फिल्म धुरंधर का ये गाना सबको नाचने पर मजबूर कर देता है और आज समर ने भी इसी गाने पर अपने डांस मूव्स दिखाए।

0: तो आज आप लोग ने देखा कि मैंने बहुत ही अच्छा डांस किया है और आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो. थैंक यू देखने के लिए मेरा डांस.
1: जी हाँ, मुंबई में रहती हैं अपने मम्मी पापा और अपने भाई के साथ. इनके एक हैप्पी फैमिली है, लेकिन सबसे ज्यादा अटैच्ड हैं ये अपनी मम्मी के साथ. चूंकि ये लोग गुजराती परिवार से हैं, तो आज इनका गुजराती अंदाज वाला गरबा देख लें. तो देखते हैं जिया और उसकी मम्मी का ये गरबा वाला अंदाज.

0: ये है मेरी प्यारी मम्मा।
1: मम्मा आपका नाम?
2: हाय, आई एम वैशाली एंड जीएस मदर। एंड बहुत प्राउड फील होता है जब मुझे लोग बोलते हैं कि अच्छा ये समायरा की माँ है, अच्छा जिया की मम्मी है। मतलब बहुत प्राउड फील होता है। और मेन थिंग इज़ व्हाट यू नो कि जब मैं छोटी थी ना इसकी जितनी, तब मैं ये सीरियल देखती थी क्योंकि सास भी कभी बहू थी, आई नो दैट। एंड अब जब ये वो मैम के साथ काम करती है, स्मृति मैम के साथ, हितेन सर के साथ, और आई फील सो ब्लेस्ड कि मेरी डॉटर हितेन सर की डॉटर प्ले कर रही है ऐसा। तो थैंक यू जिया फॉर दैट ऑल्सो।
0: थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। आपकी वजह से ही हुआ है एंड आई एम वेरी हैप्पी टू मेक माई मॉम प्राउड कि जो वो सीरियल देखते थे उसमें ही मैं अभी काम कर रही हूँ।
3: भाई जिया है चैन अल्फा और ये हर काम अपनी शर्तों पर करती है, लेकिन है ग्राउंडेड। भाई पता है जिया की फेवरेट डिश क्या है? नूडल्स, जो झटपट बन जाते हैं। तो चलते हैं जिया के साथ उनकी रसोई में।
0: तो मुझे बहुत भूख लगी है और मैं जब भी किचन में जाती हूँ मैं एक ही चीज बनाती हूँ, वो है मैगी। ये दुनिया में कोई भी इंसान नहीं है जिसको मैगी नहीं पसंद। वैसे ना मैंने कल ही मैगी खाई थी और मेरे घर पे ना रूल है कि 15 डेज में 1 टाइम मैगी खाना।
2: वैसे शी इज नॉट अलाउड टू ईट मैगी इतना फ्रिक्वेंटली, बट क्योंकि आप हो इसके लिए आज उसको अलाउड है।
0: थैंक यू। आज मैं मैगी बनाऊंगी भी और खाएंगे। यस सर। तो अभी बनाते हैं मैगी। तो सही मैगी लूंगी आज। ओके एंड सपना, पहले मसाला डालते हैं फिर मैगी डालते हैं? मुझे ऐसा नहीं पसंद, मैं पहले मैगी डालती हूँ फिर मसाला डालती हूँ। तो पहले मिक्स कर लेते हैं मैगी, थोड़ा 50-60% बनने दो और फिर मैं मसाला डालूंगी ताकि मैगी में भी टेस्ट आए। मैं तो चाहूँ तो ये सब तीनों पैकेट डाल दूँ, इतनी डाल सकती आज वो मैं ना।
3: है तो ये बहुत सिंपल और झटपट तैयार होने वाली रेसिपी, लेकिन सब इसको अलग अलग अंदाज में बनाते हैं।

अभी हम लोग इसे 3 से 5 मिनट तक इधर ऐसे रहने देंगे एंड देन आई विल पुट सम सेसमी सीड्स ऑन इट, क्योंकि थोड़ा हेल्दी तो होना चाहिए ना अभी।

0: तो मेरा मैगी रेडी है। तो मैंने आपको पहले बोला था कि मैं थोड़े सेसमी सीड्स डालूंगी ताकि थोड़ा हेल्दी हो जाए, और थोड़ा है एक थोड़ा, हाँ इतना इतना सा डालूंगी। मुझे सेसमी सीड्स बहुत पसंद है क्योंकि उनका कुछ फ्लेवर नहीं आता, आता है नहीं सेसमी सीड्स का, और हेल्दी होता है तो मैं खा सकती हूँ। चलो तो खाते हैं।
1: अरे वाह, अभी तो आप लोग के जैसे मुझे और एक दिन एक्स्ट्रा मैगी खाने के लिए मिल गया। थैंक यू।

0: जिया एक टीनेजर है और मुंबई में 8वीं कक्षा में पढ़ती हैं। एक्टिंग के साथ साथ वो अपनी पढ़ाई भी मैनेज करती हैं। तो कैसा होता है उनके स्कूल का शेड्यूल, आइए जानते हैं।
1: अभी चलो आप लोग के साथ बहुत मस्ती कर ली, डांस कर लिया, मैंने आप लोग को मेरी चीजें भी दिखा दी, मैगी भी खा लिया, और अभी एक चीज बाकी है, पढ़ाई करना। तो मैं आज स्कूल नहीं गई हूँ, तो आज मुझे घर पे पढ़ाई करना पड़ेगा। और अभी तो मैं 8th स्टैंडर्ड में हूँ, मैं रान इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ती हूँ। तो जब भी मेरा शूट होता है तो मैं या तो ट्यूशन में जाती हूँ, बाद में शूट ख़त्म होने के बाद मैं ट्यूशन में जाती हूँ पढ़ने, या तो मैं घर पर पढ़ती हूँ और शूट होता है तभी मैं स्कूल में लीव कर लेती हूँ, लीव ले लेती हूँ। बिकॉज रान इंटरनेशनल स्कूल बहुत सपोर्टिव स्कूल है एंड बहुत सारे चाइल्ड एक्टर्स वही स्कूल में है, कज़े वो लोग बोलते हैं कि चलेगा पूरा साल मत आओ, बस एग्ज़ाम देने आना, बस दे आर वेरी सपोर्टिव। तो चलो अभी पढ़ाई करने चलते हैं।
0: तो जिया के साथ चलते हैं उनके उस रूम में जहाँ वो पढ़ाई करती हैं। जी हाँ, जब वो शूटिंग नहीं कर रही होती हैं या स्कूल नहीं जाती हैं तो वो घर पर पढ़ाई करती हैं और उनका फेवरेट सब्जेक्ट है मैथ्स। और देखिए मैथ्स वो कैसे दिल लगाकर पढ़ रही हैं।
1: मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स है और सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट भी मैथ्स है, क्योंकि मुझे पसंद है कि मेरे जो हिडन टैलेंट्स है वो बाहर आए, मुझे कुछ दिमाग में याद रहे, मैं कुछ लिख सकती हूँ बहुत, और वो मैथ्स बहुत हेल्प करता है एंड मैथ्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो पढ़ाई करते हैं।

0: करनी है पास। तो ये है जिया, जो अभिनेत्री होने के साथ साथ अपनी पढ़ाई का भी ध्यान रखती हैं। शायद यही चैन अल्फा की खासियत है कि वो जानते हैं कि उन्हें लाइफ में क्या चाहिए। सपने देखते हैं लेकिन साथ साथ रियलिटी से भी अपना दामन नहीं छोड़ते। तो देखते हैं कि जिया कैसे करती है अपनी पढ़ाई।
1: मुझे पढ़ाई भी अच्छा लगता है, एक्टिंग भी अच्छा लगता है। आगे जाके एक्टिंग भी काम में आएगा, पढ़ाई भी काम में आएगा, बट पढ़ाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप लोग को बहुत सारी नॉलेज मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेगी और वो एक्टिंग से भी मिलती है, बट पढ़ाई भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड आप जितनी भी एक्टिंग कर लो, आप लोग को जनरल नॉलेज होनी चाहिए, एक्टिंग की नॉलेज होनी चाहिए, सबकी नॉलेज होनी चाहिए।
0: जरा देखिए जिया कैसे अपने होमवर्क को निपटा रही है, खासकर मैथ्स का होमवर्क जिससे ज्यादातर बच्चे डरते हैं, लेकिन जिया ने कैसे स्मार्टली अपने इस होमवर्क को पूरा किया।
1: हो गया, इजी, इतना इजी यार, एक मिनट में मैं कर सकती
0: हूँ। तो भाई जिया की पढ़ाई तो हो गई, लेकिन डालते हैं उनके सफर पे एक नजर, कैसे वो बनी चाइल्ड एक्ट्रेस और सीरियल्स और वेब सीरीज के साथ साथ वो अपनी पढ़ाई बैलेंस कर रही हैं। तो देखते हैं कि कैसे हुई थी आखिर जिया के एक्टिंग करियर की शुरुआत।
1: तो मैंने मेरी एक्टिंग की करियर चालू की थी बहुत सारे कैटलॉग शूट्स करके, फिर कैटलॉग शूट्स के बाद मैंने सीरियल किया कसौटी जिंदगी की, जिसमें मैंने कुकी का रोल प्ले किया था और मेरे मम्मी पापा थे मिस्टर बजाज और प्रेरणा। मिस्टर बजाज प्ले किया था करण सिंह ग्रोवर ने और प्रेरणा प्ले किया था एरिका फर्नांडिस ने। फिर मैंने वो सीरियल किया फॉर 5-6 मंथ्स, फिर मैंने बहुत सारे एड्स किए, 50+ एड्स किए, फिर मैंने बीच में एक सीरीज की गुना, उसके बाद मैंने जनक सीरियल किया फॉर 1-2 मंथ्स, बीच में एक मूवी किया बी हैप्पी, और अभी रिसेंटली मैंने क्योंकि सास भी कभी बहू थी ख़त्म किया। एंड आप लोग ने मुझे बहुत प्यार दिया है, बहुत सपोर्ट किया एक्टिंग में, एंड दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ मैं आप लोगों को। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, थैंक यू सो मच कि आप लोग ने मुझे इतना प्यार दिया, लव यू।
0: जिया मुंबई की लड़की है, तो लेते हैं जरा उनके घर का एक टूर। उन्होंने अपने घर को किस तरह से रखा हुआ है, कैसे वो अपने भाई के साथ रूम शेयर करती हैं और कैसी उनके घर की सजावट, आइए डालते हैं नजर।
1: हाय गाइस, तो ये है मेरा घर और आज मैं आप लोग को दिखाने वाली हूँ। सो ये है मेरा टीवी, मेरा फेवरेट चीज हॉल में, इधर मैं सबको देखती रहती हूँ कुछ ना कुछ, लाफ्टर शेफ मेरी मम्मी का फेवरेट। इधर मैं अच्छे से बैठती हूँ, सो भी जाती हूँ, कुछ भी करती रहती हूँ, होमवर्क, स्टडीज, सब कुछ, और ये बहुत कंफर्टेबल है, मुझे बहुत मजा आता है इधर। एंड दिस इज माय स्टैनली एज आई एम अ जेन अल्फा, यू नो मैं इसमें पीती रहती हूँ पानी, बिकॉज़ आई नीड समथिंग एस्थेटिक टू ड्रिंक इन। एंड मेरी मॉम को शौक है प्लांट्स और वो सब रखने का, सो मेरी मम्मा ने अभी के लिए आर्टिफिशियल प्लांट रखा है इधर, और मेरे पापा वो है उनको महाभारत, कृष्णा जी वो सब बहुत पसंद है, तो उन्होंने ये रखा है, उन्हें बहुत पसंद है, दे लव इट, वो हर दिन आते हैं, फिक्स इट, बहुत अच्छा अच्छा करता है। और ये है आर्टिफिशियल और प्लांट्स, बिकॉज वाई नॉट। ये है मेरी फैमिली, ये है मेरे पापा, ये है मेरे भाई, मेरी मॉम। अभी के लिए फिलहाल सब है नहीं, बट मेरे घर पे मेरी मॉम है, तो अभी जाते हैं दूसरे रूम में, लेट्स गो। वॉकिंग वार्डरोब, मेरी मम्मा को, मेरी मम्मी के पास बहुत सारे कपड़े, मेरे पास भी है, सो मेरी कबर्ड, मेरे मॉम की कबर्ड, मेरे भाई की कबर्ड, मेरे पापा की कबर्ड, एंड इसमें सब कपड़े हैं एंड ऑल द अदर थिंग्स। एंड ये है मेरी फेवरेट एरिया जहाँ पे मैं रेडी होती हूँ वीडियोस बनाने, तो वीडियोस बनाती हूँ उधर मिरर में देख के, व्लॉग्स मेरे कोलैबोरेशन के वीडियोस होते हैं मोस्टली इधर होते हैं, एवरीथिंग। एंड हियर्स अ टीवी, और वो है मेरी मम्मी का 40th बर्थडे। ओह या, दिस ये है मेरे पापा और ये है मेरी मम्मी, ये है एंगेजमेंट का फोटो, एंड दिस इज समथिंग 2 decades पहले का, ऑलमोस्ट 2 decades। एंड ये है मेरी मम्मी का 40th year का फोटो, लुक एट द डिफरेंस, वाओ, सच अ ब्यूटीफुल मॉम यार, सो लकी टू हैव हर। चलो लेट्स गो इनसाइड। तो ये है मेरा बेड, मेरी फेवरेट चीज पूरे घर में, मैं इधर सब कुछ करती रहती हूँ, खाना वाना, टीवी देखना, उधर टीवी है. एंड दिस इज अ क्यूट फोटो बूथ ऑफ मी एंड माई ब्रदर. एंड ये है दूसरा कंप्यूटर. एंड हाँ, ये चीज, ये इसका नाम ओरियो है, बिकॉज ये दिखता है ओरियो जैसा. एंड मेरे पापा ने ये जीता था इमेजिका में, बिकॉज आई लव स्टफ टॉयज. उधर भी एक है पॉ पेट्रोल का, आई यूज टू वॉच पॉ पेट्रोल अ लॉट. एंड ये है मेरे लाइफ का सबसे पहला अवार्ड व्हेन आई वाज 3 इयर्स ओल्ड. दिस वाज माय फर्स्ट अवार्ड व्हेन आई वाज 3 इयर्स ओल्ड. मैं गुजरात में रहती थी तभी का अवार्ड है. इट्स रियली नाइस. एंड उधर और बहुत सारे अवार्ड्स है, फैशन शो, अवार्ड शो, बहुत सारे के हैं. एंड दिस इज माई एवरीथिंग. इसमें मेरे क्लिप्स है, स्किन केयर है, मेकअप है थोड़ा बहुत. एंड माई फेवरेट थिंग लिनेज. इसका एक है, दूसरा भी है, आई कीप इट विथ माई सेल्फ. तो हम लोग प्रमोशन के लिए गए थे घूमर मूवी देखने. एंड इट वॉज रियली गुड. इसमें हम लोग फिर मिले अभिषेक बच्चन को एंड ही साइंड दिस बैट. मैंने अभिषेक बच्चन के साथ एक मूवी भी किया है, बी हैप्पी. एंड ही इज अ वेरी स्वीट पर्सन, बहुत अच्छे इंसान. ऐसे ही बहुत सारे अवार्ड जीते हैं बिकॉज ऑफ डांस. मेरी हॉबी है डांस करने और मुझे बहुत पसंद है, तो मैं डांस कॉम्पिटिशन में जाती रहती हूँ. स्कूल के टाइम पे जाती रहती थी, तो अभी मेरे पास बहुत सारे अवार्ड्स है और भी है, बट अभी जो मेन अवार्ड्स है वो इधर रखे मैंने.
0: मेथी जिया को स्पोर्ट्स का भी शौक है, वो फुटबॉल खेलती हैं और देखिए घर पर ही कैसे फुटबॉल खेल रही हैं और साथ साथ माइंड के गेम्स जैसे जेंडा वगैरह भी खेलती हैं और कैसे झटपट पजल भी सॉल्व कर लेते हैं. तो आखिर देखते हैं जिया का स्पोर्टिंग टैलेंट.
1: मुझे फुटबॉल भी बहुत पसंद है एंड आई हैव गॉन टू प्ले फुटबॉल आल्सो, फुटबॉल टूर्नामेंट्स एंड एवरीथिंग. तो मेरे पास घर में फुटबॉल है, तो मैं आपको, आप लोग को दिखाऊंगी कि मेरे को क्या क्या आता है फुटबॉल में. चलो

0: तो वे खाली वक्त में वो अपने घर पर ही फुटबॉल खेलती हैं और वैसे अपने दिमाग को दुरुस्त रखने के लिए कुछ पजल भी सॉल्व करती हैं जो उनके घर में नजर आ रहे हैं।
1: तो एज यू कैन सी ये सब है रूबिक्स क्यूब और ये सब मेरे भाई को बहुत पसंद है। उधर 3-4 अवार्ड है जो मेरे भाई ने जीते हैं बाय प्लेइंग रूबिक्स क्यूब। फर्स्ट सेकंड थर्ड आया है एंड मेरे ब्रदर का नाम ज्वेल नारिग्रा है। ही इज़ अ वेरी स्वीट ह्यूमन बीइंग और वो भी एक्टिंग करते हैं एंड स्टूडियो से वो मेरे जैसे नहीं मेरे से ऑपोजिट एंड हाँ मैं थोड़ा बहुत ट्राई करती हूँ सॉल्व करने का। मेरा दिमाग भी सॉल्व नहीं होता है ये कहाँ से सॉल्व होगा। अभी मेरे भाई बहुत सारे सॉल्व कर देता है ऐसे ट्राइंगल शेप के स्क्वायर शेप के पता नहीं कौन से शेप के एंड ही इज अ वेरी बहुत क्या बोलते हैं स्मार्ट इंसान है। भाई है नहीं वो मुझे टच नहीं करने देता ये सब बट आज मेरा भाई है ही नहीं घर पे तो मैं खेल लेती हूँ। मेरे भाई ने मेरे को एक चीज सिखाया था ऐसे करके कुछ तो करना होता है 6 बार एंड ये देखो ये फिक्स्ड है ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे और ये हो गया। मैं भी बहुत स्मार्ट हूँ। अप लेफ्ट डाउन राइट ऐसे आपको 6 बार करना है ऐसे करके। तो मेरा भाई बहुत फास्ट करता है उसने एक पूरा रूबिक्स क्यूब 12 या 13 सेकेंड्स में सॉल्व कर दिया था। बहुत टैलेंटेड इंसान है बहुत।
0: भाई तो ये थी जिया जो क्योंकि सास भी कभी बहू थी में करण और नंदिनी की बेटी हैं। पर्दे पर अभिनेत्री लेकिन रियल लाइफ में माँ बाप की दुलारी और एक स्टूडेंट जो साथ साथ अपनी पढ़ाई पूरी करती है स्पोर्ट्स खेलती है और डांसिंग भी करती है। तो ये है हमारा जनरेशन अल्फा जो अपने सपने पूरे करने से नहीं डरता लेकिन साथ साथ अपनी जमीन भी नहीं छोड़ता। तो उम्मीद है कि जिया आगे भी इसी तरह पढ़ाई और एक्टिंग में अपने परिवार और अपने देश का नाम रोशन करे। तो उम्मीद है आज पर्दे की समायरा के साथ पूरा दिन बिताकर आपको इस नन्ही मुनी अभिनेत्री के बारे में ढेर सारी बातें पता चली होंगी जो आपको दिखाई सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटियां ने।
1: बाय बाय लव यू सी यू सून।
0: मुंबई से रूपल मौची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
2: आपने फाइनली बनवाया अपना फेवरेट टैटू सालों के इंतजार के बाद। ओ माय गॉड दिस इज रॉकिंग। लेकिन जैसे ही नीडल ने छुआ आपकी स्किन को आपका हुआ जोरों से दर्द और हो गया शॉकिंग। कुछ ऐसी ही रॉकिंग कुछ ऐसी ही शॉकिंग है हमारे पास ये सारी खबरें जिन्हें ले आए हैं हम एक साथ आपके लिए इस इंटरेस्टिंग सेगमेंट में जो है रॉकिंग एंड शॉकिंग न्यूज।
3: या तो तुम अपना यह आर्मी डॉक्टर बनने का सपना छोड़ दो या मुझे।
4: हो तू ना हो तो लागे क्यों दुनिया ये अनजान सी।
5: पेश है बॉलीवुड OTT और टीवी की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें।
6: तुम सबके साथ यही करते हो लास्ट मिनट आना।
5: कलर्स टीवी लेकर आ रहा है एक नया शो जिसका नाम है 108 बेस हॉस्पिटल उरी और इस शो में नजर आने वाले हैं एरिका फर्नांडिस और कश्मीर महाजनी।
7: तुम नहीं चाहते थे कि तुम आर्मी ज्वाइन करो तुम्हारी गर्लफ्रेंड आर्मी ज्वाइन करे।
5: इस शो में बनी है दोनों की जोड़ी। ये है लिमिटेड सीरीज जो कि 15 अगस्त को शुरू हो जाएगी। देख लीजिए इसकी खास झलक।
8: ये तो इंटरवल है पिक्चर अभी बाकी है जनता की आवाज बनकर आ रहे हैं अर्जुन कपूर।
5: नजर डालते हैं लॉकअप के आने वाले नए ट्विस्ट पर। भाई इस हफ्ते खास मेहमान बनकर आने वाले हैं अर्जुन कपूर जजमेंट डे पर जनता का फैसला लेकर। साथ ही होगा यहाँ ड्रामा और है एंटरटेनमेंट भरपूर।
9: धीरज आप आकांक्षा चावला को क्या टैग देना चाहिए।
5: इसी के साथ खबरें तो ये भी आ रही है कि इस हफ्ते एलिमिनेट हो सकते हैं योगेश लेकिन अब तक कोई कंफर्मेशन नहीं है।
10: इट कम्स अक्रॉस एज इफ आई एम मेकिंग यू फिजिकली अनकंफर्टेबल।
11: मेरा सिर्फ ये होता है
10: वेट लेट मी फिनिश।
9: हर्षद लोग ये जानना चाहते हैं कि हम क्या असली में आपको देख रहे हैं या आपको एक किरदार निभाते रहे। योगेश आप उभर के आ ही नहीं रहे आप हो कौन।
12: कंट्रोलर्स आज आप में से किसी एक को मिलेगी पावर ऑफ टर्मिनेशन।
8: आपकी किस्मत का फैसला आ गया है जिसकी जर्नी टर्मिनेट होनी चाहिए वो है।

0: छोड़ के।
1: सीरियल उड़ने की आशा को अलविदा कह दिया है रेणुका यानी कि राधिका ने। ऐसे में राधिका ने शेयर किया है अपना लास्ट डे वाला ये वीडियो, जहां उन्होंने शूटिंग का रैपअप किया और साथ ही शेयर की यादें।

0: जल्द आने वाली है प्रभास की आने वाली नई फिल्म फौजी, जो कि 3 दिसंबर को रिलीज होगी। ऐसे में सामने आया है फिल्म फौजी का पोस्टर।
1: सेमीफाइनल्स का सबसे मुश्किल इम्तिहान।
2: अपने सपनों के हशियाने के लिए मुझे ये कॉम्पिटिशन जीतना ही है।
3: टाइम अप। तो फाइनल्स में जाने वाली दूसरी टीम का नाम है।
0: सीरियल अनुपमा में कहानी में नया ट्विस्ट आने वाला है, जहां पर अनुपमा फाइनल राउंड तक नहीं पहुंच पाएगी। तो क्या है ये ट्विस्ट, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
4: मेरा मेकअप लगा रही है क्यों ली? तेरा माल है क्या जो लाडो रात में लगा रही है?
5: ठीक है, माल तेरा है सही, लेकिन मैंने अगर थोड़ा सा लगा लिया तो तेरा क्या जाता है?
0: देख लीजिए इंडियाज बेस्ट डांसर का ये वीडियो, जहां पर डांस के साथ साथ यहां पर एक्टिंग का भी टैलेंट है, तभी तो फिल्माया जा रहा है यहां ये आइकॉनिक सीन कंटेस्टेंट्स के द्वारा।
6: दीपाली तेरी है मजाल, ये लिपस्टिक इम्पोर्टेड है पर तुम्हारी जबान अभी भी देसी है।

टीवी के सीरियल्स की इन जोड़ियों पर रोमांस का खुमार चढ़ चुका है। ऐसे में देख लीजिए कैसे ये सभी जोड़ियां प्यार के रंग में रंग चुकी हैं।

0: हमारे देश भारत में तो टैटू का चलन आदि काल से है। अरे पुराणों में भी इसका उल्लेख है। जी हाँ, इतने पुराने हैं ये टैटूज। लेकिन हमारी ये अगली खबर बिल्कुल भी नहीं है पुरानी, ये तो है फ्रेश एंड एक्सक्लूसिव, जिसे परोस रहे हैं हम आपको राइट हियर राइट नाउ, वो भी गरमा गरम। गो चेक इट आउट।
1: में पड़ी वृंदा की जान। वृंदा पर हुआ हमला। वृंदा के नाम मिलने पर संजय हुआ परेशान। जी टीवी के सीरियल तू ही रे दिल में कहानी में बड़ा ट्विस्ट आ गया है, जहां पर वृंदा मंदिर गई थी, लेकिन लौटते वक्त देखिए कैसे एक हमलावर ने उस पर हमला कर दिया।

0: उसके सर पर वार कर दिया। ऐसे में वृंदा बेहोश हो गई और इस हमलावर ने वृंदा के सारे गहने छीन लिए और उसे घसीटता हुआ कहीं ले जा रहा है। तभी वहाँ एक साइकिल वाला भी आता है, लेकिन हमलावर बहाना कर देता है कि वो उसकी बीवी है। ऐसे में वृंदा को बचाने वाला वहाँ कोई भी नहीं, घायल अवस्था में वृंदा है और हमलावर ने उसे ऐसे ही छोड़ दिया है।
1: जी एक्चुअली ऐसा दिखाता है कि कोई अनोनिमस इंसान लाइक अननोन इंसान आया है और वो वृंदा के सर पे डंडा मार के सारी ज्वेलरी लेके चला जाता है एंड वो पूरा लहूलुहान है। अभी तक उसे नहीं पता कि किसने मारा है या फिर किसने उसकी ज्वेलरी छीनी है।
0: जहाँ एक तरफ वृंदा घायल अवस्था में है तो वहीं दूसरी तरफ संजय काफी परेशान हो रहा है। वो हर जगह वृंदा को ढूंढ रहा है लेकिन वृंदा उसे कहीं मिल नहीं रही और यही परेशानी वो बांट रहा है स्वाति संग फोन पर। लेकिन अब तक संजय ने स्वाति को पूरा सच नहीं बताया है। ऐसे में आज संजय की तड़प देखने लायक है।
1: जी एक्चुअली जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो कनेक्शन है वो मतलब हम फिजिकली नहीं मिलते लेकिन हम मेंटली हम दोनों के सोल एक दूसरे को पहचान जाते हैं जब भी हम एक दूसरे के करीब होते हैं। तो बहुत ही प्योर सा रिलेशनशिप है हमारा और वही दिखाते हैं हमेशा। वो मेरे पास ना हो के भी बहुत पास रहते हैं हमेशा।
0: वैसे लगता है कि जल्द ही वृंदा और संजय का किस्मत कनेक्शन जुड़ने वाला है क्योंकि वृंदा घायल अवस्था में उसी अस्पताल में पहुंची है जहां पर स्वाति उसका इलाज करेगी क्योंकि उसी अस्पताल में स्वाति डॉक्टर है। यानी कि पहले स्वाति और वृंदा का आमना सामना होगा और फिर संजय और वृंदा का। लेकिन इन सब उलझनों में सच कैसे और कब बाहर आएगा ये देखना होगा क्योंकि फिलहाल तो रिश्ते बिखरे हुए हैं।
1: जैसे लगता है स्वाति वो बीच की डोर बनने वाली है जो मुझे और संजय को मिलाएंगी। अब देखते हैं कि मुझे पहले स्वाति के बारे में पता चलता है फिर स्वाति को पहले वृंदा के बारे में पता चलता है। तो हम सीधा हॉस्पिटल में एंट्री दिखाते हैं उसी सेम हॉस्पिटल में जिस हॉस्पिटल में स्वाति भी है। तो अब स्वाति मेरा इलाज करेंगी, हम वही शूट कर रहे हैं जो अभी प्रॉपरली अच्छे से शूट नहीं करा है।
0: भाई जहाँ एक ड्रामा चल रहा है तो वहीं दूसरा ड्रामा भी शुरू हो चुका है। आ गए हैं नरेंद्र और उसके गुंडे। ऐसे में कृष्णा बेन देखिए कैसे उन सभी का सामना कर रही है। कृष्णा बेन ने अपने हाथ में उठा लिया है डंडा। नरेंद्र के साथ साथ उसने उसके गुंडों की भी कर दी है जमकर धुनाई और वहाँ से नरेंद्र और उसके गुंडों को पीट पीट कर भगा दिया है। तो भाई सीन में तो काफी कुछ हो रहा है लेकिन बात करें बिहाइंड द सीन की तो यहाँ आ गए हैं फैंस जो कृष्णा बेन संग खिंचवा रही हैं तस्वीरें। तो भाई हो जाइए तैयार क्योंकि कहानी में अभी कई और मोड़ और कई और ट्विस्ट आने बाकी है। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
2: ताहर और रूही आप दोनों की जोड़ी तो बेस्ट है और आप दोनों हैं कमाल। वो अलग बात है कि आपकी कहानी में कभी धूप कभी छांव, कभी मिलना कभी बिछड़ना, कभी प्यार कभी तकरार, लेकिन आप दोनों को तो करवाना ही चाहिए एक दूसरे के नाम के टैटू क्योंकि आपकी ये जोड़ी है लिटरली मेड फॉर ईच अदर। कितने अच्छे से करते हैं आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट। लेकर चलते हैं आप सबको मन सुंदर के सेट पर।
0: रुचिता का भूतिया ड्रामा, घर वाले बने बंधक, खतरे में रुहान, क्या रूही बचा पाएगी अपने दोनों बच्चों की जान? दंगल टीवी के सीरियल मन सुंदर में गुड़िया के अंदर बसी आत्मा के कब्जे में आ गई है रुचिता और उसी के कहने पर रुचिता ने सभी घरवालों को बना लिया है अपना बंधक। जरा देखिए कैसे सभी घरवाले रस्सियों में बंधे हुए हैं और अपने आप को छुड़ाने की कोशिश में लगे हैं। तो वहीं नाहर भी सांपों के बीच घिर गया है लेकिन डंडों से हर सांप को मारने की कोशिश कर रहा है और तो और घर वालों को भी बचा रहा है। इतना ही नहीं रुचिता के टारगेट में सबसे पहले रुहान है। ऐसे में नाहर ने रुहान की रक्षा के लिए रुहान को रूही के साथ भेज दिया।
3: आत्मा के बारे में सिर्फ तुम्हें पता है, इसका हल सिर्फ तुम ही निकाल सकते हो। जाओ यहाँ से रोहन को लेकर, तुम्हें जाना ही होगा, जाओ।
4: बेटा बेसिकली पहले तो उसने रस्सी से बांध दिया इसलिए कि कोई हिल ना पाए अपनी जगह से. वो जो गुड़िया है उसको लगता है कि मुझे आप क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो एज ए फैमिली. तो उसने क्या किया, ठीक है मैं सबको गुड़िया ही बना दूंगी, मेरी तरह एक खिलौना ही बना, वैक्स स्टैचू बना दूंगी सबको. तो बेसिकली वो सबको डराने की कोशिश कर रही है.
5: यस सो मुझे जो
4: आपकी तो ज्यादा दोस्ती है ना गुड़िया के साथ.
5: अभी
4: एक सेकेंड आप गुड़िया के साथ ज्यादा दोस्ती है ना, क्या आप बताओ क्या बोल रही है गुड़िया आपको.
5: नहीं सो गाइस अभी जो मैंने रस्सी से बांधा हुआ शॉर्ट था ना, तो मुझे उनको देखकर ऐसी हंसी आ रही थी. हाँ पर सो अभी जो मेरी छोटी दादी दिखाई है ना, वो बोल रही थी कि शायद तुमको एंजॉय हो रहा होगा, हम लोग रस्सी से बांधे हैं.
4: आई ऐसे ही बकबक करती है, कोई मतलब नहीं इस बातों का. प्लीज आप लोग देखते रहिए मन सुंदर एंड कीप लविंग अस.
6: रूही रुहान को लेकर चली तो गई और नाहर रुचिता के हाथों से वो गुड़िया लेना चाहता है. ऐसे में उसने कदम भी आगे बढ़ाए लेकिन तेज हवाएं चलने लगी जिसके चलते नाहर मुश्किल में पड़ गया. वहीं दूसरी ओर रूही उस माँ की तलाश कर रही है जिसका बच्चा मर गया था और उसकी आत्मा उस गुड़िया में बसी हुई है और अब सबसे बदला लेना चाहती है. तो वहीं दूसरी ओर उस आत्मा ने रुचिता को अपने वश में कर लिया है और तो और उसी वश के चलते रुहान भी वापस घर आ गया है और अब जो आत्मा कह रही है रुचिता वही कर रही है. सभी घर वालों को मोम की गुड़िया बनाना चाहती है. तभी तो देखिए कैसे रुहान ना चाहते हुए भी उस खोलती हुई मोम के भगोने की ओर जा रहा है कूदने के लिए. लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वहाँ पर सही समय पर आ जाती है रूही उस बच्चे की माँ को लेकर. ऐसे में मौका पाते ही नाहर भी अपने बेटे रुहान को उस भगोने में कूदने से बचा लेता है.

0: ये जो हमारी रुगिया की बच्ची चुहिया आई मीन रुचिता, वो एक गुड़िया के पोजीशन में आ चुकी है, एक भूतनी के मतलब आत्मा के अंदर आ चुकी है। तो वो जो भी नहीं वो जो भी करवा कर रही है, तो उस वजह से ये घर वालों को बेसिकली बहुत नुकसान पहुंचा रही है। तो रूहान स्पेसिफिकली विक्टिम बनता है हर बार की तरह बेचारा, एंड हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये जल्दी सॉल्व हो जाए ये जो भी प्रॉब्लम है। सो रूही इसलिए मार्केट गई है क्या एग्जैक्ट रीजन है जानने के लिए, और हम यहाँ घर वालों को मैं बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, रूहान को, दादी को, छोटी माँ को, बस दिस इज द स्टोरी।
1: अब उस आत्मा ने जैसे ही अपनी माँ को देखा, उसने सबसे पहले अपनी माँ को ही मोम की गुड़िया बनाने का फैसला कर लिया। ऐसे में रूही उसे रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो आत्मा रुकने का नाम नहीं ले रही। उसके वश में आकर देखिए कैसे उस आत्मा की माँ उस खोलते हुए मोम के भगोने की ओर बढ़ती जा रही है। इससे पहले कि देर होती, रूही दौड़कर अपना मोबाइल ले आती है और वही लोरी बजाती है जो उस बच्चे की माँ उसके लिए बजाया करती थी।

0: आखिरकार रूही कामयाब हो गई। उसने ना सिर्फ उस बच्चे की आत्मा के दिल को पिघला दिया बल्कि उस माँ को भी अपने बच्चे से मिला दिया जिसने अपने बच्चे को जलती आग में खो दिया था। लेकिन इसी के साथ एक और ट्विस्ट आ गया है क्योंकि जैसे ही वो आत्मा बाहर निकली रूहानी बेहोश हो गई और ऐसे में नाहर ने अपनी बेटी को अपने गोद में उठा लिया। अब देखना होगा कि रूहानी को होश आ जाएगा या फिर आएगा कहानी में एक और नया ट्विस्ट। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
1: क्या आपको टैटूज और डॉक्टर आरंभी से जुड़ी एक खास बात बताऊं? ये जो आपकी डॉक्टर आरंभी हैं, यानी मेरे शो भाग्य लक्ष्मी की लक्ष्मी यानी ऐश्वर्या खरे, इन्हें पर्सनली भी टैटूज बहुत पसंद है। बिल्कुल यहाँ नेक के पीछे है एक बहुत ही खूबसूरत टैटू जिसे अक्सर मेकअप आर्टिस्ट को कंसील करना पड़ता है क्योंकि ये इनके किरदार के साथ नहीं जाता। तो चलिए अब लेकर चलते हैं आपको सीधा इनके पास और देखते हैं कैसे आगे बढ़ रही है आज ये कहानी।
0: ध्रुव और आरंभी की नोकझोंक।
2: एक अच्छी चीज है जो अभी भी बची है।
0: जाने अनजाने सामने आई ध्रुव के दिल की बात।
2: आपकी बेटी आरंभी।
0: क्या शादी में खुल जाएगा ध्रुव का राज? कलर्स के सीरियल डॉक्टर आरंभी में शुरू हो गई है। राज और नायरा की शादी की तैयारियां, पूरा घर सज गया है और मेहमानों का आना भी शुरू हो गया है। ऐसे में आरंभी के मम्मी पापा भी मेहमान के तौर पर घर पर आ गए हैं और उनकी मुलाकात हो गई है ध्रुव से। इतना ही नहीं, आरंभी के मम्मी पापा को तो ध्रुव बहुत पसंद आया है और ध्रुव भी उनसे बातों ही बातों में अपने दिल की बात कह दे रहा है।
3: ठीक
2: कह रहे हैं आंटी जी। अच्छा है अंकल, एक अच्छी चीज है जो अभी भी बची है।
3: कौन?
2: आपकी बेटी आरंभी।
0: अब जाने अनजाने भले ही ध्रुव के मुंह से बात निकल गई, लेकिन उसने अपनी बात को संभाल लिया। इसी बीच वहाँ पर आ जाती है आरंभी भी। ऐसे में आरंभी के मम्मी पापा बताते हैं कि ध्रुव उसकी तारीफ कर रहा था। ये सुनकर आरंभी हैरान होती है क्योंकि आज तक ध्रुव ने कभी उसकी तारीफ जो नहीं की है। इसी बीच बातों ही बातों में आरंभी के मम्मी पापा की बहसबाजी शुरू हो जाती है जिस पर ब्रेक लगाता है ध्रुव।
4: अगर कभी आपके मन में ऐसी बातें आए ना तो आप कह नहीं सकते ताकि वो बातें आपके मन से निकल
2: जाए। ये ना हो तो इंजन बिल्कुल थप्पड़ जाए। एनीवे सब छोड़िए, आप सही कह रहे हैं, मुझे भी रेडी होने जाना चाहिए। जाना है ना आज के दिन का इंपॉर्टेंट है, 5 मिनट बहुत बड़ा है। हीरो को तो हीरो रहना चाहिए, सही बात है, आज के दिन बहुत बड़ा है।
0: बिल्कुल सही कहा, शादी होने वाली है। ऐसे में इस शादी में शामिल होने के लिए तैयार होकर आना तो बनता है। इतना ही नहीं, ध्रुव न सिर्फ तैयार होकर आया बल्कि उसने मीडिया को भी जमा कर लिया है, क्योंकि आज के दिन ध्रुव ऐसा खुलासा करेगा जिसे सभी घर वाले हैरान होंगे, और उसी की तैयारी उसने कर भी ली है। ऐसे में वो अपने दोस्त से, जो कि एक रिपोर्टर है, उससे बातचीत कर ही रहा था कि तभी वहाँ पर आ जाती है आरंभी, जो उसकी बातें सुन लेती है और उसे डाउट हो जाता है, और ऐसे में वो उसे जानने की कोशिश भी करती है कि आखिर वो क्या कहना चाहता था। बस फिर क्या, अपनी बातों को फिर से घुमाने का काम कर दिया ध्रुव ने।
2: शादी का क्लेम, टनल्स की वेडिंग, टनल्स के घर में इतना बड़ा सेलिब्रेशन किसी खेल से कम थोड़ी है। आई मेंट लेट द गेम्स बिगिन, इट्स अ ह्यूज इवेंट, इतनी सुंदर सेलिब्रेशन, इतने सुंदर लोग, और कोई है जो सबसे ज्यादा
0: फिलहाल तो ध्रुव और आरंभी के बीच नोकझोंक शुरू हो गई है, और आरंभी भी अब ध्रुव की बातों को इतना ध्यान नहीं देती। ऐसे में वो चली तो जाती है, लेकिन ध्रुव वो चैन की सांस लेता है, क्योंकि आरंभी के सामने उसका सच जो नहीं आया है। अब देखना होगा कि शादी में ध्रुव का खुलासा परिवार वालों को जोर का झटका देगा। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
1: अब अगर टैटू बनवाने की बात करें तो देखिए, अनलिमिटेड टैटू डिजाइन्स हैं, लिटरली अनलिमिटेड। आपको भी हो जाएगा कंफ्यूजन कि कौन सा बनवाऊं और कौन सा ना बनाऊं। कुछ ऐसा ही कंफ्यूजन है हमारी इस अगली कहानी में, क्योंकि कहानी का लेखक फिर से लेकर आया है इस कहानी में भी एक नया ड्रामा। अब आप उनसे पूछेंगे कि क्या है ये नया ड्रामा, तो चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आपको इसकी ओर।
5: मैडम आप चिंता मत करिए, थोड़ी देर में गुस्सा ठंडा आ जाएगा सबका।
0: कलर्स की सीरियल बरेली के बच्चन में संगम का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है, क्योंकि वो अपने पापा से मिल नहीं पाई है, उल्टा उसके अपने पापा, मम्मी और भाई से रिश्ते भी टूट गए हैं। ऐसे में उसकी तड़प साफ साफ दिखाई दे रही है, और उसकी तड़प को कृष्णा भी बखूबी समझ रहा है। हालांकि वो उसका दर्द बांटना चाहता है, लेकिन उस कोशिश में वो नाकाम रहता है, क्योंकि संगम ने फैसला ले लिया है कि अब वो कृष्णा के साथ उसके घर नहीं जाएगी, बल्कि अपने मम्मी पापा को सच बताकर उन्हें मनाने की कोशिश भी करेगी। ऐसे में संगम ने कृष्णा को जाने के लिए कह दिया है। बस फिर क्या, ये सुनकर कृष्णा की तड़प जाग उठी, और कहीं न कहीं संगम से न मिल पाने का दर्द उसकी आँखों में झलक रहा है।
6: हमारी वजह से 3 दिन काम सूखा है आपका।
7: गाड़ी तो रोज चलाते हैं मैडम, पर हर रोज कोई अपना नहीं मिलता।
6: क्या मतलब?
7: आप अपने पापा से मिलने के बाद आप वापस बरेली आएंगी ना?
6: पता नहीं, हमारी वजह से इतना सब कुछ हो गया है, हम अपने परिवार वालों को अकेला कैसे छोड़ दें आप? तो जब तक सब ठीक नहीं हो जाता हम यही रुकेंगे। ऐसे अपने परिवार को थोड़ा ना छोड़ के जा सकते हैं हम, उनकी भी जिम्मेदारियां हैं हम पर।
7: समझ सकते हैं, आप रहेंगी कहां पर?
6: घर में।
7: ये लोग रहने देंगे?
6: मना लेंगे हम,
7: और ना माने तो?
6: फिर भी घर पर ही रहेंगे।
7: आज के बाद हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे।
6: मुझे कृष्णा, आपने इतना कुछ किया है हमारे लिए। थैंक यू, आप हमारे साथ खड़े रहे। हम आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे कृष्णा। और हमारे पास फोन तो नहीं है अभी, पर किसी ना किसी का फोन लेकर आपको जरूर कॉल करेंगे। आप हमारा फोन उठाएंगे ना?
0: बस संगम की बातें सुनकर एक तरफ कृष्णा का दिल भी

कृष्णा, सच बताए तो आप हमारे लिए किसी फरिश्ते या किसी दोस्त से कम नहीं है, और जैसे आप इंसान है ना, आपके साथ जिंदगी में सब अच्छा होगा।

0: ये ड्राइवर नहीं है आप कृष्णा जी, अब तो कृष्ण जी की तरह सारथी हैं हमारे, जो हमें लाइफ के सही रास्ते पर ले जा रहे हैं।
1: अब संगम कृष्णा से दूर चली तो जाती है, लेकिन कहानी में आएगा ट्विस्ट, क्योंकि संगम को फिर से कृष्णा के पास आना पड़ेगा। ऐसे में उसके पास आने पर कृष्णा खुश तो बहुत है और चाहता है कि संगम को जल्द से जल्द अपने घर ले जाया जाए। और ऐसे में संगम ने भी फैसला ले लिया है कि वो कृष्णा के पापा और भाइयों को अपने रिश्ते का सच बताएगी। ऐसे में कृष्णा भी संगम का साथ दे रहा है, क्योंकि वो भी नहीं चाहता कि संगम कोई और दुख बर्दाश्त करे। ऐसे में आएगा कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि जैसे ही ये लोग घर पहुंचेंगे तो वहां पर अजब सिंह अपने बेटों के साथ कृष्णा और संगम की शादी की तैयारियां कर चुके होंगे, जिसे देखना होगा काफी दिलचस्प।
0: कृष्णा, हमें लग रहा है हमें आपकी फैमिली को सब सच बता देना चाहिए कि ये शादी नकली है। हम ये भी सोच रहे हैं कि आज ही हॉस्टल चले जाएंगे। ये क्या है, आपके घर पे हमेशा ऐसा ही माहौल रहता है क्या?
2: तो भैया क्या है ये सब, तुम्हारा रिप्सेशन है?
1: ब्यूरो रिपोर्ट।
3: अब क्या होगा श्याम बाबा, गजब फंस गए हैं।
4: वसुधा तो हमसे कह रही हैं कि अगर आपने नया नया टैटू बनवाया है तो उसे धूप से भी बचाना चाहिए, नहीं तो वो फीका पड़ सकता है। एक्चुअली वसुधा, आप तो लेकर आई हैं हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप, तो चलिए अब लेकर चलते हैं आपको वसुधा के पास और देखते हैं ऐसा क्या हो रहा है इनकी कहानी में आज। वसुधा और देवांश की एक कहानी भी लेकर आती है हमारे लिए एंटरटेनमेंट का टैटू, क्योंकि कहानी का लेखक लेकर आता है इस कहानी में भी बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। लेट्स चेक इट आउट।
1: बिगड़ी दादी की तबीयत, परेशान हुए घर वाले, चंद्रिका को लेकर दादी ने मचाया हंगामा, जी टीवी के सीरियल वसुधा में दादी को निकल आई है बीमारी ब्रेन ट्यूमर की। ऐसे में सभी घर वाले परेशान हैं और दादी ने ऑपरेशन कराने से मना कर दिया है, क्योंकि उन्होंने चंद्रिका के सामने शर्त रखी है वसुधा को अपनी बहू मानने की, लेकिन चंद्रिका ने वसुधा को अपनी बहू मानने से इनकार कर दिया है। ऐसे में दादी ने भी अस्पताल जाने से मना कर दिया, लेकिन तभी अचानक उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। ऐसे में इस मौके का फायदा उठाते हुए डॉक्टर की मदद से चंद्रिका उन्हें बेहोशी का इंजेक्शन लगवा देती है ताकि दादी बेहोश हो जाए और उसके बाद अस्पताल ले जाकर उनका ऑपरेशन सफल तरीके से कराया जाए।
5: क्या है कि माजी साहब को मैंने ना नींद के इंजेक्शन दिलवाकर डॉक्टर के साथ जोर जबरदस्ती लेके गई थी ऑपरेशन थिएटर पर। वहाँ पे भी उनका बीपी बहुत बढ़ गया और वो वही बकती, मतलब बोलती रही वहाँ।

0: पे कि मैं ऑपरेशन जब तक शर्त पूरी नहीं होगी नहीं कराऊंगी, तो उनको वापस घर ले आए, तो इसलिए वो बोल रही है कि उसको पुलिस के पास लेके जाओ। वो बहुत गुस्सा है मुझसे और उनकी ये शर्त है कि मैं बहू मान लूं, तो यही है। इसलिए वसुधा ने सोचा कि कम से कम मैं ही इनिशिएटिव लेके मासा मासा बुलाना शुरू कर दिया उसने मुझे, इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है।
1: दादी साहब को ब्रेन ट्यूमर निकल आया है और वो बहुत दर्द में है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, सर में दर्द रहने लगा है, डॉक्टर ने सर्जरी बोली है। तो अब इस मौके का फायदा उठाकर दादी साहब ने मुहिम उठा ली है कि भाई मेरी शर्तें पूरी करो। तो वो शर्त जो है ये है कि वसुधा को अपनाओ, जो चंद्रिका नहीं कर सकती।
2: भाई जब तक दादी बेहोश थी तब तक वो कुछ नहीं कर पाई, लेकिन होश में आते ही उन्होंने बवाल मचाना शुरू कर दिया। चंद्रिका ने तो कोशिश भी की उन्हें मनाने की, लेकिन दादी ने अपना फैसला ले लिया है। और तो और पूरी तरह से होश में आने के बाद उन्होंने सभी घर वालों को एक जगह इकट्ठा किया और फिर चंद्रिका और सभी घर वालों के सामने तमाशा करना शुरू कर दिया। न सिर्फ उन्होंने चंद्रिका पर अपनी नाराजगी जताई है बल्कि चंद्रिका को गिरफ्तार करवाने की धमकी भी दे रही है। भाई घर वाले तो कोशिश कर रहे हैं दादी को मनाने की, लेकिन दादी तो अपनी जिद पर उतर आई है। ऐसे में वसुधा के सामने कोई और चारा ही नहीं बचता और वो सभी घर वालों के सामने चंद्रिका को देवी हुकुम के बजाय मासा कह देती है। अब देखना होगा क्या चंद्रिका मासा शब्द को स्वीकार कर पाएगी। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
3: कुछ लोग तो किसी के प्रति प्यार जाहिर करने के लिए टैटू बनवाते हैं, तो कैसा लगा आज आपको टैटू और एंटरटेनमेंट के आसपास हमारा ये मनोरंजन का सफर? क्या करें, अब तो घड़ी कर रही है इशारा की, वक्त आ गया है आपको बाय बाय कहने का। तो मुलाकात होगी आपसे कल, जहां फिर लेकर आएंगे हम आपके लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से हर अपडेट। और आप तो जानते ही हैं कि एंटरटेनमेंट के 24/7 अपडेट के लिए आपको क्या करना है। आप हमें फॉलो कीजिए ऑन इंस्टाग्राम, लाइक कीजिए ऑन फेसबुक एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल सास बहू और बेटियां। प्लीज रखें अपना अच्छे से ख्याल। नमस्कार।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।

0: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements. Sage University, transforming your passion into profession.
3: पुरी में श्री जगन्नाथ रथ यात्रा का आज दूसरा दिन, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मौसी के घर पहुंचेंगे भगवान। बद्रीनाथ धाम में अब तक 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, जुलाई के मध्य तक दर्शन का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा। पंढरपुर में भगवान विठल के चरणों में एक भक्त ने अर्पित की सोने की पादुकाएं, 57 लाख बताई जा रही है कीमत। प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए नया ड्रेस कोड लागू, सावन में महिलाएं साड़ी सूट और पुरुष धोती कुर्ता पहनकर करेंगे रुद्राभिषेक, जीन्स टी शर्ट में गर्भगृह में नो एंट्री। देश को मिली पहली हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद में हरी झंडी दिखाकर सोनीपत के लिए किया रवाना। आंध्र प्रदेश में अनोखा संयुक्त परिवार, 6 पीढ़ियों के 83 सदस्य एक ही छत के नीचे रहते हैं एक साथ।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद स्टेशन से भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। ये ट्रेन जींद और सोनीपत के बीच 89 किलोमीटर के रूट पर चलेगी। इस ट्रेन में हाइड्रोजन लीक, गर्मी, आग और धुएं का पता लगाने वाले लगाए गए हैं कई सुरक्षा सिस्टम। आम इलेक्ट्रिक ट्रेनों की तरह ये ट्रेन ऊपर लगी बिजली की लाइनों से पावर नहीं लेती। जींद सोनीपत रूट पर 11 स्टेशन पर रुकेगी हाइड्रोजन ट्रेन, करीब 2 घंटे का होगा जींद से सोनीपत का सफर। 75 किलोमीटर प्रति घंटे है इस हाइड्रोजन ट्रेन की रफ्तार, जबकि इसकी डिजाइन स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस ट्रेन में लगे हैं 10 डिब्बे, करीब 2600 यात्री कर सकेंगे सफर। दुनिया में सबसे बड़ी हाइड्रोजन ट्रेन में हुई है शुमार। आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, 25,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की देंगे सौगात। जींद के एकलव्य स्टेडियम में करीब 14,700 करोड़ के विकास कार्यों का पीएम मोदी ने किया शिलान्यास और लोकार्पण, रैली को भी संबोधित किया। जींद के दौरे पर चंडीगढ़ पीजीआई जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 1250 करोड़ की हेल्थ केयर से जुड़ी अहम सुविधाओं का करेंगे उद्घाटन। जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन का भी पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 125 करोड़ रुपए में हुआ पुनर्विकास। अमृतसर से वाराणसी के बीच शुरू होगी नई ट्रेन सेवा, संत रविदास एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे प्रधानमंत्री। पुरी में रथ यात्रा उत्सव का आज दूसरा दिन, भगवान का रथ खींचने के लिए उमड़े लाखों श्रद्धालु। आज मौसी के घर गुंडीचा मंदिर पहुंचेंगे भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा भी साथ। गुंडीचा मंदिर महाप्रभु का माना जाता है जन्म स्थान। 7 दिनों तक भगवान जगन्नाथ गुंडीचा मंदिर में ही रहेंगे। इस दौरान गुंडीचा मंदिर में विशेष पूजा, दर्शन और कई पवित्र अनुष्ठान होंगे। 7 दिन गुंडीचा मंदिर में विश्राम करने के बाद भगवान अपने मुख्य मंदिर के लिए वापसी की यात्रा शुरू करेंगे। इसे बहुधा यात्रा कहा जाता है। पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा में आस्था के साथ साथ मानवीय संवेदनाओं की भी दिखी तस्वीर, मानव श्रृंखला बनाकर एम्बुलेंस को दिया गया रास्ता। दिल्ली के द्वारका इस्कॉन मंदिर में भव्य जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगवान को 11,000 किलो आमों का भोग किया गया। अर्पित पारंपरिक आरती के बाद श्रद्धालुओं के बीच महाप्रसाद के रूप में बांटा गया आम। भगवान जगन्नाथ को एक विशाल मैंगो फेस्टिवल में 108 अलग अलग किस्मों वाले आम का लगा भोग। भक्तों ने पूरे उत्साह के साथ निकाली रथ यात्रा। रथ यात्रा में हजारों की संख्या में भक्त हुए शामिल। भक्तों की सुविधा के लिए जगह जगह लगाए गए स्टॉल। रथ यात्रा कल शाम 4 बजे मंदिर परिसर से शुरू होकर अलग अलग मार्गों से गुजरी, जहां भक्तों ने उत्साह से रथ की रस्सियां खींची। इस रथ यात्रा में दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद हुए शामिल। भगवान की आस्था में रमे हुए नजर आए। उड़ीसा के अंगुल में धूमधाम से निकाली गई भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। जिंदल नगर के देवभूमि मंदिर में हजारों भक्तों और कर्मचारियों के साथ मिलकर रथ खींचा। सांसद और उद्योगपति नवीन जिंदल ने निभाई छेरा पहरा की रस्म। देशवासियों को इस पावन पर्व की शुभकामनाएं दी। आस्था और उल्लास के बीच थूथुकुड़ी में आदि उत्सव की भव्य शुरुआत। पारंपरिक अनुष्ठानों के बीच खोले गए मंदिर के पट। थूथुकुड़ी में आदि उत्सव के पहले दिन भक्तों ने बड़ी संख्या में दर्शन किए। धार्मिक आयोजनों से माहौल भक्तिमय हुआ। संगम नगरी प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए लागू हुए ड्रेस कोड। महिलाएं साड़ी या सूट, वहीं पुरुष धोती कुर्ता पहनकर रुद्राभिषेक करेंगे। दिल्ली NCR में 18 जुलाई तक रहेगी गर्मी, उमस वाला मौसम। 20 जुलाई से हो सकती है बारिश। हिमाचल प्रदेश में 19 जुलाई से भारी बारिश का अनुमान। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। कोलकाता समेत आसपास के जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। 19 जुलाई तक भारी बारिश का अनुमान। नेपाल में लगातार हो रही बारिश से बिहार के सीमावर्ती इलाकों की नदियों में बढ़ा जलस्तर। प्रशासन अलर्ट मोड पर आया। बाढ़ की संभावना के चलते NDRF की टीमों को भी जगह जगह तैनात कर दिया गया। नदियों के तटबंध की सुरक्षा को लेकर भी निर्देश जारी। जम्मू कश्मीर के उदयपुर से सामने आई प्राकृतिक सौंदर्यता की मनमोहक तस्वीरें। हरियाली, पहाड़, बादलों का संगम, पर्यटकों का मोह रहा है मन। उदयपुर की खूबसूरत वादियां और प्राकृतिक नजारे पर्यटकों कर रहे हैं आकर्षित। सुबह की इन तस्वीरों ने किया मंत्रमुग्ध। दमन से नई दिल्ली के लिए सीधी हवाई सेवा का शुभारंभ। पर्यटन, व्यापार, निवेश और विकास को मिलेगी नई गति। आने वाले दिनों में कई शहरों में शुरू होंगी सेवाएं। बलरामपुर की लखपति दीदी दिलमती की बदली तकदीर। सुअर पालन और खेती के दम पर दिलमती बनी आत्मनिर्भर। दिलमती ने कृषि और पशुपालन से रचा सफलता का नया अध्याय। बड़ी आमदनी और परिवार की आर्थिक स्थिति हुई मजबूत। महाराष्ट्र के अकोला में 7 सितंबर को निकलेगी भव्य राजराजेश्वर कांवड़ यात्रा। 50 सालों से चली आ रही है परंपरा। सावन में कांवड़ यात्रा के लिए की जा रही है तैयारी। पूर्णा नदी से पवित्र जल लेकर भगवान श्री राजेश्वर का जलाभिषेक करते हैं हजारों श्रद्धालु।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
2: Stay in the game with TuneIn. Hear non-stop sports talk, live games, and coverage that never slows down. Keep up with your favorite teams from every play to every post-game breakdown. Listen to sports stations like ESPN Radio, NBC Sports Radio, Big 12 Radio, Talk Sport, and more. Plus, catch live games all year round, so you never miss a moment of sports action. Start listening on TuneIn.
4: और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: भाई और बहनों नमस्कार। मैं बाबा रवि गिरी आज जो कार्यक्रम लेके आया हूं वो आपकी आंखें खोल देगा। क्या आप जानते हैं कि मैं 78वें वर्ष में चल रहा हूं, लेकिन आपको शायद ये जानकर विश्वास ना हो कि मैं आज भी रोज कई किलोमीटर आराम से चलना ही नहीं बल्कि दौड़ भी लगा सकता हूं। इस उम्र में जहां लोग दर्द से, खासकर जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, मैं इस उम्र में भी पूरी तरह फिट हूं। न मुझे जोड़ों का कोई भी दर्द है और ना मेरी एनर्जी कम है। आप जानते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो पाया? तो मैं आपको बता दूं कि मेरे बनाए नुस्खों की वजह से, जो इस उम्र में भी मुझे हाथ पैर कंधे घुटने के दर्द से दूर रखते हैं। और आज के कार्यक्रम से ये आपके साथ भी मैं साझा कर रहा हूं। आप भी अगर जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं, दवाएं खाते खाते परेशान हो गए हैं, तो एक बार मेरे नुस्खों को आजमा कर देखें, आपको 100% लाभ मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है। और ये नुस्खे कितने कारगर हैं इसका जीता जागता सबूत मैं आपके सामने बैठा हूं। इस उम्र में भी मेरे शरीर के सारे जोड़ चुस्त हैं, दुरुस्त हैं। मैंने ये नुस्खे अपने 50 वर्षों से भी अधिक के आयुर्वेदिक अनुभवों के ज्ञान और लंबे शोध के बाद तैयार किए हैं और हजारों लोगों को मैंने ठीक भी किया है। अगर आपको कई सालों से जोड़ों के दर्द की समस्या है, कोई चोट की वजह से दर्द है, बढ़ती उम्र के साथ दर्द बढ़ रहा है, या फिर कम उम्र में ही जोड़ों में, खासकर घुटनों में दर्द रहने लगा है, जोड़ों में ग्रीस कम हो गया है, गैप आ गया है, या फिर पानी भर गया है, समस्या चाहे जो भी हो और आपकी उम्र भी चाहे जो भी हो, आपको मेरे बनाए नुस्खे जरूर फायदा देंगे। ये मेरा आपसे वादा है। आपको बता दूं कि पुरुषों के मुकाबले जोड़ों के दर्द की समस्या महिलाओं को जल्दी और ज्यादा होती है, जिसका कारण हार्मोनल असंतुलन की वजह से, यानी मेनोपॉज भी आपको हो सकता है। लेकिन मैं बाबा रवि गिरी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये सभी समस्याएं मेरे नुस्खों से बिल्कुल ठीक हो सकती है और जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाकर आप बिना दर्द के चलना फिरना ही नहीं दौड़ना भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए ये जो नंबर हैं इन पे कॉल करना है, आपको आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको लगता है कि बढ़ती उम्र में जोड़ों का दर्द होता ही होता है, तो मैं आपको बता दूं कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर आप ध्यान देंगे, सही दिनचर्या अपनाएंगे और अपने जोड़ों का ध्यान रखेंगे, तो आपके जोड़ आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, बल्कि उम्र भर आपके शरीर का अच्छे से बोझ उठाएंगे और आपको चुस्त और दुरुस्त रखेंगे। और ऐसा करने में आपको मेरे नुस्खे हर तरह से मदद करेंगे। इन नुस्खों को मैंने इन्हीं सभी बातों को और समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया है। यदि हिम्मत और दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आपकी सोच और आपके प्रयास ही आपको आगे बढ़ाते हैं। जब मैं इस उम्र में भी आराम से कई किलोमीटर तक दौड़ सकता हूं, तो आप क्यों नहीं दौड़ सकते? तो आप अभी ये नीचे जो नंबर दिए गए हैं इन पे कॉल करके मेरे नुस्खों का फायदा उठाएं और अपनी दवा बुक करें। अगर आप सुबह उठते ही अपने घुटनों या पीठ में दर्द महसूस करते हैं तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या आपको वो दिन याद है जब आप बच्चों के साथ पार्क में दौड़ा करते थे या बिना थके सीढ़ियां चढ़ लेते थे और अब थोड़ा सा चलना भी भारी लगने लगता है। जोड़ों का दर्द ना सिर्फ हमारे शरीर को तकलीफ देता है बल्कि हमारी जिंदगी के कई खूबसूरत पलों को भी हमसे छीन लेता है। न रोज के काम अच्छे से कर पाते हैं और न ही हर दिन की भागदौड़ में वो आत्मविश्वास रह जाता है। जरा सी सीढ़ियां चढ़ने पर घुटनों में दर्द होने लगता है, जमीन पर बैठना मुश्किल हो गया है और चलने में भी डर लगता है कि कहीं दर्द और ना बढ़ जाए। सच तो ये है कि जोड़ों का दर्द सिर्फ शारीरिक तकलीफ नहीं देता, ये हमारे अंदर की हिम्मत को भी गिरी पाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दर्द होता क्यों है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण है गठिया यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये सबसे आम प्रकार है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों की घिसावट की वजह से होता है। इसमें कार्टिलेज जो हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है जिससे जोड़ों में दर्द और अकड़न होती है। क्या आप जानते हैं कि गठिया के 100 से ज्यादा प्रकार हैं जिनमें हल्के से लेकर गंभीर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों के दर्द की ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम खुद ही जोड़ों पर हमला करने लगती है। इससे जोड़ों में सूजन, दर्द और समय के साथ हड्डियों की बनावट तक बदल सकती है। तो भाइयों और बहनों, मेरे नुस्खे इन सारी समस्याओं में असर कारक है क्योंकि इनमें ढेरों शक्तिशाली जड़ी बूटियों को मैंने अपने 50 साल से ज्यादा के अनुभव से अलग अलग फार्मूलेशन में मिलाया है जो आपको आपकी समस्या के हिसाब से बनाकर दी जाती है। इसलिए ये बिल्कुल सीधा असर करती है। मैंने ये नुस्खे पुरुष हो चाहे महिला हो, उम्र चाहे 20 साल हो चाहे फिर 70-80 साल हो, चलने में दिक्कत हो, सीढ़ियां चलने में दर्द होता हो, जोड़ों से कटकट की आवाज आती हो, इन सभी समस्याओं पर गहन चिंतन और शोध के बाद ही ये नुस्खे तैयार किए हैं जिनका असर अचूक है। चलती रहनी चाहिए जिंदगी बिना दर्द के और बिना रुकावट के। मैं बाबा रविगिरी आपको कुछ ऐसे नुस्खे और जड़ी बूटियां बताऊंगा जिससे आप अपने जोड़ों का समाधान तुरंत पा सकते हैं। जोड़ों के दर्द में प्रयोग की जाने वाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो मैं बताने जा रहा हूं उनमें सबसे पहला है तेलपर्ण। इसको तेलपर्ण क्यों कहा जाता है कि इसके पत्तों में तेल होता है इसलिए इसको तेलपर्ण कहते हैं। वैसे आम भाषा में इसको नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है ये है सती तेल। ये सूजन को घटाता है, अंदर तक समाकर ये सूजन बढ़ाने वाले इंटरल्यूकिन स्तर को कम करता है और सूजन को घटाता है। इसके बाद में है ये तेजोवती। इसमें मौजूद लिनालूल और लिमोनेन कफ दोष शमन करके और सूजन को घटाता है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर यानी TNF और इंटरल्यूकिन 6 के बढ़े हुए लेवल्स को घटाता है ये। इसके बाद में है ये तेज पत्ता यानी त्वक पत्तर। ये जोड़ों में जकड़न से निजात दिलाता है, जोड़ों में गतिशीलता देता है। इसके बाद में ये है ज्योतिषमती, ये वात और कफ को संतुलित करके जोड़ों के दर्द में आराम दिलाता है। ये है गंध पत्र, ये गंधपुरा पत्र में 85 से 99% तक मिथाइल सिलिसिलेट होता है जो दर्द निवारक है। तो इससे मांसपेशियों, जोड़ों, हड्डियों के दर्द में आराम मिलता है। इसके बाद में ये है लवंग, इसमें प्रस्तुत यूजेनॉल दर्द को और सूजन को कम करता है और अंदर के इन्फेक्शंस को खत्म कर देता है। इसके बाद में यह है तिल का तेल, बहुत अच्छी चीज है ये। तिल के तेल में एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है जो घुटनों में होने वाली सूजन और दर्द को कम करने में प्रभावी होता है। इसके बाद में ये तेल है, ये मेजन करी तेल, इस पौधे में औषधीय गुण होते हैं और इसका उपयोग पारंपरिक रूप से विभिन्न बीमारियों जैसे पेट दर्द और गैस्ट्रो इंट्राइस्टिस के साथ साथ मधुमेह, एडिमा, सर्दी, गठिया, अस्थमा और दर्दनाक चोट के इलाज के लिए किया जाता है। उसके बाद में यह है सुरंजन कटु, ये सूजन रोधी एवं दर्द निवारक प्रभावों के लिए जाना जाता है। यह एक प्रोपेरिएटरी मेडिसिन है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के गठिया में मसल्स और हड्डियों के समर्थन के लिए किया जाता है। इसके बाद में यह है चित्रक मूल, ये गठिया के लक्षणों को कम करने के लिए यानी चित्रक की जड़ अत्यंत फायदेमंद मानी जाती है। यह एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है, यह दर्द निवारक, सूजन को कम करने वाली, एक बैक्टीरिया और फंगस का नाश करने वाली भी है। ये है ट्रिक टू, इसमें मौजूद बायो एक्टिव कंपाउंड जोड़ों के दर्द, सूजन, लालिमा एवं जोड़ों की कठोरता को कम करने में मदद करता है। यह है अजवाइन, अजवाइन पाचन को दुरुस्त करता है, टॉक्सिन को बाहर निकालता है, प्रोटीन, फैट, फाइटोकेमिकल, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन जैसे पोषक तत्व इसमें प्रचुर मात्रा में भरे हुए हैं। आखिर में है अबरक भस्म, यह कफ को संतुलित करके आरए फैक्टर को कंट्रोल करता है और सर्दियों में जो जोड़ों का दर्द ठंड की वजह से बढ़ जाता है उसको नियंत्रित करता है। साइटिका से आजकल बहुत लोग परेशान है, साइटिका आप सभी जानते हैं कि एक टांग में होने वाला दर्द है जिसका उद्गम रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है क्योंकि वहां की नस हिल जाती है। मेरे पास ऐसी अभिमंत्रित ताबीज भी है जो इस दर्द को दूर कर देगी। जोड़ों का दर्द एक असहनीय रोग है, यह एक व्यक्ति से उसकी आत्मनिर्भरता छीन लेता है। तो मेरी एक ही सलाह है, अब गोलियों से नहीं इलाज सिर्फ नुस्खों से करें क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और असर 100% मिलेगा। ये मेरा यानी बाबा रविगिरी का वादा है। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करना है और अपने लिए मेरे नुस्खे मंगवाने हैं। फिर देखिए दर्द कैसे खुद ब खुद भागता है, ये मेरा वादा है। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए और तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो राम राम भाई और बहनों, नमस्कार।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।

0: में बाधा आ रही है? क्या करियर में बार बार रुकावटें पैदा हो रही हैं? कौन सा करें माता पिता उपाय कि बच्चे का जीवन सुधर जाए? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
3: पुरी में श्री जगन्नाथ रथ यात्रा का आज दूसरा दिन, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मौसी के घर पहुंचेंगे भगवान। बद्रीनाथ धाम में अब तक 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, जुलाई के मध्य तक दर्शन का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा। पंडरपुर में भगवान विट्ठल के चरणों में एक भक्त ने अर्पित की सोने की पदुकाएं, 57 लाख बताई जा रही है इसकी कीमत। प्रयागराज के मन कामेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए नया ड्रेस कोड किया गया लागू, सावन में महिलाएं साड़ी सूट और पुरुष धोती कुर्ता पहनकर करेंगे रुद्राभिषेक, जीन्स टी शर्ट में गर्भगृह में नो एंट्री। देश को मिली पहली हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद में हरी झंडी दिखाकर सोनीपत के लिए किया रवाना। आंध्र प्रदेश में अनोखा संयुक्त परिवार, 6 पीढ़ियों के 83 सदस्य एक ही छत के नीचे रह रहे हैं साथ।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुन।
4: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आज हम बात करेंगे शुक्र ग्रह की, जानेंगे हमारे जीवन पर क्या होता है शुक्र ग्रह का प्रभाव। 9 ग्रहों में शुक्र ग्रह का महत्व किसी दूसरे ग्रह से कम नहीं है। शुक्र ग्रह को सुंदरता और ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है। ज्योतिषी कहते हैं कि अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमजोर हो तो शादी में अड़चन और सुख सुविधाओं में कमी के साथ साथ कई सांसारिक मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो आखिर कैसे बचा जाए शुक्र के प्रकोप से और कैसे जाने शुक्र ग्रह के शुभ और अशुभ प्रभाव को, आइए आपको बताते हैं।
5: जब कुंडली का शुक्र होता है बलवान, तब समाज में बढ़ता है आपका सम्मान। जब शुक्र आप पर होते हैं मेहरबान, तब धन धान्य और ऐश्वर्य का मिलता है वरदान। ज्योतिष का ज्ञान कहता है कि अगर आपका शुक्र उच्च का है तो फिर संसार का सारा वैभव आपके द्वार पर दस्तक देगा। ज्योतिषों की माने तो शुक्र का हमारे शरीर और जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, इसीलिए सौरमंडल के नवग्रहों में शुक्र का महत्व सबसे अधिक माना गया है।
6: ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से नवग्रहों का संबंध हर चीज के साथ है, क्या प्राकृतिक क्या अप्राकृतिक, क्या मनोभाव क्या संसार के संबंध, क्या इस संसार की कोई भी चीज है, उन सब के साथ कहीं ना कहीं ग्रह जुड़े हुए हैं। जो कुछ प्राप्त होता है वो ग्रहों के योग के कारण से होता है, और जो कुछ आपके जीवन हाथ से निकलता है वो भी ग्रहों के योगायोग के कारण से ही निकलता है।
5: शुक्र बृहस्पति की तरह ही शास्त्रों के ज्ञाता, तपस्वी और कवि हैं। इन्हें सुंदरता का प्रतीक माना गया है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमजोर हो तो सुंदरता, संवेदनशीलता और प्यार में कमी आ जाती है। ज्योतिषों की माने तो शुक्र वैभव, विलास, सुख, प्रेम और धन संपत्ति का कारक ग्रह है। बिना शुक्र की कृपा के कभी भी व्यक्ति को पारिवारिक सुख नहीं मिलता। शुक्र के जीवन में सौंदर्य और विलासता से संबंध रखता है। ये सुविधा के साथ साथ सुख भी देता है। सफेद रंग प्रेम और हीरा शुक्र का ही अधिकार क्षेत्र है।
6: इस संसार के अंदर एक ऐसा ग्रह है कि जो समस्त प्रकार की निधियों को देता है, समस्त प्रकार के सांसारिक सुखों को देने वाला ग्रह माना जाता है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपका जो भी दाम्पत्य जीवन है वो शुक्र से संबंध रखता है, स्त्रियों का पुरुष से और पुरुषों का स्त्रियों से। ये सुख भी आमतौर पे इसी अनुसार से देखा जाता है। शुक्र आपकी कुंडली में जितना अच्छा होगा, सांसारिक सुख प्राप्त करने के उतना सुयोग आपकी राशि में बनते जाएंगे।
5: ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि आकर्षण और प्रेम के प्रतीक शुक्र ग्रह के प्रभाव से व्यक्ति, समाज, पशु, पक्षी और प्रकृति तक प्रभावित होते हैं। ग्रहों का असर जिस तरह प्रकृति पर दिखाई देता है, ठीक उसी तरह मनुष्यों पर ये असर देखा जा सकता है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि आपकी कुंडली में ग्रह स्थिति बेहतर होने से बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं, लेकिन ग्रह स्थिति अशुभ होने की दशा में अशुभ फल भी प्राप्त होते हैं और इसके लक्षण प्रकट भी हो जाते हैं। तो चलिए जान लेते हैं शुक्र ग्रह के अशुभ होने के लक्षण। शुक्र के कमजोर होने के लक्षण: अंगूठे में दर्द या बिना रोग के ही अंगूठा बेकार हो जाना शुक्र के अशुभ होने की निशानी है। शुक्र के अशुभ होने से त्वचा में विकार और पत्नी से अनावश्यक कलह हो जाती है। शुक्र ग्रह के कमजोर होने पर रूप रंग का आकर्षण कम हो जाता है। अगर शुक्र कमजोर है, स्त्री सुख नहीं मिल सकता है, साथ ही दाम्पत्य जीवन में परेशानी बनी रहती है।
6: पुण्य कार्य ज्यादा से ज्यादा करेंगे तभी वो ग्रहों का संबंध शुभ आपके लिए होगा। यदि आपके द्वारा ज्यादा से ज्यादा शुभ कार्यों की जगह अशुभ कार्य हो रहे हैं तो फिर ग्रह धीरे धीरे अपना प्रभाव खत्म करते चले जाएंगे। माता पिता की यदि जो व्यक्ति सेवा नहीं करते हैं, उनके गुरुजन, माता पिता गुरुजन तीन तत्व हैं इस संसार के अंदर जिनको परमात्मा के तुल्य माना गया है। जो इनके विमुख हो जाते हैं, आप माने आपके समस्त ग्रह कितने ही राजयोग बना रहे हो, उन सबके सब राजयोग जो है वो शैता को प्राप्त हो जाते हैं।
5: ज्योतिष के जानकार बताते हैं यदि आपकी कुंडली में शुक्र अशुभ है तो आर्थिक कष्ट, स्त्री सुख में कमी, त्वचा रोग, मधुमेह जैसी बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है और सांसारिक सुखों में भी कमी आती है। साथ ही ग्रहों की दिशा से भी व्यक्ति का जीवन प्रभावित होता है। जानकार बताते हैं कि शुक्र के साथ यदि कोई पाप स्वभाव का ग्रह हो तो व्यक्ति का चरित्र प्रभावित होता है। शुक्र के साथ मंगल और राहु का संबंध हो जाए तो ऐसी दशा में ये घरेलू हिंसा का वातावरण भी बनता है। ऐसे में शुक्र का मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर शुक्र मजबूत हो तो कई तरह के लाभ भी होते हैं। चलिए जान लेते हैं शुक्र ग्रह के मजबूत होने पर व्यक्ति को क्या क्या लाभ होते हैं।
7: यदि जिनमें कुंडली में शुक्र मजबूत स्थिति में विद्यमान है, जैसे वृषभ राशि के हैं, तुला राशि के हैं, मीन राशि के हैं, किसी पापक ग्रह से पीड़ित तो नहीं है, तो निश्चित तौर पर जीवन में जो सांसारिक वस्तुएं हैं, जो ग्लैमर है, जो कलात्मकता है, जो भोग है, जो वैभव है, जो सौभाग्य है, वह बढ़ता चला जाता है। व्यक्ति का कर्म का फल आसानी से मिलता चला जाता है।
5: कुंडली में शुक्र ग्रह अनुकूल हो तो सौंदर्य प्रसाधन की खरीद कराता है, विवाह की स्थितियां उत्पन्न होती हैं, वैभव विलास का वातावरण बन जाता है। ऐसा माना जाता है कि शुक्र के ताकतवर होने से स्त्री पक्ष से मिलने वाले सुख में भी बढ़ोतरी होती है। आइए आपको बताते हैं कि क्या है मजबूत शुक्र के लक्षण। शुक्र अगर मजबूत हो तो व्यक्ति बहुत आकर्षक होता है। देखने में कैसा भी हो पर व्यवहार और स्वभाव अद्भुत होता है। ऐसे लोग बहुत ज्यादा नाम यश अर्जित करते हैं। ये ज्यादातर मीडिया, फिल्म अथवा कला के क्षेत्र में होते हैं। ऐसे लोगों को स्त्रियों से बहुत सम्मान मिलता है और दंपत्य जीवन सुखद होता है। ऐसे लोगों को नींद बहुत अच्छी आती है, सुख और सुविधा बड़ी आसानी से मिल जाती है। शुक्र के बलवान होने से जीवन की तमाम स्थितियां अनुकूल बन जाती हैं, जबकि शुक्र के कमजोर होने की दशा में जीवन विपत्तियों से भर जाता है। आगे हम आपको बताएंगे शुक्र को मजबूत करने के ज्योतिषीय उपाय। तब तक आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार।
4: ज्योतिष के जानकारों की माने तो शुक्र ग्रह भौतिक सुख और संपन्नता का स्वामी है। शुक्र को सुंदरता का प्रतीक माना जाता है और शुक्र शारीरिक सुखों का कारक भी होता है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर है तो कुछ आसान से ज्योतिषीय उपायों से इसे मजबूत किया जा सकता है।
5: जब शुक्र के कारण होने लगे नुकसान, तब एक महा उपाय से होगा समाधान। शुक्र की शुभता के लिए कीजिए महाप्रयोग। महादेव की कृपा से बनेंगे समृद्धि के योग। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि नौ ग्रहों में अहम स्थान रखने वाले शुक्र का जीवन में खास महत्व होता है। कुंडली में शुक्र अशुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति को वो ऐश्वर्य नहीं मिल पाते जिसकी वो कामना करता है। साथ ही वैवाहिक जीवन में भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
7: यदि जीवन में सुख से संबंधित अवरोध है, दांपत्य सुख में अवरोध है, वैवाहिक कार्यक्रमों में अवरोध है, प्रेम संबंधों को लेकर के तनाव की स्थिति बनी रहती है, साथ ही साथ जो भी ग्लैमरस चीजें हैं, भौतिकवादी चीजें हैं, सिनेमा क्षेत्र है, इससे संबंधित अगर आप प्रयास कर रहे हैं और सफल नहीं हो रहे हैं, अवरोध हो रहा है, रुकावट आ रही है, तो निश्चित ही मान लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र की स्थिति खराब है, शुक्र अवरोधक स्थिति में विद्यमान है। ऐसे में अपने मूल कुंडली के अनुसार यदि उपाय कर लेते हैं तो निश्चित ही सुधार।
5: माना जाता है कि शुक्र के दोषों को दूर करने के लिए शुक्रवार को विशेष उपाय किए जा सकते हैं। ज्योतिष के जानकार माने तो शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा से शुक्र को बलवान किया जा सकता है। शुक्र को बलवान करने के लिए और भी उपाय हैं। तो क्या है वो उपाय, चलिए जान लेते हैं। हर शुक्रवार शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। मंत्र जाप कम से कम 108 बार करना चाहिए। मंत्र जप के लिए रुद्राक्ष की माला का उपयोग करना चाहिए। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को या किसी मंदिर में दूध का दान करें। शुक्रवार को किसी विवाहित स्त्री को सुहाग का समान दान करें। शुक्रवार को शुक्र मंत्र द्रान द्रीन द्रोन सह शुक्राय नमः का जाप करें। मंत्र जाप की संख्या कम से कम 108 होनी चाहिए।
6: इस संसार में हम जो कुछ भोगते हैं वो अपने कर्मानुसार ही भोगते हैं, चाहे वो कर्म इस जन्म में किए हों, चाहे वो पूर्व जन्म में किए हों। हम जब ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान अध्ययन करते हैं तो उसके अंदर दशाओं का वर्णन करते हुए हमारे यहाँ भुक्त और भोग्य काल की गणनाओं का वर्णन किया जाता है और उसके अनुसार से दशाओं का निर्णय चलता है। उसके अनुसार से हमें पता चलता है कि व्यक्ति पुण्य करके आया है या पाप करके आया है। तो जो शुक्र की वर्चस्व को प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले दाम्पत्य जीवन को सुख करने के लिए शुक्र की अच्छी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करें, शुक्र के मंत्र का जप करें, और तो और महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो शुक्र के जो शक्ति है उसको बढ़ाने का हमें प्रयास करना चाहिए।
5: ज्योतिषी मानते हैं कि इन महा उपायों से कुंडली के शुक्र को बलवान बनाया जा सकता है। हीरा, चांदी, चावल, मिश्री, सफेद वस्त्र, दही, सफेद चंदन का दान से शुक्र के दोष कम हो सकते हैं। यदि शुक्र मुख्य ग्रह होकर फलदायक ना हो तो इसके भी उपाय किए जा सकते हैं। तो चलिए उन उपायों को भी जान लेते हैं। माँ लक्ष्मी की सेवा आराधना करें, श्री सूक्त का पाठ करें, ब्राह्मण की सेवा करें, कन्याओं को भोजन कराएं, ज्वार का दान करें, गरीब बच्चों और विद्यार्थियों में किताबें बांटें, कमजोर बेघर लोगों के पालन पोषण का जिम्मा लें, अन्न का दान करें, ओम शुं शुक्राय नमः का 108 बार नित्य जाप करें।
7: अब शुक्र को ठीक कैसे किया जाए, तो ठीक करने का तात्पर्य यह है कि सूर्य को बल कैसे प्रदान किया जाए। तो सूर्य को बल प्रदान करने के लिए एक तो शुक्र के मंत्र का जप है, दूसरा शुक्र की जो अधिष्ठात्री देवी है वो माता लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी जी की आराधना करके कर सकते हैं। उसके उपरांत भगवान शिव की आराधना करके शुक्र को मजबूत कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त जो महिलाएं हैं, बच्चियां हों, बुजुर्ग हों, युवा हो, जो भी महिला वर्ग है उनका सम्मान करते हैं तो भी शुक्र अपना शुभ प्रभाव छोड़ता है। गौ की सेवा करने से भी शुक्र के प्रभाव में सकारात्मकता आती है।
5: ज्योतिषी के जानकार बताते हैं कि शुक्र का मानव जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। माना जाता है कि जब शुक्र अस्त होते हैं उन दिनों में शुभ कार्यों पर रोक लग जाती है, कोई भी संस्कार नहीं किए जाते हैं। माना जाता है कि 75 दिनों तक अस्त रहने के बाद शुक्र फिर से उदित होता है। तो अगर शुक्र आपकी कुंडली में बुरे प्रभाव दे रहा है तो उसके बुरे प्रभाव को कम करने के लिए क्या करने होंगे उपाय, आइए जानते हैं। शुक्रवार के दिन व्रत रखें, मिठाइयां और खीर कौओं और गरीबों में बांटें, घर में तुलसी का पौधा लगाएं, सफेद चंदन का तिलक लगाएं, पानी में चंदन मिलाकर स्नान करें, सुगंधित पदार्थ का इस्तेमाल करें, शुक्रवार का व्रत रखें, ग्रह कलह छोड़कर परिवार के सदस्यों के साथ मिलजुल कर रहें।
7: जब हम स्त्री का सम्मान करेंगे तो स्त्री का कारक ग्रह दाम्पत्य सुख का कारक ग्रह भी होता है, ग्लैमर का कारक ग्रह होता है, धन का कारक ग्रह भी माना जाता है नैसर्गिक कुंडली में। तो ऐसी स्थिति में जब हम स्त्रियों का सम्मान करेंगे और विशेष करके विधवा स्त्री का भी अगर हम सम्मान करते हैं तो शुक्र अपना संपूर्ण शुभ प्रभाव देता है और स्थितियों में सुधार होती चली जाती है।
5: ओम ह्रीं श्रीं शुक्राय नमः मंत्र का जाप भी बलवान शुक्र की शुभता आपको दिला सकता है। तो आप भी ज्योतिष में बताए ये महा उपाय अपनाकर न सिर्फ अपनी कुंडली के शुक्र को बलवान कर सकते हैं बल्कि जीवन में वैभव यश और दौलत की कामना भी पूर्ण हो सकती है।
4: ज्योतिष के जानकारों की माने तो शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो आपकी दशा और दिशा तय करता है, इसलिए कुंडली में शुक्र का मजबूत होना बेहद जरूरी है। तो आइए आपको शुक्र ग्रह के शुभ और अशुभ लक्षण और उनसे जुड़े कुछ और सरल उपायों के बारे में बताते हैं जिनसे आपका जीवन होगा और भी सरल और बेहतर।
5: जब मजबूत होंगे शुक्र के प्रभाव तो नहीं रहेगा सुख संपन्नता का अभाव, चमकेगा आपकी किस्मत का तारा, खुल जाएगा खुशियों का पिटारा। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि जीवन में संपन्नता के लिए सबसे उत्तम ग्रह है शुक्र। हर प्रकार के भौतिक सुख देने वाला शुक्र ग्रह ही है, इसलिए शुक्र का कुंडली में बलिष्ठ होना बहुत आवश्यक है। कुछ लक्षण ऐसे हैं जिनसे पता चल जाता है कि कुंडली में शुक्र शुभावस्था में है या अशुभावस्था में। चलिए जानते हैं कैसे दिखाई देते हैं वो लक्षण। शुक्र ग्रह मजबूत हो तो व्यक्ति खूबसूरत होता है, अपनी उम्र से छोटा लगता है, विवाह जल्दी हो जाता है, जीवन साथी का भरपूर सुख मिलता है, आंखें बहुत सुंदर होती हैं, नजर भी तेज होती है, व्यक्ति सज संवर कर रहता है, सुंदर परिधान पहनता है।
7: व्यक्ति के जीवन में जो दाम्पत्य सुख है, प्रेम संबंध है, उसमें मधुरता बनी रहती है और उसकी उपलब्धता रहती है, व्यक्ति निराश नहीं होता है, व्यक्ति के अंदर निगेटिविटी नहीं आती है। साथ ही साथ यदि शुक्र मालव्य योग के साथ विद्यमान है तो निश्चित ही सभी प्रकार के वैभव को उपलब्ध करा है।
5: माना जाता है कि जिस भी साधक का शुक्र बलवान होता है उसे जीवन में हर सुख धन वैभव ऐश्वर्य मिल जाता है, उसकी सोच सदा सकारात्मक रहती है और मन प्रसन्न रहता है। शुक्र जब शुभ हो तो जीवन में उसके क्या प्रभाव होते हैं ये आपने जान लिया। आइए अब आपको बताते हैं क्या होता है जब शुक्र अशुभ हो जाता है। धन की कमी महसूस होती है, नजर जल्दी कमजोर हो जाती है, नाखून बढ़ाना, अजीबोगरीब वस्त्र पहनना, विवाह जल्दी नहीं होता और वैवाहिक जीवन में कष्ट बना रहता है।
6: शुक्र को तामसिकता से शराब से जोड़ना शुरू कर देते हैं, कहीं ज्योतिष के अंदर इस प्रकार का वर्णन नहीं मिलता। यदि शुक्र को बल देना चाहते हो तो अपने जो संबंध है, दाम्पत्य जीवन के संबंध है, उनको मधुर रखने का प्रयास करना चाहिए। शुक्र का संबंध गौ के साथ है, जितनी गौ सेवा करोगे, निधि जो है भारतीय संस्कृति में गौ ही मानी जाती है, जितनी गौ सेवा करोगे उतना ज्यादा शुक्र को बल प्राप्त करने का सुयोग आपकी राशि में बनेगा।
5: शुक्र नैसर्गिक शुभ ग्रह होकर भी काम और सुख का कारक माना जाता है, व्यक्ति के जीवन में शुक्र ग्रह का अहम महत्व है। ज्योतिष जानकारों की माने तो शुक्र ग्रह को वृषभ और तुला राशि का स्वामी ग्रह माना जाता है, साथ ही बुध और शनि भी शुक्र के मित्र ग्रह हैं, जबकि सूर्य और चंद्रमा इसके शत्रु कहे जाते हैं। शुक्र ग्रह प्रेम, कलात्मक क्षमता, खुशी जैसे गुणों का स्वामी है, इसलिए जिन लोगों का शुक्र मजबूत है उनका जीवन मनोरंजन से भरपूर रहता है। जानकारों की माने तो किसी व्यक्ति पर शुक्र की दशा 20 वर्षों तक रहती है जो दूसरे ग्रहों के मुकाबले सबसे ज्यादा है, इसलिए अगर आपका शुक्र कमजोर है तो इन उपायों के जरिए उसे मजबूत करें और जीवन को सुखमय बनाएं।
4: और इसी के साथ प्रार्थना हो स्वीकार में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती
8: है। समर हिट्स ब्लेंड्स ओल्ड स्कूल जैम

0: Every game, every moment, TuneIn keeps you close to the action. Follow your favorite teams all season long with live games, nonstop sports talk, and expert sports analysis so you can jump into the action. Hear it all on ESPN Radio, NBC Sports Radio, Big 12 Radio, Talk Sport, and more. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices at home, in the car, or on the go, so you never miss a second of sports action. Search sports to start listening now.
1: और अब आपको लेकर चलते हैं उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में, जहां हर दिन हजारों श्रद्धालु भगवान महाकाल के दर्शन के साथ अपनी श्रद्धा भी अर्पित करते हैं। तीन तस्वीरें इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बता दें, कोई नकदी दान करता है तो कोई सोना चांदी और कीमती आभूषण चढ़ाता है। हाल के दिनों में कुछ मंदिरों में दान और चढ़ावे को लेकर उठे विवाद के बीच महाकाल मंदिर की दान व्यवस्था चर्चा में है। यहाँ चढ़ावे में आई हर चीज का न सिर्फ रिकॉर्ड रखा जाता है बल्कि उसकी गुणवत्ता की भी जांच की जाती है। बता दें कि मंदिर समिति के अनुसार चढ़ावे में मिले सोने और चांदी के आभूषणों की जांच के लिए सोनारों की 3 सदस्यों वाली विशेषज्ञ टीम है। ये टीम सोने चांदी की शुद्धता, उसकी गुणवत्ता और कैरेट की बारीकी से जांच करती है। जांच पूरी होने के बाद उसका लिखित रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। दानदाता को मंदिर समिति की ओर से रसीद भी जारी कर दी जाती है, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहती है।
2: उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल के दर्शन के लिए रोजाना देश विदेश से हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं। भक्त यहां दिल खोलकर सोना चांदी नकदी और बहुमूल्य आभूषण दान करते हैं। हाल ही में कुछ मंदिरों में चढ़ावे और दान की राशि को लेकर सामने आए विवादों के बीच महाकाल मंदिर की सुरक्षा और दान व्यवस्था एक आदर्श मिसाल बनकर उभरी है। मंदिर प्रशासन का दावा है कि यहां आने वाले चढ़ावे की एक एक चीज का रिकॉर्ड रखा जाता है और उसकी गुणवत्ता की वैज्ञानिक जांच की जाती है।
3: बाबा महाकाल की सेवा में जो सेवार्थी लगे हुए हैं, उसमें सीसीटीवी कैमरे की निगरानी के साथ 3 लोगों की समितियां भी है। स्वर्ण का समाज के पारखी जोरिया है, वो पूरा जांच करने के बाद ही और प्रत्येक चढ़ावे की राशि का पूर्णता पारदर्शिता के साथ में सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में जांच होती है। बाबा महाकाल का आशीर्वाद पूरी सृष्टि के ऊपर तो है, उज्जैन वासियों के ऊपर भी है और उसी के कारण प्रतिदिन मेरे बाबा के दर्शन करने लगभग 2.25 लाख दर्शनार्थी प्रतिदिन दर्शन करने के लिए आते हैं। उज्जैन के निवासी उनकी सेवा के लिए, उज्जैन के सेवक उनकी सेवा के लिए तत्पर रहते हैं और पूरी पारदर्शिता के साथ में आने पाई का पूर्णता व्यवस्थित हिसाब होता है।
2: मंदिर समिति के अनुसार चढ़ावे में मिले सोने और चांदी के आभूषणों की जांच के लिए सुनारों की 3 सदस्यों वाली विशेषज्ञ टीम है। ये टीम सोने चांदी की शुद्धता, गुणवत्ता और कैरेट की बारीकी से जांच करती है। जांच पूरी होने के बाद उसका लिखित रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। दानदाता को मंदिर समिति की ओर से रसीद भी जारी की जाती है, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहती है।
4: देखिए, मैं 2020-21 से मैं यहाँ मूल्यांकन समिति में काम कर रहा हूँ और मुझे ये देखने में आया है कि कोई छोटी मोटी धातु कभी कोई गलती से कोई चढ़ा जाता है, वही आती है, लेकिन जो बड़े मुकुट होते हैं, कुंडल होते हैं, तो वो तो सब असली पाए जाते हैं और जो नकली होते हैं वो या तो कोई ऐसे फ्रॉड जेलर्स के यहाँ से परचेसिंग कर लेता है श्रद्धालु तो आ जाती है, या फिर अन्य कोई खोया पाया विभाग से जो प्राप्त होती है, जैसे किसी का गुम हो जाता है, कोई नकली पायल पहन के आया, कोई नकली सामग्री रहती है, तो इस प्रकार से कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है नकली का। वहां पर जितने भी धातु आती है लगभग असली ही आती है।
2: मंदिर में दान से जुड़ी हर गतिविधि सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होती है। आभूषणों की जांच के दौरान मंदिर समिति के प्रभारी, संबंधित कर्मचारी और डिप्टी कलेक्टर स्तर का अधिकारी मौजूद रहते हैं। जांच पूरी होने के बाद दान की चीजों को मंदिर के सुरक्षित खजाने यानी स्ट्रांग रूम में जमा कर दिया जाता है। साथ ही उसका पूरा विवरण कंप्यूटर और सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है। दान व्यवस्था को और आधुनिक और सुरक्षित बनाने के लिए जल्द ही मंदिर में हाईटेक मशीन लगाई जाएगी। इस मशीन की मदद से सोने और चांदी के असली या नकली होने की तुरंत पहचान की जा सकेगी।

0: के बावजूद सुनारों की विशेषज्ञ टीम पहले की तरह जांच का कार्य जारी रखेगी।
1: स्वर्ण और जो रजत के आभूषण हैं उनका ऑन द स्पॉट जो है वो हम उसको वेरीफाई कर सके, उसमें शुद्धता का परसेंट ऑन द स्पॉट नाप चुके, इसके लिए हम जो है अभी वर्तमान में जो बहुत ही अच्छी कैरेटोमीटर जिसको मशीन बोलते हैं वो लेकर आ रहे हैं, जो हमारे बड़े बड़े जो शोरूम वगैरह है सुनार इसका प्रयोग करते हैं। इसके माध्यम से हम तत्कालिक रूप से जो है वो सोने चांदी का टंच पता कर सकते हैं कि जो दान में दी गई सामग्री है वो खरी है कि खोटी है।
0: हाल के दिनों में कुछ मंदिरों में दान को लेकर सामने आए विवादों के बीच महाकाल मंदिर प्रशासन यह आश्वस्त करता है कि यहाँ पारदर्शिता और सुरक्षा के सभी मानकों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। भक्तों की आस्था और उनके द्वारा दिए गए दान का यहाँ पूरा सम्मान किया जाता है और पूरी सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ, गुड न्यूज टुडे।
2: गर्मी जब 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच जाए तो राहत की हर कोशिश किसी वरदान से कम नहीं होती है। देखिए, चीन में इन दिनों भीषण गर्मी लोगों के साथ साथ जानवरों की भी परीक्षा ले रही है, उन्हें परेशान कर रही है, लेकिन इस चुनौती से निपटने के लिए अलग अलग शहरों में अनोखे इंतजाम किए गए हैं।
3: कोई बर्फ की सिल्लियों के बीच रखे ताजा फलों के मजे ले रहा है तो कोई बढ़ती तपिश में राहत की फुहार का आनंद ले रहा है, और तो और कहीं तो गलियारा ही गर्मी में सर्दी वाला एहसास करा रहा है। दरअसल चीन के कई हिस्सों में गर्मी की तपिश बढ़ी है, तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। ऐसे में लोगों और बेजुबानों को राहत देने के नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। अब जरा चीन के चोंगकिंग शहर के मशहूर शान चेंग लेन को देखिए। यहां 400 मीटर लंबा मिस्टिंग सिस्टम शुरू किया गया है। इस रास्ते पर हवा में बेहद महीन पानी के फुहारे फैल जाती हैं, जो पल भर में गर्मी में कूल कूल एहसास कराती हैं। सिर्फ इंसानों ही नहीं बल्कि हेफेई के चिड़ियाघर में जानवरों के लिए भी गर्मी से बचाव के खास इंतजाम किए गए हैं। यहाँ रेड पांडा को बर्फ की सिल्ली पर रखे ठंडे फल परोसे जा रहे हैं। बंदर बर्फ के बड़े टुकड़ों के साथ खेलते हुए गर्मी से राहत पा रहे हैं, तो वहीं हाथियों के लिए ठंडे पानी की फुहार चलाई जा रही है। इतना ही नहीं, जानवरों को ताजे फल और सब्जियां भी दी जा रही हैं, ताकि उनके शरीर में पानी की कमी न हो और वो इस भीषण गर्मी का सामना आसानी से कर सकें। कुल मिलाकर चाहे ऐतिहासिक गलियों में घूमते सैलानी हो या फिर पिंजरे के भीतर मजे लेते ये बेजुबान, गर्मी से निपटने के इन अनोखे और ठंडे ठंडे तरीकों ने सबका दिल जीत लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: It's Stormy, and previously on my show, Carly Pearce shared why she loves award show season.
6: For me, celebrating the people who create country music is about celebrating each other and rooting each other on and being a country music family and community and knowing that we are the generation right now that is going to influence many generations to come.
5: Listen to the Stormy Warren Show on the Big 615 weekdays 7 a.m. to 1 p.m. Central right here on TuneIn.
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
13: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
13: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
12: क्या आपके बच्चे की शिक्षा में बाधा आ रही है? क्या करियर में बार बार रुकावटें पैदा हो रही हैं? कौन सा करें माता पिता उपाय कि बच्चे का जीवन सुधर जाए? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
4: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, TIT भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स, Sage University, transforming your passion into profession.
13: पुरी में श्री जगन्नाथ रथ यात्रा का आज दूसरा दिन, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मौसी के घर पहुंचे भगवान। धाम में अब तक 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, जुलाई के मध्य तक दर्शन का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा। पंडरपुर में भगवान विट्ठल के चरणों में एक भक्त ने अर्पित की सोने की पादुकाएं, 57 लाख बताई जा रही है कीमत। प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए नया ड्रेस कोड लागू, सावन में महिलाएं साड़ी सूट और पुरुष धोती कुर्ता पहनकर करेंगे रुद्राभिषेक, जीन्स टी शर्ट में गर्भगृह में नो एंट्री। देश को मिली पहली हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद में हरी झंडी दिखाकर सोनीपत के लिए रवाना किया। आंध्र प्रदेश में अनोखा संयुक्त परिवार, 6 पीढ़ियों के 83 सदस्य एक ही छत के नीचे रहते हैं एक साथ।

0: ताकि बोझ ना बने तीसरी भाषा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। चर्चा जीसी को लेकर करेंगे। मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और कोर्ट ने क्या कहा और उसके मायने क्या हैं और पेरेंट्स इसको लेकर क्या सोचते हैं, इस पर भी बात होगी। साथ ही साथ स्कूल कितना तैयार है, इस पर भी बात करेंगे। आज का मुद्दा यही है। दरअसल सीबीएसई ने नई भाषा नीति लागू की, जिसके तहत अब नौवीं क्लास के लिए भी तीन भाषाएं पढ़नी जरूरी हैं। धीरे धीरे सिस्टम लागू किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इसके अंक भी जुड़ेंगे, जिसमें बोलने और समझने पर अंक मिलेंगे। लेकिन इसी बीच ये मामला अदालत तक पहुंच गया। आखिर क्यों सीबीएसई की भाषा नीति पर क्या है सुप्रीम कोर्ट की सलाह? नौवीं नहीं, क्या छठी क्लास से ही होगी इसकी शुरुआत? क्या अदालत के सुझाव के बाद होगा भाषा नीति में कोई बदलाव? इसी पर आज हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ देश के शिक्षाविद जुड़ेंगे और साथ ही साथ हमारे साथ एडवोकेट भी जुड़ेंगे और करियर काउंसलर भी होंगे, जिनसे इसको लेकर आगे बातचीत करेंगे। तो स्कूलों में भाषा का क्या है फॉर्मूला, क्यों ये अदालत की चौखट तक पहुंचा, वो आपको हम पहले समझा देते, फिर आगे चर्चा करेंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में तीन भाषाओं के फॉर्मूले को चुनौती दी गई है। ये याचिका तमिलनाडु सरकार ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। इसमें राज्य सरकार ने केंद्र पर तीसरी भाषा के रूप में हिंदी थोपने का आरोप लगाया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तीसरी भाषा हिंदी के बजाय संस्कृत भी हो सकती है। तीसरी भाषा नियम पर सुप्रीम कोर्ट की सहमति है, लेकिन अदालत ने इसे नौवीं क्लास में लागू करने पर सवाल उठाए हैं और साथ ही साथ नौवीं में तीन भाषा अनिवार्य किए जाने पर भी चिंता जताई है। ऐसे में जस्टिस डीवी नागरत्ना ने सीबीएसई को एक सलाह दी है। उन्होंने छात्रों पर बोर्ड परीक्षाओं के बोझ का तर्क दिया। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि नौवीं में तीसरी भाषा अनिवार्य करने से बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों पर गैर जरूरी मानसिक दबाव पड़ता है, लिहाजा उन्होंने नौवीं के बजाय छठी से लागू करने की सलाह दी है। हम आपको ये भी बता दें कि इसी साल से नौवीं में भी तीन भाषाओं का पैटर्न लागू किया गया है और इसमें कहा यह गया है कि भाषा का मूल्यांकन होगा और अंक भी मिलेंगे। इससे पहले कि हम मामले की शुरुआत करें, चर्चा करें इसको लेकर, मेरे सहयोगी संजय शर्मा तफसील से बता रहे हैं कि आखिर कोर्ट में किस तरीके से मामला पहुंचा और कोर्ट ने क्या कहा और इसके मायने क्या है।
1: सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई के त्रिभाषा फार्मूले यानी नौवीं क्लास में तीन भाषाएं पढ़ाए जाने की प्रक्रिया पर चिंता जताई है। जस्टिस नागरत्ना की कोर्ट ने यह साफ कहा कि जिस तरह से नौवीं कक्षा में तीन भाषा फार्मूले को नीति को लागू किया जा रहा है, इससे उन्हें चिंता इसलिए है क्योंकि इससे बोर्ड की परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों पर ज्यादा भार पड़ जाता है। अगर सरकार तीन भाषा सिखाना चाहती है छात्रों को तो ऐसा पांचवी या छठी क्लास में से इसमें सिखाया जा सकता है, क्योंकि इससे ये होगा कि बच्चे भाषा भी सीख जाएंगे और उन्हें बोर्ड की परीक्षा के समय किसी तरह की मुश्किल नहीं होगी। अब आते मुख्य मुद्दे पर, किस मुद्दे पर जस्टिस बीवी नागरत्ना ने ये टिप्पणी की। दरअसल तमिलनाडु सरकार ने मद्रास हाई कोर्ट के एक फैसले को चुनौती दी है, जिसमें उन्होंने राज्य में जगह जगह जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने की बात कही है और उस जवाहर नवोदय विद्यालय में जो त्रिभाषा फार्मूला है उसको लेकर तमिलनाडु सरकार की परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं। उनका ये कहना है कि इसके जरिए सरकार और सीबीएसई छात्रों पर हिंदी थोप रहे हैं। जस्टिस नागरत्ना ने इसका विश्लेषण अलग ढंग से किया। उन्होंने कहा कि जब कोई भारतीय भाषा पढ़ाई जाती है, त्रिभाषा फार्मूला क्या है, अभी दो लाइन में समझा देते हैं। त्रिभाषा फार्मूला ये है कि सीबीएसई ये कहता है कि नौवीं कक्षा में तीन भाषाएं सीखनी पड़ेंगी छात्रों को, जिसमें एक स्थानीय भाषा होगी यानी वो भाषा मद मातृभाषा की तरह क्षेत्रीय भाषा होगी, दूसरी हिंदी या अंग्रेजी में से एक भाषा होगी और तीसरी कोई भारतीय भाषा होनी चाहिए। तो इस पर यह कहा गया कि त्रिभाषा के रूप में केंद्र सरकार और सीबीएसई के जरिए हिंदी थोप रही है गैर हिंदी भाषी राज्यों में। इस पर जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि तीसरी भाषा तो संस्कृत भी हो सकती है, तो ऐसे में आपको क्या दिक्कत है। तो ये तमाम इन तमाम चीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी चिंता भी जताई है, साथ ही ये भी कहा है कि जो हाई कोर्ट का फैसला है उसमें उन्हें किसी तरह की कोई खामी नहीं लग रही। इसको अगर अलग सही पॉजिटिव नजरिए से देखा जाए तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार अपने पॉलिटिकल नजरिए से देख रही है, जिसमें उसकी पॉलिटिकल विचारधारा है, उसको कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि डेंट हो सकता है, उस पर असर पड़ सकता है। जिस चीज को लेकर तमिलनाडु की सरकारें और राजनीतिक पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां वहां पर जिस तरह का माहौल बना के रखती हैं, तो इन त्रिभाषा फार्मूले से इसमें दिक्कत हो सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है उसे एक बीच का मध्य मार्ग अपनाया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वो हिंदी के बजाय संस्कृत ले लें, पढ़ने में क्या दिक्कत है। तीन भाषा फार्मूले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ उसके समय को लेकर दिक्कत जरूर है कि अगर नौवीं कक्षा में अगर आप तीन भाषाओं पर जोर देंगे जिसमें से, तो ऐसे में बोर्ड की तैयारी करने वाले, बोर्ड दसवीं की परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों पर ज्यादा प्रेशर होगा, जो उनके समुचित और सर्वांगीण विकास के लिए थोड़ा उस पर असर डाल सकता है।
0: संजय शर्मा मेरे सहयोगी तफसील से समझा रहे थे कि आखिर कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा है, इसी को लेकर चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कनक गुप्ता जी हैं, डायरेक्टर हैं सेट एमआर जयपुरिया स्कूल्स के। हमारे साथ इस वक्त रेणु शर्मा जी, असिस्टेंट डायरेक्टर इंदिरापुरम ग्रुप ऑफ स्कूल्स, साथ ही साथ एडवोकेट मनोज शर्मा हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं दिल्ली पेरेंट एसोसिएशन के। जतिन चावला जी करियर काउंसलर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। शुरुआत क्योंकि अब चिंताएं जो हैं वो पेरेंट्स की तरफ से भी थी और स्कूल्स की तरफ से भी थी, तो कनक जी मैं आप ही से शुरू करना चाहूंगी, टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए गए हैं। हालांकि अगर हम दिल्ली एनसीआर के स्कूल्स की बात करें जिसको लेकर रेणु जी आपसे बात करूंगी, लेकिन सबसे पहले कनक जी, जो कोर्ट ने कहा है यही दलील बार बार दी जा रही थी पेरेंट्स की तरफ से भी, स्कूल्स की तरफ से भी, कि नौवीं कक्षा ऐसी होती है जब बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं और उन पर ये तीसरी भाषा का क्या ये बोझ नहीं होगा, कोर्ट ने इसको सही माना है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं?
2: तो कोर्ट ने काफी अच्छी बात कही है कि टाइमिंग के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, तीन लैंग्वेज चार लैंग्वेज उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं है। लैंग्वेजेस हमेशा अच्छी होती हैं, बच्चे अगर भाषा सीखते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। आपने सही कहा, क्लास 9 में 10 में बच्चे बहुत बिजी हो जाते हैं, उनको उस समय नया कुछ करना थोड़ा सरप्राइजिंग लगता है और वो सरप्राइज को हटाने की बात की जा रही है। वैसे अगर ट्रेडिशनली हम लोग देखें तो हिंदुस्तान में मोस्ट स्कूल्स में तीन लैंग्वेजेस हुई हैं हमेशा से, लेकिन इसको इस तरीके से इंप्लीमेंट करना ये एक चैलेंज है। शायद हमें रीथिंक करना पड़ेगा कि इसको क्लास 6 ऑनवर्ड्स ही करना चाहिए, क्लास 9 से बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा बच्चों के लिए। और ऑल्सो टीचर्स को अपना पूरा पैटर्न बनाना, एग्जामिनेशन, पेरेंट्स के जो एंग्जाइटी है कि उसको सेटिस्फाई करना, किस तरीके से बच्चों के एग्जाम पे प्रिपरेशन पे प्रभाव पड़ेगा, हमारे स्कूलों में हम ये देख रहे हैं, पेरेंट्स हमसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। हम सरकार के सीबीएसई के फर्दर वर्डिक्ट का वेट कर रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है, पर सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है मैं उससे काफी सहमत हूं कि टाइमिंग एक सबसे बड़ा इश्यू है। लैंग्वेज लर्निंग या थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला उसमें कोई प्रॉब्लम मेरे को नहीं लग रही है, पर टाइमिंग इज एन इश्यू भी क्लास 9 में होना चाहिए, उससे प्रॉब्लम शायद हो सकती है।
0: ये बात क्योंकि जस्टिस नागरत्ना ने अपने भी स्कूल डेज की बात का जिक्र करते हुए कहा है कि वो लोग जब स्कूल में थे तो 8वीं क्लास में ये ऐसा होता ही है, 8th क्लास से एक तरीके से प्रेशर शुरू हो जाता है कि बच्चा आगे क्या करेगा, किस फील्ड में जाएगा, किस स्ट्रीम में जाएगा, तो उसकी कहीं ना कहीं प्रेपरेशन तैयारियां शुरू हो जाती है। आपने सही कहा टाइमिंग को लेकर उन्होंने सवाल उठाए हैं। रेणु शर्मा जी, दो चीजें, पहली बात तो ये टाइमिंग को लेकर सवाल है, कक्षा 9 में ये थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला लागू ना हो ऐसी सिफारिशें की गई, सीबीएसई को हालांकि इस पर संज्ञान लेना है, एक तो ये बताएगा सीबीएसई की तरफ से क्या लिया जा सकता है संज्ञान, और दूसरी बात स्पेसिफिकली अगर मैं दिल्ली और एनसीआर के स्कूल्स की बात करूं जहां पर अभी भी कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, अगर 6 से भी ये थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला शुरू होता है तो कंफ्यूजन इस बात को लेकर है कि थर्ड लैंग्वेज आपकी कौन सी होगी। वो बच्चे जो अभी तक जर्मन स्पैनिश पढ़ रहे हैं, क्या हम उसको बिल्कुल हटा देंगे उसकी जगह, क्योंकि ऑप्शन अब बच्चों के पास संस्कृत ही बचता है, आप हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी नहीं पढ़ा सकते क्योंकि उतने स्कूल्स के पास टीचर्स भी नहीं, स्कूल्स की अपनी मजबूरियां इसको लेकर हैं, तो 6 क्लास में किस तरीके से इसको सॉर्ट आउट किया जाएगा, ये दोनों पर आप अपना जवाब रखिए।
3: अगर मैं इसकी बात करूं टाइमिंग की, पहला क्वेश्चन आपका टाइमिंग से रिलेटेड था, ऑफ कोर्स मैं इसे एग्री करती हूं कि अच्छा होता अगर हम सेशन बिगिनिंग से, ये मिड सेशन है ऑलरेडी, 2-3 मंथ्स हैव गॉन बाय, तो ये टाइमिंग तो ठीक नहीं है, बट आई ऑल्सो बिलीव इन द फैक्ट कि कोई भी चेंज ईजी नहीं होता, उसको कभी तो शुरू करना पड़ता है। थ्री लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट 64-66 में जो पॉलिसी प्रेजेंट की गई थी उसमें भी प्रपोज्ड था, और 9th में ये बहुत क्लियरली जो लेटेस्ट अभी सीबीएसई का सर्कुलर है ये स्टेटेड है कि जो, क्योंकि 6th, 7th, 8th में बच्चे ऑलरेडी थ्री लैंग्वेजेस पढ़ रहे थे, तो वो क्लियर कट ये बोल रहे हैं कि सेम थ्री लैंग्वेज वो 9th में कंटिन्यू कर सकते हैं, और क्योंकि टाइमिंग ठीक नहीं है, इंग्लिश और हिंदी तो एक हो गया है।
0: रेणु जी, तीसरी भाषा कौन सी होगी फिर, यहां पर तीसरी भारतीय भाषा की बात कही गई है,
3: बिल्कुल, दो नेटिव लैंग्वेजेस करनी है, पर अगर आप उस सर्कुलर को ध्यान से पढ़ेंगे उसमें इस साल के लिए एक्सेप्शंस दिए गए हैं, देयर आर मेनी एक्सेप्शंस गिवन। जो बच्चा ऑलरेडी दो नेटिव लैंग्वेजेस पढ़ रहा है इस साल, वो उसे कंटिन्यू कर सकता है, कोई इसको फोर्स नहीं करेगा। यानी कि 8वीं में जो उसने 3 लैंग्वेजेस पढ़ी थी, वो उन्हीं को 9th में कंटिन्यू कर सकता है। तो एक्सटर्नल प्रेशर की बात मुझे यहाँ नहीं दिखती। दूसरी, जो असेसमेंट्स होंगे इन लैंग्वेजेस को लेकर, R3 को लेकर, थर्ड लैंग्वेज को लेकर, वो इंटरनल होंगे। इसका कोई भी बोर्ड एग्जाम नहीं होगा, ना अगले साल ना इस साल कोई, मतलब उसको इंटरनली फॉर्मेटिव असेसमेंट के थ्रू मैसेज कर सकते हैं। अगर 9th में मान लीजिए थर्ड लैंग्वेज में बच्चा फेल भी हो जाता है, तब भी बच्चा प्रमोट होगा नेक्स्ट ईयर एज पर दैट सर्कुलर, और वो फिर 10th में जाके उस R3 को क्लियर कर सकता है। तो मुझे लगता नहीं, अब जो ये नया वर्जन आया है लेटेस्ट सर्कुलर का CBSE का, दैट इज क्वाइट सॉर्टेड। वहां पे फॉरेन स्कूल्स को रिलैक्सेशन दिए गए हैं, बच्चे जो फॉरेन से इंडिया में आ रहे हैं इंडियन स्कूल्स में, उनको इससे मतलब वो कर दिया गया, रिलैक्सेशन दे दिया गया कि दे नीड नॉट स्टडी नेटिव लैंग्वेजेस। तो मुझे, और रही बात 6th की, अगर हम देखें 6th तो इनिशिएशन पॉइंट है जहां पे हम 3 लैंग्वेजेस ऑलरेडी शुरू करते थे, उसमें हाँ दो नेटिव हमें शुरू करनी पड़ेंगी। और यूपी, बिहार और इस तरह के स्टेट्स में वो ऑप्शन सिर्फ हिंदी और संस्कृत रह जाता है, और इंग्लिश को क्योंकि वो नॉन नेटिव मान रहे हैं। रही बात फॉरेन लैंग्वेजेस की, जो बहुत जरूरी है विद रिस्पेक्ट टू द ग्लोबल एस्पेक्ट, तो उसको स्कूल्स कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे मैं, हमारे अपने स्कूल्स में हम कंटिन्यू कर रहे हैं इवन 6th में एज R4, उसको हम क्लब की तरह या एक्स्ट्रा उसकी तरह पढ़ा रहे हैं, जो पेरेंट्स पढ़ना चाहते हैं, बच्चे पढ़ना चाहते हैं या पेरेंट्स पढ़वाना चाहते हैं। 6th में फॉर श्योर हमें इसे 2DT फॉलो करना पड़ेगा विद 2 नेटिव लैंग्वेजेस। 7th 8th में मुझे कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो मुझे रिलैक्सेशन मिला हुआ है स्कूल्स को। 9th में वो 3 लैंग्वेजेस बोल रहे हैं जिसमें से 2 नेटिव होनी चाहिए, बट उसमें वो रिलैक्सेशन उन्होंने बहुत सारे दिए हैं, तो प्रेशर मुझे नहीं दिख रहा है इसमें।
0: ठीक है रेणु जी, मैं आगे बढ़ू जल्दी से संक्षेप में, एक और बात का सवाल का जवाब रख दीजिए। क्या फिर हम ये माने कि 9th क्लास में, क्योंकि इसी को लेकर पिटीशन दी गई थी, क्या हम ये माने कि 9th क्लास में अब कोई प्रेशर नहीं? पहली बात तो उसका एग्जाम होगा नहीं आपकी थर्ड लैंग्वेज का, उसको आपको बोर्ड नहीं देना है, वो आपके इंटरनल्स होंगे, यानी किसी एक्स्ट्रा भाषा की जरूरत नहीं है अब 9th क्लास में?
3: नहीं, 9th में एक एक्स्ट्रा, क्योंकि 8वीं तक 3 लैंग्वेज पढ़ रहा था
0: ठीक है,
3: बच्चा, 9th में 2 पढ़ रहा था, अब उसको 3 पढ़नी है। वो तीसरी लैंग्वेज वही हो सकती है जो उसने 8th में पढ़ी थी, उसको वो कंटिन्यू कर सकता
0: और
3: है।
0: वो
3: और वो अगर नॉन नेटिव
0: एट्थ में
3: है,
0: अगर कोई फॉरेन
3: नॉन
0: लैंग्वेज
3: नेटिव
0: हुई
3: है तो
0: तो
3: भी
0: क्या उसको कंटिन्यू किया जा सकता है, उसमें भारतीय भाषा ही होनी
3: बिल्कुल
0: चाहिए?
3: बिल्कुल, उसमें एक्सेप्शन है। अगर आपके पास दो, आप मान लीजिए कोई बच्चा 9th में इंग्लिश पढ़ रहा था और फ्रेंच पढ़ रहा था, ठीक है, ऑलरेडी आप उसको 3 पढ़नी है, वो तीसरी लैंग्वेज जो लेगा वो नेटिव ले ले, वो हिंदी ले ले या संस्कृत ले ले, वो डिसकंटिन्यू नहीं करेगा
0: ठीक है
3: अपने दो नॉन
0: ठीक।
3: नेटिव लैंग्वेजेस
0: चलिए,
3: को।
0: काफी हद तक आपने चीजें क्लियर की हैं, लेकिन इसको लेकर आगे भी हम, रेणु जी मैं लौटती हूँ आपके पास अब, एडवोकेट मनोज शर्मा, क्योंकि आप पेरेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं। पेरेंट्स के अगर हम नजरिए से देखें, ये जब सर्कुलर आया, जब 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की बात चली, स्पेशली अगर हम 9th की बात करें, यहाँ 9th पर ही फोकस कर लेते हैं क्योंकि 6th में ऑलरेडी अगर बच्चे लेंगे तो 9th तक वो उतने प्रिपेयर हो ही जाएंगे। मैं 9th क्लास की यहां पर बात करती हूँ, पेरेंट्स के दिमाग में क्या है, क्योंकि कंफ्यूजन पेरेंट्स के दिल में भी है। अब ये समय ऐसा होता है, मैंने वापस से उसी बात को दोहराऊंगी, जब आप अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बच्चों की तैयारियां शुरू कर देते हैं, क्या कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद, कोर्ट की इस बात के बाद, CBSE के सर्कुलर के बाद जो कि आ गया है, जैसे रेनू जी ने समझाया, आप थोड़ा सा रिलैक्स हैं एज अ पेरेंट?
4: देखिए, पहली बात तो ये मैं कहना चाहूंगा कि अभिभावक और बच्चे सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं इस पॉलिसी के। स्कूलों का कुछ नहीं जाता, सब सब हवाबाजी कर रहे हैं, 3 लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम नहीं, हम चौथी लैंग्वेज ही पढ़ा देंगे। अरे बच्चा कितनी लैंग्वेज सीखेगा फिर, 22 की 22 भाषाएं जो छठी सूची में, उसको सिखाना शुरू कर दीजिए आप, ये बिना वजह की बात है। और दूसरी बात, CBSE एज ए इंस्टीट्यूशन हैज लॉस्ट इट्स क्रेडिबिलिटी। उसको तो मतलब ना कोई वैज्ञानिक वहां पे पद्धति है, ना शिक्षाविदों से वो बात करता है, ना कोई साइंटिफिक टेम्परामेंट की चीजों को लाने की सोचते हैं, बस सरकार ने कोई चीज कह दी उसको लागू करा दी। देखिए, सरकारों की नीयत तो हर समय कुछ ना कुछ राजनीति दृष्टिकोण से होती है। अब आप नेटिव लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, नेटिव लैंग्वेज किस किसको आप नेटिव लैंग्वेज कहेंगे? नेटिव लैंग्वेज तो बोलचाल की भाषा हो गई ना। अब नेटिव लैंग्वेज कहां से लाएंगे आप? हरियाणवी की हिंदी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हिंदी और पूर्वी उत्तर प्रदेश की हिंदी और बिहार की मैथिली और बिहार की हिंदी में कितना अंतर है? आप किस नेटिव लैंग्वेज की बात कर रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ देखिए, हमारे देश में शिक्षा और धर्म राजनीति का एक प्रोपेगेंडा बन गया है, और ना तो अभिभावकों से पूछी जाती है, ना बच्चों का देखा जाता है, बच्चे लैंग्वेज ही सीखते रहेंगे। मैं जस्टिस नागरत्न, माननीय जस्टिस नागरत्न जी, इस बात से सहमत हूँ कि हाँ, 6ठी क्लास से ही ये भाषा पढ़ाई शुरू करनी चाहिए। बच्चे थोड़े से अपरिपक्व दिमाग के होते हैं, उनकी इन कैपेसिटी गैदरिंग ज्यादा होती है, तो उनको तीन भाषा अगर रखनी भी है तो भाषा रखिए, और भाषा सिखाने में कोई बुराई नहीं है, एक मातृभाषा रखिए। और जिस देश में अंग्रेजी बोलना पढ़ना आज भी एक प्रतिष्ठा का विषय है, उस देश में आप अंग्रेजी को तो नजरअंदाज कर ही नहीं सकते।
0: और हाँ, आधे से ज्यादा आपके आगे कोर्सेज पूरे इंग्लिश में ही होते हैं।
4: ऑफ कोर्स मेडिकल साइंस है, इंजीनियरिंग है, आप कहीं भी जाएंगे, बाहर जाएंगे, कॉमनवेल्थ नेशंस है, वहां पे इंग्लिश स्पीकिंग को आप तरजीह भी देते हैं, आपको आईलेट पास नहीं करना होता है, तो आप इंग्लिश को तो भूल जाइए, इंग्लिश को तो रखना ही रखना पड़ेगा, चाहे आप मजबूरी समझ लीजिए चाहे कुछ समझ लीजिए। अब आती है बाकी दो नेटिव लैंग्वेज। अब दो नेटिव लैंग्वेज में आप चॉइस क्या दे रहे हैं, एक तो हिंदी रखेंगे आप, अगर मान लीजिए हिंदी भाषी क्षेत्र है, अब मान लीजिए तमिलनाडु में चले गए तो तमिल रख लेंगे वो। अब प्रॉब्लम ये है कि ठीक है तमिल, तमिल या उड़िया या जो भी आपकी कन्नड़ है सीखनी चाहिए, अपनी मातृभाषा है जरूर सीखनी चाहिए, पर थोपना नहीं चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि कन्नड़ में या कर्नाटका में या कह लीजिए आप आंध्रा में या तमिलनाडु में सिर्फ और सिर्फ उसी भाषा के लोग रहते हैं, ग्लोबल वर्ल्ड है, ग्लोबल।
0: लेकिन एक चीज आप सही कह रहे हैं कि थोपना नहीं चाहिए, इसी को लेकर चर्चा बहस भी हो रही थी कोर्ट में, जल्दी से एक बात का जवाब रख दीजिए, पर उसका तो बोर्ड एग्जाम होगा ही नहीं, वो तो इंटरनल्स होंगे, उसको तो एग्जामिनेशन में रखा ही नहीं गया। मैं अगर स्पेसिफिकली 9th क्लास की बात करूं,
4: पर 6 दिन के स्कूल के जो कार्यकाल में कुछ पीरियड होंगे, कुछ होमवर्क होगा, कुछ क्लास वर्क होगा, उस टीचर को भी इंक्रीमेंट देना है स्कूल ने कि भाई आपके बच्चे कैसे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तब करी क्यों नहीं फिर, जब उसका ना बोर्ड एग्जाम होना है ना कुछ होना, तो छोड़ दीजिए फिर उसको। आफ्टरऑल जो टीचर आप रखेंगे उसको सैलरी देंगे, उसको कुछ रेट करेंगे कि आपने ये पढ़ाया बच्चों का, आपका ये टाइम टेबल था, आपने बच्चों ने कितना काम किया, कुछ टीचर इंटरनल एग्जाम्स लेगा, तो ये क्या मजाक बना रखा है कि बोर्ड का एग्जाम नहीं होगा। अरे बच्चा तो छोटा बच्चा जो है 6ठी 7ठी 8ठी का, वो तो उतने ही
0: ठीक है उतने ही। सर एक सेकंड, कनक गुप्ता जी और रेणु जी, कनक जी पहले आप इस बात का जवाब रख दीजिए। देखिए ये बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, किसी भी पेरेंट के लिए बहुत मुश्किल होगा कि वो अपने बच्चे को कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करवाए या फिर नए सिरे से उस लैंग्वेज की तैयारी करवाए, अगर आप एग्जाम नहीं ले रहे हैं तो फिर इतना बोझ क्यों। कनक जी,
2: तो जो मनोज जी ने बात बोली कि मतलब पेरेंट और बच्चे सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं, ये सबसे सही बात है। एजुकेशन सिस्टम में बच्चे से बड़ा स्टेक होल्डर कोई ना हुआ है ना होएगा, उनके फोकस रखते हुए ही सारे काम करने पड़ेंगे। इस बात से तो मैं बिल्कुल 100% सहमत हूँ। जिस बात को मेरे को लग रहा है कि हमें समझने की जरूरत है कि लैंग्वेजेस एक्चुअल में अच्छी होती हैं, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो एक बच्चे के ऊपर बोझ है। लैंग्वेज एक लाइफस्टाइल है, लैंग्वेज एक कल्चरल इंटीग्रेशन है, लैंग्वेज बहुत बड़ी चीज है, और हम ये नहीं बोल सकते कि कोई लैंग्वेज बड़ी है और कोई लैंग्वेज छोटी है, उसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन।
0: सीधा 9th क्लास पे आते हैं ना सर, 6th क्लास से आप पढ़ा रहे हैं, ये हमारे साथ इस वक्त तमाम पैनलिस्ट मान रहे हैं इस बात को कि वाकई बच्चों को भाषाएं सीखनी चाहिए, और उन्होंने एज अ पेरेंट भी बताया कि अगर 6 से मेरा बच्चा पढ़ रहा होता है तो मुझे कोई दिक्कत है नहीं, सीधा 9th पे आते हैं।
2: तो सीधा 9th पे आते हैं तो मेरे हिसाब से थोड़ी सी ये ट्रांजिशन वाली डिफिकल्टी है। रेनू जी ने भी इस बात को बोला कि कहीं ना कहीं शुरुआत तो करनी पड़ेगी हमें, शायद वो शुरुआत इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का इशारा भी है कि टाइमिंग इज एन इश्यू कि क्लास 9 में हमें नहीं उसको शुरू करना चाहिए, इसके ऊपर शायद और काम हो रहा है, लेकिन 6 के ऑनवर्ड्स या इवन जूनियर क्लासेस में बच्चे को लैंग्वेज एज अ वे ऑफ लाइफ करना बहुत अच्छी चीज है।
0: जल्दी से रेनू जी, आप स्टेक होल्डर की बात उन्होंने दो कही, लेकिन क्या आप स्टेक होल्डर नहीं है? आप भी तो एक टीचर रखेंगी, वो टीचर पूरा एफर्ट डालेगा, आपके स्कूल की परफॉर्मेंस भी इस पे बहुत हद तक मैटर करती है।
3: देखिए मैम, अगर परफॉर्मेंस की हम बात करें तो फिर से लैंग्वेज ही क्यों, जो मेन 5 सब्जेक्ट्स है उसके अलावा बहुत सारी चीजें स्कूल्स में होती हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, क्लब्स होते हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग।
0: उसका एग्जाम नहीं होता है ना मैम,
3: वही तो मैं कह रही हूँ, इसका भी एग्जाम नहीं होगा।
0: हाँ।
3: तो अगर हम ये देखें तो हम वो मतलब कंपैरेटिवली आप देखें तो बात हम वही कह रहे हैं। सर ने अभी दो बातें कही कि पॉलिटिकल यू नो इन्फ्लुएंस की बात उन्होंने करी, हो सकता है, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट ये एनईपी एनसीएफ जो 2020 में आया, एनसीएफ जो यू नो 2023 में आया, उसमें ये रिकमेंडेड है, एंड जो पॉलिसी बनाने वाले हैं और एनसीएफ बनाने वाले हैं वो पॉलिटिशियंस नहीं है, पहली चीज मैं कहूंगी। दूसरी चीज उन्होंने कही कि भाषा पढ़ने से बर्डन होता है, मैं इस चीज को नहीं मानती, बिकॉज आई बिलीव दैट मल्टीलिंग्विज्म जिसकी की बात एनईपी में की गई है, उसे कॉग्निटिव आपका एनहांसमेंट होता है, इट इज प्रूव्ड साइंटिफिकली रिसर्चेस के द्वारा कि मल्टीलिंग्विज्म एडेड टू योर कॉग्निटिव एबिलिटी। तीसरी बात मैं कहूं, 9th में जब वो बात कर रहे हैं तीसरी भाषा, ऑफकोर्स मैंने बिगनिंग में माना भी कि वो टाइमिंग थोड़ा सा गड़बड़ है और वो एक एडिशनल बर्डन 2-3 महीने बाद आ रहा है, पर उसमें एक और रिलैक्सेशन है कि उसमें बच्चा 6th लेवल की लैंग्वेज, मान लीजिए वो संस्कृत ले रहा है, हिंदी ले रहा है, उसको 9th लेवल की लैंग्वेज नहीं पढ़नी है, वो 6th लेवल जो स्टैंडर्ड होगा उसकी लैंग्वेज से स्टार्टिंग कर सकता है इफ ही वांट्स।
0: ठीक है, चलिए जल्दी से अब जितिन जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। अब जितिन जी, इस पूरे जो भी, चाहे हम एनईपी के बाद सबसे ज्यादा जो हल्ला, आई थिंक इससे पहले हम तमाम डिस्कशंस में आप हमारे साथ मौजूद भी थे, थर्ड लैंग्वेज फॉर्मूले को लेकर चर्चा हो रही है दिल्ली एनसीआर में, सबसे ज्यादा इशू इसलिए है क्योंकि यहां पर हर क्षेत्र के लोग रहते हैं और यहां पर स्कूल्स के पास भी ऑप्शंस लिमिटेड हैं, संस्कृत एक थर्ड लैंग्वेज के तौर पर स्कूल पढ़ाता है, लेकिन हम अगर स्पेसिफिकली नाइन्थ क्लास की बात करते हैं, सर आप बहुत अच्छे से बता पाएंगे, आपके पास भी नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट्स आते होंगे जो बताते होंगे कि हमें रास्ता दिखाइए, हम किस फील्ड में जा सकते हैं, किस तरीके से अपनी तैयारी करें, क्या ये थर्ड लैंग्वेज आपको लगता है कि स्टूडेंट्स के लिए बर्डन है, क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कोर्ट ने जो भी इस पर टिप्पणी किया उस पर आप सहमत हैं?
5: मैं इस क्वेश्चन को अभी लेता हूं, बस एक ग्लोबली क्या चल रहा है मैं सबके सामने लाना चाहूंगा। अभी भी फिनलैंड का सिस्टम एक बहुत अच्छा रेफरेंस पॉइंट है पूरे वर्ल्ड के लिए कि एजुकेशन सिस्टम को कैसे सेट करना चाहिए। तो फिनलैंड में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी इंट्रोड्यूस करी गई पिछले कुछ सालों में कि आप स्टडी मॉड्यूल और क्रेडिट्स कर सकते हैं। तो मेरे को ना कंपल्सरी वर्ड से प्रॉब्लम है कि भाई आपको कंपल्सरली करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपल्सरी आते ही आपने बाइंड कर दिया कि आपको यही करना है। पूरा दुनिया इस, मतलब आपको बहुत हैरानी होगी ये सोच के, जैसे थील फेलोशिप पीटर थील देते हैं, तो एक छोटा बच्चा भी उनके पास जाके, और मतलब स्कूल के बच्चों ने भी किया है, 16 साल के बच्चों ने भी किया है, और एंटरप्रेन्योरशिप की तरह बढ़ सकता है। तो मैं क्या कहना चाहूँगा कि पूरा वर्ल्ड बढ़ रहा है कि इवन एजुकेशन करें और प्रैक्टिकल कर लें। एक है फ्यूचर ऑफ एजुकेशन, मैकिन्जी रन करती हैं यूएस में, वो बच्चों केवल 2 घंटे पढ़ाई करते हैं, बाकी 5-6 घंटे बच्चे अपने कुछ ना कुछ काम करते हैं, कोई गेम्स बना रहा है, कोई रोबोटिक्स पे काम कर रहा है, कोई एआई पे काम कर रहा है, एंड सो ऑन, और बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स उसका, मतलब अगर आप देखेंगे ऑनलाइन तो समझ में आएगा। तो पूरा दुनिया जहाँ की फ्लेक्सिबिलिटी जा रही है और हम वापस एक तरह से चीज़ों को कंपल्सरी, ये एक बात। दूसरी बात, मेरे पास जो बच्चे आते हैं वो लैंग्वेजेस डेफिनेटली करते हैं, और कई बच्चे अपने आप कर रहे होते हैं बाहर से, उनके पास कोई प्रेशर नहीं होता। जैसे काफ़ी बच्चे जर्मन लैंग्वेज करते हैं क्योंकि जर्मनी में जॉब्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, और बच्चों को एकदम से एक करियर बूस्ट मिलता है, तो जर्मन लैंग्वेज करते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज करते हैं। बाहर संस्थाएँ हैं जैसे ओरियन से है, मैक्स मुलर है, इस तरह की संस्थाएँ भी इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं, बच्चों को हेल्प करती हैं, तो लेकिन वो अपने आप करते हैं। तो थोड़ा तो देखिए प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि इंडियन पेरेंट्स अभी भी बच्चों को एकदम से कॉम्पिटेटिव एग्जाम में डाल देते हैं, तो प्रेशर बढ़ेगा। अगर लैंग्वेज करनी है तो आई थिंक 6 क्लास इज अ बेटर आइडिया, लेकिन कंपल्सरी की बजाय इट शुड बी ऑप्शनल फॉर पीपल, दैट इज़ अ बेटर आइडिया, कि भाई आपके लिए ऑप्शनल है, आप करना चाहो करो, नहीं तो आप कुछ और चीज़ करना चाहो वो आप कर सकते हो, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं। एनईपीए में बात करी गई है कि स्पोर्ट्स का अलग से दिया जाएगा, म्यूजिक का अलग से दिया जाएगा, तो अब कंपलसरी करते ही डेफिनेटली प्रेशर बढ़ेगा। जी
0: ठीक है, प्रेशर बढ़ेगा कंपलसरी करते। एक बार रेणु जी मैं आपके पास आऊंगी। रेणु जी, जब एनईपी का कंसेप्ट आया और बार बार इसको लेकर सरकार भी कह रही थी कि एनईपी का मतलब यह है कि हम स्टूडेंट्स को रिलैक्स कर रहे हैं, अभी जितिन जी ने बहुत अच्छी बात कही कि 2 घंटे पढ़ाई होती है और उसके बाद बाकी समय जो है बच्चे रिलैक्स करते हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज, क्योंकि ओवरऑल एनईपी का मकसद यह है कि बच्चे की स्किल्स डेवलप हों। आप लोग इस पर काम कर रहे हैं, कनक जी भी इस पर काम कर रहे हैं, तमाम स्कूल जो है वो इस पर काम कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात है, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि हमने, स्कूलों ने भी इस पे काम करना शुरू कर दिया, एनईपी को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया, लेकिन जो किताबी बोझ था वो कम नहीं किया गया, आप मानती हैं इस बात को?
3: पार्शियली मैं एग्री करूंगी, क्योंकि आपको सी एनईपी किस चीज पे फोकस कर रही है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचिंग पे फोकस कर रही है, और मैं अगर लैंग्वेजेस की बात करूं तो वहां पे 4 बेसिक कॉम्पिटेंसीज हैं जिनपे की करना चाहिए फोकस हमको, दैट इज LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये 4 बेसिक स्किल्स हैं किसी भी लैंग्वेज के, जिसपे हर स्कूल को फोकस करना चाहिए, उस पर फोकस हो रहा है। कोई भी कॉम्पिटेंसी सिखाने के लिए या कोई भी कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए एक टूल लगता है, आई मीन देयर इज अ टूल विच इज रिक्वायर्ड टू टीच एनीथिंग, तो वो बुक भी हो सकती है, वो आपका कोई ऑनलाइन यू नो वीडियो भी हो सकता है, या आपका कोई मैनिपुलेटिव या टूल हो सकता है, लैब हो सकता है। तो यू नो बच्चों के लिए देयर हैज टू बी टूल जिसको भी वो फॉलो करें, तो बुक्स तो इसलिए चाहिए, चाहे वो वर्चुअल फॉर्म में हो चाहे वो हार्ड फॉर्म में हो। हम एज अ ग्रुप में, अगर अपने ग्रुप की बात करूं, हमने बुक्स को काफी हद तक कम किया है, काफी हद तक यू नो वी आर क्रिएटिंग आवर ओन कॉन्टेंट, वर्चुअल कॉन्टेंट वो हम देते हैं, बुक्स कहीं ना कहीं, और हर पेरेंट एक लेवल पे नहीं होता, क्योंकि हम बहुत सारे, मान लीजिए एक स्कूल में 1500-2000 बच्चे हैं, सारे पेरेंट्स एक लेवल पे नहीं होंगे, एक स्टैंडर्डाइजेशन भी एक जगह पे जरूरी होता है कि दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ द चाइल्ड, मैं क्लास में स्कूल में क्या करा रही हूँ, वो पेरेंट को कैसे पता चलेगा, तो बुक्स उस चीज में भी हेल्प करती हैं। इसलिए 100% वी आर नॉट डूइंग विद बुक्स, लेकिन बुक को हम सिर्फ एक टूल मान रहे हैं, बुक को सब कुछ नहीं मान रहे हैं, वो हमारा अप्रोच है
0: ठीक है
3: एज
0: ठीक
3: फार
0: है
3: एज यू नो।
0: कनक, हाँ कनक जी, कनक जी, क्या एकेडमिक प्रेशर कम हुआ है या बढ़ा है इसमें बच्चों पे एनईपी के आने के बाद?
2: सो मेरे हिसाब से एनईपी के आने के बाद एकेडमिक प्रेशर कम हुआ है, फोकस लोगों का शिफ्ट हुआ है। मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रहा, या मैं रेणु जी के स्कूल की बात नहीं कर रहा, हम जानते हैं हमारे स्कूल इस तरह से मतलब रिसर्च भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, पर ओवरऑल लोगों का जो एक फोकस गया है एक्सपीरियंशियल लर्निंग की तरफ, ये बड़ा है एनईपी के बाद से। जितिन जी जो बात कह रहे थे कि फिनलैंड वगैरह, मतलब मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ, वो अलग प्रॉब्लम है सॉल्व करने की। उसमें जो सबसेट है वो बहुत छोटा है, हिंदुस्तान में जो पॉपुलेशन है उसके लिए कहीं ना कहीं स्टैंडर्डाइजेशन भी जरूरी है। 60% स्टैंडर्डाइजेशन और 40% इनोवेशन, इस तरीके से क्लासरूम्स को रन करने का इंडिया में भी रिसर्च हुई है। फिनलैंड में 7-8 बच्चों की क्लासरूम होती है, यहां पर हमारे 35 से 40 बच्चों की क्लासरूम होती है। फर्क है उन चीजों में। मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा आप सबको कि जिस तरीके से प्रोग्रेस हो रहा है वर्ल्ड में, चीजें चेंज हो रही हैं, लोगों का फोकस बढ़ रहा है टुवर्ड्स फिलोसफी, ह्यूमन स्किल्स के ऊपर, क्योंकि एआई का प्रभाव है हर चीज पे, लैंग्वेज के ऊपर भी एआई का प्रभाव आ रहा है। पहले हमें ट्रांसलेटर इंटरप्रेटर चाहिए होते थे, आजकल टेक्नोलॉजी वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। सो उसको मद्देनजर रखते हुए हमें बच्चों को वो वाली स्किल्स देनी है जो सिर्फ 21st सेंचुरी स्किल्स नहीं है, हमें उनको वो स्किल्स देनी है जो आगे भी जाकर उन्हें हेल्प करेंगी, क्योंकि 21st सेंचुरी तो आ गई। हम साल 2100 से बहुत नजदीक हैं अभी, हम 1947 को बहुत पीछे छोड़ा है। सो हमें अपने आप को भी बदलने की जरूरत है, हमें अपने आप को बदलने की जरूरत है, हमें बच्चों को बेस्ट पॉसिबल टूल्स देने हैं। हमारे संस्कार संस्कृति की भी बात करनी है, और कहीं ना कहीं अगर लैंग्वेज और संस्कृत हम जो हिंदी स्पीकिंग बेल्ट है वहां पर ला सके तो उसमें कुछ गलत नहीं है। हाँ मैं वापस से दोहरा रहा हूँ, टाइमिंग इज एन इशू, हमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो हाँ, जो आपका सवाल था कि क्या बोझ कम हुआ है एनईपी के बाद, थोड़ा तो कम हुआ है क्योंकि
0: ठीक है
2: फोकस शिफ्ट हुआ है,
0: चलिए यहीं से।
2: अभिभावक भी इस
0: कनक
2: बात को
0: जी,
2: समझ पा रहे हैं कि
0: हाँ
2: कहीं ना कहीं हमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे बच्चों को प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, चाहे वो स्टेम लर्निंग हो, Formula 1 रेसिंग कार डिजाइन करना हो, म्यूजिक
0: हाँ
2: हो, डांस हो, ड्रामा हो, उसके थ्रू भी बच्चों को सिखा सकते हैं, और ये सारी चीजें करनी चाहिए।
0: ठीक है, यहीं से हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मनोज जी, आपका इस पर जवाब बहुत अहम रहेगा। मैं लौटती हूँ, फिलहाल छोटा सा ब्रेक यहाँ ले रहे हैं, तुरंत लौटेंगे। चर्चा जारी है, आप रहिए हमारे साथ।

0: ताकि बोझ ना बने तीसरी भाषा, इसी को लेकर चर्चा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 9th क्लास में थर्ड लैंग्वेज फॉर्मूला को लेकर अपनी बात रखी है। एनईपी आने के बाद जिस तरीके से 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की चर्चा लगातार हो रही, ब्रेक पर जाने से पहले दोनों एजुकेशनिस्ट जिनसे हमने राय ली है, लेकिन एज अ पेरेंट मनोज शर्मा जी मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, देखिए स्कूल्स तो ये दावा कर रहे हैं कि एनईपी के बाद बोझ काफी हद तक कम हुआ है बच्चों का, क्योंकि एनईपी का मकसद ही ये है कि बच्चों को प्रैक्टिकल और स्किल लर्निंग करवाना। एज अ पेरेंट आप इसको लेकर क्या सोचते हैं?
1: देखिए मेरा तो ये कहना है कि बजाय एनईपी और सीबीएसई और न्यायालय का भी, अब तो इसमें खैर मतलब इंटरफेरेंस हो गया है, मेरा ये मानना है कि बजाय थर्ड लैंग्वेज के और नेटिव लैंग्वेज के, अच्छा होता कि हम एलएलएम की बात करते। स्कूलों में एलएलएम पढ़ाने की बात होती 6ठी से 7ठी से 8ठी में, जहां हमारा देश पिछड़ चुका है। आई एम टॉकिंग अबाउट लार्ज लैंग्वेज मॉडल जिसपे AI बेस्ड है। मशीन लेवल लैंग्वेज की बात होती वो कहीं ज्यादा अच्छा था। हम पता नहीं कहाँ फंसे हुए हैं, हम क्या करना चाह रहे हैं। अगर मान लीजिए मैं संस्कृत सीख भी लेता हूँ, मैं संस्कृत बोलना भी चाहता हूँ, उससे होगा क्या? आफ्टरऑल मेरा बच्चा करेगा क्या आगे जाके? क्या उसे पंडिताई करनी है?
0: लेकिन नहीं,
1: मैं माफी चाहूंगा क्योंकि देखिए संस्कृत आज के दौर में वहीं तक सीमित है।
0: लैंग्वेज
1: मॉडल सिखाइए आप संस्कृत। आप बताइए संस्कृत का कहाँ पे उपयोग हो रहा है? अगर मान लीजिए मैं उत्तर भारत हिंदी भाषी क्षेत्र में हूँ, मैं कहता हूँ मेरा बेटा संस्कृत पढ़ेगा।
0: आपने संस्कृत पढ़ी है सर? हाँ मैं जितिन जी, एक सेकंड।
1: देखिए इस मंच पे हम जितने भी लोग बैठे हैं, हाँ। सब लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, कोई ना तो प्योर इंग्लिश बोल पा रहा है ना हिंदी बोल पा रहा है।
0: एक सेकंड,
1: भाषा तो इनकी पता नहीं क्या।
0: आपने यहाँ का AI लर्निंग, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जितिन जी बस मुझे 10 सेकंड दीजिएगा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो स्कूल्स में अभी भी, आई थिंक रेणु जी क्लियर कीजिएगा, 5th से या 6th से शायद आप लोग एक एक्टिविटी पीरियड होता है जिसमें बच्चों को AI लर्निंग करवा रहे हैं ऑलरेडी?
2: बिल्कुल, हमारे एक सीबीएसई का ही प्रपोजल है, कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड मशीन लर्निंग एंड AI, दैट इज वो भी मैंडेटरी। अभी सर ने कहा कि ना इंग्लिश हम लोग बोल पा रहे हैं ना हिंदी बोल पा रहे हैं, इसलिए तो बहुत जरूरी है ये चीजें।
0: ठीक है,
2: नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल यूनिटी बहुत जरूरी है चीजें। तो AI और आपका कंप्यूटेशनल थिंकिंग मैंडेटरी है class 3 से लेके class 8 तक,
0: ठीक है,
2: और 9th और 10th में वोकेशनल एडुकेशन, स्किल एडुकेशन है जिसमें की मशीन लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी, दैट एवरी चाइल्ड इज डूइंग।
0: जी जितिन जी,
3: कि थर्ड लैंग्वेज बहुत स्ट्रेटेजिकली यूज कर सकते हैं। अगर मुझे सपोज
0: ये मनोज शर्मा जी आपको सुनना चाहिए। देखिए हम सब एग्री कर रहे हैं कि 3 लैंग्वेज बच्चे पढ़े, जितनी भाषाएं बच्चों को आएंगी ये अच्छी बात होगी, लेकिन उस थर्ड लैंग्वेज का फायदा कहाँ होगा, जितिन जी समझा दीजिए जरा।
3: सपोज बच्चे ने हिंदी पढ़ी, इंग्लिश पढ़ा, अरेबिक पढ़ा, क्या आपको पता है कि गल्फ में हर साल, अभी वॉर वाली सिचुएशन छोड़ दीजिए, लास्ट ईयर तक करीब 2.25 लाख बच्चा जाता था आगे पढ़ाई करने के लिए, जॉब्स करने के लिए। हमारे यहाँ से एम्प्लॉयमेंट बहुत, मतलब गल्फ गिव्स यू लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट आल्सो। ऐसे मुझे इंजीनियरिंग या टेक करना है अगर, तो मैं जर्मनी देखूंगा। आई एम श्योर आप लोग जानते हैं कि मैं B1 B2 करके AS का एग्जाम दे के जर्मन यूनिवर्सिटीज में फ्री ऑफ चार्ज पढ़ सकता हूँ। पब्लिक एजुकेशन वहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज है। तो यहाँ भी दिल्ली में भी CMC स्कूल है, उन लोगों ने स्पेशल टाइप किया है जर्मन इंस्टीट्यूशन से, जहाँ बच्चे जाते हैं आगे, इवन आगे डिप्लोमा करके और अच्छी जॉब्स में जाते हैं, जो कि शायद इंडिया में उनको उस लेवल की या उस उतना पेइंग नहीं मिल पाते। इसी तरह जैपनीज कोरिया में, अगर मैं सोचता जापान में काफ़ी जॉब्स हैं, तो मैं हिंदी इंग्लिश और जैपनीज सोचता और मुझे आगे टेक में, एनिमी में, गेमिंग।
0: जितिन जी जरा संस्कृत पर भी बात रखिए, अपनी संस्कृत पर बात रखिए, क्योंकि तमिल में भी एक ऑप्शन दिया गया है, हमारे दिल्ली NCR के बच्चों की भी थर्ड लैंग्वेज, इनफैक्ट मैंने खुद पढ़ी है 8th क्लास तक।
1: जतिन जी क्या मेरे पास अरेबिक?
0: मनोज जी एक सेकंड मनोज जी, बस एक जवाब ले लूं फिर आप ही के पास आऊंगी। हाँ जतिन जी,
3: लिंग्विस्टिक्स, क्लासिकल स्टडीज, क्या आपको पता है कि कई US की यूनिवर्सिटीज में संस्कृत इंट्रोड्यूस किया गया है, बिकॉज इट इज अ गुड लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड लॉजिकल रीजनिंग। तो इवन संस्कृत प्लस कंप्यूटर साइंस में करके आगे, क्योंकि मेरा बेसिक जो लॉजिकल रीजनिंग है स्ट्रांग होगा। तो जबकि मैं इनकी बात ये कहता हूँ कि हाँ AI इज इम्पॉर्टेंट, बट मैं संस्कृत और AI का कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकता हूँ। तो फिलॉसफी में अगर मुझे जाना है, लिंग्विस्टिक में जाना है, तो संस्कृत इज अ गुड लैंग्वेज, उससे भी काफ़ी लैंग्वेजेस, मतलब उसके निकल के भी काफ़ी लैंग्वेजेस निकली हैं, तो डेफिनेटली उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। ह्यूमैनिटीज के कुछ करियर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है संस्कृत।
0: ये तो मनोज जी बात हुई कि कहाँ आप करियर बनाते हैं, लेकिन मैं वापस से उस बात पर आऊंगी। देखिए थर्ड जो तीसरी लैंग्वेज, आप संस्कृत की बात कर रहे हैं, आपका कंसर्न जो है उसी को मैं क्लियर कर देती हूँ। CBSE ये कह रहा है कि बेसिक्स आपको उसका लर्न करना है, 9th क्लास का बच्चा class 6 की किताब से पढ़ाई करेगा।
1: हिंदी भाषी क्षेत्र में, हिंदी बेल्ट में मेरे पास ऑप्शन क्या बता दिया आप तीन लैंग्वेज का? चलिए पहले मैं आपसे प्रश्न कर लेता हूँ, बताइए कौन सी तीन लैंग्वेज मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊंगा? मातृभाषा मेरी हिंदी हो गई, इंग्लिश स्पीकिंग पब्लिक स्कूल है, थर्ड लैंग्वेज में कौन सी लूंगा? क्या मेरे पास ऑप्शन है अरेबिक या जर्मन, जैसे जतिन जी बता रहे हैं फ्रेंच पढ़ा सकता हूँ उसको एज ए थर्ड लैंग्वेज? प्लीज बताइए, जवाब दीजिए इस बात का पहले आप।
0: नहीं, संस्कृत लेने में भी कुछ बुराई नहीं है, क्या बुराई है संस्कृत लेने में?
1: संस्कृत में क्यों थोप रही है आप संस्कृत? मैं तो करियर काउंसलर साहब की बात मान रहा हूँ, मैं तो जापानीज पढ़ना चाहता हूँ, मैं जर्मन पढ़ना चाहता हूँ, फ्री एजुकेशन लूंगा जर्मन में जाके हायर एजुकेशन में, क्या दिक्कत है? आप मुझे संस्कृत क्यों थोप रही है मैडम? मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ, देखिए मुझे संस्कृत से कोई गुरेज नहीं है, बहुत अच्छी भाषा है, हमारी भाषा है, हमारे सारे के सारे पुरातन ग्रंथ उसी में लिखे गए हैं, मुझे बिल्कुल सम्मान है संस्कृत का, बट समय की पुकार को समझिए। इस वक्त क्या चल रहा है? इस वक्त लार्ज लैंग्वेज मॉडल चल रहा है, लैंग्वेज वहां यूज हो रहा है,
0: यही बात शुरू में मनोज जी
1: को सिखा दीजिए, हम ऑलरेडी पिछड़ चुके हैं। यही
0: ठीक है, नहीं आपने लार्ज लैंग्वेज फॉर्मूला की बात की, इसमें अभी रेणु जी और कनक जी दोनों एक्सप्लेन करेंगे इसको लेकर। शुरू में इस बात को क्लियर किया गया था, थ्री लैंग्वेज के अलावा अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा हिंदी, अगर आपका बच्चा जर्मन, स्पैनिश या कोई और भाषा पढ़े, जो कि पढ़ भी रहे हैं आजकल, तो आप उसको एज अ फोर्थ लैंग्वेज ले सकते हैं। और दूसरी बात ये सर, ऐसे बहुत से पेरेंट्स हैं जिनको संस्कृत से कोई गुरेज नहीं है, पढ़ना चाहते हैं पेरेंट्स भी, और इसका आगे फ्यूचर क्या एस्पेक्ट्स हैं वो जतिन जी समझा चुके। एक बार कनक जी जल्दी से इसका जवाब रखिएगा, क्योंकि आप भी फेस करते होंगे स्कूल में। देखिए इससे पहली डिस्कशन में बहुत सारे पेरेंट्स ने इसी बात को लेकर आपत्ति जताई थी कि ये पेरेंट्स पर क्यों नहीं या बच्चों पर क्यों नहीं छोड़ दिया जाता कि वो कौन सी भाषा पढ़ेंगे। कनक जी,
4: तो हमें बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं है कि मतलब जापानीज या जर्मन ज्यादा अच्छी लैंग्वेजेस हैं, जैसा मनोज जी बता रहे हैं, मेरे को नहीं लगता ऐसी सच बात है। मेरे को लगता है कि हर भाषा अपने आप में बहुत महान है, हर भाषा का अपना एक पहलू होता है। LLM सिखाने के लिए संस्कृत से अच्छी कोई भाषा हो नहीं सकती है एक्चुअल में, क्योंकि वो साइंटिफिकली करेक्ट लैंग्वेज है। तो संस्कृत की हमारी जो करिकुलम है, जर्मनी के दो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जा रही है, जैसा जितिन जी ने बताया कि अमेरिका की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें संस्कृत पढ़ाई जा रही है। अब अगर उसमें फ्यूचर हमें वहां पर दिखाई दे रहा है, तो हम ये कैसे सोच सकते हैं कि सिर्फ पुरातन वाला टेक्स्ट ही संस्कृत में पढ़ाया जाएगा? तो उस बात को थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन होनी जरूरी है। टेक्निकली करेक्ट लैंग्वेज है और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं वापस से ये कह रहा हूँ, AI के थ्रू ये जो लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम है 2 साल के अंदर अंदर और सॉल्व हो जाएगी। तो जो हमें लग रहा है कि हमें शायद बेटर अपॉर्चुनिटीज किसी और लैंग्वेज के थ्रू भी मिल जाएंगी, ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी AI से। लेकिन अपने कल्चर से, अपने रूट से भी कनेक्टेड रहना, अपनी लैंग्वेजेस को सेलिब्रेट करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यूरोप के किसी भी स्कूल में जाइए, जो वहां पर लोकल लैंग्वेज है, पढ़ाई उसी लैंग्वेज में होती है। मैं 2 साल जर्मनी रहा हुआ हूं, मुझे पता है कि जर्मनी के स्कूल्स कॉलेजेस में किस तरीके से आपको सिर्फ जर्मन ही बोलने जाता है, अंग्रेजी नहीं बोली जाती
0: आपने,
4: है।
0: आपने बिल्कुल सही बात कही है। आप चाइना चले जाइए, वहां पर अनिवार्य है मैंडरिन। आप रशिया चले जाइए, वहां पर भी आपको अपनी जो भाषा है वो पढ़नी पड़ेगी। लेकिन एक बीच में दौर ऐसा भी, देखिए इसको लेकर ये क्लैरिटी भी है। मनोज जी आप LLM की बात कर रहे थे, अगर लार्जर परस्पेक्टिव में देखा जाए, क्या आप जानते हैं कि आजकल हमारे बच्चे हिंदी अंग्रेजी भी पढ़ रहे हैं? ये क्या है वो शायद नहीं समझेंगे, व्हाट इज दिस ज्यादा अच्छे से समझेंगे। मतलब हमें हिंदी जब उनको पढ़ानी होती है ना, हमें उनको अंग्रेजी में पहले समझाना पड़ता है। क्या आप मानते हैं कि ये लेवल आ गया है हमारी मातृभाषा का?
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं
0: तो फिर ऐसे में अनिवार्यता क्यों ना हो?
1: हाँ, अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, थोपिए मत किसी पे भी। आपको जो तीन लैंग्वेज बच्चा पढ़ना चाहे, जर्मन, अरेबिक और फ्रेंच,
0: नहीं वो पढ़िए, उसको लेकर भी मना नहीं कर रहा है कोई।
1: मैडम वो फोर्थ लैंग्वेज हो जाएगी, बच्चा कितना पढ़ेगा फिर? तो 22 भाषा हमारी 8वीं सूची, वही पढ़ा दीजिए, वही सिलेबस कर दीजिए, छोड़िए मैथ साइंस ये सब। ये क्या बात हुई? ये तो कोई तर्क ही नहीं हुआ ना। जैसे जैसे कनक जी कह रहे हैं कि यूरोपियन देशों में उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाती है, दीजिए आप हिंदी में, कौन मना कर रहा है? दीजिए तमिल में, आप दीजिए कन्नड़ में, मैं इसका समर्थन करता हूँ।
0: ठीक है जितिन जी,
1: पर आप हिंदी भाषी क्षेत्र में आप कहिए कि नहीं, आपके पास सिर्फ खास तौर से दिल्ली NCR में, जिसको आप भी कह रही हैं कि संस्कृति ऑप्शन रह गया मेरे पास ना।
0: हाँ, क्योंकि उतने टीचर्स नहीं है ना। मैं इस पर भी एक बार रेणु जी से क्लैरिटी लूंगी, क्योंकि इस पर हम ऑलरेडी एक शो कर चुके हैं, उसमें समस्या यही है। देखिए एक स्कूल में साउथ इंडियन बच्चे भी पढ़ रहे हैं, नॉर्थ इंडियन भी पढ़ रहे हैं, वेस्ट इंडियन भी पढ़ रहे हैं, हर तबके के, क्योंकि दिल्ली NCR में हर क्षेत्र के लोग आते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वहां पर एक जगह लाने के लिए आपको केवल संस्कृत ही मिलेगी। आप और ऑप्शन है तो मैं रेणु जी से क्लियर कर लूंगी। सर एक सेकंड जितिन जी बात रखिएगा,
1: बैंगलोर, चेन्नई, मुंबई का भी यही हालत है मैडम, सिर्फ दिल्ली NCR को अपवाद मत रखिए इसमें।
3: LLM is not a language. LLM यूज कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज के साथ। आप संस्कृत में भी यूज कीजिए, हिंदी में भी कीजिए, इंग्लिश में कीजिए, किसी और में कीजिए, उसको राइटिंग कोच की तरह यूज कर सकते हैं। वर्क फ्लो बनाने के लिए कि भाई एक सबमिट करो 150 से 200 वर्ड पैराग्राफ उसमें, और आप क्या चीज के लिए यूज करेंगे सबसे ज्यादा, टीचर्स कैसे यूज करेंगे एरर एनालिसिस के लिए कि ग्रामर ठीक है, वोकेबलरी ठीक है, स्टाइल ठीक है, करेक्टेड वर्जन की उससे अपग्रेडेड, आप बच्चे ने कोई सेंटेंस लिखा उससे बेटर सेंटेंस कैसे लिख सकते हैं, फॉलो अप प्रैक्टिस टेस्ट करने हैं, तो एलएलएम को तो आप यूज करेंगे किसी लैंग्वेज के लिए, इट इज नॉट अ लैंग्वेज इटसेल्फ। तो आई थिंक ये कॉन्टेंशन बिल्कुल वो है कि एलएलएम को आप एज अ लैंग्वेज इंट्रोड्यूस कीजिए।
0: ठीक है,
3: एलएलएम यू विल यूज लैंग्वेज और एनी अदर लैंग्वेज, इट्स अ टूल, इट इज नॉट अ लैंग्वेज पर से।
0: ठीक है। एज अ पेरेंट मनोज जी ने जितने भी कंसर्न्स रखे, मैं चाहूंगी रेणु जी जरा उसको क्लियर कीजिए, क्योंकि आपके पास भी पेरेंट्स आते होंगे, बहुत से पेरेंट्स ने, क्योंकि आपके स्कूल में भी अभी तक जहां तक मैं मान रही हूं कि बच्चे फ्रेंच, जर्मन, स्पैनिश ये पढ़ रहे थे। अब आप लोग, क्योंकि सीबीएसई का सर्कुलर है कि भाई एक मातृभाषा और पढ़ानी है तो उसमें संस्कृत ही ऑप्शन बनता है पहली बात, या फिर आपके पास कोई और ऑप्शन भी है और उसको कैसे इंक्लूड किया जाएगा? और दूसरी बात ये कि जब पेरेंट्स इस तरह के डाउट्स लेकर आते हैं तो कैसे आप उसको क्लियर करेंगे? रेणु जी
2: जी, तो पहली चीज मैंने शुरुआत में ही कहा था कि 9th स्टैंडर्ड में एक्सेप्शन है इस साल, अगर कोई बच्चा दो नॉन नेटिव लैंग्वेज पढ़ रहा है वो कंटिन्यू कर सकता है, ये मैंने सबसे पहली बात कही थी। एज फार एज टीचर्स का कंसर्न है, उसके पहले मैं बोलूंगी कि आपने कहा कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ बच्चे हमें मिलते हैं, बिकॉज हम एनसीआर में रह रहे हैं, क्योंकि कोई ट्रांसफर होकर तमिलनाडु से आ रहा है तो उसमें भी रिलैक्सेशन दिया गया है। मान लीजिए जो भी वो वहां पढ़ रहा है वो यहाँ कंटिन्यू करेगा, तो इट इज नॉट इम्पोस्ड।
0: नहीं, लेकिन
2: जो
0: उसमें
2: भी नेटिव
0: मैं
2: कंट्री,
0: जल्दी
2: जो
0: से
2: जिस
0: उसको भी
2: स्टेट से
0: क्लियर
2: आ रहा
0: कीजिए,
2: है,
0: आपके पास वो टीचर्स होंगे उसको आप कैसे,
2: फिर
0: ये
2: मैं
0: सबसे
2: बता,
0: बड़ा
2: हाँ
0: डाउट है। मैं
2: आ रही हूँ मैं
0: चाहूंगी
2: उस
0: कि
2: पर।
0: मेरा बच्चा पंजाबी पढ़े, क्या आज की डेट में पंजाबी टीचर्स हैं गुरुमुखी पढ़ा
2: नहीं,
0: सकते हैं?
2: टीचर्स उसमें उसमें हमें एक ऑप्शन दिया गया है कि इट इज नॉट मैंडेटरी कि मैं एक अपने रोल्स पे ही टीचर रखूं। उसमें हमारे सहोदया ग्रुप्स होते हैं सीबीएसई के, एवरी स्कूल इज पार्ट ऑफ अ सहोदया ग्रुप, राइट? सहोदया ग्रुप को आप यूज कर सकते हो, आप पोस्ट ग्रेजुएट जो ऐसे बिना नौकरी के घूम रहे हैं उनको यूज कर सकते हो, आप रिटायर्ड टीचर्स को यूज करते हो सकते हो उसके लिए। तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस और रिलैक्सेशन सीबीएसई ने दिए हैं कि ये जरूरी नहीं कि मैं अपने यहाँ रिक्रूटेड टीचर से ही वो पढ़वाऊं, मेरे पास है तो मैं पढ़वाऊंगी,
0: तो
2: नहीं है
0: वो
2: तो मैं
0: प्रैक्टिकली
2: रिसोर्स
0: कैसे
2: करूंगी
0: पॉसिबल
2: उसको।
0: होगा मैम, एक बार बता दीजिए ताकि पेरेंट्स भी रिलैक्स हो जाएं। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एक बच्चा तमिल से ट्रांसफर होके दिल्ली आता है और आपके स्कूल में पढ़ रहा है, वो कह रहे कि मैं क्योंकि तमिल वहां पे पढ़ रहा था और मुझे वही कंटिन्यू करनी है, आपके पास वो टीचर नहीं तो किस तरीके से पढ़ाएंगे उनको?
2: उसके दो तीन ऑप्शन होंगे। देखिए, मेरे पास अगर 100 टीचर हैं, 200 टीचर हैं, तो उसमें से हो सकता है एक दो तमिल हो, पहला ऑप्शन मैं लेके चल रही हूँ। तो आई वुड यू नो अरेंज इन दैट वे कि वो टीचर उस बच्चे को पढ़ाए, पहले मैं इंटरनल रिसोर्स देखूंगी अगर मेरे पास वो पॉसिबिलिटी है, और मिक्स एंड मैच होता है सारे स्कूल में। दूसरा ऑप्शन होगा जो ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैं उनके एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में कोई ना कोई मिल जाएगा, वो भी नहीं है तो हर हर स्टेट के अंदर, हर सिटी के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सहोदयाज हैं, हम अपने सहोदया ग्रुप्स में जाके वी कैन सीक हेल्प जहां से। और ये टीचिंग ऑनलाइन भी हो सकती है, ये भी रिलैक्सेशन दिया गया कि इम्पोर्टेंट मैंडेटरी नहीं है कि वो
0: ठीक है,
2: ऑफलाइन ही जाके किया जाए।
0: चले,
2: तो इवन
0: ये
2: इफ
0: प्रॉब्लम क्या, ये मैम किस हद तक प्रैक्टिकली पॉसिबल है ये भी बताते चले, फिर मनोज जी से जवाब लूंगी स्कूल्स के लिए।
2: मुझे लगता है पॉसिबल है, बिल्कुल है पॉसिबल मैम। अदरवाइज ऑल्सो जैसे कि आप मान लीजिए मैं स्पोर्ट्स कराती हूँ अपने स्कूल में, मैं कम से कम 10 डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्ट्स कराती हूँ, क्या सारी टीचर्स मेरे अपने हैं? नहीं हो सकता वो, क्योंकि अपने रोल्स पे तो मैं लिमिटेड टीचर्स रखूंगी ना,
0: ठीक है
2: तो
0: ठीक
2: मेरे
0: है।
2: एक्सपर्ट्स जो स्पोर्ट्स के होते हैं मैं हायर करती हूँ बाहर से, हायर यानी कि बाहर से रिसोर्स करती हूँ, तो मैं वो मेरे पास 1 घंटे के लिए 2 घंटे के
0: ठीक
2: लिए
0: है।
2: आते
0: अब
2: हैं,
0: मनोज जी
2: तो आई
0: बताइए,
2: कैन कीप
0: अब
2: प्रैक्टिकल।
0: ये भी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई,
1: ये बताइए
0: स्कूल्स
1: स्पोर्ट्स
0: ऑप्शंस
1: को
0: रख
1: आप
0: रहे हैं।
1: स्पोर्ट्स को आप लैंग्वेज से कंपेयर कर रहे हैं। अब मैं
2: नहीं,
1: इसके मैं
2: कंपेयर नहीं
1: मतलब
2: कर
1: इसके
2: रहे हैं
1: बारे में
2: सर,
1: तो मैं कोई जवाब ही नहीं
2: एग्जाम्पल
1: दे
2: दिया
1: सकता
2: सिर्फ।
1: हूँ, ठीक है? आप अपने स्कूल
0: मैं
1: से
0: वो
1: निकल के सहोदय ग्रुप
0: मनोज
1: पे
0: जी वो
1: जा
0: एक
1: रहे हैं।
0: एग्जाम्पल दे रहे हैं, रेणु जी एक एग्जाम्पल
1: मैं
0: दे
1: कुछ
0: रहे हैं
1: एग्जाम्पल
0: आपको।
1: की बात कर रहा हूँ, मैं उस एग्जाम्पल का काट तो दे सकता हूँ ना, मेरा मेरे जब मुझसे आपने पूछा है तो
0: हाँ
1: उसको काट तो दे रहा हूँ ना। फिर आप अपने स्कूल से निकल के सहोदय ग्रुप पे जा रहे हैं, आप अपने 200 के स्टाफ में से पूछेंगे भी किसको तमिल आती है, तुम तमिल पढ़ा लो इसको अलग से, एक एक बच्चे को बिठा के, ये क्या बातें कर रहे हैं मैम आप? इज इट प्रैक्टिकल? आप खुद सोच के देखिए। आप ही ने कहा कि गुरमुखी पढ़ानी है, तो क्या गुरमुखी के लिए एक टीचर मैं 1 घंटे के लिए बुलाऊंगी कहीं बाहर से? ये संभव ही नहीं है। ये देखिए, सिर्फ अब पता नहीं, जैसे वो कहते हैं ना, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। जी तो बहुत चाहता है सच बोले, पर क्या करे, हौसला नहीं होता। आप लोगों की स्कूल चला रहे हैं, कुछ ना कुछ मजबूरियां मैं समझ रहा हूँ, बट एज अ पेरेंट हमारी मजबूरी समझिए, हमारे बच्चे का प्रेशर समझिए कितना जबरदस्त पड़ रहा है। बल्कि मैं तो करियर काउंसलर साहब की बात से कहीं ज्यादा सहमत हूँ कि जहां पे अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, जहां पे एम्प्लॉयमेंट ज्यादा निकल के आ रहा है, बच्चों को, हिंदुस्तानी बच्चों को, वो उस वक्त शिक्षा लेनी चाहिए, वही उसी लैंग्वेज में स्विच ओवर कर जाए, मेरा ये मानना है। छोड़िए इन सब बातों को, तृतीय लैंग्वेज कंपल्सरी कर रहे हैं, ये सब बकवास है। एज अ पेरेंट हमारा तो सिर्फ, मैं थोड़े से हार्श वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, बट मैं परेशान हूं अपने बच्चों को लेकर।
0: कनक जी आज भी पेरेंट्स
4: मेरे हिसाब से
0: सेटिस्फाइड नहीं
4: मतलब
0: है, कोर्ट का भी दखल इसमें आ गया है, बावजूद इसके पेरेंट्स सेटिस्फाइड नहीं है।
4: मनोज जी को थोड़ा सा एजुकेशन को पॉजिटिवली लुक करना चाहिए. मतलब हम लोग इतने भी बुरे लोग नहीं है मनोज जी. थोड़ा हम लोग का भी फोकस है कि सोसाइटी डेवलपमेंट होना चाहिए. थोड़ा हम लोग का रिसर्च फोकस ज्यादा है तो शायद हो सकता है हम लोगों को ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो कि किस तरीके से बच्चों का डेवलपमेंट हो सकता है. कोशिश करेंगे कि आपको एज अ पेरेंट और एज जो भी आप पोजिशन पर हैं आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे हम एज एजुकेटर्स. पर आपको थोड़ा ट्रस्ट करना पड़ेगा. वो कहते हैं ना दैट इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड. एक पूरा एक कम्युनिटी चाहिए होती है बच्चे को बड़ा करने के लिए. आप भी उस कम्युनिटी का हिस्सा हैं, हम भी उस कम्युनिटी का हिस्सा हैं. ट्रस्ट करिए, हम किसी प्रेशर में नहीं बोल रहे हैं. हम लोगों के हमेशा से 3 लैंग्वेज फॉर्मूला रहा है स्कूलों में, हमेशा से. और ये आगे भी आपके बच्चों को बेनिफिट देगा.
0: ठीक है जितिन जी, वन लास्ट कमेंट।
3: मेरा ये मानना है कि देखिए अल्टीमेटली आई आल्सो एग्री विद मनोज जी कि भाई अल्टीमेटली चिल्ड्रन आर लुकिंग एट प्लेसमेंट्स। जो आज भी टॉप स्कूल्स हैं वो दिखाते हैं अपने वेबसाइट पे, बाकी जगह देखो हमारा बच्चा चाहे बाहर चाहे इंडिया में, IIM इंदौर में गया या फिर IIT दिल्ली में गया या इस तरह से, तो मतलब प्लेसमेंट्स इज इम्पॉर्टेंट। नहीं तो बच्चे बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। मतलब नीट का एग्जाम ऐसा एग्जाम है, अगर मैं गवर्नमेंट स्टूडेंट बात करूँ, खाली 99.5% फेलियर है। किसी भी देश में 0.5% रिजल्ट आ रहा हो और 99.5% तो उन्हें और आयाम नहीं दिखाए जा रहे। और मेरे हिसाब से करियर काउंसलिंग की बहुत कमी है। कोई भी पेरेंट को पता ही नहीं है कि रियल एस्टेट मैनेजमेंट का कोर्स होता है, रिटेल मैनेजमेंट में जॉब्स हैं, ब्लिंकिट जेप्टो कितना इंक्रीज कर रहे हैं। कोई भी पेरेंट सोच नहीं रहा कि एग्रीकल्चर साइंस में चले जाओ, बायो प्लस एंटरप्रेन्योरशिप, कंप्यूटेटेड ड्रग डिज़ाइन, मतलब जहाँ जॉब्स हैं वो नहीं सोच रहे हैं, वही पुराने उसमें लगे हुए हैं। इसीलिए बच्चों पर प्रेशर और वो बढ़ गया है। और कहीं से हम एक प्रेशर कम करना चाहिए, काउंसलिंग सिस्टम्स हैव टू बी स्ट्रेंथन्ड इन स्कूल्स। और खाली कहने के लिए नहीं, एक काउंसलर नहीं देख सकता 5-5 हज़ार बच्चों को, 4 हज़ार बच्चों को। मतलब मैं ऐसे स्कूल को भी जानता हूँ जहाँ 3 हज़ार बच्चे हैं और 8-8 काउंसलर हैं। तो कुछ पहल हुई है, कुछ बढ़िया हम इस पे आगे बढ़े हैं। करियर काउंसलिंग अभी भी मतलब काफ़ी स्कूल्स किसी तरह से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी जो नहीं पहुँच रहा, और पेरेंट्स तक तो बहुत मुश्किल है। पेरेंट्स हैव टू बी अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। जहाँ मैं मनोज जी से भी दरखास्त करूंगा कि भाई पेरेंट्स, हम वो कई बार वर्कशॉप करते हैं, स्कूल्स ऑर्गेनाइज करते हैं, हार्डली 20% पेरेंट्स आर कमिंग, 25% पेरेंट्स आर कमिंग। तो पेरेंट्स को दे हैव टू बी पार्ट ऑफ प्रोसेस एंड टू अंडरस्टैंड कि केवल वही 10 ऑप्शंस नहीं, उसके बियॉन्ड भी ऑप्शंस हैं। तब जाके बच्चों में प्रेशर रिड्यूस होगा, उन्हें नई चीज़ मिलेगी और आगे इस चीज़ में बढ़ोतरी होगी। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट लैंग्वेजेस, वो तो खैर आज हमने डिस्कस किया, बट इट इज़ ऑल्सो अबाउट
0: ओवरऑल ओवरऑल बिल्कुल, क्या पेरेंट्स पर, बच्चों पर और खुद स्कूल पर बोझ कम हुआ है या फिर बढ़ा है। जल्दी से एक बार आपके पास आऊंगी रेणु जी। देखिए मकसद तो यही था ना, स्कूल भी रिलैक्स हो, पेरेंट्स भी रिलैक्स।

0: मैं मतलब एक तरह से जतिन जी के बात से भी सहमत हूँ और कनक जी की बात से भी बिल्कुल सहमत हूँ कि ट्रस्ट फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. हम लोग सब स्टेक होल्डर्स हैं, यू नो, एंड इट रियली टेक्स अ विलेज टू कम्युनिटी टू रेज अ चाइल्ड. दूसरा, एज फार एज काउंसलिंग सेशंस की बात की जाए, वो भी कहीं ना कहीं मैंडेटरी है, और सारे जो प्रोग्रेसिव स्कूल्स हैं वो काउंसलिंग सेशंस अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं. और ये भी सच है कि पेरेंट्स का एक माइंडसेट है कि वो एक, यू नो, रिग्रेसिव कन्वेंशनल सेट में जाना है, इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है. देर आर सो मेनी ऑप्शन, देर आर सो मेनी करियर ऑप्शन वेयर यू नो बच्चा कैन गो. उसको हम एक्नॉलेज नहीं करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं. मेरे यहाँ जब 11th के लिए 10th पास करके जब एडमिशन 11th में शुरू होते हैं, यहाँ पेरेंट्स के इतने लंबे लंबे काउंसलिंग सेशंस मुझे करने पड़ते हैं, वेर आई हैव टू टेल देम बच्चा डजन्ट वॉन्ट टू डू साइंस,
1: बिल्कुल,
0: बट पेरेंट को उसको
1: उम्मीदें
0: साइंस ही
1: बहुत ज्यादा
0: पढ़ानी
1: रेणु
0: है.
1: जी। चर्चा, हालांकि बहुत सारे सवाल हैं, पैनल बहुत अच्छा है, चर्चा लंबी हो सकती है, लेकिन वक्त अभी हमारे पास इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
2: क्या आपके बच्चे की शिक्षा में बाधा आ रही है? क्या करियर में बार बार रुकावटें पैदा हो रही हैं? कौन सा करें माता पिता उपाय कि बच्चे का जीवन सुधर जाए? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
3: What's Spectrum Internet? It's the most reliable internet to stream, game, and browse the way you want. It's also security to keep your whole family safe online. And it's adding the power of Wi-Fi 7 to your home, so you're ready for today and tomorrow. That's fast, secure, and future-ready internet for your family. So what's Spectrum Internet? It's everything you want it to be. Switch today at Spectrum.com. Services not available in all areas. Restrictions apply.
4: TalkSport presents The S-Word with Will Gavin and Master Tesfasyon.
5: We're finally giving North American football fans the show they deserve.
6: Fiery fan debate, in-depth analysis, and plenty of fun along the way.
5: We're here Monday to Friday, 8 till 10 Eastern, and every single day of the World Cup.
6: Remember, around here, we use the F-Word.
5: Never the S-Word.
4: The S-Word, available now on TuneIn,
7: wherever you get your podcasts,
4: and on the S-Word YouTube channel.
8: हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
1: बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप की, जिसका फाइनल मुकाबले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लेकिन स्पेन और अर्जेंटीना के इस मुकाबले से पहले एक तस्वीर वायरल हुई और ये तस्वीर 2007 की है, जिसमें मेसी एक बच्चे को नहलाते हुए नजर आ रहा है और ये बच्चा आज बड़ा हो चुका है और स्पेन की तरफ से मेसी की टीम के खिलाफ भिड़ने को तैयार है। तो क्या है पूरी कहानी, आपको दिखाते हैं।
2: 2007 में खींची गई तस्वीर फुटबॉल के इतिहास का सबसे बड़ा इत्तेफाक बन गई है। ये तस्वीर एक चैरिटी कैलेंडर के लिए खींची गई थी। तब स्पेन के प्लेयर लामिन यमाल का परिवार लॉटरी जीतकर मेसी के साथ फोटोशूट तक पहुंचा था। उस दिन कैमरे में सिर्फ एक तस्वीर ही नहीं बल्कि फुटबॉल की दो पीढ़ियों का भविष्य कैद हो गया था। तब लामिन यमाल के पिता ने उसी तस्वीर के साथ लिखा था, दो लीजेंड्स की शुरुआत। आज वही तस्वीर हकीकत बन चुकी है। फाइनल मुकाबले में लामिन यमाल उसी खिलाड़ी के सामने हैं जिसने 20 साल पहले उन्हें नहलाया था और जिसे वो अपना आदर्श मानते हैं। आज दुनिया स्पेन के लामिन यमाल को फुटबॉल का चमकता सितारा मानती है, लेकिन इस चमक के पीछे संघर्ष का एक लंबा अंधेरा सफर छिपा है। यमाल का बचपन तंगी और अभावों के बीच बीता। उनके माता पिता बेहतर भविष्य की उम्मीद लेकर गिनी से स्पेन के कैटालोनिया पहुंचे थे, लेकिन नई जिंदगी की शुरुआत आसान नहीं थी। आर्थिक हालात इतने कठिन थे कि कई बार उनके पिता को पेट भरने के लिए सड़कों और फुटपाथों पर खाना तलाशना पड़ता था। यमाल को आज भी लगता है कि असली दबाव फुटबॉल के मैदान पर नहीं बल्कि वो था जो उनके माता पिता ने हर दिन झेला। इस तस्वीर के इत्तेफाक के आगे अब सवाल महज वर्ल्ड कप ट्रॉफी का नहीं है, सवाल है कि क्या स्पेन के लामिन यमाल अपने आदर्श मेसी को हराकर नई विरासत की शुरुआत करेंगे, या फिर मेसी एक और विश्व कप जीतकर अपनी महान कहानी में एक और सुनहरा अध्याय जोड़ेंगे। दुनिया भर के फुटबॉल फैंस इसी सवाल का जवाब तलाश रहे हैं। अगर फाइनल में पहुंची दोनों टीमों की बात करें तो स्पेन पूरे टूर्नामेंट की सबसे संतुलित टीम बनकर उभरी है, जबकि फाइनल में पहुंची अर्जेंटीना का सफर टूर्नामेंट से आसान नहीं रहा है। अर्जेंटीना के हर एक जीत में मेसी का फैक्टर काम आया है। अब सबकी नजरें फाइनल पर हैं और माना जा रहा है कि फुटबॉल की ये महाटक्कर दिल थाम देने वाली साबित होगी। फाइनल सिर्फ खिलाड़ियों की वजह से ही खास नहीं होगा, दुनिया की निगाहें वीआईपी गैलरी पर भी होंगी, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस महामुकाबले को स्टेडियम में बैठकर देखेंगे। व्हाइट हाउस इसकी पुष्टि कर चुका है। मैच से पहले ट्रंप न्यूयॉर्क स्थित ट्रंप टावर में फीफा रिसेप्शन में भी शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से

0: क्या आपके बच्चे की शिक्षा में बाधा आ रही है? क्या करियर में बार बार रुकावटें पैदा हो रही हैं? कौन सा करें माता पिता उपाय कि बच्चे का जीवन सुधर जाए? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती।
2: गुड न्यूज टुडे,
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे।
3: स्वागत है आपका चाय पर चर्चा में, आपके साथ मैं हूँ नवजोत चंदावा। चाय पर चर्चा का आगाज उन प्रतिभाओं की कामयाबी के साथ करेंगे जिन्हें आज दुनिया सलाम कर रही है। तो नीट एग्जाम के टॉपर छात्रों की सफलता की कहानी आज उन्हीं की जबानी। नमस्कार, मैं आशा गुप्ता, स्वागत है आप सभी का चाय पर चर्चा में। पुरी में बिखरी है महाप्रभु की रथ यात्रा की रौनक, आज से भगवान जगन्नाथ मौसी के घर गुंडीचा मंदिर में है। कौन कौन सी परंपराओं से यहां निभाया जाएगा इसकी जानकारी आपको देंगे, साथ ही रथ यात्रा की खूबसूरत छटा कैसी है वो भी आपको दिखाएंगे।
4: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव। और देखिए, इस साल की मोस्ट अवेटेड माइथोलॉजिकल फिल्म यानी कि रामायण के एक नहीं बल्कि दो ट्रेलर एक साथ रिलीज होंगे। जी हां, देखिए जगह होगी अमेरिका का सैन डिएगो और तारीख होगी 24 जुलाई। और ऐसी कई इंटरेस्टिंग खबरें भी आज चाय पर चर्चा में हम आपके लिए लेकर आए, उसके बारे में भी विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हेडलाइंस पर नजर।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements. Sage University, transforming your passion into profession.
3: पुरी में श्री जगन्नाथ रथ यात्रा का आज दूसरा दिन, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मौसी के घर गुंडीचा मंदिर पहुंचे भगवान जगन्नाथ। बद्रीनाथ धाम में अब तक 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, जुलाई के मध्य तक दर्शन का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा। महाराष्ट्र के पंढरपुर में एक भक्त ने भगवान विट्ठल के चरणों में अर्पित की सोने की पादुकाएं, करीब 57 लाख रुपए बताई जा रही इसकी कीमत। प्रयागराज के मन कामेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए नया ड्रेस कोड लागू, सावन में महिलाएं साड़ी सूट और पुरुष धोती कुर्ता पहनकर करेंगे रुद्राभिषेक, जीन्स टी शर्ट में गर्भगृह में नो एंट्री। देश को मिली पहली हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात, प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा की जींद में हरी झंडी दिखाकर सोनीपत के लिए किया इसको रवाना।

0: वैसे मेरे घर में भी एक नीट का धुरंधर है, धुरंधर ने बड़ी मेहनत की है और देखिए जब ये मेहनत और लगन रंग लाती है ना, नाम रोशन करती है, तो कामयाबी खुद ब खुद आपके पास खींची चली आती है। नीट की परीक्षा इस बार ऐसी ही कामयाबी की मिसाल पेश कर रही है। आज सबसे पहले चाय पर चर्चा में इसी कामयाबी का जिक्र करते हैं। देश के जिन छात्रों ने नीट की लिस्ट में अपना नाम देखने के लिए दिन रात एक कर दिया, आज उनकी कहानी, उनकी मेहनत की कहानी उन्हीं की जुबानी सुनाएंगे आपको।
1: बिल्कुल, देखिए धुरंधर के बारे में हम अक्सर बात करते हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं नीट के धुरंधरों की। देखिए इस साल की नीट परीक्षा लीक के कारण हुए री नीट एग्जाम का रिजल्ट कल देर शाम आया, जिसमें सबसे ज्यादा 715 अंक लुधियाना के आर्यन गुप्ता और हरियाणा के पंचुल बंसल ने संयुक्त रूप से हासिल किए। वैसे इनके साथ ही पूरे देश से 19 उम्मीदवार भी ऐसे हैं जिन्होंने 700 से ज्यादा अंक हासिल कर खुद के साथ अपने घर वालों और अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। बता दें कि इस बार की परीक्षा में देश और विदेश के करीब 20 लाख कैंडिडेट्स शामिल हुए। इनमें से 138 उम्मीदवारों ने 720 में से 690 से ज्यादा अंक हासिल किए हैं। वहीं 93% से ज्यादा अभ्यर्थी पहली बार नीट परीक्षा में शामिल हुए थे, जबकि 99% टॉपर्स की उम्र 17 से 19 साल के बीच है।
0: शुरुआत टॉपर से ही कर लेते हैं। आर्यन गुप्ता नाम है इनका और कठिन परीक्षा में कामयाबी हासिल की है। परिवार में खुशी का ठिकाना नहीं है, अच्छे नतीजे की उम्मीद तो आर्यन समेत पूरे परिवार को थी, लेकिन पहली रैंक देखकर सभी के चेहरे खिल उठे। इस कामयाबी ने आर्यन की मेहनत और उनकी काबिलियत को एक नई पहचान दिलवाई है। नीट के नतीजे आने के बाद से ही दोस्त और रिश्तेदार उन्हें बधाई दे रहे हैं। आर्यन के स्कूल में उनकी कामयाबी की खूब चर्चा हो रही है।
2: कितनी मेहनत की री नीट में एग्जाम क्लियर करने के लिए? पहले अटैम्प्ट में भी मेहनत की होगी, दूसरा अटैम्प्ट मिला उसमें कितनी और मेहनत की?
3: ये नहीं था कि ज़्यादा मेहनत करी मैंने, जितनी तैयारी मेरी थर्ड मई को थी उतनी तैयारी मेरी 21 जून को थी, जितना मैंने पहले पढ़ रखा था तब भी, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि मैं ज़्यादा पढ़ लिया 30 दिनों में 40 दिनों में। पहले भी जेई में भी मेरा 99.6% आई थी, ओलंपियाड एनएससी एनएससीपी एनएससीबी में टॉप 10 ऑल इंडिया रैंक आया था। तो बस ये था कि अपने आप से नीट 1 के बाद रीनीट के पहले अपने आप से एक्सपेक्टेशन रखना बंद कर दी थी कि नीट के पहले तो इधर 2 साल की मेहनत है, मुझे तो यही कॉलेज चाहिए, एम्स दिल्ली चाहिए, ऑल इंडिया रैंक 1 चाहिए। इसकी कहीं ना कहीं टेंशन के चक्कर में मेरे 5 क्वेश्चन गलत हो गए थे, 4 क्वेश्चन गलत, 1 क्वेश्चन छोड़ दिया, तो आई वाज स्कोरिंग 696 एंड इट वाज क्वाइट एन ईजी पेपर द फर्स्ट वन। अब सेकेंड पेपर में एक्सपेक्टेशन छोड़ दी कि मुझे नहीं सोचना क्या कॉलेज चाहिए, और मुझे याद है मैंने अपने आप को इतना फोर्स किया पेपर देते वक्त सोचने के लिए कि यार मैंने घर आके बायो पढ़नी है, कि नॉर्मल मॉक टेस्ट है जो हर दिन देते हैं इंस्टीट्यूट में, वो वैसा ही एक नॉर्मल मॉक टेस्ट है। अपने आप को सोचा ये और फिर पेपर दिया शांति से और अच्छा चला गया। देखो मेहनत तो करी है, जब मैं पढ़ता था तब लगता था और मेहनत कर सकता हूँ, बट हाँ पेरेंट्स ने कहा, मम्मा पापा ने कहा कि बहुत मेहनत करी है, और ये है कि पढ़ने का टाइम ज़्यादा होना इतना ज़रूरी नहीं होता, तुम कितना टाइम इफेक्टिवली पढ़ रहे हो। देर पढ़ाई में हमेशा क्वालिटी इज बेटर देन क्वांटिटी।
2: अब डॉक्टर बनने जा रहे हैं आप, एक सपना था, कहते हैं कि दादी की डेथ के बाद ये सपना आपने देखा, वो क्या इंसिडेंट था?
3: वही है कि थर्ड क्लास में माई ग्रैंड मदर पास्ट अवे टू, जिनको बहुत प्यार करता था ना,
4: ब्रेस्ट कैंसर।
3: और वही लगता था कि पूरा परिवार डॉक्टर्स का है, बहुत हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, बहुत बड़े डॉक्टर्स हैं, फिर भी हम ज़्यादा नहीं कर पाए कुछ उसका। तो यही था कि जो मुझे लगा बहुत देर के लिए, किसी और को ना लगना पड़ा।
0: अब देखिए एक तो ये है कामयाबी की कहानी, एक और कामयाबी की कहानी आपको सुनाते हैं। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में रहने वाले पंचुल बंसल ने नीट में दूसरी रैंक हासिल की है, उन्हें भी इस परीक्षा में 715 अंक मिले हैं, यानी पंचुल के नंबर पहली रैंक पाने वाले के बराबर ही हैं, लेकिन एनटीए की पॉलिसी के मुताबिक उन्हें दूसरी रैंक मिली है। इस कामयाबी के बाद पंचुल के स्कूल में उनका शानदार स्वागत हुआ। पंचुल ने इस कामयाबी का क्रेडिट अपने पेरेंट्स को दिया है। नीट का पेपर अच्छा होने के बाद उन्हें उम्मीद थी कि उनकी रैंक 100 के अंदर आएगी, लेकिन दूसरी रैंक हासिल करके उन्होंने अपनी कामयाबी का परचम लहरा दिया।
4: नीट परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है, जिसमें कई छात्रों ने अच्छा मुकाम हासिल किया है। अभी हमारे साथ जो बात करने के लिए हैं, वो उन्होंने सेकंड रैंक पाया है। अभी हम उनसे बात करेंगे और उनका परिचय उनसे ही जानेंगे। जी, आप अपना नाम बताइए।
5: मेरा नाम पंशुल बंसल है, मैं फरीदाबाद का रहने वाला हूँ एंड आई हैव सिक्योर्ड AIR 2 इन नीट 2026।
4: आपका कितना रैंक आया है?
5: 2।
4: तो क्या कहेंगे, आपको उम्मीद थी कि इतना आएगा?
5: मतलब मेरे को इतनी एक्सपेक्टेशन थी कि अगर टॉप 10 तो आ जाएगा, तो अभी सेकंड आ गया। तीनों को क्रेडिट जाता है, मतलब पापा मेरी हेल्प करते थे फिजिक्स में, स्कूल में को CBSE बोर्ड में बहुत हेल्प करी उन्होंने मेरी, एंड मेरे को कोचिंग इंस्टीट्यूट से भी बहुत हेल्प करी थी नीट प्रिपरेशन में।
4: स्कूल से कितना मदद मिला है, क्या कहेंगे?
5: बहुत मदद मिला है स्कूल से, मतलब बहुत सपोर्टिव था और सब कुछ एकदम अच्छी तरह पढ़ाते थे, सब कुछ हमें टाइम मिलता था आराम से, हम करते थे सब कुछ और प्रैक्टिकल्स भी हमें बहुत अच्छी तरह समझाए गए थे, तो मेरे बोर्ड्स में भी CBSE बोर्ड्स में 94% आए हैं।
4: अब आगे क्या करने की तैयारी है, क्या कहेंगे?
5: मोस्ट लाइकली मेरे को सर्जरी में जाना है, तो और उसके बाद सुपर स्पेशलिटी देख लेंगे। वैसे बहुत सारी फील्ड्स में इंटरेस्ट है मेरा, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ऑर्थोपेडिक वगैरह, तो तब देख लेंगे, पर सर्जरी में आई थिंक ज़्यादा इंटरेस्ट है।
4: बच्चों को जो हैं स्टूडेंट तुम्हारे पढ़ने वाले, उनका क्या संदेश रहेगा आपके तरफ?
5: बेसिक मोस्ट इंपॉर्टेंट तो बेसिकली कंसिस्टेंसी रखनी है और डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है पूरे 2 ईयर्स, और बस अपना 100% देते रहना है, रिजल्ट आ जाएगा अपने आप ही।
4: आपने किस तरीके से तैयारी की और कितना पढ़ते थे, क्या कुछ खास करते थे?
5: मतलब ऐसे कोई स्पेशल चीज़ तो नहीं करता था, मतलब आई वुड से कि क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो क्वेश्चन प्रैक्टिस ही है, स्पेशली PYQs, और मैं लाइक मैक्सिमम 6 to 7 hours पढ़ता हूँ, ज़्यादा नहीं।
4: अच्छा, तो इतना 6 to 7 hours पढ़ने के बाद एक सफलता मिल सकती है आपका?
5: मिल सकती है अगर आप प्रॉपर फोकस करें तो।
4: बंसल जी, बेटे ने जो मुकाम हासिल की है, कैसा लग रहा है एज ए फादर, क्या कहेंगे?
6: सर, आई एम फीलिंग वेरी प्राउड एंड आई विद द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी मेहनत बच्चों की रंग लाई एंड नाउ वी आर फीलिंग वेरी हैप्पी फॉर हिज अचीवमेंट्स।
4: ठीक है, कितने बच्चे हैं?
6: सर, हमारा एक ही बेटा है सर।
4: तो आज ये जो मुकाम हासिल किया है उस पर क्या कहेंगे, कितना मार्क्स आए हैं इसको?
6: सर, इसका टोटल 715 मार्क्स आए हैं और टॉप, मतलब दोनों बच्चों के फर्स्ट एंड सेकेंड रैंक दोनों के सेम मार्क्स आए हैं, बट चूंकि NTA का टाई ब्रेकर क्राइटेरिया है कि अगर सेम मार्क्स आते हैं तो जिसके बायोलॉजी में कम गलत होते हैं तो उसको वो ऊपर कर देते हैं, तो इस कारण से इसको सेकंड रैंक मिला है, अदरवाइज मार्क्स दोनों के सेम आए।
4: अच्छा, सेम आए।
6: हाँ,
4: तो अब आगे क्या कहेंगे, बेटे की उपलब्धि के बाद कैसा जश्न का माहौल है, क्या कहेंगे?
6: सर, सब हमारे बिहारी जी की कृपा है, हम खुश हैं सर बहुत।
4: पढ़ने में कैसा था बच्चा?
6: पढ़ने में तो सर ये शुरू से ही, मतलब कुछ कहने की बात नहीं है, शुरू से ही बहुत डिसिप्लिन और बहुत ही अच्छा बच्चा है, कभी शिकायत का मौका नहीं दिया।
7: बहुत बहुत खुशी हो रही है, बट मुझे एक बात कहनी है कि इसकी सक्सेस स्टोरी में इसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इसके फादर का है। उन्होंने इतना कंट्रीब्यूट किया है इसकी सक्सेस स्टोरी में कि अगर उन्होंने कंट्रीब्यूट नहीं किया होता तो आई थिंक वो इतना अच्छा रैंक नहीं ला पाता।
4: आपको उम्मीद थी कि आपका बेटा?
7: मुझे ये उम्मीद जब ये नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा था तो आई एम 100% श्योर कि उसका अंडर 100 रैंक आएगा, बट इतना अच्छा आ जाएगा इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था, बट जिस दिन ये एग्जाम देकर आया है उस दिन वी आर श्योर दैट ही विल गेट रैंक अंडर 10।
1: वहीं जयपुर के उपलक्ष गोयल ने नीट परीक्षा में तीसरी रैंक हासिल की है। उनकी इस कामयाबी पर उनके पूरे परिवार में खुशी की लहर है। नतीजे घोषित होने के बाद से ही उनके घर पर बधाइयां देने वालों का तांता लगा हुआ है, तो वहीं उपलक्ष भी अपनी मेहनत से काफी ज्यादा संतुष्ट नजर आए।
0: चलिए, उपलक्ष इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो उपलक्ष, आपको बहुत बहुत बधाई, और कैसा लग रहा है, आप खुद अपना आज फीलिंग्स बताइए, जब रिजल्ट आया उसके बाद आपको कैसा लगा, परिवार में कैसा माहौल है, कैसा फील कर रहा है आप, क्योंकि चैलेंज इस बार सबसे बड़ा ये था कि दूसरी बार एग्जाम आपने दिया था।
8: थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है, और ये खुशी मुझे सबसे ज्यादा अपने परिवार को खुश देखकर हो रही है, और मेरे माता पिता बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं, और ये नीट क्लियर करके अब अंडर 5 रैंक आ रही है, तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है।
0: अच्छा, नहीं, ये एक सवाल मैं कर लेती हूँ, मैं ये जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए इसको लेकर बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई थी इसीलिए पेपर कैंसिल हुआ, फिर दोबारा, तो वो जो पीरियड था वो आपके लिए कैसा पीरियड था कि अब दोबारा से हमें एग्जाम देना पड़ेगा?
8: एक तो मन में डर था कि जितना पहले अच्छा करा अब उतना अच्छा कर भी पाऊंगा क्या, और बुरा चला जाएगा, लेकिन एक मन में थोड़ी सी खुशी थी कि चलो दूसरा मौका मिल गया, पहले उतने मार्क्स पे फिर अच्छी रैंक नहीं आती इजी पेपर की वजह से, तो अब उतने ही मार्क्स पे अच्छी रैंक आएगी, और ये भी था कि अब दूसरे मौका मिला है तो अपने जो भी पहले गलतियां कर ली मैं उनको सुधारूंगा और 2 महीने में अपने आप को बिल्कुल रेडी कर लूंगा नीट के लिए।
0: बिल्कुल उपलक्ष्य, एक काम करो, पहले तो बड़ी सी स्माइल करके दिखाओ, है ना, GNT पर हो, ठीक है, इतनी बड़ी कामयाबी मिली है तो यू नीड टू स्माइल अ लॉट, ठीक है,
1: अब नजर आ रही है,
0: मजा आया है। अब मैं सवाल पूछती हूँ, अच्छा ये बताओ, मेरे घर में भी हैं जिन बच्चों ने ये तैयारी की थी रीनीट को लेकर, ना कुछ बच्चे तो डिप्रेस हो गए थे और कुछ बच्चों ने खुद को बहुत ही ज्यादा मोटिवेट किया था अगेन कि वी हैव टू डू दिस अगेन, वो मोटिवेशन कहां से आई, वो किक कहां से मिली?
8: वो सबसे ज्यादा मुझे अपनी मम्मी से मिली थी, वो मुझे हमेशा कहती थी कि वो इस बार जो कुछ भी है वो अब बदला नहीं जा सकता, लेकिन आगे जो हो सकता है हम उसको बदल सकते हैं, हम अपने अब फ्यूचर को खुद लिखते हैं, हम जो भी अपने हमको पढ़ाई करनी है, अगला जो एग्जाम देना है हम उसके लिए खुद तैयारी कर सकते हैं और एकदम पढ़ सके रेडी रह सकते हैं। और मेरे जो टीचर्स थे वो भी हमेशा मुझे बताते थे कि जब नीट में अभी दूसरी बार होने वाला है तो कैसे पढ़ाई करनी है, क्या क्या करना है।
1: बिल्कुल उपलक्ष, और पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो क्योंकि बहुत मेहनत के बाद आपने इतनी अच्छी रैंक हासिल की होगी, आपके परिवार में खुशी की लहर होगी, और जैसे शगुफ्ता ने कहा क्योंकि इस बार एग्जाम आसान नहीं था, री एग्जाम था, काफी डिप्रेशन हो गया था, बच्चों को काफी हताश हो गए थे, और जो इस बार यानी री एग्जाम में भी अच्छी रैंक हासिल नहीं कर पाए उपलक्ष, क्योंकि आप टॉपर्स में से एक है, क्या संदेश देना चाहते हैं आप उन स्टूडेंट्स को, किस तरीके से वो अगले साल के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं?
8: उनको अपने टीचर्स की हर बात माननी चाहिए, जो भी टीचर्स कह रहे हैं वो आपके लिए बेस्ट है, और आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और उसे आप अपनी मिस्टेक्स पहले ही कर लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आप किस चीज में वीक हैं, और टेस्ट देने चाहिए, टेस्ट देके आपको समझ में आ जाएगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, और धीरे धीरे आपका स्कोर इम्प्रूव होने लगेगा, आप अपनी गलतियों की याद रखिए, अपनी गलतियों को मिस्टेक कॉपी में लिखिए, जिससे हमेशा आप वो धीरे धीरे इम्प्रूव करते चलेंगे।
0: उपलक्ष्य, वैसे ना आप जैसे स्टूडेंट्स को देखकर हम भी बहुत इंस्पायर होते हैं,
1: लेकिन हमारा टाइम नहीं है नीट देने का,
0: हां मैं नहीं है वो तो मुझे पता है, बट मैं स्टिल आई एम गेटिंग इंस्पायर्ड अ लॉट इन लॉट मेनी अदर वेज। अच्छा उपलक्ष्य, ये बताओ, स्टडीज की जब बात आती है तो डिड यू फॉलो एनी स्ट्रेटजी फॉर योर एग्जाम?
8: हाँ, स्टडीज में स्ट्रेटजीज तो ऐसे थी कि मुझे बायोलॉजी में एनसीईआरटी ज्यादा फोकस करना है, और केमिस्ट्री में नोट्स अच्छे से पढ़ने हैं, फिजिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, और क्वेश्चन प्रैक्टिस तो वैसे केमिस्ट्री और बायो में भी करनी है, फिजिक्स में वो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन डिस्क्राइब करने हैं, वैरायटी अलग एक्सप्लोर करनी है, और जो भी अपने वो टीचर्स कह रहे हैं वो हर बात फॉलो करनी है, सारे अपने क्वेश्चन सॉल्व करके जो भी डाउट है अपने टीचर से पूछने हैं, वो टीचर आपको अच्छे से बताते हैं और वो क्लियर कर लेने होते हैं, उनको याद रखना होता है।
1: अच्छा उपलक्ष, बड़ा जरूरी सवाल आपसे यहाँ पर पूछना है, सक्सेस मंत्र क्या है, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है और देखिए हम सभी इतने एडिक्टेड है ना शगुफ्ता, हम मोबाइल फोन्स पर लगे रहते हैं, और स्टूडेंट्स के लिए कितना मुश्किल होगा जहां एक तरफ फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस है, उसके बीच अपने आप को इन सभी चीजों से दूर करते हुए बस निरंतर मेहनत करते जाना है, क्या सक्सेस मंत्र है आपका?
8: सबसे बड़ा सक्सेस मंत्र तो मेरे लिए डिसिप्लिन था, क्योंकि हम डिसिप्लिन से वो सारी की सारी जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको दूर कर सकते हैं, जो भी वो फ़ोन में डिस्ट्रैक्शन या सोशल मीडिया है मैं उसको यूज़ नहीं करता था, मैं अपने बस टीचर से कनेक्ट रहता था और अपने क्लासमेट से डाउट डिस्कस करता था, और जब भी मुझे एंटरटेनमेंट चाहिए था मैं फ़ोन ही उठाता था, मैं अपने कमरे से बाहर निकल के फ्रेश एयर लेता था और थोड़ा थोड़ा वो अपने फैमिली से बात करता था, उनसे वो जो कुछ भी मुझे स्ट्रेस था पूरे दिन का वो सारा वो बात करता था तो रिलीफ हो जाता था।
0: बिल्कुल, तो चलिए अब आप दूसरे स्टूडेंट्स को क्या सलाह देंगे, वो लोग जो कि नीट की तैयारी कर रहे हैं, नीट या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की वो लोग तैयारी कर रहे हैं?
8: वो उनको हमेशा डिसिप्लिन में रहना चाहिए और कंसिस्टेंट रहना चाहिए, हार्डवर्क सही दिशा में करना चाहिए और रोज करते रहना चाहिए कि जब भी उनको ऐसा है कि अब मन नहीं लग रहा तो अपने पेरेंट्स से बात करके वो वापस अपने ट्रैक पे मूव ऑन कर सकते हैं और हमेशा पढ़ाई करते रहेंगे तो एक ना एक दिन सक्सेस जरूर मिलेगी।
0: अच्छा उपलक्ष्य, एक सवाल मेरा ये बताइए कि देखिए आपने ये तो बता दिया कि एंटरटेन करने के लिए आप एक बाहर आकर फ्रेश एयर लेते थे, बट फिर भी बॉलीवुड के कुछ गाने या फिल्में, कुछ तो एक्स्ट्रा हॉबी होगी आपकी, क्या करना पसंद है अपार्ट फ्रॉम द स्टडीज?
8: फिल्में तो मैं जनरली नहीं देखता था, हाँ कॉमेडी सीरियल टीवी पे देख लेता था वो रिफ्रेशमेंट के लिए, और जनरली वो मतलब मेरे मम्मी पापा देख रहे होते तो साथ में बैठ के देख लेता था तो अच्छा टाइम स्पेंड होता था तब।
9: अच्छा आर यू अ फूडी पर्सन, मतलब खाना पीना पसंद है?
8: ज्यादा तो मैं चूज ही नहीं हूँ खाने में, जो मम्मी बना के खाने को देते वो सब खा लेता।
9: मतलब पूरी तरह से आप मम्मा'स बॉय है ना।
1: अच्छा एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी, अब आगे का क्या सपना है, क्या मन में कुछ है कि ये कॉलेज चाहिए, इसमें स्पेशलाइजेशन करूंगा आगे जाकर, कुछ तो गोल होगा? मतलब आपने बहुत बड़ा पड़ाव तो पार कर लिया है, अब आगे की राह कैसे रहने वाली है, क्या कुछ सपना है?
8: मुझे एम्स दिल्ली जाना था और अब एम्स दिल्ली जा रहा हूँ मैं, और उसमें मुझे ये था कि रिसर्च में मुझे मूव करना है क्योंकि एमबीबीएस के साथ अगर मैं रिसर्च करता हूँ तो मुझे जैसे साइंटिस्ट बनना था बचपन से और शायद मैं रिसर्च में आगे बढ़ सकता हूँ, लेकिन रिसर्च में अगर नहीं भी जा पाया तो भी डॉक्टर बन के रहूँगा और देश की सेवा करूँगा।
0: चलिए कॉन्ग्रेचुलेशंस उपलक्ष्य एक बार फिर से हमारी पूरी टीम की तरफ से, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और मे यू अचीव व्हाट यू वांट टू अचीव।
9: चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि धुरंधरों की कमी नहीं है। बिहार के रहने वाले आयुष बलूतिया की नीट परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 4 आई है। कोटा में रहकर नीट की परीक्षा करने वाले आयुष ने 710 अंक हासिल किए हैं। उन्होंने लगभग 5 से 7 घंटे सेल्फ स्टडी की और रोजाना 6 घंटे की क्लास अटेंड कर ये कामयाबी हासिल की।
10: आयुष पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपका परिचय दीजिए, आपका नाम बताइए और स्कूल और किस तरह से आपने पूरी तैयारी की।
11: थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम आयुष भारोटिया है, मैं 10th तक तो बिहार से स्कूलिंग किया था विवेकानंद पब्लिक स्कूल से, फिर 10th के बाद 11th और 12th में मैं कोटा आया एलन में नीट की पढ़ाई करने के लिए, तो 2 साल कोटा में पढ़ाई की मैंने, फिर नीट का एग्ज़ाम दिया और उसमें मेरे 710 मार्क्स आए और ऑल इंडिया रैंक 4th आई। सबसे मेन तो होता है कि जो सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड है वो कंप्लीट करना, सिलेबस को अच्छे से ढंग से, फिर दूसरा होता है कि उस सिलेबस को कंप्लीट करके उससे जो भी रेलेवेंट क्वेश्चंस है उनको प्रैक्टिस करना।
10: आपने नीट की तैयारी कब शुरू की थी?
11: नीट की तैयारी तो 10th का जब मैट्रिक का एग्ज़ाम हमारा ख़त्म हुआ था तो मैंने बेसिक मैथ्स पढ़ लिया था उसके बाद, बट जो बाकी मेन चैप्टर्स है वो सब 11th 12th कोटा आके पढ़ा था केएलएन में।
10: आपका रोजाना रूटीन क्या रहता था, आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? इस
11: रूटीन हर क्लास में बहुत ज़्यादा वेरी कर गया था, बट अप्रोक्स 5 से 7 घंटे पढ़ लेता था। कुछ ओलंपियाड के पेपर्स बनाता था मैं ज़्यादा बुक्स नहीं बनाता था, मैं एग्ज़ाम के क्वेश्चंस ज़्यादा बनाता था जिससे नए नए क्वेश्चंस को बनाने की आदत बने, क्योंकि क्या होता है कि एग्ज़ाम में जाके नए क्वेश्चन देख के थोड़ा डर लगने लगता है, तो उसकी हैबिट बनाना कि नए क्वेश्चंस देख के आप डरना नहीं, खुद से सॉल्व करने की एक एबिलिटी होना, वो थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश करता था और एक्यूरेसी पे ज़्यादा फोकस करता था, स्पीड से ज़्यादा फॉर्मूला याद करके या वगैरह वगैरह इनसे बच के थोड़ा कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई ज़्यादा करें, क्योंकि आप पेपर कोई टीचर नहीं डिसाइड कर सकता पहले कि हाँ पेपर आसान आना चाहिए नीट का या हार्ड, पेपर तो मतलब उनका मन वो कैसा भी बना सकते हैं, तो रेदर आप कोशिश करें कि आप कैपेबल हो कि आप कुछ भी आए तो वो सॉल्व कर पाए, क्योंकि पेपर अनप्रिडिक्टेबल कभी भी आ सकता है।
0: अब देखिए वहीं कोटा के ही गौरव सिंह ने भी नीट परीक्षा में 9th रैंक हासिल किया है। पिछले 2 साल से गौरव नीट की तैयारी कर रहे थे, बड़ी बहन से प्रेरणा लेते हुए गौरव ने नीट एग्जाम को लेकर अपनी तैयारी काफी पहले से शुरू कर दी थी। अब री एग्जाम पर भी उन्होंने अपने अनुभव शेयर किए हैं, सुनिए।
12: देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट आ गया है, रैंक 9। गौरव हमारे साथ है, गौरव से बातचीत कर लेते हैं। गौरव, कैसा लग रहा है आज?
13: बहुत अच्छा लग रहा है सर, इतना अच्छा रिजल्ट आया है तो काफ़ी खुशी हो रही है और हार्ड वर्क पे भी खुद के बहुत अच्छा लग रहा है।
12: कब से आप तैयारी कर रहे थे नीट की?
13: सर, 2 साल से तैयारी कर रहा था मैं नीट की, 11th और 12th में मैंने नीट की तैयारी करी है एलन से।
12: कैसा रहा आपका अनुभव यहाँ पर? आपने इतने समय तक पढ़ाई की कोटा में, और कब सोचा था कि नीट की तैयारी करनी है?
13: अनुभव बहुत अच्छा रहा कोटा में तैयारी करने का, सेटबैक्स भी बहुत आए ना, अप डाउन्स भी बहुत आए। मैंने 8th या 9th में ही सोच लिया था कि मेरे को नीट की तैयारी करनी है अपनी बड़ी बहन को देखकर, और कोटा का माहौल तो बहुत अच्छा है नीट की तैयारी के लिए, बहुत बेस्ट है।
12: री एग्ज़ाम का अनुभव कैसा रहा आपका?
13: जब एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था तो डिसअपॉइंटमेंट हुई थी, लेकिन फिर से अपने आप को पढ़ाई में वापस से जोड़ दिया है ना, फिर डिसिप्लिन होकर पढ़ाई करते रहे तो फिर वापस से कंसिस्टेंसी आ गई और नीट एग्जाम रीनीट भी नीट की तरह ही दे दिया।
12: तो आपने पहले से कम नंबर आए आपके या बढ़ के आए रीनीट में?
13: नहीं, उतने ही आए हैं मेरे, पहले भी 705 ही आ रहे थे और अभी भी 705 ही आ रहे हैं। कोटा में पढ़ाई का सिस्टम तो बहुत अच्छा है, बहुत रिफाइंड है, हर तरीके से डाउट सारे सॉल्व होते हैं, बहुत अच्छे फैकल्टीज हैं, कोई भी टॉपिक लूज नहीं छोड़ते हैं। बहुत कोटा में तो पढ़ाई का सिस्टम, माहौल, कंपटीशन बहुत अच्छा है, और बस यही है कि डिसिप्लिन होकर पढ़ाई करते रहो। ज़्यादा पढ़ाई नहीं भी कर पा रहे हो तो हर दिन वैसे एक फिक्स डार्स तक पढ़ाई करनी रहनी चाहिए, और लगातार पढ़ाई करते रहोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा।
1: देखिए, जाहिर सी बात है कि जब मेहनत और सब्र का फल मिलता है तो उसकी मिठास ही कुछ अलग होती है। ये मिठास ना सिर्फ सफल हुए छात्र को सुकून दे रही है बल्कि उनके माता पिता को भी नाज करने का, उन पर गर्व करने का मौका दे रही है। आपको अब लेकर चलते हैं मुंबई, क्योंकि यहाँ भी नीट एग्जाम क्लियर करने वाले कुछ होनहार छात्रों और उनके माता पिता से बात की हमारे सहयोगी मुस्तफा शेख ने। इन छात्रों से ही जानिए कैसे इन्होंने नीट एग्जाम को पास करने के लिए दिन रात एक कर दिए।
14: मुंबई में जो ऑल इंडिया रैंकिंग 34 जिनका है रोशमित गुप्ता जो है वो आप कह सकते हैं हमारे साथ है, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये आप सारे बच्चे जो देख रहे हैं इन्होंने सबने नीट यूजी क्लियर किया है और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है, उसमें टेक्निकली तो सेकंड अटेम्प्ट हो गया, आप लोगों ने 2 बार एग्जाम दिया। ये बात अभी कैसा लग रहा है?
15: अभी बहुत अच्छा लग रहा है, हम सब लाइक मैं और मेरे पेरेंट्स बहुत एक्साइटेड है कि व्हाट वेट्स फॉर अस इन द फ्यूचर, तो अभी बस जाना है टॉप कॉलेज में।
14: तो एकेडमिक्स तो एक तरफ, लेकिन इस बार जैसे 2 बार पेपर देने पड़े तो मेंटली आपको लगता है कि आप आगे लाइफ में आने वाले बड़े चैलेंजेस के लिए तैयार हो गए जो yes. इतना आपने मेंटली ये अपने आप को मजबूत किया सब कुछ?
15: डेफिनेटली, लाइक दिस वाज अ डिफिकल्ट टाइम एंड इट हैज आल्सो हेल्प्ड अस ग्रो अ लॉट, तो ओवरऑल आई विल से कि बहुत मैच्योरिटी भी आई है इस एक मंथ में हमें।
14: अनवी, कैसा लग रहा है आपका? आप बहुत नर्वस
16: लग रहे हैं। हां, अच्छा लग रहा है।
14: क्या आगे फ्यूचर प्लान आप?
16: अभी बस कॉलेज जाना है, फिर डॉक्टर बनना है।
14: चलिए बढ़िया है। आरुषि, कैसा लग रहा है? बहुत टेंस होंगे जब तक रिजल्ट नहीं आया, अभी क्या फीलिंग है आप?
17: रिजल्ट ना आने तक तो टेंशन था, पर अब आ गया है तो अब खुशी एंड एक्साइटमेंट ही है, मतलब मेडिकल कॉलेज आने की बस चलती है।
14: अरे वाह, आप इनसे बात कर, क्या नाम है सर आपका? हमदान, कैसा महसूस कर रहे हैं आप?
18: सर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, बहुत खुश है सब, घर वाले, टीचर सब। आरफ पांडे,
14: कैसा महसूस कर रहे हैं सर?
18: बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे मतलब 2 साल की मेहनत तभी उसका रिजल्ट आया है, बहुत अच्छा लग रहा है। सभी पेरेंट्स और दिन सब काफी खुश हैं, ये एक ड्रीम था वो पूरा हो गया है।
9: चलिए अब बदलते भारत की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जो अब रेलवे ट्रैक पर भी नजर आ रही है। डीजल से आगे बढ़कर अब हाइड्रोजन की ताकत पर दौड़ती ट्रेन ने देश के परिवहन सेक्टर को नई दिशा दी है।
0: बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नई शुरुआत को हरी झंडी दिखाई। हाइड्रोजन तकनीक से लैस पहली ट्रेन के साथ देश ने विकास और पर्यावरण संरक्षण को एक साथ आगे बढ़ाने का संदेश दिया है।

0: ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं, भारत की नई रफ्तार का ऐलान है। पटरियों पर दौड़ती ये रेल भविष्य की सोच से चल रही है। जब हाइड्रोजन की ताकत के साथ देश की पहली ट्रेन दौड़ी तो नजारा कुछ ऐसा था। इसी के साथ भारत अब दुनिया के उन चुनिंदा देशों की कतार में खड़ा हो गया जहां रेल ग्रीन एनर्जी से फ्यूचर की दिशा तय कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐतिहासिक सफर को हरी झंडी दिखाई। हरी झंडी मिलते ही फूलों और गुब्बारों से सजी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन पटरी पर आगे बढ़ चली। ट्रेन पर उकेरा गया मेक इन इंडिया का दहाड़ता शेर, आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी तकनीक की ताकत का संदेश देता दिखा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने हाइड्रोजन ट्रेन का मॉडल हाथ में उठाकर इसकी अहमियत समझाई।
1: आज यहां से देश को पहली हाइड्रोजन ट्रेन मिली है। आपको याद होगा साथियों, आज भी हम पढ़ते हैं सुनते हैं कि भारत में पहली ट्रेन बॉम्बे से ठाणे के बीच चली थी, जिसे आज मुंबई कहते हैं। वैसे ही भविष्य में जब भी हाइड्रोजन ट्रेन का जिक्र आएगा तो जिंद का, सोनीपत का, हरियाणा का नाम भी आएगा ही आएगा।
0: फूलों से सजा जींद स्टेशन एक नई शुरुआत का गवाह बना। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए लोगों में खासा उत्साह भी नजर आया। जैसे ही पीएम मोदी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, सैकड़ों हाथों में मोबाइल उठ गए और लोग इन पलों को अपने कैमरों में कैद करने लगे। हाथों में तिरंगा थामे बच्चों का उत्साह देखते ही बन रहा था। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा के जींद सोनीपत रूट पर चल रही है, जिसमें 14 स्टेशन हैं।
2: हमारी जींद का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मोदी जी ने हमारे जींद को चूज किया और फर्स्ट ट्रेन यहां से चल रही है। यहां का रेलवे स्टेशन हमने पहले पुराने भी देखे हुए हैं, उसके आज सब कुछ चेंज हो गया।
3: आज हम जो इस ट्रेन में बैठे और देख रहे बगैर एसी के, बिल्कुल क्रॉस वेंटिलेशन है इसके अंदर, और ये हिंदुस्तान की पहली ट्रेन जो है जींद से या सोनीपत के बीच में 89 किलोमीटर का सफर तय करेगी। और जींद के लिए नहीं, पूरे हरियाणा के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए ये पूरे गर्व की बात हो।
0: ये सिर्फ एक नई ट्रेन की शुरुआत नहीं है, बल्कि भारत के ग्रीन ट्रांसपोर्ट मिशन का बड़ा माइलस्टोन भी है। हाइड्रोजन ट्रेन्स डीजल ट्रेन्स के मुकाबले कहीं ज्यादा पर्यावरण के अनुकूल हैं। इनसे कार्बन उत्सर्जन कम होता है, प्रदूषण घटता है, साथ ही स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा भी मिलता है। आने वाले समय में ऐसी ट्रेनों का नेटवर्क बढ़ने से रेल न सिर्फ और आधुनिक बनेगी, बल्कि देश के क्लीन एनर्जी विजन को नई रफ्तार भी मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
4: तो चलिए फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे रथ यात्रा की रौनक और बताएंगे महाप्रभु जगन्नाथ के लिए अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर में अब क्या क्या होगा खास।
5: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती।
6: Listening to your favorite station just got even easier with Google Assistant and TuneIn. Your go-to station is just a voice away. Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected.
7: This is 80s hits exclusively on TuneIn.
6: You're listening to Fox News Radio. Classic rock hits. You're listening to MSNBC. No scrolling, no typing. Just the shows, music, and news you love anytime you want. Try it now and thank us later.

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं चाय पर चर्चा। आगे बढ़े उससे पहले देखते हैं हेडलाइंस।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
3: पुरी में श्री जगन्नाथ रथ यात्रा का आज दूसरा दिन, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मौसी के घर गुंडीचा मंदिर पहुंचे भगवान जगन्नाथ। बद्रीनाथ धाम में अब तक 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, जुलाई के मध्य तक दर्शन का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा। महाराष्ट्र के पंढरपुर में एक भक्त ने भगवान विट्ठल के चरणों में अर्पित की सोने की पादुकाएं, करीब 57 लाख रुपए बताई जा रही है इसकी कीमत। प्रयागराज के मन कामेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए नया ड्रेस कोड लागू, सावन में महिलाएं साड़ी सूट और पुरुष धोती कुर्ता पहनकर करेंगे रुद्राभिषेक, जीन्स टी शर्ट में गर्भगृह में नो एंट्री। देश को मिले पहली हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा की जींद में दिखाई हरी झंडी, सोनीपत के लिए किया ट्रेन को रवाना। अंतरिक्ष में एक और ऐतिहासिक छलांग लगाने की तैयारी, देश का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 कल सुबह 11:30 बजे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भरेगा उड़ान। पुरी में भगवान जगन्नाथ की वार्षिक रथ यात्रा का उत्सव धूमधाम से चल रहा है और लाखों श्रद्धालु इसमें भाग ले रहे हैं।
1: और देखिए परंपरा के अनुसार भगवान का रथ आज मौसी के घर गुंडीचा मंदिर पहुंचा है, जहां वो 7 दिन तक विश्राम करेंगे और फिर श्री मंदिर लौटेंगे।
4: हर ओर जय जगन्नाथ की गूंज है, लोगों का उत्साह देखते ही बनता है। ये तस्वीरें पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा के दूसरे दिन की हैं, जिसमें शामिल होने के लिए इस वक्त श्रद्धालुओं का समंदर सा उमड़ा हुआ है। गुंडीचा मंदिर जाने के लिए भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की रथ यात्रा श्री जगन्नाथ मंदिर से कल शुरू हुई थी। रात्रि विश्राम के बाद ये यात्रा आज सुबह फिर से आगे बढ़ने लगी, भरपूर जोश और उत्साह संग भक्त रथ को खींचते हुए गुंडीचा मंदिर की ओर ले चले। इससे पहले आज सुबह 7:20 से 8 बजे तक भगवान की मंगला आरती हुई। इसके बाद 8:05 पर दैनिक शुद्ध और वस्त्र बदलने की रस्म मैलम नीति संपन्न की गई और फिर 8:55 पर ताड़पा लागी की रस्म निभाई गई। भगवान जगन्नाथ का श्रृंगार हुआ, उन्हें ताड़पा और उत्तरीय पहनाए गए। वहीं 9:25 पर अबकास नीत यानी सुबह की मुख्य पूजा से जुड़े अनुष्ठान संपन्न किए गए। श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की 3 किलोमीटर की रथ यात्रा लगभग 2 दिन में पूरी होती है। गुंडीचा मंदिर को भगवान जगन्नाथ की मौसी का घर माना गया है। मान्यता है कि यहीं पर महाप्रभु का प्राकट्य भी हुआ था। कहते हैं कि रानी गुंडीचा के वात्सल्य भाव और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें वरदान दिया था कि वो हर साल आषाढ़ माह में अपने भाई और बहन के साथ उनसे मिलने जरूर आएंगे और 7 दिनों के लिए पुत्र की तरह उनके साथ रहेंगे। अपना यही वचन निभाने महाप्रभु हर साल गुंडीचा मंदिर आते हैं। इस दौरान भगवान यहाँ विश्राम करते हैं और श्रद्धालुओं को दर्शन भी देते हैं। इन 7 दिनों के दौरान गुंडीचा मंदिर में भी कई विशेष अनुष्ठान संपन्न किए जाते हैं। गुंडीचा मंदिर में भगवान के इस प्रवास को अड़ापा मंडप भी कहा गया है और यहाँ उनके दर्शन को अड़ापा मंडप दर्शन कहते हैं। गुंडिचा मंदिर में 7 दिनों तक भगवान अपने भक्तों को बहुत करीब से दर्शन देते हैं। इस मंदिर में भगवान के निवास के 5वें दिन हेरा पंचमी का उत्सव मनाया जाता है। मान्यता है कि 5वें दिन माँ लक्ष्मी भगवान को खोजने गुंडिचा मंदिर आती हैं और गुस्से में उनके रथ का एक हिस्सा तोड़कर वापस लौट जाती हैं। इन 7 दिनों में भगवान को मीठा चावल, दाल, पीठा और कई पारंपरिक व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। गुंडिचा मंदिर में 7 दिन रहने के बाद भगवान 8वें दिन मुख्य मंदिर के लिए वापसी शुरू करते हैं। इसे बहुड़ा यात्रा कहते हैं। भगवान जगन्नाथ की ये वार्षिक रथ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, इसका बहुत गहरा आध्यात्मिक महत्व भी है। ये महापर्व भक्त और भगवान के अद्भुत मिलन का साक्षी है। यही कारण है कि हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस पावन परंपरा के साक्षी बनने पूरी जगन्नाथ धाम पहुंचते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
5: वैसे केवल पुरी नहीं बल्कि दिल्ली के द्वारका में भी जगन्नाथ रथ यात्रा बड़े उत्साह और श्रद्धा भाव के साथ निकाली गई। यहाँ भगवान जगन्नाथ के रथ को बेहद खूबसूरती से सजाया गया था।
3: देखिए, वहीं इस बार यहाँ निकाली गई रथ यात्रा में खास भोग भी भगवान को खास तौर पर अर्पित किया गया। दरअसल रथ से लटके 108 तरह के आमों को यहाँ पर भोग स्वरूप अर्पित करने के बाद भक्तों के बीच बांटा गया।
4: पूरी रथ यात्रा की तर्ज पर दिल्ली के द्वारका में भी गुरुवार शाम भव्य रथ यात्रा निकाली गई। भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ जब भगवान जगन्नाथ नगर भ्रमण पर निकले तो श्रद्धालु कृष्ण भक्ति में डूबे नजर आए। जय जगन्नाथ के जयकारों से पूरी फिजा गूंज उठी। जगन्नाथ रथ यात्रा द्वारका सेक्टर 13 स्थित इस्कॉन टेंपल से शुरू होकर अलग अलग सेक्टर्स चौक चौराहों से होते हुए वापस इस्कॉन मंदिर पर आकर ही संपन्न हुई। जैसे जैसे रथ यात्रा आगे बढ़ती गई, श्रद्धालुओं का कारवां भी बढ़ता चला गया।
6: भगवान जगन्नाथ की जो प्रतिमा है वो सामने है और जो यहाँ पर दर्शकों की भीड़ है, श्रद्धालुओं की भीड़ है, वो सैकड़ों नहीं हजारों नहीं जबकि लाखों में यहाँ पर है। और इस वक्त जो द्वारका का जो सेक्टर 13 है जहाँ पर ये इस्कॉन टेंपल है वहाँ पर श्रद्धालुओं की लगातार भीड़ बढ़ रही है और जो ये रथ यात्रा है ये कई सेक्टर से होती हुई दोबारा इसी इस्कॉन टेंपल पर पहुँचेगी।
4: धार्मिक आयोजन में सैकड़ों श्रद्धालु पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ शामिल हुए। यहाँ क्या पुरुष और क्या महिलाएं, सभी कृष्ण भक्त रथ की रस्सी खींचकर सौभाग्य प्राप्त करते दिखे। कृष्ण भक्तों की खुशी देखते ही बन रही थी। 5 किलोमीटर की इस यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ के जय घोष, भजन कीर्तन, करताल, मंजीरों और नृत्य से पूरा क्षेत्र ही भक्तिमय माहौल में डूबा रहा।
7: बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है।
6: इससे पहले भी आए कभी रथ यात्रा?
7: नहीं, फर्स्ट बार आई हूँ, बट बहुत अच्छा लग रहा है, धन्य हो गई आके।
6: ये एक ऐसा फेस्टिवल है जो भक्तों को डायरेक्ट जगन्नाथ जी के बाहर आके कृपा बरसाते। बोलिए जय जगन्नाथ।
8: बहुत खुश हैं,
9: बता नहीं सकते, वर्ड्स में नहीं बता सकते। भगवान का आशीर्वाद मिलता रहे, बहुत खुशी आज जगन्नाथ यात्रा की, हमको दर्शन हुए बाबा के।
10: मैं तो हर साल आती हूँ यहाँ पर, तो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे।
4: भगवान जगन्नाथ के रथ को बेहद ही खूबसूरती के साथ सजाया गया था। रथ से लटके 108 तरह के आम रथ की शोभा बढ़ा रहे थे। भगवान जगन्नाथ को इस बार 11,000 किलो आम का भोग अर्पित किया गया था, जिसे बाद में भक्तों के बीच प्रसाद के रूप में बांटा गया।
11: अषाढ़ी द्वितीया जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है, सेम टाइम पर इस्कॉन द्वारका रथ यात्रा निकाल रहा है। हजारों लाखों श्रद्धालु उमड़ उमड़ के आ रहे हैं। इस्कॉन द्वारका ने इस बार पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिया है, दिल्ली एनसीआर में इतनी बड़ी रथ यात्रा नहीं हुई है। सभी भक्तों के लिए प्रसाद है, 11,000 किलो आम का भोग भगवान को लगाया गया है और रथ से वितरण किया जा रहा है। यहाँ पर रंगोलियां बनाई गई हैं, जगह जगह पर 200 से अधिक स्टॉल पर भक्तों को प्रसाद वितरण किया जा रहा है, जल की सेवा की जा रही है, एम्बुलेंस है, हर व्यवस्था यहाँ पर रखी गई है ताकि सब श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ का यथारूप पूरी का आनंद द्वारका दिल्ली में ले सके।
4: रथ यात्रा शुरू होने से पहले भगवान जब मंदिर में विराजमान थे तभी 11,000 आमों से उनका विशेष श्रृंगार किया गया था और जब भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकली तो ये आम रथ यात्रा महोत्सव की शोभा बढ़ाते नजर आए। दिल्ली से ओपी शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और आगे बात होगी क्या है रणबीर कपूर की रामायण के दो ट्रेलर साथ ही रिलीज करने के पीछे की कहानी।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy non-stop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
0: Good news today is really अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
12: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
13: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
12: अविश्वास में विश्वास बसता है
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: क्या आपके बच्चे की शिक्षा में बाधा आ रही है? क्या करियर में बार बार रुकावटें पैदा हो रही हैं? कौन सा करें माता पिता उपाय कि बच्चे का जीवन सुधर जाए? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: इस साल की मच अवेटेड माइथोलॉजिकल फिल्म रामायण, जिसका ट्रेलर 24 जुलाई को अमेरिका के सैंडियागो में ग्लोबल लेवल पर लॉन्च किया जाएगा।
2: उससे पहले CBFC ने रामायण के दो ट्रेलर पास किए हैं। ट्रेलर की लंबाई 4 मिनट से ज्यादा है और बॉलीवुड का दूसरा सबसे लंबा ट्रेलर है। आखिर क्या है रामायण के मेकर्स की प्लानिंग, देखिए।

0: भारतीय सिनेमा के सबसे ग्रैंड प्रोजेक्ट्स में से एक रामायण, जिसने रिलीज से अरसे पहले ही सुर्खियां बटोरना शुरू कर दिया है। देश से लेकर विदेश तक, आम जन से लेकर खास तक, समाज के हर तबके, हर वर्ग तक रामायण पहुंच सके, इसके लिए मेकर्स एक खास प्लानिंग के तहत काम कर रहे हैं। मेकर्स की प्लानिंग का एक अहम हिस्सा है कि इसके ट्रेलर की लॉन्चिंग 24 जुलाई को अमेरिका के सैन डिएगो कॉमिक कॉन 2026 के बड़े मंच पर ट्रेलर पेश किया जाएगा, जिसे सेंसर बोर्ड ने बिना किसी काट छाट के पास कर दिया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी CBFC ने रामायण के दो ट्रेलर पास किए हैं। दोनों ही ट्रेलर को यू रेटिंग के साथ पास किया गया है। एक का नाम ट्रेलर रामायण 3D है तो दूसरे का नाम थिएट्रिकल ट्रेलर रामायण 3D है। दोनों का रन टाइम अलग अलग है। एक ट्रेलर 4 मिनट 15 सेकंड का है जबकि दूसरा 4 मिनट का है। दोनों ही ट्रेलर 3D वर्जन में है। सवाल है कि रामायण के दो ट्रेलर रिलीज करने के पीछे मेकर्स की मंशा क्या है। इसका सीधा जवाब है कि एक ट्रेलर थिएटर्स में प्ले किया जाएगा और दूसरा डिजिटल रिलीज होगा। मतलब ये कि 4 मिनट वाला थिएट्रिकल ट्रेलर रामायण 3D थिएटर में दिखाया जाएगा और 4 मिनट 15 सेकंड वाला ट्रेलर रामायण 3D डिजिटल रिलीज होगा। गौर करने वाली बात ये भी है कि रामायण का ये ट्रेलर बॉलीवुड के सबसे लंबे फिल्म ट्रेलर्स में से एक होगा। हिंदी फिल्मों में सबसे लंबे ट्रेलर का रिकॉर्ड अजय देवगन स्टारर सिंघम अगेन के नाम पर है। सिंघम अगेन के ट्रेलर की लंबाई 4 मिनट 58 सेकंड की थी। अब 4 मिनट 15 सेकंड की लंबाई के साथ रामायण पार्ट 1 दूसरे नंबर पर है। अक्षय कुमार की सूर्यवंशी भी इतनी ही लंबी थी। सूर्यवंशी ऐसी पहली बॉलीवुड मूवी थी जिसका ट्रेलर 4 मिनट से अधिक का था। चौथे नंबर पर वेलकम टू द जंगल है जिसका ट्रेलर 4 मिनट 10 सेकंड लंबा था। पांचवें स्थान पर रणवीर सिंह की धुरंधर है जिसके ट्रेलर की लंबाई 4 मिनट 8 सेकंड थी। इंतजार अब रामायण के ट्रेलर का है, जिसे भारतीय समय के हिसाब से 24 जुलाई को अमेरिका के सैन डिएगो में होने वाले कॉमिक कॉन इवेंट में लॉन्च किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस इवेंट में रामायण के दो अहम किरदार निभाने वाले रणबीर कपूर और यश के साथ डायरेक्टर नितेश तिवारी और प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा भी मौजूद होंगे। ये पूरा इवेंट बॉलरूम 20 में होगा, जो सैन डिएगो कन्वेंशन सेंटर का दूसरा सबसे बड़ा वेन्यू है और इसमें 4,800 लोगों के बैठने की क्षमता है। रामायण को ग्रैंड स्केल पर बनाया जा रहा है तो दोनों पार्ट को मिलाकर बजट 4,000 करोड़ से भी ज्यादा का बताया जा रहा है। जाहिर है ऐसे में मेकर्स रामायण के प्रमोशन को लेकर कोई कमी नहीं रखना चाहते। रिपोर्ट्स के मुताबिक सैन डिएगो के बाद मेकर्स की योजना रामायण की स्पेशल प्रीव्यू को सितंबर में होने वाले टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाने की है। इतना ही नहीं, आमिर खान की लगान को चीन में मिली बम्पर कामयाबी को देखते हुए मेकर्स की प्लानिंग रामायण को भी वहां रिलीज और प्रमोट करने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो चलिए इसी के साथ

0: This is Radio Reimagined. With TuneIn, you get music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. Hear from stations like today's hits. Talk sport.
1: Oh, I think we still can win the World Cup with this squad.
0: The Daily and more. Available on over 200 devices, so you can enjoy TuneIn Radio anytime, anywhere. Just sit back and start listening now.
2: से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: तो ब्रिटेन के विप्सनेट जू में एक या दो नहीं बल्कि 7 नन्हे चीता शावकों का जन्म हुआ है। इसकी मासूम अटखेलिया और माँ के साथ इनका प्यार हर किसी का दिल जीत रहा है।
2: बिल्कुल, देखिए वैसे तो वाइल्ड लाइफ की दुनिया के लिए इन शावकों का जन्म बहुत बड़ी उम्मीद थी। ये शावक नॉर्दर्न चीता प्रजाति के हैं जो बेहद दुर्लभ माने जाते हैं। पूरी दुनिया में अब सिर्फ 6500 चीते ही बचे हैं।

माँ के कदमों से कदम मिलाते, कभी उछलते कभी दौड़ते, तो कभी माँ से लिपट कर दुलार करते इन नन्हे मेहमानों ने पहली बार दुनिया के सामने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। नजारा ब्रिटेन के विप्सनेट जू का है, जहां 18 मई को अमीरा नाम की मादा चीता ने 4 शावकों को जन्म दिया, तो वहीं 23 मई को जारा ने 3 शावकों को जन्म दिया। अब ये सातों शावक अपनी मां के साथ खुले बाड़े में मस्ती करते दिखाई दे रहे हैं। कभी मां की पीठ पर चढ़ने की कोशिश, कभी भाई बहनों के साथ दौड़ लगाने की होड़, इन मासूम तस्वीरों के पीछे एक बड़ी उम्मीद भी छिपी है। दरअसल ये शावक नॉर्दर्न चीता प्रजाति के हैं, जो बेहद दुर्लभ माने जाते हैं। पूरी दुनिया में इनकी संख्या करीब 6,500 रह गई है। ऐसे में इन शावकों का जन्म संरक्षण की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

0: तीन दशक बाद वहां चीतों को फिर से जंगल में बसाने की तैयारी चल रही है ताकि जंगलों में इनकी रफ्तार और दहाड़ एक बार फिर लौट सके। फिलहाल अपनी माँ के साथ ये नन्हे शावक अपनी आजादी और बचपन का पूरा लुत्फ उठा रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ क्यूट तस्वीरें नहीं है, ये वन्य जीव संरक्षण की एक बड़ी खुशखबरी भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: चलिए वीकेंड की शुरुआत हो रही है तो चाय पर चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही। एंजॉय योर वीकेंड, मंडे आपसे मुलाकात होगी।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like

0: Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
1: Yes, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
3: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
1: अविश्वास में विश्वास बसता है
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
0: गुड न्यूज टुडे.
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर. असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
3: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
1: अविश्वास में विश्वास बसता है
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
0: गुड न्यूज टुडे.
6: क्या आपके बच्चे की शिक्षा में बाधा आ रही है? क्या करियर में बार बार रुकावटें पैदा हो रही हैं? कौन सा करें माता पिता उपाय कि बच्चे का जीवन सुधर जाए? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच. TIT भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स. सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन.
8: पुरी में रथ यात्रा के दिन दूसरे भाई बलभद्र बहन सुभद्रा के साथ मौसी के घर पहुंचे. जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ गुंडीचा मंदिर में 7 दिन तक विश्राम करेंगे महाप्रभु. महाराष्ट्र के पंढरपुर में एक भक्त ने भगवान विट्ठल के चरणों में अर्पित की सोने की चरण पादुकाएं. करीब 57 लाख रुपए बताई जा रही इसकी कीमत. देश को मिली पहली हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात. प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा के जींद में हरी झंडी दिखाकर सोनीपत के लिए किया रवाना. रेल यात्रियों के लिए गुड न्यूज. देश भर के 75 रेलवे स्टेशनों की बदली सूरत. अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किया गया पुनर्विकास. अंतरिक्ष में एक और ऐतिहासिक छलांग लगाने की तैयारी. देश का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 कल सुबह 11:30 बजे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भरेगा उड़ान.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा गुप्ता। साहिल देव, आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अगला स्टेशन क्लीन एंड ग्रीन फ्यूचर है और इस फ्यूचर की तरह एक और कदम आज भारत ने आगे बढ़ा दिया है। आज से भारत में क्लीन एनर्जी से चलने वाली पहली ट्रेन पटरी पर दौड़ने लगी है। बीते सालों में भारतीय रेलवे ने सिर्फ कनेक्टिविटी को ही नहीं बढ़ाया बल्कि रफ्तार, सुविधाओं और तकनीक के मामले में अपनी ट्रेन्स को भी नया स्वरूप दिया है। इसी कड़ी में देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड ट्रेन नमो ग्रीन एक्सप्रेस को पटरी पर उतारा गया। जैसे अब तक डीजल और बिजली से चलने वाले इंजन आप देखते रहे हैं, अब ये ट्रेन हाइड्रोजन की ताकत के साथ ट्रैक पर दौड़ेगी। खास बात देखने वाली ये है कि ये ट्रेन मेड इन इंडिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। अभी हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच में ये ट्रेन चलाई जा रही है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसी है भारत की पहली ग्रीन एक्सप्रेस।

था 1853 और तारीख थी 16 अप्रैल। बॉम्बे से 14 कोच और 400 पैसेंजर्स के साथ भारत की पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे के लिए रवाना हुई थी। साहिब, सिंध और सुल्तान नाम के 3 स्टीम इंजन्स ने उस ट्रेन को खींचा था। उस ट्रेन ने लगभग 57 मिनट में 34 किलोमीटर की दूरी में एक युग का सफर तय किया था। और देखिए, आज वक्त का पहिया उस रेल के सफर को कहां तक ले आया है। बीते 175 सालों में भारत की रेलगाड़ी और रेलवे स्टेशन दोनों का रंग रूप हमारी सोच की सरहदों से काफी आगे निकल गया है। 20वीं शताब्दी का सूरज उगने के साथ हमारी रेल की कहानी में कई अलग अलग माइलस्टोन्स आए हैं, लेकिन आज का दिन अपने आप में बेहद खास है। आज का दिन ऐतिहासिक है क्योंकि आज देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन पटरी पर दौड़ पड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जींद रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई और इसी के साथ भारतीय रेलवे के इतिहास में एक और नया अध्याय जुड़ गया। भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन यात्रियों की सेवा के लिए रवाना हो गई। ये भारतीय रेलवे की पहली हाइड्रोजन आधारित ग्रीन ट्रेन है। ये ट्रेन डीजल या कोयले से नहीं चलती और इसे लगातार ओवरहेड बिजली लाइन से भी ऊर्जा लेने की जरूरत नहीं। ट्रेन में लगे हाइड्रोजन फ्यूल सेल हाइड्रोजन और हवा में मौजूद ऑक्सीजन की रासायनिक प्रतिक्रिया से बिजली बनाते हैं, जिसकी ताकत से ये ट्रेन पटरी पर दौड़ती है।

0: नमो ग्रीन ट्रेन 10 डिब्बों वाली ट्रेन है। इसमें 8 यात्री डिब्बे और 2 इंजन वाली पावर कार। इस लिहाज से ये दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन है। आधुनिक सुविधाओं की बात करें तो इसमें ऑटोमेटिक दरवाजे, डीसी एयर कंडीशनिंग और आरामदायक सीटें हैं। इसकी अधिकतम स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन सामान्य तौर पर ये 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। खास बात यह है कि इस ट्रेन में 3200 हॉर्स पावर वाला महाशक्तिशाली इंजन लगा है, जिसके चलते इसे दुनिया की सबसे ताकतवर ग्रीन ट्रेन भी कहा जा रहा है।
1: साथियों, जिंद से सोनीपत को चलने वाली हाइड्रोजन ट्रेन दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन है। ये हाइड्रोजन ट्रेन 3200 हॉर्स पावर की है, 3200 हॉर्स पावर। और सबसे ताकतवर ही नहीं, भारत की हाइड्रोजन ट्रेन सबसे लंबी भी है। दुनिया में जहां हाइड्रोजन ट्रेन चल रही है वो 3 या 4 कोच वाली है, और भारत ने पहली बार में सीधे 10 कोच वाली हाइड्रोजन ट्रेन चलाकर दुनिया में अपना झंडा गाड़ दिया है।
0: भारत की इस पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरियाणा की जींद और सोनीपत के बीच चलाया जा रहा है। ये ट्रेन रोज सुबह 7:40 पर जींद जंक्शन से रवाना होगी और सुबह 9:40 पर सोनीपत पहुंचेगी। 89 किलोमीटर का सफर करीब 2 घंटे में पूरा होगा। सोनीपत से ये ट्रेन सुबह 10:40 पर वापस जींद के लिए रवाना होगी।
2: सबसे पहली ट्रायल ट्रेन है बेसिकली, जिसके ट्रायल भी हुए हैं और सक्सेसफुली भी है। अगर ट्रायल तो कई कंट्रियां कर रही है, लेकिन सक्सेसफुली 2-4 टोटल आज ये 5वीं वर्ल्ड की 5वीं कंट्री है जो सक्सेसफुली मूव करेगी।
0: इस ट्रेन को ग्रीन ट्रेन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसके चलने से धुआं या कार्बन उत्सर्जन नहीं होगा। इससे मुख्य रूप से भाप और गर्मी निकलती है। हाइड्रोजन इसका ईंधन है और हवा से मिलने वाली ऑक्सीजन पावर जनरेट करने की प्रक्रिया का हिस्सा है। चलिए आपको बताते हैं कि हाइड्रोजन ट्रेन किस तकनीक से चलती है। यूँ समझिए कि ट्रेन के भीतर ही उसे चलाने वाला पावर प्लांट लगा है। इस पावर प्लांट को चलाने में 4 मुख्य पार्ट्स अलग अलग भूमिका निभाते हैं। पहला है हाइड्रोजन टैंक, जिसमें हाइड्रोजन गैस भरी जाती है। इस टैंक तक हाइड्रोजन पहुंचाने के लिए जींद रेलवे स्टेशन के पास देश का पहला हाइड्रोजन स्टोरेज और रिफ्यूलिंग प्लांट बनाया गया है। दूसरा पार्ट है फ्यूल सेल डिवाइस, जहां केमिकल रिएक्शन और इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया होती है। तीसरा पार्ट है बैटरी, जहां पैदा की गई बिजली स्टोर होती है। और चौथी है इलेक्ट्रिक मोटर, जिसकी ताकत से ट्रेन पटरी पर दौड़ती है। अब आते हैं ट्रेन को चलाने की प्रक्रिया पर। इसके लिए सबसे पहले ट्रेन के हाइड्रोजन स्टोरेज टैंक में हाई प्रेशर से ग्रीन हाइड्रोजन भरी जाती है। इसके बाद ये हाइड्रोजन गैस हाई प्रेशर से फ्यूल सेल में भेजी जाती है, जबकि दूसरी ओर से ऑक्सीजन इसमें प्रवेश करती है। फ्यूल सेल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच होने वाले केमिकल रिएक्शन से पानी, भाप और बिजली पैदा होती है। इस प्रक्रिया में पैदा हुई बिजली बैटरी में स्टोर हो जाती है, भाप वातावरण में निकल जाती है और पानी नीचे की ओर से निकल जाता है। फिर बैटरी से चार्ज लेकर इलेक्ट्रिक मोटर ट्रेन को रफ्तार दे देती है।
3: हाइड्रोजन जो है वो सीधा बिजली पैदा करता है। एक जो उसको एक टेक्नोलॉजी का है जिसको कहते हैं फ्यूल सेल, कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, 100 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है। तो फ्यूल सेल जो होता है एक तरह का मेम्ब्रेन होता है, उसमें एक तरफ से हाइड्रोजन डालते हैं और दूसरी तरफ से हवा डालते हैं, मतलब ऑक्सीजन बेसिकली। जो दोनों मिलते हैं तो पानी बनता है, उसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन आप जानते हैं पानी बनता है, और साथ में कुछ बिजली पैदा होती है। और ऐसे बहुत सारे मेम्ब्रेन या फ्यूल सेल को आप एक के ऊपर एक रखते जाएं तो वोल्टेज ऐड होता रहता है, 1.5 वोल्ट, 3 वोल्ट, 6 वोल्ट, 20 वोल्ट, 50 वोल्ट, तो ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज। अगर उनको पैरेलल में लगाए तो करंट बढ़ता है, 1 एम्पियर, 4 एम्पियर, 8 एम्पियर ऐसे बढ़ता है। तो जो फ्यूल सेल स्टैक डिजाइन किया जाता है तो देखना पड़ता है कि कितनी पावर चाहिए, कितनी एनर्जी चाहिए गाड़ी चलाने के लिए, पावर बेसिकली। तो उससे सीधा बिजली पैदा होती है, डीसी बिजली, डीसी इलेक्ट्रिसिटी। और उसको फिर आप इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल करके उसको उसमें हेर फेर करके फिर आप ट्रैक्शन मोटर में बिजली भेजते हैं तो इससे गाड़ी चलती है।
0: इस ट्रेन का सबसे बड़ा फायदा है कि इसे चलाने की पूरी प्रक्रिया में कोई धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड या किसी भी और रूप में कार्बन का उत्सर्जन नहीं होता, यानी इस ट्रेन के चलने से हवा प्रदूषित नहीं होगी। डीजल ट्रेनों की तुलना में ये जीरो एमिशन यानी शून्य उत्सर्जन वाली है। इससे ग्लोबल वार्मिंग कम करने में मदद मिलेगी, यानी ये ट्रेन पूरी तरह पर्यावरण के अनुकूल है। इस ट्रेन को चेन्नई के ICF यानी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में बनाया गया है, जबकि टाटा एडवांस सिस्टम्स ने इसका फ्यूल सेल सिस्टम तैयार किया है, यानी ये ट्रेन मेक इन इंडिया मिशन का एक और कमाल है।
1: भारत की यह हाइड्रोजन ट्रेन धुआं रहित तो है ही, ये मेक इन इंडिया का भी एक बहुत सफल उदाहरण है। इस हाइड्रोजन ट्रेन को भारत के ही इंजीनियर्स ने डिजाइन किया है, भारत की ही कंपनी ने इसको बनाया है। साथियों, यह हाइड्रोजन ट्रेन बाकी ट्रेनों से बिल्कुल अलग है।
0: चूंकि हाइड्रोजन बहुत ज्वलनशील होती है, इसलिए नमो ग्रीन ट्रेन में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसमें फायर अलार्म, आग बुझाने के लिए आपातकालीन व्यवस्था और हाइड्रोजन गैस लीकेज डिटेक्शन सिस्टम लगाए गए हैं। अगर हाइड्रोजन रिसाव होता है तो सिस्टम तुरंत अलर्ट जारी करता है और सुरक्षा उपाय सक्रिय हो जाते हैं। इस शानदार हाइड्रोजन ट्रेन के संचालन के साथ भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जो हाइड्रोजन की रफ्तार से ग्रीन ट्रेन्स को पटरी पर दौड़ा रहे हैं। हाइड्रोजन ट्रेन भारत की तकनीकी क्षमता, आत्मनिर्भरता और स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में बढ़ते कदमों का प्रतीक है। तभी तो इसे इंडियन रेल का ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जा रहा है। जींद से पीयूष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: आज जब पहली नमो ग्रीन ट्रेन जींद से रवाना हुई तो इसमें पहली बार सफर करने वालों की खुशी का ठिकाना नहीं था। रेल में तो जाने कितनी बार बैठे, लेकिन ये मौका बहुत खास था, यादगार था।
5: मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी जींद का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मोदी जी ने हमारे जींद को चूज किया और फर्स्ट ट्रेन यहाँ से चल रही है। यहाँ का रेलवे स्टेशन हमने पहले पुराने भी देखे हुए हैं, उसके आज सब कुछ चेंज हो गया।
6: आज हम जो इस ट्रेन में बैठे और देख रहे बगैर एसी के, बिल्कुल क्रॉस वेंटिलेशन है इसके अंदर, और ये हिंदुस्तान की पहली ट्रेन जो है जींद से या सोनीपत के बीच में 89 किलोमीटर का सफर तय करेगी, और जींद के लिए नहीं, पूरे हरियाणा के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए ये पूरे गर्व की बात है। और इसका जो है क्रेडिट जो है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है।
7: और पहले का स्टेशन और आज के स्टेशन में कितना अंतर है। ये प्लेटफार्म हमारे जो लो लेवल के हुआ करते थे, चढ़ने में भी बड़ी दिक्कत हुआ करती थी, अब ये हमारे हाई लेवल रेल मतलब डिब्बे के बराबर के वो बन गए हैं प्लेटफार्म, तो हमें बहुत सहूलियत दी है। ये स्टेशन की हालात देख रहे हैं, कितने शेड लग गए, कितना FOB बना है, बहुत चौड़ा 12 मीटर का FOB बना है, एक्सकलेटर लगा है, लिफ्ट लगी है, तो सभी को इतनी सहूलियत दे दी हमारे जींद को प्रधानमंत्री का, हम धन्यवाद करते हैं।
8: जींद वासियों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जींद पे इतनी बड़ी ट्रेन, हालांकि एशिया की सबसे लॉन्गेस्ट और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेन है, इसका हर एक पार्ट इंडिया में बनाया गया है, इसका डिजाइन लखनऊ में हुआ है और ये चेन्नई में बनाई गई है। इतनी लोकल डिस्ट्रिक्ट में इतनी बड़ी ट्रेन का एक लॉन्च हुआ है, ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। ये भारत ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि भारत किसी से कम नहीं। जो हमारे इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ये साबित किया है कि ये मिलकर भी और अकेले भी दोनों तरीके से बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, इतनी डेवलप कंट्री चाइना, जर्मनी, जापान में इतनी बड़ी ट्रेन नहीं बन पाई, हॉर्स पावर कम है, सीटिंग पावर कम है, पर हमारे भारत में इतने अच्छे इंजीनियर साइंटिस्ट हैं, लोग इतने अच्छे हैं कि हमने इतनी बढ़िया ट्रेन बनाई है।
9: आई वुड लाइक टू से दैट इट इज अ वेरी नाइस इनिशिएटिव दैट बिकॉज इट इज द ओनली ट्रेन दैट रिलीजेस वाटर वेपर्स बाय टेकिंग हाइड्रोजन गैस एंड दिस इनिशिएटिव इज टेकन टू रिड्यूस पॉल्यूशन।
4: डेटा ये बताता है कि भारतीय रेल नेटवर्क के 99% रूट का इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। ऐसे में क्या हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड ट्रेन की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? स्पीड, मेंटेनेंस और ऑपरेशन कॉस्ट के मामले में क्या ये पहले से मौजूदा ट्रेन से बेहतर है? आखिर क्यों हाइड्रोजन ट्रेन भारतीय रेल नेटवर्क के लिए जरूरी थी? इन तमाम सवालों का जवाब देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में।
10: न डीजल, न कोयला, न बाहर से कोई बिजली, इस ट्रेन को चलने के लिए सिर्फ हाइड्रोजन चाहिए। जैसे सोलर पैनल सूरज की रोशनी से बिजली बना देता है, वैसे ही ये तकनीक हाइड्रोजन को ईंधन बनाएगी और पटरी पर ट्रेन को सरपट दौड़ाएगी। और न केवल दौड़ाएगी बल्कि दूसरी तकनीक से चलने वाले इंजन की तुलना में ज्यादा दूर तक दौड़ाएगी। वंदे भारत जैसी शानदार ट्रेन को तैयार करने वाली टीम के चीफ इंजीनियर के मुताबिक डीजल और दूसरे फ्यूल की तुलना में हाइड्रोजन की उतनी ही मात्रा ज्यादा पावर सप्लाई कर सकती है।
3: हाइड्रोजन का कैलोरीफिक वैल्यू जो है, जो उसका जो हीट होता है जलने पर जो पैदा होती है, वो काफी हाई होती है, काफी ऊंचा होता है। तो मैं जैसे कंपेयर करूं डीजल से, मान लीजिए तो डीजल से जितनी बिजली पैदा होगी या जितने दूर ट्रेन जाएगी, वैसी ट्रेन हाइड्रोजन से उसकी दुगनी जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन में एनर्जी ऑफ कम्बशन ज्यादा होती है।
10: भारत की यह पहली हाइड्रोजन ट्रेन है जो यात्रियों के लिए उपलब्ध है। ये सिर्फ एक नई ट्रेन नहीं बल्कि भारतीय रेलवे की अगली पीढ़ी की तकनीक है। दुनिया के कई देश जिस टेक्नोलॉजी के लिए सालों से संघर्ष कर रहे हैं, भारत ने उसे रिकॉर्ड समय में हासिल कर लिया है। अब अगला कदम इसके ऑपरेशन को किफायती बनाना है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक फिलहाल हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड ट्रांसपोर्ट को ऑपरेट करना दूसरे माध्यमों की तुलना में महंगा है। सारी दुनिया में इसकी कीमत को कम करने पर काम किया जा रहा है, नए प्रयास हो रहे हैं।
3: देखिए, जो दुनिया भर में ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर जो काम हो रहा है, वो एक होली ग्रेल बना रखा है कि हमें $1 प्रति किलोग्राम हाइड्रोजन अगर बनना शुरू हो जाए तो ये एक वायबल एनर्जी का सोर्स है या एनर्जी स्टोरेज का सोर्स है। तो अभी तो $1 प्रति किलोग्राम तो बहुत दूर है।
10: के मन में ये सवाल भी आ रहा है कि जब भारतीय ट्रेन नेटवर्क का 99% से ज्यादा रूट का इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, तो ऐसे में तुलनात्मक रूप से ज्यादा ऑपरेशनल खर्च वाली हाइड्रोजन ट्रेन चलाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो आपको बता दें कि इसकी मुख्य रूप से दो वजह हैं। पहली है दुनिया के सामने मेक इन इंडिया और भारत की टेक्निकल एक्सपर्टीज का डेमो। दुनिया में अभी केवल 3-4 देशों के पास ही हाइड्रोजन ट्रेन संचालित करने की क्षमता है और वहाँ भी ये तकनीक अभी शुरुआती दौर में है। ऐसे में भारत की हाइड्रोजन तकनीक और क्षमता पूरे देश के लिए गर्व की बात है।
3: प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया, वो सस्ते महंगे के लिए नहीं किया, वो तो टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेशन था कि भारत भी वो कर सकता है जो जर्मनी ने और जापान ने और चाइना ने किया है। तो इसकी तो हमारे लिए गर्व की बात है कि हमने ऐसा टेक्नोलॉजी पर एक बड़ी ट्रेन बनाई। छोटे मोटे मॉडल तो बहुत लोग बना चुके हैं।
10: साथ ही ये भी माना जा रहा है कि जिन रूट्स पर बिजली की लाइन खींचना मुश्किल है, वहाँ ये ट्रेन कामयाब होगी। यही वजह है कि जींद और सोनीपत रूट की पहली ट्रेन केवल एक डेमो है। सरकार की हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज योजना के तहत देश के अलग अलग हेरिटेज और पहाड़ी रूट्स पर ऐसी 35 ट्रेन चलाने की योजना है। ये सभी वे रूट्स होंगे जहां रेलवे लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन करना या तो संभव ही नहीं है या फिर चुनौतीपूर्ण।
3: जैसे हिल रेलवे है, जैसे दार्जिलिंग रेलवे है या ऊटी की रेलवे है या पालमपुर हिमाचल की ट्रेन है, जो पहाड़ी इलाकों में है, हेरिटेज लाइन्स हैं जिनको इलेक्ट्रीफाई करने में वो यूएन हेरिटेज वालों से परमिशन लेनी पड़ेगी, वो मिलेगी भी नहीं, तो इलेक्ट्रिफिकेशन करने से जो लैंडस्केप है वो थोड़ा खराब हो जाता है देखने में। तो उन एरियाज के लिए ये ट्रेन बिल्कुल परफेक्ट है जहां पर इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ है और करना संभव भी नहीं है।
10: यही वजह है कि भारत की पहली नमो ग्रीन एक्सप्रेस का स्वागत बाहें फैलाकर किया जा रहा है। ये ट्रेन न केवल भविष्य के ट्रांसपोर्ट की झलक दिखाती है बल्कि क्लीन एनर्जी में भारत के बढ़ते कदमों की नजीर भी पेश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: दरअसल दुनिया इस समय तेजी से स्वच्छ ऊर्जा की तरफ बढ़ रही है। पेट्रोल और डीजल के विकल्प के रूप में हाइड्रोजन ईंधन की चर्चा लंबे वक्त से हो रही है। जब फ्यूल सेल में हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है तो उससे ऊर्जा बनती है और वेस्ट के रूप में केवल भाप यानी पानी निकलता है, और यही वजह है कि इसे भविष्य का सबसे स्वच्छ ईंधन माना जा रहा है, और यही वजह है कि कई देश इस पर काम भी कर रहे हैं। हाइड्रोजन तकनीक अपनाने वाले देशों में जापान सबसे आगे है। यहां हाइड्रोजन से चलने वाली कारें सड़कों पर दौड़ रही हैं। हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन बनाए जा चुके हैं और सरकार इस तकनीक को बढ़ावा देने के लिए लगातार निवेश कर रही है। कई शहरों में हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली बसें भी सार्वजनिक परिवहन का हिस्सा बन चुकी हैं। वहीं दक्षिण कोरिया ने हाइड्रोजन को अपनी राष्ट्रीय ऊर्जा रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया है। यहां हाइड्रोजन बसें, ट्रक और निजी वाहन बड़ी संख्या में उपयोग किए जा रहे हैं। सरकार का लक्ष्य हाइड्रोजन वाहनों और फ्यूलिंग स्टेशनों का बड़ा नेटवर्क तैयार करना है ताकि परिवहन क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम किया जा सके। इसी तरह जर्मनी में हाइड्रोजन से चलने वाली पैसेंजर ट्रेनें परिचालन में हैं। ये ट्रेनें बिना डीजल के लंबी दूरी तय करती हैं और केवल पानी छोड़ती हैं। जिन रेल मार्गों का विद्युतीकरण नहीं हुआ वहां हाइड्रोजन ट्रेनें पर्यावरण के अनुकूल विकल्प बन रही हैं। इसी कड़ी में भी चीन हाइड्रोजन तकनीक पर तेजी के साथ काम कर रहा है। कई शहरों में हाइड्रोजन से चलने वाली बसें और भारी ट्रक संचालित किए जा रहे हैं। लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक क्षेत्रों में हाइड्रोजन ईंधन का इस्तेमाल बढ़ रहा है। इसी तरह अमेरिका में भी हाइड्रोजन तकनीक का उपयोग परिवहन के साथ साथ बिजली उत्पादन उद्योगों में भी हो रहा है। कैलिफोर्निया जैसे राज्यों में हाइड्रोजन कारों के लिए रिफ्यूलिंग स्टेशंस उपलब्ध करवाए गए हैं। फ्रांस समेत कई यूरोपीय देश हाइड्रोजन बसें चला रहे हैं। यूरोपीय संघ ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन और उपयोग पर बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। लक्ष्य है कि भारी उद्योग, जहाजरानी, रेल और विमानन जैसे क्षेत्रों में जीवाश्म ईंधन की जगह स्वच्छ हाइड्रोजन का उपयोग बढ़ाया जाए। और अब भारत भी हाइड्रोजन क्रांति की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत स्वच्छ हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। देश में पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन ये पहला कदम नहीं। इससे पहले देश में हाइड्रोजन से चलने वाली बसों और ट्रकों के परीक्षण हो चुके हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड तकनीक में भारत कहां तक आगे बढ़ा है।

0: हरियाणा के जींद से पानीपत के बीच इस नीली हाइड्रोजन ट्रेन के आगाज के साथ ही हिंदुस्तान में ग्रीन मोबिलिटी की दिशा में नया इतिहास रचा गया है। फिलहाल भले ही केवल एक सेक्शन पर ये ट्रेन दौड़ रही है, लेकिन आने वाले समय में इसका विस्तार होने के पूरे आसार है। और केवल रेल सेवा में ही नहीं, बल्कि सफर के दूसरे साधनों में भी हाइड्रोजन के भरपूर इस्तेमाल की संभावनाएं बढ़ रही हैं। चाहे बस हो या ट्रक या फिर वाटर टैक्सी ही क्यों ना हो, हर तरह से सफर को सुगम बनाने में हाइड्रोजन का इस्तेमाल होने जा रहा है, क्योंकि भारत में इसकी तैयारी तो पहले से ही हो चुकी है। वहीं आपको ये भी बता दें कि भारत की राजधानी दिल्ली में हाइड्रोजन ईंधन से बस चलाने की भी पहल की जा चुकी है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC ने इसी साल 2026 में 15 मई से सेंट्रल विस्टा एरिया में हाइड्रोजन फ्यूल आधारित शटल बस सेवा की शुरुआत की। केंद्रीय सचिवालय और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशन के बीच इस बस सेवा को इसीलिए शुरू किया गया ताकि सरकारी कर्मचारियों और आम लोगों की दफ्तरों तक आवाजाही आसान हो सके। इससे निजी गाड़ियों पर निर्भरता भी कम होगी और पेट्रोल डीजल CNG की बचत होगी और राजधानी की हवा भी शुद्ध रहेगी। इससे पहले पुणे की कंपनी ने 2021 में हाइड्रोजन से चलने वाली बस का विकल्प पेश किया था। न पेट्रोल की जरूरत, न डीजल डलवाने का टेंशन, केवल हवा और हाइड्रोजन की जरूरत और चल पड़ेगी ये बस। इस खास तरह की बस को रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन पर काम करने वाली एक लैब सेटियंट लैब्स ने तैयार किया। बताया जा रहा है कि भारत में लॉन्च की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस है। इसी तर्ज पर दिसंबर 2025 में वाराणसी में देश की पहली हाइड्रोजन वाटर टैक्सी को भी हरी झंडी दिखाई गई। हालांकि ये भी जानना जरूरी है कि जिस हाइड्रोजन ईंधन से आप ट्रेन चल रही है उसका हाइड्रोजन फ्यूल सेल है क्या और ये किस तरह से काम करता है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों में जिस तरह से बैटरी काम करती है, ठीक उसी तरह फ्यूल सेल भी काम करते हैं, लेकिन इन्हें चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ती है। जब तक उन्हें हाइड्रोजन फ्यूल की सप्लाई होती रहेगी, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते रहेंगे। फ्यूल सेल में हाइड्रोजन गैस और हवा की ऑक्सीजन के बीच रासायनिक क्रिया होती है। इस क्रिया से सीधे बिजली बनती है जो ट्रेन की इलेक्ट्रिक मोटर को चलाती है। यानी फ्यूल सेल हाइड्रोजन और हवा को इस्तेमाल करके बस के लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, जिसका इस्तेमाल वाहनों को चलाने में किया जाता है। इसमें बाय प्रोडक्ट के तौर पर सिर्फ पानी बाहर आता है, जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा। एक और बड़ा फायदा रिफ्यूलिंग में है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के नजरिए से देखें तो बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल की तुलना में इसे रिफ्यूल करना आसान है, क्योंकि ये कुछ ही मिनटों में रिफ्यूल हो जाता है, जबकि बैटरी वाली बसों को चार्ज करने में घंटों लगते हैं। असल में ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी का सबसे साफ सोर्स है और इसको रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से तैयार किया जाता है। इसके तैयार होने और इस्तेमाल होने में पॉल्यूशन कम होता है, इसीलिए इसे लो कार्बन फ्यूल के तौर पर भी जाना जाता है, जिससे वातावरण को बेहतर करने में मदद मिलेगी और पेट्रोल डीजल की तुलना में लागत भी घटेगी और तो और कार्बन उत्सर्जन को घटाने में भी मदद मिलेगी। आगे का वक्त पेट्रोल डीजल रहित वाहनों का है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की लोकप्रियता तो तेजी से रफ्तार पकड़ ही रही है। ऐसे में अब हाइड्रोजन से चलने वाली बसें, ट्रक और वाटर टैक्सी भी बेहतरीन विकल्प के तौर पर उभर रही हैं। फिलहाल ये ट्रांसपोर्ट की वो तस्वीर है जो न केवल उम्मीद जगा रही है, बल्कि सुनहरे भविष्य की कहानी भी बयां कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और चलिए इसी के साथ जीएनटी स्पेशल की इस खास कवरेज में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all your favorite music, news, sports, and more all in one place. And hear all the audio you love. Whether you're a music lover, interested in what's going on around the world,
1: I have no idea how this election is going to play out,
0: or want to catch up on your team's live play-by-plays, it's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
2: तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
4: गुड न्यूज टुडे.
8: के बच्चे की शिक्षा में बाधा आ रही है, क्या करियर में बार बार रुकावटें पैदा हो रही हैं, कौन सा करें माता पिता उपाय कि बच्चे का जीवन सुधर जाए, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में.
4: जी खबर.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए.
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा.
10: पुरी में रथ यात्रा के दूसरे दिन भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मौसी के घर पहुंचे. जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ गुंडीचा मंदिर में 7 दिन तक विश्राम करेंगे महाप्रभु. महाराष्ट्र के पंढरपुर में एक भक्त ने भगवान विट्ठल के चरणों में अर्पित की सोने की चरण पादुकाएं, करीब 57 लाख रुपए बताई जा रही इसकी कीमत. देश को मिली पहली हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात, प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा के जींद में हरी झंडी दिखाकर सोनीपत के लिए किया रवाना. रेल यात्रियों के लिए गुड न्यूज, देश भर के 75 रेलवे स्टेशनों की बदली सूरत, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किया गया पुनर्विकास. अंतरिक्ष में एक और ऐतिहासिक छलांग लगाने की तैयारी, देश का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 कल सुबह 11:30 बजे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भरेगा उड़ान.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम
10: पूरी रथ यात्रा के दूसरे दिन गुंडीचा मंदिर पहुंचे तीनों रथ। अब 9 दिन मौसी के घर रहेंगे तीनों देवता। महाप्रभु का जन्मस्थान माना जाता है गुंडीचा मंदिर। रथ यात्रा के दूसरे दिन 9 लाख श्रद्धालु भव्य आयोजन में शामिल हुए। 7 दिनों तक भगवान जगन्नाथ गुंडीचा मंदिर में ही रहेंगे। इस दौरान गुंडीचा मंदिर में विशेष पूजा दर्शन और कई पवित्र अनुष्ठान होंगे। 7 दिन गुंडीचा मंदिर में विश्राम करने के बाद भगवान अपने मुख्य मंदिर के लिए वापसी की यात्रा शुरू करेंगे। इसे बहुड़ा यात्रा भी कहा जाता है। पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा में आस्था के साथ साथ मानवीय संवेदनाओं की दिखी तस्वीर। मानव श्रृंखला बनाकर एम्बुलेंस को दिया रास्ता। दिल्ली के द्वारका इस्कॉन मंदिर में भव्य जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगवान को 11,000 किलो आमों का भोग अर्पित किया। आरती के बाद श्रद्धालुओं के बीच बांटा महाप्रसाद। भगवान जगन्नाथ को एक विशाल मैंगो फेस्टिवल में 108 विभिन्न किस्मों वाले आमों का लगा भोग। भक्तों ने पूरे उत्साह के साथ निकाली रथ यात्रा। रथ यात्रा में हजारों की संख्या में भक्त हुए शामिल। भक्तों की सुविधाओं के लिए जगह जगह लगाए गए स्टॉल्स। रथ यात्रा कल शाम 4 बजे मंदिर परिसर से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से गुजरी, जहां भक्तों ने उत्साह के साथ रथ की रस्सियां खींची। इस रथ यात्रा में दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद भी शामिल हुए। भगवान की आस्था में रमे हुए नजर आए। पंढरपुर में भगवान विट्ठल को भक्तों की अनोखी भेंट। भगवान के चरणों में अर्पित की सोने की पादुकाएं। लगभग 57 लाख बताई जा रही उन स्वर्ण पादुकाओं की अनुमानित कीमत। दान के दौरान भक्त ने अपना नाम गोपनीय रखने की शर्त रखी। बद्रीनाथ धाम में दर्शनों को आ रहे भक्तों ने बनाया एक और रिकॉर्ड। अब तक 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। जुलाई के मध्य तक दर्शन का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा। 19 अप्रैल से शुरू हुई थी पवित्र चार धाम यात्रा। मॉनसून का दौर शुरू होने के बावजूद बद्रीनाथ यात्रा की रफ्तार बरकरार। पल पल बदल रहे मौसम के बीच आस्था भारी। ओडिशा के अंगुल में धूमधाम से निकाली गई भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। जिंदल नगर के देवभूमि मंदिर में हजारों भक्तों और कर्मचारियों के साथ मिलकर रथ खींचा। सांसद और उद्योगपति नवीन जिंदल ने निभाई छेरा पहरा की रस्म। देशवासियों को इस पर्व की शुभकामनाएं दी। आस्था और उल्लास के बीच में थूथुकुड़ी में आदि उत्सव की भव्य शुरुआत। पारंपरिक अनुष्ठानों के बीच में खोले गए मंदिर के पट। थूथुकुड़ी में आदि उत्सव के पहले दिन भक्तों ने बड़ी संख्या में दर्शन किए। धार्मिक आयोजनों से पहले माहौल भक्तिमय हुआ। संगम नगरी प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए लागू किए गए ड्रेस कोड। महिलाएं साड़ी सूट तो वहीं पुरुष धोती कुर्ता पहनकर करेंगे रुद्राभिषेक। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले गढ़वाल कमिश्नर ने यात्रा मार्ग का जायजा लिया। श्रद्धालुओं के लिए यात्रा को सुरक्षित सुगम बनाने पर जोर। कांवड़ मेले को सुरक्षित और सुगम बनाने को लेकर आज हरिद्वार में इंटरस्टेट बैठक। उत्तराखंड दिल्ली हरियाणा राजस्थान यूपी के अधिकारियों के अलावा आईटीबीपी एसएसबी एनडीआरएफ के अधिकारी भी शामिल। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में 83 लोगों का अनोखा संयुक्त परिवार। 6 पीढ़ियां रहती हैं एक साथ। परिवार में वर्तमान में 43 पंजीकृत मतदाता 20 बेटे और बहुएं शामिल हैं। परिवार का कहना आपसी एकता ही सबसे बड़ी दौलत। खेती से लेकर कारोबार तक हर काम मिलकर करता है ये परिवार। आज भी परंपराओं के साथ जी रहा परिवार। स्पेस सेक्टर में भारत की एक और बड़ी छलांग। देश का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 भरेगा उड़ान। मिशन आगमन के तहत लॉन्च होगा स्काई रूट का विक्रम 1 रॉकेट। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से विक्रम 1 की लॉन्चिंग। कार्बन कंपोजिट से बना लॉन्च व्हीकल है विक्रम 1 रॉकेट। 3D प्रिंटेड इंजन हाई थ्रस्ट सॉलिड फ्यूल रॉकेट बूस्टर से लैस विक्रम 1। कई भारतीय विदेशी टेक्नोलॉजी पेलोड भी जाएंगे अंतरिक्ष। साल 2022 के विक्रम एस के बाद स्काई रूट की सबसे बड़ी उड़ान। विक्रम 1 की लॉन्चिंग पर पीएम मोदी का हस्तलिखित वंदे मातरम पोस्ट कार्ड भी जाएगा अंतरिक्ष। 18 कैरेट सोने से बनी सीवी रमन, डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की सूक्ष्म रॉकेट कलाकृति भी भेजी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद स्टेशन से भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। ये ट्रेन जींद और सोनीपत के बीच में 89 किलोमीटर के रूट पर चलेगी। इस ट्रेन में हाइड्रोजन लीक, गर्मी, आग, धुएं का पता लगाने वाले लगाए गए हैं कई सुरक्षा सिस्टम। आम इलेक्ट्रिक ट्रेनों की तरह ये ट्रेन ऊपर लगी बिजली की लाइनों से पावर नहीं लेती। जींद सोनीपत रूट पर 11 स्टेशनों पर रुकेगी हाइड्रोजन ट्रेन। करीब 2 घंटे का होगा जींद से सोनीपत का सफर। 75 किलोमीटर प्रति घंटा है इस हाइड्रोजन ट्रेन की रफ्तार, जबकि इसकी डिजाइन स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटा। इस ट्रेन में लगे हैं 10 डिब्बे, करीब 2600 यात्री कर सकेंगे सफर। दुनिया में सबसे बड़ी हाइड्रोजन ट्रेन में हुई शुमार। जींद के एकलव्य स्टेडियम में करीब 14,700 करोड़ के विकास कार्यों का पीएम मोदी ने शिलान्यास किया। जींद के बाद जालंधर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, 5,470 करोड़ की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन का भी पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 125 करोड़ रुपए में हुआ पुनर्विकास। जालंधर कैंट स्टेशन से प्रधानमंत्री ने नई रेल सेवाओं को दिखाई हरी झंडी। करटोली पंजाब अंबाला जालंधर वाराणसी के बीच ट्रेन रवाना। चंडीगढ़ पीजीआई भी जाएंगे प्रधानमंत्री, 1250 करोड़ की हेल्थ केयर से जुड़ी अहम सुविधाओं का करेंगे उद्घाटन। देहरादून में अग्निवीर संवाद कार्यक्रम का आयोजन, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी संख्या में मौजूद युवाओं से बातचीत की। सीएम ने युवाओं संग खिंचवाई सेल्फी, बोले उत्तराखंड वीरों की भूमि है और सैनिकों उनके परिवारों का सम्मान राज्य सरकार के सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। शामली दौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सीएम ने करीब 618 करोड़ की 90 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में सामाजिक एकता का जिक्र किया, बोले साथ मिलकर प्रदेश को विकास की ऊंचाई तक लेकर जाएंगे। रेल यात्रियों के लिए गुड न्यूज आई है, मऊ से कोलकाता के बीच में दौड़ेगी स्पेशल ट्रेन, 22 जुलाई से 24 सितंबर तक मिलेगी ये सुविधा। देश भर में घोषित हुए नीट यूजी परीक्षा परिणामों में पंजाब के मानसा जिले की बेटी भाविका ने किया शानदार प्रदर्शन, ऑल इंडिया 56वीं रैंक हासिल की। शानदार सफलता के बाद भाविका को बधाई देने वालों का लगा तांता, परिवार ने भी इस उपलब्धि पर जताया गर्व। नीट यूजी परीक्षा परिणामों के बाद जयपुर में खुशी का माहौल, उपलक्ष्य गोयल ने ऑल इंडिया तीसरी रैंक हासिल की, परिवार में खुशी। नागपुर के सौम्य धर्मराज बडोले ने नीट परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 77वां हासिल किया, सौम्य के घर खुशी की लहर दौड़ी। नीट परीक्षा में 676 अंक लाकर झारखंड टॉपर बने ज्ञानेंद्र गर्व, पुत्र के सफलता पर परिवार गदगद। जम्मू कश्मीर के उधमपुर से आई है प्राकृतिक सौंदर्य की मनमोहक तस्वीरें सामने, हरियाली, पहाड़, बादलों का संगम दिखाई दे रहा। उधमपुर की खूबसूरत वादियां, प्राकृतिक नजारे पर्यटकों को आकर्षित कर रही हैं, सुबह की इन तस्वीरों ने किया मंत्रमुग्ध। दमन से नई दिल्ली के लिए सीधी हवाई सेवा का शुभारंभ, पर्यटन, व्यापार, निवेश और विकास को मिलेगी नई गति, आने वाले दिनों में कई शहरों में शुरू होंगी सेवाएं। बलरामपुर की लखपति दीदी दिलमती की बदली तकदीर, सुअर पालन और खेती के दम पर दिलमती बनी आत्मनिर्भर। दिलमती ने कृषि और पशुपालन से रचा सफलता का नया अध्याय, बढ़ी आमदनी और परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया। महाराष्ट्र के अकोला में 7 सितंबर को निकलेगी भव्य राजराजेश्वर कांवड़ यात्रा, 50 सालों से चली आ रही परंपरा। सावन में कांवड़ यात्रा के लिए की जा रही तैयारी, पूर्णा नदी से पवित्र जल लेकर भगवान श्री राजेश्वर का जलाभिषेक करते हैं श्रद्धालु। अकोला से 20 किलोमीटर दूर है पूर्णा नदी का तट, कांवड़ यात्रा मार्ग पर मेडिकल सुविधा समेत इमरजेंसी सेवाओं के पुख्ता इंतजाम पर जोर। बिहार के मुजफ्फरपुर में श्रावणी मेले की तैयारियां तेज, बाबा गरीबनाथ धाम में बैरिकेडिंग और अतिक्रमण हटाने के निर्देश। कांवड़ यात्रा मार्ग पर विशेष सफाई अभियान चलेगा, सुरक्षा के लिए सीसीटीवी और अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती। दिल्ली गाजियाबाद सीमा पर बनाया जा रहा भव्य प्रवेश द्वार, धनुष बाण से सुसज्जित श्री राम सेतु प्रवेश द्वार से संस्कृति और आस्था का संदेश। गाजियाबाद में 11 किलोमीटर लंबे हिंडन एलिवेटेड रोड को मिलेगा नया नाम, श्री राम सेतु नाम से होगी आधिकारिक पहचान। झारखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहल, पतरातू डैम में पर्यटकों के लिए 2 फ्लोटिंग रेस्टोरेंट और म्यूजिकल फाउंटेन की सौगात। पतरातू की झील में मयूराक्षी और कोयल फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का शुभारंभ, प्राकृतिक सौंदर्य के बीच करीब 60 मिनट की राइड का मजा ले सकेंगे पर्यटक। शाम के समय बदलेगा पतरातू झील का नजारा, म्यूजिकल लेजर फाउंटेन शो बढ़ाएगा पर्यटकों का रोमांच। भारत यूके के बीच व्यापार समझौता लागू होने के बाद पहली बार जयपुर से आभूषणों का कंसाइनमेंट रवाना, सांगानेर एयरपोर्ट पर दिखाई हरी झंडी। भारतीय आभूषण पहली बार ब्रिटेन के बाजार में 0 ड्यूटी के साथ प्रवेश करेंगे, भारतीय व्यापार को मिलेगा बढ़ावा। जयपुर के कंसाइनमेंट में सोना, हीरा, प्लैटिनम जड़ित गहने भी शामिल, करीब 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर है इसकी कीमत। मध्य प्रदेश के कटनी जिले में देश की सबसे बड़ी जल सुरंग का निर्माण संपन्न होने के करीब, तकरीबन 12 किलोमीटर लंबी सुरंग। जल सुरंग के जरिए नर्मदा नदी का पानी बिना किसी पंप के विंध्य क्षेत्र तक पहुंचेगा, 5 जिलों में करीब 2 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई के लिए मिल सकेगा पानी। दिल्ली एनसीआर में 18 जुलाई तक रहेगा गर्मी उमस वाला मौसम, 20 जुलाई से हो सकती है बारिश। हिमाचल प्रदेश में 19 जुलाई से भारी बारिश का अनुमान, मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। कोलकाता समेत आसपास के जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, 19 जुलाई तक भारी बारिश का अनुमान है। नेपाल में हो रही है बारिश से बिहार के सीमावर्ती इलाकों की नदियों में बढ़ गया जलस्तर, प्रशासन अलर्ट। बाढ़ की संभावना के चलते एनडीआरएफ की टीमों को जगह जगह तैनात कर दिया गया है, नदियों के तटबंध की सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी। जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची पीवी सिंधु, ओकुहारा ने दिया वॉक ओवर, अब चीन की चेन युफेई से खेलेंगी मैच। जापान ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय महिला शटलर बनी सिंधु, इससे पहले 2011 में साइना नेहवाल ने जापान ओपन के सेमीफाइनल में प्रवेश किया था। इंग्लैंड के खिलाफ 65 रन की पारी खेलकर विराट ने तोड़ा सचिन का रिकॉर्ड, भारत की तरफ से इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बने विराट कोहली। फीफा इस बार देगा इतिहास की सबसे बड़ी इनामी राशि, फुटबॉल वर्ल्ड कप चैंपियन को मिलेंगे करीब 5,000 करोड़, वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाले हर देश को मिलेंगे करीब 120 करोड़। वर्ल्ड चैंपियन बनने वाली टीम के खिलाड़ियों और स्टाफ को ट्रॉफी और गोल्ड मेडल के साथ साथ दी जाएगी चैंपियनशिप रिंग, जिसके एक तरफ बनी होगी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी। इमरान हाशमी के फैंस के लिए बड़ा सरप्राइज, आवारापन 2 से पहले 31 जुलाई को फिल्म आवारापन फिर से रिलीज होगी। हिमांशु कोहली, सोनाली और रवि किशन की फिल्म आर्यभट्ट का 0 का टीजर रिलीज 7 अगस्त को रिलीज होगी। मराठी सिनेमा में कदम रख रही एक्ट्रेस अदा शर्मा सच्ची घटनाओं पर आधारित अपनी अपकमिंग फिल्म गजरा को लेकर चर्चा में। कटरीना कैफ के 43वें बर्थडे पर विकी कौशल ने किया खास इंतजाम, प्यार भरे अंदाज में कटरीना को किया हैप्पी बर्थडे विश। पैनोरमा स्टूडियोज और सिनेपोलिस इंडिया ने दिल्ली पुलिस के लिए डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनरशिप का ऐलान किया। धमाल फोर और बेबी डू डाई डू के साथ हुई इस सहयोग की शुरुआत। बोलिविया की युवा महिलाएं पारंपरिक फोलेरा स्कर्ट पहनकर कर रही हैं स्केटबोर्डिंग, खेल के साथ अपनी आदिवासी पहचान को मजबूत कर रही। बोलिविया का वार्मिस सोबर रोएदास ट्रुप स्केटबोर्डिंग के जरिए महिलाओं को सशक्त बनाने और आय मारा संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचाने में जुटा है। स्केट पार्क में संस्कृति की उड़ान, लापाज की सड़कों पर पारंपरिक पोशाक पहनकर स्केटिंग करती हैं लड़कियां। आधुनिक जीवन शैली का परंपरा के साथ संगम स्केटबोर्डिंग करती इन महिलाओं को अपनी सांस्कृतिक विरासत पर फख्र। बोलिविया में आदिवासी महिलाओं की नई पीढ़ी को सीख स्केटबोर्डिंग के जरिए संस्कृति, आत्मविश्वास और महिला सशक्तिकरण का दे रही संदेश। चीन में खुला हाईटेक पेंगुइन पवेलियन हार्बिन पोलर पार्क में देश का पहला पोलर मरीन रिसर्च एजुकेशन बेस नए अंदाज में खुला। अफ्रीका के दुर्लभ ब्लैक फुटेड पेंगुइन बने नई पहचान, पवेलियन में पहली बार पेयर अफ्रीकन ब्लैक फुटेड पेंगुइन और साउथ अफ्रीका के मशहूर पेंगुइन टाउन की हूबहू झलक। लाइव पेंगुइन होलोग्राम एआई और डीप सी टेक्नोलॉजी के साथ चीन का ये सेंटर मरीन कंजर्वेशन का नया बेंचमार्क बना, पढ़ाई के साथ साथ रोमांच भी मिलेगा। कांगो के जंगल में बंदर की नई प्रजाति मिली है, 75 साल में अफ्रीका की ये सिर्फ 5वीं बड़ी खोज। लिक्वेली नाम की इस दुर्लभ प्रजाति पर संकट के बादल, इस प्रजाति पर विलुप्त होने का खतरा है। दुनिया का सबसे बड़ा कमल तालाब खिला, चीन के जियांगशी प्रांत में 1.8 वर्ग मीटर में फैला विशाल कमल तालाब पर्यटकों से मिला।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम।
1: कॉकरोच जनता पार्टी को सुपरस्टार का साथ, जंतर मंतर पर प्रदर्शन में पहुंचे रजनीकांत, मुंबई में डिलीवरी बॉय ने बचाई बच्चे की जान, मासूम बच्ची का प्यारा बदला, वायरल खबरों की पूरी और पक्की पड़ताल देखिए सरगम पंत के साथ फैक्ट चेक शाम 7:34 पर।
2: क्या आपके बच्चे की शिक्षा में बाधा आ रही है? क्या करियर में बार बार रुकावटें पैदा हो रही हैं? कौन सा करें माता पिता उपाय कि बच्चे का जीवन सुधर जाए? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
3: Take it easy with Soft Hits. Soft Hits brings together relaxing pop favorites from the 70s, 80s, and 90s. Familiar songs, easy melodies, and a sound that lets you slow down. Perfect for stepping back and catching your breath. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Soft Hits to start listening now.
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम। लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
8: ब्रिटेन के विप्सनेट जू में एक या दो नहीं बल्कि 7 नन्हे चीता शावकों का जन्म हुआ है। इनकी मासूम अटखेलियां और मां के साथ इनका प्यार हर किसी का दिल जीतता है। ये शावक नॉर्दर्न चीता प्रजाति के हैं, जो बेहद दुर्लभ माने जाते हैं।

माँ के कदमों से कदम मिलाते, कभी उछलते कभी दौड़ते, तो कभी माँ से लिपट कर दुलार करते इन नन्हे मेहमानों ने पहली बार दुनिया के सामने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। नजारा ब्रिटेन के विप्सनेट जू का है, जहां 18 मई को अमीरा नाम की मादा चीता ने 4 शावकों को जन्म दिया, तो वहीं 23 मई को जारा ने 3 शावकों को जन्म दिया। अब ये 7 शावक अपनी मां के साथ खुले बाड़े में मस्ती करते दिखाई दे रहे हैं। कभी मां की पीठ पर चढ़ने की कोशिश, कभी भाई बहनों के साथ दौड़ लगाने की होड़, इन मासूम तस्वीरों के पीछे एक बड़ी उम्मीद भी छिपी है। दरअसल ये शावक नॉर्दर्न चीता प्रजाति के हैं, जो बेहद दुर्लभ माने जाते हैं। पूरी दुनिया में इनकी संख्या करीब 6,500 रह गई है। ऐसे में इन शावकों का जन्म संरक्षण की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

0: विप्सनेट जू का संचालन करने वाली संस्था अफ्रीकी देश जाम्बिया में चीता संरक्षण पर भी काम कर रही है। करीब 3 दशक बाद वहां चीतों को फिर से जंगल में बसाने की तैयारी चल रही है ताकि जंगलों में इनकी रफ्तार और दहाड़ एक बार फिर लौट सके। फिलहाल अपनी माँ के साथ ये नन्हे शावक अपनी आजादी और बचपन का पूरा लुत्फ उठा रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ क्यूट तस्वीरें नहीं है, ये वन्य जीव संरक्षण की एक बड़ी खुशखबरी भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: If you're serious about sports, NBC Sports Radio is the place for you. Start your day with NFL updates from Mike Florio. Then join Dan Patrick and the Danettes for in-depth discussions and the biggest guests in sports. Plus, don't miss Dan Lebatard at the intersection of sports and pop culture. Then when the games are on, tune in for live events and highlights from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
3: कॉकरोच जनता पार्टी को सुपरस्टार का साथ, जंतर मंतर पर प्रदर्शन में पहुंचे रजनीकांत, मुंबई में डिलीवरी बॉय ने बचाई बच्चे की जान, मासूम बच्ची का प्यारा बदला, वायरल खबरों की पूरी और पक्की पड़ताल देखिए सरगम पंत के साथ, फैक्ट चेक शाम 7:34 पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसका
4: टीवी टुडे नेटवर्क, और आप देख रहे हैं GMT यानी गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल
5: जाए। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements, Sage University, transforming your passion into profession.
6: पुरी में रथ यात्रा के दूसरे दिन भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मौसी के घर पहुंचे भगवान जगन्नाथ। गुंडीचा मंदिर में 7 दिन तक विश्राम करेंगे महाप्रभु। महाराष्ट्र के पंढरपुर में एक भक्त ने भगवान विठल के चरणों में अर्पित की सोने की चरण पादुकाएं, करीब 57 लाख रुपए बताई जा रही है कीमत। देश को मिली पहली हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात, प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा के जींद में हरी झंडी दिखाकर सोनीपत के लिए रवाना किया। रेल यात्रियों के लिए गुड न्यूज, देश भर के 75 रेलवे स्टेशन की बदली सूरत, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किया गया पुनर्विकास। अंतरिक्ष में एक और ऐतिहासिक छलांग लगाने की तैयारी, देश का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 कल सुबह 11:30 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन से भरेगा उड़ान।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
6: नमस्कार, मैं हूं नवजोत संधावा, शाम के 7 बज चुके हैं, वक्त है 7 बजे की 7 गुड न्यूज का। तो सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज, पूरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दूसरे दिन उनका भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का रथ गुंडीचा मंदिर पहुंच चुका है। गुंडीचा मंदिर को भगवान जगन्नाथ की मौसी का घर माना जाता है, और ऐसे में आज की हमारी सबसे पहली गुड न्यूज यही है, मौसी के घर गुंडीचा मंदिर पहुंचे महाप्रभु। पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा के दौरान दूसरे दिन श्रद्धालुओं का समंदर उमड़ पड़ा। आज भरपूर जोश और उत्साह के साथ भक्त रथ को खींचते हुए गुंडीचा मंदिर की ओर लेकर निकले। श्री मंदिर से गुंडीजा मंदिर तक भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की 3 किलोमीटर की रथ यात्रा लगभग 2 दिन में पूरी होती है। गुंडीजा मंदिर को भगवान जगन्नाथ की मौसी का घर माना जाता है। मान्यता है कि यहीं पर महाप्रभु का प्राकट्य भी हुआ था। कहते कि रानी गुंडीजा के वात्सल्य भाव और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें वरदान दिया था कि वो हर वर्ष आषाढ़ माह के में अपने भाई और बहन के साथ उनसे मिलने जरूर आएंगे। अपना यही वचन निभाने महाप्रभु हर साल गुंडीचा मंदिर आते हैं और इस दौरान भगवान यहाँ विश्राम करते हैं और श्रद्धालुओं को दर्शन भी देते हैं। गुंडीचा मंदिर में 7 दिन रहने के बाद भगवान 8वें दिन मुख्य मंदिर के लिए वापस निकल पड़ते हैं और इसे बहुड़ा यात्रा कहा जाता है। भगवान जगन्नाथ की ये वार्षिक रथ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि इसका गहरा आध्यात्मिक महत्व ही है। ये महापर्व भक्त और भगवान के अद्भुत मिलन का साक्षी है और यही कारण है कि हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस पावन परंपरा के साक्षी बनने के लिए पहुंचते हैं।
7: काल जितना भक्त लोग को दुख था आज बिफोर टाइम में जगन्नाथ जी आ गया तीनों रात
8: अंतर।
7: अभी जगन्नाथ जी का जो नीति है रथ का ऊपर जो नीति है अभी नीति चलेगा। महासंक्रांति पूजा जो है इसका पूजा चलेगा। फिर इसके बाद सकाल भोग जो है पहले भोग दूसरा भोग तीसरा भोग चलेगा। संध्या तक पूजा चलेगा। महाश्रा जैसे भगवान को बड़ा श्रृंगार होगा पौर में होगा। भगवान सोएंगे जैसे आगे साल में जैसा प्रॉब्लम था इसके लिए सब हम लोग अरेंजमेंट किया है जैसे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा।
9: विस्तृत अरेंजमेंट पर्याप्त परिमाण में बंदोबस्त करा गया है लेकिन जन साधारण के सहयोग के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और दर्शन करने की व्यवस्था करी जाती है। उसमें अगर सहयोग करेंगे, कई बार ये देखा गया है कि श्रद्धालु दर्शन भी हो गया लेकिन वो जगह छोड़ना नहीं चाह रहा, वो वहीं खड़ा रहना चाह रहा है, तो उससे जो क्राउड की सर्कुलेशन है उसमें असुविधा उत्पन्न होती है। उसमें वो पुलिस प्रशासन के साथ सहयोग करें और जैसा जैसा वो निर्देश देते हैं उसका पालन करें।
6: माँ कालेश्वर मंदिर में हर दिन हजारों श्रद्धालु भगवान महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, साथ ही अपनी श्रद्धा भी अर्पित करते हैं। कोई नगदी दान करता है, कोई सोने चांदी और कीमती आभूषण चढ़ाता है। ऐसे में महाकाल मंदिर प्रबंधन अब सोने और चांदी की जांच के लिए अत्याधुनिक मशीनें लगाने जा रहा है। हमारी आज की दूसरी गुड न्यूज भी यही है। महाकाल मंदिर में गहनों को परखने का इंतजाम, यहाँ चढ़ावे में आई हर चीज का न सिर्फ रिकॉर्ड रखा जाता है बल्कि उसकी गुणवत्ता की भी जांच की जाती है।
10: उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल के दर्शन के लिए रोजाना देश विदेश से हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं। भक्त यहां दिल खोलकर सोना चांदी नकदी और बहुमूल्य आभूषण दान करते हैं। मंदिर प्रशासन का दावा है कि यहां आने वाले चढ़ावे की एक एक चीज का रिकॉर्ड रखा जाता है और उसकी गुणवत्ता की वैज्ञानिक जाँच की जाती है।
11: बाबा महाकाल की सेवा में जो सेवार्थी लगे हुए हैं उसमें सीसीटीवी कैमरे की निगरानी के साथ 3 लोगों की समितियां भी हैं। स्वर्ण का समाज के पारखी जोरिया हैं, वो पूरा जांच करने के बाद ही और प्रत्येक चढ़ावे की राशि का पूर्णता पारदर्शिता के साथ में सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में जांच होती है।
10: मंदिर समिति के अनुसार चढ़ावे में मिले सोने और चांदी के आभूषणों की जांच के लिए सुनारों की 3 सदस्यों वाली विशेषज्ञ टीम है। ये टीम सोने चांदी की शुद्धता, गुणवत्ता और कैरेट की बारीकी से जांच करती है। जांच पूरी होने के बाद उसका लिखित रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। दानदाता को मंदिर समिति की ओर से रसीद भी जारी की जाती है जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहती है।
12: मुझे ये देखने में आया है कि कोई छोटी मोटी धातु कभी कोई गलती से कोई चढ़ा जाता है वही आती है, लेकिन जो बड़े मुकुट होते हैं, मुकुंडल होते हैं, तो वो तो सब असली पाए जाते हैं और जो नकली होते हैं वो या तो कोई ऐसे फ्रॉड जेलर्स के यहाँ से परचेसिंग कर लेता है श्रद्धालु तो आ जाती है, या फिर अन्य कोई खोया पाया विभाग से जो प्राप्त होती है, जैसे किसी का गुम हो जाता है, कोई नकली पायल पहन के आया, कोई नकली सामग्री रहती है, तो इस प्रकार से कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है नकली का। वहां पर जितने भी धातु आती है लगभग असली ही आती है।
10: मंदिर में दान से जुड़ी हर गतिविधि सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होती है। आभूषणों की जांच के दौरान मंदिर समिति के प्रभारी, संबंधित कर्मचारी और डिप्टी कलेक्टर स्तर का अधिकारी मौजूद रहते हैं। दान व्यवस्था को और आधुनिक और सुरक्षित बनाने के लिए जल्द ही मंदिर में हाईटेक मशीन लगाई जाएगी। इस मशीन की मदद से सोने और चांदी के असली या नकली होने की तुरंत पहचान की जा सकेगी।
8: स्वर्ण और जो रजत के आभूषण हैं, उनका ऑन द स्पॉट जो है वो हम उसको वेरीफाई कर सके, उसमें शुद्धता का परसेंट ऑन द स्पॉट नाप चुके। इसके लिए हम जो है अभी वर्तमान में जो बहुत ही अच्छी कैरेटोमीटर, जिसको मशीन बोलते हैं, वो लेकर आ रहे हैं, जो हमारे बड़े बड़े जो शोरूम वगैरह है सुनार, इसका प्रयोग करते हैं।
10: महाकाल मंदिर प्रशासन यह आश्वस्त करता है कि यहाँ पारदर्शिता और सुरक्षा के सभी मानकों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। भक्तों की आस्था और उनके द्वारा दिए गए दान का यहाँ पूरा सम्मान किया जाता है और पूरी सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ, गुड न्यूज टुडे।
6: 30 जुलाई से सावन की शुरुआत हो रही है। सावन की शुरुआत से पहले प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू किया गया और इस बार यहां आने वाले पुरुष श्रद्धालुओं के लिए धोती कुर्ता और महिलाओं के लिए साड़ी या सूट पहना निर्धारित किया गया है। हमारी आज की गुड न्यूज नंबर 3 यही है, सावन से पहले मनकामेश्वर मंदिर में ड्रेस कोड। 30 जुलाई से शुरू हो रहे श्रावण मास में मनकामेश्वर मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। मंदिर में महिलाओं और युवतियों के लिए छोटे और भड़कीले कपड़े पहनना मना है। इसके साथ ही साथ पुरुषों को भी शालीन कपड़े पहनने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा 30 जुलाई से शुरू हो रहे श्रावण मास में रुद्राभिषेक करने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। श्रद्धालु भारतीय परिधान में ही मंदिर में रुद्राभिषेक करवा सकेंगे। मंदिर परिसर में जगह जगह श्रद्धालुओं के लिए नोटिस बोर्ड लगाए गए हैं और इसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि मंदिर पवित्र साधना का स्थल है, यहाँ पर महिलाएं और पुरुष भक्ति भाव से प्रवेश करें, युवतियां छोटे और भड़कीले कपड़े पहनकर मंदिर में प्रवेश न करें, महिलाएं और युवतियां शालीन कपड़ों में पूरा शरीर ढककर मंदिर में प्रवेश करें। यह भी चेतावनी दी गई है कि छोटे कपड़े पहनकर आने वाली महिलाओं और युवतियों को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
13: 30 जुलाई से सावन की शुरुआत हो रही है और हम इस वक्त मनकामेश्वर मंदिर में है। ये एक ऐसा मंदिर है जो भगवान भोलेनाथ काम को भस्म करके यहाँ विराजमान हो गए थे, तब से ये शिवलिंग स्थापित है। यहाँ पूजा पाठ किया जा रहा है और यहाँ पर रुद्राभिषेक और भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाया जाता है। ये एक ऐसा मंदिर है जो भी सच्चे मन से श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ से अपनी मनोकामना मांगते हैं तो भगवान भोलेनाथ उनकी मनोकामनाएं पूरी अवश्य करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सावन में सैकड़ों श्रद्धालु हर सावन को यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए आते हैं, पूजा पाठ किया जा रहा है। अब यहाँ ड्रेस कोड लागू किया गया है। इस मंदिर में अगर आपको आना है, भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करना है, पूजन करना है, तो आपको इस ड्रेस कोड को फॉलो करना होगा। महिलाएं साड़ी पहनकर आएंगी और जो पुरुष हैं उनको धोती कुर्ता पहनना होगा।
6: आगे बढ़ेंगे। आज हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर एक नई शुरुआत हुई। यहां से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत हुई है। ट्रेन जींद से सोनीपत के लिए करीब 75 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और ऐसे में हमारी आज की चौथी गुड न्यूज भी यही है। पटरी पर आई बिना धुआं बिना बिजली वाली ट्रेन। हाइड्रोजन ट्रेन डीजल की जगह हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक का इस्तेमाल करती है और इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के केमिकल प्रोसेस से बिजली बनती है जिससे ट्रेन चलती है। इस ट्रेन से न धुआं निकलता है और न ही बिजली की खपत होती है।

0: हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन पर भारतीय रेलवे ने इतिहास रच दिया है। यहां पर आज से एक ऐसी ट्रेन की शुरुआत हुई है जो भविष्य की ऊर्जा यानी हाइड्रोजन से चलती है। ये रेल यातायात का सबसे स्वच्छ तरीका है। जिंद से सोनीपत तक की 89 किलोमीटर के रूट पर चलने वाली हाइड्रोजन ट्रेन को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पटरियों पर दौड़ेगी। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन रेलवे के इतिहास में नया अध्याय जोड़ने वाली है। हाइड्रोजन ट्रेन डीजल के जगह हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक का इस्तेमाल करती है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के केमिकल प्रोसेस से बिजली बनती है जिससे ट्रेन चलती है। सबसे खास बात यह है कि इस प्रक्रिया में धुआं नहीं निकलता बल्कि केवल पानी की भाप बनती है, इसलिए ये पर्यावरण के लिए बेहद सुरक्षित माना जाता है।
1: ये हाइड्रोजन ट्रेन 3200 हॉर्स पावर की है, 3200 हॉर्स पावर, और सबसे ताकतवर ही नहीं, भारत की हाइड्रोजन ट्रेन सबसे लंबी भी है।
0: इस उपलब्धि के साथ भारत अब दुनिया के उन चुनिंदा देशों की कतार में खड़ा हो गया है जहां रेल ग्रीन एनर्जी से फ्यूचर की दिशा तय कर रही है। भारत की ये ट्रेन 10 डिब्बों की है। इसमें करीब 2600 यात्री सफर कर सकेंगे जो इसे दुनिया में सबसे बड़ी हाइड्रोजन ट्रेन बनाते हैं।
2: जो ग्रीन सेल टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करना, हाइड्रोजन का इस्तेमाल करना, और इसमें कोई पोल्यूशन नहीं होगा, इसमें वेपर्स निकलेंगे, और इसी वजह से इसे एक बड़ी उपलब्धि बताया जा रहा है। और इसका जो किराया है आपको बता दें 5 से 25 रुपए है, तो यानी बहुत ही किफायती। अगर हम बात करें कि लोगों को इससे काफी फायदा भी होगा, कनेक्टिविटी भी बढ़ेगा।
0: जिंद से सोनीपत के बीच चलने वाली इस ट्रेन के यात्री बेहद उत्साहित हैं। उनके लिए ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं बल्कि भारत की स्वदेशी तकनीक की पहचान है। पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर बनी ये ट्रेन टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी बहुत खास है। बेहद एडवांस हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी की मदद से पटरी पर दौड़ने वाली इस ट्रेन से पर्यावरण का भी संरक्षण होता है। इस ट्रेन में हाइड्रोजन लीक, गर्मी और धुएं का पता लगाने वाले कई सुरक्षा सिस्टम भी लगाए गए हैं।
3: सर, इससे हमारे देश के लिए काफी प्रभाव, जैसे आप देख रहे हो आजकल ये युद्ध का टाइम है, तो हमारे जो है सिप उनको आने के लिए बड़ी परेशानी है, तो जो तेल पे डिपेंडेंस है वो खत्म हो जाएगी धीरे धीरे करके, और हमारा देश इंडिपेंडेंट हो जाएगा, तो इसी इंडिपेंडेंस से की ओर एक नया कदम है।
4: ये बहुत अच्छी है जी, पोल्यूशन रहित, शोर भी नहीं है, बड़े आराम से जा सकते हैं, जल्दी पहुंचेंगे,
5: जल्दी पहुंचेंगे। जिंद से सोनीपत पहुंचने में टाइम कितना
4: नहीं है? वैसे तो ट्रेन में 3.5-4 घंटे लगा देती है, वो बीच में रुकती है। हाँ। और बस तो है ही नहीं। हाँ। पहले गुआना जाओ, गुआना से फिर चेंज करो, वो भी प्राइवेट में, बहुत धक्के लगते हैं।
0: ये सिर्फ एक नई ट्रेन की शुरुआत नहीं है बल्कि भारत के ग्रीन ट्रांसपोर्ट मिशन का बड़ा माइलस्टोन है, क्योंकि इस ट्रेन से कार्बन उत्सर्जन कम होता है, प्रदूषण घटता है, साथ ही स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलता है। आने वाले समय में ऐसी ट्रेनों का नेटवर्क बढ़ने से रेल न सिर्फ और आधुनिक बनेगी बल्कि देश के क्लीन एनर्जी मिशन को भी नई रफ्तार मिलेगी। हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन से पीयूष मिश्रा के साथ कमलजीत संधू, गुड न्यूज टुडे।
6: मेडिकल के छात्रों को जिस पल का बेसब्री से इंतजार था, आखिर वो घड़ी आ गई। जैसे ही नीट परीक्षा के परिणाम घोषित हुए, सफल छात्रों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। किसी की आंखों में खुशी के आंसू थे तो कोई अपने दोस्तों और परिवार के साथ जश्न मनाता नजर आया। ऐसे में हमारी आज की 5वीं गुड न्यूज भी यही है, मिलिए नीट के धुरंधरों से। नीट परीक्षा में इस बार 19 छात्रों ने 700 से ज्यादा तो 138 स्टूडेंट्स ने 690 से ज्यादा अंक हासिल किए हैं। वहीं पंजाब के आर्यन गुप्ता और हरियाणा के पंचल बंसल ने 720 में से 715 अंक पाकर ऑल इंडिया टॉप किया है।

0: ये उत्साह, ये उमंग उस जीत की है जिसका इंतजार न जाने कब से था। ये मुस्कान उन अनगिनत दिनों की मेहनत, संघर्ष और धैर्य की जीत की है। ये सिर्फ एक परीक्षा में सफलता नहीं, बल्कि वर्षों की मेहनत, संघर्ष और समर्पण के बाद एक सपने के सच होने की वो खुशी है जिसका इंतजार हर मेडिकल छात्र ने पूरी शिद्दत के साथ किया था। नीट में इस साल करीब 20 लाख स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी थी, जिसमें से 11 लाख 21 हजार छात्रों ने क्वालिफाई किया है। इस बार 19 छात्रों ने 700 से ज्यादा तो 138 स्टूडेंट्स ने 690 से ज्यादा अंक हासिल किए। वहीं पंजाब के आर्यन गुप्ता और हरियाणा के पांचुल बंसल ने 720 में से 715 अंक पाकर ऑल इंडिया टॉप किया है। रैंकिंग में आर्यन को पहली यानी एयर वन और पांचुल को दूसरे स्थान यानी एयर टू पर रखा है।
1: मेहनत तो करी है, जब मैं पढ़ता तब लगता था और मेहनत कर सकता हूँ, बट हाँ पेरेंट्स ने कहा, मम्मा पापा ने कहा कि बहुत मेहनत करी है। और ये है कि पढ़ने का टाइम ज़्यादा होना इतना ज़रूरी नहीं होता, तुम कितना टाइम इफेक्टिवली पढ़ रहे हो। देर पढ़ाई में हमेशा क्वालिटी इज बेटर देन क्वांटिटी। स्ट्रेस ले लेता था तो मेरे पेरेंट्स ने, मम्मा पापा ने और स्पेशली मेरे बड़े भाई ने बहुत मदद करी मुझे इमोशनली शांत करने के लिए और मेंटली स्टेबल और बहुत ज़्यादा साउंड रखने के लिए।
0: आर्यन गुप्ता की इस शानदार सफलता से उनके परिवार में खुशी का माहौल है। परिजन बेटे की उपलब्धि पर गर्व महसूस कर रहे हैं और मिठाइयां खिलाकर इस सफलता का जश्न मना रहे हैं।
2: पहले पेपर में बल्कि स्ट्रेस ज्यादा था, दूसरे पेपर में था चलो रिलैक्स होके देते हैं आराम से और परफॉर्मेंस इसकी बेटर हुई पहले से भी।
3: तो अब एक नए मुकाम के लिए घर से जाएगा बच्चा, तो किस तरह देखते हैं, क्या विशेष है?
2: वी जस्ट बेस्ट द विश द बेस्ट फॉर हिम, खुश रहे, हेल्दी रहे, अच्छी चॉइसेस करे, अच्छे दोस्त बने।
0: आर्यन गुप्ता के अलावा नीट री एग्जाम में फरीदाबाद के पांचुल बंसल ने ऑल इंडिया रैंकिंग में दूसरे स्थान पर रहकर शानदार सफलता हासिल की है और अपने परिवार, शहर और प्रदेश का नाम रोशन किया है।
4: मतलब मेरे को इतनी एक्सपेक्टेशन थी कि टॉप 10 तो आ जाएगा, तो अभी सेकंड आ गया। तीनों को क्रेडिट जाता है, मतलब पापा मेरी हेल्प करते थे फिजिक्स में, स्कूल में को सीबीएसई बोर्ड में बहुत हेल्प करी उन्होंने मेरी, एंड मेरे को कोचिंग इंस्टीट्यूट से भी बहुत हेल्प करी थी। पहले पेपर में मेरे 701 या 706 आए थे, डिपेंडिंग कि एक बोनस होता कि नहीं होता क्वेश्चन, बट अब डेफिनेटली अब तो मेरा बहुत बेटर गया पहले से। तो मतलब थोड़ा तो दुख हुआ कि जब पेपर पहली बार कैंसिल आया तो थोड़ा दुख हुआ था, बाद में फिर चलो रिकवर करके फिर पढ़ाई करना शुरू कर दिया था फिर से मैंने।
5: अब आगे क्या करने की तैयारी है, क्या कहेंगे?
4: मोस्ट लाइकली मेरे को सर्जरी में जाना है, तो और उसके बाद सुपर स्पेशलिटी देख लेंगे। वैसे बहुत सारी फील्ड्स में इंटरेस्ट है मेरा, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ऑर्थोपेडिक वगैरह, तो तब देख लेंगे, पर सर्जरी में आई थिंक ज्यादा इंटरेस्ट है।
0: पांचुल की इस शानदार सफलता से उनके पिता बेहद खुश हैं। बेटे की उपलब्धि पर उन्हें बहुत गर्व है। उनका कहना है कि पांचुल की कड़ी मेहनत, अनुशासन और लगन का ही परिणाम है। परिवार में जश्न का माहौल है और हर कोई इस सफलता को एक यादगार पल के रूप में मना रहा है।
6: फीलिंग वेरी प्राउड एंड आई एम विद द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी, मेहनत बच्चों की रंग लाई एंड नाउ वी आर फीलिंग वेरी हैप्पी फॉर हिज अचीवमेंट्स।
0: परीक्षा के टॉप स्कोरर में 93% से ज्यादा स्टूडेंट्स ने पहली बार परीक्षा दी थी। वहीं क्वालिफाई करने वाले कुल स्टूडेंट्स में 58% से ज्यादा छात्राएं और 55.1% छात्र हैं।
7: बहुत मेहनत लगी, 2 साल तक रोज पढ़ाई करता था मैं और इसमें मेरे पेरेंट्स और टीचर्स ने बहुत साथ दिया और रोज ईमानदारी से पढ़ाई करता था, कोई बेईमानी नहीं करता था। वैसे कोई टारगेट नहीं रखता था मैं 4 घंटों का, लेकिन हाँ लगभग 10 से 12 घंटे भी पढ़ाई करता था और कभी कभार ऊपर नीचे भी करता था। उम्मीद तो मुझे सिलेक्शन की थी खाली, लेकिन तीसरी रैंक की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी और ये हासिल करके बहुत अच्छा लगा।
0: नीट यूजी परीक्षा में इस साल 11 लाख से ज्यादा छात्रों ने सफलता हासिल की है और खास बात यह है कि इन सफल अभ्यर्थियों में 58% से ज्यादा लड़कियाँ हैं। लाखों अभ्यर्थियों के बीच हुए इस कड़े मुकाबले में इन छात्रों ने अपनी प्रतिभा और कड़ी मेहनत के दम पर सफलता हासिल की है और अब उनकी नज़र मेडिकल कॉलेज में दाखिले और डॉक्टर बनने के अपने सपने को साकार करने पर है। दिल्ली से आशुतोष कुमार, लुधियाना से विवेक ढल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे। महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पुलिस ने पिंक पेट्रोलिंग की शुरुआत की है। ऐसे में हमारी आज की छठी गुड न्यूज भी यही है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक पेट्रोलिंग। इस पहल के तहत महिला पुलिसकर्मियों की विशेष टीम स्कूल, कॉलेज, बाजार, कोचिंग संस्थानों और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित गश्त करेगी। इसका उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित माहौल देना है, साथ ही साथ उनके खिलाफ हो रही घटनाओं या वारदातों को रोकना भी है और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत पुलिस सहायता मुहैया कराना है।

0: गुलाबी हेलमेट पहनकर स्कूटी पर सवार ये पिंक पेट्रोलिंग टीम है जिसने ठान लिया है कि अब महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। शहर की सड़कों से लेकर स्कूल, कॉलेज, बाजार और भीड़भाड़ वाले इलाकों तक ये टीम हर उस जगह मौजूद रहेगी जहां महिलाओं को सुरक्षा और भरोसे की सबसे ज्यादा जरूरत है। दरअसल छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए पुलिस ने पिंक पेट्रोलिंग अभियान की शुरुआत की।
1: ये जो आज का अभियान है वो दुर्ग पुलिस द्वारा महिला सुरक्षा के लिए चलाया जा रहा है, जिसमें महिलाएं पिंक पुलिस और ये पिंक हेलमेट के माध्यम से ये जागरूकता अभियान है जिससे महिलाओं और बच्चियों जो जैसे सार्वजनिक स्थान जैसे स्कूल, कॉलेज या जहाँ पे महिलाएं मंडलियां बैठती हैं वहां जाके या बच्चियों की जहाँ पे ट्यूशन क्लासेस चलती हैं या योगा क्लासेस हैं इन सभी क्लासेसों में जाकर के बच्चियों को अवेयर करना है।
0: वैसे ये केवल पेट्रोलिंग कैंपेन नहीं बल्कि महिला सुरक्षा और जागरूकता का अभियान भी है। पिंक पुलिस और पिंक हेलमेट के माध्यम से महिलाओं और बच्चियों को सुरक्षा का भरोसा दिलाने के साथ साथ उन्हें कई हेल्पलाइन और सुरक्षा उपायों की भी जानकारी दी जाएगी।
2: ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि इसमें जो है हमारे सभी थानाओं, शहर के जितने भी थाना हैं उसमें से चार महिलाएं जो रहेंगी वो अपने स्कूटियों में सभी जो हाई मतलब जो हाई स्पॉट्स हैं, हाई पॉइंट्स हैं जहां पर महिलाएं रहती हैं जैसे स्कूल, कॉलेज, पार्क, हॉस्टल्स, तो इन सभी क्षेत्रों में पेट्रोलिंग होगी और इससे महिलाओं की है जो सुरक्षा वो काफ़ी बढ़ेगी और जितने भी पुरुष हैं या फिर जो भी क्रिमिनल माइंडेड पर्सन है उनके ऊपर भी काफ़ी अच्छा प्रभाव होगा और काफ़ी दबाव बनेगा, तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है।
0: दुर्ग जिले के हर थाना क्षेत्र में जहां स्कूल, कॉलेज और छात्राओं की आवाजाही ज्यादा रहती है वहां खास तौर से स्कूल लगने और छुट्टी के समय पिंक पेट्रोलिंग होगी। इसके अलावा उन स्थानों पर भी विशेष निगाह रखी जाएगी जहां असामाजिक तत्वों के जमावड़े की शिकायतें अक्सर मिलती हैं। जिले की सभी महिला अधिकारी और कर्मचारियों को इस कैंपेन से जोड़ा गया है ताकि छात्राओं और महिलाओं को सुरक्षा का एहसास हो और किसी भी तरह की छेड़छाड़ या अपराध की घटनाओं पर तत्काल कार्रवाई की जा सके।
3: हर थाना क्षेत्र में जहां स्कूल है और वहां पे कई जगह पे शिकायत आ रही थी कि असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है, खास तौर से स्कूल लगते समय, छूटते समय, उसी के मद्देनज़र पिंक पेट्रोलिंग प्रारंभ की गई है और ज़िले में जितने भी महिला अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं उन सभी को इस कार्य में लगाया गया है ताकि बच्चियों के स्कूल आना जाना सुरक्षित हो सके और एक सुरक्षा का माहौल उनको महसूस हो।
0: महिलाओं की सेफ्टी को लेकर शुरू की गई ये पहल न सिर्फ कानून व्यवस्था को मजबूत करेगी बल्कि समाज में ये संदेश भी देगी कि महिलाओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उम्मीद की जा रही है कि दुर्ग पुलिस की ये पहल दूसरे जिलों के लिए भी एक मिसाल बनेगी। दुर्ग से रघुनंदन पंडा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: देवभूमि उत्तराखंड में इन दिनों प्रकृति, संस्कृति और आस्था का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। यहां गुरुवार को हरेला मनाया गया जो सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण, हरियाली और समृद्धि का संदेश देने वाला लोक पर्व है। इस पर्व के जरिए लोग अच्छी फसल, सुख समृद्धि और प्रकृति के संरक्षण की कामना करते हैं। ऐसे में हमारी आज की सातवीं और आखिरी गुड न्यूज यही है, पर्यावरण संरक्षण के संकल्प का उत्सव। उत्तराखंड के टिहरी जनपद में हरेला पर्व पूरे उत्साह और पर्यावरण संरक्षण के संकल्प के साथ मनाया गया। इस साल की थीम हर गांव का ये पैगाम, एक पेड़ माँ के नाम के तहत पर्व मनाया गया। टिहरी में सामाजिक संगठनों ने जिले भर में व्यापक स्तर पर पौधारोपण अभियान चलाया। अभियान के दौरान विभिन्न प्रजातियों के लाखों पौधे रोपित किए गए और लोगों को पौधों के संकल्प संरक्षण का संकल्प भी दिलवाया गया, क्योंकि ये पर्व केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण का संदेश देता है।
5: गांव का यही पैगाम है, एक पेड़ माँ के नाम, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है पेड़ माँ के नाम। मैं भी आके यहाँ पे बता भी रही थी कि जब हम कोई भी पौधारोपण करते हैं तो हम एक लाइफ जो है वो जीवन जो है उसकी उत्पत्ति करते हैं और जब वो लगाते हैं तो उसे उसका ही इफेक्ट हमारे ऊपर हेल्थ पे पड़ता है कि हम अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं। इसी मैसेज के साथ सभी जनपद वासियों को हरेला की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसे कि हम जानते हैं कि हम विकास की ओर जाते हैं बट हमारा जो पर्यावरण है उसको संजोने का काम हम सभी का है। हरेला वही एक मैसेज देता है कि पर्यावरण संजोने के लिए कोई और नहीं आएगा, हम ही है, हमें अपने वनों को बचाना है और हमें अपने वन को आगे बढ़ाना है।
6: संदेश देना चाहता हूं कि हम लोग प्रत्येक वर्ष हरेला पर्व मनाते हैं और ये जो हम केवल जो फॉर्मेलिटी ना करें, हम लोग जो है हरेला पर्व मनाने के साथ साथ उन पौधों को भी जीवित रखने का काम करें ताकि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रह सके। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर हम पौधे नहीं लगा सकते हैं तो हम जंगलों में गर्मी के समय आग भी न लगाएं, ये मेरा एक संदेश है और आज हमने सैकड़ों की संख्या यहाँ पर हमने पौधे लगाए।
4: ये थी 7 बजे की 7 अच्छी खबरें। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली।
8: कॉकरोच जनता पार्टी को सुपरस्टार का साथ, जंतर मंतर पर प्रदर्शन में पहुंचे रजनीकांत, मुंबई में डिलीवरी बॉय ने बचाई बच्चे की जान, मासूम बच्ची का प्यारा बदला। वायरल खबरों की पूरी और पक्की पड़ताल देखिए सरगम पंत के साथ फैक्ट चेक शाम 7:34 पर।
9: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you non-stop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
12: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
12: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए,

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती
1: है। Stormy and previously on my show, Carly Pearce shared why she loves award show season.
2: For me, celebrating the people who create country music is about celebrating each other and rooting each other on and being a country music family and community and knowing that we are the generation right now that is going to influence many generations to come.
1: Listen to the Stormy Warren Show on the Big 615 weekdays 7 a.m. to 1 p.m. Central right here on TuneIn.
3: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
6: पुरी में रथ यात्रा के दूसरे दिन भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मौसी के घर पहुंचे भगवान जगन्नाथ। गुंडीचा मंदिर में 7 दिन विश्राम के बाद लौटेंगे वापस। महाराष्ट्र के पंढरपुर में एक भक्त ने भगवान विट्ठल के चरणों में अर्पित की सोने की चरण पादुकाएं, करीब 57 लाख रुपए बताई जा रही है कीमत। देश को मिली पहली हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात, प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा के जिंद में हरी झंडी दिखाकर सोनीपत के लिए रवाना किया।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला।
9: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक। देखिए सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार से फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीरों को नए साजिशी रंग में रंग कर पेश कर दिया जाता है और लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं रही। यहां हर किसी के हाथ में कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकेंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर दी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश कर दी जाती है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा इसका यह होता है कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे इन्हें सच मानकर शेयर करना शुरू कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। तो फैक्ट चेक में आज सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की, जिसके जरिए ये दावा किया जा रहा है कि एक्टर प्रकाश राज और रजनीकांत जंतर मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में पहुंचे। क्या है वायरल दावे और वीडियो की सच्चाई, आपको आगे बताएंगे। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई है जिसके जरिए ये दावा किया जा रहा है कि मुंबई में डिलीवरी बॉय ने अपनी जान जोखिम में डालकर बच्चे की जान बचाई। क्या है वायरल दावे और वीडियो की सच्चाई, आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फैक्ट चेक।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला।
9: दिल्ली के जंतर मंतर पर केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले अनिश्चितकालीन अनशन चल रहा है। यहां सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भूख हड़ताल कर रहे हैं। इस अनशन से जोड़कर सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें अभिनेता प्रकाश राज और कुछ दूसरे लोगों को देखा जा रहा है। कुछ यूजर्स इस वीडियो को शेयर कर ये दावा कर रहे हैं कि अभिनेता रजनीकांत और प्रकाश राज सीजेपी के अनशन में जंतर मंतर पर पहुंचे। वायरल हो रहे वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी ये रिपोर्ट देखिए।
7: दिल्ली में जंतर मंतर पर बीते 3 हफ्तों से कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन जारी है, जिसमें एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक भूख हड़ताल कर रहे हैं। इसी संदर्भ में अब कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि दक्षिण भारतीय एक्टर प्रकाश राज और रजनीकांत ने वांगचुक से मुलाकात की और प्रदर्शन के प्रति अपना समर्थन जताया। वायरल वीडियो में एक मंच पर कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके के पास प्रकाश राज और एक्टर रजनीकांत की तरह दिखने वाले एक शख्स बैठे दिखते हैं। वीडियो में प्रकाश कह रहे हैं कि मैं फिल्मों में चीटिंग करता हूं, पैसे मिलते हैं, वो एक्टिंग है, ये एनएक्टिंग है, वो एक्ट ऑफ आर्ट है, ये एक्ट ऑफ क्राइम है।
10: मैं फिल्मों में चीटिंग करता हूँ, पैसा मिलता है, वो एक्टिंग है, ये एनएक्टिंग है, वो एक्ट ऑफ आर्ट है, ये एक्ट ऑफ क्राइम है।
7: वीडियो को शेयर करते हुए एक फेसबुक यूजर ने लिखा कि प्रकाश राज रजनीकांत पहुँचे जंतर मंतर पर। वहीं कुछ लोग एआई की मदद से भी प्रकाश राज और रजनीकांत के कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में पहुँचने के मैसेज के साथ पोस्टर बनाकर शेयर कर रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
9: दरअसल दिल्ली के जंतर मंतर पर केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले अनिश्चितकालीन अनशन चल रहा है। यहां सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भूख हड़ताल कर रहे हैं। अब इसी से जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल किया जा रहा है। देखिए, इसके जरिए कुछ यूजर्स ये दावा कर रहे हैं कि एक्टर प्रकाश राज और रजनीकांत जंतर मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में पहुंचे। वीडियो में एक मंच पर कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके के पास प्रकाश राज और एक्टर रजनीकांत की तरह दिखने वाला एक शख्स बैठा हुआ नजर आ रहा है। तो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल वीडियो का सच और झूठ जानना हमारे लिए काफी जरूरी हो गया था, लिहाजा फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। तो देखिए, दावे की सच्चाई जानने के लिए हमने सबसे पहले वायरल हो रहे इस वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा, इसे परखा और ध्यान से देखने पर यह समझ में आया कि मंच पर प्रकाश राज के बगल में जो शख्स बैठे हैं उनका चेहरा दूर से तो रजनीकांत जैसा नजर आता है, लेकिन जब इसे काफी क्लोज से देखा गया तो ये साफ हुआ कि ये रजनीकांत नहीं है। हाँ, ये बात सच है कि प्रकाश राज कॉकरोच जनता पार्टी के अभियान को समर्थन देने के लिए जंतर मंतर पर जरूर पहुंचे थे, लेकिन ये खबर हमें कहीं नहीं देखने को मिली कि सुपरस्टार रजनीकांत भी प्रकाश राज के साथ जंतर मंतर पहुंचे थे। क्योंकि अगर रजनीकांत यहां पहुंचते तो ये अपने आप में काफी बड़ी खबर होती और हर मीडिया आउटलेट्स पर यह खबर सुर्खियों में होती, हर जगह इसकी चर्चा हुई होती, लेकिन हमें इसके बारे में कोई रिपोर्ट नहीं मिली, कोई जानकारी नहीं मिली। लिहाजा ऐसे में हमने वायरल वीडियो को सवालों कसौटी पर कसा। तो देखिए कौन से वो सवाल है यहाँ पर। पहला सवाल आपको बताते हैं, पहला सवाल ये है कि मंच पर एक्टर प्रकाश राज के साथ बैठे शख्स की पहचान आखिर क्या है, और दूसरा सवाल ये है कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा है।
10: मैं फिल्मों में चीटिंग करता हूँ, पैसा मिलता है।
7: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर होने लगा, तब फैक्ट चेक टीम एक्टिव हुई और इसका सच और झूठ जानने के लिए पड़ताल में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें इंस्टाग्राम अकाउंट पर 11 जुलाई 2026 को पोस्ट किया गया सीजेपी के प्रदर्शन का एक वीडियो मिला। ये वायरल वीडियो से अलग है, लेकिन इसमें वायरल वीडियो वाले सभी लोग दिख रहे हैं। इसमें प्रकाश राज का जिक्र तो किया गया है, लेकिन रजनीकांत के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। एक YouTube चैनल पर 11 जुलाई 2026 को सीजेपी के अनशन के बारे में वीडियो न्यूज अपलोड की गई थी। इसमें प्रकाश राज के साथ केरल के पूर्व वित्त मंत्री DM थॉमस इसाक को देखा जा सकता है।
10: Because they dream of their future and their
7: वायरल वीडियो में प्रकाश राज के साथ थॉमस इसाक ही है। कोलाज में वायरल वीडियो और इस वीडियो न्यूज में इसाक ही दिख रहे हैं।
10: मैं फिल्मों में चीटिंग करता हूं, पैसा मिलता
7: है। एक अंग्रेजी पेपर के इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी सीजेपी के अनशन में पहुंचे इसाक और प्रकाश राज की तस्वीरें पोस्ट की गई हैं। 11 जुलाई 2026 को की गई इस पोस्ट के अनुसार प्रकाश राज दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रदर्शनकारियों के साथ हड़ताल में शामिल हुए। इसाक और त्रिपुरा विधानसभा में विपक्ष के नेता जितेंद्र चौधरी भी प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे और परीक्षा में कथित गड़बड़ियों को लेकर हो रहे आंदोलन का समर्थन किया। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके के एक्स हैंडल से भी 11 जुलाई 2026 को उस दिन के अनशन की तस्वीरें पोस्ट करते हुए प्रकाश राज और थॉमस इसाक को प्रदर्शन में शामिल होने के लिए धन्यवाद दिया गया। हमें एक्टर रजनीकांत के कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में जाकर समर्थन जताने से संबंधित कोई खबर नहीं मिली। इस तरह हमारी पड़ताल से ये साफ हो गया कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में एक्टर प्रकाश राज के साथ पहुंचने वाला शख्स थॉमस आइजैक है, न कि रजनीकांत। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
10: मैं फिल्मों में चीटिंग करता हूं, पैसा मिलता है, वो एक्टिंग है।
9: सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ यूजर्स ये दावा कर रहे हैं कि एक डिलीवरी बॉय ने अपनी जान जोखिम में डालकर बच्चे की जान बचाई। वहीं कुछ यूजर्स इस वीडियो को शेयर करते हुए ये भी दावा कर रहे हैं कि ये घटना मुंबई की है। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करते हमारी रिपोर्ट देखिए।

0: के आगे कूदकर बच्चे की जान बचाते डिलीवरी बॉय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किया जा रहा है। वीडियो में एक डिलीवरी बॉय सड़क पर जा रहे एक तेज रफ्तार ट्रक के सामने जान की बाजी लगाकर कूदता है और एक मासूम बच्चे को सुरक्षित बचा लेता है। कई सोशल मीडिया यूजर्स डिलीवरी बॉय की बहादुरी की जमकर तारीफ कर रहे हैं और उसे रियल हीरो और सुपरमैन बता रहे हैं। वायरल पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, इसको इंसान नहीं फरिश्ता कह सकते हैं। मुंबई से एक डिलीवरी बॉय का ऐसा कारनामा सामने आया है कि यकीन नहीं होता। पहली नजर में देखने पर तो लगा था बच्चे को बचाने के चक्कर में खुद मारा गया, लेकिन अगले पल लगा उसने अपने साथ साथ बच्चे की भी जान बचा ली। कई यूजर्स इस वीडियो को मुंबई का बताकर भी शेयर कर रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक डिलीवरी बॉय सड़क पर जा रहे एक तेज रफ्तार ट्रक के सामने जान की बाजी लगाकर कूदता है और एक मासूम बच्चे को सुरक्षित बचा लेता है। यूजर्स डिलीवरी बॉय की बहादुरी की जमकर तारीफ कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग इस वीडियो के जरिए ये भी दावा कर रहे हैं कि ये वीडियो मुंबई का है। तो देखिए, सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसे मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में हमने वायरल हो रहे इस वीडियो का सच और झूठ जानने की कोशिश की। फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। तो देखिए, दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे इस वीडियो के हर फ्रेम को देखा और इसे गौर से परखा, और इस दौरान हमें वीडियो में कई खामियां देखने को मिली, जिससे हमें वीडियो के असली होने पर संदेह हुआ, इस पर डाउट हुआ। वीडियो का बैकग्राउंड असामान्य रूप से काफी धुंधला लगता है और सड़क पर चल रही गाड़ियों की रफ्तार वास्तविक नहीं लग रही है। सड़क पर चलने वाले अन्य वाहनों की नंबर प्लेट पूरी तरीके से ब्लर्ड है और बाइक सवारों के चेहरे स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं। वीडियो के आखिरी हिस्से में जब डिलीवरी बॉय बच्चे को लेकर सड़क पर गिरता है तो बच्चे के शरीर का एक हिस्सा ट्रक के पहिए के बेहद करीब आ जाता है, लेकिन उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट भी नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके। लिहाजा ऐसे में हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा। तो देखिए, सबसे पहला सवाल यहाँ पर आपको दिखाते हैं। पहला सवाल यह है कि अगर वीडियो सच्चा होता तो इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी क्यों नहीं सामने आई? और दूसरा सवाल यह कि कहीं जानबूझकर एडिटेड वीडियो को वायरल करके अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही है?
0: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कई की फ्रेम्स को निकाला और सर्च किया। इस दौरान हमें किसी भी विश्वसनीय समाचार वेबसाइट पर ऐसी किसी घटना की कोई रिपोर्ट नहीं मिली। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली जहां इस वीडियो को मुंबई का बताया गया हो। पड़ताल के दौरान हमें एक इंस्टाग्राम यूजर के अकाउंट पर 12 जुलाई 2026 को अपलोड किया गया ये वीडियो मिला। हालांकि वीडियो के कैप्शन में कुछ खास जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन जब हमने इस अकाउंट को खंगाला तो पाया कि इस अकाउंट पर इसी तरह के कई एआई जनरेटेड वीडियो अपलोड किए गए हैं। ऐसे में हमें इस वीडियो को लेकर भी शक हुआ। जेहन में ये सवाल आया कि वायरल हो रहा वीडियो भी एआई निर्मित हो सकता है, लिहाजा हमने वीडियो को एआई डिटेक्शन टूल हाइव मॉडरेशन पर चेक किया। टूल ने अपने विश्लेषण में 96.1% स्कोर के साथ वायरल वीडियो को संभावित एआई जनरेटेड बताया। ट्रक के आगे कूदकर बच्चे की जान बचाते डिलीवरी बॉय के वायरल वीडियो को हमने एआई डिटेक्शन वेबसाइट डीप फेकोमीटर पर भी जांचा। इस टूल के 3 डिटेक्टर्स ने उच्च संभावना के साथ वायरल वीडियो को एआई जनरेटेड बताया। इज इट एआई ने भी अपने विश्लेषण में वीडियो में मौजूद दृश्य को संभावित एआई जनरेटेड बताया। हमारी पड़ताल में मिले साक्ष्यों से स्पष्ट है कि ट्रक के आगे कूदकर बच्चे की जान बचाते डिलीवरी बॉय का ये वीडियो असली घटना का नहीं बल्कि एआई जनरेटेड है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: तो चलिए, इसी के साथ फैक्ट चेक में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे वायरल वर्ल्ड में क्या कुछ हो रहा है।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़।
3: और ट्यून इन रेडियो ब्रिंग्स द वर्ल्ड ऑफ रेडियो स्ट्रेट टू यू। music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world, all in one place. From what's happening now to what you want to hear next, enjoy it all on TuneIn. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. Listen to everything and more on TuneIn.
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं
9: वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।

0: माँ के मुंह तक ले जाती है और माँ भी मुस्कुराते हुए खाना खाती रहती है। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद ऐसा होता है जिसे सुनकर हर कोई हंस पड़ता है। दरअसल बच्ची जैसे ही दूसरा चम्मच लेकर माँ को खिलाने लगती है, माँ उसे थोड़ी देर रुकने के लिए कहती है। माँ कहती है कि अभी उसके मुँह में पहले वाला निवाला है, इसलिए थोड़ा इंतजार करो। लेकिन बच्ची रुकने के बजाय ऐसा जवाब देती है जो पूरे वीडियो की जान बन जाता है। बच्ची मासूमियत से कहती है, नहीं, जब मेरे मुंह में खाना होता है तब आप जल्दी जल्दी खिलाते हो। उसकी ये बात सुनते ही माँ अपनी हंसी नहीं रोक पाती। शायद उसी पल माँ को एहसास होता है कि बेटी ने बड़े प्यारे तरीके से उसकी ही आदत उसे याद दिला दी है।
1: गुन्नी चुन्नी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ला।
2: आस्था की यात्रा का दूसरा दिन, पुरी में चरम पर आस्था, उत्साह और उमंग। हाइड्रोजन ट्रेन का सपना हुआ साकार। जल सुरंग से विंध्य क्षेत्र की बुझेगी प्यास। देखिए अच्छी खबर सच्ची खबर रात 8।
3: Hot Mics with Billy Bush streaming on TuneIn, your front row seat to the American zeitgeist. Get engaged on sports, politics, entertainment, tech, pop culture, hosted by yours truly. It's funny, it's honest, provocative, unfiltered takes, and real talk, no fluff, with guests like Megyn Kelly and Dr. Phil, Candace Owens, Jack Osborne, Will Arnett, Charlie Sheen, all engaging personalities who actually say what everyone else is afraid to. On the go, catch the show live or on demand on the TuneIn app. At home and want to listen on your connected device, just say play Hot Mics with Billy Bush on TuneIn. If you missed the live show or want to catch up, listen on demand with the Hot Mics with Billy Bush podcast, available whenever you want.
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना

0: उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच।
2: अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश न रह जाए बुरी खबर से, परंतु सच्चाई ढूंढ कर लाए ऐसी अच्छी और सच्ची खबरों के साथ। आपके साथ मैं हूं नवजोत सिंधवा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर हम आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। आस्था की यात्रा का दूसरा दिन पुरी में रथ यात्रा के दौरान चरम पर आस्था उत्साह और उमंग, दिखाएंगे तस्वीरें। भारतीय रेल का नया अध्याय, जींद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन का सपना साकार, और जल सुरंग से विंध्य क्षेत्र की बुझेगी प्यास, गुरुत्वाकर्षण से पहुंचेगा नर्मदा का जल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, TIT भोपाल जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स, Sage University, transforming your passion into profession.
2: पुरी में रथ यात्रा के दूसरे दिन भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मौसी के घर पहुंचे भगवान जगन्नाथ, गुनीचा मंदिर में 7 दिन तक विश्राम करेंगे महाप्रभु। देश को मिली पहली हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा की जींद में हरी झंडी दिखाकर सोनीपत के लिए रवाना किया। रेल यात्रियों के लिए गुड न्यूज, देश भर के 75 रेलवे स्टेशन की बदली सूरत, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किया गया पुनर्विकास। आर्थिक मोर्चे के लिए देश के लिए गुड न्यूज, पिछले हफ्ते 96,40,00,000 डॉलर बढ़ा विदेशी मुद्रा भंडार, 67,500 करोड़ डॉलर के पार पहुंचा कुल विदेशी मुद्रा भंडार। अंतरिक्ष में एक और ऐतिहासिक छलांग लगाने की तैयारी, देश का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 कल सुबह 11:30 बजे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से भरेगा उड़ान। शुरुआत करेंगे अच्छी और सच्ची खबरों की। सबसे पहले बात भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की, जिसका आज दूसरा दिन है, और दूसरे दिन भी पूरे जोश और उत्साह के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्त रथ यात्रा में शामिल हुए, और वो भी पूरे भक्ति भाव के साथ रथों को खींचकर गुंडीचा मंदिर ले गए, जहां भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा अगले 7 दिन तक यहीं विश्राम करेंगे और भक्तों को दर्शन देंगे। 7 दिन बाद भगवान वापस मुख्य मंदिर लौट आएंगे और इसी के साथ यात्रा का समापन होगा। इन 7 दिनों के दौरान गुंडीचा मंदिर में क्या क्या होगा, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में।

0: श्रद्धालुओं में वही जोश, वही उत्साह, वही उमंग नजर आया महाप्रभु की रथ यात्रा के दूसरे दिन। पहले दिन रथ यात्रा को विश्राम के लिए जहां रोका गया था, वहीं से पूजा पाठ के बाद दूसरे दिन की यात्रा का श्री गणेश हुआ। जैसे जैसे तीनों रथ गुंडिचा मंदिर की ओर बढ़ते गए, महाप्रभु के भक्तों का जोश और उत्साह भी देखते ही बना। किसी ने दोनों हाथ उठाकर जय जगन्नाथ का जयकारा लगाया, किसी ने आरती उतारी तो किसी ने शीश झुकाकर महाप्रभु को प्रणाम किया, और कोई तो महाप्रभु के मनोहारी दर्शन पाकर भावुक ही हो गया।
1: विश्व प्रसिद्ध गुंडिचा यात्रा महाप्रभु की, ये विश्व में ऐसे भगवान हैं जो खुद अपनी प्रजा, अपने भक्तों को देखने आते हैं साल में एक बार, और अपनी मातृभूमि में रहकर फिर वापसी करते हैं, जिसे हम सब बाहुड़ा यात्रा बोलते हैं। और ये भगवान का एक लीला खेला है, जिसमें भगवान ये कलयुग में विभिन्न प्रकार का अपना रूप दिखाते हैं, और विशेषकर विश्व के लोग, उड़ीसा के लोग, जनसाधारण बहुत अच्छे से रहे हैं। उनके मंगल कामना, सुख कामना के लिए भगवान खुद आते हैं रथ यात्रा में द्वितीया के दिन, और आज तीन ही रथों में भगवान जगन्नाथ का, बड़े भाई बलभद्र का, बहन सुभद्रा का दर्शन हुआ। हम लोग सब अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं, हम सब परिवार आके आज प्रभु के दर्शन किए हैं।
2: बहुत तो अच्छा दर्शन मिला है मुझे, बहुत खुशी है, आनंद भी है जगन्नाथ का, बहुत ज्यादा खुशी है महाप्रभु का।
0: हर साल की तरह इस साल भी गुंडिचा मंदिर पहुंचने के बाद भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ 7 दिनों तक विश्राम करेंगे। इन 7 दिनों के दौरान गुंडिचा मंदिर में रोजाना भगवान की विशेष पूजा, महाप्रसाद का भोग लगेगा, पारंपरिक अनुष्ठान होंगे, और भगवान अपने भक्तों को यही दर्शन देंगे। मुख्य मंदिर की तुलना में गुंडिचा मंदिर में भक्तों को भगवान के बहुत करीब जाने का मौका मिलता है। 5वें दिन हेरा पंचमी का उत्सव मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी, जो मुख्य मंदिर में छूट जाती हैं, भगवान को खोजते खोजते गुंडिचा मंदिर आती हैं और गुस्से में अपने पति भगवान जगन्नाथ के रथ का एक हिस्सा तोड़कर वापस लौट जाती हैं। मुख्य मंदिर में वापसी से ठीक एक दिन पहले गुंडिचा मंदिर में संध्या दर्शन या नवमी दर्शन होता है। ये गुंडिचा मंदिर में भगवान के दर्शन का आखिरी दिन होता है, इसलिए इस दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु मरते हैं। भगवान जगन्नाथ के असंख्य भक्तों में कुछ भक्त 7 समंदर पार से भी आए हैं, जो महाप्रभु की रथ यात्रा में शामिल होकर खुद को बहुत सौभाग्यशाली समझ रहे हैं।
3: जय जय, वी आर कमिंग फ्रॉम कोलंबिया टू गेट द मर्सी ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। लॉर्ड जगन्नाथ इज द लॉर्ड ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड ऑल द डिवोटीज कमिंग फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। दैट्स द ब्यूटी ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ इन जाता यात्रा, दैट फॉर ऑल द डिवोटीज हु कैनॉट गो इनसाइड द मंदिर, ही इज कमिंग आउट टू गेट अ हिज दर्शन। That's the beauty. That is why it's so special for us to come to Jagannath for Ratha Yatra, because we cannot go inside. We respect that. That is the mercy of the Lord. But He's going out to give us His beautiful face, lotus face for us.
0: 7 दिन गुंडिचा मंदिर में विश्राम करने के बाद भगवान अपने मुख्य मंदिर के लिए वापसी की यात्रा 24 जुलाई को शुरू करेंगे, जिसे बहुधा यात्रा कहा जाता है। उनकी ये वापसी यात्रा भी इतनी ही भव्य होगी जितनी भव्य है गुंडिचा मंदिर के लिए प्रस्थान की यात्रा। पुरी से अजयनाथ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: और अगली अच्छी खबर है हरियाणा के जींद से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली हाइड्रोजन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन जींद से सोनीपत के बीच चली, और इसके साथ ही हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली ट्रेन शुरू करने वाला भारत दुनिया का 5वां देश बन गया जिसने यह उपलब्धि हासिल की है। इस हाइड्रोजन ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत है इसे प्रदूषण भी नहीं होता और इसका किराया भी बहुत किफायती रखा गया है।

0: फूलों और गुब्बारों से सजी ये नई नवेली ट्रेन भारतीय रेल के स्वर्णिम इतिहास का नया अध्याय है, जिसके शुभारंभ के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पहुंचे। यहां पीएम ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को सोनीपत के लिए रवाना किया। ये पल भारतीय रेल के लिए ही नहीं बल्कि देश के लिए भी बहुत गौरवशाली बन गया, क्योंकि ये देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन है जिसका उद्घाटन पीएम के हाथों हुआ है। इसके साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जहां हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन्स को चलाया जा रहा है। इससे पहले जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका में ही हाइड्रोजन ट्रेन्स चल रही हैं। यानी हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू करने वाला भारत दुनिया का पांचवा देश बन गया है।
1: देश के लिए गौरव की बात है, विशेषकर इंजीनियर्स के लिए गौरव की बात है कि देश में इतनी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया है। इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप दिस टेक्नोलॉजी, क्योंकि हाइड्रोजन एक न्यू एनर्जी है, न्यू फ्यूल है। इस फ्यूल का ट्रांसपोर्टेशन में कैसे यूज हो, उसकी टेक्नोलॉजी भारत में कैसे डेवलप हो, आत्मनिर्भर भारत की स्वदेशी टेक्नोलॉजी ये बनाना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये आज एक बड़ा माइलस्टोन है रेलवे के लिए कि पूरी टेक्नोलॉजी भारत में बनी, आईपी राइट्स भारत में
0: है। ये ट्रेन पूरी तरह से देश के अंदर ही डिजाइन और डेवलप की गई है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये ट्रेन ना तो बिजली की ओवरहेड लाइन पर निर्भर होगी और ना ही डीजल इंजन पर, बल्कि ये चलेगी हाइड्रोजन फ्यूल से, जो पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं है। रेल मंत्री की तरफ से ये बताया गया कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन को यात्रियों के लिए शुरू करने से पहले इसे सुरक्षा के कड़े मानकों पर कई बार परखा गया है, ताकि सफर के दौरान यात्रियों की सुरक्षा से कोई समझौता ना हो।
1: इसमें सेफ्टी सिस्टम्स का बहुत लंबे समय से बहुत एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट किया गया है। वर्ल्ड की मोस्ट रिप्यूटेड सेफ्टी असेसमेंट एजेंसी है TUV SUD, उनकी तरफ से कंप्लीट इंडिपेंडेंट असेसमेंट किया गया, सेफ्टी असेसमेंट। हर तरीके से गाड़ी में, जैसे आप हाइड्रोजन के सिलेंडर्स देखते हैं, यहाँ पर ये फ्यूल सेल है, ये जो नीचे देख रहे हैं ये फ्यूल सेल है। तो हाइड्रोजन बनती है पानी से, इलेक्ट्रोलाइजर प्लांट पास में लगा हुआ है, पानी से हाइड्रोजन बनती है। उस हाइड्रोजन को इस फ्यूल सेल के माध्यम से फिर से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है। वो इलेक्ट्रिसिटी इज देन यूज टू ड्राइव दी मोटर्स। सो बेसिकली दिस एंटायर प्रोपल्शन सिस्टम, राइट फ्रॉम हाइड्रोजन प्रोडक्शन टू द एक्चुअल यूज इन द मोटर, ये सारे के सारे आईपी राइट्स आज भारत में है। बहुत सारे सेफ्टी सेंसर्स आपने देखे होंगे यहाँ पे लगाए हैं, जैसे ये सेंसर्स अगर आप देखें, हीट डिटेक्टर्स, लीक डिटेक्टर्स, ये सारे के सारे सेंसर्स यहाँ पे लगाए हुए हैं। हाइड्रोजन बहुत ही सेफ फ्यूल इस तरह से है कि 0.25% से ज़्यादा अगर कहीं पर भी हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन इस पर दिखाई देता है तो ऑल सेफ्टी सिस्टम्स विल बेसिकली गेट इनटू एक्टिवेशन। 4% से ज़्यादा होने पे रिस्क होती है, तो 0.25% 1% से कम पे ही इसको कम्प्लीटली सॉल्व किया जाता है। बहुत ही सेफ गाड़ी है।
0: भारत में शुरू हुई हाइड्रोजन ट्रेन दुनिया की हाइड्रोजन ट्रेन के मुकाबले काफी पावरफुल भी है और लंबी भी है। ये बात खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के दौरान बताई।
2: साथियों, जींद से सोनीपत को चलने वाली हाइड्रोजन ट्रेन दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन है। ये हाइड्रोजन ट्रेन 3200 हॉर्स पावर की है, 3200 हॉर्स पावर, और सबसे ताकतवर ही नहीं, भारत की हाइड्रोजन ट्रेन सबसे लंबी भी है। दुनिया में जहां हाइड्रोजन ट्रेन चल रही है वो 3 या 4 कोच वाली है, और भारत ने पहली बार में सीधे 10 कोच वाली हाइड्रोजन ट्रेन चलाकर दुनिया में अपना झंडा गाड़ दिया है।
0: 10 कोच वाली ये ट्रेन अभी जींद से सोनीपत के बीच 89 किलोमीटर रूट पर चलेगी। ये दूरी करीब 2 घंटे में पूरी होगी और कुल 12 स्टेशन पर रुकेगी। इसी दौरान इसकी अधिकतम स्पीड 75 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। इस हाइड्रोजन ट्रेन में कुल 682 सीटें बैठने के लिए हैं। जबकि खड़े होकर सफर करने वाले यात्रियों को मिलाकर लगभग 2600 यात्री एक साथ इस ट्रेन में सफर कर पाएंगे, जिनके लिए किराया 5 से 25 रुपए के बीच रखा गया है। कम किराया रखने के पीछे वजह यह है कि रोजाना सफर करने वाले यात्रियों की जेब पर बोझ न पड़े।
3: हमारी जींद का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मोदी जी ने हमारे जींद को चूज किया और फर्स्ट ट्रेन यहाँ से चल रही है। यहाँ का रेलवे स्टेशन हमने पहले पुराने भी देखे हुए हैं, उसके आज सब कुछ चेंज हो गया।
4: सबसे पहले जो ट्रेन चली थी हमारे हिंदुस्तान में वो 16 अप्रैल 1853 को बॉम्बे से थाना के बीच में चलती थी। 34 किलोमीटर का सफर था, उसके अंदर 14 बोगी लगी थी और उनकी जो लेंथ थी इनर अबाउट 22 फीट के लगभग थी। और आज जो ये ट्रेन चल रही है इसके 78 फुट के लगभग है। और उस समय 3 इंजन इस्तेमाल किए गए थे जो इंग्लैंड से आए थे, साहेब सिंह सुल्तान उनका नाम था, 3 पावर लेके आए थे स्टीम इंजन जो कोयले से और पानी से मिलकर के जो भाप से चलते थे। तो आज बड़े गर्व की बात है कि नॉन पॉल्यूटेड हमारी ये जो ट्रेन है
5: इसमें हमारे 10 कोच लगे हुए हैं, तकरीबन 2600 यात्री इसमें सफर कर सकेंगे और नॉन पोल्यूटेड है, ना कि कोई तेल ना कोई और खर्चा, पानी से हाइड्रोजन बनाएंगे और हाइड्रोजन से हमारी ट्रेन चलेगी, तो हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है।
0: बीते कुछ सालों में भारतीय रेल ने यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने बेड़े में तेजी से वंदे भारत, अमृत भारत और तेजस जैसी गाड़ियां शामिल की हैं। और इसी कड़ी में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का नाम भी जुड़ गया है जो कई आधुनिक सुविधाओं से लैस है। इतना ही नहीं, ट्रेन चलाने वाले लोको पायलट के लिए भी आरामदायक केबिन बनाया गया है। बड़ी बात यह है कि इस ट्रेन के लिए अलग से ट्रैक बिछाने की आवश्यकता भी नहीं है, बल्कि ये मौजूदा ट्रैक पर ही चलने के लिए पूरी तरह माकूल है।
6: सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा, नई टेक्नोलॉजी है, इसमें ज्यादा पावर है, साउंड प्रूफ है, वातावरण में कोई प्रदूषण नहीं है और इसकी पिकअप बहुत बढ़िया है।
7: एडवांस सेफ्टी फीचर्स हैं इसके अंदर सर, इन केस ऑफ फायर ऑटोमेटिक फायर एक्सटिंग्विशर्स इसके अंदर लगे हुए हैं, अराउंड 26 सेंसर्स लगे हुए हैं जो हीट को डिटेक्ट करते हैं, फायर को डिटेक्ट करते हैं, लीकेज को डिटेक्ट करते हैं। सेफ्टी के मामले में सर बिल्कुल टॉप नॉच है सर।
0: खबर ये है कि भारतीय रेलवे ने अपनी हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज योजना के तहत इस तरह की 35 ट्रेन चलाने का फैसला लिया है जो मुख्य तौर पर संवेदनशील और पहाड़ी इलाकों में चलेंगी ताकि वहां के पर्यावरण को प्रदूषण से बचाया जा सके। ग्लोबल वार्मिंग की बढ़ती समस्या को देखते हुए भारतीय रेलवे का ये कदम देश को शून्य कार्बन उत्सर्जन और आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से आगे बढ़ाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: बात करेंगे उस जल सुरंग की जो देश के सबसे लंबी वाटर टनल है। इंजीनियरिंग के इस चमत्कार का नाम है स्लेमनाबाद जल सुरंग। 17 साल से कटनी जिले में बन रही ये सुरंग मध्य प्रदेश के महाकौशल क्षेत्र को विंध्य इलाके से जोड़ेगी। खास बात यह है कि नर्मदा नदी पर बने बरगी बांध से पानी गुरुत्वाकर्षण की मदद से 12 किलोमीटर लंबी स्लेमनाबाद जल सुरंग को पार करेगा। इस वाटर टनल के शुरू होने के बाद जबलपुर, कटनी, मेहर, सतना, रीवा और पन्ना जिलों के लगभग 1450 गांवों की 2.45 लाख हेक्टेयर जमीन को स्थायी सिंचाई की सौगात मिलेगी। यानी कि करीब 1600 करोड़ की लागत से बन रही इस जल सुरंग की वजह से सूखे से जूझने वाले विंध्य क्षेत्र की प्यास बुझ जाएगी।

0: मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र की प्यास जल्द बुझने वाली है। राज्य की जीवनदायिनी नदी नर्मदा का जल अपने मार्ग से करीब 12 किलोमीटर हटकर विंध्य क्षेत्र की तरफ जाएगा। नामुमकिन से दिखने वाली ये घटना स्लीमनाबाद वाटर टनल की वजह से संभव हो पाएगी, जो अद्भुत इंजीनियरिंग का एक नमूना है। भौगोलिक संरचना और मॉनसून की अनिश्चितता के कारण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध विंध्य क्षेत्र पानी की एक एक बूंद के लिए तरसता है। पठार यानी पथरीली जमीन और कम भूजल की वजह से भीषण गर्मी के महीनों में यहाँ जल संकट पैदा होना आम बात है। इसी समस्या को दूर करने के लिए देश की सबसे लंबी स्लीमनाबाद वाटर टनल का निर्माण शुरू हुआ था और उसके 17 साल बाद अब विंध्य क्षेत्र में रहने वाली करीब 2 करोड़ की आबादी का ये लंबा इंतजार खत्म होने जा रहा है। जल सुरंग का 97% काम पूरा हो चुका है, जिसका निर्माण इंजीनियरिंग के क्षेत्र के लिए एक बेहद कठिन चुनौती साबित हुआ।
1: करीब 17 सालों की कठोर मेहनत और चुनौतियों को चीरते हुए आखिरकार जो स्लीमनाबाद टनल है उसका काम लगभग पूरा होने वाला है। इस वक्त हम पहुंच गए हैं उस कठिन इंजीनियरिंग चुनौती के बिल्कुल मुहाने पर, जो करीब 17 सालों तक पहाड़ के सीने को चीर करके आगे बढ़ती रही है। ये करीब 12 किलोमीटर लंबी एक भूमिगत सुरंग है, जिसके भीतर से नर्मदा नदी का पानी विंध्य के इलाकों में पहुंचाया जाएगा। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, 17 साल लग गए हैं इस 12 किलोमीटर लंबी सुरंग को तैयार करने में, क्योंकि विंध्य की कठोर चट्टानों को चीर करके इस टनल को बनाया गया है। और जब काम शुरू हुआ था तब से लेकर अब तक करीब 1600 करोड़ रुपए इस पूरी परियोजना में खर्च हो गए हैं। इस परियोजना के जरिए जो नर्मदा नदी का पानी है वो कटनी, सतना, रीवा, मैयर, इन तमाम जगहों पर पहुंचाया जाएगा और तकरीबन 1400 से ज़्यादा गांव जो हैं वो नर्मदा के जल से सिंचित हो सकेगी वहाँ की खेती। और इसीलिए फिलहाल ये प्रोजेक्ट इतना महत्वपूर्ण हो जाता है मध्य प्रदेश के लिए।
0: हालांकि जो कहने सुनने और दिखने में इतना आसान लग रहा है, उसका निर्माण इतना भी सरल नहीं था। विंध्य पर्वतमाला कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों और पठारों की एक मजबूत श्रृंखला है, जिसको भेद पाना इंजीनियर्स के लिए किसी पहाड़ से कम नहीं। खास बात यह है कि नर्मदा नदी पर बने बरघी बांध से उसका पानी गुरुत्वाकर्षण की मदद से 12 किलोमीटर लंबी स्लीमनाबाद जल सुरंग को पार करेगा। यानी नर्मदा का जल बिजली से चलने वाले भारी भरकम मोटर या फिर पंप के बिना केवल ग्रेविटी के सहारे ही खुद ब खुद बहेगा।
1: यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि क्यों ये परियोजना जो है वो मध्य प्रदेश के विंध्य इलाकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगी, क्योंकि अभी आपको बता दें कि विंध्य का जो इलाका होता है वो बारिश के मामलों में, क्योंकि बुंदेलखंड के पड़ोस से लगा हुआ है विंध्य, तो यहाँ पे ये समस्या आती थी कि बारिश यहाँ पर उतनी नहीं हो पाती जितनी की मालवा और बाकी इलाकों में, महाकौशल के इलाकों में होती है। लेकिन नर्मदा नदी जो कि मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी कही जाती है, उस नर्मदा नदी का पानी अब इस 12 किलोमीटर लंबी सुरंग के जरिए विंध्य के अलग अलग जिलों में पहुंचेगा और तकरीबन 1400 से ज्यादा गांव जो हैं वो विंध्य के इस नर्मदा के जल से आखिरकार अपनी प्यास बुझा सकेंगे, खेतों की सिंचाई हो सकेगी और माना जा रहा है कि इसकी वजह से साल भर अब विंध्य के इलाकों को भी पानी मिल सकेगा। इस सुरंग की खासियत यह है कि नर्मदा नदी का जो पानी है वो बरघी नहर से निकलने के बाद बिना किसी मशीनों की सहायता से केवल गुरुत्वाकर्षण के जरिए इस नहर को पार करेगा। ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, नहर इतनी ऊंची है, ये ऊपर की तरफ का जो हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं वहां तक नर्मदा नदी का पानी रहेगा और पीछे जबलपुर की तरफ से जब ये पानी निकलेगा तो सिर्फ और सिर्फ गुरुत्वाकर्षण के जरिए ही इस पानी को आगे पहुंचाया जाएगा।
0: साल 2008 में शुरू हुई इस परियोजना के लिए शुरुआत में 799 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई थी, लेकिन विंध्य क्षेत्र की जटिल भौगोलिक संरचना और निर्माण के दौरान जल के भारी रिसाव की वजह से सुरंग से जुड़े निर्माण की लागत बढ़ते बढ़ते 1600 करोड़ तक पहुंच गई।
2: इस काम को हम लोग बहुत कठिनाई से निकले हुए हैं इस नर्मदा जल स्तर से। जितना हम लोग कष्ट सहा है कि कोई इसका हिसाब किताब नहीं है। इस पहाड़ को चीरते हुए हम लोग बहुत मेहनत से इसको मशीन को हम लोग निकाला है, जल स्तर बढ़ते हुए भी हमने इस काम को रोका नहीं है। जैसी जैसी मुसीबतें आई हैं वैसे वैसे हमने सामना किया है।
1: यहाँ से हर मिनट में कितना पानी, हर घंटे में कितना पानी नर्मदा का जो है वो आगे जाएगा?
2: पूरा भर भर के जाएगा सर, इसका गेज है ना, इस गेज द्वारा पूरा पैक हो के पानी जाएगा इसका।
1: ये पूरी सुरंग पैक हो जाएगी पानी से?
2: जी अच्छा। पूरी सुरंग पानी से पैक हो जाएगी।
1: और ये पूरा ग्रेविटी के जरिए जाएगा?
2: जी जी जी, ग्रेविटी की वजह से ही जाएगा सर।
1: तो आप देख सकते हैं करीब 100 फीट नीचे पहाड़ से ये पूरी सुरंग जो है निकाली गई है। और ये तकरीबन सुरंग जहाँ से आसानी से अगर आप देखें तो एक बार में दो ट्रक अगल बगल से निकल सकते हैं, इतनी चौड़ी ये सुरंग है और इतनी ऊंची है। लेकिन इस सुरंग से कोई यातायात नहीं बल्कि नर्मदा नदी जो मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी कही जाती है, उस नर्मदा का जल अब महाकौशल के इलाकों से होता हुआ विंध्य के इलाकों तक पहुंचेगा। पहाड़ों के अंदर से नर्मदा यहाँ ग्रेविटी के जरिए बहती हुई विंध्य के सूखे और प्रभावित इलाकों तक पहुंचकर उनकी प्यास बुझाएगी और उनकी जमीन को सिंचित करेगी।
0: स्लीमनाबाद जल सुरंग को इतना मजबूत बनाया गया है कि भीषण भूकंप की स्थिति में भी इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। इंजीनियरिंग मार्वल यानी कि इंसानी दिमाग, विज्ञान और निर्माण कला के इस बेजोड़ नमूने को जमीन से करीब 100 फीट नीचे बनाया गया है, जो अपनी मजबूती की वजह से किसी भी प्राकृतिक आपदा के दौरान 100 साल तक पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। और इन 10 दशकों तक इस ऐतिहासिक जल सुरंग की वजह से जबलपुर, कटनी, मेहर, सतना, रीवा और पन्ना जिले के करीब 1400 से ज्यादा गांवों की 2.45 लाख हेक्टेयर सूखी जमीन की प्यास हमेशा के लिए बुझ जाएगी।
3: हमने अपनी क्षेत्र के समृद्धि के लिए, पानी की पूर्ति के लिए अलग अलग क्षेत्र में काम चालू किए। उसी का परिणाम है कि विंध्य का ये 5 जिलों का पूरा इलाका आज 2.5 लाख हेक्टेयर में न केवल सिंचाई कराएगा बल्कि पीने के पानी की उपलब्धता देगा, उद्योगों के लिए जल राशि देगा। ये हमारा पन्ना, सतना, मैहर, कटनी, पूरा क्षेत्र रीवा बहुत जबरदस्त रूप से लाभान्वित हो। नई टेक्नोलॉजी, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी के ऊपर लोग अपना गांव बसाए तो गांव को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, खेती हो रही तो खेती चली रही है, रेल लाइन है, ऊपर नदी तक जा रही है टनल के नीचे से, नीचे टनल है ऊपर कटनी नदी बह रही है। लेकिन हमारी दोनों जल राशियों में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। लेकिन ये वाकई 12 किलोमीटर की देश की सबसे बड़ी भूमिगत जल राशि को प्रवाह करने की ग्रेविटी के माध्यम से ये टनल है जिसने पूरा विंध्य के क्षेत्र की तस्वीर बदलेगी।
0: हालांकि सुरंग से जुड़ी चुनौतियों से पार पाना इतना आसान नहीं था। सुरंग के निर्माण के दौरान इंजीनियर्स का सामना कठोर मार्बल, लाइमस्टोन, डोलोमाइट की चट्टानों और पानी में घुली चूने की विशाल भूमिगत गुफाओं से भी हुआ, जो सुरंग के निर्माण को रोकने के लिए काफी था। हालांकि इंसानी दिमाग और संकल्प ने हार नहीं मानी, उसी का नतीजा ये है कि अब ये पूरे होने की कगार पर है।
3: एक ऐसा असंभव काम जिस काम के जब शुरुआत की 2008 में तो माना था कि 5 साल में पूरा हो जाएगा, लेकिन अंदर की भूगर्भी रचनाओं की ऐसी जटिल चुनौती थी कि मशीन तो आमतौर पर एक जैसे नेचर के लिए जानी जाती थी, कठोर चट्टानों को काटते काटते अचानक नरम मिट्टी आ जाना, मुरम आ जाना, डोलोमाइट की कोई स्थिति बनती है, कहीं ग्रेनाइट आ जाता, कहीं हार्ड चट्टाने आ जाती है, पानी की कैविटी, कई कारण से चुनौतियां थी। और ऐसा लग रहा था कि जब मशीन, जिस समय हमने टनल चालू की उसके बाद तो मशीन की कंपनियों ने मशीन बंद कर दी, कंपनी भी बंद हो गई, तो ऐसे में बहुत चुनौती थी। लेकिन जब हमारी सरकार बनी आज से 3 साल पहले, तब भी लगा था कि अब यह असंभव है।
0: कटनी जिले में बन रही ये सुरंग विंध्य और महाकालेश्वर क्षेत्र की कृषि अर्थव्यवस्था में बड़े बदलाव की उम्मीद बनकर उभरी है। 1980 के दशक में बरकी बांध बनने के समय ही नर्मदा के पानी को सोन बेसिन तक पहुंचाने की योजना बनाई गई थी, लेकिन विंध्य पर्वत श्रृंखला रास्ते में सबसे बड़ी बाधा बनकर उभरी। पहले यहाँ नहर बनाने की योजना बनी लेकिन तकनीकी रूप से संभव नहीं हो पाया, जिसके बाद जल सुरंग के निर्माण का फैसला लिया गया, जिससे जुड़ा सपना करीब 4 दशक बाद अब पूरा होने जा रहा है, जो मध्य प्रदेश के किसानों की तकदीर और खेती करने के तौर तरीकों को भी बदल सकता है। कटनी से रवीश पाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ, आप सुनते रहे गुड न्यूज, देखते रहे गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
5: क्या आपके बच्चे की शिक्षा में बाधा आ रही है? क्या करियर में बार बार रुकावटें पैदा हो रही हैं? कौन सा करें माता पिता उपाय कि बच्चे का जीवन सुधर जाए? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
6: Sports fans, TuneIn Premium is the ultimate playbook. From live play-by-play of the biggest leagues all season long.
7: Lee looks for someone, finds the right someone. And Curry knocks it down. Tatum lines up the three and nails it.
6: To live sports talk radio to keep you in the game in between games.
8: Because people who all watch games, they hear the voice.
6: The sports action you crave comes alive with TuneIn Premium. Live games, fewer ads, endless action. Upgrade to premium to get in the game.
9: जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
0: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे कि माता पिता ऐसे कौन से उपाय करें जिससे उनके बच्चों की उन्नति हो सके। इसके अलावा बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की, और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक उपाय के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 18 जुलाई 2026, दिन शनिवार, तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, शाम के 6 बजे तक चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं, रात के 11:59 तक राहु काल का समय, प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज आपको ये बता रहे हैं कि माता पिता के उपाय करने से, माता पिता के प्रयास करने से संतान को सफलता कैसे मिल सकती है। पहला प्रश्न यही है कि अगर माता पिता उपाय करें तो संतान को लाभ क्यों होगा, कैसे होगा। देखिए, माता पिता के ग्रह संतान से सीधे जुड़े हुए होते हैं, साथ ही साथ माता पिता की भावना भी संतान से जुड़ी हुई होती है। ऐसे में अगर माता पिता संतान के लिए उपाय करें, उसके लिए प्रार्थना करें, तो इससे संतान को तुरंत लाभ मिलता है। और माता पिता अगर प्रार्थना करें, मंत्र जप करें, उपाय करें, तो संतान के जीवन में आ रही बाधाएं तुरंत दूर हो जाती हैं। यानी माता पिता की भावनाओं की वजह से, माता पिता के मंत्रों और प्रार्थनाओं की वजह से संतान का जीवन बेहतर होना शुरू हो जाता है। देखिए, अगर आपका बच्चा नर्सरी से लेकर के पांचवी कक्षा के बीच में है, पांचवी क्लास के बीच में है, तो माता पिता क्या करेंगे, बच्चे को रोज सवेरे तुलसी के दो पत्ते खिलाइएगा, रोज सुबह और शाम जब समय मिले बच्चों के साथ बैठकर, अपने बगल में बच्चे को बैठाकर 27 बार या 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिएगा। यानी अगर आपके छोटे बच्चे के मन में, उसके दिमाग में गायत्री मंत्र पड़ेगा, तो शुरुआत से ही आपका बच्चा सही रास्ते पर चलने लगेगा। अगर आपका बच्चा छठवीं से लेकर के दसवीं क्लास में है, तो माता पिता क्या करेंगे, बच्चे को फास्ट फूड खाने से बचाइएगा, बच्चा फास्ट फूड कम से कम खाएगा, और बच्चे को एक आदत डलवाइए कि किसी भी तरीके से वो सूर्य भगवान को जल अर्पित करे। और माता पिता हर शनिवार की शाम को घर में सुंदर कांड का पाठ करें, बच्चे को भी उसमें बैठाएं, और बच्चे की उन्नति की प्रार्थना अगर माता पिता करेंगे तो बच्चे के उन्नति की संभावना बन जाएगी। मेष राशि, धन का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, स्वास्थ्य में सुधार होगा, वाद विवाद से बचाव करें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य पर ध्यान दें, संतान को लेकर परेशान ना हो, परिवार में अशांति से बचाव करें, काले चने का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा, करियर में कुछ बदलाव होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा, काम की अधिकता रहेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अगर आपका बच्चा कॉलेज में पढ़ता है, 12वीं की पढ़ाई कर ली है और अब कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, तो उसके उन्नति के लिए माता पिता क्या करेंगे? माता पिता में से कोई भी रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और प्रयास करें कि आपका बच्चा भी सूर्य को जल अर्पित करे। बच्चे के हाथ से स्पर्श करवाकर हर शनिवार को अनाज का या खाने पीने की चीजों का दान करवाएं और माता पिता में से कोई भी अपने बच्चे के लिए रोज सवेरे ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करें, बच्चे के कल्याण की प्रार्थना करें, बच्चे को लाभ होगा। अगर आपका बच्चा इंजीनियरिंग में जाने की तैयारी कर रहा है, इंजीनियरिंग के लिए प्रयास कर रहा है, तो माता पिता क्या उपाय करें कि बच्चे को सफलता मिले? अगर आपका बच्चा इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, तो बच्चे को एक लोहे का छल्ला धारण करवाइएगा। शनिवार को पीपल के नीचे माता पिता में से कोई भी एक सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे और माता पिता में से कोई भी रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करेंगे, बच्चे के कल्याण की प्रार्थना करेंगे, साथ में बच्चा मेहनत करेगा तो इंजीनियरिंग में सफलता मिल जाएगी। सिंह राशि, शिक्षा में सफलता मिलेगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, काम टालने से बचाव करें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, काले चने का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, रुके हुए काम इस समय आपके पूरे होंगे, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, धन लाभ के योग हैं, खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, छोटी यात्रा हो सकती है, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अगर आपका बच्चा मेडिकल क्षेत्र की तैयारी कर रहा है, मेडिकल में जाना चाहता है और आपके बच्चे को सफलता मिले, इसके लिए माता पिता क्या कर सकते हैं? बच्चे को सबसे छोटी उंगली में, राइट हैंड की सबसे छोटी उंगली में एक चांदी का छल्ला धारण करवाइएगा। शुक्ल पक्ष के सोमवार को माता पिता में से कोई भी चंद्रमा को जल चढ़ाएंगे, चंद्रमा को अर्घ देंगे और माता पिता में से कोई भी रोज शाम को 108 बार ओम चंद्रशेखराय नमः, ओम चंद्रशेखराय नमः इस मंत्र का जप करेंगे और अपनी संतान की सफलता की प्रार्थना करेंगे। आपके संतान को मेडिकल के क्षेत्र में सफलता अवश्य मिलेगी। अगर आपका बच्चा एडमिनिस्ट्रेटिव नौकरी की, प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहा है तो माता पिता क्या उपाय करेंगे? बच्चे को सोने या तांबे का एक छल्ला दाहिने हाथ की, राइट हैंड की अनामिका अंगुली में रविवार को प्रातः धारण करवाएंगे। नियमित रूप से माता पिता में से कोई भी रोली मिला करके सूर्य को अर्घ देंगे, जल चढ़ाएंगे और रोज सुबह 108 बार ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करिएगा और अपने बच्चे की सफलता की प्रार्थना करिएगा। तो अगर आपका बच्चा मेहनत करे और माता पिता ये उपाय करें तो बच्चे को सफलता अवश्य मिलेगी। धनु राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी, स्थान परिवर्तन हो सकता है, चोट चपेट से बचाव करें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य का इस समय ध्यान रखें, पारिवारिक विवादों से बचाव करें, धन के लेन देन में सावधानी रखें, काले चने का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, धन का लाभ होगा, संतान पक्ष की उन्नति होगी, पारिवारिक समस्या हल होगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, स्थान परिवर्तन के योग हैं, करियर में सफलता मिलेगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अगर आप अपने वैवाहिक जीवन को अच्छा रखना चाहते हैं तो एक लोटा जल लें, उसमें गुलाब की कुछ पंखुड़ियां डालें और सूर्य भगवान को जल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से आपका वैवाहिक जीवन बेहतर होगा। कि अगर किसी टूटे हुए रिश्ते को, संबंध को फिर से जोड़ना है तो क्या करेंगे? एक सफेद रंग का रुमाल ले लीजिए, इसमें एक रुपए का सिक्का, चुटकी भर चावल और गुलाब का इत्र रखिए। सामान रखते समय उस व्यक्ति का नाम लेते रहिए जिससे आपको संबंध फिर से जोड़ना हो। रुमाल को बांध करके पूजा स्थान पर रख दें। 3 से 6 महीनों के अंदर आपके संबंध जुड़ जाएंगे। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
12: Take it easy with Soft Hits. Soft Hits brings together relaxing pop favorites from the 70s, 80s, and 90s. Familiar songs, easy melodies, and a sound that lets you slow down. Perfect for stepping back and catching your breath. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Soft Hits to start listening now.
9: जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
10: और दुर्भाग्य कहता है
0: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
10: और दुर्भाग्य कहता है
0: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
13: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
13: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
13: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
10: और दुर्भाग्य कहता है
13: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
9: अविश्वास में विश्वास बसता है
13: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें

0: Hey, it's Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
1: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
0: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of the action.
1: They score!
0: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
2: हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़।
2: नवजोत रंधावा, स्वागत है आपका। न्यूज पथ पर रहा जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। देश और दुनिया से जुड़ी पॉजिटिव खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT भोपाल, जेन ज़ीज़ गेटवे टू अनबीटेबल प्लेसमेंट्स। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
2: पुरी में रथ यात्रा के दूसरे दिन भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मौसी के घर पहुंचे भगवान जगन्नाथ। गुंडीचा मंदिर में 7 दिन तक विश्राम करेंगे महाप्रभु। देश को मिली पहली हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात। प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा के जींद में हरी झंडी दिखाकर सोनीपत के लिए रवाना किया।

0: देश को मिली 4700 करोड़ से ज्यादा की विकास योजनाओं की सौगात, प्रधानमंत्री ने पंजाब से किया शुभारंभ। देश में 75 रेलवे स्टेशन का हुआ कायाकल्प। आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए गुड न्यूज, पिछले हफ्ते 96,40,00,000 डॉलर बढ़ा विदेशी मुद्रा भंडार, 67,500 करोड़ डॉलर के पार पहुंचा कुल विदेशी मुद्रा भंडार। अंतरिक्ष में एक और ऐतिहासिक छलांग लगाने की तैयारी, देश की का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 कल सुबह 11:30 बजे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भरेगा उड़ान। शुरू करते हैं न्यूज़पथ का सफर। सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेराह, ये तस्वीरें सुर्खियों में भी हैं और सोशल मीडिया पर भी, इनसे आपका बाखबर होना जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पिंक पेट्रोलिंग सर्विस की शुरुआत की भी हो रही है।
1: स्कूटी सवार महिला पुलिस कर्मियों की ये टोली स्पेशल मिशन के लिए तैयार हो चुकी है। इन स्कूटी पर लगे खास रंग के गुब्बारे और महिला पुलिस कर्मियों के सर पर मौजूद हेलमेट इनके मिशन की पहचान को जाहिर करते हैं। ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की हैं, जहां पिंक पेट्रोलिंग सर्विस की शुरुआत की गई। इसका मकसद महिलाओं, बच्चों, स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स और वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा को और मजबूत बनाना है। पिंक पेट्रोलिंग के तहत महिला पुलिस अधिकारी और कर्मचारी जिले के संवेदनशील इलाकों में लगातार गश्त करेंगी ताकि एक सुरक्षित माहौल का एहसास हो सके। पिंक पेट्रोलिंग टीम ये सुनिश्चित करेगी कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार या छेड़छाड़ जैसी घटनाएं ना हों और अगर कोई असामाजिक तत्व इस तरह की घटना में पाया जाए तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सके। जिले के प्रत्येक थाना क्षेत्र में जहां स्कूल कॉलेज और छात्राओं की आवाजाही अधिक रहती है, वहां विशेष रूप से स्कूल लगने और छुट्टी के समय पिंक पेट्रोलिंग की जाएगी। इसके अलावा उन जगहों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी जहां असामाजिक तत्वों के जमावड़े की शिकायतें मिलती हैं। इस विशेष अभियान से सभी महिला पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को जोड़ा गया है ताकि छात्राओं और महिलाओं को सुरक्षा का एहसास हो। पुलिस कंट्रोल रूम सेक्टर 6 भिलाई से दुर्ग के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने स्कूटी सवार महिला पुलिस कर्मियों की टोली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो अब पिंक पेट्रोलिंग की ड्यूटी को निभाने में जुट गई है। बिहार के गया में एनडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद सफलतापूर्वक जिस मिशन को अंजाम दिया, उसको लेकर लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सब इस टीम की जय जयकार करते नजर आए। गया के गुरपा थाना क्षेत्र के रंगू नगर में 3 साल का एक मासूम बोरवेल में जा गिरा था। इसकी जानकारी मिलने पर एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और फिर बच्चे को बोरवेल से निकालने का ऑपरेशन शुरू हुआ। एनडीआरएफ की टीम करीब 4 घंटे तक कड़ी मशक्कत में जुटी रही और आखिरकार बच्चे को सुरक्षित बोरवेल से बाहर निकाला। एनडीआरएफ की कुशल कार्रवाई को देखकर मौके पर मौजूद हर चेहरा खुशी के साथ चहक रहा था और सब इस टीम की तारीफ करते नजर आए। स्वास्थ्य जांच के बाद डॉक्टरों की टीम ने बोरवेल से निकाले गए बच्चे को स्वस्थ करार दिया। ये तस्वीरें ओडिशा के पुरी के भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की हैं। जय जगन्नाथ की जय घोष के बीच में सुबह के समय लाखों भक्तों ने एक बार फिर से बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ के रथों को खींचना शुरू किया। अंधेरा होने के चलते बृहस्पतिवार को रथ खींचने की प्रक्रिया रोक दी गई थी, जिसके बाद देवता रात भर रथों पर रहे और शुक्रवार सुबह एक बार कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में भक्त रथों को खींचकर गुंडिचा मंदिर की तरफ बढ़ चले। दूसरे दिन लाखों भक्तों ने हर्षोल्लास के साथ रथ खींचकर ये यात्रा पूरी की और भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा मौसी के घर गुंडिचा मंदिर पहुंचे। अब तीनों गुंडिचा मंदिर में 7 दिन रहेंगे और 24 जुलाई को बहुड़ा यात्रा से मुख्य मंदिर लौटेंगे। महाराष्ट्र के पंढरपुर स्थित श्री विठ्ठल रुक्मणी मंदिर में श्रद्धालुओं की अपार आस्था है। आषाढ़ी यात्रा के दौरान इस मंदिर में देशभर से श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए आते हैं। इस दौरान श्रद्धालु नगद दान के साथ साथ सोना चांदी और कीमती भेंट भी चढ़ाते हैं। इसी कड़ी में एक श्रद्धालु ने यहां सोने की पादुका अर्पित की। 446 ग्राम सोने से बनी इस पादुका की अनुमानित कीमत 56,59,000 रुपए है। सोने की पादुका भेंट करने वाले श्रद्धालु ने मंदिर प्रशासन से अपना नाम गुप्त रखने का निवेदन किया। ये तस्वीरें उत्तराखंड के हिमालय में स्थित फ्यूला नारायण मंदिर के कपाट खुलने के मौके की हैं। चमोली जनपद की सुरमय वादियों में लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस मंदिर के कपाट खोलने की परंपरा पुरुष और महिला पुजारी ने निभाई, जिसके बाद यहां दर्शन शुरू हुए। स्थानीय मान्यता के अनुसार फ्यूला शब्द का संबंध फूलों से माना जाता है। प्राचीन समय में ये इलाका रंग बिरंगे जंगली फूलों से भरा रहता था, इसलिए भगवान विष्णु के इस धाम को फ्यूला नारायण कहा जाने लगा। प्रचलित लोक कथा के अनुसार स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी इस इलाके में फूल चुनने आई थी और उन्होंने भगवान विष्णु को पुष्पमाला अर्पित कर उनका श्रृंगार किया था, जिसके चलते आज भी महिला पुजारी भगवान का श्रृंगार करने की परंपरा निभाती हैं। फ्यूला नारायण को उर्गम घाटी का आराध्य देव भी माना जाता है। इस मंदिर के कपाट हर साल श्रावण संक्रांति पर खुलते हैं और नंदा अष्टमी के बाद नवमी तिथि को शीतकाल के लिए बंद होते हैं।
0: बात करते हैं देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन पटरी पर चल पड़ी है। प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन जींद और सोनीपत रेलवे स्टेशन के बीच चलेगी। भारत की ये ट्रेन 10 डिब्बों की होगी और इसमें करीब 2600 यात्री सफर कर पाएंगे। हालांकि जर्मनी ऐसी ट्रेन शुरू करने वाला पहला देश है, लेकिन वहां ऐसी ट्रेनों में सिर्फ 2 से 4 डिब्बे होते हैं।
2: यात्रीगण कृपया ध्यान दें,
3: हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि ये ट्रेन हिंदुस्तान की पहली ट्रेन है जो कि जींद से शुरू होगी
4: और आने वाला समय में पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, हाइड्रोजन ट्रेन HCS का एग्जाम होगा, IAS का एग्जाम होगा, भाई हाइड्रोजन ट्रेन इंडिया में सबसे पहले कहाँ चली, तो जींद में चली।
5: हाइड्रोजन ट्रेन हमारे जींद जैसे शहर से चली है और इसका नाम स्वर्ण अक्षरों में आने ही वाला है। जैसे ही मोदी जी ने झंडी लहराई है और वैसे ही हमारा नाम जो है स्वर्ण अक्षरों में आ जाएगा।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने जींद से सोनीपत के बीच चलने वाली इस ट्रेन को जैसे ही हरी झंडी दिखाई तो फूलों और गुब्बारों से सजी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन पटरी पर आगे बढ़ चली। ये ट्रेन बगैर डीजल और बिना बिजली के सिर्फ पानी और हवा की मदद से दौड़ेगी, लिहाजा भारत भी दुनिया के उन चुनिंदा देशों की कतार में शामिल हो गया जहाँ रेल ग्रीन एनर्जी से फ्यूचर की दिशा तय कर रही है।
6: ये पहली ऐसी ट्रेन है जो सबसे क्लीन फ्यूल पर चलने वाली है, जो हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके इस ट्रेन को चलाया जाता है। इसमें सिर्फ 2 चीजें निकलती हैं, अगर बाय प्रोडक्ट्स की बात करें वो है वाटर, वेपर और हीट। इसके अलावा किसी भी तरह का कोई पोल्यूशन इस ट्रेन से नहीं होता है और क्लीनेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में ये ट्रेन शुमार हो जाती है। भारत उन 5 देशों में अब शुमार हो चुका है जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है। और आपको बताते हैं कि हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन भारत की अपनी टेक्नोलॉजी पर बनाई गई है, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के द्वारा निर्मित ये ट्रेन है।
1: ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं बल्कि भारत की नई रफ्तार का ऐलान है। पटरियों पर दौड़ती ये रेल भविष्य की सोच से चल रही है। फूलों से सजा जींद स्टेशन एक नई शुरुआत का गवाह बना।
7: हमारी जींद का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मोदी जी ने हमारे जींद को चूज किया और फर्स्ट ट्रेन यहाँ से चल रही है। यहाँ का रेलवे स्टेशन हमने पहले पुराने भी देखे हुए हैं, उसके आज सब कुछ चेंज हो गया।
8: आज हम जो इस ट्रेन में बैठे और देख रहे हैं बगैर एसी के, बिल्कुल क्रॉस वेंटिलेशन है इसके अंदर, और ये हिंदुस्तान की पहली ट्रेन जो है जींद से या सोनीपत के बीच में 89 किलोमीटर का सफर तय करेगी। और जींद के लिए नहीं, पूरे हरियाणा के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए ये पूरे गर्व की बात।
1: ये सिर्फ एक नई ट्रेन की शुरुआत भर नहीं बल्कि भारत के ग्रीन ट्रांसपोर्ट मिशन का बड़ा माइलस्टोन है। हाइड्रोजन ट्रेन डीजल ट्रेनों के मुकाबले कहीं ज्यादा इको फ्रेंडली है।
6: क्या कहेंगे आप इस ट्रेन के बारे में, आप बैठे हैं?
5: हाँ जी, मैं इस ट्रेन को लेके बहुत उत्साहित हूँ और मैं बड़ी खुश हूँ कि भाई ये हाइड्रोजन ट्रेन हमारे जींद जैसे शहर से चली है। जींद के ये सौभाग्य है कि यहाँ से ये पहली हाइड्रोजन ट्रेन चल रही है जो बिना पॉल्यूशन के, सिर्फ हाइड्रोजन से ही चलेगी लेकिन पॉल्यूशन जीरो।
6: क्या नाम हुआ बेटा आपका?
9: पाल।
6: पाल कैसा फील कर रहे हैं? पाल की कैसा फील कर रहे हैं आप?
9: इट इज फील अ वेरी प्राउड मोमेंट कि हमारे इस जींद डिस्ट्रिक्ट से एक बहुत ही ज्यादा अच्छी जर्नी स्टार्ट होने वाली है इस हाइड्रोजन ट्रेन में, जिससे जो बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री है।
6: क्या नाम हुआ मैम आपका?
10: रघुवीर कौर।
6: क्या कहेंगे आप इस ट्रेन में आज ट्रेवल करने जा रहे हैं?
10: बड़ा अच्छा लग रहा है।
1: पारंपरिक डीजल इंजन की तरह ये ट्रेन न तो काला धुआं छोड़ती है और न ही इससे पारंपरिक इलेक्ट्रिक ट्रेन की तरह ऊपर भारी भरकम तारों का जाल बिछाने की जरूरत होती है। ये ट्रेन अपने भीतर ही बिजली पैदा करती है और इसके साइलेंसर से धुएं की जगह सिर्फ पानी की भाप बाहर निकलती है, जिससे पर्यावरण को 0% नुकसान पहुँचता है।
2: जहाँ पे हम बात करें कि जो ग्रीन सेल टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करना, हाइड्रोजन का इस्तेमाल करना, और इसमें कोई पोल्यूशन नहीं होगा, इसमें वेपर्स निकलेंगे और इसी वजह से इसे एक बड़ी उपलब्धि बताया जा रहा है। और इसका जो किराया है आपको बता दें 5 से 25 रुपए है, तो यानी बहुत ही किफायती अगर हम बात करें कि लोगों को इससे काफी फायदा भी होगा।
1: पिछले 173 साल में रेल नेटवर्क में अब तक कई बदलाव आ चुके हैं, स्टीम से डीजल, फिर इलेक्ट्रिक, और अब इंडियन रेलवे ने हाइड्रोजन पावर्ड टेक्नोलॉजी डेवलप की है।
3: अपनी लाइफ में लोकोमोटिव मतलब कोयले से चलने वाले इंजन में भी सफर किया है। हम गांव में रहते थे तो वहां से जींद आना होता था हमारा, तो सन 60-61 का याद है मुझे, तो ब्रेटा से बैठते थे तो कोयले का इंजन होता था, लकड़ी के डिब्बे वो होती थी, सीट होती थी, बड़े तंग होके आते थे और जो 2 घंटे का सफर होता था 5 घंटे में 6 घंटे लग जाते थे। उसके बाद हमने डीजल इंजन में सफर किया, उसके बाद बिजली के इंजन में सफर किया, आज हम हाइड्रोजन ट्रेन जो कि पॉल्यूशन मुक्त है, इसमें पॉल्यूशन नाम की कोई चीज नहीं है, बिना फ्यूल के चल रही है, सिर्फ पानी से ही हाइड्रोजन बनाकर उससे ये चलेगी, तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है भी ये ट्रेन हिंदुस्तान की पहली ट्रेन है जो कि जींद से शुरू हो गई है, तो हमारे शहर के लिए, हमारे हरियाणा के लिए गौरव की बात है।
1: ऐसे में इस ट्रेन को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं। इसी कड़ी में ये सवाल भी कि दूसरे देशों की तुलना में हमारे देश की हाइड्रोजन ट्रेन कितनी जुदा है। ये ट्रेन 75 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलेगी, जबकि इसकी डिजाइन स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटा है। जींद से सोनीपत के बीच एक तरफ की दूरी करीब 89 किलोमीटर है, जिसे ये ट्रेन करीब 2 घंटे में तय करेगी। इस दौरान ये 12 स्टेशन पर रुकेगी। हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन जींद सिटी, पांडु पिंडारा, ललित खेड़ा, भापेगा, ईशापुर खेड़ी, बुटाना, खांडराई, गुहाना, राबड़ा, लाठ, मोहाना और बरवासिनी स्टेशन पर रुकेगी। ये ट्रेन 10 डिब्बों की है और इसमें करीब 2600 यात्री सफर कर पाएंगे।
6: ये पहली ऐसी ट्रेन है जो हाइड्रोजन फ्यूल पर चलेगी और इस ट्रेन की अगर खासियत की बात करें तो इसमें 10 डब्बे हैं, 8 ट्रेल कार हैं, 2 इंजन हैं और ये जो इंजन है वो पूरी तरह से हाइड्रोजन फ्यूल के ऊपर काम करते हैं। इसमें एक केमिकल रिएक्शन होता है जो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और एक मेम्ब्रेन के मिलने के बाद बनता है और इस केमिकल रिएक्शन से बिजली का उत्पादन होता है और उसी बिजली से ये ट्रेन चलती है। जींद से सोनीपत के बीच में ये ट्रेन चलने जा रही है, जिसकी मैक्सिमम स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटा है। फिलहाल अगर हम बात करें तो इसको 75 किलोमीटर प्रति घंटे पर सेट किया गया है और इस ट्रेन में 2600 यात्री एक बार में ट्रैवल कर सकते हैं।
1: जींद में देश का सबसे बड़ा रेलवे हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग प्लांट भी बनाया गया है। यहां ट्रेन में हाइड्रोजन भरने की पूरी व्यवस्था है। रेलवे के अनुसार इन ट्रेन में हाइड्रोजन भरने के लिए जींद में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किया गया है। यहां पानी को इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया के माध्यम से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित किया जाता है। इसके बाद तैयार हाइड्रोजन को उच्च दबाव वाले टैंक्स में जमा किया जाता है और वहीं बनाए गए विशेष फ्यूलिंग स्टेशन पर ट्रेन में भरा जाता है। इसके लिए सामान्य रेलवे स्टेशन पर अलग से फ्यूल स्टेशन नहीं बनाए गए हैं। पायलट परियोजना के तहत जींद में ही ये विशेष सुविधा विकसित की गई है। इनमें कार्बन उत्सर्जन कम होता है, प्रदूषण घटता है, साथ ही स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा भी मिलता है। बता दें कि पिछले 12 सालों में तेज इलेक्ट्रिफिकेशन से डीजल पर निर्भरता काफी कम हुई है और अब 99% से ज्यादा ब्रॉड गेज रूट बिजली से चल रहे हैं और आने वाले समय में हाइड्रोजन ट्रेन्स का नेटवर्क बढ़ने से रेल न सिर्फ और आधुनिक बनेगी बल्कि देश के क्लीन एनर्जी विजन को भी नई रफ्तार मिलेगी। वहीं रेलवे आगे चलकर कालका शिमला जैसे हेरिटेज रूट पर भी हाइड्रोजन ट्रेन चलाने पर विचार कर रहा है। दुनिया में हाइड्रोजन ट्रेन्स का चलन अभी शुरुआती दौर में ही है। जर्मनी ऐसी ट्रेन शुरू करने वाला पहला देश था, जबकि फ्रांस, इटली, चीन और जापान जैसे देशों में भी इस पर काम जारी है, लेकिन वहाँ ऐसी ट्रेन में सिर्फ 2 से 4 डिब्बे ही होते हैं, जबकि जींद से चलने वाली हाइड्रोजन ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं। साल 1853 में देश की पहली पैसेंजर ट्रेन वजूद में आई। उसके बाद से अब तक इंडियन रेलवे ने काफी लंबा सफर तय किया है। हरियाणा के जींद से कमलजीत संधू और पीयूष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: पंजाब के जालंधर में प्रधानमंत्री मोदी ने किया विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास। चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें मौजूद हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए की रेलवे और सड़क बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य संपर्क यानी कनेक्टिविटी को मजबूत करने के साथ ही यात्रियों की सुविधाओं में सुधार कर क्षेत्र में आर्थिक विकास को रफ्तार देना है। ये सेवाएं पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के बीच संपर्क को मजबूत करेंगी। इन परियोजनाओं में 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। पीएम मोदी ने अमृतसर वाराणसी के बीच चलने वाली संत रविदास एक्सप्रेस ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाई, जिससे दो प्रमुख आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों के बीच सीधा रेल संपर्क स्थापित होगा। अमरनाथ यात्रा अपनी रफ्तार से आगे बढ़ती जा रही है। अब तक करीब 3.5 लाख श्रद्धालु पवित्र गुफा पहुंचकर बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से अमरनाथ यात्रा के लिए कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच 4,640 श्रद्धालुओं का एक नया जत्था रवाना हुआ। इन सब के बीच तीर्थ के पुजारी यात्रा के आध्यात्मिक महत्व और भक्तों के अनुभव किए जाने वाले दिव्य जुड़ाव के बारे में बताते हुए भी नजर आए। यूपी के प्रयागराज में यमुना के तट पर स्थित प्राचीन मनकामेश्वर मंदिर में श्रावण मास के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू किया गया है। मंदिर परिसर में जगह जगह श्रद्धालुओं के लिए नोटिस बोर्ड लगा दिया गया है, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि मंदिर पवित्र साधना का स्थल है। यहाँ पर महिलाएं और पुरुष भक्ति भाव से प्रवेश करें। महिलाएं और युवतियां छोटे और भड़कीले कपड़े पहनकर मंदिर में प्रवेश न करें। वो शालीन कपड़ों में पूरा शरीर ढक कर मंदिर में आए। पुरुषों से भी शालीन कपड़ों में ही मंदिर में आने के लिए कहा गया है। 30 जुलाई से शुरू हो रहे श्रावण मास में भारतीय परिधान में ही श्रद्धालु मंदिर में रुद्राभिषेक कर पाएंगे। महिलाओं के लिए साड़ी या सूट और पुरुषों के लिए धोती पहनना अनिवार्य होगा।
0: न्यूज़पथ के सफर में अब बात करेंगे मौसम की, जिसको लेकर अच्छी खबर सामने आई है। देश के कई हिस्सों में मानसूनी बादलों के बरसने के आसार है। जगह जगह बादलों ने डेरा जमा लिया है। दिल्ली में भी मौसम में बदलाव का अनुमान है और यहां भी मौसम विभाग की ओर से बारिश का अनुमान जताया गया है। दिल्ली के अलावा यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश से लेकर कई राज्यों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। पहाड़ों में भी जोरदार बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम के बदले मिजाज के बारे में जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए।

0: प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर रफ्तार पकड़ता नजर आ रहा है। कहीं कहीं बारिश भी हो रही है और गुड न्यूज ये है कि देश के आधे से ज्यादा हिस्सों में बादलों ने डेरा जमाया हुआ है। बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर एरिया की वजह से यूपी बिहार समेत पूर्वोत्तर में बारिश देखने को मिल रही है। इन जगहों पर अगले 7 दिनों तक तेज बारिश का अलर्ट है। ऑल इंडिया वेदर अपडेट्स के मुताबिक भूमध्य रेखा के पास भी एक और सिस्टम एक्टिव हो रहा है। बंगाल की खाड़ी में सिस्टम के साथ ही इस सिस्टम के एक्टिव होने से 20 से 30 जुलाई के बीच मध्य प्रदेश के साथ ही उत्तर और मध्य भारत में बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार 17 से 22 जुलाई के बीच उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में भारी बारिश की संभावना है। मानसूनी ट्रफ लाइन के हिमालय की तराई की ओर खिसक जाने से दिल्ली एनसीआर और उत्तर पश्चिम भारत में पिछले कुछ दिनों से बारिश थम गई थी। इसके चलते उमस और गर्मी बढ़ गई थी, लेकिन अब नए मौसमी तंत्र के असर से बारिश का दौर शुरू होने की पूरी संभावना है, जिससे उमस और गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार 17 से 19 जुलाई के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 20 जुलाई से हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब में बारिश की गतिविधियों में तेजी आने का अनुमान जताया गया है। 20 से 22 जुलाई के दौरान इन जगहों पर कहीं कहीं भारी बारिश भी हो सकती है।
1: दिल्ली में मौसम अचानक सुहाना हो गया। तेज कड़कती धूप ने अचानक करवट ली और दिल्ली के आसमान पर बादल छा गए। मौसम विभाग की भविष्यवाणी एक बार फिर सच साबित हुई और अब मौसम विभाग ने राहत देने वाली बातें भी कही हैं। उनका ये कहना है कि अगले 2 दिन हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, हवाएं चलेंगी हल्की, लेकिन 20 और 21 तारीख तक और 22 तारीख तक भी हो सकता है कि झमाझम बारिश के आसार बन रहे हैं, यानी चौमासे में पावस आराम से झरेगा। लिहाजा बस अब तैयार हो जाइए, अगले 3-4 दिन 33 से 38 डिग्री तक तापमान रहेगा और जाहिर है कि जब बारिश होती है तो तापमान गिरता है और तापमान गिरने के साथ ही यहाँ सुहानी अगर हवा चलती रहे तो लोगों को बारिश से उतनी दिक्कत नहीं होगी। और लेकिन जब हवा नहीं चलती है उस समय उमस ज़्यादा सताती है। मौसम विभाग ने कहा है अगले कुछ दिन या अगला पूरा हफ्ता राहत भरा होगा।
0: पहाड़ी राज्यों में और ज्यादा जोरदार बारिश होने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार 18 जुलाई से उत्तर पश्चिम भारत में एक नया पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव होने वाला है, जिसकी वजह से हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश हो सकती है और 23 जुलाई तक राज्य में लगातार बारिश की गतिविधियां बनी रह सकती हैं।
2: मानसून एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में एक्टिव होगा और जिसका असर जो है पूरे प्रदेश में 18 जुलाई से मिलना चालू हो जाएगा, जिसके वजह से हल्के से मध्यम स्तर तक की बारिश का जो दौर है 18 जुलाई से लेकर के लगभग 23 जुलाई तक प्रदेश के सारे जिलों में हमें देखने को मिलेगा। मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो साथ ही मानसून एक्टिव होने के बाद जो है भारी बारिश का दौर भी एक बार प्रदेश में फिर से हमें 18 जुलाई से देखने को मिलेगा और ये भारी बारिश का दौर जो है लगातार मिड हिल्स में और उससे लगे हुए मैदानी इलाकों में हमें देखने को मिलता रहेगा।
0: हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में अच्छी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। यहाँ बारिश को लेकर अलर्ट भी है।
2: मुख्यतः अगर हम बात करें तो 18 और 19 जुलाई के लिए भारी बारिश का अलर्ट हमने जारी किया हुआ है और वहीं पे 20 और 21 जुलाई को भारी से अत्यधिक भारी बारिश भी हमें कुछ एक जिलों में देखने को मिलेगी। ऑरेंज अलर्ट हमने 20 और 21 जुलाई के लिए, जबकि येलो अलर्ट 18 और 19 जुलाई के लिए प्रदेश के कई जिलों के लिए हमने जारी किया हुआ है। मुख्य रूप से जो है इस ये जो मानसून एक्टिव होने वाला है 18 से 23 जुलाई के बीच में, इसका सबसे अधिक जो असर है वो हमें कांगड़ा जिला, चंबा जिला, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर के साथ साथ बिलासपुर जैसे जिलों में सबसे अधिक प्रभाव हमें देखने को मिलेगा और साथ ही जो अन्य जिले हैं चाहे वो किन्नौर हो, लाहौल स्पीति हो, सोलन जिला हो, इन जिलों में भी हमें काफी अच्छी बारिश इस पीरियड में देखने को मिलेगी।
0: हिमाचल प्रदेश के मध्य पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन, मडस्लाइड और फ्लैश फ्लड जैसी स्थितियों का खतरा बढ़ सकता है और इसके चलते ही मौसम विभाग ने एक विशेष एडवाइजरी भी जारी की है और स्थानीय लोगों साथ ही पर्यटकों को 18 से 23 जुलाई के दरमियान नदी नालों से पूरी तरह दूरी बनाए रखने की अपील की है। हिमाचल प्रदेश के अलावा जम्मू कश्मीर में भी 18 जुलाई से भारी बारिश होने का अनुमान है, जबकि उत्तराखंड में 22 जुलाई तक अच्छी खासी बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। इसी दौरान इन पहाड़ी राज्यों के कुछ हिस्सों में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश होने का भी अनुमान है।
3: हिमाचल प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर से रफ्तार पकड़ने जा रहा है। मौसम विभाग का ये साफ तौर पर कहना है कि आने वाले 24 घंटों के बाद अब एक बार मॉनसून रफ्तार पकड़ेगा और मध्यवर्ती और जो निचले इलाके हैं उनमें से बहुत से ऐसे ज़िले हैं जहां पर अब भारी से बहुत भारी बारिश जो है वो हो सकती है। इस बाबत ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का ये कहना है कि सोलन, कांगड़ा, शिमला और सिरमौर के कुछ एक ऐसे इलाके हैं जहां पर भारी से बहुत भारी बारिश होगी और इस बाबत ऑरेंज अलर्ट जो है वो यहां पर जारी किया गया है। वहीं जो निचले इलाके हैं अब भारी बारिश अगर यहां पर होती है तो निचले इलाकों में फ्लैश फ्लड या बाढ़ जैसी परिस्थितियां जरूर यहां पर हो सकती हैं। मौसम विभाग का ये भी कहना है कि आने वाले दिनों में लोगों को थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है और इस बाबत एक एडवाइजरी जारी की गई है।
0: इन सब के अलावा देश के और हिस्सों में भी या तो बारिश हो रही है या फिर बादलों के बरसने के आसार बने हुए हैं। शिमला से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: न्यूज पथ पर आगे धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की तमाम अहम खबरें मौजूद है। इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी और जेब से। तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूटना चाहे, इसलिए चलिए धन बाजार की खबर ले आए।
5: शुक्रवार को शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी देखी गई। पिछले ट्रेडिंग सेशन में सुस्त कारोबार के बाद सेंसेक्स 964 अंक की बढ़त के साथ 78,151.45 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 261 अंक चढ़कर 24,334.30 पर बंद हुआ। ट्रेडर्स का कहना है कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में मजबूती से बाजार का मूड बेहतर हुआ है। शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के मुताबिक दिल्ली में सोने की कीमत 800 रुपए घटकर 1,45,500 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। वहीं चांदी की कीमत भी 2,000 रुपए गिरकर 2,22,500 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। लगातार चार दिनों की गिरावट के बाद शुक्रवार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के संभावित दखल की वजह से रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 14 पैसे बढ़कर 96.28 पर बंद हुआ। फॉरेक्स ट्रेडर्स ने कहा है कि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव ने ग्लोबल ऑयल की कीमतों को बढ़ा दिया है, जिससे स्थानीय मुद्रा पर दबाव बना हुआ है।
4: रणबीर की फिल्म रामायण के ट्रेलर लॉन्च का अब हो रहा है इंतजार। इसी के साथ ऐसी कई और खबरों को देखने के लिए रुक करते हैं फिल्मी मोड़ का।
5: रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी स्टारर फिल्म रामायण का इंतजार फैंस बेसब्री से कर रहे हैं। इस बीच सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी CBFC ने बगैर किसी कट या आपत्ति के फिल्म के दो ट्रेलर को पास कर दिया। एक रिपोर्ट के अनुसार CBFC ने रामायण के दोनों ट्रेलर को यू यानी अनरिस्ट्रिक्टेड रेटिंग के साथ पास कर दिया। मतलब यह कि दोनों ट्रेलर सभी उम्र के दर्शकों के देखने के लिए उपयुक्त हैं। एक ट्रेलर का नाम रामायण 3D है तो दूसरे का नाम थिएट्रिकल ट्रेलर रामायण 3D है। अब इंतजार ट्रेलर के देखने का है, जिसे भारतीय समय के हिसाब से 24 जुलाई को अमेरिका के सैन डिएगो में होने वाले कॉमिकॉन इवेंट में लॉन्च किया जाना है।
6: लेकिन वही प्रेमिका
5: फिल्म आर्यभट्ट का जीरो रिलीज होने के लिए तैयार है। एक दिन पहले गुरुवार को ही मेकर्स ने इस फिल्म का टीजर रिलीज किया, जिसमें एक ऐसे युवा की झलक देखने को मिलती है जो दिल टूटने, बार बार मिली नाकामियों, परिवार की उम्मीदों और समाज की सोच से जूझ रहा है। टीजर की शुरुआत TV न्यूज बुलेटिन से होती है। इस फिल्म में हिमांशु कोहली, रवि किशन, सोनल सहगल, दर्शना बनिक, नरेश वोहरा, अलका अमीन और नीरज सूद जैसे कलाकार अहम भूमिका में दिखेंगे। कमल चंद्रा निर्देशित फिल्म आर्यभट्ट का जीरो 7 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
7: लेकिन मेरा आज तक कुछ अच्छा नहीं हुआ।
5: फिल्म काला हिरण द बैटल फॉर लेगेसी का टीजर रिलीज कर दिया गया, जिसमें शुरुआत से लेकर आखिर तक कोर्टरूम ड्रामा देखने को मिलता है। टीजर की शुरुआत अभिनेता गोविंद नामदेव की आवाज से होती है। जैसे जैसे टीजर आगे बढ़ता है, कहानी में सस्पेंस बढ़ता हुआ नजर आता है। भरत एस श्रीनेत निर्देशित इस फिल्म में काशिफ इकबाल, मुकेश तिवारी, गोविंद नामदेव, कमलेश सावंत और नरेश गोसाई जैसे कलाकार नजर आएंगे।
8: नहीं चलाई थी हमारे गुरु जम्बेश्वर भगवान के उसूलों पे गोली मारी थी।
9: ये आदमी सरासर झूठ बोल रहा है।
10: वो एक्सीडेंट नहीं था माय लॉर्ड, वो स्टारडम के सबसे ऊंचे पायदान पर खड़े इनके मुवक्किल का वो शौक था जो इन्होंने कानून और बिश्नोई समाज की भावनाओं को पैरों तले कुचलकर पूरा किया था।
4: और न्यूज पथ पर आगे बढ़े उससे पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
4: पुरी में रथ यात्रा के दूसरे दिन भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मौसी के घर पहुंचे भगवान जगन्नाथ। गुंडीचा मंदिर में 7 दिन तक विश्राम करेंगे महाप्रभु। देश को मिली पहली हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद में हरी झंडी दिखाकर सोनीपत के लिए रवाना किया। देश को मिली 4700 करोड़ से ज्यादा की विकास योजनाओं की सौगात। प्रधानमंत्री ने पंजाब से किया शुभारंभ। देश भर में 75 रेलवे स्टेशन का हुआ कायाकल्प। आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए गुड न्यूज। पिछले हफ्ते 96,40,00,000 बढ़ा विदेशी मुद्रा भंडार। कुल विदेशी मुद्रा भंडार 67,500 करोड़ डॉलर के पार। अंतरिक्ष में बड़ी छलांग लगाने की तैयारी। देश का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 कल सुबह 11:30 बजे श्रीहरिकोटा से भरेगा उड़ान। न्यूज़पथ पर आगे बढ़ेंगे। थोड़ी देर वायरल चौक पर ठहरकर उन वीडियोस को देख लेते हैं जिन्हें सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है, क्योंकि इनमें कुछ हंसाने वाले हैं और कुछ इमोशनल करने वाले हैं।
12: ये वायरल तस्वीरें एक पिता की अपने बच्चे को किसी भी परिस्थिति में पढ़ाने की प्रतिबद्धता की तस्दीक करती हैं। नदी का बहाव भयंकर और स्कूल उस पार, इसलिए नदी पार करना जरूरी था। तब एक पिता ने वही किया जो एक जिम्मेदार शख्स करता। तेज बहाव में पिता ने बेटे को कंधे पर बिठाया और उसे पार ले गए। पिता के कर्तव्य पालन का ये वीडियो पश्चिम चंपारण का बताया जा रहा है और लोग पिता के प्रति सम्मान व्यक्त कर रहे हैं। तो वहीं पिता का ये एक्शन बच्चे के लिए भी एक लाइफ टाइम मेमोरी बन गया है। देखिए स्केटिंग कर रहे इस युवा का जोश और रफ्तार। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें खूब देखी जा रही हैं। एक रफ्तार में चल रही कार को पकड़कर ये स्केटर अपने स्केटिंग टैलेंट के साथ संतुलन और तालमेल का भी परिचय दे रहा है। हालांकि लोग उसके एक्ट पर उसकी सुरक्षा को लेकर भी चिंता जता रहे हैं और वहीं रफ्तार के शौकीन तो वायरल तस्वीरें देखकर कह रहे हैं कि जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए धीरे धीरे ना चलें। बच्चे जानवरों और पक्षियों के साथ खूब आनंद लेते हैं। अब इस छुटकू को देखिए जरा, कौओं के बीच अपने स्नैक्स का पैकेट लेकर पहुंच गया है। अब एक कौआ लगा बच्चे का पैकेट छीनने। पहले तो बच्चा उसे भगाने लगा, मानो कह रहा हो कि अपना काम करो, लूट मचाना गलत बात है। लेकिन फिर बच्चा उसे अपने हाथ से पैकेट देने लगता है, मगर वो नहीं लेता। तब बच्चा अपने पैकेट कौओं के बीच पटक देता है और तब वो कौआ जो बच्चे से पैकेट छीन रहा था तुरंत पैकेट चोंच में दबाकर उड़ जाता है। सोशल मीडिया पर कौओं और बच्चों की ये शरारत जमकर वायरल है और लोगों का दिल छू रही है। सोशल मीडिया पर ये असली भारतीय जुगाड़ जबरदस्त वायरल हो रहा है। बाइक और ऑटो का ऐसा मिश्रित जुगाड़ू वाहन शायद आपने पहले कभी ना देखा हो। सड़क पर इसे चलता देख हर कोई हैरान है। हालांकि बैठने वाले तो इसका आनंद उठाते दिखाई दे रहे हैं और तस्वीरें देखने वाले लोग बैठे हुए लोगों की चिंता तो कर रहे हैं, लेकिन इस जुगाड़ को सराहे बिना नहीं रह पा रहे। इन तस्वीरों को देखकर अनायास यही कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। एक चतुर चाला गिलहरी को देखिए जरा, कैसे अपने पीछे पड़े इस डॉगी को अपनी सूझबूझ से थकाकर ही दम लेती है। वैसे कुत्ते और गिलहरी की ये लुका छिपी यूजर्स को खूब पसंद आ रही है और लोग उनका ये खेल पसंद कर रहे हैं। वहीं गिलहरी की चतुराई को भी खूब सराह रहे हैं।
4: और न्यूज़पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी तीसरी भाषा पर सुप्रीम चिंता की। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 9वीं कक्षा के सिलेबस में 3 भाषा की पढ़ाई शामिल किए जाने की CBSE की पॉलिसी पर चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा है कि अगर छोटी क्लास से पॉलिसी शुरू की जाती तो बच्चों के लिए ज्यादा आसानी होती। कोर्ट ने कहा कि वो 9वीं क्लास में वैसे ही बच्चों पर पढ़ाई का इतना बोझ होता है जिसकी वजह से उनमें तनाव रहता है। जस्टिस बीबी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने मौखिक रूप से केंद्र सरकार से कहा है कि नौवीं कक्षा से तीसरी भाषा लागू नहीं की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में तीन भाषाओं के फॉर्मूले को चुनौती दी गई है। तमिलनाडु सरकार ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। राज्य सरकार ने केंद्र पर तीसरी भाषा के रूप में हिंदी थोपने का आरोप लगाया। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तीसरी भाषा हिंदी के बजाय संस्कृत भी हो सकती है। हालांकि कोर्ट ने तीसरी भाषा के नियम पर सहमति तो जताई है, लेकिन नौवीं क्लास से लागू करने पर चिंता भी जताई है। नौवीं के बजाय पांचवीं छठी कक्षा से इसे लागू करने की सलाह दी है, ताकि छात्र इसे आसानी से सीख और समझ सके। सीबीएसई ने इसी साल से नौवीं में तीन भाषाओं का पैटर्न लागू किया है, जिसमें भाषा का मूल्यांकन होगा और अंक भी मिलेंगे। याचिका में मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें राज्य के प्रत्येक जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय स्थापित करने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया था। हालांकि तमिलनाडु सरकार लंबे समय से राज्य में जवाहर नवोदय स्कूलों की स्थापना का विरोध करती रही है। उसका कहना है कि इन स्कूलों में लागू थ्री लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर उसे आपत्ति है। इस मुद्दे पर हमने दिल्ली में कुछ छात्रों से बात की, उनकी राय जाननी चाहिए।
13: सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई के त्रिभाषा फार्मूले यानी नौवीं क्लास में तीन भाषाएं पढ़ाए जाने की प्रक्रिया पर चिंता जताई है। जस्टिस नागरत्ना की कोर्ट ने ये साफ कहा कि जिस तरह से नौवीं कक्षा में तीन भाषा फार्मूले को नीति को लागू किया जा रहा है, इससे उन्हें चिंता इसलिए है क्योंकि इससे बोर्ड की परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों पर ज्यादा भार पड़ जाता है। अगर सरकार तीन भाषा सिखाना चाहती है छात्रों को, तो ऐसा पांचवी या छठी क्लास में से इसमें सिखाया जा सकता है, क्योंकि इससे ये होगा कि बच्चे भाषा भी सीख जाएंगे और उन्हें बोर्ड की परीक्षा के समय किसी तरह की मुश्किल नहीं होगी। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर, किस मुद्दे पर जस्टिस बीवी नागरत्ना ने ये टिप्पणी की। दरअसल तमिलनाडु सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट के एक फैसले को चुनौती दी है, जिसमें उन्होंने राज्य में जगह जगह जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने की बात कही है और उस जवाहर नवोदय विद्यालय में जो त्रिभाषा फार्मूला है उसको लेकर तमिलनाडु सरकार की परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं। उनका ये कहना है कि इसके जरिए सरकार और सीबीएसई छात्रों पर हिंदी थोप रहे हैं। जस्टिस नागरत्ना ने इसका विश्लेषण अलग ढंग से किया। उन्होंने कहा कि जब कोई भारतीय भाषा पढ़ाई जाती है, त्रिभाषा फार्मूला क्या है अभी हम दो लाइन में समझा देते हैं। त्रिभाषा फार्मूला ये है कि सीबीएसई ये कहता है कि नौवीं कक्षा में तीन भाषाएं सीखनी पड़ेंगी छात्रों को, जिसमें एक स्थानीय भाषा होगी यानी वो भाषा मद मातृभाषा की तरह क्षेत्रीय भाषा होगी, दूसरी हिंदी या अंग्रेजी में से एक भाषा होगी और तीसरी कोई भारतीय भाषा होनी चाहिए। तो इस पर यह कहा गया कि त्रिभाषा के रूप में केंद्र सरकार और सीबीएसई के जरिए हिंदी थोप रही है गैर हिंदी भाषी राज्यों में। इस पर जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि तीसरी भाषा तो संस्कृत भी हो सकती है, तो ऐसे में आपको क्या दिक्कत है। तो ये तमाम इन तमाम चीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी चिंता भी जताई है, साथ ही ये भी कहा है कि जो हाई कोर्ट का फैसला है उसमें उन्हें किसी तरह की कोई खामी नहीं लग रही। इसको अगर अलग सही पॉजिटिव नजरिए से देखा जाए तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
14: बात है जो सिक्स क्लासेस में कर देना चाहिए, क्योंकि हम बड़ी क्लास में चले जाते हैं, नाइन टेंथ में चले जाते हैं, उसमें हमारा काफी सिलेबस होता है, काफी बच्चे नहीं कर पाते, कोई कोई तो फेल भी हो जाता है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि सिक्स क्लास अगर हम ये लागू कर देंगे तो सही रहेगा, बच्चे सीख भी जाएंगे और उनको दिमाग भी इतना वो होता है कि बच्चे सीख जाएंगे आराम से, सिक्स सेवन्थ एट नाइन्थ चार साल मैक्सिमम सीख जाएंगे वो लोग, इतना तो है ही। अगर हमें किसी और कंट्री में जाना है, अमेरिका हो चाइना हो, किसी भी कंट्री में जाने के लिए हमें अगर उस कंट्री की लैंग्वेज आती होगी पहले से, तो हमें वहाँ सर्वाइवल करना बहुत आसान रहेगा। अगर हमारे नहीं आता या इंग्लिश ही नहीं आती, हमारी इंग्लिश वीक है, तो हमें उन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो लैंग्वेज हमें आगे जाके बहुत काम आती है, हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक लैंग्वेज एटलीस्ट को हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि हमारे करियर हमें पता नहीं कब कहाँ क्या ले जाए, तो हमें स्टैंड लेके रहना चाहिए कि हम कब कहाँ जाने के लिए अवेलेबल रहे, और हमारे लैंग्वेजेस आनी चाहिए, कुछ लैंग्वेज होनी चाहिए। छठी क्लास से या उससे कम क्लासेस से भी शुरू करना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे बच्चे सीख पाते हैं। हम अगर बड़ी क्लासेस में एकदम से डाल देंगे तो बच्चे के ऊपर बोझ सा लगता है कि हाँ थ्री लैंग्वेज हो गए, अब इसको याद करो या इसको बोलना सीखो, इस कारण भी बच्चे में डर होता है, वो नहीं सीख पाते, उनको बचपन से ही सिखाना चाहिए।
15: इससे ये लाभ हुआ कि स्टूडेंट पे एकदम से बर्डन नहीं पड़ेगा, प्रेशर नहीं बनेगा, क्योंकि नाइन्थ क्लास एक बहुत बड़ी क्लास हो जाती है यहाँ पर सिलेबस इतना ज़्यादा हो जाता है कि बच्चा दूसरी लैंग्वेज में फोकस नहीं कर पाएगा। लेकिन ये सरकार का एक अच्छा नियम है कि वो छठी क्लास से एक एडिशनल लैंग्वेज ऐड कर दी, क्योंकि बच्चा और पार्टिसिपेट कर पाएगा और कुछ सीख पाएगा। अलग ये अच्छा हो क्योंकि 9th से ना अलाउ करो, 6th से अलाउ किया जाएगा तो बच्चे उस पर ध्यान दे पाएंगे।
16: 6th क्लास होना चाहिए क्योंकि बच्चे शुरुआत से ज़्यादा सीखते हैं और उनको अगर शुरुआत से सिखाया जाए तो वो अच्छे सीख लेते हैं, फिर बड़े होकर उतना नहीं सीख पाते जितना वो पहले सीख पाते।
15: दूसरी लैंग्वेज सीखने से कितना फायदा होगा, करियर में कितना ग्रोथ होगा?
16: ज़्यादा ग्रोथ होना चाहिए क्योंकि अगर आप एक ही लैंग्वेज सीखोगे, बार बार एक ही चीज़ पढ़ोगे तो हर जगह एक चीज़ नहीं पूछी जाती, हर जगह अलग अलग चीजें भी पूछी जाती।
4: चलिए आइए रुक करते प्रगति मार्का, जहां ऐसी खबरें हैं जो देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत को दिखाती है। बात अंतरिक्ष में लिखे जाने वाले भारत के नए अध्याय की। भारत अपनी अंतरिक्ष यात्रा में एक और अहम पड़ाव हासिल करने की कगार पर है। पहली बार श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च होने जा रहा है। मिशन नागमन के तहत स्काईरूट एरोस्पेस का विक्रम 1 रॉकेट कल यानी कि शनिवार को लॉन्च किया जाएगा। ये भारत के निजी स्पेस सेक्टर के ग्लोबल ऑर्बिटल लॉन्च मार्केट में कदम रखने का प्रतीक है। देखिए श्रीहरिकोटा से हमारी ये रिपोर्ट।
0: ये भारत का पहला प्राइवेट तौर पर बना ऑर्बिटल रॉकेट है जो श्रीहरिकोटा में लॉन्च पैड पर उड़ान भरने के लिए तैयार है और देश के स्पेस सेक्टर के लिए एक ऐतिहासिक पल का इंतजार कर रहा है।
17: 2020 में जब भारत सरकार ने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट कंपनियों के लिए खोला था, तब से अब तक इस फील्ड में काफी विकास हो चुका है। 2022 में विक्रम एस जो पहला सब ऑर्बिटल रॉकेट था उसे लॉन्च किया गया था और अब विक्रम 1 जो ऑर्बिट में जाने वाला प्राइवेट कंपनी द्वारा बनाया गया पहला रॉकेट है, ये स्पेस में जाने के लिए तैयार है। अगर हम पेलोड्स की बात करें तो ये भी बेहद खास है। यहाँ भारत के साथ साथ जर्मनी की कंपनी का पेलोड भी इस रॉकेट में जा रहा है और सेपरेशन के बाद ये डेटा कलेक्ट करेगा।
0: इसरो की अगुवाई में स्काई रूट एरोस्पेस का विक्रम 1 अपने पहले ऑर्बिटल मिशन के लिए तैयार है और 18 जुलाई को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। और अगर मिशन कामयाब रहा तो पहली दफा किसी भारतीय प्राइवेट कंपनी का बनाया रॉकेट सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षा में पहुंचाएगा और इस मिशन का नाम आगमन रखा गया है।
17: श्रीहरिकोटा से इससे पहले तमाम सैटेलाइट और स्पेस मिशन्स लॉन्च किए गए हैं, लेकिन विक्रम 1 बेहद खास इसलिए है क्योंकि इसे निजी स्पेस कंपनी ने बनाया है। स्काईरूट जो इसरो के साइंटिस्ट द्वारा बनाई गई एक कंपनी है, 2018 में इसकी स्थापना हुई। 2020 में जब सरकार ने स्पेस को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला उसके बाद लगातार उस पर काम तेज हो गया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं विक्रम 1 को यहाँ लॉन्च पैड पर रखा गया है और ये 7 माले का एक रॉकेट है जो 350 किलोग्राम का पेलोड लेकर मिशन आगमन के तौर पर जाएगा। आगमन यानी कि किस तरह से स्पेस इंडस्ट्री आ रही है और प्राइवेट सेक्टर के लिए संभावनाएं खुल रही हैं, ये इसको दर्शाता है। खास बात यह है कि 450 किलोमीटर की दूरी पर यानी कि लोअर अर्थ ऑर्बिट पर विक्रम 1 पहुंचेगा और ये पहली बार होगी कि जब कोई गैर सरकारी कंपनी यहां पर एक ऑर्बिटल रॉकेट को लॉन्च कर रही है, यानी संभावनाओं के साथ साथ अंतरिक्ष विज्ञान को लेकर ये एक बेहद बड़ी पहल है और 2020 के बाद जो शुरुआत सरकार की द्वारा की गई ये उसके लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।
0: पूरी तरह से कमर्शियल मिशन के उलट ये एक टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेशन है जिसे उड़ान भरने के हर चरण में जरूरी डेटा इकट्ठा करने के लिए डिजाइन किया गया है। रेगुलर कमर्शियल लॉन्च शुरू करने से पहले मिशन इंजीनियर प्रोपल्शन, स्टेज सेपरेशन, गाइडेंस, नेविगेशन, कंट्रोल सिस्टम और पूरे व्हीकल की परफॉर्मेंस का मूल्यांकन करेंगे। मिशन आगमन का सबसे अहम मकसद लिफ्ट ऑफ से लेकर ऑर्बिट तक असली उड़ान डेटा हासिल करना है।
18: In India, we have good SpaceX solution capacity already developed by ISRO, but the commercial market of launch captured by Indian launch vehicles is very less. And now, with that objective, like now that we have good manufacturing ecosystem that can manufacture aerospace grade rockets, what private companies like us bring to the table is the design engineering and the system engineering capability, where we can build end-to-end systems and develop. So India is also well known for affordable space missions, and that cost effectiveness naturally translates to the private sector in India. So successfully building a reliable rocket from India will naturally place us as an affordable launch solution from India to the world.
0: हैदराबाद के इंजीनियर्स की एक युवा टीम ने इसे बनाया है। ये लॉन्च व्हीकल 23 मीटर ऊंचा रॉकेट है, जिसका डायमीटर 1.7 मीटर है। ये पूरी तरह से एडवांस्ड कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर से बनाया गया है और ये 350 किलोग्राम तक का पेलोड ले जाने में सक्षम है। रॉकेट में तीन स्टेज वाले सॉलिड कॉन्फ़िगरेशन के साथ लिक्विड फ्यूल वाला ऑर्बिटल एडजस्टमेंट मॉड्यूल इस्तेमाल किया गया है और इसमें कई टेस्ट पेलोड भी ले जाए जा रहे हैं। नवंबर 2025 में स्काई रूट के इन्फिनिटी कैंपस के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस रॉकेट को पेश किया था, जो अब उड़ान के लिए तैयार है।
19: Oh, so I think it's a very big milestone where a private company has designed a rocket, orbital grade rocket, brought it to the launch pad, is ready for liftoff and going to launch to orbit. I think it's globally very few companies are able to achieve it. So I think doing it from India, we're very proud, and it's a great milestone for Skyroot, for India and also for globally as well, because the world requires more access to space.
0: विक्रम 1 रॉकेट का नाम भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है और इस रॉकेट में कुछ हीरे भी रखे गए हैं, जो विक्रम साराभाई समेत उन सभी वैज्ञानिकों के लिए स्पेस में एक श्रद्धांजलि होगी जो वहां छोड़े जाएंगे। इस मिशन में देश और विदेश के ग्राहकों के पेलोड भी शामिल हैं।
17: इसमें हीरे भी हैं, जिसे भारत की तरफ से स्पेस को यानी अंतरिक्ष को एक ट्रिब्यूट माना जा रहा है, क्योंकि आज का जो दिन है वो बेहद खास इसलिए है क्योंकि पहली बार भारत से निजी कंपनी द्वारा बनाया गया ये रॉकेट स्पेस में जा रहा है श्रीहरिकोटा से। और ये एक श्रद्धांजलि भी है डॉक्टर सीवी रमन, डॉक्टर अब्दुल कलाम, सतीश धवन और तमाम उन वैज्ञानिकों के लिए जिन्होंने लगातार अपने अथक परिश्रम से भारत को इस मुकाम तक पहुंचाया। अगर विक्रम 1 की बात की जाए तो कई महीनों की मेहनत यहां पे लगी, साइंटिस्ट की एक टीम, 1000 लोगों की टीम ने इसे बनाया है और आज ये स्पेस में जाने वाला प्राइवेटली बनाया गया पहला ऑर्बिटल रॉकेट बन चुका है।
0: शनिवार 18 जुलाई को जैसे ही विक्रम 1 उड़ान भरेगा, भारत का प्राइवेट स्पेस उद्योग एक ऐसी सीमा पार कर लेगा जिसे उसने पहले कभी पार नहीं किया। अगर ये मिशन सफल रहता है तो भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर को एक बड़ी मजबूती मिलेगी और भविष्य में देश से ज्यादा कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च किए जा सकेंगे। लिहाजा इस लॉन्च पर पूरे देश की नजर है, क्योंकि ये भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर की अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा मानी जा रही है।
17: विक्रम 1 के ऑर्बिटल लॉन्च के साथ सिर्फ भारत में स्पेस इंडस्ट्री और प्राइवेट सेक्टर्स का आगमन नहीं हुआ, बल्कि एक विश्वास का आगमन हुआ है कि भारत स्पेस सेक्टर में नए कीर्तिमान भी गढ़ेगा और आगे भी बढ़ेगा। कैमरा पर्सन आलोक दास के साथ शिवानी शर्मा, श्रीहरिकोटा।
4: चीन में हाईटेक पेंगुइन पेविलियन खुला। चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश और दुनिया की कई और जरूरी खबरें मौजूद हैं।
0: बोलिविया में युवा महिलाएं आजकल पारंपरिक पोलेरा स्कर्ट पहनकर स्केट बोर्डिंग कर रही हैं। उनका यह अंदाज खेल के साथ अपनी आदिवासी पहचान को भी मजबूत कर रहा है। यहां का वॉ में सोब्रे रोएडास ग्रुप स्केटिंग बोर्डिंग के जरिए महिलाओं को सशक्त बनाने और आयमारा संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचाने में जुटा है। लापास की सड़कों पर पारंपरिक पोशाक पहनकर स्केटिंग करती लड़कियों ने नई मिसाल पेश की। स्केट पार्क में इन लड़कियों ने स्केटिंग से संस्कृति की उड़ान भरी और इस तरह यहां आधुनिक जीवन शैली की परंपरा का संगम देखने को मिला। स्केट बोर्डिंग करती इन महिलाओं को अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है, इससे आदिवासी महिलाओं की नई पीढ़ी को सीख मिली है। स्केट बोर्डिंग के जरिए संस्कृति, आत्मविश्वास और महिला सशक्तिकरण का संदेश इनको दिया गया है। चीन में हाईटेक पेंगुइन पवेलियन खुल गया है। हाबिन पोलर पार्क में देश का पहला पोलर मरीन रिसर्च एजुकेशन बेस नए अंदाज में फिर से खोल दिया गया है। अफ्रीका के दुर्लभ ब्लैक फुटेड पेंगुइन यहां की नई पहचान बन गए हैं। पवेलियन में पहली बार रेयर अफ्रीकन ब्लैक फुटेड पेंगुइन और साउथ अफ्रीका के मशहूर पेंगुइन टाउन की हूबहू झलक देखने को मिली है। लाइव पेंगुइन, होलोग्राम, एआई और डीप सी टेक्नोलॉजी के साथ चीन का ये सेंटर मरीन कंजर्वेशन एंटरटेनमेंट का नया बेंचमार्क बन गया है, जहां पढ़ाई के साथ साथ रोमांच का भी अनुभव होता है। दुनिया का सबसे बड़ा कमल तालाब खिलकर खूबसूरती बिखेर रहा है। चीन के जियांगशी प्रांत में 1.08 वर्ग किलोमीटर में फैला विशाल कमल तालाब पर्यटकों से गुलजार है। गिनीज रिकॉर्ड वाला कमल तालाब सबसे आकर्षण का केंद्र बन गया है। 2016 में दुनिया का सबसे बड़ा कमल तालाब घोषित हुए व्हाइट लोटस की धरती पर सौंदर्य खिल उठा है। कमल की खुशबू से चीन की ग्वांगचांग काउंटी महक उठी है। गर्मियों में खिले रंग बिरंगे कमलों ने चीन के इस ऐतिहासिक तालाब को बड़ा पर्यटन केंद्र बना दिया है। सैलानियों की लंबी कतारें यहां के मनमोहक दृश्य देखने में जुटी है और इस लोटस कल्चर कैपिटल में ये सौंदर्य पर्यटकों का दिल जीत रहा है। कांगो के जंगल में बंदर की नई प्रजाति देखने को मिली है। 75 साल में अफ्रीका की ये पांचवी बड़ी तलाश है जिसमें इन बंदरों को देखने का सौभाग्य मिला है। दरअसल लिक्वेली नाम की इस दुर्लभ प्रजाति पर संकट के बादल छाए हुए हैं। इस प्रजाति पर विलुप्त होने का गंभीर खतरा भी बताया जा रहा है, इसलिए कांगो के वैज्ञानिकों ने इन बंदरों की इस प्रजाति को इंडेंजर्ड घोषित करने की सिफारिश की है और उनके लिए राहत सुरक्षा अभियान चलाने की सलाह भी दी है।
4: और न्यूज पथ पर थोड़ी देर ब्रेक प्लाजा पर रुकेंगे और ब्रेक के उस पार खेल की खबरों को दिखाने के लिए आपको लिए चलेंगे खेल चक्कर।
20: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
21: Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
22: Schwarber to right field, and it will lead.
21: From the first pitch of the season to the stretch run.
22: And that's the ball game.
21: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
23: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे-धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
24: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
23: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
21: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच।
1: इंग्लैंड के खिलाफ उतरे विराट कोहली के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में दर्ज हुए 4 रिकॉर्ड, खेल जगत की और खबरों को जानने के लिए रुक करते खेल चक्कर का। 6 महीने के लंबे अंतराल के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट के मैदान पर उतरे विराट कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में 66 गेंदों का सामना करते हुए 65 रन की पारी खेली, जिसमें 7 चौके शामिल थे। एक पारी से किंग कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट में तहलका मचा दिया और 4 नायाब रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। कार्डिफ में खेली गई पारी के बाद विराट कोहली के नाम अब इंग्लैंड के खिलाफ वनडे क्रिकेट में 14 बार 50 प्लस स्कोर दर्ज है। विराट अब विदेशी सरजमी पर सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। विराट 126 पारियों में 5,519 रनों के साथ शीर्ष स्थान पर काबिज हैं। विराट ने द्रविड़ और सचिन को पीछे छोड़कर बतौर भारतीय बल्लेबाज इंग्लैंड की धरती पर सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। इंग्लैंड के सामने भारत की ओर से सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं, उनके नाम अब 33-50 हो गए हैं। इससे पहले सचिन तेंदुलकर 32 हाफ सेंचुरी के साथ ही पहले स्थान पर हैं। इंडियन बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। ओकुहारा ने उनको वॉकओवर दिया। जापान ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पीवी सिंधु दूसरी भारतीय शटलर बन गई हैं। इससे पहले 2011 में साइना नेहवाल ने जापान ओपन के सेमीफाइनल में एंट्री की थी। अब सिंधु फाइनल में चीन की चेन युफई से मैच खेलेंगी। फीफा वर्ल्ड कप इस बार इतिहास की सबसे बड़ी इनामी राशि देगा। फुटबॉल वर्ल्ड कप चैंपियन को इस बार टूर्नामेंट में करीब 5,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। यही नहीं, वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाले हर देश को भी करीब 120 करोड़ की इनामी राशि मिलेगी। वर्ल्ड चैंपियन बनने वाली टीम के खिलाड़ियों और स्टाफ को ट्रॉफी और गोल्ड मेडल के साथ साथ चैंपियनशिप रिंग दी जाएगी। इस रिंग के एक तरफ फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी बनी होगी।
2: और न्यूज़पत में मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी।
3: क्या आपके बच्चे को शिक्षा में दिक्कतें आ रही हैं? क्या बच्चा प्रतियोगिताओं में सफल नहीं हो पा रहा है? माता पिता कौन से करें उपाय बच्चे का जीवन संवर जाए, बच्चे को उन्नति मिले? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
4: Get into the huddle with TuneIn. TuneIn brings you non-stop sports talk, live games, and expert analysis all in one place. From kickoff to final whistle, follow your favorite teams all season long with ESPN Radio, Talk Sport, Big 12 Radio, and more. Plus, listen to your favorite sports broadcasts on over 200 devices, so you never miss a moment of sports action with TuneIn. Stay in the game with TuneIn and start listening now.
5: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की

0: Bush. Tune into my show, Hot Mics, Monday to Thursday at noon Eastern, 9 a.m. Pacific for the latest in politics, entertainment, tech, sports, pop culture, and much more. Just tell your device to play Hot Mics on TuneIn to listen.
1: खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
2: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं
3: अविश्वास में विश्वास बसता है
1: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है
4: गुड न्यूज टुडे
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर सच्ची खबर
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
2: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं
3: अविश्वास में विश्वास बसता है
1: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है
4: गुड न्यूज टुडे
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर सच्ची खबर
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
2: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं
3: अविश्वास में विश्वास बसता है
1: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है
4: गुड न्यूज टुडे
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: क्या आपके बच्चे को शिक्षा में दिक्कतें आ रही हैं? क्या बच्चा प्रतियोगिताओं में सफल नहीं हो पा रहा है? माता पिता कौन से करें उपाय बच्चे का जीवन समर जाए, बच्चे को उन्नति मिले? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: Tune In's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.

0: of. Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry. TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
1: Good news today.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
5: TIT Bhopal, Gen Z's gateway to unbeatable placements. Sage University, transforming your passion into profession.
6: पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का पहला पड़ाव पूरा। दूसरे दिन भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मौसी के घर पहुंचे महाप्रभु। गुंडिचा मंदिर में 7 दिन विश्राम के बाद 24 जुलाई को लौटेंगे अपने मंदिर। देश को मिली पहली हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात। प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा के जींद में हरी झंडी दिखाकर सोनीपत के लिए रवाना किया। देश को मिली 4700 करोड़ से ज्यादा की विकास योजनाओं की सौगात। पीएम ने पंजाब से किया शुभारंभ। देशभर में 75 रेलवे स्टेशन का हुआ कायाकल्प। आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए गुड न्यूज। पिछले हफ्ते 96,40,00,000 डॉलर बढ़ा विदेशी मुद्रा भंडार, 67,500 करोड़ डॉलर के पार पहुंचा कुल विदेशी मुद्रा भंडार। अंतरिक्ष में एक और ऐतिहासिक छलांग लगाने की तैयारी। देश का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 कल सुबह 11:30 बजे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भरेगा उड़ान।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना

नमस्कार, मैं हूं नवजोत सुनहवा। स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की। रिमझिम बारिश के बीच जय जगन्नाथ के गगनभेदी उद्घोष के साथ विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा का पहला चरण पूरा हो गया। बड़े भाई बलभद्र और देवी सुभद्रा के साथ भगवान जगन्नाथ मौसी के घर यानी कि गुंडीचा मंदिर पहुंच चुके हैं। गुरुवार को विधि विधान के साथ भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू हुई थी। हालांकि बारिश के चलते पहांडी अनुष्ठान में देरी हुई और सूर्यास्त के चलते तीनों रथ गुंडीचा मंदिर नहीं पहुंच सके। परंपरा के मुताबिक सूर्यास्त के बाद रथों को नहीं खींचा जाता है, जिसके चलते भगवान रात भर अपने अपने रथों पर ही विराजमान रहे। सुबह करीब 9:45 पर जय जगन्नाथ के जयकारों के साथ एक बार फिर से रथ खींचने की परंपरा शुरू हुई। भक्तों के जनसमंदर के साथ दोपहर बाद तीनों रथ गुंडीचा मंदिर पहुंचे, जहां परंपरा के मुताबिक भगवान की मूर्तियां रात भर अपने रथों पर ही विराजमान रहेंगी। शनिवार को उन्हें विधि विधान के साथ श्री गुंडीचा मंदिर ले जाया जाएगा। पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा का पहला चरण संपन्न हो गया। भगवान जगन्नाथ बलभद्र और देवी सुभद्रा के तीनों रथ श्री गुंडीचा मंदिर पहुंच गए, जहां लाखों श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। बारिश और उमस के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह बना रहा। अब भगवान 7 दिनों तक गुंडीचा मंदिर में भक्तों को दर्शन देंगे और उसके बाद बहुड़ा यात्रा के जरिए उनकी श्री मंदिर में वापसी होगी। ये महापर्व भक्त और भगवान के दिव्य मिलन का प्रतीक माना जाता है।

0: नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मनय बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय नमः। करोड़ों लोगों की आंखों में बस एक ही तस्वीर होती है, एक झलक अपने आराध्य की, वो पल जब भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच आ गए। हर हाथ जुड़ते नहीं थका, हर सर बस श्रद्धा से झुकता रहा। पुरी का ये दिव्य नजारा जिसने देखा वो बस देखते ही रह गया। जब भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा के साथ अपने भव्य रथों पर सवार होकर श्री मंदिर से निकलकर गुंडिचा मंदिर पहुंचे, तो लाखों श्रद्धालुओं की आस्था उत्साह और विश्वास से सजी ये पावन यात्रा अपने गंतव्य तक पहुंची।
1: आज बिफोर टाइम में जगन्नाथ जी आ गया तीनों रथ। अभी जगन्नाथ जी का जो नीति है, रथ का ऊपर जो नीति है, अभी नीति चलेगा। महासंक्रांति पूजा जो है उसका पूजा चलेगा, फिर इसके बाद सकल भोग जो है, पहले भोग, दूसरा भोग, तीसरा भोग चलेगा, स्वर्णदीप तक पूजा चलेगा। महाश्रा जैसे भगवान को बड़ा सिंगर होगा, पौड़ में होगा, भगवान स्वयं है। जैसे आगे साल में जैसा प्रॉब्लम था इसके लिए सब हम लोग अरेंजमेंट किया है, जैसे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए आज ही सब भगवान को दर्शन करने के लिए जितना भक्त है सब आइए, अच्छा से दर्शन करिए, आज करिए, कल भी करिए, परसों मासी के घर में दर्शन करेंगे, कल 7 बजे जगन्नाथ जी का पांडे होगा।
0: विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का पहला चरण आज पूरा हुआ। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के रथ दोपहर में श्री गुंडिचा मंदिर पहुंचे। गुरुवार को शुरू हुई यात्रा उसी दिन पूरी नहीं हो सकी थी। पहांडी अनुष्ठान में देरी और शाम होने की वजह से रथ अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाए। परंपरा के मुताबिक सूर्यास्त के बाद रथ नहीं खींचे जाते, इसीलिए यात्रा रोक दी गई।
1: पांडे में तो भक्त लोग बाहर में दर्शन करेंगे अच्छा से, भगवान को भीतर जो भीतर चले जाएंगे, उसके बाद परसों पूजा होगा, दर्शन होगा। सारो साल जितना पुण्य होता है ये मंडप में एक दिन दर्शन के लिए इतना पुण्य होता है, इसलिए ये जो मंडप है ये जन्मस्थान है, इनका जगह में जगन्नाथ जी आते हैं।
0: इसके बाद आज सुबह फिर से रथ आगे बढ़े। सुबह करीब 9:30 बजे सबसे पहले भगवान बलभद्र के तल ध्वज रथ को खींचना शुरू किया गया। इसके बाद देवी सुभद्रा के दर्प दलन रथ को आगे बढ़ाया गया और अंत में भगवान जगन्नाथ का नंदी घोष रथ श्री गुंडिचा मंदिर के सामने पहुंचा। बारिश और उमस के बावजूद करीब 9 लाख श्रद्धालु ग्रैंड रोड पर मौजूद रहे। जय जगन्नाथ के जय घोष से पूरा पुरी गूंज उठा। गुरुवार की शाम तक भगवान बलभद्र का रथ करीब 700 मीटर चलकर मार्केट चौक पर रुक गया था। देवी सुभद्रा का रथ लगभग 400 मीटर आगे बढ़ा और मरीचिकोट चौक पर ठहर गया। वहीं भगवान जगन्नाथ का रथ श्री मंदिर के मुख्य द्वार से केवल कुछ ही दूरी तय कर सका। पूरी रात तीनों देवता अपने अपने रथों पर ही विराजमान रहे। इस दौरान लाखों श्रद्धालुओं ने वहीं दर्शन किए। मंदिर प्रशासन ने रात भर दर्शन की व्यवस्था जारी रखी। आज सुबह तीनों रथों के श्री गुंडिचा मंदिर पहुंचने के साथ ही यात्रा का पहला चरण पूरा हो गया। परंपरा के मुताबिक भगवान की प्रतिमाएं शुक्रवार रात तक रथों पर ही विराजमान रहेंगी। शनिवार शाम को विशेष विधि विधान के साथ उन्हें मंदिर के अंदर ले जाया जाएगा। मान्यता ये भी है कि यह स्थान भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का जन्म स्थान भी है। गुंडीचा मंदिर में 7 दिनों तक रहने के बाद भगवान 8वें दिन मुख्य मंदिर के लिए वापसी शुरू करते हैं। इसे बहुड़ा यात्रा कहा जाता है। भगवान जगन्नाथ की वार्षिक रथ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, इसका बहुत गहरा आध्यात्मिक महत्व भी है। ये महापर्व भक्त और भगवान के अद्भुत मिलन का साक्षी है। यही कारण है कि हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस पावन परंपरा के साक्षी बनने के लिए पुरी जगन्नाथ धाम पहुंचते हैं। गुंडीचा प्रवास के 5वें दिन हेरा पंचमी का विशेष उत्सव मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक माता लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ को खोजते हुए यहाँ पहुंचती हैं। भगवान के बिना बताए चले जाने से नाराज होकर वो प्रतीक के रूप में रथ का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त कर देती हैं और फिर वापस लौट आती हैं। इस परंपरा को देखने के लिए भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। इस बार रथ यात्रा के दौरान एक अलग नजारा भी देखने को मिला। लगातार बारिश की वजह से भगवान जगन्नाथ के पारंपरिक पुष्प मुकुट ताहिया का वजन काफी बढ़ गया था। इसी कारण पहली बार भगवान बिना ताहिया के भक्तों को दर्शन देते नजर आए। हालांकि इससे श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नहीं आई। हर कोई अपने आराध्य की एक झलक पाने के लिए घंटों इंतजार करता रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: कहते हैं कि जगन्नाथ रथ यात्रा का महापर्व भक्त और भगवान के अद्भुत मिलन का साक्षी है और यही वजह है कि पुरी की सड़कों पर महाप्रभु की ये रथ यात्रा भक्ति भाव की छटा बिखेर रही है। लाखों श्रद्धालु इस पावन यात्रा के भागीदार बने हुए हैं। बस ये समझ लीजिए कि रथ यात्रा के दूसरे दिन श्रद्धा का समंदर उमड़ा नजर आया। रथ परंपरा के मुताबिक भगवान का रथ मौसी के घर गुंडीचा मंदिर पहुंचा है, जहां अगले 7 दिन कई अनुष्ठान होंगे और फिर महाप्रभु अपने बड़े भाई बलभद्र और छोटी बहन सुभद्रा के साथ श्री मंदिर में वापसी करेंगे।

0: रथ यात्रा पावन नमन जगन्नाथ श्री धाम नैन युगल कंजल कमल दर्शन कोटि प्रणाम। रथ पे सवार भगवान जगन्नाथ और दर्शन को बेताब भक्तों का सैलाब। मन में आस्था हो तो थकान कैसी, दिन हो या रात, जब प्रभु का नाम साथ हो तो हर कदम आसान हो जाता है। पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा के दूसरे दिन यही अद्भुत तस्वीर देखने को मिली। लाखों श्रद्धालु भगवान के रथ के साथ कदम मिलाकर चल रहे हैं और नजरें प्रभु पर टिकी हैं।
1: विश्व प्रसिद्ध गुंडीचा यात्रा महाप्रभु की, ये विश्व में ऐसे भगवान हैं जो खुद अपनी प्रजा अपने भक्तों को देखने आते हैं साल में एक बार, और अपनी मातृभूमि में रहकर फिर वापसी करते हैं, जिसे हम सब बाहुड़ा यात्रा बोलते हैं। और ये भगवान का एक लीला खेला है जिसमें भगवान ये कलयुग में विभिन्न प्रकार का अपना रूप दिखाते हैं, और विशेषकर विश्व के लोग, उड़ीसा के लोग, जनसाधारण बहुत अच्छे से रहे हैं, उनके मंगल कामना सुख कामना के लिए भगवान खुद आते हैं रथ यात्रा में द्वितीया के दिन। और आज तीन ही रथों में भगवान जगन्नाथ का, बड़े भाई बलभद्र का, बहन सुभद्रा का दर्शन हुआ। हम लोग सब अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं, हम सब परिवार आके आज प्रभु के दर्शन किए हैं।
2: बहुत तो अच्छा दर्शन मिला है मुझे, बहुत खुशी है, आनंद भी है जगन्नाथ का, बहुत ज्यादा खुशी है महाप्रभु का।
0: वही रुक रुक कर हो रही बारिश भी आस्था में बाधा नहीं बनी। श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं दिखी। 44 फीट ऊंचे नंदीघोष, ताल ध्वज और दर्प दलन रथों को खींचने के लिए लाखों हाथ एक साथ आगे बढ़े। कोई भेद नहीं, बस मन में सेवा भाव, कोई दूरी नहीं, बस प्रभु के करीब रहने का संकल्प। हर धर्म, हर जात, हर बोली और हर प्रदेश के लोग एक साथ प्रभु की सेवा में जुटे रहे। होठों पर जयकारा, मन में श्रद्धा और आंखों में प्रभु दर्शन का सौभाग्य। महाप्रभु जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा अपने मौसी घर यानी गुंडीचा मंदिर पहुंच चुके हैं। रास्ते भर ढोल मंजीरों की गूंज, शंखनाद और हर तरफ भक्ति का उत्सव नजर आ रहा है।

0: रथ यात्रा पहले दिन श्री मंदिर से शुरू हुई थी। रात्रि विश्राम के बाद दूसरे दिन सुबह फिर यात्रा आगे बढ़ी। सुबह मंगला आरती, मैलम नीति, ताड़पा लागी और अवकाश नीति जैसे सभी पारंपरिक अनुष्ठानों के बाद रथ फिर गुंडिचा मंदिर की तरफ बढ़ा। इससे पहले आज सुबह 7:20 से 8 बजे तक भगवान की मंगला आरती हुई, फिर 8:05 पर दैनिक शुद्ध और वस्त्र बदलने की रस्म मैलम नीत संपन्न की गई। इसके बाद 8:55 पर ताड़पा लागी की रस्म निभाई गई। भगवान जगन्नाथ का श्रृंगार हुआ, उन्हें ताड़पा और उत्तरीय पहनाए गए और 9:25 पर अवकाश नीत यानी सुबह की मुख्य पूजा से जुड़े अनुष्ठान संपन्न किए गए। करीब 3 किलोमीटर की यह यात्रा 2 दिनों में पूरी होती है। मान्यता है कि गुंडिचा मंदिर भगवान की मौसी का घर है। कहा जाता है कि रानी गुंडिचा की भक्ति से प्रसन्न होकर ही भगवान ने हर साल आषाढ़ महीने में यहाँ 7 दिन रहने का वचन दिया था और उसी परंपरा का निर्वाह आज भी होता है। भगवान जगन्नाथ के असंख्य भक्तों में कुछ भक्त 7 समंदर पार से भी आए हैं, जो वहां प्रभु की रथ यात्रा में शामिल होकर खुद को बहुत सौभाग्यशाली समझ रहे हैं।
1: Yeah, yeah, we are coming from Colombia to get the mercy of Lord Jagannath. Lord Jagannath is the Lord of all over the world, and all the devotees coming from all around the world. That's the beauty of Lord Jagannath in Jata Yatra, that for all the devotees who cannot go inside the mandir, he's coming out to get his darshan. That's the beauty. That is why it's so special for us to come to Jagannath for Ratha Yatra, because we cannot go inside. We respect that. That is the mercy of the Lord. But he's going out to give us his beautiful face, lotus face for us.
0: रथ आगे बढ़ता रहा, लेकिन आस्था का ये कारवां थमा नहीं रहा था, क्योंकि पुरी की इन सड़कों पर आज सिर्फ रथ नहीं चल रहा है करोड़ों भक्तों का अटूट विश्वास और गूंज रहा है एक ही स्वर, जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। पुरी से अजय नाथ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
2: जब विश्वास कदमों में उतर आए, जब भक्ति गीत बनकर गलियों में गूंजे, जब हर चेहरा प्रभु के रंग में रंग जाए, तब समझिए कि आस्था का सबसे बड़ा उत्सव धरती पर उतर आया है। देश भर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा ने ऐसा ही अद्भुत दृश्य रचा, जहां लाखों लोगों ने प्रेम, सेवा और समर्पण का संदेश दिया। दिल्ली से जयपुर, उदयपुर से प्रयागराज और पुरी तक हर ओर श्रद्धा का सागर उमड़ पड़ा।

0: मैं तब तक साथ चलूं प्यारे जब तक तुम हाथ संभाले हो, कैसे साथ ना आऊं मैं जब तुम ही पालनहारे हो। इस बार की रथ यात्रा में हर कदम पर अद्भुत नजारा है, कहीं भजन गूंजे, कहीं मृदंग और करताल की ताल पर श्रद्धालु झूमते नजर आए। किसी ने रस्सी पकड़कर स्वयं को धन्य माना तो किसी ने प्रभु के दर्शन को जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य समझा। पूरे देश में वातावरण पूरी तरह से भक्तिमय दिखाई दिया। दिल्ली के द्वारका स्थित सेक्टर 13 के इस्कॉन मंदिर से भव्य आयोजन की शुरुआत हुई। भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा नगर भ्रमण के लिए निकले तो हर रास्ता जय जगन्नाथ के उद्घोष से गूंज उठा।
1: भगवान जगन्नाथ की जो प्रतिमा है वो सामने है और जो यहाँ पर दर्शकों की भीड़ है, श्रद्धालुओं की भीड़ है, वो सैकड़ों नहीं हजारों नहीं जबकि लाखों में यहाँ पर है। और इस वक्त जो द्वारका का जो सेक्टर 13 है जहाँ पर ये इस्कॉन टेम्पल है वहाँ पर श्रद्धालुओं की लगातार भीड़ बढ़ रही है। और जो ये रथ यात्रा है ये कई सेक्टर से होती हुई दोबारा इसी इस्कॉन टेम्पल पर पहुँचेगी।
0: लगभग 5 किलोमीटर लंबे रास्ते पर हजारों लोग भक्ति में डूबे दिखाई दिए। अलग अलग सेक्टर्स और प्रमुख चौराहों से गुजरते हुए ये आयोजन दोबारा मंदिर परिसर पहुंचकर संपन्न हुआ।
2: बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है।
1: इससे पहले भी आए कभी रथ यात्रा?
2: नहीं, फर्स्ट बार आई हूँ, बट बहुत अच्छा लग रहा है, धन्य हो गई आके।
3: ये एक ऐसा फेस्टिवल है जो भक्तों को डायरेक्ट जगन्नाथ जी के बाहर आके कृपा बरसाते। बोलिए जय जगन्नाथ।
4: बहुत खुश है, बहुत बता नहीं सकते, वर्ष में नहीं बता सकते।
5: भगवान का आशीर्वाद मिलता रहे, बहुत खुशी है जगन्नाथ यात्रा की, हमको दर्शन हुए बाबा के।
6: मैं तो हर साल आती हूँ यहाँ पर, तो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे।
0: पूरे रास्ते में भजन कीर्तन, नृत्य, संकीर्तन का अद्भुत संगम देखने को मिला। महिलाएं, युवाओं, बुजुर्गों और बच्चों ने पूरे उत्साह के साथ अपनी भागीदारी दर्ज करवाई। सबसे खास आकर्षण रहा सजे हुए रथ की भव्य सजावट। इस बार 108 प्रकार के आमों से रथ को सजाया गया, जबकि भगवान को 11,000 किलो आम का विशेष भोग अर्पित किया गया। बाद में यही प्रसाद श्रद्धालुओं के बीच वितरित किया गया। आयोजन शुरू होने से पहले मंदिर में भी 11,000 आमों से विशेष श्रृंगार किया गया था।
7: शाड़ी द्वितीया जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है, सेम टाइम पर इस्कॉन द्वारका रथ यात्रा निकाल रहा है। हजारों लाखों श्रद्धालु उमड़ उमड़ के आ रहे हैं। इस्कॉन द्वारका ने इस बार पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिया है, दिल्ली एनसीआर में इतनी बड़ी रथ यात्रा नहीं हुई है। सभी भक्तों के लिए प्रसाद है, 11,000 किलो आम का भोग भगवान को लगाया गया है और रथ से वितरण किया जा रहा है। यहाँ पर रंगोलियां बनाई गई है, जगह जगह पर 200 से अधिक स्टॉल पर भक्तों को प्रसाद वितरण किया जा रहा है, जल की सेवा की जा रही है, एम्बुलेंस है, हर व्यवस्था यहाँ पर रखी गई है ताकि सब श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ का यथारूप पूरी का आनंद द्वारका दिल्ली में ले सके।
0: वहीं जयपुर में करीब 250 साल पुरानी परंपरा ने नया इतिहास रचा। पहली बार भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा एक साथ नहीं बल्कि 3 अलग अलग रथों पर विराजमान हुए। भगवान जगन्नाथ नंदीघोष, बलभद्र तालध्वज और देवी सुभद्रा दर्प दलन रथ पर सवार होकर निकले। तीनों रथों की ऊंचाई, रंग, पहिए, सारथी और पारंपरिक रस्सियां अलग पहचान बनाती नजर आई। दर्पदलन रथ विशेष आकर्षण का केंद्र रहा, जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मार्शल आर्ट में प्रशिक्षित महिलाओं ने संभाली। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने गोविंद देव जी मंदिर से इस भव्य आयोजन को रवाना किया। जलेबी चौक, पुरानी विधानसभा, हवा महल रोड, बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़ और त्रिपोली गेट से गुजरते हुए ये यात्रा चांदनी चौक स्थित श्री बृजनिधि मंदिर पहुँची। पूरे रास्ते श्रद्धालु जयकारे लगाते नजर आए, भक्ति गीत में झूमते नजर आए। उदयपुर में भी उत्साह कम नहीं था। लगभग 8 घंटे तक चलने वाला धार्मिक आयोजन आकर्षण का केंद्र बना। जगदीश चौक से शुरुआत हुई और घंटाघर, मोचीवाड़ा, भड़भुजा घाटी, अस्थल मंदिर और कालकाजी गोराजी सहित कई प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए नगर भ्रमण पूरा हुआ। इस अवसर पर करीब 375 वर्ष पुराने ऐतिहासिक लकड़ी के रथ का उपयोग किया गया। मंदिर स्थापना के बाद पहली बार भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा इसी प्राचीन रथ पर विराजमान हुए। साथ ही 95 किलो चांदी से बना रजत रथ भी आकर्षण का केंद्र बना। 21 बंदूकों की सलामी के बाद शोभा यात्रा आगे बढ़ी, जगह जगह पुष्प वर्षा हुई और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने स्वागत किया। रथ यात्रा की रौनक प्रयागराज में भी दिखी। आस्था की उसी उमंग में भक्त रंगे नजर आए। हेविट रोड स्थित श्री शिव दुर्गा हनुमान मंदिर से शुभारंभ हुआ। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा अलग अलग रथों पर विराजमान होकर नगर भ्रमण के लिए निकले। हेविट रोड, जॉनसनगंज, लोकनाथ, राम भवन, गुंडीचा मंदिर, छोटा चौराहा और मुट्ठीगंज तक हर रास्ता श्रद्धा के रंग में रंगा नजर आया। कई आकर्षक झांकियां लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। हजारों श्रद्धालुओं ने पूरे उत्साह के साथ रस्सियां थामकर रथ को आगे बढ़ाया। हर ओर भक्ति गीत, शंखनाद और जय घोष ही सुनाई दे रहे थे। पूरा माहौल आध्यात्मिक ऊर्जा सराबोर था। वहीं पुरी में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के प्रति लोगों का उत्साह हमेशा की तरह चरम पर नजर आया। देश के अलग अलग राज्यों में भी उसी परंपरा की झलक देखने को मिली। कहीं ऐतिहासिक रथ आकर्षण का केंद्र बने, कहीं विशेष श्रृंगार ने सबका मन मोहा, तो कहीं हजारों लोगों की भागीदारी ने आयोजन को यादगार बना दिया। दिल्ली से ओपी शुक्ला, जयपुर से रिदम जैन, उदयपुर से पंकज शर्मा, प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और हमारे इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: Jack FM is now streaming commercial-free on TuneIn Premium.
1: Jack, you're killing me.
0: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।

0: क्या आपके बच्चे को शिक्षा में दिक्कतें आ रही हैं? क्या बच्चा प्रतियोगिताओं में सफल नहीं हो पा रहा है? माता पिता कौन से करें उपाय बच्चे का जीवन संवर जाए, बच्चे को उन्नति मिले? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: Looking for an app to hear all of your favorite music, news, sports, and more? We've got all of your audio all in one place, right here on TuneIn. Play your favorite stations like K Bueno, ESPN Radio.
2: How they looked after game one.
3: I mean, they were frustrated.
1: The Daily.
4: I'm Sabrina Tavernisi, and this is The Daily from inside the Democratic National Convention Hall.
1: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
5: पुरी में रथ यात्रा के दूसरे दिन भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मौसी के घर पहुंचे भगवान जगन्नाथ। आज रात रथों में गुजारने के बाद कल सुबह गुंडीचा मंदिर में विराजमान होंगे महाप्रभु। 7 दिन तक विश्राम के बाद लौटेंगे अपने मंदिर। देश को मिली पहली हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात। प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा के जींद में हरी झंडी दिखाकर सोनीपत के लिए रवाना किया। देश को मिली 4700 करोड़ से ज्यादा की विकास योजनाओं की सौगात। पीएम ने पंजाब से किया शुभारंभ। देशभर में 75 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प। आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए गुड न्यूज। पिछले हफ्ते 96 करोड़ 40 लाख डॉलर बढ़ा विदेशी मुद्रा भंडार। कुल विदेशी मुद्रा भंडार 67,500 करोड़ डॉलर के पार। अंतरिक्ष में बड़ी छलांग लगाने की तैयारी। देश का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 कल सुबह 11:30 बजे श्रीहरिकोटा से भरेगा उड़ान।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
5: स्पेस सेक्टर में भारत की एक और ऐतिहासिक छलांग की तैयारी। देश का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 कल भरेगा उड़ान। मिशन आगमन के तहत लॉन्च होगा स्काई रूट का विक्रम 1 रॉकेट। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से विक्रम 1 की लॉन्चिंग। कार्बन कंपोजिट से बना लॉन्च व्हीकल है विक्रम 1 रॉकेट। 3D प्रिंटेड इंजन, हाई थ्रस्ट सॉलिड फ्यूल रॉकेट बूस्टर से लैस है विक्रम 1। ये भारतीय और विदेशी टेक्नोलॉजी पेलोड भी जाएंगे अंतरिक्ष। साल 2022 के विक्रम S के बाद स्काईरूट की सबसे बड़ी उड़ान। विक्रम वन की लॉन्चिंग पर पीएम मोदी का हस्तलिखित वंदे मातरम पोस्टकार्ड भी जाएगा अंतरिक्ष। 18 कैरेट सोने से बनी सीवी रमन, डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की सूक्ष्म रॉकेट कलाकृति भी भेजी जाएगी। प्रधानमंत्री ने किया हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा, 25,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात। जालंधर में प्रधानमंत्री मोदी ने की विकास की सौगात, 5,470 करोड़ की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। जालंधर के एंट रेलवे स्टेशन का भी पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 125 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है पुनर्विकास। जालंधर के स्टेशन से प्रधानमंत्री ने नई रेल सेवाओं को हरी झंडी दिखाई। कटोली पंजाब, अंबाला और जालंधर वाराणसी के बीच ट्रेन की रवाना। जींद के एकलव्य स्टेडियम में करीब 14,700 करोड़ के विकास कार्यों का पीएम मोदी ने किया शिलान्यास और लोकार्पण। रैली को भी संबोधित किया पीएम मोदी ने। हरियाणा के जींद स्टेशन से भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। ये ट्रेन जींद और सोनीपत के बीच 89 किलोमीटर के रूट पर चलेगी। इस ट्रेन में हाइड्रोजन लीक, गर्मी, आग और धुएं का पता लगाए गए हैं कई सुरक्षा सिस्टम। आम इलेक्ट्रिक ट्रेनों की तरह ये ट्रेन ऊपर लगी बिजली की लाइनों से पावर नहीं लेती। जींद सोनीपत रूट पर 11 स्टेशन पर रुकेगी हाइड्रोजन ट्रेन। करीब 2 घंटे का होगा जींद से सोनीपत का सफर। 75 किलोमीटर प्रति घंटे है इस ट्रेन की रफ्तार, जबकि इसकी डिजाइन स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस ट्रेन में लगे हैं 10 डिब्बे, करीब 2600 यात्री कर पाएंगे सफर। दुनिया में सबसे बड़ी हाइड्रोजन ट्रेन में शुमार। रेल यात्रियों के लिए गुड न्यूज, देश भर के 75 रेलवे स्टेशन की बदली सूरत। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किया गया पुनर्विकास। भारत और जापान के बीच मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना को लेकर सकारात्मक चर्चा। 2030 की शुरुआत में E10 श्रृंखला की हाई स्पीड ट्रेन उपलब्ध कराएगा जापान। तेजी से चल रहा है इस परियोजना का निर्माण, 2027 में परिचालन के लिए तैयार हो जाएगा इसका पहला खंड। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत तैयार पाली के सोमेश्वर स्टेशन का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने किया वर्चुअल उद्घाटन। करीब 12.5 करोड़ की लागत से पूरी की गई है सोमेश्वर स्टेशन की परियोजना। 1453 वर्ग मीटर में फैला है ये परिसर। पूरी तरह बदली गुजरात के ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण गोधरा जंक्शन की सूरत। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत हुआ है स्टेशन का कायाकल्प। करीब 6 करोड़ की लागत से हुआ है स्टेशन का रीडेवलपमेंट। यात्रियों के लिए उपलब्ध है सभी आधुनिक सुविधाएं, जिसमें बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए फुटओवर ब्रिज और लिफ्ट भी शामिल। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पीएम ने किया पुनर्विकास, फतेहपुर रेलवे स्टेशन का वर्चुअल उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए झारखंड के पिस्का और मुरी रेलवे स्टेशन का भी किया उद्घाटन। नए रंग रूप में नजर आया स्टेशन। हैदराबाद के हाईटेक सिटी अमृत भारत रेलवे स्टेशन का हुआ उद्घाटन। रामचंद्र राव ने समारोह में हिस्सा लिया। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर देश के लिए शानदार खबर, भारत के लिए विदेशी मुद्रा भंडार में आया रिकॉर्ड उछाल। लगातार दूसरे हफ्ते विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी, 675 अरब डॉलर के पार पहुंचा विदेशी मुद्रा भंडार। भारत के गोल्ड रिजर्व में जबरदस्त बढ़ोतरी। बिजनौर दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कई विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन, रखी आधारशिला। टू व्हीलर से नैनीताल जाने वाले पर्यटकों पर भी अब लगेगा 100 रुपए एंट्री टैक्स। बाहरी जिलों और राज्यों से आने वाले टू व्हीलर्स पर लागू किया गया नया फैसला। बिहार के गया में बोरवेल में फंसे 3 साल के बच्चे का सफल रेस्क्यू। एनडीआरएफ टीम को मिली वाहवाही। किया जाएगा सम्मानित। देहरादून में अग्निवीर संवाद कार्यक्रम का आयोजन, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी संख्या में मौजूद युवाओं से बातचीत की। सीएम ने युवाओं संग सेल्फी खिंचवाई, बोले उत्तराखंड वीरों की भूमि है और सैनिकों और उनके परिवारों का सम्मान राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल। शामली दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सीएम ने करीब 618 करोड़ की 90 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में सामाजिक एकता का जिक्र किया, बोले साथ मिलकर प्रदेश को विकास की ऊंचाई तक ले जाएंगे। रेल यात्रियों के लिए गुड न्यूज, मऊ से कोलकाता के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, 22 जुलाई से 24 सितंबर तक मिलेगी सुविधा। देश भर में घोषित हुए नीट यूजी परीक्षा के परिणाम, पंजाब के मानसा जिले की बेटी भाविका ने किया शानदार प्रदर्शन, ऑल इंडिया 56वीं रैंक हासिल। शानदार सफलता के बाद भाविका को बधाई देने वालों का लगा तांता, परिवार ने भी खुशी मनाई। नीट यूजी परीक्षा के परिणामों के बाद जयपुर में भी खुशी का माहौल, उपलक्ष गोयल ने ऑल इंडिया 3rd रैंक हासिल की, परिवार में खुशी की लहर। नागपुर के सौम्य धनराज बडोले ने नीट परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 77 हासिल किया, सौम्य के घर खुशी की लहर, परिवार को बेटे पर गर्व। नीट परीक्षा में 676 अंक लाकर झारखंड के बेटे ने किया टॉप। जम्मू कश्मीर के उधमपुर से सामने आई प्राकृतिक सौंदर्य की मनमोहक तस्वीर, हरियाली पहाड़ और बादलों का संगम पर्यटकों को खूब लुभा रहा है। उधमपुर की खूबसूरत वादियों और प्राकृतिक नजारे पर्यटकों को कर रहे आकर्षित, सुबह की इन तस्वीरों ने लोगों को मंत्रमुग्ध किया। दमन से नई दिल्ली के लिए सीधी हवाई सेवा का शुभारंभ, पर्यटन व्यापार निवेश और विकास को मिलेगी नई गति, आने वाले दिनों में कई शहरों में शुरू होंगी सेवाएं। बलरामपुर की लखपति दीदी निर्मती की बदली तकदीर, सुअर पालन और खेती के दम पर दलमती बनी आत्मनिर्भर। दलमती ने कृषि और पशुपालन से रचा सफलता का नया अध्याय, बढ़ी आमदनी और परिवार की आर्थिक स्थिति हुई मजबूत। गुवाहाटी में भारी बारिश के बाद जलभराव, शहर के कई इलाकों में भरा पानी, जनजीवन प्रभावित। अचानक कई बार से लाहौल स्पीति में उफान पर तांगी नदी, उदयपुर मार्ग पर रंगबे नाला तेज बहाव के साथ बहता नजर आया मलबा। केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर छोड़ी के निकट टूटकर सड़क पर आया पहाड़ का हिस्सा, सुरक्षा कर्मी तैनात, यात्रियों को सुरक्षित आर पार भेज रहे हैं जवान। हिमाचल में मानसून जल्दी पकड़ेगा रफ्तार, मौसम विभाग ने भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। गोवा में भारी बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ा, एहतियातन प्रशासन अलर्ट। पूरी रथ यात्रा के दूसरे दिन गुंडीचा मंदिर पहुंचे तीनों रथ, अब 7 दिन मौसी के घर रहेंगे देवता। महाप्रभु का जन्मस्थान माना जाता है गुंडीचा मंदिर, रथ यात्रा के दूसरे दिन 9 लाख श्रद्धालु भव्य आयोजन में शामिल हुए। 7 दिन तक भगवान जगन्नाथ गुंडीचा मंदिर में ही रहेंगे और इस दौरान गुंडीचा मंदिर में विशेष पूजा दर्शन और कई पवित्र अनुष्ठान होंगे। 7 दिन गुंडीचा मंदिर में विश्राम करने के बाद भगवान अपने मुख्य मंदिर के लिए वापसी की यात्रा शुरू करेंगे, उसे महुदा यात्रा कहा जाता है। पुरी के जगन्नाथ रथ यात्रा में आस्था के साथ साथ मानवीय संवेदना की दिखी तस्वीर, मानव श्रृंखला बनाकर एम्बुलेंस को रास्ता दिया। दिल्ली के द्वारका इस्कॉन मंदिर में भव्य जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगवान को 11,000 किलो आमों का भोग अर्पित किया गया, आरती के बाद श्रद्धालुओं के बीच बांटा गया महाप्रसाद। भगवान जगन्नाथ को एक विशाल मैंगो फेस्टिवल में 108 विभिन्न किस्मों के आमों का भोग लगा, भक्तों ने पूरे उत्साह के साथ निकाली रथ यात्रा। रथ यात्रा में हजारों की संख्या में भक्त शामिल हुए, भक्तों की सुविधा के लिए जगह जगह लगाए गए स्टॉल्स। रथ यात्रा कल शाम 4 बजे मंदिर परिसर से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से गुजरी, जहां भक्तों ने उत्साह के साथ रथ की रस्सियां खींची। इस रथ यात्रा में दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद शामिल हुए। भगवान की आस्था में रमे नजर आए आशीष सूद। पंढरपुर में भगवान विट्ठल को भक्त ने अनोखी भेंट दी। भगवान के चरणों में अर्पित की सोने की पादुकाएं। लगभग 57 लाख बताई जा रही है इन स्वर्ण पादुकाओं की अनुमानित कीमत। दान के दौरान भक्त ने अपने नाम गोपनीय रखने की शर्त रखी। बद्रीनाथ धाम में दर्शनों को आ रहे भक्तों ने बनाया एक और रिकॉर्ड। अब तक 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। जुलाई के मध्य तक दर्शन का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा। 19 अप्रैल से शुरू हुई थी पवित्र यात्रा। मॉनसून का दौर शुरू होने के बावजूद बद्रीनाथ यात्रा की रफ्तार बरकरार। पल पल बदल रहे मौसम के बीच आस्था भारी बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। ओडिशा के अंगुल में धूमधाम से निकाली गई भगवान जगन्नाथ रथयात्रा। जनरल नगर के देवभूमि मंदिर में हजारों की संख्या में भक्त और कर्मचारियों ने साथ मिलकर खींचा रथ। सांसद और उद्योगपति नवीन जिंदल ने निभाई छेरा पहरा की रस्म। देशवासियों को इस पावन पर्व की शुभकामनाएं। आस्था और उल्लास के बीच थूथुकुड़ी में आदि उत्सव की भव्य शुरुआत। पारंपरिक अनुष्ठानों के बीच खोले गए मंदिर के कपाट। थूथुकुड़ी में आदि उत्सव के पहले दिन भक्तों ने बड़ी संख्या में दर्शन किए। धार्मिक आयोजन से माहौल भक्तिमय हो गया। संगम नगरी प्रयागराज के मनकमेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए लागू हुए ड्रेस कोड। महिलाएं साड़ी और सूट पहन सकती हैं, पुरुष धोती कुर्ता में ही करेंगे दर्शन। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले गढ़वाल कमिश्नर ने यात्रा मार्ग का जायजा लिया। श्रद्धालुओं के लिए यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने पर जोर दिया। कांवड़ मेले को सुरक्षित और सुगम बनाने को लेकर आज हरिद्वार में इंटरस्टेट बैठक। उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और यूपी के अधिकारियों के अलावा आईटीबीपी, एसएसबी और एनडीआरएफ के आला अधिकारी शामिल हुए। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में 83 लोगों का अनोखा संयुक्त परिवार। 6 पीढ़ियां रहती हैं एक साथ परिवार में। वर्तमान में 43 पंजीकृत मतदाता, 20 बेटे और बहुएं शामिल। परिवार का कहना है आपसी एकता है सबसे बड़ी दौलत। खेती से लेकर कारोबार तक हर काम मिलकर करता है ये पूरा परिवार। आज भी परंपराओं के साथ जी रहा है परिवार। जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची पीवी सिंधु। ओकुहारा ने दिया वॉकओवर। अब चीन की चेन युफई से खेलेंगी मैच। जापान ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय महिला शटलर बनी सिंधु। इससे पहले 2011 में साइना नेहवाल ने जापान ओपन के सेमीफाइनल में किया था प्रवेश। इंग्लैंड के खिलाफ 65 रन की पारी खेलकर विराट ने तोड़ा सचिन का रिकॉर्ड। भारत की तरफ से इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बने विराट। फीफा ने इस बार इतिहास की सबसे बड़ी नामी राशि रखी। फुटबॉल वर्ल्ड कप चैंपियन को मिलेंगे करीब 5,000 करोड़ रुपए। वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाले हर देश को मिलेंगे करीब 120 करोड़। वर्ल्ड चैंपियन बनने वाली टीम के खिलाड़ियों और स्टाफ को ट्रॉफी और गोल्ड मेडल के साथ दी जाएगी चैंपियनशिप रिंग। इसके एक तरफ बनी होगी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी। इमरान हाशमी के फैंस के लिए बड़ा सरप्राइज। आवारापन 2 से पहले 31 जुलाई को फिल्म आवारापन फिर से होगी रिलीज। हिमांशु कोहली, सोनाली सहगल और रवि किशन की फिल्म आर्यभट्ट का 0 का टीजर रिलीज। 7 अगस्त को बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देगी। मराठी सिनेमा में कदम रख रही एक्ट्रेस सदा शर्मा सच्ची घटनाओं पर आधारित अपनी अपकमिंग फिल्म गजरा को लेकर काफी चर्चा में। कैटरीना कैफ के 43वें बर्थडे पर विकी कौशल ने दिया सरप्राइज, प्यार भरे अंदाज में कैटरीना को बर्थडे विश किया, फोटो वायरल। पैनोरमा स्टूडियोज और सिनेपोलिस इंडिया ने दिल्ली यूपी के लिए डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनरशिप की घोषणा की, धमाल फोर और बेबी डू डाइडू के साथ हुई इस सहयोग की शुरुआत। बोलिविया की युवा महिलाएं पारंपरिक पोलेरा स्कर्ट पहनकर कर रही हैं स्केटबोर्डिंग, खेल के साथ अपनी आदिवासी पहचान को भी मजबूत रखा। बोलिविया का वार्मेस सोब रीडस ग्रुप स्केटबोर्डिंग के जरिए महिलाओं को सशक्त बनाने और आयमारा संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचाने में जुटा। स्केट पार्क में संस्कृति की उड़ान, लाफाजा की सड़कों पर पारंपरिक पोशाक पहनकर स्केटिंग करती लड़कियों ने पेश की नई मिसाल। आधुनिक जीवन शैली का परंपरा से संगम स्केटबोर्डिंग करती इन महिलाओं को अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व। बोलिविया में आदिवासी महिलाओं की नई पीढ़ी को सीख, स्केटबोर्डिंग के जरिए सांस्कृतिक आत्मविश्वास और महिला सशक्तिकरण का संदेश। चीन में खुला हाईटेक पैंगविन पेविलियन, हार्बन पोलर पार्क में देश का पहला पोलर मरीन रिसर्च एजुकेशन बेस नए अंदाज में फिर खुला। अफ्रीका के दुर्लभ ब्लैक फुटेड पैंगविन बने पहचान, पेविलियन में पहली बार रेयर अफ्रीकन ब्लैक फुटेड पैंगविन और साउथ अफ्रीका के मशहूर पैंगविन टाउन की हूबहू झलक। लाइव पैंगविन, होलोग्राम, एआई और डीप सी टेक्नोलॉजी के साथ चीन का ये सेंटर मरीन कंजर्वेशन एंड एनवायरनमेंट का नया बेंचमार्क बना। कांगो के जंगल में बंदर की नई प्रजाति मिली, 75 साल में अफ्रीका की ये सिर्फ पांचवी बड़ी खोज। लकवेली नाम की इस दुर्लभ प्रजाति पर संकट के बाद इस प्रजाति पर विलुप्त होने का गंभीर खतरा। दुनिया का सबसे बड़ा कमल तालाब खिला चीन के जियांगशी प्रांत में, 1.08 वर्ग किलोमीटर में फैला विशाल कमल तालाब पर्यटकों के लिए गुजार। गिनीज बुक वाला कमल तालाब बना आकर्षण, 2016 में दुनिया का सबसे बड़ा कमल तालाब घोषित हुआ था। व्हाइट लोटस की धरती पर खिला सौंदर्य, कमल की खुशबू से महक उठी चीन की वांगशांग काउंटी। गर्मियों के बीच खिले रंग बिरंगे कमलों ने चीन के इस ऐतिहासिक तालाब को बना दिया है बड़ा पर्यटन केंद्र। मनमोहक दृश्य ने जीता सबका दिल, चीन की लोटस कल्चर कैपिटल में पर्यटकों की लगातार बढ़ रही दिलचस्पी।
9: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars, NSYNC, and Britney Spears. Or rock artists, like Sublime, and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits, or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
3: परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़

0: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars, NSYNC, and Britney Spears. Or rock artists, like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। TIT भोपाल, Gen Z's gateway to unbeatable placements. Sage University, transforming your passion into profession.
3: पुरी में रथ यात्रा के दूसरे दिन भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मौसी के घर पहुंचे महाप्रभु। गुंडिचा मंदिर में 7 दिन विश्राम के बाद 24 जुलाई को लौटेंगे अपने मंदिर। अंतरिक्ष में एक और ऐतिहासिक छलांग लगाने की तैयारी। देश का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 कल सुबह 11:30 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भरेगा उड़ान। देश को मिली पहली हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात। प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जींद में दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देश को मिली 4700 करोड़ से ज्यादा की विकास योजनाओं की सौगात। पीएम ने पंजाब से किया शुभारंभ। देश भर में 75 रेलवे स्टेशन का हुआ कायाकल्प। आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए गुड न्यूज। पिछले हफ्ते 96,40,00,000 डॉलर बढ़ा विदेशी मुद्रा भंडार। 67,500 करोड़ डॉलर के पार पहुंचा कुल विदेशी मुद्रा भंडार।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका गुड लक टुडे में और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। और मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार।
0: तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे संतान की सफलता के बारे में। हर कोई माँ बाप चाहता है कि उनकी संतान जो है वो सफल हो, अपने जीवन में आगे बढ़े। तो इसके लिए माता पिता को उनकी संतान के लिए कैसे उपाय करने चाहिए और क्या उपाय करने चाहिए, उस पर विस्तार से करेंगे हम।

0: जिससे चर्चा, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र।
1: अगर आप अपने वैवाहिक जीवन को अच्छा रखना चाहते हैं तो एक लोटा जल लें, उसमें गुलाब की कुछ पंखुड़ियां डालें और सूर्य भगवान को जल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से आपका वैवाहिक जीवन बेहतर होगा।
0: और आइए अब जान लेते हैं 18 जुलाई 2026 यानी कि शनिवार का पंचांग क्या है।
1: दिनांक 18 जुलाई 2026 दिन शनिवार, तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र शाम के 6 बजे तक, चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं, रात के 11:59 तक, राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक, पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: और आइए अब जानते हैं पंडित जी से ही कि माता पिता के द्वारा उपाय करने से संतान को कैसे लाभ होगा।
1: जी, हम आज आपको ये बता रहे हैं कि माता पिता के उपाय करने से, माता पिता के प्रयास करने से संतान को सफलता कैसे मिल सकती है। पहला प्रश्न यही है कि अगर माता पिता उपाय करें तो संतान को लाभ क्यों होगा, कैसे होगा। देखिए, माता पिता के ग्रह संतान से सीधे जुड़े हुए होते हैं, साथ ही साथ माता पिता की भावना भी संतान से जुड़ी हुई होती है। ऐसे में अगर माता पिता संतान के लिए उपाय करें, उसके लिए प्रार्थना करें, तो इससे संतान को तुरंत लाभ मिलता है। और माता पिता अगर प्रार्थना करें, मंत्र जप करें, उपाय करें, तो संतान के जीवन में आ रही बाधाएं तुरंत दूर हो जाती हैं। यानी माता पिता की भावनाओं की वजह से, माता पिता के मंत्रों और प्रार्थनाओं की वजह से संतान का जीवन बेहतर होना शुरू हो जाता है।
0: और चलिए जानते हैं जो बच्चे नर्सरी से 5वीं के बीच में हैं, उनके माता पिता क्या उपाय करें ताकि उनका भविष्य जो है, उन बच्चों की जो जीवन में सफलता है वो जल्दी से आए।
1: देखिए, अगर आपका बच्चा नर्सरी से लेकर के 5वीं कक्षा के बीच में है, 5वीं क्लास के बीच में है, तो माता पिता क्या करेंगे, बच्चे को रोज सवेरे तुलसी के 2 पत्ते खिलाइएगा, रोज सुबह और शाम जब समय मिले बच्चों के साथ बैठकर, अपने बगल में बच्चे को बैठाकर 27 बार या 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिएगा। यानी अगर आपके छोटे बच्चे के मन में उसके दिमाग में गायत्री मंत्र पड़ेगा तो शुरुआत से ही आपका बच्चा सही रास्ते पर चलने लगेगा।
0: और अब जानते हैं कि जो बच्चे छठवीं से दसवीं कक्षा में हैं, उनके माता पिता क्या उपाय करें।
1: अगर आपका बच्चा छठवीं से लेकर के दसवीं क्लास में है तो माता पिता क्या करेंगे, बच्चे को फास्ट फूड खाने से बचाइएगा। बच्चा फास्ट फूड कम से कम खाएगा और बच्चे को एक आदत डलवाइए कि किसी भी तरीके से वो सूर्य भगवान को जल अर्पित करे। और माता पिता हर शनिवार की शाम को घर में सुंदर कांड का पाठ करें, बच्चे को भी उसमें बैठाएं और बच्चे की उन्नति की प्रार्थना अगर माता पिता करेंगे तो बच्चे के उन्नति की संभावना बन जाएगी।
0: और अब वक्त हो गया आज के राशिफल के बारे में जानने का, तो चलिए जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि वालों का क्या है राशिफल।
1: मेष राशि, धन का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, स्वास्थ्य में सुधार होगा, वाद विवाद से बचाव करें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य पर ध्यान दें, संतान को लेकर परेशान ना हो, परिवार में अशांति से बचाव करें, काले चने का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा, करियर में कुछ बदलाव होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: तो स्कूल के बारे में तो पंडित जी ने बता दिया, आप जानते हैं कि जो बच्चे कॉलेज पढ़ते हैं उनके माता पिता ऐसा क्या करें ताकि उनके बच्चों को जीवन में सफलता मिले।
1: अगर आपका बच्चा कॉलेज में पढ़ता है, 12वीं की पढ़ाई कर ली है और अब कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है तो उसके उन्नति के लिए माता पिता क्या करेंगे। माता पिता में से कोई भी रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और प्रयास करें कि आपका बच्चा भी सूर्य को जल अर्पित करे। बच्चे के हाथ से स्पर्श करवाकर हर शनिवार को अनाज का या खाने पीने की चीजों का दान करवाएं और माता पिता में से कोई भी अपने बच्चे के लिए रोज सवेरे ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करें, बच्चे के कल्याण की प्रार्थना करें, बच्चे को लाभ होगा।
0: और जो बच्चे इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, उनके माता पिता कैसा उपाय करें, क्या उपाय करें ताकि उनके बच्चे अपने करियर में सफल हों?
1: अगर आपका बच्चा इंजीनियरिंग में जाने की तैयारी कर रहा है, इंजीनियरिंग के लिए प्रयास कर रहा है, तो माता पिता क्या उपाय करें कि बच्चे को सफलता मिले? अगर आपका बच्चा इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, तो बच्चे को एक लोहे का छल्ला धारण करवाइएगा। शनिवार को पीपल के नीचे माता पिता में से कोई भी एक सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे और माता पिता में से कोई भी रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करेंगे, बच्चे के कल्याण की प्रार्थना करेंगे, साथ में बच्चा मेहनत करेगा तो इंजीनियरिंग में सफलता मिल जाएगी।
0: और अब वक्त हो गया है कर्क, सिंह और कन्या राशि के राशिफल को जानने का।
1: कर्क राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा, काम की अधिकता रहेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।

0: मिलेगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, काम टालने से बचाव करें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, काले चने का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
1: और गुडलक में अब जानेंगे आज के सवालों के बारे में और पंडित जी द्वारा उनके दिए जाने वाले जवाबों के बारे में। तो चलिए जानते हैं, पहला सवाल पंडित जी आज का किसका लेते हैं
0: जी। आज का पहला प्रश्न पलक वाजपेयी ने हमें लिखा है, ग्वालियर से लिखती हैं, 30 जुलाई 2004 का जन्म है, 5:02 शाम को ग्वालियर मध्य प्रदेश। ये कह रही हैं कि मैं काफी समय से नौकरी की तैयारी कर रही हूं, किस तरह का मेरा करियर होगा, क्या मुझे सरकारी नौकरी मिल सकती है। पलक आपकी कुंडली बनती है धनु लग्न की और धनु राशि की, महादशा मंगल की और अंतर दशा केतु की चल रही है। आप बिल्कुल सरकारी नौकरी की तैयारी करिए, और अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करती हैं तो शिक्षा क्षेत्र में, टीचिंग के क्षेत्र में या बैंकिंग के क्षेत्र में आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है। साल 2028 में इसके बेहतर संकेत दिखाई दे रहे हैं। करियर में सफलता पाने के लिए एक माणिक्य धारण करिए, 6 से 8 रत्ती का माणिक्य, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार को प्रातः माणिक्य धारण करें और रोज सुबह सूर्य भगवान को अगर जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: अगर आपके मन में भी कोई सवाल है और आप चाहते हैं पंडित जी से पूछना तो आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। और चलिए अब वक्त हो गया आज के दूसरे सवाल का। तो पंडित जी, आज का दूसरा सवाल आप किसका लेने वाले हैं
0: जी। अगला प्रश्न रमेश चंद्र जी ने देहरादून से लिखा है, अपनी पुत्री के लिए लिख रहे हैं, पुत्री की जन्म तारीख है 5 सितंबर 2002, 4:25 शाम को देहरादून उत्तराखंड। ये कह रहे हैं कि मेरी बेटी ने एमए किया है साइकोलॉजी में, आगे उसका करियर किस दिशा में जाएगा, कैसा जीवन रहेगा। रमेश जी, आपकी पुत्री की कुंडली बनती है मकर लग्न की और कर्क राशि की, महादशा शुक्र की और अंतर दशा बृहस्पति की चल रही है। अगर आपकी बेटी प्रयास करें, तैयारी करें तो प्रशासनिक सेवा में जा सकती हैं, शिक्षा या रिसर्च के क्षेत्र में भी अपना करियर बना सकती हैं, ये संभावना उनके लिए बन रही है। इस कुंडली में विवाह के मामले में सावधानी रखनी चाहिए और जब भी विवाह किया जाए सोच समझ करके कुंडली मिला करके करना चाहिए। इनके बेहतर करियर के लिए एक इनको ओपल बनवा के पहना दें, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल इनको पहनाएं और इनको कहें कि ये रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो इनके लिए बेहतर होगा।
1: तो इंजीनियरिंग के बारे में तो हमने जान लिया, अब जो बच्चे मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं उनके माता पिता क्या उपाय करें ताकि उनके बच्चे जो हैं वो मेडिकल फील्ड में आगे बढ़ते रहें?
0: अगर आपका बच्चा मेडिकल क्षेत्र की तैयारी कर रहा है, मेडिकल में जाना चाहता है और आपके बच्चे को सफलता मिले, इसके लिए माता पिता क्या कर सकते हैं? बच्चे को सबसे छोटी उंगली में, राइट हैंड की सबसे छोटी उंगली में एक चांदी का छल्ला धारण करवाइएगा। शुक्ल पक्ष के सोमवार को माता पिता में से कोई भी चंद्रमा को जल चढ़ाएंगे, चंद्रमा को अर्घ देंगे और माता पिता में से कोई भी रोज शाम को 108 बार ओम चंद्रशेखराय नमः, ओम चंद्रशेखराय नमः इस मंत्र का जप करेंगे और अपनी संतान की सफलता की प्रार्थना करेंगे। आपके संतान को मेडिकल के क्षेत्र में सफलता अवश्य मिलेगी।
1: और जो बच्चे प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं, मतलब सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके माँ बाप ऐसा क्या उपाय करें ताकि उनको अपने जीवन में सफलता मिले?
0: अगर आपका बच्चा एडमिनिस्ट्रेटिव नौकरी की, प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहा है तो माता पिता क्या उपाय करेंगे? बच्चे को सोने या तांबे का एक छल्ला दाहिने हाथ की, राइट हैंड की अनामिका अंगुली में रविवार को प्रातः धारण करवाएंगे। नियमित रूप से माता पिता में से कोई भी रोली मिला करके सूर्य को अर्घ देंगे, जल चढ़ाएंगे और रोज सुबह 108 बार ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करिएगा और अपने बच्चे की सफलता की प्रार्थना करिएगा। तो अगर आपका बच्चा मेहनत करे और माता पिता ये उपाय करें तो बच्चे को सफलता अवश्य मिलेगी।
1: और चलिए वक्त हो गया है तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के राशिफल को जानने का।
0: तुला राशि, रुके हुए काम इस समय आपके पूरे होंगे, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, धन लाभ के योग हैं, खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, छोटी यात्रा हो सकती है, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी, स्थान परिवर्तन हो सकता है, चोट चपेट से बचाव करें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए अब बात कर लेते हैं उन बच्चों की जो कॉरपोरेट के क्षेत्र की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, जो कॉरपोरेट की फील्ड में जाना चाहते हैं तो उनके माँ बाप उनके लिए ऐसा क्या उपाय करें ताकि उन्हें अपने जीवन में सफलता हासिल हो।
0: अगर आपका बच्चा कॉरपोरेट सेक्टर की तैयारी कर रहा है, मैनेजमेंट की, बैंकिंग की, फाइनेंस की, मार्केटिंग की, तो माता पिता क्या करेंगे, बच्चे को रोज सवेरे घर से निकलने के पहले सौंफ खाने की आदत डलवाइएगा। माता पिता में से कोई भी नियमित रूप से गणेश जी को दूर्वा यानी दूब अर्पित करेंगे और रोज सुबह ओम गं गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें और अपने बच्चे के उन्नति की प्रार्थना करें, आपके बच्चे को सफलता मिलेगी।
1: और जो बच्चे रक्षा क्षेत्र की तैयारी कर रहे हैं उनके माँ बाप उनके लिए क्या करें, क्या उपाय करें ताकि उन्हें अपने फील्ड में जो है वो हमेशा सफलता ही मिले।
0: अगर आपका बच्चा रक्षा क्षेत्र की, डिफेंस के सेक्टर की तैयारी कर रहा है तो माता पिता क्या उपाय करेंगे, नियमित रूप से हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाइए, चाहे माँ चढ़ाएं चाहे पिता चढ़ाएं, और इसके बाद सुबह के समय ओम हं हनुमते नमः इस मंत्र का जप करेंगे और अपने बच्चे के सफलता की प्रार्थना करेंगे। अगर आपका बच्चा मेहनत कर रहा है और माता पिता ये उपाय करते हैं तो बच्चे को रक्षा क्षेत्र में सफलता अवश्य मिलेगी।
1: और अब वक्त हो गया आज के अंतिम राशिफल के बारे में जानने का, तो चलिए जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का क्या है राशिफल।
0: मकर राशि, स्वास्थ्य का इस समय ध्यान रखें, पारिवारिक विवादों से बचाव करें, धन के लेन देन में सावधानी रखें, काले चने का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। कुंभ राशि, धन का लाभ होगा, संतान पक्ष की उन्नति होगी, पारिवारिक समस्या हल होगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, स्थान परिवर्तन के योग हैं, करियर में सफलता मिलेगी, धन की स्थिति में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और आइए अब जानते हैं आज का तीसरा प्रश्न जो है वो पंडित जी को कहां से और किसने भेजा है।
0: जी, अगला प्रश्न मुकेश कुमार सिन्हा ने हमें लिखा है, पश्चिम बंगाल से लिखते हैं। 5 जून 1989 का जन्म है। 1:10 मध्य रात्रि को खड़गपुर पश्चिम बंगाल। ये कह रहे हैं कि मेरे विवाह के 2 साल बीत गए हैं और अब तक संतान की संभावना नहीं बनी है, तो संतान के योग कब तक बनेंगे। मुकेश जी, आपकी कुंडली बनती है मीन लग्न की और आपकी राशि बनती है मिथुन। महादशा शनि की और अंतर दशा भी शनि की चल रही है। देखिए, संतान के योग फिलहाल बने हुए हैं और अभी से लेकर के अगले साल के फरवरी तक अगर प्रयत्न किया जाए तो आपकी पत्नी गर्भ धारण कर लेंगी, उसकी संभावना दिखाई दे रही है। आप ऐसा करिए, एक मोती बनवा करके पहन लीजिए, 8-10 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा करके धारण करें और आप और आपकी पत्नी रोज सुबह भगवान कृष्ण के मंत्र का जप करें 108 बार। मंत्र होगा, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। इस मंत्र का निरंतर अगर जप किया जाए तो लाभ होगा।
1: गुड लक में वक्त हो गया आज के अंतिम प्रश्न का, तो चलिए जानेंगे पंडित जी से ही आज का अंतिम और चौथा प्रश्न वो किसका लेने वाले हैं।
0: जी, आज का अंतिम प्रश्न निहाल सोहरा ने हमें लिखा है, नीमच मध्य प्रदेश से लिखते हैं। 21 नवंबर 2007 का जन्म है। 9:55 प्रातः नीमच मध्य प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मैं अभी 12वीं की पढ़ाई कर रहा हूं, आगे अपने पिता के साथ मिल करके व्यापार करना चाहता हूं, तो क्या ऐसा करना मेरे लिए ठीक होगा और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। निहाल, आपकी कुंडली बनती है धनु लग्न की और मीन राशि की, महादशा केतु की और अंतर दशा शुक्र की चल रही है। आपकी कुंडली शुद्ध रूप से व्यवसाय वाली है और व्यवसाय के क्षेत्र में ही आपको ज्यादा सफलता मिलने की संभावना दिख रही है। जून 2027 के बाद आप व्यापार आरंभ कर पाएंगे, ये संभावना कुंडली में दिखाई दे रही है। फिलहाल आप ऐसा करें, एक मूंगा बनवा के पहन लें, 10-12 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार को प्रातः मूंगा धारण करिए, रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपको लाभ होगा।
1: और जिनका जन्मदिन आने वाला है उन्हें हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे टू यू। आइए जानते हैं कि आपका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 18 जुलाई को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में परिवर्तन के योग बन रहे हैं, धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी, विवाह और संतान के मामलों में अभी विलंब होगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर हनुमान जी की अगर आप पूजा करें, उपासना करें, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और अब वक्त हो गया आज की जिज्ञासा के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की जिज्ञासा क्या है।
0: आज की जिज्ञासा है कि अगर आप बिना सही मुहूर्त के कोई काम करते हैं तो इसके परिणाम क्या होंगे। देखिए, सही मुहूर्त जो है वो उस समय के सही ग्रहों का सही प्रयोग है। सही मुहूर्त में काम करने से काम के अच्छी तरह से होने की संभावना बन जाती है। बिना सही मुहूर्त के अगर आप काम करते हैं तो लंबे समय तक उस काम में आपको सफलता नहीं मिलेगी।
1: और गुडलक में अब जानेंगे आज के शुभ पहर के बारे में, तो चलिए जानते हैं 18 जुलाई 2026 यानी कि शनिवार का शुभ पहर कौन सा है।
0: दिनांक 18 जुलाई 2026 दिन शनिवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में शनि मंत्र का यथाशक्ति जप करिएगा, रोजगार की स्थितियों में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, 18 जुलाई शनिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
1: और गुडलक में जानेंगे आज की गुडलक राशि के बारे में, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से ही कि आज की गुडलक राशि कौन सी है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों को किस ग्रह का दान करना चाहिए। आज की गुड लक राशि है कर्क। इनको बुध और शुक्र ग्रह का दान करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में भावनात्मक समस्याओं से बचे रहेंगे।
1: गुड लक में हम पहुंच गए आज के अंतिम पड़ाव पर, जहां पंडित जी रोज हमें एक नया महा उपाय बताते हैं। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, आज का महा उपाय क्या है?
0: जी,

0: आपको बताते हैं कि अगर किसी टूटे हुए रिश्ते को, संबंध को फिर से जोड़ना है तो क्या करेंगे? एक सफेद रंग का रुमाल ले लीजिए, इसमें एक रुपए का सिक्का, चुटकी भर चावल और गुलाब का इत्र रखिए। सामान रखते समय उस व्यक्ति का नाम लेते रहिए जिससे आपको संबंध फिर से जोड़ना हो। रुमाल को बांध करके पूजा स्थान पर रख दें, 3 से 6 महीनों के अंदर आपके संबंध जुड़ जाएंगे।
1: पंडित जी, तमाम जानकारी के लिए और महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो पंडित जी से महा उपाय तो आपने जान लिया, बाकी देश और दुनिया की तमाम अच्छी और सच्ची खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: और बुलेटिन में अब बात भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की, जिसका आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी पूरे जोश और उत्साह के साथ बड़ी संख्या में लाखों भक्त रथ यात्रा में शामिल हुए और वो पूरे भक्ति भाव के साथ रथों को खींचकर गुंडिचा मंदिर ले गए, जहां भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा अगले 7 दिन तक विश्राम करेंगे और भक्तों को दर्शन देंगे। 7 दिन बाद भगवान वापस मुख्य मंदिर लौट आएंगे और इसी के साथ यात्रा का समापन होगा। इन 7 दिनों के दौरान गुंडिचा मंदिर में क्या कुछ होगा आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में।

0: श्रद्धालुओं में वही जोश, वही उत्साह, वही उमंग नजर आया महाप्रभु की रथ यात्रा के दूसरे दिन। पहले दिन रथ यात्रा को विश्राम के लिए जहां रोका गया था, वहीं से पूजा पाठ के बाद दूसरे दिन की यात्रा का श्री गणेश हुआ। जैसे जैसे तीनों रथ गुंडिचा मंदिर की ओर बढ़ते गए, महाप्रभु के भक्तों का जोश और उत्साह भी देखते ही बना। किसी ने दोनों हाथ उठाकर जय जगन्नाथ का जयकारा लगाया, किसी ने आरती उतारी तो किसी ने शीश झुकाकर महाप्रभु को प्रणाम किया, और कोई तो महाप्रभु के मनोहारी दर्शन पाकर भावुक ही हो गया।
1: विश्व प्रसिद्ध गुंडिचा यात्रा महाप्रभु की, ये विश्व में ऐसे भगवान हैं जो खुद अपनी प्रजा, अपने भक्तों को देखने आते हैं साल में एक बार, और अपनी मातृभूमि में रहकर फिर वापसी करते हैं, जिसे हम सब बाहुड़ा यात्रा बोलते हैं। और ये भगवान का एक लीला खेला है, जिसमें भगवान ये कलयुग में विभिन्न प्रकार का अपना रूप दिखाते हैं, और विशेषकर विश्व के लोग, उड़ीसा के लोग, जनसाधारण बहुत अच्छे से रहे हैं, उनके मंगल कामना, सुख कामना के लिए भगवान खुद आते हैं रथ यात्रा में द्वितीया के दिन। और आज तीन ही रथों में भगवान जगन्नाथ का, बड़े भाई बलभद्र का, बहन सुभद्रा का दर्शन हुआ। हम लोग सब अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं, हम सब परिवार आके आज प्रभु के दर्शन किए हैं।
2: बहुत तो अच्छा दर्शन मिला है मुझे, बहुत खुशी है, आनंद भी है जगन्नाथ का, बहुत ज्यादा खुशी है महाप्रभु का।
0: हर साल की तरह इस साल भी गुंडिचा मंदिर पहुंचने के बाद भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ 7 दिनों तक विश्राम करेंगे। इन 7 दिनों के दौरान गुंडिचा मंदिर में रोजाना भगवान की विशेष पूजा, महाप्रसाद का भोग लगेगा, पारंपरिक अनुष्ठान होंगे और भगवान अपने भक्तों को यहीं दर्शन देंगे। मुख्य मंदिर की तुलना में गुंडिचा मंदिर में भक्तों को भगवान के बहुत करीब जाने का मौका मिलता है। 5वें दिन हेरा पंचमी का उत्सव मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी, जो मुख्य मंदिर में छूट जाती हैं, भगवान को खोजते खोजते गुंडिचा मंदिर आती हैं और गुस्से में अपने पति भगवान जगन्नाथ के रथ का एक हिस्सा तोड़कर वापस लौट जाती हैं। मुख्य मंदिर में वापसी से ठीक एक दिन पहले गुंडिचा मंदिर में संध्या दर्शन या नवमी दर्शन होता है। ये गुंडिचा मंदिर में भगवान के दर्शन का आखिरी दिन होता है, इसलिए इस दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु मरते हैं। भगवान जगन्नाथ के असंख्य भक्तों में कुछ भक्त 7 समंदर पार से भी आए हैं, जो महाप्रभु की रथ यात्रा में शामिल होकर खुद को बहुत सौभाग्यशाली समझ रहे हैं।
3: जय वी आर कमिंग फ्रॉम कोलंबिया टू गेट द मर्सी ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। लॉर्ड जगन्नाथ इज द लॉर्ड ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड and all the boat is coming from all around the world. That's the beauty of Lord Jagannath in Jata Yatra, that for all the body who cannot go inside the mandir, he's coming out to get at his darshan. That's the beauty. That is why it's so special for us to come to Jagannath for Ratha Yatra, because we cannot go inside. We respect that. That is the mercy of the Lord. But he's going out to give at his beautiful face, lotus face for us.
0: 7 दिन गुंडिचा मंदिर में विश्राम करने के बाद भगवान अपने मुख्य मंदिर के लिए वापसी की यात्रा 24 जुलाई को शुरू करेंगे, जिसे बहुधा यात्रा कहा जाता है। उनकी ये वापसी यात्रा भी इतनी ही भव्य होगी जितनी भव्य है गुंडिचा मंदिर के लिए प्रस्थान की यात्रा। पुरी से अजय नाथ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: खबर हरियाणा की जींद से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन जींद से सोनीपत के बीच चली। इसके साथ ही हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली ट्रेन शुरू करने वाला भारत दुनिया का 5वां देश बन गया है जिसने ये उपलब्धि हासिल की है। इस हाइड्रोजन ट्रेन की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इससे प्रदूषण नहीं होता और इसका किराया बहुत किफायती है।

0: फूलों और गुब्बारों से सजी ये नई नवेली ट्रेन भारतीय रेल के स्वर्णिम इतिहास का नया अध्याय है, जिसके शुभारंभ के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पहुंचे। यहां पीएम ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को सोनीपत के लिए रवाना किया। ये पल भारतीय रेल के लिए ही नहीं बल्कि देश के लिए भी बहुत गौरवशाली बन गया, क्योंकि ये देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन है जिसका उद्घाटन पीएम के हाथों हुआ है। इसके साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जहां हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन्स को चलाया जा रहा है। इससे पहले जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका में ही हाइड्रोजन ट्रेन्स चल रही हैं। यानी हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू करने वाला भारत दुनिया का पांचवा देश बन गया है।
1: देश के लिए गौरव की बात है, विशेषकर इंजीनियर्स के लिए गौरव की बात है कि देश में इतनी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया है। इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप दिस टेक्नोलॉजी, क्योंकि हाइड्रोजन एक न्यू एनर्जी है, न्यू फ्यूल है। इस फ्यूल का ट्रांसपोर्टेशन में कैसे यूज हो, उसकी टेक्नोलॉजी भारत में कैसे डेवलप हो, आत्मनिर्भर भारत की स्वदेशी टेक्नोलॉजी ये बनाना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये आज एक बड़ा माइलस्टोन है रेलवे के लिए कि पूरी टेक्नोलॉजी भारत में बनी, आईपी राइट्स भारत में।
0: ये ट्रेन पूरी तरह से देश के अंदर ही डिजाइन और डेवलप की गई है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये ट्रेन ना तो बिजली की ओवरहेड लाइन पर निर्भर होगी और ना ही डीजल इंजन पर, बल्कि ये चलेगी हाइड्रोजन फ्यूल से, जो पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं है। रेल मंत्री की तरफ से ये बताया गया कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन को यात्रियों के लिए शुरू करने से पहले इसे सुरक्षा के कड़े मानकों पर कई बार परखा गया है, ताकि सफर के दौरान यात्रियों की सुरक्षा से कोई समझौता ना हो।
1: इसमें सेफ्टी सिस्टम्स का बहुत लंबे समय से बहुत एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट किया गया है। वर्ल्ड की मोस्ट रिप्यूटेड सेफ्टी असेसमेंट एजेंसी है TUV SUD, उनकी तरफ से कंप्लीट इंडिपेंडेंट असेसमेंट किया गया, सेफ्टी असेसमेंट। हर तरीके से गाड़ी में, जैसे आप हाइड्रोजन के सिलेंडर्स देखते हैं यहाँ पर, ये फ्यूल सेल है, ये जो नीचे देख रहे हैं ये फ्यूल सेल है। तो हाइड्रोजन बनती है पानी से, इलेक्ट्रोलाइजर प्लांट पास में लगा हुआ है, पानी से हाइड्रोजन बनती है। उस हाइड्रोजन को इस फ्यूल सेल के माध्यम से फिर से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है। वो इलेक्ट्रिसिटी इज देन यूज्ड टू ड्राइव दी मोटर्स। सो बेसिकली दिस एंटायर प्रोपल्शन सिस्टम, राइट फ्रॉम हाइड्रोजन प्रोडक्शन टू द एक्चुअल यूज इन द मोटर, ये सारे के सारे आईपी राइट्स आज भारत में है। बहुत सारे सेफ्टी सेंसर्स आपने देखे होंगे यहाँ पे लगाए हैं, जैसे ये सेंसर्स अगर आप देखें, हीट डिटेक्टर्स, लीक डिटेक्टर्स, ये सारे के सारे सेंसर्स यहाँ पे लगाए हुए हैं। हाइड्रोजन बहुत ही सेफ फ्यूल इस तरह से है कि 0.25% से ज़्यादा अगर कहीं पर भी हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन इस पर दिखाई देता है तो ऑल सेफ्टी सिस्टम्स विल बेसिकली गेट इनटू एक्टिवेशन। 4% से ज़्यादा होने पर रिस्क होती है, तो 0.25% 1% से कम पे ही इसको कम्प्लीटली सॉल्व किया जाता है। बहुत ही सेफ गाड़ी है।
0: भारत में शुरू हुई हाइड्रोजन ट्रेन दुनिया की हाइड्रोजन ट्रेन के मुकाबले काफी पावरफुल भी है और लंबी भी है। ये बात खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के दौरान बताई।
2: साथियों, जिंद से सोनीपत को चलने वाली हाइड्रोजन ट्रेन दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन है। ये हाइड्रोजन ट्रेन 3200 हॉर्स पावर की है, 3200 हॉर्स पावर, और सबसे ताकतवर ही नहीं, भारत की हाइड्रोजन ट्रेन सबसे लंबी भी है। दुनिया में जहां हाइड्रोजन ट्रेन चल रही है वो 3 या 4 कोच वाली है, और भारत ने पहली बार में सीधे 10 कोच वाली हाइड्रोजन ट्रेन चलाकर दुनिया में अपना झंडा गाड़ दिया है।
0: 10 कोच वाली ये ट्रेन अभी जींद से सोनीपत के बीच 89 किलोमीटर रूट पर चलेगी। ये दूरी करीब 2 घंटे में पूरी होगी और कुल 12 स्टेशन पर रुकेगी। इसी दौरान इसकी अधिकतम स्पीड 75 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। इस हाइड्रोजन ट्रेन में कुल 682 सीटें बैठने के लिए हैं। जबकि खड़े होकर सफर करने वाले यात्रियों को मिलाकर लगभग 2600 यात्री एक साथ इस ट्रेन में सफर कर पाएंगे, जिनके लिए किराया 5 से 25 रुपए के बीच रखा गया है। कम किराया रखने के पीछे वजह यह है कि रोजाना सफर करने वाले यात्रियों की जेब पर बोझ न पड़े।
3: हमारी जींद का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मोदी जी ने हमारे जींद को चूज किया और फर्स्ट ट्रेन यहाँ से चल रही है। यहाँ का रेलवे स्टेशन हमने पहले पुराने भी देखे हुए हैं, उसके आज सब कुछ चेंज हो गया।
4: सबसे पहले जो ट्रेन चली थी हमारे हिंदुस्तान में वो 16 अप्रैल 1853 को बॉम्बे से थाना के बीच में चली थी। 34 किलोमीटर का सफर था, उसके अंदर 14 बोगी लगी थी और उनकी जो लेंथ थी नियर अबाउट 22 फीट के लगभग थी। और आज जो ये ट्रेन चल रही है इसके 78 फुट के लगभग है। और उस समय 3 इंजन इस्तेमाल किए गए थे जो इंग्लैंड से आए थे, साहेब सिंह सुल्तान उनका नाम था, 3 पावर लेके आए थे स्टीम इंजन जो कोयले से और पानी से मिलकर के जो भाप से चलते थे। तो आज बड़े गर्व की बात है कि नॉन पॉल्यूटेड हमारी ये जो ट्रेन है
5: इसमें हमारे 10 कोच लगे हुए हैं, तकरीबन 2600 यात्री इसमें सफर कर सकेंगे और नॉन पोल्यूटेड है, ना कि कोई तेल ना कोई और खर्चा, पानी से हाइड्रोजन बनाएंगे और हाइड्रोजन से हमारी ट्रेन चलेगी, तो हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है।
0: बीते कुछ सालों में भारतीय रेल ने यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने बेड़े में तेजी से वंदे भारत, अमृत भारत और तेजस जैसी गाड़ियां शामिल की हैं। और इसी कड़ी में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का नाम भी जुड़ गया है जो कई आधुनिक सुविधाओं से लैस है। इतना ही नहीं, ट्रेन चलाने वाले लोको पायलट के लिए भी आरामदायक केबिन बनाया गया है। बड़ी बात यह है कि इस ट्रेन के लिए अलग से ट्रैक बिछाने की आवश्यकता भी नहीं है, बल्कि ये मौजूदा ट्रैक पर ही चलने के लिए पूरी तरह माकूल है।
6: सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा, नई टेक्नोलॉजी है, इसमें ज्यादा पावर है, साउंड प्रूफ है, वातावरण में कोई प्रदूषण नहीं है और इसकी पिकअप बहुत बढ़िया है।
7: एडवांस सेफ्टी फीचर्स हैं इसके अंदर सर, इन केस ऑफ फायर ऑटोमेटिक फायर एक्सटिंग्विशर्स इसके अंदर लगे हुए हैं, अराउंड 26 सेंसर्स लगे हुए हैं जो हीट को डिटेक्ट करते हैं, फायर को डिटेक्ट करते हैं, लीकेज को डिटेक्ट करते हैं। सेफ्टी के मामले में सर बिल्कुल टॉप नॉच है सर।
0: खबर ये है कि भारतीय रेलवे ने अपनी हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज योजना के तहत इस तरह की 35 ट्रेन चलाने का फैसला लिया है जो मुख्य तौर पर संवेदनशील और पहाड़ी इलाकों में चलेंगी ताकि वहां के पर्यावरण को प्रदूषण से बचाया जा सके। ग्लोबल वार्मिंग की बढ़ती समस्या को देखते हुए भारतीय रेलवे का ये कदम देश को शून्य कार्बन उत्सर्जन और आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से आगे बढ़ाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: दुनिया में खुशियां बांटना भी एक खूबसूरत सेवा है। मैक्सिको सिटी की सड़कें इस बात की गवाही दे रही हैं, जहां पर हर साल जोकर यानी कि क्लाउन अपनी कला के साथ श्रद्धा जताने सड़कों पर निकलते हैं। एक ऐसी यात्रा जिसमें हंसी बांटने वाले कलाकार अपने विश्वास और परंपरा को निभाने के लिए हजारों की संख्या में एक साथ जुटते हैं।
9: चेहरे पर चटक लाल रंग, बड़ी सी मुस्कान, दिल में श्रद्धा और कदमों में विश्वास, ये कोई सर्कस का मंच नहीं बल्कि आस्था का रंगमंच है। रंग बिरंगे कपड़ों में मैक्सिको सिटी की सड़कों पर जब एक साथ सैकड़ों क्लाउन उतरे तो हर तरफ खुशी, उत्साह और श्रद्धा का अनोखा संगम दिखाई दिया। हर साल की तरह इस बार भी वर्जिन ऑफ ग्वाडालूपा की सालाना यात्रा बड़े ही धूमधाम से निकली। रंग बिरंगी पोशाक में पहुंचे क्लाउन वर्जिन ऑफ ग्वाडालूपा की प्रतिमा और तस्वीरें लेकर मैक्सिको के सबसे बड़े धार्मिक स्थल ग्वाडालूपे बेसिलिका पहुंचे। कलाकारों की इस अनोखी यात्रा में किसी ने करतब दिखाए, किसी ने गेंदों से जुगलबंदी की, तो किसी ने अपनी मासूम अदाओं से बच्चों और बड़ों दोनों के चेहरे पर मुस्कान ला दी। माहौल ऐसा था जहां मनोरंजन और श्रद्धा एक साथ नजर आई।
10: El motivo de la peregrinación es porque se fundó el Club Payasos Mexicanos de Circo en 1979.

0: जब आस्था से जुड़ जाती है तो हर मुस्कान इबादत बन जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल
2: जाती है। A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती। इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती। इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती। इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।

0: और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। गुड न्यूज
2: और संगीत का अनोखा अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है।
3: दुनिया में सबसे बड़ी इंसानियत वही होती है जो बिना किसी स्वार्थ और बिना किसी उम्मीद के किसी भी जुबान की प्यास बुझा दे।
2: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो लोगों का खूब ध्यान खींच रहा है। एक महिला ने प्यास से परेशान एक लंगूर की मदद करके हर किसी का दिल जीत लिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लंगूर काफी देर से पानी पीने की कोशिश कर रहा होता है। उसके सामने एक नल मौजूद है, लेकिन वो उसे खोल नहीं पाता। बंदर बार बार नल को छूता है और उसे घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार नाकाम रहता है। उसकी बेचैनी साफ दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि वो काफी देर से प्यासा है और किसी तरह पानी पीना चाहता है। उसी दौरान वहाँ मौजूद एक महिला की नज़र उस लंगूर पर पड़ती है। वो बिना किसी डर या हिचकिचाहट के उसके पास जाती है। महिला को देखकर लंगूर भी कोई आक्रामक व्यवहार नहीं करता। महिला तुरंत नल खोल देती है और इस तरह पानी बहने लगता है। इसके बाद वो अपने हाथ की मदद से बंदर को आराम से पानी पीने देती है। वीडियो में सबसे खास बात ये है कि लंगूर पूरे समय बिल्कुल शांत रहता है। वो आराम से पानी पीता है और महिला पर पूरा भरोसा करता हुआ नजर आता है। वहीं महिला भी पूरे धैर्य और प्यार के साथ उसकी मदद करती है। दोनों के बीच का ये भरोसा और अपनापन लोगों को काफी भावुक कर रहा है।
0: गुड न्यूज
2: बार बार वीडियो देखने को मजबूर हो रहे हैं। लोग इस क्यूट पांडा को मैंगलेन के नाम से जानते हैं। हुआ यूं के एनरिचमेंट सेशन के दौरान केयरटेकर ने थोड़ी सी मस्ती करने की सोची। उन्होंने एक विग पहनी और पांडा के सामने आकर खड़े हो गए। मैंगलेन अपनी पिछली टांगों पर खड़ा होकर पूरे ध्यान से देख रहा था और आखिर केयर टेकर करने क्या वाला है। माहौल में सस्पेंस था, पांडा को लग रहा था कि केयर टेकर उसके सामने डांस करने वाला है और इसके लिए उसने इशारा भी किया। तभी केयर टेकर एक फिल्मी अंदाज में डांस करने लगता है, तभी अचानक अपने सिर से विक को हवा में उछाल दिया और अचानक उसका चमचमाता हुआ गंजा सिर सामने आ गया। फिर क्या था, इस अचानक आए ट्विस्ट को देख मैंगलिन का चेहरा देखने लायक था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा हो कि उसके केयरटेकर के बाल अचानक गायब कैसे हो गए। उसके हाव भाव ऐसे थे जैसे वो पूछ रहा हो, अरे भाई ये जादू हुआ कैसे। वो इतना हंसने लगा कि हंस हंस कर लोटपोट हो गया और जमीन में लेटने लगा। केयरटेकर ने जो ये प्रैंक किया उसने इंटरनेट पर मौजूद लाखों लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है।
4: बिको कब तरह बोले ना बताता आप बस सा मुताकिद तब लाओ गिफ्टा खलिफ यू वर सर्व वीडियो आशा बिन लाइक यल अभी ना।
2: सोशल मीडिया पर इन दिनों ये वीडियो लोगों का खूब ध्यान खींच रहा है। इस वीडियो में एक समझदार डॉल्फिन अपनी शानदार समझ, फुर्ती और ट्रेनिंग का ऐसा नजारा पेश करती है कि लोग उसे बार बार देख रहे हैं। वीडियो की शुरुआत एक बड़े स्विमिंग पूल से होती है, जहां एक डॉल्फिन आराम से तैरती हुई अपने ट्रेनर के पास पहुंचती है। ट्रेनर के हाथ में एक छोटी बास्केटबॉल होती है। वो बड़े प्यार और धैर्य के साथ डॉल्फिन को गेंद देता है और उससे कुछ इशारों और शब्दों में बात करता हुआ दिखाई देता है। वीडियो देखने वालों को ऐसा महसूस होता है जैसे डॉल्फिन को समझा रहा हो कि आगे उसे क्या करना है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ट्रेनर की बात सुनने के बाद डॉल्फिन भी अपनी खास आवाज निकालती है। उसकी प्रतिक्रिया देख ऐसा लगता है मानो वो अपने ट्रेनर की बात समझ गई हो। और अब उसे पूरा करने के लिए तैयार हो। यही पल वीडियो को और भी खास बना देता है, क्योंकि इंसानों और जानवरों के बीच इस तरह की समझ हमेशा लोगों को आकर्षित करती है। इसके बाद डॉल्फिन गेंद को अपने मुंह में पकड़ लेती है और बिना किसी जल्दबाजी के पूल के दूसरे छोर की तरफ तैरने लगती है। वहाँ पानी के ऊपर एक बास्केटबॉल रिंग लगी होती है। जैसे ही वो रिंग के करीब पहुंचती है वो अचानक पानी से ऊपर की ओर शानदार छलांग लगाती है। उसकी टाइमिंग और संतुलन इतना बेहतरीन होता है कि गेंद बिल्कुल सही निशाने पर जाकर सीधे बास्केटबॉल में गिरती है, सीधे बास्केट में गिरती है।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। गुड न्यूज
5: से कम नहीं होती। चीन में इन दिनों भीषण गर्मी लोगों के साथ साथ जानवरों के
0: गुड न्यूज
5: अलग अलग शहरों में अनोखे इंतजाम किए गए हैं।
6: कोई बर्फ की सिल्लियों के बीच रखे ताजा फलों के मजे ले रहा है तो कोई बढ़ती तपिश में राहत की फुहार का आनंद ले रहा है, और तो और कहीं तो गलियारा ही गर्मी में सर्दी वाला एहसास करा रहा है। दरअसल चीन के कई हिस्सों में गर्मी की तपिश बढ़ी है, तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। ऐसे में लोगों और बेजुबानों को राहत देने के नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। अब जरा चीन के चोंगकिंग शहर के मशहूर शान चेंग लेन को देखिए। यहाँ 400 मीटर लंबा मिस्टिंग सिस्टम शुरू किया गया है। इस रास्ते पर हवा में बेहद महीन पानी के फुहारे फैल जाती हैं, जो पल भर में गर्मी में कूल कूल एहसास कराती हैं। सिर्फ इंसानों ही नहीं बल्कि हेफेई के चिड़ियाघर में जानवरों के लिए भी गर्मी से बचाव के खास इंतजाम किए गए हैं। यहाँ रेड पांडा को बर्फ की सिल्ली पर रखे ठंडे फल परोसे जा रहे हैं। बंदर बर्फ के बड़े टुकड़ों के साथ खेलते हुए गर्मी से राहत पा रहे हैं, तो वहीं हाथियों के लिए ठंडे पानी की फुहार चलाई जा रही है। इतना ही नहीं, जानवरों को ताजे फल और सब्जियां भी दी जा रही हैं, ताकि उनके शरीर में पानी की कमी न हो और वो इस भीषण गर्मी का सामना आसानी से कर सकें। कुल मिलाकर चाहे ऐतिहासिक गलियों में घूमते सैलानी हो या फिर पिंजरे के भीतर मजे लेते ये बेजुबान, गर्मी से निपटने के इन अनोखे और ठंडे ठंडे तरीकों ने सबका दिल जीत लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: दुनिया में खुशियां बांटना भी एक खूबसूरत सेवा है। मैक्सिको सिटी की सड़कें इस बात की गवाही दे रही हैं, जहां पर हर साल जोकर यानी कि क्लाउन अपनी कला के साथ श्रद्धा जताने सड़कों पर निकलते हैं। एक ऐसी यात्रा जिसमें हंसी बांटने वाले कलाकार अपने विश्वास और परंपरा को निभाने के लिए हजारों की संख्या में एक साथ जुड़ते हैं।
6: चेहरे पर चटक लाल रंग, बड़ी सी मुस्कान, दिल में श्रद्धा और कदमों में विश्वास, ये कोई सर्कस का मंच नहीं बल्कि आस्था का रंगमंच है। रंग बिरंगे कपड़ों में मैक्सिको सिटी की सड़कों पर जब एक साथ सैकड़ों क्लाउन उतरे तो हर तरफ खुशी, उत्साह और श्रद्धा का अनोखा संगम दिखाई दिया। हर साल की तरह इस बार भी वर्जिन ऑफ ग्वाडालूपा की सालाना यात्रा बड़े ही धूमधाम से निकली। रंग बिरंगी पोशाक में पहुंचे क्लाउन वर्जिन ऑफ ग्वाडालूपा की प्रतिमा और तस्वीरें लेकर मैक्सिको के सबसे बड़े धार्मिक स्थल ग्वाडालूपे बेसिलिका पहुंचे। कलाकारों की इस अनोखी यात्रा में किसी ने करतब दिखाए,

0: De la peregrinación es porque se fundó el Club Payasos Mexicanos de Circo en 1979. En el primer año del aniversario se propuso festejarlo con una peregrinación, dando gracias por los favores recibidos durante el año.
1: चर्च की चौखट पर पहुंचते ही पवित्र जल से जब इन मुस्कुराते चेहरों पर आशीर्वाद की बूंदें पड़ी तो इनका विश्वास और मजबूत हुआ, क्योंकि कला जब आस्था से जुड़ जाती है तो हर मुस्कान इबादत बन जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।

अंतरिक्ष में एक और ऐतिहासिक छलांग लगाने की तैयारी। देश का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 सुबह 11:30 बजे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भरेगा उड़ान। देश को मिली पहली हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात। प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जींद में दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

कल। आर्थिक मोर्चे प्रदेश के लिए गुड न्यूज, पिछले हफ्ते 96,40,00,000 डॉलर बढ़ा विदेशी मुद्रा भंडार, 67,500 करोड़ डॉलर के पार पहुंचा कुल विदेशी मुद्रा भंडार।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अगला स्टेशन क्लीन एंड ग्रीन फ्यूचर है और इस फ्यूचर की तरह एक और कदम आज भारत ने आगे बढ़ा दिया है। आज से भारत में क्लीन एनर्जी से चलने वाली पहली ट्रेन पटरी पर दौड़ने लगी है। बीते सालों में भारतीय रेलवे ने सिर्फ कनेक्टिविटी को ही नहीं बढ़ाया बल्कि रफ्तार, सुविधाओं और तकनीक के मामले में अपनी ट्रेन्स को भी नया स्वरूप दिया है। इसी कड़ी में देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड ट्रेन नमो ग्रीन एक्सप्रेस को पटरी पर उतारा गया। जैसे अब तक डीजल और बिजली से चलने वाले इंजन आप देखते रहे हैं, अब ये ट्रेन हाइड्रोजन की ताकत के साथ ट्रैक पर दौड़ेगी। खास बात देखने वाली यह है कि ये ट्रेन मेड इन इंडिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। अभी हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच में ये ट्रेन चलाई जा रही है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसी है भारत की पहली ग्रीन एक्सप्रेस।

1853 और तारीख थी 16 अप्रैल। बॉम्बे से 14 कोच और 400 पैसेंजर्स के साथ भारत की पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे के लिए रवाना हुई थी। साहिब, सिंध और सुल्तान नाम के 3 स्टीम इंजन्स ने उस ट्रेन को खींचा था। उस ट्रेन ने लगभग 57 मिनट में 34 किलोमीटर की दूरी में एक युग का सफर तय किया था। और देखिए, आज वक्त का पहिया उस रेल के सफर को कहां तक ले आया है। बीते 175 सालों में भारत की रेलगाड़ी और रेलवे स्टेशन दोनों का रंग रूप हमारी सोच की सरहदों से काफी आगे निकल गया है। 20वीं शताब्दी का सूरज उगने के साथ हमारी रेल की कहानी में कई अलग अलग माइलस्टोन्स आए हैं, लेकिन आज का दिन अपने आप में बेहद खास है। आज का दिन ऐतिहासिक है, क्योंकि आज देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन पटरी पर दौड़ पड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जींद रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई और इसी के साथ भारतीय रेलवे के इतिहास में एक और नया अध्याय जुड़ गया। भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन यात्रियों की सेवा के लिए रवाना हो गई।

ये भारतीय रेलवे की पहली हाइड्रोजन आधारित ग्रीन ट्रेन है। ये ट्रेन डीजल या कोयले से नहीं चलती और इसे लगातार ओवरहेड बिजली लाइन से भी ऊर्जा लेने की जरूरत नहीं। ट्रेन में लगे हाइड्रोजन फ्यूल सेल हाइड्रोजन और हवा में मौजूद ऑक्सीजन की रासायनिक प्रतिक्रिया से बिजली बनाते हैं, जिसकी ताकत से ये ट्रेन पटरी पर दौड़ती है।

0: नमो ग्रीन ट्रेन 10 डिब्बों वाली ट्रेन है। इसमें 8 यात्री डिब्बे और 2 इंजन वाली पावर कार। इस लिहाज से ये दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन है। आधुनिक सुविधाओं की बात करें तो इसमें ऑटोमेटिक दरवाजे, डीसी एयर कंडीशनिंग और आरामदायक सीटें हैं। इसकी अधिकतम स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन सामान्य तौर पर ये 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। खास बात यह है कि इस ट्रेन में 3200 हॉर्स पावर वाला महाशक्तिशाली इंजन लगा है, जिसके चलते इसे दुनिया की सबसे ताकतवर ग्रीन ट्रेन भी कहा जा रहा है।
1: साथियों, जिंद से सोनीपत को चलने वाली हाइड्रोजन ट्रेन दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन है। ये हाइड्रोजन ट्रेन 3200 हॉर्स पावर की है, 3200 हॉर्स पावर। और सबसे ताकतवर ही नहीं, भारत की हाइड्रोजन ट्रेन सबसे लंबी भी है। दुनिया में जहां हाइड्रोजन ट्रेन चल रही है वो 3 या 4 कोच वाली है, और भारत ने पहली बार में सीधे 10 कोच वाली हाइड्रोजन ट्रेन चलाकर दुनिया में अपना झंडा गाड़ दिया है।
0: भारत की इस पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरियाणा की जींद और सोनीपत के बीच चलाया जा रहा है। ये ट्रेन रोज सुबह 7:40 पर जींद जंक्शन से रवाना होगी और सुबह 9:40 पर सोनीपत पहुंचेगी। 89 किलोमीटर का सफर करीब 2 घंटे में पूरा होगा। सोनीपत से ये ट्रेन सुबह 10:40 पर वापस जींद के लिए रवाना होगी।
2: क्योंकि सबसे पहली ट्रायल ट्रेन है बेसिकली, जिसके ट्रायल भी हुए हैं और सक्सेसफुली भी है। और ये ट्रायल तो कई कंट्रियां कर रही है, लेकिन सक्सेसफुली 2-4 टोटल, आज ये 5वीं वर्ल्ड की 5वीं कंट्री है जो सक्सेसफुली मूव करेगी।
0: इस ट्रेन को ग्रीन ट्रेन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसके चलने से धुआं या कार्बन उत्सर्जन नहीं होगा। इससे मुख्य रूप से भाप और गर्मी निकलती है। हाइड्रोजन इसका ईंधन है और हवा से मिलने वाली ऑक्सीजन पावर जनरेट करने की प्रक्रिया का हिस्सा है। चलिए आपको बताते हैं कि हाइड्रोजन ट्रेन किस तकनीक से चलती है। यूँ समझिए कि ट्रेन के भीतर ही उसे चलाने वाला पावर प्लांट लगा है। इस पावर प्लांट को चलाने में 4 मुख्य पार्ट्स अलग अलग भूमिका निभाते हैं। पहला है हाइड्रोजन टैंक, जिसमें हाइड्रोजन गैस भरी जाती है। इस टैंक तक हाइड्रोजन पहुंचाने के लिए जींद रेलवे स्टेशन के पास देश का पहला हाइड्रोजन स्टोरेज और रिफ्यूलिंग प्लांट बनाया गया है। दूसरा पार्ट है फ्यूल सेल डिवाइस, जहां केमिकल रिएक्शन और इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया होती है। तीसरा पार्ट है बैटरी, जहां पैदा की गई बिजली स्टोर होती है। और चौथी है इलेक्ट्रिक मोटर, जिसकी ताकत से ट्रेन पटरी पर दौड़ती है। अब आते हैं ट्रेन को चलाने की प्रक्रिया पर। इसके लिए सबसे पहले ट्रेन के हाइड्रोजन स्टोरेज टैंक में हाई प्रेशर से ग्रीन हाइड्रोजन भरी जाती है। इसके बाद ये हाइड्रोजन गैस हाई प्रेशर से फ्यूल सेल में भेजी जाती है, जबकि दूसरी ओर से ऑक्सीजन इसमें प्रवेश करती है। फ्यूल सेल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच होने वाले केमिकल रिएक्शन से पानी, भाप और बिजली पैदा होती है। इस प्रक्रिया में पैदा हुई बिजली बैटरी में स्टोर हो जाती है, भाप वातावरण में निकल जाती है और पानी नीचे की ओर से निकल जाता है। फिर बैटरी से चार्ज लेकर इलेक्ट्रिक मोटर ट्रेन को रफ्तार दे देती है।
3: हाइड्रोजन जो है वो सीधा बिजली पैदा करता है। एक जो उसको एक टेक्नोलॉजी का है जिसको कहते हैं फ्यूल सेल, कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, 100 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है। तो फ्यूल सेल जो होता है एक तरह का मेम्ब्रेन होता है, उसमें एक तरफ से हाइड्रोजन डालते हैं और दूसरी तरफ से हवा डालते हैं, मतलब ऑक्सीजन बेसिकली। जो दोनों मिलते हैं तो पानी बनता है, उसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन आप जानते हैं, पानी बनता है और साथ में कुछ बिजली पैदा होती है। और ऐसे बहुत सारे मेम्ब्रेन या फ्यूल सेल को आप एक के ऊपर एक रखते जाएं तो वोल्टेज ऐड होता रहता है, 1.5 वोल्ट, 3 वोल्ट, 6 वोल्ट, 20 वोल्ट, 50 वोल्ट। तो ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज अगर उनको पैरेलल में लगाए तो करंट बढ़ता है, 1 एम्पियर, 4 एम्पियर, 8 एम्पियर ऐसे बढ़ता है। तो जो फ्यूल सेल स्टैक डिजाइन किया जाता है तो देखना पड़ता है कि कितनी पावर चाहिए, कितनी एनर्जी चाहिए गाड़ी चलाने के लिए, पावर बेसिकली। तो उससे सीधा बिजली पैदा होती है, डीसी बिजली, डीसी इलेक्ट्रिसिटी। और उसको फिर आप इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल करके उसको उसमें हेर फेर करके फिर आप ट्रैक्शन मोटर में बिजली भेजते हैं, तो इससे गाड़ी चलती है।
0: इस ट्रेन का सबसे बड़ा फायदा है कि इसे चलाने की पूरी प्रक्रिया में कोई धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड या किसी भी और रूप में कार्बन का उत्सर्जन नहीं होता। यानी इस ट्रेन के चलने से हवा प्रदूषित नहीं होगी। डीजल ट्रेनों की तुलना में ये जीरो एमिशन यानी शून्य उत्सर्जन वाली है। इससे ग्लोबल वार्मिंग कम करने में मदद मिलेगी। यानी ये ट्रेन पूरी तरह पर्यावरण के अनुकूल है। इस ट्रेन को चेन्नई के ICF यानी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में बनाया गया है, जबकि टाटा एडवांस सिस्टम्स ने इसका फ्यूल सेल सिस्टम तैयार किया है। यानी ये ट्रेन मेक इन इंडिया मिशन का एक और कमाल है।
1: भारत की यह हाइड्रोजन ट्रेन धुआं रहित तो है ही, ये मेक इन इंडिया का भी एक बहुत सफल उदाहरण है। इस हाइड्रोजन ट्रेन को भारत के ही इंजीनियर्स ने डिजाइन किया है, भारत की ही कंपनी ने इसको बनाया है। साथियों, यह हाइड्रोजन ट्रेन बाकी ट्रेनों से बिल्कुल अलग है।
0: चूंकि हाइड्रोजन बहुत ज्वलनशील होती है, इसलिए नमो ग्रीन ट्रेन में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसमें फायर अलार्म, आग बुझाने के लिए आपातकालीन व्यवस्था और हाइड्रोजन गैस लीकेज डिटेक्शन सिस्टम लगाए गए हैं। अगर हाइड्रोजन रिसाव होता है तो सिस्टम तुरंत अलर्ट जारी करता है और सुरक्षा उपाय सक्रिय हो जाते हैं। इस शानदार हाइड्रोजन ट्रेन के संचालन के साथ भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जो हाइड्रोजन की रफ्तार से ग्रीन ट्रेन्स को पटरी पर दौड़ा रहे हैं। हाइड्रोजन ट्रेन भारत की तकनीकी क्षमता, आत्मनिर्भरता और स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में बढ़ते कदमों का प्रतीक है। तभी तो इसे इंडियन रेल का ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जा रहा है। जीन से पीयूष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: आज जब पहली नमो ग्रीन ट्रेन जींद से रवाना हुई तो इसमें पहली बार सफर करने वालों की खुशी का ठिकाना नहीं था। रेल में तो जाने कितनी बार बैठे, लेकिन ये मौका बहुत खास था, यादगार था।
5: मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये हमारी जींद का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मोदी जी ने हमारे जींद को चूज किया और फर्स्ट ट्रेन यहाँ से चल रही है। यहाँ का रेलवे स्टेशन हमने पहले पुराने भी देखे हुए हैं, उसके आज सब कुछ चेंज हो गया।
6: आज हम जो इस ट्रेन में बैठे और देख रहे हैं बगैर एसी के, बिल्कुल क्रॉस वेंटिलेशन है इसके अंदर, और ये हिंदुस्तान की पहली ट्रेन जो है जींद से या सोनीपत के बीच में 89 किलोमीटर का सफर तय करेगी। और जींद के लिए नहीं, पूरे हरियाणा के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए ये पूरे गर्व की बात है। और इसका जो है क्रेडिट जो है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है।
7: और पहले का स्टेशन और आज के स्टेशन में कितना अंतर है। ये प्लेटफार्म हमारे जो लो लेवल के हुआ करते थे, चढ़ने में भी बड़ी दिक्कत हुआ करती थी, अब ये हमारे हाई लेवल रेल मतलब डिब्बे के बराबर के वो बन गए हैं प्लेटफार्म, तो हमें बहुत सहूलियत दी है। ये स्टेशन की हालात देख रहे हैं, कितने शेड लग गए, कितना FOB बना है, बहुत चौड़ा 12 मीटर का FOB बना है, एक्सकलेटर लगा है, लिफ्ट लगी है, तो सभी को इतनी सहूलियत दे दी हमारे जींद को, प्रधानमंत्री का हम धन्यवाद करते हैं।
8: जींद वासियों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जींद पे इतनी बड़ी ट्रेन, हालांकि एशिया की सबसे लॉन्गेस्ट और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेन है, इसका हर एक पार्ट इंडिया में बनाया गया है, इसका डिजाइन लखनऊ में हुआ है और ये चेन्नई में बनाई गई है। इतनी लोकल डिस्ट्रिक्ट में इतनी बड़ी ट्रेन का एक लॉन्च हुआ है, ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। ये भारत ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि भारत किसी से कम नहीं। जो हमारे इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ये साबित किया है कि ये मिलकर भी और अकेले भी दोनों तरीके से बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, इतनी डेवलप कंट्री चाइना, जर्मनी, जापान में इतनी बड़ी ट्रेन नहीं बन पाई, हॉर्स पावर कम है, सीटिंग पावर कम है, पर हमारे भारत में इतने अच्छे इंजीनियर और साइंटिस्ट हैं, लोग इतने अच्छे हैं कि हमने इतनी बढ़िया ट्रेन बनाई है।
9: आई वुड लाइक टू से दैट इट इज अ वेरी नाइस इनिशिएटिव दैट बिकॉज इट इज द ओनली ट्रेन दैट रिलीजेस वाटर वेपर्स बाय टेकिंग हाइड्रोजन गैस एंड दिस इनिशिएटिव इज टेकन टू रिड्यूस पॉल्यूशन।
4: डेटा ये बताता है कि भारतीय रेल नेटवर्क के 99% रूट का इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। ऐसे में क्या हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड ट्रेन की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? स्पीड, मेंटेनेंस और ऑपरेशन कॉस्ट के मामले में क्या ये पहले से मौजूदा ट्रेन से बेहतर है? आखिर क्यों हाइड्रोजन ट्रेन भारतीय रेल नेटवर्क के लिए जरूरी थी? इन तमाम सवालों का जवाब देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में।
10: न डीजल, न कोयला, न बाहर से कोई बिजली, इस ट्रेन को चलने के लिए सिर्फ हाइड्रोजन चाहिए। जैसे सोलर पैनल सूरज की रोशनी से बिजली बना देता है, वैसे ही ये तकनीक हाइड्रोजन को ईंधन बनाएगी और पटरी पर ट्रेन को सरपट दौड़ाएगी। और न केवल दौड़ाएगी बल्कि दूसरी तकनीक से चलने वाले इंजन की तुलना में ज्यादा दूर तक दौड़ाएगी। वंदे भारत जैसी शानदार ट्रेन को तैयार करने वाली टीम के चीफ इंजीनियर के मुताबिक डीजल और दूसरे फ्यूल की तुलना में हाइड्रोजन की उतनी ही मात्रा ज्यादा पावर सप्लाई कर सकती है।
3: हाइड्रोजन का कैलोरीफिक वैल्यू जो है, जो उसका जो हीट होता है जलने पर जो पैदा होती है, वो काफी हाई होती है, काफी ऊंचा होता है। तो मैं जैसे कंपेयर करूं डीजल से, मान लीजिए तो डीजल से जितनी बिजली पैदा होगी या जितनी दूर ट्रेन जाएगी, वैसी ट्रेन हाइड्रोजन से उसकी दुगनी जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन में एनर्जी ऑफ कम्बशन ज्यादा होती है।
10: भारत की ये पहली हाइड्रोजन ट्रेन है जो यात्रियों के लिए उपलब्ध है। ये सिर्फ एक नई ट्रेन नहीं बल्कि भारतीय रेलवे की अगली पीढ़ी की तकनीक है। दुनिया के कई देश जिस टेक्नोलॉजी के लिए सालों से संघर्ष कर रहे हैं, भारत ने उसे रिकॉर्ड समय में हासिल कर लिया है। अब अगला कदम इसके ऑपरेशन को किफायती बनाना है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक फिलहाल हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड ट्रांसपोर्ट को ऑपरेट करना दूसरे माध्यमों की तुलना में महंगा है। सारी दुनिया में इसकी कीमत को कम करने पर काम किया जा रहा है, नए प्रयास हो रहे हैं।
3: देखिए, जो दुनिया भर में ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर जो काम हो रहा है, वो एक होली ग्रेल बना रखा है कि हमें $1 प्रति किलोग्राम हाइड्रोजन अगर बनना शुरू हो जाए तो ये एक वायबल एनर्जी का सोर्स है या एनर्जी स्टोरेज का सोर्स है। तो अभी तो $1 प्रति किलोग्राम तो बहुत दूर है।
10: के मन में ये सवाल भी आ रहा है कि जब भारतीय ट्रेन नेटवर्क का 99% से ज्यादा रूट का इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, तो ऐसे में तुलनात्मक रूप से ज्यादा ऑपरेशनल खर्च वाली हाइड्रोजन ट्रेन चलाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो आपको बता दें कि इसकी मुख्य रूप से दो वजह हैं। पहली है दुनिया के सामने मेक इन इंडिया और भारत की टेक्निकल एक्सपर्टीज का डेमो। दुनिया में अभी केवल 3-4 देशों के पास ही हाइड्रोजन ट्रेन संचालित करने की क्षमता है और वहाँ भी ये तकनीक अभी शुरुआती दौर में है। ऐसे में भारत की हाइड्रोजन तकनीक और क्षमता पूरे देश के लिए गर्व की बात है।
3: प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया, वो सस्ते महंगे के लिए नहीं किया, वो तो टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेशन था कि भारत भी वो कर सकता है जो जर्मनी ने और जापान ने और चाइना ने किया है। तो इसकी तो हमारे लिए गर्व की बात है कि हमने ऐसा टेक्नोलॉजी पर एक बड़ी ट्रेन बनाई। छोटे मोटे मॉडल तो बहुत लोग बना चुके हैं।
10: साथ ही ये भी माना जा रहा है कि जिन रूट्स पर बिजली की लाइन खींचना मुश्किल है, वहाँ ये ट्रेन कामयाब होगी। यही वजह है कि जींद और सोनीपत रूट की पहली ट्रेन केवल एक डेमो है। सरकार की हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज योजना के तहत देश के अलग अलग हेरिटेज और पहाड़ी रूट्स पर ऐसी 35 ट्रेन चलाने की योजना है। ये सभी वे रूट्स होंगे जहां रेलवे लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन करना या तो संभव ही नहीं है या फिर चुनौतीपूर्ण है।
3: जैसे हिल रेलवे है, जैसे दार्जिलिंग रेलवे है या ऊटी की रेलवे है या पालमपुर हिमाचल की ट्रेन है, जो पहाड़ी इलाकों में है, हेरिटेज लाइन्स हैं जिनको इलेक्ट्रीफाई करने में वो यूएन हेरिटेज वालों से परमिशन लेनी पड़ेगी, वो मिलेगी भी नहीं। तो क्योंकि इलेक्ट्रिफिकेशन करने से जो लैंडस्केप है वो थोड़ा खराब हो जाता है देखने में, तो उन एरियाज के लिए ये ट्रेन बिल्कुल परफेक्ट है जहां पर इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ है और करना संभव भी नहीं है।
10: यही वजह है कि भारत की पहली नमो ग्रीन एक्सप्रेस का स्वागत बाहें फैलाकर किया जा रहा है। ये ट्रेन न केवल भविष्य के ट्रांसपोर्ट की झलक दिखाती है बल्कि क्लीन एनर्जी में भारत के बढ़ते कदमों की नजीर भी पेश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: दरअसल दुनिया इस समय तेजी से स्वच्छ ऊर्जा की तरफ बढ़ रही है। पेट्रोल और डीजल के विकल्प के रूप में हाइड्रोजन ईंधन की चर्चा लंबे वक्त से हो रही है। जब फ्यूल सेल में हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है तो उससे ऊर्जा बनती है और वेस्ट के रूप में केवल भाप यानी पानी निकलता है, और यही वजह है कि इसे भविष्य का सबसे स्वच्छ ईंधन माना जा रहा है, और यही वजह है कि कई देश इस पर काम भी कर रहे हैं। हाइड्रोजन तकनीक अपनाने वाले देशों में जापान सबसे आगे है। यहां हाइड्रोजन से चलने वाली कारें सड़कों पर दौड़ रही हैं। हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन बनाए जा चुके हैं और सरकार इस तकनीक को बढ़ावा देने के लिए लगातार निवेश कर रही है। कई शहरों में हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली बसें भी सार्वजनिक परिवहन का हिस्सा बन चुकी हैं। वहीं दक्षिण कोरिया ने हाइड्रोजन को अपनी राष्ट्रीय ऊर्जा रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया है। यहां हाइड्रोजन बसें, ट्रक और निजी वाहन बड़ी संख्या में उपयोग किए जा रहे हैं। सरकार का लक्ष्य हाइड्रोजन वाहनों और फ्यूलिंग स्टेशनों का बड़ा नेटवर्क तैयार करना है ताकि परिवहन क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम किया जा सके। इसी तरह जर्मनी में हाइड्रोजन से चलने वाली पैसेंजर ट्रेनें परिचालन में हैं। ये ट्रेनें बिना डीजल के लंबी दूरी तय करती हैं और केवल पानी छोड़ती हैं। जिन रेल मार्गों का विद्युतीकरण नहीं हुआ वहां हाइड्रोजन ट्रेनें पर्यावरण के अनुकूल विकल्प बन रही हैं। इसी कड़ी में भी चीन हाइड्रोजन तकनीक पर तेजी के साथ काम कर रहा है। कई शहरों में हाइड्रोजन से चलने वाली बसें और भारी ट्रक संचालित किए जा रहे हैं। लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक क्षेत्रों में हाइड्रोजन ईंधन का इस्तेमाल बढ़ रहा है। इसी तरह अमेरिका में भी हाइड्रोजन तकनीक का उपयोग परिवहन के साथ साथ बिजली उत्पादन उद्योगों में भी हो रहा है। कैलिफोर्निया जैसे राज्यों में हाइड्रोजन कारों के लिए रिफ्यूलिंग स्टेशन उपलब्ध करवाए गए हैं। फ्रांस समेत कई यूरोपीय देश हाइड्रोजन बसें चला रहे हैं। यूरोपीय संघ ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन और उपयोग पर बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। लक्ष्य है कि भारी उद्योग, जहाजरानी, रेल और विमानन जैसे क्षेत्रों में जीवाश्म ईंधन की जगह स्वच्छ हाइड्रोजन का उपयोग बढ़ाया जाए। और अब भारत भी हाइड्रोजन क्रांति की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत स्वच्छ हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। देश में पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन ये पहला कदम नहीं। इससे पहले देश में हाइड्रोजन से चलने वाली बसों और ट्रकों के परीक्षण हो चुके हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड तकनीक में भारत कहां तक आगे बढ़ा है।

0: हरियाणा के जींद से पानीपत के बीच इस नीली हाइड्रोजन ट्रेन के आगाज के साथ ही हिंदुस्तान में ग्रीन मोबिलिटी की दिशा में नया इतिहास रचा गया है। फिलहाल भले ही केवल एक सेक्शन पर यह ट्रेन दौड़ रही है, लेकिन आने वाले समय में इसका विस्तार होने के पूरे आसार है। और केवल रेल सेवा में ही नहीं, बल्कि सफर के दूसरे साधनों में भी हाइड्रोजन के भरपूर इस्तेमाल की संभावनाएं बढ़ रही हैं। चाहे बस हो या ट्रक या फिर वाटर टैक्सी ही क्यों ना हो, हर तरह से सफर को सुगम बनाने में हाइड्रोजन का इस्तेमाल होने जा रहा है, क्योंकि भारत में इसकी तैयारी तो पहले से ही हो चुकी है। वहीं आपको ये भी बता दें कि भारत की राजधानी दिल्ली में हाइड्रोजन ईंधन से बस चलाने की भी पहल की जा चुकी है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC ने इसी साल 2026 में 15 मई से सेंट्रल विस्टा एरिया में हाइड्रोजन फ्यूल आधारित शटल बस सेवा की शुरुआत की। केंद्रीय सचिवालय और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशन के बीच इस बस सेवा को इसीलिए शुरू किया गया ताकि सरकारी कर्मचारियों और आम लोगों की दफ्तरों तक आवाजाही आसान हो सके। इससे निजी गाड़ियों पर निर्भरता भी कम होगी और पेट्रोल डीजल CNG की बचत होगी और राजधानी की हवा भी शुद्ध रहेगी। इससे पहले पुणे की कंपनी ने 2021 में हाइड्रोजन से चलने वाली बस का विकल्प पेश किया था। न पेट्रोल की जरूरत, न डीजल डलवाने का टेंशन, केवल हवा और हाइड्रोजन की जरूरत और चल पड़ेगी ये बस। इस खास तरह की बस को रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन पर काम करने वाली एक लैब सेटिएंट लैब्स ने तैयार किया। बताया जा रहा है कि भारत में लॉन्च की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस है। इसी तर्ज पर दिसंबर 2025 में वाराणसी में देश की पहली हाइड्रोजन वाटर टैक्सी को भी हरी झंडी दिखाई गई। हालांकि ये भी जानना जरूरी है कि जिस हाइड्रोजन ईंधन से आप ट्रेन चल रही है उसका हाइड्रोजन फ्यूल सेल है क्या और ये किस तरह से काम करता है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों में जिस तरह से बैटरी काम करती है, ठीक उसी तरह फ्यूल सेल भी काम करते हैं, लेकिन इन्हें चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ती है। जब तक उन्हें हाइड्रोजन फ्यूल की सप्लाई होती रहेगी, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते रहेंगे। फ्यूल सेल में हाइड्रोजन गैस और हवा की ऑक्सीजन के बीच रासायनिक क्रिया होती है। इस क्रिया से सीधे बिजली बनती है जो ट्रेन की इलेक्ट्रिक मोटर को चलाती है। यानी फ्यूल सेल हाइड्रोजन और हवा को इस्तेमाल करके बस के लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, जिसका इस्तेमाल वाहनों को चलाने में किया जाता है। इसमें बाय प्रोडक्ट के तौर पर सिर्फ पानी बाहर आता है, जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा। एक और बड़ा फायदा रिफ्यूलिंग में है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के नजरिए से देखें तो बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल की तुलना में इसे रिफ्यूल करना आसान है, क्योंकि ये कुछ ही मिनटों में रिफ्यूल हो जाता है, जबकि बैटरी वाली बसों को चार्ज करने में घंटों लगते हैं। असल में ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी का सबसे साफ सोर्स है और इसको रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से तैयार किया जाता है। इसके तैयार होने और इस्तेमाल होने में पॉल्यूशन कम होता है, इसीलिए इसे लो कार्बन फ्यूल के तौर पर भी जाना जाता है, जिससे वातावरण को बेहतर करने में मदद मिलेगी और पेट्रोल डीजल की तुलना में लागत भी घटेगी और तो और कार्बन उत्सर्जन को घटाने में भी मदद मिलेगी। आगे का वक्त पेट्रोल डीजल रहित वाहनों का है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की लोकप्रियता तो तेजी से रफ्तार पकड़ ही रही है। ऐसे में अब हाइड्रोजन से चलने वाली बसें, ट्रक और वाटर टैक्सी भी बेहतरीन विकल्प के तौर पर उभर रही हैं। फिलहाल ये ट्रांसपोर्ट की वो तस्वीर है जो न केवल उम्मीद जगा रही है बल्कि सुनहरे भविष्य की कहानी भी बयां कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और चलिए इसी के साथ जीएन स्पेशल की इस खास कवरेज में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: Jack FM, now playing what we want, commercial free on TuneIn Premium.
1: What you got for me, Jack?
0: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: गर्मी जब 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच जाए तो राहत की हर कोशिश किसी वरदान से कम नहीं होती। चीन में इन दिनों भीषण गर्मी लोगों के साथ साथ जानवरों के लिए भी परीक्षा ले रही है, लेकिन इस चुनौती से निपटने के लिए अलग अलग शहरों में अनोखे इंतजाम किए गए हैं।
4: कोई बर्फ की सिल्लियों के बीच रखे ताजा फलों के मजे ले रहा है, तो कोई बढ़ती तपिश में राहत की फुहार का आनंद ले रहा है, और तो और कहीं तो गलियारा ही गर्मी में सर्दी वाला एहसास करा रहा है। दरअसल चीन के कई हिस्सों में गर्मी की तपिश बढ़ी है, तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। ऐसे में लोगों और बेजुबानों को राहत देने के नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। अब जरा चीन के चोंगकिंग शहर के मशहूर शान चेंग लेन को देखिए। यहाँ 400 मीटर लंबा मिस्टिंग सिस्टम शुरू किया गया है। इस रास्ते पर हवा में बेहद महीन पानी के फुहारे फैल जाती हैं, जो पल भर में गर्मी में कूल कूल एहसास कराती हैं। सिर्फ इंसानों ही नहीं बल्कि हेफेई के चिड़ियाघर में जानवरों के लिए भी गर्मी से बचाव के खास इंतजाम किए गए हैं। यहाँ रेड पांडा को बर्फ की सिल्ली पर रखे ठंडे फल परोसे जा रहे हैं। बंदर बर्फ के बड़े टुकड़ों के साथ खेलते हुए गर्मी से राहत पा रहे हैं, तो वहीं हाथियों के लिए ठंडे पानी की फुहार चलाई जा रही है। इतना ही नहीं, जानवरों को ताजे फल और सब्जियां भी दी जा रही हैं, ताकि उनके शरीर में पानी की कमी न हो और वो इस भीषण गर्मी का सामना आसानी से कर सकें। कुल मिलाकर चाहे ऐतिहासिक गलियों में घूमते सैलानी हो या फिर पिंजरे के भीतर मजे लेते ये बेजुबान, गर्मी से निपटने के इन अनोखे और ठंडे ठंडे तरीकों ने सबका दिल जीत लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: पुरी में रथ यात्रा के दूसरे दिन भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मौसी घर पहुंचे महाप्रभु गुंडीचा मंदिर में आज सुबह होंगे विराजमान। 7 दिन विश्राम के बाद 24 जुलाई को लौटेंगे अपने मंदिर। अंतरिक्ष में एक और ऐतिहासिक छलांग लगाने की तैयारी। देश का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 सुबह 11:30 बजे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भरेगा उड़ान। देश को मिली पहली हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात। प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जींद में दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देश को मिली 4700 करोड़ से ज्यादा की विकास योजनाओं की सौगात। पीएम ने पंजाब से किया शुभारंभ। देश भर में 75 रेलवे स्टेशनों का हुआ कायाकल्प। आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए गुड न्यूज। पिछले हफ्ते 96,40,00,000 डॉलर बढ़ा विदेशी मुद्रा भंडार। 67,500 करोड़ डॉलर के पार पहुंचा कुल विदेशी मुद्रा भंडार।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
5: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक। देखिए, सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार से फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, तो कभी पुरानी तस्वीरों को नए साजिशी रंग में रंगकर पेश कर दिया जाता है और लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं रही। यहां हर किसी के हाथ में कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकेंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर दी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश कर दी जाती है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा इसका यह होता है कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे इन्हें सच मानकर शेयर करना शुरू कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। तो फैक्ट चेक में आज सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की, जिसके जरिए ये दावा किया जा रहा है कि एक्टर प्रकाश राज और रजनीकांत जंतर मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में पहुंचे। क्या है वायरल दावे और वीडियो की सच्चाई, आपको आगे बताएंगे। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई है, जिसके जरिए ये दावा किया जा रहा है कि मुंबई में डिलीवरी बॉय ने अपनी जान जोखिम में डालकर बच्चे की जान बचाई। क्या है वायरल दावे और वीडियो की सच्चाई, आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फैक्ट चेक।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
5: दिल्ली के जंतर मंतर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले अनिश्चितकालीन अनशन चल रहा है। यहां सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भूख हड़ताल कर रहे हैं। इस अनशन से जोड़कर सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें अभिनेता प्रकाश राज और कुछ दूसरे लोगों को देखा जा रहा है। कुछ यूजर्स इस वीडियो को शेयर कर ये दावा कर रहे हैं कि अभिनेता रजनीकांत और प्रकाश राज सीजेपी के अनशन में जंतर मंतर पर पहुंचे। वायरल हो रहे वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करते हमारी ये रिपोर्ट देखिए।
6: दिल्ली में जंतर मंतर पर बीते 3 हफ्तों से कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन जारी है, जिसमें एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक भूख हड़ताल कर रहे हैं। इसी संदर्भ में अब कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि दक्षिण भारतीय एक्टर प्रकाश राज और रजनीकांत ने वांगचुक से मुलाकात की और प्रदर्शन के प्रति अपना समर्थन जताया। वायरल वीडियो में एक मंच पर कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके के पास प्रकाश राज और एक्टर रजनीकांत की तरह दिखने वाले एक शख्स बैठे दिखते हैं। वीडियो में प्रकाश कह रहे हैं कि मैं फिल्मों में चीटिंग करता हूं, पैसे मिलते हैं, वो एक्टिंग है, ये एनएक्टिंग है, वो एक्ट ऑफ आर्ट है, ये एक्ट ऑफ क्राइम है।
7: मैं फिल्मों में चीटिंग करता हूं, पैसा मिलता है, वो एक्टिंग है, ये एनएक्टिंग है, वो एक्ट ऑफ आर्ट है, ये एक्ट ऑफ क्राइम है।
6: वीडियो को शेयर करते हुए एक फेसबुक यूजर ने लिखा कि प्रकाश राज रजनीकांत पहुंचे जंतर मंतर पर। वहीं कुछ लोग एआई की मदद से भी प्रकाश राज और रजनीकांत के कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में पहुंचने के मैसेज के साथ पोस्टर बनाकर शेयर कर रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
5: दरअसल दिल्ली के जंतर मंतर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले अनिश्चितकालीन अनशन चल रहा है। यहां सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भूख हड़ताल कर रहे हैं। अब इसी से जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल किया जा रहा है। देखिए, इसके जरिए कुछ यूजर्स ये दावा कर रहे हैं कि एक्टर प्रकाश राज और रजनीकांत जंतर मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में पहुंचे। वीडियो में एक मंच पर कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके के पास प्रकाश राज और एक्टर रजनीकांत की तरह दिखने वाला एक शख्स बैठा हुआ नजर आ रहा है। तो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल वीडियो का सच और झूठ जानना हमारे लिए काफी जरूरी हो गया था, लिहाजा फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। तो देखिए, दावे की सच्चाई जानने के लिए हमने सबसे पहले वायरल हो रहे इस वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा, इसे परखा और ध्यान से देखने पर यह समझ में आया कि मंच पर प्रकाश राज के बगल में जो शख्स बैठे हैं उनका चेहरा दूर से तो रजनीकांत जैसा नजर आता है, लेकिन जब इसे काफी क्लोज से देखा गया तो ये साफ हुआ कि रजनीकांत नहीं है। हाँ, ये बात सच है कि प्रकाश राज कॉकरोच जनता पार्टी के अभियान को समर्थन देने के लिए जंतर मंतर पर जरूर पहुंचे थे, लेकिन ये खबर हमें कहीं नहीं देखने को मिली कि सुपरस्टार रजनीकांत भी प्रकाश राज के साथ जंतर मंतर पहुंचे थे। क्योंकि अगर रजनीकांत यहां पहुंचते तो ये अपने आप में काफी बड़ी खबर होती और हर मीडिया आउटलेट्स पर यह खबर सुर्खियों में होती, हर जगह इसकी चर्चा हुई होती, लेकिन हमें इसके बारे में कोई रिपोर्ट नहीं मिली, कोई जानकारी नहीं मिली। लिहाजा ऐसे में हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा। तो देखिए कौन से वो सवाल हैं, यहां पर पहला सवाल आपको बताते हैं। पहला सवाल ये है कि मंच पर एक्टर प्रकाश राज के साथ बैठे शख्स की पहचान आखिर क्या है, और दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा है।
7: मैं फिल्मों में चीटिंग करता हूं, पैसा मिलता है।
6: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर होने लगा, तब फैक्ट चेक टीम एक्टिव हुई और इसका सच और झूठ जानने के लिए पड़ताल में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें इंस्टाग्राम अकाउंट पर 11 जुलाई 2026 को पोस्ट किया गया सीजेपी के प्रदर्शन का एक वीडियो मिला। ये वायरल वीडियो से अलग है, लेकिन इसमें वायरल वीडियो वाले सभी लोग दिख रहे
7: हैं।
6: इसमें प्रकाश राज का जिक्र तो किया गया है, लेकिन रजनीकांत के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। एक YouTube चैनल पर 11 जुलाई 2026 को सीजेपी के अनशन के बारे में वीडियो न्यूज अपलोड की गई थी। इसमें प्रकाश राज के साथ केरल के पूर्व वित्त मंत्री डीएम थॉमस इसाक को देखा जा सकता है। वायरल वीडियो में प्रकाश राज के साथ थॉमस इसाक ही है। कोलाज में वायरल वीडियो और इस वीडियो न्यूज में इसाक ही दिख रहे हैं।
7: मैं फिल्मों में चीटिंग करता हूं, पैसा मिलता है।
6: एक अंग्रेजी पेपर के इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी सीजेपी के अनशन में पहुंचे इसाक और प्रकाश राज की तस्वीरें पोस्ट की गई हैं। 11 जुलाई 2026 को की गई इस पोस्ट के अनुसार प्रकाश राज दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रदर्शनकारियों के साथ हड़ताल में शामिल हुए। इसाक और त्रिपुरा विधानसभा में विपक्ष के नेता जितेंद्र चौधरी भी प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे और परीक्षा में कथित गड़बड़ियों को लेकर हो रहे आंदोलन का समर्थन किया। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके के एक्स हैंडल से भी 11 जुलाई 2026 को उस दिन के अनशन की तस्वीरें पोस्ट करते हुए प्रकाश राज और थॉमस इसाक को प्रदर्शन में शामिल होने के लिए धन्यवाद दिया गया। हमें एक्टर रजनीकांत के कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में जाकर समर्थन जताने से संबंधित कोई खबर नहीं मिली। इस तरह हमारी पड़ताल से ये साफ हो गया कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में एक्टर प्रकाश राज के साथ पहुंचने वाला शख्स थॉमस आइजैक है, न कि रजनीकांत। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
7: मैं फिल्मों में चीटिंग करता हूं, पैसा मिलता है, वो एक्टिंग है।
5: सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ यूजर्स ये दावा कर रहे हैं कि एक डिलीवरी बॉय ने अपनी जान जोखिम में डालकर बच्चे की जान बचाई। वहीं कुछ यूजर्स इस वीडियो को शेयर करते हुए ये भी दावा कर रहे हैं कि ये घटना मुंबई की है। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करते हमारी रिपोर्ट देखिए।

0: के आगे कूदकर बच्चे की जान बचाते डिलीवरी बॉय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किया जा रहा है। वीडियो में एक डिलीवरी बॉय सड़क पर जा रहे एक तेज रफ्तार ट्रक के सामने जान की बाजी लगाकर कूदता है और एक मासूम बच्चे को सुरक्षित बचा लेता है। कई सोशल मीडिया यूजर्स डिलीवरी बॉय की बहादुरी की जमकर तारीफ कर रहे हैं और उसे रियल हीरो और सुपरमैन बता रहे हैं। वायरल पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, इसको इंसान नहीं फरिश्ता कह सकते हैं। मुंबई से एक डिलीवरी बॉय का ऐसा कारनामा सामने आया है कि यकीन नहीं होता। पहली नजर में देखने पर तो लगा था बच्चे को बचाने के चक्कर में खुद मारा गया, लेकिन अगले पल लगा उसने अपने साथ साथ बच्चे की भी जान बचा ली। कई यूजर्स इस वीडियो को मुंबई का बताकर भी शेयर कर रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक डिलीवरी बॉय सड़क पर जा रहे एक तेज रफ्तार ट्रक के सामने जान की बाजी लगाकर कूदता है और एक मासूम बच्चे को सुरक्षित बचा लेता है। यूजर्स डिलीवरी बॉय की बहादुरी की जमकर तारीफ कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग इस वीडियो के जरिए ये भी दावा कर रहे हैं कि ये वीडियो मुंबई का है। तो देखिए, सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसे मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में हमने वायरल हो रहे इस वीडियो का सच और झूठ जानने की कोशिश की। फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। तो देखिए, दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे इस वीडियो के हर फ्रेम को देखा और इसे गौर से परखा, और इस दौरान हमें वीडियो में कई खामियां देखने को मिली, जिससे हमें वीडियो के असली होने पर संदेह हुआ, इस पर डाउट हुआ। वीडियो का बैकग्राउंड असामान्य रूप से काफी धुंधला लगता है और सड़क पर चल रही गाड़ियों की रफ्तार वास्तविक नहीं लग रही है। सड़क पर चलने वाले अन्य वाहनों की नंबर प्लेट पूरी तरीके से ब्लर्ड है और बाइक सवारों के चेहरे स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं। वीडियो के आखिरी हिस्से में जब डिलीवरी बॉय बच्चे को लेकर सड़क पर गिरता है तो बच्चे के शरीर का एक हिस्सा ट्रक के पहिए के बेहद करीब आ जाता है, लेकिन उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट भी नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके। लिहाजा ऐसे में हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा। तो देखिए, सबसे पहला सवाल यहां पर आपको दिखाते हैं। पहला सवाल यह है कि अगर वीडियो सच्चा होता तो इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी क्यों नहीं सामने आई? और दूसरा सवाल यह कि कहीं जानबूझकर एडिटेड वीडियो को वायरल करके अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही है?
0: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कई की फ्रेम्स को निकाला और सर्च किया। इस दौरान हमें किसी भी विश्वसनीय समाचार वेबसाइट पर ऐसी किसी घटना की कोई रिपोर्ट नहीं मिली। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली जहां इस वीडियो को मुंबई का बताया गया हो। पड़ताल के दौरान हमें एक इंस्टाग्राम यूजर के अकाउंट पर 12 जुलाई 2026 को अपलोड किया गया ये वीडियो मिला। हालांकि वीडियो के कैप्शन में कुछ खास जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन जब हमने इस अकाउंट को खंगाला तो पाया कि इस अकाउंट पर इसी तरह के कई AI जनरेटेड वीडियो अपलोड किए गए हैं। ऐसे में हमें इस वीडियो को लेकर भी शक हुआ। जेहन में ये सवाल आया कि वायरल हो रहा वीडियो भी AI निर्मित हो सकता है, लिहाजा हमने वीडियो को AI डिटेक्शन टूल हाइव मॉडरेशन पर चेक किया। टूल ने अपने विश्लेषण में 96.1% स्कोर के साथ वायरल वीडियो को संभावित AI जनरेटेड बताया। ट्रक के आगे कूदकर बच्चे की जान बचाते डिलीवरी बॉय के वायरल वीडियो को हमने AI डिटेक्शन वेबसाइट डीप फेकोमीटर पर भी जांचा। इस टूल के 3 डिटेक्टर्स ने उच्च संभावना के साथ वायरल वीडियो को AI जनरेटेड बताया। इजिट AI ने भी अपने विश्लेषण में वीडियो में मौजूद दृश्य को संभावित AI जनरेटेड बताया। हमारी पड़ताल में मिले साक्ष्यों से स्पष्ट है कि ट्रक के आगे कूदकर बच्चे की जान बचाते डिलीवरी बॉय का ये वीडियो असली घटना का नहीं बल्कि AI जनरेटेड है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: तो चलिए, इसी के साथ फैक्ट चेक में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे वायरल वर्ल्ड में क्या कुछ हो रहा है।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
3: It's Stormy, and previously on my show, Carly Pearce shared why she loves award show season.
4: For me, celebrating the people who create country music is about celebrating each other and rooting each other on and being a country music family and community and knowing that we are the generation right now that is going to influence many generations to come.
3: Listen to the Stormy Warren Show on the Big 615 weekdays 7 a.m. to 1 p.m. Central right here on TuneIn.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: तो चलिए, अब वक्त हो चला है फैक्ट चेक के सफर के आखिरी दौर का। अब देखिए कुछ ऐसे वीडियोस जिन्हें देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान जरूर आ जाएगी।
0: माँ बेटे का एक बेहद प्यारा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। खाना खिलाते समय बच्ची अपनी माँ को उसी अंदाज में जवाब देती है जैसे उसकी माँ उसके साथ करती है। मासूम बातचीत और दोनों की हंसी ने लोगों का दिल जीत लिया है। वीडियो में एक छोटी बच्ची अपनी माँ को अपने हाथों से खाना खिलाती हुई नजर आती है। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है। बच्ची बड़े प्यार से चम्मच में खाना लेकर माँ के मुंह तक ले जाती है और माँ भी मुस्कुराते हुए खाना खाती रहती है। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद ऐसा होता है जिसे सुनकर हर कोई हंस पड़ता है। दरअसल बच्ची जैसे ही दूसरा चम्मच लेकर माँ को खिलाने लगती है, माँ उसे थोड़ी देर रुकने के लिए कहती है। माँ कहती है कि अभी उसके मुँह में पहले वाला निवाला है, इसलिए थोड़ा इंतजार करो। लेकिन बच्ची रुकने के बजाय ऐसा जवाब देती है जो पूरे वीडियो की जान बन जाता है।
6: जब मेरे माउथ में कुछ होता था, मुझे जल्दी जल्दी खिलाओ।
0: बच्ची मासूमियत से कहती है, नहीं, जब मेरे मुंह में खाना होता है तब आप जल्दी जल्दी खिलाते हो। उसकी ये बात सुनते ही माँ अपनी हंसी नहीं रोक पाती। शायद उसी पल माँ को एहसास होता है कि बेटी ने बड़े प्यारे तरीके से उसकी ही आदत उसे याद दिला दी है।
6: कुछ होता था, मुझे जल्दी जल्दी खिलाओ।
0: सोशल मीडिया पर इन दिनों ये वीडियो वायरल हो रहा है जिसने लोगों को अपना बचपन याद दिला दिया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ छोटे छोटे बच्चे अपने घर के बाहर खुले आंगन में मस्ती करते नजर आ रहे हैं। बच्चों ने कबाड़, प्लास्टिक की टोकरियां और लोहे के एक स्टैंड की मदद से अपने लिए एक अनोखा झूला तैयार किया है। कोई उस झूले में बैठकर घूमने का आनंद ले रहा है तो कोई अपने दोस्त को धक्का देकर मस्ती करता नजर आ रहा है। बच्चों के चेहरे पर दिख रही मुस्कान से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो इस पल को कितना एंजॉय कर रहे हैं। उनके लिए ये साधारण सा झूला किसी बड़े मनोरंजन पार्क से कम नहीं है। कई बार ऐसा नजारा भी देखने को मिल जाता है जिनके बारे में हम आप कल्पना तक भी नहीं कर सकते। ज्यादा उम्र होने के बाद लोग सही से उठ बैठ नहीं पाते, चल फिर नहीं सकते और वजन नहीं उठा सकते। ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उम्र को महज एक नंबर मानते हैं और बुढ़ापे में भी कहर भर पाते हैं। इस वीडियो में भी एक दादाजी ने कुछ ऐसा ही दम दिखाया है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह दादाजी जिम के अंदर एक्सरसाइज कर रहे हैं। उनका अंदाज देखकर लोग दंग रह गए।

सोशल मीडिया पर इन दिनों ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ट्रेन के सफर के दौरान बीएसएफ के जवानों ने ऐसा माहौल बना दिया कि पूरे कोच में बैठे लोग भावुक हो गए। वीडियो में देखा जा सकता है कि कई बीएसएफ जवान ट्रेन के एक कोच में सफर कर रहे हैं। सफर के दौरान अचानक कुछ जवान गिटार निकालते हैं और फिर सभी मिलकर फिल्म का एक मशहूर गाना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे गीत आगे बढ़ता है, पूरा डिब्बा देशभक्ति के रंग में रंग जाता है। जवानों की आवाज और गिटार की मधुर धुन ने पूरे माहौल को बेहद शांत, भावुक और सुकून भरा बना दिया है।

0: उज्बेकिस्तान के युवा कलाकारों ने बॉलीवुड का मशहूर गाना गाकर सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत लिया है। वायरल वीडियो को देख लोग इन कलाकारों की खूब तारीफ कर रहे हैं। वीडियो में खास बात यह है कि वो इस गाने को अपने पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ गा बजा रहे हैं। उनकी मधुर आवाज और संगीत का अनोखा अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है।
1: दुनिया में सबसे बड़ी इंसानियत वही होती है जो बिना किसी स्वार्थ और बिना किसी उम्मीद के किसी भी जुबान की प्यास बुझा दे।
0: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो लोगों का खूब ध्यान खींच रहा है। एक महिला ने प्यास से परेशान एक लंगूर की मदद करके हर किसी का दिल जीत लिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लंगूर काफी देर से पानी पीने की कोशिश कर रहा होता है। उसके सामने एक नल मौजूद है लेकिन वो उसे खोल नहीं पाता। बंदर बार बार नल को छूता है और उसे घुमाने की कोशिश करता है लेकिन हर बार नाकाम रहता है। उसकी बेचैनी साफ दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि वो काफी देर से प्यासा है और किसी तरह पानी पीना चाहता है। उसी दौरान वहाँ मौजूद एक महिला की नज़र उस लंगूर पर पड़ती है। वो बिना किसी डर या हिचकिचाहट के उसके पास जाती है। महिला को देखकर लंगूर भी कोई आक्रामक व्यवहार नहीं करता। महिला तुरंत नल खोल देती है और इस तरह पानी बहने लगता है। इसके बाद वो अपने हाथ की मदद से बंदर को आराम से पानी पीने देती है। वीडियो में सबसे खास बात ये है कि लंगूर पूरे समय बिल्कुल शांत रहता है। वो आराम से पानी पीता है और महिला पर पूरा भरोसा करता हुआ नजर आता है। वही महिला भी पूरे धैर्य और प्यार के साथ उसकी मदद करती है। दोनों के बीच का ये भरोसा और अपनापन लोगों को काफी भावुक कर रहा है। इस छोटे से गोलू मोलू पांडा ने अपने अंदाज से इंटरनेट पर ऐसी महफिल जमा दी कि लोग बार बार वीडियो देखने को मजबूर हो रहे हैं। लोग इस क्यूट पांडा को मैंगलिन के नाम से जानते हैं। हुआ यूं के एनरिचमेंट सेशन के दौरान केयरटेकर ने थोड़ी सी मस्ती करने की सोची। उन्होंने एक विग पहनी और पांडा के सामने आकर खड़े हो गए। मैंगलिन अपनी पिछली टांगों पर खड़ा होकर पूरे ध्यान से देख रहा था और आखिर केयरटेकर करने क्या वाला है। माहौल में सस्पेंस था। पांडा को लग रहा था कि केयरटेकर उसके सामने डांस करने वाला है और इसके लिए उसने इशारा भी किया। तभी केयरटेकर एक फिल्मी अंदाज में डांस करने लगता है। तभी अचानक अपने सिर से विग को हवा में उछाल दिया और अचानक उसका चमचमाता हुआ गंजा सिर सामने आ गया। फिर क्या था, इस अचानक आई ट्विस्ट को देख मैंगलिन का चेहरा देखने लायक था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा हो कि उसके केयरटेकर के बाल अचानक गायब कैसे हो गए। उसके हाव भाव ऐसे थे जैसे वो पूछ रहा हो, अरे भाई ये जादू हुआ कैसे। वो इतना हंसने लगा कि हंस हंस कर लोटपोट हो गया और जमीन में लेटने लगा। केयरटेकर ने जो ये प्रैंक किया उसने इंटरनेट पर मौजूद लाखों लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है।
2: बिकू कब चलना बोले मैं बताता आप बस सा बता के तब लाओ गिफ्टा खलीफ यू वर सर्व विद यू आशर्वन लाइट यल अभी ना यल।
0: सोशल मीडिया पर इन दिनों ये वीडियो लोगों का खूब ध्यान खींच रहा है। इस वीडियो में एक समझदार डॉल्फिन अपनी शानदार समझ, फुर्ती और ट्रेनिंग का ऐसा नजारा पेश करती है कि लोग उसे बार बार देख रहे हैं। वीडियो की शुरुआत एक बड़े स्विमिंग पूल से होती है जहां एक डॉल्फिन आराम से तैरती हुई अपने ट्रेनर के पास पहुंचती है। ट्रेनर के हाथ में एक छोटी बास्केटबॉल होती है। वो बड़े प्यार और धैर्य के साथ डॉल्फिन को गेंद देता है और उससे कुछ इशारों और शब्दों में बात करता हुआ दिखाई देता है। वीडियो देखने वालों को ऐसा महसूस होता है जैसे डॉल्फिन को समझा रहा हो कि आगे उसे क्या करना है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ट्रेनर की बात सुनने के बाद डॉल्फिन भी अपनी खास आवाज निकालती है। उसकी प्रतिक्रिया देख ऐसा लगता है मानो वो अपने ट्रेनर की बात समझ गई हो। और अब उसे पूरा करने के लिए तैयार हो। यही पल वीडियो को और भी खास बना देता है क्योंकि इंसानों और जानवरों के बीच इस तरह की समझ हमेशा लोगों को आकर्षित करती है। इसके बाद डॉल्फिन गेंद को अपने मुंह में पकड़ लेती है और बिना किसी जल्दबाजी के पूल के दूसरे छोर की तरफ तैरने लगती है। वहाँ पानी के ऊपर एक बास्केटबॉल रिंग लगी होती है। जैसे ही वो रिंग के करीब पहुंचती है, वो अचानक पानी से ऊपर की ओर शानदार छलांग लगाती है। उसकी टाइमिंग और संतुलन इतना बेहतरीन होता है कि गेंद बिल्कुल सही निशाने पर जाकर सीधे बास्केटबॉल में गिरती है, सीधे बास्केट में गिरती है।
3: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली
4: की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती।
3: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
5: दुनिया में खुशियां बांटना भी एक खूबसूरत सेवा है। मैक्सिको सिटी की सड़कें इस बात की गवाही दे रही हैं, जहां पर हर साल जोकर यानी कि क्लाउन अपनी कला के साथ श्रद्धा जताने सड़कों पर निकलते हैं। एक ऐसी यात्रा जिसमें हंसी बांटने वाले कलाकार अपने विश्वास और परंपरा को निभाने के लिए हजारों की संख्या में एक साथ जुटते हैं।
6: चेहरे पर चटक लाल रंग, बड़ी सी मुस्कान, दिल में श्रद्धा और कदमों में विश्वास, ये कोई सर्कस का मंच नहीं बल्कि आस्था का रंगमंच है। रंग बिरंगे कपड़ों में मैक्सिको सिटी की सड़कों पर जब एक साथ सैकड़ों क्लाउन उतरे तो हर तरफ खुशी, उत्साह और श्रद्धा का अनोखा संगम दिखाई दिया। हर साल की तरह इस बार भी वर्जिन ऑफ ग्वाडालूपा की सालाना यात्रा बड़े ही धूमधाम से निकली। रंग बिरंगी पोशाक में पहुंचे क्लाउन वर्जिन ऑफ ग्वाडालूपा की प्रतिमा और तस्वीरें लेकर मैक्सिको के सबसे बड़े धार्मिक स्थल ग्वाडालूपे बेसिलिका पहुंचे। कलाकारों की इस अनोखी यात्रा में किसी ने करतब दिखाए, किसी ने गेंदों से जुगलबंदी की, तो किसी ने अपनी मासूम अदाओं से बच्चों और बड़ों दोनों के चेहरे पर मुस्कान ला दी। माहौल ऐसा था जहाँ मनोरंजन और श्रद्धा एक साथ नजर आई।
7: El motivo de la peregrinación es porque se fundó el Club Payasos Mexicanos de Circo en 1979. En el primer año del aniversario se propuso festejarlo con una peregrinación, dando gracias por los favores recibidos durante el año.
6: चर्च की चौखट पर पहुंचते ही पवित्र जल से जब इन मुस्कुराते चेहरों पर आशीर्वाद की बूंदें पड़ी तो इनका विश्वास और मजबूत हुआ, क्योंकि कला जब आस्था से जुड़ जाती है तो हर मुस्कान इबादत बन जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
3: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
8: Hey, it's Billy Bush. Tune into my show, Hot Mics, Monday to Thursday at noon Eastern, 9 a.m. Pacific for the latest in politics, entertainment, tech, sports, pop culture, and much more. Just tell your device to play Hot Mics on TuneIn to listen.
9: क्या आपके बच्चे को शिक्षा में दिक्कतें आ रही हैं? बच्चे को शिक्षा में दिक्कतें आ रही हैं? सफल नहीं हो पा रहा है? बच्चे को उन्नति मिले, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: पूरी में रथ यात्रा के दूसरे दिन भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मौसी घर पहुंचे महाप्रभु गुंडीचा मंदिर में। आज सुबह होंगे विराजमान, 7 दिन विश्राम के बाद 24 जुलाई को लौटेंगे अपने मंदिर।

प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 सुबह 11:30 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भरेगा उड़ान। देश को मिली पहली हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात, प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जींद में दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देश को मिली 4700 करोड़ से ज्यादा की विकास योजनाओं की सौगात, पीएम ने पंजाब से किया शुभारंभ। देश भर में 75 रेलवे स्टेशनों का हुआ कायाकल्प। आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए गुड न्यूज, पिछले हफ्ते 96,40,00,000 डॉलर बढ़ा विदेशी मुद्रा भंडार, 67,500 करोड़ डॉलर के पार पहुंचा कुल विदेशी मुद्रा भंडार।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अगला स्टेशन क्लीन एंड ग्रीन फ्यूचर है और इस फ्यूचर की तरह एक और कदम आज भारत ने आगे बढ़ा दिया है। आज से भारत में क्लीन एनर्जी से चलने वाली पहली ट्रेन पटरी पर दौड़ने लगी है। बीते सालों में भारतीय रेलवे ने सिर्फ कनेक्टिविटी को ही नहीं बढ़ाया बल्कि रफ्तार, सुविधाओं और तकनीक के मामले में अपनी ट्रेन्स को भी नया स्वरूप दिया है। इसी कड़ी में देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड ट्रेन नमो ग्रीन एक्सप्रेस को पटरी पर उतारा गया। जैसे अब तक डीजल और बिजली से चलने वाले इंजन आप देखते रहे हैं, अब ये ट्रेन हाइड्रोजन की ताकत के साथ ट्रैक पर दौड़ेगी। खास बात देखने वाली यह है कि ये ट्रेन मेड इन इंडिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। अभी हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच में ये ट्रेन चलाई जा रही है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसी है भारत की पहली ग्रीन एक्सप्रेस।

था 1853 और तारीख थी 16 अप्रैल। बॉम्बे से 14 कोच और 400 पैसेंजर्स के साथ भारत की पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे के लिए रवाना हुई थी। साहिब, सिंध और सुल्तान नाम के 3 स्टीम इंजन्स ने उस ट्रेन को खींचा था। उस ट्रेन ने लगभग 57 मिनट में 34 किलोमीटर की दूरी में एक युग का सफर तय किया था। और देखिए, आज वक्त का पहिया उस रेल के सफर को कहां तक ले आया है। बीते 175 सालों में भारत की रेलगाड़ी और रेलवे स्टेशन दोनों का रंग रूप हमारी सोच की सरहदों से काफी आगे निकल गया है। 20वीं शताब्दी का सूरज उगने के साथ हमारी रेल की कहानी में कई अलग अलग माइलस्टोन्स आए हैं, लेकिन आज का दिन अपने आप में बेहद खास है। आज का दिन ऐतिहासिक है, क्योंकि आज देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन पटरी पर दौड़ पड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जींद रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई और इसी के साथ भारतीय रेलवे के इतिहास में एक और नया अध्याय जुड़ गया। भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन यात्रियों की सेवा के लिए रवाना हो गई। ये भारतीय रेलवे की पहली हाइड्रोजन आधारित ग्रीन ट्रेन है। ये ट्रेन डीजल या कोयले से नहीं चलती और इसे लगातार ओवरहेड बिजली लाइन से भी ऊर्जा लेने की जरूरत नहीं। ट्रेन में लगे हाइड्रोजन फ्यूल सेल हाइड्रोजन और हवा में मौजूद ऑक्सीजन की रासायनिक प्रतिक्रिया से बिजली बनाते हैं, जिसकी ताकत से ये ट्रेन पटरी पर दौड़ती है।

नमो ग्रीन ट्रेन 10 डिब्बों वाली ट्रेन है। इसमें 8 यात्री डिब्बे और 2 इंजन वाली पावर कार। इस लिहाज से ये दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन है। आधुनिक सुविधाओं की बात करें तो इसमें ऑटोमेटिक दरवाजे, डीसी एयर कंडीशनिंग और आरामदायक सीटें हैं। इसकी अधिकतम स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन सामान्य तौर पर ये 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। खास बात यह है कि इस ट्रेन में 3200 हॉर्स पावर वाला महाशक्तिशाली इंजन लगा है, जिसके चलते इसे दुनिया

0: सबसे ताकतवर ग्रीन ट्रेन भी कहा जा रहा है।
1: साथियों, जिंद से सोनीपत को चलने वाली हाइड्रोजन ट्रेन दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन है। ये हाइड्रोजन ट्रेन 3200 हॉर्स पावर की है, 3200 हॉर्स पावर। और सबसे ताकतवर ही नहीं, भारत की हाइड्रोजन ट्रेन सबसे लंबी भी है। दुनिया में जहां हाइड्रोजन ट्रेन चल रही है वो 3 या 4 कोच वाली है, और भारत ने पहली बार में सीधे 10 कोच वाली हाइड्रोजन ट्रेन चलाकर दुनिया में अपना झंडा गाड़ दिया है।
0: भारत की इस पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरियाणा की जींद और सोनीपत के बीच चलाया जा रहा है। ये ट्रेन रोज सुबह 7:40 पर जींद जंक्शन से रवाना होगी और सुबह 9:40 पर सोनीपत पहुंचेगी। 89 किलोमीटर का सफर करीब 2 घंटे में पूरा होगा। सोनीपत से ये ट्रेन सुबह 10:40 पर वापस जींद के लिए रवाना होगी।
2: क्योंकि सबसे पहली ट्रायल ट्रेन है बेसिकली, जिसके ट्रायल भी हुए हैं और सक्सेसफुली भी है। अगर ट्रायल तो कई कंट्रियां कर रही है, लेकिन सक्सेसफुली 2-4 टोटल आज ये 5वीं वर्ल्ड की 5वीं कंट्री है जो सक्सेसफुली मूव करेगी।
0: इस ट्रेन को ग्रीन ट्रेन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसके चलने से धुआं या कार्बन उत्सर्जन नहीं होगा। इससे मुख्य रूप से भाप और गर्मी निकलती है। हाइड्रोजन इसका ईंधन है और हवा से मिलने वाली ऑक्सीजन पावर जनरेट करने की प्रक्रिया का हिस्सा है। चलिए आपको बताते हैं कि हाइड्रोजन ट्रेन किस तकनीक से चलती है। यूँ समझिए कि ट्रेन के भीतर ही उसे चलाने वाला पावर प्लांट लगा है। इस पावर प्लांट को चलाने में 4 मुख्य पार्ट्स अलग अलग भूमिका निभाते हैं। पहला है हाइड्रोजन टैंक, जिसमें हाइड्रोजन गैस भरी जाती है। इस टैंक तक हाइड्रोजन पहुंचाने के लिए जींद रेलवे स्टेशन के पास देश का पहला हाइड्रोजन स्टोरेज और रिफ्यूलिंग प्लांट बनाया गया है। दूसरा पार्ट है फ्यूल सेल डिवाइस, जहां केमिकल रिएक्शन और इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया होती है। तीसरा पार्ट है बैटरी, जहां पैदा की गई बिजली स्टोर होती है। और चौथी है इलेक्ट्रिक मोटर, जिसकी ताकत से ट्रेन पटरी पर दौड़ती है। अब आते हैं ट्रेन को चलाने की प्रक्रिया पर। के लिए सबसे पहले ट्रेन के हाइड्रोजन स्टोरेज टैंक में हाई प्रेशर से ग्रीन हाइड्रोजन भरी जाती है। इसके बाद ये हाइड्रोजन गैस हाई प्रेशर से फ्यूल सेल में भेजी जाती है, जबकि दूसरी ओर से ऑक्सीजन इसमें प्रवेश करती है। फ्यूल सेल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच होने वाले केमिकल रिएक्शन से पानी, भाप और बिजली पैदा होती है। इस प्रक्रिया में पैदा हुई बिजली बैटरी में स्टोर हो जाती है, भाप वातावरण में निकल जाती है और पानी नीचे की ओर से निकल जाता है। फिर बैटरी से चार्ज लेकर इलेक्ट्रिक मोटर ट्रेन को रफ्तार दे देती है।
3: हाइड्रोजन जो है वो सीधा बिजली पैदा करता है। एक जो उसको एक टेक्नोलॉजी का है जिसको कहते हैं फ्यूल सेल, कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं, 100 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है। तो फ्यूल सेल जो होता है एक तरह का मेम्ब्रेन होता है, उसमें एक तरफ से हाइड्रोजन डालते हैं और दूसरी तरफ से हवा डालते हैं, मतलब ऑक्सीजन बेसिकली। जो दोनों मिलते हैं तो पानी बनता है, उसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन आप जानते हैं, पानी बनता है और साथ में कुछ बिजली पैदा होती है। और ऐसे बहुत सारे मेम्ब्रेन या फ्यूल सेल को आप एक के ऊपर एक रखते जाएं तो वोल्टेज ऐड होता रहता है, 1.5 वोल्ट, 3 वोल्ट, 6 वोल्ट, 20 वोल्ट, 50 वोल्ट, तो ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज। अगर उनको पैरेलल में लगाए तो करंट बढ़ता है, 1 एम्पियर, 4 एम्पियर, 8 एम्पियर ऐसे बढ़ता है। तो जो फ्यूल सेल स्टैक डिजाइन किया जाता है तो देखना पड़ता है कि कितनी पावर चाहिए, कितनी एनर्जी चाहिए गाड़ी चलाने के लिए, पावर बेसिकली। तो उससे सीधा बिजली पैदा होती है, डीसी बिजली, डीसी इलेक्ट्रिसिटी, और उसको फिर आप इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल करके उसको उसमें हेर फेर करके फिर आप ट्रैक्शन मोटर में बिजली भेजते हैं, तो इससे गाड़ी चलती है।
0: इस ट्रेन का सबसे बड़ा फायदा है कि इसे चलाने की पूरी प्रक्रिया में कोई धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड या किसी भी और रूप में कार्बन का उत्सर्जन नहीं होता। यानी इस ट्रेन के चलने से हवा प्रदूषित नहीं होगी। डीजल ट्रेनों की तुलना में ये जीरो एमिशन यानी शून्य उत्सर्जन वाली है। इससे ग्लोबल वार्मिंग कम करने में मदद मिलेगी। यानी ये ट्रेन पूरी तरह पर्यावरण के अनुकूल है। इस ट्रेन को चेन्नई के ICF यानी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में बनाया गया है, जबकि टाटा एडवांस सिस्टम्स ने इसका फ्यूल सेल सिस्टम तैयार किया है। यानी ये ट्रेन मेक इन इंडिया मिशन का एक और कमाल है।
1: भारत की यह हाइड्रोजन ट्रेन धुआं रहित तो है ही, ये मेक इन इंडिया का भी एक बहुत सफल उदाहरण है। इस हाइड्रोजन ट्रेन को भारत के ही इंजीनियर्स ने डिजाइन किया है, भारत की ही कंपनी ने इसको बनाया है। साथियों, यह हाइड्रोजन ट्रेन बाकी ट्रेनों से बिल्कुल अलग है।
0: चूंकि हाइड्रोजन बहुत ज्वलनशील होती है, इसलिए नमो ग्रीन ट्रेन में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसमें फायर अलार्म, आग बुझाने के लिए आपातकालीन व्यवस्था और हाइड्रोजन गैस लीकेज डिटेक्शन सिस्टम लगाए गए हैं। अगर हाइड्रोजन रिसाव होता है तो सिस्टम तुरंत अलर्ट जारी करता है और सुरक्षा उपाय सक्रिय हो जाते हैं। इस शानदार हाइड्रोजन ट्रेन के संचालन के साथ भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जो हाइड्रोजन की रफ्तार से ग्रीन ट्रेन्स को पटरी पर दौड़ा रहे हैं। हाइड्रोजन ट्रेन भारत की तकनीकी क्षमता, आत्मनिर्भरता और स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में बढ़ते कदमों का प्रतीक है। तभी तो इसे इंडियन रेल का ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जा रहा है। जींद से पीयूष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: आज जब पहली नमो ग्रीन ट्रेन जींद से रवाना हुई तो इसमें पहली बार सफर करने वालों की खुशी का ठिकाना नहीं था। रेल में तो जाने कितनी बार बैठे, लेकिन ये मौका बहुत खास था, यादगार था।
5: मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी जींद का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मोदी जी ने हमारे जींद को चूज किया और फर्स्ट ट्रेन यहाँ से चल रही है। यहाँ का रेलवे स्टेशन हमने पहले पुराने भी देखे हुए हैं, उसके आज सब कुछ चेंज हो गया।
6: आज हम जो इस ट्रेन में बैठे और देख रहे बगैर एसी के, बिल्कुल क्रॉस वेंटिलेशन है इसके अंदर, और ये हिंदुस्तान की पहली ट्रेन जो है जींद से या सोनीपत के बीच में 89 किलोमीटर का सफर तय करेगी। और जींद के लिए नहीं, पूरे हरियाणा के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए ये पूरे गर्व की बात है। और इसका जो है क्रेडिट जो है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है।
7: और पहले का स्टेशन और आज के स्टेशन में कितना अंतर है। ये प्लेटफार्म हमारे जो लो लेवल के हुआ करते थे, चढ़ने में भी बड़ी दिक्कत हुआ करती थी, अब ये हमारे हाई लेवल रेल मतलब डिब्बे के बराबर के वो बन गए हैं और प्लेटफार्म, तो हमें बहुत सहूलियत दी है। ये स्टेशन की हालात देख रहे हैं, कितने शेड लग गए, कितना FOB बना है, बहुत चौड़ा 12 मीटर का FOB बना है, एक्सकलेटर लगा है, लिफ्ट लगी है, तो सभी को इतनी सहूलियत दे दी हमारे जींद को प्रधानमंत्री का, हम धन्यवाद करते हैं।
8: जींद वासियों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जींद पे इतनी बड़ी ट्रेन, हालांकि एशिया की सबसे लॉन्गेस्ट और सबसे स्ट्रांगेस्ट ट्रेन है, इसका हर एक पार्ट इंडिया में बनाया गया है, इसका डिजाइन लखनऊ में हुआ है और ये चेन्नई में बनाई गई है। इतनी लोकल डिस्ट्रिक्ट में इतनी बड़ी ट्रेन का एक लॉन्च हुआ है, ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। ये भारत ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि भारत किसी से कम नहीं। जो हमारे इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ये साबित किया है कि ये मिलकर भी और अकेले भी दोनों तरीके से बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, इतनी डेवलप्ड कंट्री चाइना, जर्मनी, जापान में इतनी बड़ी ट्रेन नहीं बन पाई। हॉर्स पावर कम है, सीटिंग पावर कम है, पर हमारे भारत में इतने अच्छे इंजीनियर साइंटिस्ट हैं, लोग इतने अच्छे हैं कि हमने इतनी बढ़िया ट्रेन बनाई है।
9: आई वुड लाइक टू से दैट इट इज अ वेरी नाइस इनिशिएटिव दैट बिकॉज इट इज द ओनली ट्रेन दैट रिलीजेस वाटर वेपर्स बाय टेकिंग हाइड्रोजन गैस एंड दिस इनिशिएटिव इज टेकन टू रिड्यूस पॉल्यूशन।
4: डेटा ये बताता है कि भारतीय रेल नेटवर्क के 99% रूट का इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। ऐसे में क्या हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड ट्रेन की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? स्पीड, मेंटेनेंस और ऑपरेशन कॉस्ट के मामले में क्या ये पहले से मौजूदा ट्रेन से बेहतर है? आखिर क्यों हाइड्रोजन ट्रेन भारतीय रेल नेटवर्क के लिए जरूरी थी? इन तमाम सवालों का जवाब देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में।
0: डीजल न कोयला न बाहर से कोई बिजली, इस ट्रेन को चलने के लिए सिर्फ हाइड्रोजन चाहिए। जैसे सोलर पैनल सूरज की रोशनी से बिजली बना देता है, वैसे ही ये तकनीक हाइड्रोजन को ईंधन बनाएगी और पटरी पर ट्रेन को सरपट दौड़ाएगी। और न केवल दौड़ाएगी बल्कि दूसरी तकनीक से चलने वाले इंजन्स की तुलना में ज्यादा दूर तक दौड़ाएगी। वंदे भारत जैसी शानदार ट्रेन को तैयार करने वाली टीम के चीफ इंजीनियर के मुताबिक डीजल और दूसरे फ्यूल की तुलना में हाइड्रोजन की उतनी ही मात्रा ज्यादा पावर सप्लाई कर सकती है।
3: हाइड्रोजन का कैलोरीफिक वैल्यू जो है, जो उसका जो हीट होता है जलने पर जो पैदा होती है, वो काफी हाई होती है, काफी ऊंचा होता है। तो मैं जैसे कंपेयर करूं डीजल से, मान लीजिए तो डीजल से जितनी बिजली पैदा होगी या जितने दूर ट्रेन जाएगी, वैसी ट्रेन हाइड्रोजन से उसकी दुगनी जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन में एनर्जी ऑफ कम्बशन ज्यादा होती है।
0: भारत की ये पहली हाइड्रोजन ट्रेन है जो यात्रियों के लिए उपलब्ध है। ये सिर्फ एक नई ट्रेन नहीं बल्कि भारतीय रेलवे की अगली पीढ़ी की तकनीक है। दुनिया के कई देश जिस टेक्नोलॉजी के लिए सालों से संघर्ष कर रहे हैं, भारत ने उसे रिकॉर्ड समय में हासिल कर लिया है। अब अगला कदम इसके ऑपरेशन को किफायती बनाना है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक फिलहाल हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड ट्रांसपोर्ट को ऑपरेट करना दूसरे माध्यमों की तुलना में महंगा है। सारी दुनिया में इसकी कीमत को कम करने पर काम किया जा रहा है, नए प्रयास हो रहे हैं।
3: देखिए, जो दुनिया भर में ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर जो काम हो रहा है, वो एक होली ग्रेल बना रखा है कि हमें $1 प्रति किलोग्राम हाइड्रोजन अगर बनना शुरू हो जाए तो ये एक वायबल एनर्जी का सोर्स है या एनर्जी स्टोरेज का सोर्स है। तो अभी तो $1 प्रति किलोग्राम तो बहुत दूर है।
0: मन में ये सवाल भी आ रहा है कि जब भारतीय ट्रेन नेटवर्क का 99% से ज्यादा रूट का इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, तो ऐसे में तुलनात्मक रूप से ज्यादा ऑपरेशनल खर्च वाली हाइड्रोजन ट्रेन चलाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो आपको बता दें कि इसकी मुख्य रूप से दो वजहें हैं। पहली है दुनिया के सामने मेक इन इंडिया और भारत की टेक्निकल एक्सपर्टीज का डेमो। दुनिया में अभी केवल 3-4 देशों के पास ही हाइड्रोजन ट्रेन संचालित करने की क्षमता है और वहाँ भी ये तकनीक अभी शुरुआती दौर में है। ऐसे में भारत की हाइड्रोजन तकनीक और क्षमता पूरे देश के लिए गर्व की बात है।
3: प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया, वो सस्ते महंगे के लिए नहीं किया, वो तो टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेशन था कि भारत भी वो कर सकता है जो जर्मनी ने और जापान ने और चाइना ने किया है। तो इसकी तो हमारे लिए गर्व की बात है कि हमने ऐसा टेक्नोलॉजी पर एक बड़ी ट्रेन बनाई। छोटे मोटे मॉडल तो बहुत लोग बना चुके हैं।
0: साथ ही ये भी माना जा रहा है कि जिन रूट्स पर बिजली की लाइन खींचना मुश्किल है, वहाँ ये ट्रेन कामयाब होगी। यही वजह है कि जींद और सोनीपत रूट की पहली ट्रेन केवल एक डेमो है। सरकार की हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज योजना के तहत देश के अलग अलग हेरिटेज और पहाड़ी रूट्स पर ऐसी 35 ट्रेन चलाने की योजना है। ये सभी वे रूट्स होंगे जहां रेलवे लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन करना या तो संभव ही नहीं है या फिर चुनौतीपूर्ण है।
3: जैसे हिल रेलवे है, जैसे दार्जिलिंग रेलवे है या ऊटी की रेलवे है या पालमपुर हिमाचल की ट्रेन है, जो पहाड़ी इलाकों में है, हेरिटेज लाइन्स हैं जिनको इलेक्ट्रीफाई करने में वो यूनाइटेड यूएन हेरिटेज वालों से परमिशन लेनी पड़ेगी, वो मिलेगी भी नहीं। तो क्योंकि इलेक्ट्रिफिकेशन करने से जो लैंडस्केप है वो थोड़ा खराब हो जाता है देखने में, तो उन एरियाज के लिए ये ट्रेन बिल्कुल परफेक्ट है जहां पर इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ है और करना संभव भी नहीं है।
0: यही वजह है कि भारत की पहली नमो ग्रीन एक्सप्रेस का स्वागत बाहें फैला कर किया जा रहा है। ये ट्रेन न केवल भविष्य के ट्रांसपोर्ट की झलक दिखाती है बल्कि क्लीन एनर्जी में भारत के बढ़ते कदमों की नजीर भी पेश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: दरअसल दुनिया इस समय तेजी से स्वच्छ ऊर्जा की तरफ बढ़ रही है। पेट्रोल और डीजल के विकल्प के रूप में हाइड्रोजन ईंधन की चर्चा लंबे वक्त से हो रही है। जब फ्यूल सेल में हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है तो उससे ऊर्जा बनती है और वेस्ट के रूप में केवल भाप यानी पानी निकलता है, और यही वजह है कि इसे भविष्य का सबसे स्वच्छ ईंधन माना जा रहा है, और यही वजह है कि कई देश इस पर काम भी कर रहे हैं। हाइड्रोजन तकनीक अपनाने वाले देशों में जापान सबसे आगे है। यहां हाइड्रोजन से चलने वाली कारें सड़कों पर दौड़ रही हैं। हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन बनाए जा चुके हैं और सरकार इस तकनीक को बढ़ावा देने के लिए लगातार निवेश कर रही है। कई शहरों में हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली बसें भी सार्वजनिक परिवहन का हिस्सा बन चुकी हैं। वहीं दक्षिण कोरिया ने हाइड्रोजन को अपनी राष्ट्रीय ऊर्जा रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया है। यहां हाइड्रोजन बसें, ट्रक और निजी वाहन बड़ी संख्या में उपयोग किए जा रहे हैं। सरकार का लक्ष्य हाइड्रोजन वाहनों और फ्यूलिंग स्टेशनों का बड़ा नेटवर्क तैयार करना है ताकि परिवहन क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम किया जा सके। इसी तरह जर्मनी में हाइड्रोजन से चलने वाली पैसेंजर ट्रेनें परिचालन में हैं। ये ट्रेनें बिना डीजल के लंबी दूरी तय करती हैं और केवल पानी छोड़ती हैं। जिन रेल मार्गों का विद्युतीकरण नहीं हुआ वहां हाइड्रोजन ट्रेनें पर्यावरण के अनुकूल विकल्प बन रही हैं। इसी कड़ी में भी चीन हाइड्रोजन तकनीक पर तेजी के साथ काम कर रहा है। कई शहरों में हाइड्रोजन से चलने वाली बसें और भारी ट्रक संचालित किए जा रहे हैं। लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक क्षेत्रों में हाइड्रोजन ईंधन का इस्तेमाल बढ़ रहा है। इसी तरह अमेरिका में भी हाइड्रोजन तकनीक का उपयोग परिवहन के साथ साथ बिजली उत्पादन उद्योगों में भी हो रहा है। कैलिफोर्निया जैसे राज्यों में हाइड्रोजन कारों के लिए रिफ्यूलिंग स्टेशंस उपलब्ध करवाए गए हैं। फ्रांस समेत कई यूरोपीय देश हाइड्रोजन बसें चला रहे हैं। यूरोपीय संघ ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन और उपयोग पर बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। लक्ष्य है कि भारी उद्योग, जहाजरानी, रेल और विमानन जैसे क्षेत्रों में जीवाश्म ईंधन की जगह स्वच्छ हाइड्रोजन का उपयोग बढ़ाया जाए। और अब भारत भी हाइड्रोजन क्रांति की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत स्वच्छ हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। देश में पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन ये पहला कदम नहीं। इससे पहले देश में हाइड्रोजन से चलने वाली बसों और ट्रकों के परीक्षण हो चुके हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड तकनीक में भारत कहां तक आगे बढ़ा है।

0: हरियाणा के जींद से पानीपत के बीच इस नीली हाइड्रोजन ट्रेन के आगाज के साथ ही हिंदुस्तान में ग्रीन मोबिलिटी की दिशा में नया इतिहास रचा गया है। फिलहाल भले ही केवल एक सेक्शन पर ये ट्रेन दौड़ रही है, लेकिन आने वाले समय में इसका विस्तार होने के पूरे आसार है। और केवल रेल सेवा में ही नहीं, बल्कि सफर के दूसरे साधनों में भी हाइड्रोजन के भरपूर इस्तेमाल की संभावनाएं बढ़ रही हैं, चाहे बस हो या ट्रक या फिर वाटर टैक्सी ही क्यों ना हो। हर तरह से सफर को सुगम बनाने में हाइड्रोजन का इस्तेमाल होने जा रहा है, क्योंकि भारत में इसकी तैयारी तो पहले से ही हो चुकी है। वहीं आपको ये भी बता दें कि भारत की राजधानी दिल्ली में हाइड्रोजन ईंधन से बस चलाने की भी पहल की जा चुकी है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC ने इसी साल 2026 में 15 मई से सेंट्रल विस्टा एरिया में हाइड्रोजन फ्यूल आधारित शटल बस सेवा की शुरुआत की। केंद्रीय सचिवालय और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशन के बीच इस बस सेवा को इसीलिए शुरू किया गया ताकि सरकारी कर्मचारियों और आम लोगों की दफ्तरों तक आवाजाही आसान हो सके। इससे निजी गाड़ियों पर निर्भरता भी कम होगी और पेट्रोल डीजल CNG की बचत होगी और राजधानी की हवा भी शुद्ध रहेगी। इससे पहले पुणे की कंपनी ने 2021 में हाइड्रोजन से चलने वाली बस का विकल्प पेश किया था। न पेट्रोल की जरूरत, न डीजल डलवाने का टेंशन, केवल हवा और हाइड्रोजन की जरूरत और चल पड़ेगी ये बस। इस खास तरह की बस को रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन पर काम करने वाली एक लैब सेटियंट लैब्स ने तैयार किया। बताया जा रहा है कि भारत में लॉन्च की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस है। इसी तर्ज पर दिसंबर 2025 में वाराणसी में देश की पहली हाइड्रोजन वाटर टैक्सी को भी हरी झंडी दिखाई गई। हालांकि ये भी जानना जरूरी है कि जिस हाइड्रोजन ईंधन से अब ट्रेन चल रही है उसका हाइड्रोजन फ्यूल सेल है क्या और ये किस तरह से काम करता है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों में जिस तरह से बैटरी काम करती है ठीक उसी तरह फ्यूल सेल भी काम करते हैं, लेकिन इन्हें चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ती है। जब तक उन्हें हाइड्रोजन फ्यूल की सप्लाई होती रहेगी ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते रहेंगे। फ्यूल सेल में हाइड्रोजन गैस और हवा की ऑक्सीजन के बीच रासायनिक क्रिया होती है। इस क्रिया से सीधे बिजली बनती है जो ट्रेन की इलेक्ट्रिक मोटर को चलाती है। यानी फ्यूल सेल हाइड्रोजन और हवा को इस्तेमाल करके बस के लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है जिसका इस्तेमाल वाहनों को चलाने में किया जाता है। इसमें बाय प्रोडक्ट के तौर पर सिर्फ पानी बाहर आता है जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा। एक और बड़ा फायदा रिफ्यूलिंग में है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के नजरिए से देखें तो बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल की तुलना में इसे रिफ्यूल करना आसान है, क्योंकि ये कुछ ही मिनटों में रिफ्यूल हो जाता है जबकि बैटरी वाली बसों को चार्ज करने में घंटों लगते हैं। असल में ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी का सबसे साफ सोर्स है और इसको रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से तैयार किया जाता है। इसके तैयार होने और इस्तेमाल होने में पॉल्यूशन कम होता है, इसीलिए इसे लो कार्बन फ्यूल के तौर पर भी जाना जाता है, जिससे वातावरण को बेहतर करने में मदद मिलेगी और पेट्रोल डीजल की तुलना में लागत भी घटेगी और तो और कार्बन उत्सर्जन को घटाने में भी मदद मिलेगी। आगे का वक्त पेट्रोल डीजल रहित वाहनों का है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की लोकप्रियता तो तेजी से रफ्तार पकड़ ही रही है। ऐसे में अब हाइड्रोजन से चलने वाली बसें, ट्रक और वाटर टैक्सी भी बेहतरीन विकल्प के तौर पर उभर रही हैं। फिलहाल ये ट्रांसपोर्ट की वो तस्वीर है जो न केवल उम्मीद जगा रही है बल्कि सुनहरे भविष्य की कहानी भी बयां कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और चलिए इसी के साथ GNT स्पेशल की इस खास कवरेज में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: गर्मी जब 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच जाए तो राहत की हर कोशिश किसी वरदान से कम नहीं होती। चीन में इन दिनों भीषण गर्मी लोगों के साथ साथ जानवरों के लिए भी परीक्षा ले रही है, लेकिन इस चुनौती से निपटने के लिए अलग अलग शहरों में अनोखे इंतजाम किए गए हैं।
4: कोई बर्फ की सिल्लियों के बीच रखे ताजा फलों के मजे ले रहा है, तो कोई बढ़ती तपिश में राहत की फुहार का आनंद ले रहा है, और तो और कहीं तो गलियारा ही गर्मी में सर्दी वाला एहसास करा रहा है। दरअसल चीन के कई हिस्सों में गर्मी की तपिश बढ़ी है, तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। ऐसे में लोगों और बेजुबानों को राहत देने के नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। अब जरा चीन के चोंगकिंग शहर के मशहूर शान चेंग लेन को देखिए। यहाँ 400 मीटर लंबा मिस्टिंग सिस्टम शुरू किया गया है। इस रास्ते पर हवा में बेहद महीन पानी के फुहारे फैल जाती हैं, जो पल भर में गर्मी में कूल कूल एहसास कराती हैं। सिर्फ इंसानों ही नहीं बल्कि हेफेई के चिड़ियाघर में जानवरों के लिए भी गर्मी से बचाव के खास इंतजाम किए गए हैं। यहाँ रेड पांडा को बर्फ की सिल्ली पर रखे ठंडे फल परोसे जा रहे हैं। बंदर बर्फ के बड़े टुकड़ों के साथ खेलते हुए गर्मी से राहत पा रहे हैं, तो वहीं हाथियों के लिए ठंडे पानी की फुहार चलाई जा रही है। इतना ही नहीं, जानवरों को ताजे फल और सब्जियां भी दी जा रही हैं, ताकि उनके शरीर में पानी की कमी न हो और वो इस भीषण गर्मी का सामना आसानी से कर सकें। कुल मिलाकर चाहे ऐतिहासिक गलियों में घूमते सैलानी हो या फिर पिंजरे के भीतर मजे लेते ये बेजुबान, गर्मी से निपटने के इन अनोखे और ठंडे ठंडे तरीकों ने सबका दिल जीत लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: पूरी में रथ यात्रा के दूसरे दिन भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मौसी घर पहुंचे महाप्रभु गुंडीचा मंदिर में। आज सुबह होंगे विराजमान, 7 दिन विश्राम के बाद 24 जुलाई को लौटेंगे अपने मंदिर। अंतरिक्ष में एक और ऐतिहासिक छलांग लगाने की तैयारी। देश का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 सुबह 11:30 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भरेगा उड़ान। देश को मिली पहली हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात। प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जींद में दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देश को मिली 4700 करोड़ से ज्यादा की विकास योजनाओं की सौगात। पीएम ने पंजाब से किया शुभारंभ। देश भर में 75 रेलवे स्टेशनों का हुआ कायाकल्प। आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए गुड न्यूज। पिछले हफ्ते 96,40,00,000 डॉलर बढ़ा विदेशी मुद्रा भंडार। 67,500 करोड़ डॉलर के पार पहुंचा कुल विदेशी मुद्रा भंडार।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
5: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक। देखिए, सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार से फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, तो कभी पुरानी तस्वीरों को नए साजिशी रंग में रंगकर पेश कर दिया जाता है और लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं रही। यहां हर किसी के हाथ में कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकेंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोस परोस दी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश कर दी जाती है, और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा इसका यह होता है कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे इन्हें सच मानकर शेयर करना शुरू कर देते हैं, और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल, और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। तो फैक्ट चेक में आज सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की, जिसके जरिए ये दावा किया जा रहा है कि एक्टर प्रकाश राज और रजनीकांत जंतर मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में पहुंचे। क्या है वायरल दावे और वीडियो की सच्चाई, आपको आगे बताएंगे। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई है, जिसके जरिए ये दावा किया जा रहा है कि मुंबई में डिलीवरी बॉय ने अपनी जान जोखिम में डालकर बच्चे की जान बचाई। क्या है वायरल दावे और वीडियो की सच्चाई, आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फैक्ट चेक।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ला।
5: दिल्ली के जंतर मंतर पर केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले अनिश्चितकालीन अनशन चल रहा है। यहां सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भूख हड़ताल कर रहे हैं। इस अनशन से जोड़कर सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें अभिनेता प्रकाश राज और कुछ दूसरे लोगों को देखा जा रहा है। कुछ यूजर्स इस वीडियो को शेयर कर ये दावा कर रहे हैं कि अभिनेता रजनीकांत और प्रकाश राज सीजेपी के अनशन में जंतर मंतर पर पहुंचे। वायरल हो रहे वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी ये रिपोर्ट देखिए।
6: दिल्ली में जंतर मंतर पर बीते 3 हफ्तों से कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन जारी है, जिसमें एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक भूख हड़ताल कर रहे हैं। इसी संदर्भ में अब कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि दक्षिण भारतीय एक्टर प्रकाश राज और रजनीकांत ने वांगचुक से मुलाकात की और प्रदर्शन के प्रति अपना समर्थन जताया। वायरल वीडियो में एक मंच पर कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके के पास प्रकाश राज और एक्टर रजनीकांत की तरह दिखने वाले एक शख्स बैठे दिखते हैं। वीडियो में प्रकाश कह रहे हैं कि मैं फिल्मों में चीटिंग करता हूं, पैसे मिलते हैं, वो एक्टिंग है, ये एनएक्टिंग है, वो एक्ट ऑफ आर्ट है, ये एक्ट ऑफ क्राइम है।
7: मैं फिल्मों में चीटिंग करता हूं, पैसा मिलता है, वो एक्टिंग है, ये एनएक्टिंग है, वो एक्ट ऑफ आर्ट है, ये एक्ट ऑफ क्राइम है।
6: वीडियो को शेयर करते हुए एक फेसबुक यूजर ने लिखा कि प्रकाश राज रजनीकांत पहुंचे जंतर मंतर पर। वहीं कुछ लोग एआई की मदद से भी प्रकाश राज और रजनीकांत के कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में पहुंचने के मैसेज के साथ पोस्टर बनाकर शेयर कर रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
5: दरअसल दिल्ली के जंतर मंतर पर केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले अनिश्चितकालीन अनशन चल रहा है। यहां सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भूख हड़ताल कर रहे हैं। अब इसी से जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल किया जा रहा है। देखिए, इसके जरिए कुछ यूजर्स ये दावा कर रहे हैं कि एक्टर प्रकाश राज और रजनीकांत जंतर मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में पहुंचे। वीडियो में एक मंच पर कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके के पास प्रकाश राज और एक्टर रजनीकांत की तरह दिखने वाला एक शख्स बैठा हुआ नजर आ रहा है। तो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल वीडियो का सच और झूठ जानना हमारे लिए काफी जरूरी हो गया था, लिहाजा फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। तो देखिए, दावे की सच्चाई जानने के लिए हमने सबसे पहले वायरल हो रहे इस वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा, इसे परखा, और ध्यान से देखने पर यह समझ में आया कि मंच पर प्रकाश राज के बगल में जो शख्स बैठे हैं उनका चेहरा दूर से तो रजनीकांत जैसा नजर आता है, लेकिन जब इसे काफी क्लोज से देखा गया तो ये साफ हुआ कि ये रजनीकांत नहीं है। हाँ, ये बात सच है कि प्रकाश राज कॉकरोच जनता पार्टी के अभियान को समर्थन देने के लिए जंतर मंतर पर जरूर पहुंचे थे, लेकिन ये खबर हमें कहीं नहीं देखने को मिली कि सुपरस्टार रजनीकांत भी प्रकाश राज के साथ जंतर मंतर पहुंचे थे। क्योंकि अगर रजनीकांत यहां पहुंचते तो ये अपने आप में काफी बड़ी खबर होती और हर मीडिया आउटलेट्स पर यह खबर सुर्खियों में होती, हर जगह इसकी चर्चा हुई होती, लेकिन हमें इसके बारे में कोई रिपोर्ट नहीं मिली, कोई जानकारी नहीं मिली। लिहाजा ऐसे में हमने वायरल वीडियो को सवालों कसौटी पर कसा। तो देखिए कौन से वो सवाल है यहां पर। पहला सवाल आपको बताते हैं, पहला सवाल ये है कि मंच पर एक्टर प्रकाश राज के साथ बैठे शख्स की पहचान आखिर क्या है। और दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा है।
7: मैं फिल्मों में चीटिंग करता हूँ, पैसा मिलता है।
6: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर होने लगा, तब फैक्ट चेक टीम एक्टिव हुई और इसका सच और झूठ जानने के लिए पड़ताल में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें इंस्टाग्राम अकाउंट पर 11 जुलाई 2026 को पोस्ट किया गया सीजेपी के प्रदर्शन का एक वीडियो मिला। ये वायरल वीडियो से अलग है, लेकिन इसमें वायरल वीडियो वाले सभी लोग दिख रहे
7: हैं।
6: इसमें प्रकाश राज का जिक्र तो किया गया है, लेकिन रजनीकांत के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। एक YouTube चैनल पर 11 जुलाई 2026 को सीजेपी के अनशन के बारे में वीडियो न्यूज अपलोड की गई थी। इसमें प्रकाश राज के साथ केरल के पूर्व वित्त मंत्री डीएम थॉमस इसाक को देखा जा सकता है। वायरल वीडियो में प्रकाश राज के साथ थॉमस इसाक ही है। कोलाज में वायरल वीडियो और इस वीडियो न्यूज में इसाक ही दिख रहे हैं। एक अंग्रेजी पेपर के इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी सीजेपी के अनशन में पहुंचे इसाक और प्रकाश राज की तस्वीरें पोस्ट की गई हैं। 11 जुलाई 2026 को की गई इस पोस्ट के अनुसार प्रकाश राज दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रदर्शनकारियों के साथ हड़ताल में शामिल हुए। इसाक और त्रिपुरा विधानसभा में विपक्ष के नेता जितेंद्र चौधरी भी प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे और परीक्षा में कथित गड़बड़ियों को लेकर हो रहे आंदोलन का समर्थन किया। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके के एक्स हैंडल से भी 11 जुलाई 2026 को उस दिन के अनशन की तस्वीरें पोस्ट करते हुए प्रकाश राज और थॉमस इसाक को प्रदर्शन में शामिल होने के लिए धन्यवाद दिया गया। हमें एक्टर रजनीकांत के कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में जाकर समर्थन जताने से संबंधित कोई खबर नहीं मिली। इस तरह हमारी पड़ताल से ये साफ हो गया कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में एक्टर प्रकाश राज के साथ पहुंचने वाला शख्स थॉमस आइजैक है, न कि रजनीकांत। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
7: मैं फिल्मों में चीटिंग करता हूं, पैसा मिलता है।
5: सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ यूजर्स ये दावा कर रहे हैं कि एक डिलीवरी बॉय ने अपनी जान जोखिम में डालकर बच्चे की जान बचाई। वहीं कुछ यूजर्स इस वीडियो को शेयर करते हुए ये भी दावा कर रहे हैं कि ये घटना मुंबई की है। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करते हमारी रिपोर्ट देखिए।

0: ट्रक के आगे कूदकर बच्चे की जान बचाते डिलीवरी बॉय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किया जा रहा है। वीडियो में एक डिलीवरी बॉय सड़क पर जा रहे एक तेज रफ्तार ट्रक के सामने जान की बाजी लगाकर कूदता है और एक मासूम बच्चे को सुरक्षित बचा लेता है। कई सोशल मीडिया यूजर्स डिलीवरी बॉय की बहादुरी की जमकर तारीफ कर रहे हैं और उसे रियल हीरो और सुपरमैन बता रहे हैं। वायरल पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, इसको इंसान नहीं फरिश्ता कह सकते हैं। मुंबई से एक डिलीवरी बॉय का ऐसा कारनामा सामने आया है कि यकीन नहीं होता। पहली नजर में देखने पर तो लगा था बच्चे को बचाने के चक्कर में खुद मारा गया, लेकिन अगले पल लगा उसने अपने साथ साथ बच्चे की भी जान बचा ली। कई यूजर्स इस वीडियो को मुंबई का बताकर भी शेयर कर रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक डिलीवरी बॉय सड़क पर जा रहे एक तेज रफ्तार ट्रक के सामने जान की बाजी लगाकर कूदता है और एक मासूम बच्चे को सुरक्षित बचा लेता है। यूजर्स डिलीवरी बॉय की बहादुरी की जमकर तारीफ कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग इस वीडियो के जरिए ये भी दावा कर रहे हैं कि ये वीडियो मुंबई का है। तो देखिए, सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसे मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में हमने वायरल हो रहे इस वीडियो का सच और झूठ जानने की कोशिश की। फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। तो देखिए, दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे इस वीडियो के हर फ्रेम को देखा और इसे गौर से परखा, और इस दौरान हमें वीडियो में कई खामियां देखने को मिली, जिससे हमें वीडियो के असली होने पर संदेह हुआ, इस पर डाउट हुआ। वीडियो का बैकग्राउंड असामान्य रूप से काफी धुंधला लगता है और सड़क पर चल रही गाड़ियों की रफ्तार वास्तविक नहीं लग रही है। सड़क पर चलने वाले अन्य वाहनों की नंबर प्लेट पूरी तरीके से ब्लर्ड है और बाइक सवारों के चेहरे स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं। वीडियो के आखिरी हिस्से में जब डिलीवरी बॉय बच्चे को लेकर सड़क पर गिरता है तो बच्चे के शरीर का एक हिस्सा ट्रक के पहिए के बेहद करीब आ जाता है, लेकिन उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट भी नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, लिहाजा ऐसे में हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा। तो देखिए, सबसे पहला सवाल यहाँ पर आपको दिखाते हैं। पहला सवाल यह है कि अगर वीडियो सच्चा होता तो इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी क्यों नहीं सामने आई, और दूसरा सवाल यह कि कहीं जानबूझकर एडिटेड वीडियो को वायरल करके अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही है।
0: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कई की फ्रेम्स को निकाला और सर्च किया। इस दौरान हमें किसी भी विश्वसनीय समाचार वेबसाइट पर ऐसी किसी घटना की कोई रिपोर्ट नहीं मिली। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली जहाँ इस वीडियो को मुंबई का बताया गया हो। पड़ताल के दौरान हमें एक इंस्टाग्राम यूजर के अकाउंट पर 12 जुलाई 2026 को अपलोड किया गया ये वीडियो मिला। हालांकि वीडियो के कैप्शन में कुछ खास जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन जब हमने इस अकाउंट को खंगाला तो पाया कि इस अकाउंट पर इसी तरह के कई AI जनरेटेड वीडियो अपलोड किए गए हैं। ऐसे में हमें इस वीडियो को लेकर भी शक हुआ। जहन में ये सवाल आया कि वायरल हो रहा वीडियो भी AI निर्मित हो सकता है, लिहाजा हमने वीडियो को AI डिटेक्शन टूल हाइव मॉडरेशन पर चेक किया। टूल ने अपने विश्लेषण में 96.1% स्कोर के साथ वायरल वीडियो को संभावित AI जनरेटेड बताया। ट्रक के आगे कूदकर बच्चे की जान बचाते डिलीवरी बॉय के वायरल वीडियो को हमने AI डिटेक्शन वेबसाइट डीप फेकोमीटर पर भी जांचा। इस टूल के 3 डिटेक्टर्स ने उच्च संभावना के साथ वायरल वीडियो को AI जनरेटेड बताया। इजिट AI ने भी अपने विश्लेषण में वीडियो में मौजूद दृश्य को संभावित AI जनरेटेड बताया। हमारी पड़ताल में मिले साक्ष्यों से स्पष्ट है कि ट्रक के आगे कूदकर बच्चे की जान बचाते डिलीवरी बॉय का ये वीडियो असली घटना का नहीं बल्कि AI जनरेटेड है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: तो चलिए, इसी के साथ फैक्ट चेक में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे वायरल वर्ल्ड में क्या कुछ हो रहा है।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
3: व्हाटएवर यू आर इन द मूड फॉर, ट्यून इन हैज द म्यूजिक टू मैच फ्रॉम टुडेज हिट्स। to timeless favorites and new discoveries. It's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
2: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़। और
1: तो चलिए, अब वक्त हो चला है फैक्ट चेक के सफर के आखिरी दौर का। अब देखिए कुछ ऐसे वीडियोस जिन्हें देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान जरूर आ जाएगी।
0: माँ बेटे का एक बेहद प्यारा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। खाना खिलाते समय बच्ची अपनी माँ को उसी अंदाज में जवाब देती है जैसे उसकी माँ उसके साथ करती है। मासूम बातचीत और दोनों की हंसी ने लोगों का दिल जीत लिया है। वीडियो में एक छोटी बच्ची अपनी माँ को अपने हाथों से खाना खिलाती हुई नजर आती है। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है। बच्ची बड़े प्यार से चम्मच में खाना लेकर माँ के मुंह तक ले जाती है और माँ भी मुस्कुराते हुए खाना खाती रहती है। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद ऐसा होता है जिसे सुनकर हर कोई हंस पड़ता है। दरअसल बच्ची जैसे ही दूसरा चम्मच लेकर माँ को खिलाने लगती है, माँ उसे थोड़ी देर रुकने के लिए कहती है। माँ कहती है कि अभी उसके मुँह में पहले वाला निवाला है, इसलिए थोड़ा इंतजार करो। लेकिन बच्ची रुकने के बजाय ऐसा जवाब देती है जो पूरे वीडियो की जान बन जाता है।
4: जब मेरे माउथ में कुछ होता था, मुझे जल्दी जल्दी खिलाओ।
0: बच्ची मासूमियत से कहती है, नहीं, जब मेरे मुंह में खाना होता है तब आप जल्दी जल्दी खिलाते हो। उसकी ये बात सुनते ही माँ अपनी हंसी नहीं रोक पाती। शायद उसी पल माँ को एहसास होता है कि बेटी ने बड़े प्यारे तरीके से उसकी ही आदत उसे याद दिला दी है।
4: कुछ होता था, मुझे जल्दी जल्दी खिलाओ।
0: सोशल मीडिया पर इन दिनों ये वीडियो वायरल हो रहा है जिसने लोगों को अपना बचपन याद दिला दिया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ छोटे छोटे बच्चे अपने घर के बाहर खुले आंगन में मस्ती करते नजर आ रहे हैं। बच्चों ने कबाड़, प्लास्टिक की टोकरियां और लोहे के एक स्टैंड की मदद से अपने लिए एक अनोखा झूला तैयार किया है। कोई उस झूले में बैठकर घूमने का आनंद ले रहा है तो कोई अपने दोस्त को धक्का देकर मस्ती करता नजर आ रहा है। बच्चों के चेहरे पर दिख रही मुस्कान से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो इस पल को कितना एंजॉय कर रहे हैं। उनके लिए ये साधारण सा झूला किसी बड़े मनोरंजन पार्क से कम नहीं है। कई बार ऐसा नजारा भी देखने को मिल जाता है जिनके बारे में हम आप कल्पना तक भी नहीं कर सकते। ज्यादा उम्र होने के बाद लोग सही से उठ बैठ नहीं पाते, चल फिर नहीं सकते और वजन नहीं उठा सकते। ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उम्र को महज एक नंबर मानते हैं और बुढ़ापे में भी कहर भर पाते हैं। इस वीडियो में भी एक दादाजी ने कुछ ऐसा ही दम दिखाया है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह दादाजी जिम के अंदर एक्सरसाइज कर रहे हैं। उनका अंदाज देखकर लोग दंग रह गए।

सोशल मीडिया पर इन दिनों ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ट्रेन के सफर के दौरान बीएसएफ के जवानों ने ऐसा माहौल बना दिया कि पूरे कोच में बैठे लोग भावुक हो गए। वीडियो में देखा जा सकता है कि कई बीएसएफ जवान ट्रेन के एक कोच में सफर कर रहे हैं। सफर के दौरान अचानक कुछ जवान गिटार निकालते हैं और फिर सभी मिलकर फिल्म का एक मशहूर गाना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे गीत आगे बढ़ता है, पूरा डिब्बा देशभक्ति के रंग में रंग जाता है। जवानों की आवाज और गिटार की मधुर धुन ने पूरे माहौल को बेहद शांत, भावुक और सुकून भरा बना दिया है।

0: उज्बेकिस्तान के युवा कलाकारों ने बॉलीवुड का मशहूर गाना गाकर सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत लिया है। वायरल वीडियो को देख लोग इन कलाकारों की खूब तारीफ कर रहे हैं। वीडियो में खास बात यह है कि वो इस गाने को अपने पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ गा बजा रहे हैं। उनकी मधुर आवाज और संगीत का अनोखा अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है।
1: दुनिया में सबसे बड़ी इंसानियत तो वही होती है जो बिना किसी स्वार्थ और बिना किसी उम्मीद के किसी भी जुबान की प्यास बुझा दे।
0: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो लोगों का खूब ध्यान खींच रहा है। एक महिला ने प्यास से परेशान एक लंगूर की मदद करके हर किसी का दिल जीत लिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लंगूर काफी देर से पानी पीने की कोशिश कर रहा होता है। उसके सामने एक नल मौजूद है लेकिन वो उसे खोल नहीं पाता। बंदर बार बार नल को छूता है और उसे घुमाने की कोशिश करता है लेकिन हर बार नाकाम रहता है। उसकी बेचैनी साफ दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि वो काफी देर से प्यासा है और किसी तरह पानी पीना चाहता है। उसी दौरान वहाँ मौजूद एक महिला की नज़र उस लंगूर पर पड़ती है। वो बिना किसी डर या हिचकिचाहट के उसके पास जाती है। महिला को देखकर लंगूर भी कोई आक्रामक व्यवहार नहीं करता। महिला तुरंत नल खोल देती है और इस तरह पानी बहने लगता है। इसके बाद वो अपने हाथ की मदद से बंदर को आराम से पानी पीने देती है। वीडियो में सबसे खास बात ये है कि लंगूर पूरे समय बिल्कुल शांत रहता है। वो आराम से पानी पीता है और महिला पर पूरा भरोसा करता हुआ नजर आता है। वही महिला भी पूरे धैर्य और प्यार के साथ उसकी मदद करती है। दोनों के बीच का ये भरोसा और अपनापन लोगों को काफी भावुक कर रहा है। इस छोटे से गोलू मोलू पांडा ने अपने अंदाज से इंटरनेट पर ऐसी महफिल जमा दी कि लोग बार बार वीडियो देखने को मजबूर हो रहे हैं। लोग इस क्यूट पांडा को मैंगलेन के नाम से जानते हैं। हुआ यूं के एनरिचमेंट सेशन के दौरान केयरटेकर ने थोड़ी सी मस्ती करने की सोची। उन्होंने एक विग पहनी और पांडा के सामने आकर खड़े हो गए। मैंगलेन अपनी पिछली टांगों पर खड़ा होकर पूरे ध्यान से देख रहा था और आखिर केयरटेकर करने क्या वाला है। माहौल में सस्पेंस था। पांडा को लग रहा था कि केयरटेकर उसके सामने डांस करने वाला है और इसके लिए उसने इशारा भी किया। तभी केयरटेकर एक फिल्मी अंदाज में डांस करने लगता है। तभी अचानक अपने सिर से विग को हवा में उछाल दिया और अचानक उसका चमचमाता हुआ गंजा सिर सामने आ गया। फिर क्या था, इस अचानक आई ट्विस्ट को देख मैंगलेन का चेहरा देखने लायक था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा हो कि उसके केयरटेकर के बाल अचानक गायब कैसे हो गए। उसके हाव भाव ऐसे थे जैसे वो पूछ रहा हो, अरे भाई ये जादू हुआ कैसे। वो इतना हंसने लगा कि हंस हंस कर लोटपोट हो गया और जमीन में लेटने लगा। केयरटेकर ने जो ये प्रैंक किया उसने इंटरनेट पर मौजूद लाखों लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है।
2: बिकू कब तरह बोले नक बताता आप बस सा मुतअक्किद तब लाओ गिफ्टा खलिफ वो सर वीडियो 10 मिनट लाइक यल अभी ना यल।
0: सोशल मीडिया पर इन दिनों ये वीडियो लोगों का खूब ध्यान खींच रहा है। इस वीडियो में एक समझदार डॉल्फिन अपनी शानदार समझ, फूर्ति और ट्रेनिंग का ऐसा नजारा पेश करती है कि लोग उसे बार बार देख रहे हैं। वीडियो की शुरुआत एक बड़े स्विमिंग पूल से होती है जहां एक डॉल्फिन आराम से तैरती हुई अपने ट्रेनर के पास पहुंचती है। ट्रेनर के हाथ में एक छोटी बास्केटबॉल होती है। वो बड़े प्यार और धैर्य के साथ डॉल्फिन को गेंद देता है और उससे कुछ इशारों और शब्दों में बात करता हुआ दिखाई देता है। वीडियो देखने वालों को ऐसा महसूस होता है जैसे डॉल्फिन को समझा रहा हो कि आगे उसे क्या करना है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ट्रेनर की बात सुनने के बाद डॉल्फिन भी अपनी खास आवाज निकालती है। उसकी प्रतिक्रिया देख ऐसा लगता है मानो वो अपने ट्रेनर की बात समझ गई हो। और अब उसे पूरा करने के लिए तैयार हो। यही पल वीडियो को और भी खास बना देता है क्योंकि इंसानों और जानवरों के बीच इस तरह की समझ हमेशा लोगों को आकर्षित करती है। इसके बाद डॉल्फिन गेंद को अपने मुंह में पकड़ लेती है और बिना किसी जल्दबाजी के पूल के दूसरे छोर की तरफ तैरने लगती है। वहाँ पानी के ऊपर एक बास्केटबॉल रिंग लगी होती है। जैसे ही वो रिंग के करीब पहुंचती है, वो अचानक पानी से ऊपर की ओर शानदार छलांग लगाती है। उसकी टाइमिंग और संतुलन इतना बेहतरीन होता है कि गेंद बिल्कुल सही निशाने पर जाकर सीधे बास्केट में गिरती है।
3: गुन्नी चुन्नी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। गुन्नी चुन्नी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: गर्मी जब 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच जाए तो राहत की हर कोशिश किसी वरदान से कम नहीं होती। चीन में इन दिनों भीषण गर्मी लोगों के साथ साथ जानवरों के लिए भी परीक्षा ले रही है, लेकिन इस चुनौती से निपटने के लिए अलग अलग शहरों में अनोखे इंतजाम किए गए हैं।
5: कोई बर्फ की सिल्लियों के बीच रखे ताजा फलों के मजे ले रहा है, तो कोई बढ़ती तपिश में राहत की फुहार का आनंद ले रहा है, और तो और कहीं तो गलियारा ही गर्मी में सर्दी वाला एहसास करा रहा है। दरअसल चीन के कई हिस्सों में गर्मी की तपिश बढ़ी है, तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। ऐसे में लोगों और बेजुबानों को राहत देने के नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। अब जरा चीन के चोंगकिंग शहर के मशहूर शान चेंग लेन को देखिए। यहाँ 400 मीटर लंबा मिस्टिंग सिस्टम शुरू किया गया है। इस रास्ते पर हवा में बेहद महीन पानी के फुहारे फैल जाती हैं, जो पल भर में गर्मी में कूल कूल एहसास कराती हैं। सिर्फ इंसानों ही नहीं बल्कि हेफेई के चिड़ियाघर में जानवरों के लिए भी गर्मी से बचाव के खास इंतजाम किए गए हैं। यहाँ रेड पांडा को बर्फ की सिल्ली पर रखे ठंडे फल परोसे जा रहे हैं। बंदर बर्फ के बड़े टुकड़ों के साथ खेलते हुए गर्मी से राहत पा रहे हैं, तो वहीं हाथियों के लिए ठंडे पानी की फुहार चलाई जा रही है। इतना ही नहीं, जानवरों को ताजे फल और सब्जियां भी दी जा रही हैं, ताकि उनके शरीर में पानी की कमी न हो और वो इस भीषण गर्मी का सामना आसानी से कर सकें। कुल मिलाकर चाहे ऐतिहासिक गलियों में घूमते सैलानी हो या फिर पिंजरे के भीतर मजे लेते ये बेजुबान, गर्मी से निपटने के इन अनोखे और ठंडे ठंडे तरीकों ने सबका दिल जीत लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: दुनिया में खुशियां बांटना भी एक खूबसूरत सेवा है। मैक्सिको सिटी की सड़कें इस बात की गवाही दे रही हैं, जहां पर हर साल जोकर यानी कि क्लाउन अपनी कला के साथ श्रद्धा जताने सड़कों पर निकलते हैं। एक ऐसी यात्रा जिसमें हंसी बांटने वाले कलाकार अपने विश्वास और परंपरा को निभाने के लिए हजारों की संख्या में एक साथ जुटते हैं।
5: चेहरे पर चटक लाल रंग, बड़ी सी मुस्कान, दिल में श्रद्धा और कदमों में विश्वास, ये कोई सर्कस का मंच नहीं बल्कि आस्था का रंगमंच है। रंग बिरंगे कपड़ों में मैक्सिको सिटी की सड़कों पर जब एक साथ सैकड़ों क्लाउन उतरे तो हर तरफ खुशी, उत्साह और श्रद्धा का अनोखा संगम दिखाई दिया। हर साल की तरह इस बार भी वर्जिन ऑफ ग्वाडालूपा की सालाना यात्रा बड़े ही धूमधाम से निकली। रंग बिरंगी पोशाक में पहुंचे क्लाउन वर्जिन ऑफ ग्वाडालूपा की प्रतिमा और तस्वीरें लेकर मैक्सिको के सबसे बड़े धार्मिक स्थल ग्वाडालूपे बेसिलिका पहुंचे। कलाकारों की इस अनोखी यात्रा में किसी ने करतब दिखाए, किसी ने गेंदों से जुगलबंदी की, तो किसी ने अपनी मासूम अदाओं से बच्चों और बड़ों दोनों के चेहरे पर मुस्कान ला दी। माहौल ऐसा था जहाँ मनोरंजन और श्रद्धा एक साथ नजर आई।
6: El motivo de la peregrinación es porque se fundó el Club Payasos Mexicanos de Circo en 1979. En el primer año del aniversario se propuso festejarlo con una peregrinación, dando gracias por los favores recibidos durante el año.
5: चर्च की चौखट पर पहुंचते ही पवित्र जल से जब इन मुस्कुराते चेहरों पर आशीर्वाद की बूंदें पड़ी तो इनका विश्वास और मजबूत हुआ, क्योंकि कला जब आस्था से जुड़ जाती है तो हर मुस्कान इबादत बन जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गुन्नी चुन्नी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल
4: जाए। रथ यात्रा के दूसरे दिन भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मौसी घर पहुंचे महाप्रभु गुंडीचा मंदिर में। आज सुबह होंगे विराजमान, 7 दिन विश्राम के बाद 24 जुलाई को लौटेंगे अपने मंदिर। अंतरिक्ष में एक और ऐतिहासिक छलांग लगाने की तैयारी। देश का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 सुबह 11:30 बजे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भरेगा उड़ान। देश को मिली पहली हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात। प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जींद में दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देश को मिली 4700 करोड़ से ज्यादा की विकास

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अगला स्टेशन क्लीन एंड ग्रीन फ्यूचर है और इस फ्यूचर की तरह एक और कदम आज भारत ने आगे बढ़ा दिया है। आज से भारत में क्लीन एनर्जी से चलने वाली पहली ट्रेन पटरी पर दौड़ने लगी है। बीते सालों में भारतीय रेलवे ने सिर्फ कनेक्टिविटी को ही नहीं बढ़ाया बल्कि रफ्तार, सुविधाओं और तकनीक के मामले में अपनी ट्रेन्स को भी नया स्वरूप दिया है। इसी कड़ी में देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड ट्रेन नमो ग्रीन एक्सप्रेस को पटरी पर उतारा गया। जैसे अब तक डीजल और बिजली से चलने वाले इंजन आप देखते रहे हैं, अब ये ट्रेन हाइड्रोजन की ताकत के साथ ट्रैक पर दौड़ेगी। खास बात देखने वाली यह है कि ये ट्रेन मेड इन इंडिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। अभी हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच में ये ट्रेन चलाई जा रही है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसी है भारत की पहली ग्रीन एक्सप्रेस।

1853 और तारीख थी 16 अप्रैल। बॉम्बे से 14 कोच और 400 पैसेंजर्स के साथ भारत की पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे के लिए रवाना हुई थी। साहिब, सिंध और सुल्तान नाम के 3 स्टीम इंजन्स ने उस ट्रेन को खींचा था। उस ट्रेन ने लगभग 57 मिनट में 34 किलोमीटर की दूरी में एक युग का सफर तय किया था। और देखिए, आज वक्त का पहिया उस रेल के सफर को कहां तक ले आया है। बीते 175 सालों में भारत की रेलगाड़ी और रेलवे स्टेशन दोनों का रंग रूप हमारी सोच की सरहदों से काफी आगे निकल गया है। 20वीं शताब्दी का सूरज उगने के साथ हमारी रेल की कहानी में कई अलग अलग माइलस्टोन्स आए हैं, लेकिन आज का दिन अपने आप में बेहद खास है। आज का दिन ऐतिहासिक है, क्योंकि आज देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन पटरी पर दौड़ पड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जींद रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई और इसी के साथ भारतीय रेलवे के इतिहास में एक और नया अध्याय जुड़ गया। भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन यात्रियों की सेवा के लिए रवाना हो गई। ये भारतीय रेलवे की पहली हाइड्रोजन आधारित ग्रीन ट्रेन है। ये ट्रेन डीजल या कोयले से नहीं चलती और इसे लगातार ओवरहेड बिजली लाइन से भी ऊर्जा लेने की जरूरत नहीं। ट्रेन में लगे हाइड्रोजन फ्यूल सेल हाइड्रोजन और हवा में मौजूद ऑक्सीजन की रासायनिक प्रतिक्रिया से बिजली बनाते हैं, जिसकी ताकत से ये ट्रेन पटरी पर दौड़ती है।

0: नमो ग्रीन ट्रेन 10 डिब्बो वाली ट्रेन है। इसमें 8 यात्री डिब्बे और 2 इंजन वाली पावर कार। इस लिहाज से ये दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन है। आधुनिक सुविधाओं की बात करें तो इसमें ऑटोमेटिक दरवाजे, डीसी एयर कंडीशनिंग और आरामदायक सीटें हैं। इसकी अधिकतम स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन सामान्य तौर पर ये 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। खास बात यह है कि इस ट्रेन में 3200 हॉर्स पावर वाला महाशक्तिशाली इंजन लगा है, जिसके चलते इसे दुनिया की सबसे ताकतवर ग्रीन ट्रेन भी कहा जा रहा है।
1: साथियों, जिंद से सोनीपत को चलने वाली हाइड्रोजन ट्रेन दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन है। ये हाइड्रोजन ट्रेन 3200 हॉर्स पावर की है, 3200 हॉर्स पावर। और सबसे ताकतवर ही नहीं, भारत की हाइड्रोजन ट्रेन सबसे लंबी भी है।

0: दुनिया में जहां हाइड्रोजन ट्रेन चल रही है वो 3 या 4 कोच वाली है और भारत ने पहली बार में सीधे 10 कोच वाली हाइड्रोजन ट्रेन चलाकर दुनिया में अपना झंडा गाड़ दिया है।
1: भारत की इस पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरियाणा की जींद और सोनीपत के बीच चलाया जा रहा है। ये ट्रेन रोज सुबह 7:40 पर जींद जंक्शन से रवाना होगी और सुबह 9:40 पर सोनीपत पहुंचेगी। 89 किलोमीटर का सफर करीब 2 घंटे में पूरा होगा। सोनीपत से ये ट्रेन सुबह 10:40 पर वापस जींद के लिए रवाना होगी।
2: यहाँ की सबसे पहली ट्रायल ट्रेन है बेसिकली, जिसके ट्रायल भी हुए हैं और सक्सेसफुली भी है। अभी ट्रायल तो कई कंट्रियां कर रही है, लेकिन सक्सेसफुली 2-4 टोटल आज ये 5वीं वर्ल्ड की 5वीं कंट्री है जो सक्सेसफुली मूव करेगी।
1: इस ट्रेन को ग्रीन ट्रेन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसके चलने से धुआं या कार्बन उत्सर्जन नहीं होगा। इससे मुख्य रूप से भाप और गर्मी निकलती है। हाइड्रोजन इसका ईंधन है और हवा से मिलने वाली ऑक्सीजन पावर जनरेट करने की प्रक्रिया का हिस्सा है। चलिए आपको बताते हैं कि हाइड्रोजन ट्रेन किस तकनीक से चलती है। यूँ समझिए कि ट्रेन के भीतर ही उसे चलाने वाला पावर प्लांट लगा है। इस पावर प्लांट को चलाने में 4 मुख्य पार्ट्स अलग अलग भूमिका निभाते हैं। पहला है हाइड्रोजन टैंक, जिसमें हाइड्रोजन गैस भरी जाती है। इस टैंक तक हाइड्रोजन पहुंचाने के लिए जींद रेलवे स्टेशन के पास देश का पहला हाइड्रोजन स्टोरेज और रिफ्यूलिंग प्लांट बनाया गया है। दूसरा पार्ट है फ्यूल सेल डिवाइस, जहां केमिकल रिएक्शन और इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया होती है। तीसरा पार्ट है बैटरी, जहां पैदा की गई बिजली स्टोर होती है। और चौथी है इलेक्ट्रिक मोटर, जिसकी ताकत से ट्रेन पटरी पर दौड़ती है। अब आते हैं ट्रेन को चलाने की प्रक्रिया पर। इसके लिए सबसे पहले ट्रेन के हाइड्रोजन स्टोरेज टैंक में हाई प्रेशर से ग्रीन हाइड्रोजन भरी जाती है। इसके बाद ये हाइड्रोजन गैस हाई प्रेशर से फ्यूल सेल में भेजी जाती है, जबकि दूसरी ओर से ऑक्सीजन इसमें प्रवेश करती है। फ्यूल सेल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच होने वाले केमिकल रिएक्शन से पानी, भाप और बिजली पैदा होती है। इस प्रक्रिया में पैदा हुई बिजली बैटरी में स्टोर हो जाती है, भाप वातावरण में निकल जाती है और पानी नीचे की ओर से निकल जाता है। फिर बैटरी से चार्ज लेकर इलेक्ट्रिक मोटर ट्रेन को रफ्तार दे देती है।
3: हाइड्रोजन जो है वो सीधा बिजली पैदा करता है। एक जो उसको एक टेक्नोलॉजी का है जिसको कहते हैं फ्यूल सेल, कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं, 100 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है। तो फ्यूल सेल जो होता है एक तरह का मेम्ब्रेन होता है, उसमें एक तरफ से हाइड्रोजन डालते हैं और दूसरी तरफ से हवा डालते हैं, मतलब ऑक्सीजन बेसिकली। जो दोनों मिलते हैं तो पानी बनता है, उसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन आप जानते हैं पानी बनता है, और साथ में कुछ बिजली पैदा होती है। और ऐसे बहुत सारे मेम्ब्रेन या फ्यूल सेल को आप एक के ऊपर एक रखते जाएं तो वोल्टेज ऐड होता रहता है, 1.5 वोल्ट, 3 वोल्ट, 6 वोल्ट, 20 वोल्ट, 50 वोल्ट, तो ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज। अगर उनको पैरेलल में लगाए तो करंट बढ़ता है, 1 एम्पियर, 4 एम्पियर, 8 एम्पियर ऐसे बढ़ता है। तो जो फ्यूल सेल स्टैक डिजाइन किया जाता है तो देखना पड़ता है कि कितनी पावर चाहिए, कितनी एनर्जी चाहिए गाड़ी चलाने के लिए, पावर बेसिकली। तो उससे सीधा बिजली पैदा होती है, डीसी बिजली, डीसी इलेक्ट्रिसिटी, और उसको फिर आप इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल करके उसको उसमें हेर फेर करके फिर आप ट्रैक्शन मोटर में बिजली भेजते हैं, तो इससे गाड़ी चलती है।
1: इस ट्रेन का सबसे बड़ा फायदा है कि इसे चलाने की पूरी प्रक्रिया में कोई धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड या किसी भी और रूप में कार्बन का उत्सर्जन नहीं होता। यानी इस ट्रेन के चलने से हवा प्रदूषित नहीं होगी। डीजल ट्रेनों की तुलना में ये जीरो एमिशन यानी शून्य उत्सर्जन वाली है। इससे ग्लोबल वार्मिंग कम करने में मदद मिलेगी। यानी ये ट्रेन पूरी तरह पर्यावरण के अनुकूल है। इस ट्रेन को चेन्नई के ICF यानी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में बनाया गया है, जबकि टाटा एडवांस सिस्टम्स ने इसका फ्यूल सेल सिस्टम तैयार किया है। यानी ये ट्रेन मेक इन इंडिया मिशन का एक और कमाल है।
0: भारत की यह हाइड्रोजन ट्रेन धुआं रहित तो है ही, ये मेक इन इंडिया का भी एक बहुत सफल उदाहरण है। इस हाइड्रोजन ट्रेन को भारत के ही इंजीनियर्स ने डिजाइन किया है, भारत की ही कंपनी ने इसको बनाया है। साथियों, यह हाइड्रोजन ट्रेन बाकी ट्रेनों से बिल्कुल अलग है।
1: चूंकि हाइड्रोजन बहुत ज्वलनशील होती है, इसलिए नमो ग्रीन ट्रेन में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसमें फायर अलार्म, आग बुझाने के लिए आपातकालीन व्यवस्था और हाइड्रोजन गैस लीकेज डिटेक्शन सिस्टम लगाए गए हैं। अगर हाइड्रोजन रिसाव होता है तो सिस्टम तुरंत अलर्ट जारी करता है और सुरक्षा उपाय सक्रिय हो जाते हैं। इस शानदार हाइड्रोजन ट्रेन के संचालन के साथ भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जो हाइड्रोजन की रफ्तार से ग्रीन ट्रेन्स को पटरी पर दौड़ा रहे हैं। हाइड्रोजन ट्रेन भारत की तकनीकी क्षमता, आत्मनिर्भरता और स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में बढ़ते कदमों का प्रतीक है। तभी तो इसे इंडियन रेल का ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जा रहा है। जींद से पीयूष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: आज जब पहली नमो ग्रीन ट्रेन जींद से रवाना हुई तो इसमें पहली बार सफर करने वालों की खुशी का ठिकाना नहीं था। रेल में तो जाने कितनी बार बैठे, लेकिन ये मौका बहुत खास था, यादगार था।
5: मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये हमारी जींद का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मोदी जी ने हमारे जींद को चूज किया और फर्स्ट ट्रेन यहाँ से चल रही है। यहाँ का रेलवे स्टेशन हमने पहले पुराने भी देखे हुए हैं, उसके आज सब कुछ चेंज हो गया।
6: आज हम जो इस ट्रेन में बैठे और देख रहे बगैर एसी के, बिल्कुल क्रॉस वेंटिलेशन है इसके अंदर, और ये हिंदुस्तान की पहली ट्रेन जो है जींद से या सोनीपत के बीच में 89 किलोमीटर का सफर तय करेगी। और जींद के लिए नहीं, पूरे हरियाणा के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए ये पूरे गर्व की बात है। और इसका जो है क्रेडिट जो है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है।
7: और पहले का स्टेशन और आज के स्टेशन में कितना अंतर है। ये प्लेटफार्म हमारे जो लो लेवल के हुआ करते थे, चढ़ने में भी बड़ी दिक्कत हुआ करती थी, अब ये हमारे हाई लेवल रेल मतलब डिब्बे के बराबर के वो बन गए हैं प्लेटफार्म, तो हमें बहुत सहूलियत दी है। ये स्टेशन की हालात देख रहे हैं, कितने शेड लग गए, कितना एफओबी बना है, बहुत चौड़ा 12 मीटर का एफओबी बना है, एक्सकलेटर लगा है, लिफ्ट लगी है, तो सभी को इतनी सहूलियत दे दी हमारे जींद को प्रधानमंत्री का, हम धन्यवाद करते हैं।
8: जींद वासियों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जींद पे इतनी बड़ी ट्रेन, हालांकि एशिया की सबसे लॉन्गेस्ट और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेन है, इसका हर एक पार्ट इंडिया में बनाया गया है, इसका डिजाइन लखनऊ में हुआ है और ये चेन्नई में बनाई गई है। इतनी लोकल डिस्ट्रिक्ट में इतनी बड़ी ट्रेन का एक लॉन्च हुआ है, ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। ये भारत ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि भारत किसी से कम नहीं। जो हमारे इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ये साबित किया कि ये मिलकर भी और अकेले भी दोनों तरीके से बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, इतनी डेवलप कंट्री चाइना, जर्मनी, जापान में इतनी बड़ी ट्रेन नहीं बन पाई, हॉर्स पावर कम है, सीटिंग पावर कम है, पर हमारे भारत में इतने अच्छे इंजीनियर साइंटिस्ट हैं, लोग इतने अच्छे हैं कि हमने इतनी बढ़िया ट्रेन बनाई है।
9: आई वुड लाइक टू से दैट इट इज अ वेरी नाइस इनिशिएटिव दैट बिकॉज इट इज द ओनली ट्रेन दैट रिलीजेस वाटर वेपर्स बाय टेकिंग हाइड्रोजन गैस एंड दिस इनिशिएटिव इज टेकन टू रिड्यूस पॉल्यूशन।
4: डेटा ये बताता है कि भारतीय रेल नेटवर्क के 99% रूट का इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। ऐसे में क्या हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड ट्रेन की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? स्पीड, मेंटेनेंस और ऑपरेशन कॉस्ट के मामले में क्या ये पहले से मौजूदा ट्रेन से बेहतर है? आखिर क्यों हाइड्रोजन ट्रेन भारतीय रेल नेटवर्क के लिए जरूरी थी? इन तमाम सवालों का जवाब देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में।
1: न डीजल, न कोयला, न बाहर से कोई बिजली, इस ट्रेन को चलने के लिए सिर्फ हाइड्रोजन चाहिए। जैसे सोलर पैनल सूरज की रोशनी से बिजली बना देता है, वैसे ही ये तकनीक हाइड्रोजन को ईंधन बनाएगी और पटरी पर ट्रेन को सरपट दौड़ाएगी। और न केवल दौड़ाएगी बल्कि दूसरी तकनीक से चलने वाले इंजन की तुलना में ज्यादा दूर तक दौड़ाएगी। वंदे भारत जैसी शानदार ट्रेन को तैयार करने वाली टीम के चीफ इंजीनियर के मुताबिक डीजल और दूसरे फ्यूल की तुलना में हाइड्रोजन की उतनी ही मात्रा ज्यादा पावर सप्लाई कर सकती है।
3: हाइड्रोजन का कैलोरीफिक वैल्यू जो है जो उसका जो हीट होता है जलने पर जो पैदा होती है वो काफी हाई होती है, काफी ऊंचा होता है। तो मैं जैसे कंपेयर करूं डीजल से, मान लीजिए, तो डीजल से जितनी जितनी बिजली पैदा होगी या जितने जित दूर ट्रेन जाएगी, वैसे ही ट्रेन हाइड्रोजन से उसकी दुगनी जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन में एनर्जी ऑफ कम्बशन ज्यादा होती है।
1: भारत की ये पहली हाइड्रोजन ट्रेन है जो यात्रियों के लिए उपलब्ध है। ये सिर्फ एक नई ट्रेन नहीं बल्कि भारतीय रेलवे की अगली पीढ़ी की तकनीक है। दुनिया के कई देश जिस टेक्नोलॉजी के लिए सालों से संघर्ष कर रहे हैं, भारत ने उसे रिकॉर्ड समय में हासिल कर लिया है। अब अगला कदम इसके ऑपरेशन को किफायती बनाना है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक फिलहाल हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड ट्रांसपोर्ट को ऑपरेट करना दूसरे माध्यमों की तुलना में महंगा है। सारी दुनिया में इसकी कीमत को कम करने पर काम किया जा रहा है, नए प्रयास हो रहे हैं।
3: देखिए, जो दुनिया भर में ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर जो काम हो रहा है वो एक होली ग्रेल बना रखा है कि हमें $1 प्रति किलोग्राम हाइड्रोजन अगर बनना शुरू हो जाए तो ये एक वायबल एनर्जी का सोर्स है या एनर्जी स्टोरेज का सोर्स है। तो अभी तो $1 प्रति किलोग्राम तो बहुत दूर है।
1: ऐसे में कई लोगों के मन में ये सवाल भी आ रहा है कि जब भारतीय ट्रेन नेटवर्क का 99% से ज्यादा रूट का इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है तो ऐसे में तुलनात्मक रूप से ज्यादा ऑपरेशनल खर्च वाली हाइड्रोजन ट्रेन चलाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो आपको बता दें कि इसकी मुख्य रूप से दो वजह है। पहली है दुनिया के सामने मेक इन इंडिया और भारत की टेक्निकल एक्सपर्टीज का डेमो। दुनिया में अभी केवल 3-4 देशों के पास ही हाइड्रोजन ट्रेन संचालित करने की क्षमता है और वहाँ भी ये तकनीक अभी शुरुआती दौर में है। ऐसे में भारत की हाइड्रोजन तकनीक और क्षमता पूरे देश के लिए गर्व की बात है।
3: प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया, वो सस्ते महंगे के लिए नहीं किया, वो तो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन था कि भारत भी वो कर सकता है जो जर्मनी ने और जापान ने और चाइना ने किया है। तो इसलिए तो हमारे लिए गर्व की बात है कि हमने ऐसा टेक्नोलॉजी पर एक बड़ी ट्रेन बनाई। छोटे मोटे मॉडल तो बहुत लोग बना चुके हैं।
1: साथ ही ये भी माना जा रहा है कि जिन रूट्स पर बिजली की लाइन खींचना मुश्किल है वहाँ ये ट्रेन कामयाब होगी। यही वजह है कि जींद और सोनीपत रूट की पहली ट्रेन केवल एक डेमो है। सरकार की हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज योजना के तहत देश के अलग अलग हेरिटेज और पहाड़ी रूट्स पर ऐसी 35 ट्रेन चलाने की योजना है। ये सभी वे रूट्स होंगे जहां रेलवे लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन करना या तो संभव ही नहीं है या फिर चुनौतीपूर्ण।
3: जैसे हिल रेलवे है, जैसे दार्जिलिंग रेलवे है या ऊटी की रेलवे है या पालमपुर हिमाचल की ट्रेन है, जो पहाड़ी इलाकों में है, हेरिटेज लाइन्स हैं जिनको इलेक्ट्रीफाई करने में वो यूनाइटेड यूएन हेरिटेज वालों से परमिशन लेनी पड़ेगी, वो मिलेगी भी नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिफिकेशन करने से जो लैंडस्केप है वो थोड़ा खराब हो जाता है देखने में। तो उन एरियाज के लिए ये ट्रेन बिल्कुल परफेक्ट है जहां पर इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ है और करना संभव भी नहीं है।
1: यही वजह है कि भारत की पहली नमो ग्रीन एक्सप्रेस का स्वागत बाहें फैलाकर किया जा रहा है। ये ट्रेन न केवल भविष्य के ट्रांसपोर्ट की झलक दिखाती है बल्कि क्लीन एनर्जी में भारत के बढ़ते कदमों की नजीर भी पेश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: दरअसल दुनिया इस समय तेजी से स्वच्छ ऊर्जा की तरफ बढ़ रही है। पेट्रोल और डीजल के विकल्प के रूप में हाइड्रोजन ईंधन की चर्चा लंबे वक्त से हो रही है। जब फ्यूल सेल में हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है तो उससे ऊर्जा बनती है और वेस्ट के रूप में केवल भाप यानी पानी निकलता है और यही वजह है कि इसे भविष्य का सबसे स्वच्छ ईंधन माना जा रहा है और यही वजह है कि कई देश इस पर काम भी कर रहे हैं। हाइड्रोजन तकनीक अपनाने वाले देशों में जापान सबसे आगे है। यहां हाइड्रोजन से चलने वाली कारें सड़कों पर दौड़ रही हैं। हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन बनाए जा चुके हैं और सरकार इस तकनीक को बढ़ावा देने के लिए लगातार निवेश कर रही है। कई शहरों में हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली बसें भी सार्वजनिक परिवहन का हिस्सा बन चुकी हैं। वहीं दक्षिण कोरिया ने हाइड्रोजन को अपनी राष्ट्रीय ऊर्जा रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया है। यहां हाइड्रोजन बसें, ट्रक और निजी वाहन बड़ी संख्या में उपयोग किए जा रहे हैं। सरकार का लक्ष्य हाइड्रोजन वाहनों और फ्यूलिंग स्टेशनों का बड़ा नेटवर्क तैयार करना है। ताकि परिवहन क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम किया जा सके। इसी तरह जर्मनी में हाइड्रोजन से चलने वाली पैसेंजर ट्रेनें परिचालन में हैं। ये ट्रेनें बिना डीजल के लंबी दूरी तय करती हैं और केवल पानी छोड़ती हैं। जिन रेल मार्गों का विद्युतीकरण नहीं हुआ वहां हाइड्रोजन ट्रेनें पर्यावरण के अनुकूल विकल्प बन रही हैं। इसी कड़ी में भी चीन हाइड्रोजन तकनीक पर तेजी के साथ काम कर रहा है। कई शहरों में हाइड्रोजन से चलने वाली बसें और भारी ट्रक संचालित किए जा रहे हैं। लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक क्षेत्रों में हाइड्रोजन ईंधन का इस्तेमाल बढ़ रहा है। इसी तरह अमेरिका में भी हाइड्रोजन तकनीक का उपयोग परिवहन के साथ साथ बिजली उत्पादन उद्योगों में भी हो रहा है। कैलिफोर्निया जैसे राज्यों में हाइड्रोजन कारों के लिए रिफ्यूलिंग स्टेशन उपलब्ध करवाए गए हैं। फ्रांस समेत कई यूरोपीय देश हाइड्रोजन बसें चला रहे हैं। यूरोपीय संघ ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन और उपयोग पर बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। लक्ष्य है कि भारी उद्योग, जहाजरानी, रेल और विमानन जैसे क्षेत्रों में जीवाश्म ईंधन की जगह स्वच्छ हाइड्रोजन का उपयोग बढ़ाया जाए। और अब भारत भी हाइड्रोजन क्रांति की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत स्वच्छ हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। देश में पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन ये पहला कदम नहीं। इससे पहले देश में हाइड्रोजन से चलने वाली बसों और ट्रकों के परीक्षण हो चुके हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड तकनीक में भारत कहां तक आगे बढ़ा है।

0: हरियाणा के जींद से पानीपत के बीच इस नीली हाइड्रोजन ट्रेन के आगाज के साथ ही हिंदुस्तान में ग्रीन मोबिलिटी की दिशा में नया इतिहास रचा गया है। फिलहाल भले ही केवल एक सेक्शन पर ये ट्रेन दौड़ रही है, लेकिन आने वाले समय में इसका विस्तार होने के पूरे आसार है। और केवल रेल सेवा में ही नहीं, बल्कि सफर के दूसरे साधनों में भी हाइड्रोजन के भरपूर इस्तेमाल की संभावनाएं बढ़ रही हैं, चाहे बस हो या ट्रक या फिर वाटर टैक्सी ही क्यों ना हो। हर तरह से सफर को सुगम बनाने में हाइड्रोजन का इस्तेमाल होने जा रहा है, क्योंकि भारत में इसकी तैयारी तो पहले से ही हो चुकी है। वहीं आपको ये भी बता दें कि भारत की राजधानी दिल्ली में हाइड्रोजन ईंधन से बस चलाने की भी पहल की जा चुकी है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC ने इसी साल 2026 में 15 मई से सेंट्रल विस्टा एरिया में हाइड्रोजन फ्यूल आधारित शटल बस सेवा की शुरुआत की। केंद्रीय सचिवालय और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशन के बीच इस बस सेवा को इसीलिए शुरू किया गया ताकि सरकारी कर्मचारियों और आम लोगों की दफ्तरों तक आवाजाही आसान हो सके। इससे निजी गाड़ियों पर निर्भरता भी कम होगी और पेट्रोल डीजल CNG की बचत होगी और राजधानी की हवा भी शुद्ध रहेगी। इससे पहले पुणे की कंपनी ने 2021 में हाइड्रोजन से चलने वाली बस का विकल्प पेश किया था। न पेट्रोल की जरूरत, न डीजल डलवाने का टेंशन, केवल हवा और हाइड्रोजन की जरूरत और चल पड़ेगी ये बस। इस खास तरह की बस को रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन पर काम करने वाली एक लैब सेटियंट लैब्स ने तैयार किया। बताया जा रहा है कि भारत में लॉन्च की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस है। इसी तर्ज पर दिसंबर 2025 में वाराणसी में देश की पहली हाइड्रोजन वाटर टैक्सी को भी हरी झंडी दिखाई गई। हालांकि ये भी जानना जरूरी है कि जिस हाइड्रोजन ईंधन से अब ट्रेन चल रही है उसका हाइड्रोजन फ्यूल सेल है क्या और ये किस तरह से काम करता है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों में जिस तरह से बैटरी काम करती है, ठीक उसी तरह फ्यूल सेल भी काम करते हैं, लेकिन इन्हें चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ती है। जब तक उन्हें हाइड्रोजन फ्यूल की सप्लाई होती रहेगी, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते रहेंगे। फ्यूल सेल में हाइड्रोजन गैस और हवा की ऑक्सीजन के बीच रासायनिक क्रिया होती है। इस क्रिया से सीधे बिजली बनती है जो ट्रेन की इलेक्ट्रिक मोटर को चलाती है। यानी फ्यूल सेल हाइड्रोजन और हवा को इस्तेमाल करके बस के लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, जिसका इस्तेमाल वाहनों को चलाने में किया जाता है। इसमें बाय प्रोडक्ट के तौर पर सिर्फ पानी बाहर आता है, जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा। एक और बड़ा फायदा रिफ्यूलिंग में है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के नजरिए से देखें तो बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल की तुलना में इसे रिफ्यूल करना आसान है, क्योंकि ये कुछ ही मिनटों में रिफ्यूल हो जाता है, जबकि बैटरी वाली बसों को चार्ज करने में घंटों लगते हैं। असल में ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी का सबसे साफ सोर्स है और इसको रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से तैयार किया जाता है। इसके तैयार होने और इस्तेमाल होने में पॉल्यूशन कम होता है, इसीलिए इसे लो कार्बन फ्यूल के तौर पर भी जाना जाता है, जिससे वातावरण को बेहतर करने में मदद मिलेगी और पेट्रोल डीजल की तुलना में लागत भी घटेगी और तो और कार्बन उत्सर्जन को घटाने में भी मदद मिलेगी। आगे का वक्त पेट्रोल डीजल रहित वाहनों का है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की लोकप्रियता तो तेजी से रफ्तार पकड़ ही रही है। ऐसे में अब हाइड्रोजन से चलने वाली बसें, ट्रक और वाटर टैक्सी भी बेहतरीन विकल्प के तौर पर उभर रही हैं। फिलहाल ये ट्रांसपोर्ट की वो तस्वीर है जो न केवल उम्मीद जगा रही है, बल्कि सुनहरे भविष्य की कहानी भी बयां कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और चलिए इसी के साथ GNT स्पेशल की इस खास कवरेज में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: TuneIn has all of your favorite audio in one spot. So you can enjoy listening to anything, anywhere. From breaking news.
1: After multiple assassination attempts, they can't even get...
2: They're reliable.
3: Always when I need them.
0: To live sports action.
4: One-hand jam by LeBron on the break.
5: That's another three, Steph Curry.
0: And your favorite music.
6: Well, the dawn begins to crack.
0: TuneIn has got it all. Discover new stations in the app or ask your device to play TuneIn.
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
8: गर्मी जब 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच जाए तो राहत की हर कोशिश किसी वरदान से कम नहीं होती। चीन में इन दिनों भीषण गर्मी लोगों के साथ साथ जानवरों के लिए भी परीक्षा ले रही है, लेकिन इस चुनौती से निपटने के लिए अलग अलग शहरों में अनोखे इंतजाम किए गए हैं।
9: कोई बर्फ की सिल्लियों के बीच रखे ताजा फलों के मजे ले रहा है, तो कोई बढ़ती तपिश में राहत की फुहार का आनंद ले रहा है, और तो और कहीं तो गलियारा ही गर्मी में सर्दी वाला एहसास करा रहा है। दरअसल चीन के कई हिस्सों में गर्मी की तपिश बढ़ी है, तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। ऐसे में लोगों और बेजुबानों को राहत देने के नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। अब जरा चीन के चोंगकिंग शहर के मशहूर शान चेंग लेन को देखिए। यहाँ 400 मीटर लंबा मिस्टिंग सिस्टम शुरू किया गया है। इस रास्ते पर हवा में बेहद महीन
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को।
8: पूरी में रथ यात्रा के दूसरे दिन भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मौसी घर पहुंचे महाप्रभु गुंडीचा मंदिर में। आज सुबह होंगे विराजमान, 7 दिन विश्राम के बाद 24 जुलाई को लौटेंगे अपने मंदिर। अंतरिक्ष में एक और ऐतिहासिक छलांग लगाने की तैयारी। देश का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 सुबह 11:30 बजे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भरेगा उड़ान। देश को मिली पहली हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात। प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जींद में दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देश को मिली 4700 करोड़ से ज्यादा की विकास योजनाओं की सौगात। पीएम ने पंजाब से किया शुभारंभ। देश भर में 75 रेलवे स्टेशनों का हुआ कायाकल्प। आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए गुड न्यूज। पिछले हफ्ते 96,40,00,000 डॉलर बढ़ा विदेशी मुद्रा भंडार। 67,500 करोड़ डॉलर के पार पहुंचा कुल विदेशी मुद्रा भंडार।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
10: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक। देखिए, सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार से फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, तो कभी पुरानी तस्वीरों को नए साजिशी रंग में रंगकर पेश कर दिया जाता है और लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं रही। यहां हर किसी के हाथ में कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकेंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर दी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश कर दी जाती है, और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा इसका यह होता है कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे इन्हें सच मानकर शेयर करना शुरू कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। तो फैक्ट चेक में आज सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की, जिसके जरिए ये दावा किया जा रहा है कि एक्टर प्रकाश राज और रजनीकांत जंतर मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में पहुंचे। क्या है वायरल दावे और वीडियो की सच्चाई, आपको आगे बताएंगे। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई है, जिसके जरिए ये दावा किया जा रहा है कि मुंबई में डिलीवरी बॉय ने अपनी जान जोखिम में डालकर बच्चे की जान बचाई। क्या है वायरल दावे और वीडियो की सच्चाई, आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फैक्ट चेक।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
10: दिल्ली के जंतर मंतर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले अनिश्चितकालीन अनशन चल रहा है। यहां सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भूख हड़ताल कर रहे हैं। इस अनशन से जोड़कर सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें अभिनेता प्रकाश राज और कुछ दूसरे लोगों को देखा जा रहा है। कुछ यूजर्स इस वीडियो को शेयर कर ये दावा कर रहे हैं कि अभिनेता रजनीकांत और प्रकाश राज सीजेपी के अनशन में जंतर मंतर पर पहुंचे। वायरल हो रहे वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करते हमारी ये रिपोर्ट देखिए।
2: दिल्ली में जंतर मंतर पर बीते 3 हफ्तों से कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन जारी है, जिसमें एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक भूख हड़ताल कर रहे हैं। इसी संदर्भ में अब कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि दक्षिण भारतीय एक्टर प्रकाश राज और रजनीकांत ने वांगचुक से मुलाकात की और प्रदर्शन के प्रति अपना समर्थन जताया। वायरल वीडियो में एक मंच पर कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके के पास प्रकाश राज और एक्टर रजनीकांत की तरह दिखने वाले एक शख्स बैठे दिखते हैं। वीडियो में प्रकाश कह रहे हैं कि मैं फिल्मों में चीटिंग करता हूं, पैसे मिलते हैं, वो एक्टिंग है, ये एनएक्टिंग है, वो एक्ट ऑफ आर्ट है, ये एक्ट ऑफ क्राइम है।
3: मैं फिल्मों में चीटिंग करता हूँ, पैसा मिलता है, वो एक्टिंग है, ये एनएक्टिंग है, वो एक्ट ऑफ आर्ट है, ये एक्ट ऑफ क्राइम है।
2: वीडियो को शेयर करते हुए एक फेसबुक यूजर ने लिखा कि प्रकाश राज रजनीकांत पहुँचे जंतर मंतर पर। वहीं कुछ लोग एआई की मदद से भी प्रकाश राज और रजनीकांत के कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में पहुंचने के मैसेज के साथ पोस्टर बनाकर शेयर कर रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
10: दरअसल दिल्ली के जंतर मंतर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले अनिश्चितकालीन अनशन चल रहा है। यहां सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भूख हड़ताल कर रहे हैं। अब इसी से जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल किया जा रहा है। देखिए, इसके जरिए कुछ यूजर्स ये दावा कर रहे हैं कि एक्टर प्रकाश राज और रजनीकांत जंतर मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में पहुंचे। वीडियो में एक मंच पर कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके के पास प्रकाश राज और एक्टर रजनीकांत की तरह दिखने वाला एक शख्स बैठा हुआ नजर आ रहा है। तो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल वीडियो का सच और झूठ जानना हमारे लिए काफी जरूरी हो गया था, लिहाजा फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। तो देखिए, दावे की सच्चाई जानने के लिए हमने सबसे पहले वायरल हो रहे इस वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा, इसे परखा और ध्यान से देखने पर यह समझ में आया कि मंच पर प्रकाश राज के बगल में जो शख्स बैठे हैं उनका चेहरा दूर से तो रजनीकांत जैसा नजर आता है, लेकिन जब इसे काफी क्लोज से देखा गया तो ये साफ हुआ कि ये रजनीकांत नहीं है। हाँ, ये बात सच है कि प्रकाश राज कॉकरोच जनता पार्टी के अभियान को समर्थन देने के लिए जंतर मंतर पर जरूर पहुंचे थे, लेकिन ये खबर हमें कहीं नहीं देखने को मिली कि सुपरस्टार रजनीकांत भी प्रकाश राज के साथ जंतर मंतर पहुंचे थे। क्योंकि अगर रजनीकांत यहां पहुंचते तो ये अपने आप में काफी बड़ी खबर होती और हर मीडिया आउटलेट्स पर यह खबर सुर्खियों में होती, हर जगह इसकी चर्चा हुई होती, लेकिन हमें इसके बारे में कोई रिपोर्ट नहीं मिली, कोई जानकारी नहीं मिली। लिहाजा ऐसे में हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा। तो देखिए कौन से वो सवाल हैं। यहाँ पर पहला सवाल आपको बताते हैं। पहला सवाल ये है कि मंच पर एक्टर प्रकाश राज के साथ बैठे शख्स की पहचान आखिर क्या है, और दूसरा सवाल ये है कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा है।
3: मैं फिल्मों में चीटिंग करता हूँ, पैसा मिलता है।
2: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर होने लगा, तब फैक्ट चेक टीम एक्टिव हुई और इसका सच और झूठ जानने के लिए पड़ताल में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें इंस्टाग्राम अकाउंट पर 11 जुलाई 2026 को पोस्ट किया गया सीजेपी के प्रदर्शन का एक वीडियो मिला। ये वायरल वीडियो से अलग है, लेकिन इसमें वायरल वीडियो वाले सभी लोग दिख रहे हैं। इसमें प्रकाश राज का जिक्र तो किया गया है, लेकिन रजनीकांत के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। एक यूट्यूब चैनल पर 11 जुलाई 2026 को सीजेपी के अनशन के बारे में वीडियो न्यूज अपलोड की गई थी। इसमें प्रकाश राज के साथ केरल के पूर्व वित्त मंत्री डीएम थॉमस इसाक को देखा जा सकता है।
3: They dream of their future and their
2: वायरल वीडियो में प्रकाश राज के साथ थॉमस इसाखी हैं। कोलाज में वायरल वीडियो और इस वीडियो न्यूज में इसाखी दिख रहे हैं।
3: मैं फिल्मों में चीटिंग करता हूं, पैसा मिलता है।
2: एक अंग्रेजी पेपर के इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी सीजेपी के अनशन में पहुंचे इसाख और प्रकाश राज की तस्वीरें पोस्ट की गई हैं। 11 जुलाई 2026 को की गई इस पोस्ट के अनुसार प्रकाश राज दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रदर्शनकारियों के साथ हड़ताल में शामिल हुए। इसाख और त्रिपुरा विधानसभा में विपक्ष के नेता जितेंद्र चौधरी भी प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे और परीक्षा में कथित गड़बड़ियों को लेकर हो रहे आंदोलन का समर्थन किया। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके के एक्स हैंडल से भी 11 जुलाई 2026 को उस दिन के अनशन की तस्वीरें पोस्ट करते हुए प्रकाश राज और थॉमस इसाख को प्रदर्शन में शामिल होने के लिए धन्यवाद दिया गया। हमें एक्टर रजनीकांत के कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में जाकर समर्थन जताने से संबंधित कोई खबर नहीं मिली। इस तरह हमारी पड़ताल से ये साफ हो गया कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में एक्टर प्रकाश राज के साथ पहुंचने वाला शख्स थॉमस आइजैक है, न कि रजनीकांत। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
3: मैं फिल्मों में चीटिंग करता हूं, पैसा मिलता है, वो एक्टिंग है।
10: सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ यूजर्स ये दावा कर रहे हैं कि एक डिलीवरी बॉय ने अपनी जान जोखिम में डालकर बच्चे की जान बचाई। वहीं कुछ यूजर्स इस वीडियो को शेयर करते हुए ये भी दावा कर रहे हैं कि ये घटना मुंबई की है। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करते हमारी रिपोर्ट देखिए।

0: आगे कूदकर बच्चे की जान बचाते डिलीवरी बॉय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किया जा रहा है। वीडियो में एक डिलीवरी बॉय सड़क पर जा रहे एक तेज रफ्तार ट्रक के सामने जान की बाजी लगाकर कूदता है और एक मासूम बच्चे को सुरक्षित बचा लेता है। कई सोशल मीडिया यूजर्स डिलीवरी बॉय की बहादुरी की जमकर तारीफ कर रहे हैं और उसे रियल हीरो और सुपरमैन बता रहे हैं। वायरल पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, इसको इंसान नहीं फरिश्ता कह सकते हैं। मुंबई से एक डिलीवरी बॉय का ऐसा कारनामा सामने आया है कि यकीन नहीं होता। पहली नजर में देखने पर तो लगा था बच्चे को बचाने के चक्कर में खुद मारा गया, लेकिन अगले पल लगा उसने अपने साथ साथ बच्चे की भी जान बचा ली। कई यूजर्स इस वीडियो को मुंबई का बताकर भी शेयर कर रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक डिलीवरी बॉय सड़क पर जा रहे एक तेज रफ्तार ट्रक के सामने जान की बाजी लगाकर कूदता है और एक मासूम बच्चे को सुरक्षित बचा लेता है। यूजर्स डिलीवरी बॉय की बहादुरी की जमकर तारीफ कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग इस वीडियो के जरिए ये भी दावा कर रहे हैं कि ये वीडियो मुंबई का है। तो देखिए, सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसे मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में हमने वायरल हो रहे इस वीडियो का सच और झूठ जानने की कोशिश की। फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। तो देखिए, दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे इस वीडियो के हर फ्रेम को देखा और इसे गौर से परखा, और इस दौरान हमें वीडियो में कई खामियां देखने को मिली, जिससे हमें वीडियो के असली होने पर संदेह हुआ, इस पर डाउट हुआ। वीडियो का बैकग्राउंड असामान्य रूप से काफी धुंधला लगता है और सड़क पर चल रही गाड़ियों की रफ्तार वास्तविक नहीं लग रही है। सड़क पर चलने वाले अन्य वाहनों के नंबर प्लेट पूरी तरीके से ब्लर्ड है और बाइक सवारों के चेहरे स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं। वीडियो के आखिरी हिस्से में जब डिलीवरी बॉय बच्चे को लेकर सड़क पर गिरता है तो बच्चे के शरीर का एक हिस्सा ट्रक के पहिए के बेहद करीब आ जाता है, लेकिन उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट भी नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके। लिहाजा ऐसे में हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा। तो देखिए, सबसे पहला सवाल यहाँ पर आपको दिखाते हैं। पहला सवाल यह है कि अगर वीडियो सच्चा होता तो इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी क्यों नहीं सामने आई? और दूसरा सवाल यह कि कहीं जानबूझकर एडिटेड वीडियो को वायरल करके अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही है?
0: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कई की फ्रेम्स को निकाला और सर्च किया। इस दौरान हमें किसी भी विश्वसनीय समाचार वेबसाइट पर ऐसी किसी घटना की कोई रिपोर्ट नहीं मिली। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली जहां इस वीडियो को मुंबई का बताया गया हो। पड़ताल के दौरान हमें एक इंस्टाग्राम यूजर के अकाउंट पर 12 जुलाई 2026 को अपलोड किया गया ये वीडियो मिला। हालांकि वीडियो के कैप्शन में कुछ खास जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन जब हमने इस अकाउंट को खंगाला तो पाया कि इस अकाउंट पर इसी तरह के कई एआई जनरेटेड वीडियो अपलोड किए गए हैं। ऐसे में हमें इस वीडियो को लेकर भी शक हुआ। जेहन में ये सवाल आया कि वायरल हो रहा वीडियो भी एआई निर्मित हो सकता है, लिहाजा हमने वीडियो को एआई डिटेक्शन टूल हाइव मॉडरेशन पर चेक किया। टूल ने अपने विश्लेषण में 96.1% स्कोर के साथ वायरल वीडियो को संभावित एआई जनरेटेड बताया। ट्रक के आगे कूदकर बच्चे की जान बचाते डिलीवरी बॉय के वायरल वीडियो को हमने एआई डिटेक्शन वेबसाइट डीप फेकोमीटर पर भी जांचा। इस टूल के 3 डिटेक्टर्स ने उच्च संभावना के साथ वायरल वीडियो को एआई जनरेटेड बताया। इज इट एआई ने भी अपने विश्लेषण में वीडियो में मौजूद दृश्य को संभावित एआई जनरेटेड बताया। हमारी पड़ताल में मिले साक्ष्यों से स्पष्ट है कि ट्रक के आगे कूदकर बच्चे की जान बचाते डिलीवरी बॉय का ये वीडियो असली घटना का नहीं बल्कि एआई जनरेटेड है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: तो चलिए, इसी के साथ फैक्ट चेक में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे वायरल वर्ल्ड में क्या कुछ हो रहा है।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है.
3: Get into the huddle with TuneIn. TuneIn brings you non-stop sports talk, live games, and expert analysis all in one place. From kickoff to final whistle, follow your favorite teams all season long with ESPN Radio, Talk Sport, Big 12 Radio, and more. Plus, listen to your favorite sports broadcasts on over 200 devices, so you never miss a moment of sports action with TuneIn. Stay in the game with TuneIn and start listening now.
2: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला.
1: तो चलिए, अब वक्त हो चला है फैक्ट चेक के सफर के आखिरी दौर का. अब देखिए कुछ ऐसे वीडियोस जिन्हें देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान जरूर आ जाएगी.
0: माँ बेटी का एक बेहद प्यारा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. खाना खिलाते समय बच्ची अपनी माँ को उसी अंदाज में जवाब देती है जैसे उसकी माँ उसके साथ करती है. मासूम बातचीत और दोनों की हंसी ने लोगों का दिल जीत लिया है. वीडियो में एक छोटी बच्ची अपनी माँ को अपने हाथों से खाना खिलाती हुई नजर आती है. शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है. बच्ची बड़े प्यार से चम्मच में खाना लेकर माँ के मुंह तक ले जाती है और माँ भी मुस्कुराते हुए खाना खाती रहती है. लेकिन कुछ ही सेकंड बाद ऐसा होता है जिसे सुनकर हर कोई हंस पड़ता है. दरअसल बच्ची जैसे ही दूसरा चम्मच लेकर माँ को खिलाने लगती है, माँ उसे थोड़ी देर रुकने के लिए कहती है. माँ कहती है कि अभी उसके मुँह में पहले वाला निवाला है, इसलिए थोड़ा इंतजार करो. लेकिन बच्ची रुकने के बजाय ऐसा जवाब देती है जो पूरे वीडियो की जान बन जाता है.
4: जब मेरे माउथ में कुछ होता था, मुझे जल्दी जल्दी खिलाओ.
0: बच्ची मासूमियत से कहती है, नहीं, जब मेरे मुंह में खाना होता है तब आप जल्दी जल्दी खिलाते हो. उसकी ये बात सुनते ही माँ अपनी हंसी नहीं रोक पाती. शायद उसी पल माँ को एहसास होता है कि बेटी ने बड़े प्यारे तरीके से उसकी ही आदत उसे याद दिला दी है.
4: कुछ होता था आप मुझे जल्दी जल्दी खिलाओ.
0: सोशल मीडिया पर इन दिनों ये वीडियो वायरल हो रहा है जिसने लोगों को अपना बचपन याद दिला दिया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ छोटे छोटे बच्चे अपने घर के बाहर खुले आंगन में मस्ती करते नजर आ रहे हैं. बच्चों ने कबाड़, प्लास्टिक की टोकरियां और लोहे के एक स्टैंड की मदद से अपने लिए एक अनोखा झूला तैयार किया है. कोई उस झूले में बैठकर घूमने का आनंद ले रहा है तो कोई अपने दोस्त को धक्का देकर मस्ती करता नजर आ रहा है. बच्चों के चेहरे पर दिख रही मुस्कान से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो इस पल को कितना एंजॉय कर रहे हैं. उनके लिए ये साधारण सा झूला किसी बड़े मनोरंजन पार्क से कम नहीं है. कई बार ऐसा नजारा भी देखने को मिल जाता है जिनके बारे में हम आप कल्पना तक भी नहीं कर सकते. ज्यादा उम्र होने के बाद लोग सही से उठ बैठ नहीं पाते, चल फिर नहीं सकते और वजन नहीं उठा सकते. ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उम्र को महज एक नंबर मानते हैं और बुढ़ापे में भी कहर बरपाते हैं. इस वीडियो में भी एक दादाजी ने कुछ ऐसा ही दम दिखाया है. वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह दादाजी जिम के अंदर एक्सरसाइज कर रहे हैं. उनका अंदाज देखकर लोग दंग रह गए.

सोशल मीडिया पर इन दिनों ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ट्रेन के सफर के दौरान बीएसएफ के जवानों ने ऐसा माहौल बना दिया कि पूरे कोच में बैठे लोग भावुक हो गए। वीडियो में देखा जा सकता है कि कई बीएसएफ जवान ट्रेन के एक कोच में सफर कर रहे हैं। सफर के दौरान अचानक कुछ जवान गिटार निकालते हैं और फिर सभी मिलकर फिल्म का एक मशहूर गाना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे गीत आगे बढ़ता है, पूरा डिब्बा देशभक्ति के रंग में रंग जाता है। जवानों की आवाज और गिटार की मधुर धुन ने पूरे माहौल को बेहद शांत, भावुक और सुकून भरा बना दिया है।

0: उज्बेकिस्तान के युवा कलाकारों ने बॉलीवुड का मशहूर गाना गाकर सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत लिया है। वायरल वीडियो को देख लोग इन कलाकारों की खूब तारीफ कर रहे हैं। वीडियो में खास बात यह है कि वो इस गाने को अपने पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ गा बजा रहे हैं। उनकी मधुर आवाज और संगीत का अनोखा अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है।
1: दुनिया में सबसे बड़ी इंसानियत वही होती है जो बिना किसी स्वार्थ और बिना किसी उम्मीद के किसी भी जुबान की प्यास बुझा दे।
0: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो लोगों का खूब ध्यान खींच रहा है। एक महिला ने प्यास से परेशान एक लंगूर की मदद करके हर किसी का दिल जीत लिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लंगूर काफी देर से पानी पीने की कोशिश कर रहा होता है। उसके सामने एक नल मौजूद है, लेकिन वो उसे खोल नहीं पाता। बंदर बार बार नल को छूता है और उसे घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार नाकाम रहता है। उसकी बेचैनी साफ दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि वो काफी देर से प्यासा है और किसी तरह पानी पीना चाहता है। उसी दौरान वहाँ मौजूद एक महिला की नजर उस लंगूर पर पड़ती है। वो बिना किसी डर या हिचकिचाहट के उसके पास जाती है। महिला को देखकर लंगूर भी कोई आक्रामक व्यवहार नहीं करता। महिला तुरंत नल खोल देती है और इस तरह पानी बहने लगता है। इसके बाद वो अपने हाथ की मदद से बंदर को आराम से पानी पीने देती है। वीडियो में सबसे खास बात ये है कि लंगूर पूरे समय बिल्कुल शांत रहता है। वो आराम से पानी पीता है और महिला पर पूरा भरोसा करता हुआ नजर आता है। वही महिला भी पूरे धैर्य और प्यार के साथ उसकी मदद करती है। दोनों के बीच का ये भरोसा और अपनापन लोगों को काफी भावुक कर रहा है। इस छोटे से गोलू मोलू पांडा ने अपने अंदाज से इंटरनेट पर ऐसी महफिल जमा दी कि लोग बार बार वीडियो देखने को मजबूर हो रहे हैं। लोग इस क्यूट पांडा को मैंगलेन के नाम से जानते हैं। हुआ यूं के एनरिचमेंट सेशन के दौरान केयरटेकर ने थोड़ी सी मस्ती करने की सोची। उन्होंने एक विग पहनी और पांडा के सामने आकर खड़े हो गए। मैंगलेन अपनी पिछली टांगों पर खड़ा होकर पूरे ध्यान से देख रहा था और आखिर केयरटेकर करने क्या वाला है। माहौल में सस्पेंस था। पांडा को लग रहा था कि केयरटेकर उसके सामने डांस करने वाला है और इसके लिए उसने इशारा भी किया। तभी केयरटेकर एक फिल्मी अंदाज में डांस करने लगता है। तभी अचानक अपने सिर से विग को हवा में उछाल दिया और अचानक उसका चमचमाता हुआ गंजा सिर सामने आ गया। फिर क्या था, इस अचानक आई ट्विस्ट को देख मैंगलेन का चेहरा देखने लायक था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा हो कि उसके केयरटेकर के बाल अचानक गायब कैसे हो गए। उसके हाव भाव ऐसे थे जैसे वो पूछ रहा हो, अरे भाई ये जादू हुआ कैसे। वो इतना हंसने लगा कि हंस हंस कर लोटपोट हो गया और जमीन में लेटने लगा। केयरटेकर ने जो ये प्रैंक किया उसने इंटरनेट पर मौजूद लाखों लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है।
2: बिकू कब तरह बोले नक बताओ तो आप बस सा मुतअक्कद तब लाओ गिफ्टा खलिफ यू वर सर्व वीडियो आशा बिन भाई चल अभी ना चल।
0: सोशल मीडिया पर इन दिनों ये वीडियो लोगों का खूब ध्यान खींच रहा है। इस वीडियो में एक समझदार डॉल्फिन अपनी शानदार समझ, फुर्ती और ट्रेनिंग का ऐसा नजारा पेश करती है कि लोग उसे बार बार देख रहे हैं। वीडियो की शुरुआत एक बड़े स्विमिंग पूल से होती है, जहां एक डॉल्फिन आराम से तैरती हुई अपने ट्रेनर के पास पहुंचती है। ट्रेनर के हाथ में एक छोटी बास्केटबॉल होती है। वो बड़े प्यार और धैर्य के साथ डॉल्फिन को गेंद देता है और उससे कुछ इशारों और शब्दों में बात करता हुआ दिखाई देता है। वीडियो देखने वालों को ऐसा महसूस होता है जैसे डॉल्फिन को समझा रहा हो कि आगे उसे क्या करना है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ट्रेनर की बात सुनने के बाद डॉल्फिन भी अपनी खास आवाज निकालती है। उसकी प्रतिक्रिया देख ऐसा लगता है मानो वो अपने ट्रेनर की बात समझ गई हो। और अब उसे पूरा करने के लिए तैयार हो। यही पल वीडियो को और भी खास बना देता है, क्योंकि इंसानों और जानवरों के बीच इस तरह की समझ हमेशा लोगों को आकर्षित करती है। इसके बाद डॉल्फिन गेंद को अपने मुंह में पकड़ लेती है और बिना किसी जल्दबाजी के पूल के दूसरे छोर की तरफ तैरने लगती है। वहाँ पानी के ऊपर एक बास्केटबॉल रिंग लगी होती है। जैसे ही वो रिंग के करीब पहुंचती है, वो अचानक पानी से ऊपर की ओर शानदार छलांग लगाती है। उसकी टाइमिंग और संतुलन इतना बेहतरीन होता है कि गेंद बिल्कुल सही निशाने पर जाकर सीधे बास्केट में गिरती है।
3: गुन्नी चुन्नी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं। गुन्नी चुन्नी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: गर्मी जब 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच जाए तो राहत की हर कोशिश किसी वरदान से कम नहीं होती। चीन में इन दिनों भीषण गर्मी लोगों के साथ साथ जानवरों के लिए भी परीक्षा ले रही है, लेकिन इस चुनौती से निपटने के लिए अलग अलग शहरों में अनोखे इंतजाम किए गए हैं।
5: कोई बर्फ की सिल्लियों के बीच रखे ताजा फलों के मजे ले रहा है, तो कोई बढ़ती तपिश में राहत की फुहार का आनंद ले रहा है, और तो और कहीं तो गलियारा ही गर्मी में सर्दी वाला एहसास करा रहा है। दरअसल चीन के कई हिस्सों में गर्मी की तपिश बढ़ी है, तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। ऐसे में लोगों और बेजुबानों को राहत देने के नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। अब जरा चीन के चोंगकिंग शहर के मशहूर शान चेंग लेन को देखिए। यहाँ 400 मीटर लंबा मिस्टिंग सिस्टम शुरू किया गया है। इस रास्ते पर हवा में बेहद महीन पानी के फुहारे फैल जाती हैं, जो पल भर में गर्मी में कूल कूल एहसास कराती हैं। सिर्फ इंसानों ही नहीं बल्कि हेफेई के चिड़ियाघर में जानवरों के लिए भी गर्मी से बचाव के खास इंतजाम किए गए हैं। यहाँ रेड पांडा को बर्फ की सिल्ली पर रखे ठंडे फल परोसे जा रहे हैं। बंदर बर्फ के बड़े टुकड़ों के साथ खेलते हुए गर्मी से राहत पा रहे हैं, तो वहीं हाथियों के लिए ठंडे पानी की फुहार चलाई जा रही है। इतना ही नहीं, जानवरों को ताजे फल और सब्जियां भी दी जा रही हैं, ताकि उनके शरीर में पानी की कमी न हो और वो इस भीषण गर्मी का सामना आसानी से कर सकें। कुल मिलाकर चाहे ऐतिहासिक गलियों में घूमते सैलानी हो या फिर पिंजरे के भीतर मजे लेते ये बेजुबान, गर्मी से निपटने के इन अनोखे और ठंडे ठंडे तरीकों ने सबका दिल जीत लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: दुनिया में खुशियां बांटना भी एक खूबसूरत सेवा है। मैक्सिको सिटी की सड़कें इस बात की गवाही दे रही हैं, जहां पर हर साल जोकर यानी कि क्लाउन अपनी कला के साथ श्रद्धा जताने सड़कों पर निकलते हैं। एक ऐसी यात्रा जिसमें हंसी बांटने वाले कलाकार अपने विश्वास और परंपरा को निभाने के लिए हजारों की संख्या में एक साथ जुटते हैं।
5: चेहरे पर चटक लाल रंग, बड़ी सी मुस्कान, दिल में श्रद्धा और कदमों में विश्वास, ये कोई सर्कस का मंच नहीं बल्कि आस्था का रंगमंच है। रंग बिरंगे कपड़ों में मैक्सिको सिटी की सड़कों पर जब एक साथ सैकड़ों क्लाउन उतरे तो हर तरफ खुशी, उत्साह और श्रद्धा का अनोखा संगम दिखाई दिया। हर साल की तरह इस बार भी वर्जिन ऑफ ग्वाडालूपा की सालाना यात्रा बड़े ही धूमधाम से निकली। रंग बिरंगी पोशाक में पहुंचे क्लाउन वर्जिन ऑफ ग्वाडालूपा की प्रतिमा और तस्वीरें लेकर मैक्सिको के सबसे बड़े धार्मिक स्थल ग्वाडालूपे बेसिलिका पहुंचे। कलाकारों की इस अनोखी यात्रा में किसी ने करतब दिखाए, किसी ने गेंदों से जुगलबंदी की, तो किसी ने अपनी मासूम अदाओं से बच्चों और बड़ों दोनों के चेहरे पर मुस्कान ला दी। माहौल ऐसा था जहां मनोरंजन और श्रद्धा एक साथ नजर आई।
6: El motivo de la peregrinación es porque se fundó el Club Payasos Mexicanos de Circo en 1979. En el primer año del aniversario se propuso festejarlo con una peregrinación, dando gracias por los favores recibidos durante el año.
5: चर्च की चौखट पर पहुंचते ही पवित्र जल से जब इन मुस्कुराते चेहरों पर आशीर्वाद की बूंदें पड़ी तो इनका विश्वास और मजबूत हुआ, क्योंकि कला जब आस्था से जुड़ जाती है तो हर मुस्कान इबादत बन जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: पूरी में रथ यात्रा के दूसरे दिन भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मौसी घर पहुंचे महाप्रभु गुंडिचा मंदिर में। आज सुबह होंगे विराजमान, 7 दिन विश्राम के बाद 24 जुलाई को लौटेंगे अपने मंदिर। अंतरिक्ष में एक और ऐतिहासिक छलांग लगाने की तैयारी, देश का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 सुबह 11:30 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भरेगा उड़ान। देश को मिली पहली हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात, प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जींद में दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देश को मिली 4700 करोड़ से ज्यादा की विकास योजनाओं की सौगात, पीएम ने पंजाब से किया शुभारंभ, देश भर में 75 रेलवे स्टेशनों का हुआ कायाकल्प। आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए गुड न्यूज, पिछले हफ्ते 96,40,00,000 डॉलर बढ़ा विदेशी मुद्रा भंडार, 67,500 करोड़ डॉलर के पार पहुंचा कुल विदेशी मुद्रा भंडार।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा गुप्ता। साहिल देव, आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अगला स्टेशन क्लीन एंड ग्रीन फ्यूचर है और इस फ्यूचर की तरह एक और कदम आज भारत ने आगे बढ़ा दिया है। आज से भारत में क्लीन एनर्जी से चलने वाली पहली ट्रेन पटरी पर दौड़ने लगी है। बीते सालों में भारतीय रेलवे ने सिर्फ कनेक्टिविटी को ही नहीं बढ़ाया बल्कि रफ्तार, सुविधाओं और तकनीक के मामले में अपनी ट्रेन्स को भी नया स्वरूप दिया है। इसी कड़ी में देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड ट्रेन नमो ग्रीन एक्सप्रेस को पटरी पर उतारा गया। जैसे अब तक डीजल और बिजली से चलने वाले इंजन आप देखते रहे हैं, अब ये ट्रेन हाइड्रोजन की ताकत के साथ ट्रैक पर दौड़ेगी। खास बात देखने वाली यह है कि ये ट्रेन मेड इन इंडिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। अभी हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच में ये ट्रेन चलाई जा रही है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसी है भारत की पहली ग्रीन एक्सप्रेस।

तारीख थी 16 अप्रैल। बॉम्बे से 14 कोच और 400 पैसेंजर्स के साथ भारत की पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे के लिए रवाना हुई थी। साहिब, सिंध और सुल्तान नाम के 3 स्टीम इंजन्स ने उस ट्रेन को खींचा था। उस ट्रेन ने लगभग 57 मिनट में 34 किलोमीटर की दूरी में एक युग का सफर तय किया था। और देखिए, आज वक्त का पहिया उस रेल के सफर को कहां तक ले आया है। बीते 175 सालों में भारत की रेलगाड़ी और रेलवे स्टेशन दोनों का रंग रूप हमारी सोच की सरहदों से काफी आगे निकल गया है। 20वीं शताब्दी का सूरज उगने के साथ हमारी रेल की कहानी में कई अलग अलग माइलस्टोन्स आए हैं, लेकिन आज का दिन अपने आप में बेहद खास है। आज का दिन ऐतिहासिक है, क्योंकि आज देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन पटरी पर दौड़ पड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जींद रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई और इसी के साथ भारतीय रेलवे के इतिहास में एक और नया अध्याय जुड़ गया। भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन यात्रियों की सेवा के लिए रवाना हो गई। ये भारतीय रेलवे की पहली हाइड्रोजन आधारित ग्रीन ट्रेन है। ये ट्रेन डीजल या कोयले से नहीं चलती और इसे लगातार ओवरहेड बिजली लाइन से भी ऊर्जा लेने की जरूरत नहीं। ट्रेन में लगे हाइड्रोजन फ्यूल सेल हाइड्रोजन और हवा में मौजूद ऑक्सीजन की रासायनिक प्रतिक्रिया से बिजली बनाते हैं, जिसकी ताकत से ये ट्रेन पटरी पर दौड़ती है।

0: नमो ग्रीन ट्रेन 10 डिब्बो वाली ट्रेन है। इसमें 8 यात्री डिब्बे और 2 इंजन वाली पावर कार। इस लिहाज से ये दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन है। आधुनिक सुविधाओं की बात करें तो इसमें ऑटोमेटिक दरवाजे, डीसी एयर कंडीशनिंग और आरामदायक सीटें हैं। इसकी अधिकतम स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन सामान्य तौर पर ये 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। खास बात यह है कि इस ट्रेन में 3200 हॉर्स पावर वाला महाशक्तिशाली इंजन लगा है, जिसके चलते इसे दुनिया की सबसे ताकतवर ग्रीन ट्रेन भी कहा जा रहा है।
1: साथियों, जिंद से सोनीपत को चलने वाली हाइड्रोजन ट्रेन दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन है। ये हाइड्रोजन ट्रेन 3200 हॉर्स पावर की है, 3200 हॉर्स पावर। और सबसे ताकतवर ही नहीं, भारत की हाइड्रोजन ट्रेन सबसे लंबी भी है। दुनिया में जहां हाइड्रोजन ट्रेन चल रही है वो 3 या 4 कोच वाली है, और भारत ने पहली बार में सीधे 10 कोच वाली हाइड्रोजन ट्रेन चलाकर दुनिया में अपना झंडा गाड़ दिया है।
0: भारत की इस पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरियाणा की जींद और सोनीपत के बीच चलाया जा रहा है। ये ट्रेन रोज सुबह 7:40 पर जींद जंक्शन से रवाना होगी और सुबह 9:40 पर सोनीपत पहुंचेगी। 89 किलोमीटर का सफर करीब 2 घंटे में पूरा होगा। सोनीपत से ये ट्रेन सुबह 10:40 पर वापस जींद के लिए रवाना होगी।
2: क्योंकि सबसे पहली ट्रायल ट्रेन है बेसिकली, जिसके ट्रायल भी हुए हैं और सक्सेसफुली भी है। अगर ट्रायल तो कई कंट्रियां कर रही है, लेकिन सक्सेसफुली 2-4 टोटल, आज ये 5वीं वर्ल्ड की 5वीं कंट्री है जो सक्सेसफुली मूव करेगी।
0: इस ट्रेन को ग्रीन ट्रेन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसके चलने से धुआं या कार्बन उत्सर्जन नहीं होगा। इससे मुख्य रूप से भाप और गर्मी निकलती है। हाइड्रोजन इसका ईंधन है और हवा से मिलने वाली ऑक्सीजन पावर जनरेट करने की प्रक्रिया का हिस्सा है। चलिए आपको बताते हैं कि हाइड्रोजन ट्रेन किस तकनीक से चलती है। यूँ समझिए कि ट्रेन के भीतर ही उसे चलाने वाला पावर प्लांट लगा है। इस पावर प्लांट को चलाने में 4 मुख्य पार्ट्स अलग अलग भूमिका निभाते हैं। पहला है हाइड्रोजन टैंक, जिसमें हाइड्रोजन

0: गैस भरी जाती है। इस टैंक तक हाइड्रोजन पहुंचाने के लिए जींद रेलवे स्टेशन के पास देश का पहला हाइड्रोजन स्टोरेज और रिफ्यूलिंग प्लांट बनाया गया है। दूसरा पार्ट है फ्यूल सेल डिवाइस, जहां केमिकल रिएक्शन और इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया होती है। तीसरा पार्ट है बैटरी, जहां पैदा की गई बिजली स्टोर होती है। और चौथी है इलेक्ट्रिक मोटर, जिसकी ताकत से ट्रेन पटरी पर दौड़ती है। अब आते हैं ट्रेन को चलाने की प्रक्रिया पर। इसके लिए सबसे पहले ट्रेन के हाइड्रोजन स्टोरेज टैंक में हाई प्रेशर से ग्रीन हाइड्रोजन भरी जाती है। इसके बाद ये हाइड्रोजन गैस हाई प्रेशर से फ्यूल सेल में भेजी जाती है, जबकि दूसरी ओर से ऑक्सीजन इसमें प्रवेश करती है। फ्यूल सेल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच होने वाले केमिकल रिएक्शन से पानी, भाप और बिजली पैदा होती है। इस प्रक्रिया में पैदा हुई बिजली बैटरी में स्टोर हो जाती है, भाप वातावरण में निकल जाती है और पानी नीचे की ओर से निकल जाता है। फिर बैटरी से चार्ज लेकर इलेक्ट्रिक मोटर ट्रेन को रफ्तार दे देती है।
1: हाइड्रोजन जो है वो सीधा बिजली पैदा करता है। एक जो उसको एक टेक्नोलॉजी का है जिसको कहते हैं फ्यूल सेल, कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, 100 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है। तो फ्यूल सेल जो होता है एक तरह का मेम्ब्रेन होता है, उसमें एक तरफ से हाइड्रोजन डालते हैं और दूसरी तरफ से हवा डालते हैं, मतलब ऑक्सीजन बेसिकली। जो दोनों मिलते हैं तो पानी बनता है, उसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन आप जानते हैं पानी बनता है, और साथ में कुछ बिजली पैदा होती है। और ऐसे बहुत सारे मेम्ब्रेन या फ्यूल सेल को आप एक के ऊपर एक रखते जाएं तो वोल्टेज ऐड होता रहता है, 1.5 वोल्ट, 3 वोल्ट, 6 वोल्ट, 20 वोल्ट, 50 वोल्ट, तो ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज। अगर उनको पैरेलल में लगाए तो करंट बढ़ता है, 1 एम्पियर, 4 एम्पियर, 8 एम्पियर ऐसे बढ़ता है। तो जो फ्यूल सेल स्टैक डिजाइन किया जाता है तो देखना पड़ता है कि कितनी पावर चाहिए, कितनी एनर्जी चाहिए गाड़ी चलाने के लिए, पावर बेसिकली। तो उससे सीधा बिजली पैदा होती है, डीसी बिजली, डीसी इलेक्ट्रिसिटी, और उसको फिर आप इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल करके उसको उसमें हेर फेर करके फिर आप ट्रैक्शन मोटर में बिजली भेजते हैं, तो इससे गाड़ी चलती है।
0: इस ट्रेन का सबसे बड़ा फायदा है कि इसे चलाने की पूरी प्रक्रिया में कोई धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड या किसी भी और रूप में कार्बन का उत्सर्जन नहीं होता। यानी इस ट्रेन के चलने से हवा प्रदूषित नहीं होगी। डीजल ट्रेनों की तुलना में ये जीरो एमिशन यानी शून्य उत्सर्जन वाली है। इससे ग्लोबल वार्मिंग कम करने में मदद मिलेगी। यानी ये ट्रेन पूरी तरह पर्यावरण के अनुकूल है। इस ट्रेन को चेन्नई के ICF यानी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में बनाया गया है, जबकि टाटा एडवांस सिस्टम्स ने इसका फ्यूल सेल सिस्टम तैयार किया है। यानी ये ट्रेन मेक इन इंडिया मिशन का एक और कमाल है।
2: भारत की यह हाइड्रोजन ट्रेन धुआं रहित तो है ही, ये मेक इन इंडिया का भी एक बहुत सफल उदाहरण है। इस हाइड्रोजन ट्रेन को भारत के ही इंजीनियर्स ने डिजाइन किया है, भारत की ही कंपनी ने इसको बनाया है। साथियों, यह हाइड्रोजन ट्रेन बाकी ट्रेनों से बिल्कुल अलग है।
0: चूंकि हाइड्रोजन बहुत ज्वलनशील होती है, इसलिए नमो ग्रीन ट्रेन में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसमें फायर अलार्म, आग बुझाने के लिए आपातकालीन व्यवस्था और हाइड्रोजन गैस लीकेज डिटेक्शन सिस्टम लगाए गए हैं। अगर हाइड्रोजन रिसाव होता है तो सिस्टम तुरंत अलर्ट जारी करता है और सुरक्षा उपाय सक्रिय हो जाते हैं। इस शानदार हाइड्रोजन ट्रेन के संचालन के साथ भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जो हाइड्रोजन की रफ्तार से ग्रीन ट्रेन्स को पटरी पर दौड़ा रहे हैं। हाइड्रोजन ट्रेन भारत की तकनीकी क्षमता, आत्मनिर्भरता और स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में बढ़ते कदमों का प्रतीक है। तभी तो इसे इंडियन रेल का ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जा रहा है। जींद से पीयूष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: आज जब पहली नमो ग्रीन ट्रेन जींद से रवाना हुई तो इसमें पहली बार सफर करने वालों की खुशी का ठिकाना नहीं था। रेल में तो जाने कितनी बार बैठे, लेकिन ये मौका बहुत खास था, यादगार था।
4: मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये हमारी जींद का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मोदी जी ने हमारे जींद को चूज किया और फर्स्ट ट्रेन यहाँ से चल रही है। यहाँ का रेलवे स्टेशन हमने पहले पुराने भी देखे हुए हैं, उसके आज सब कुछ चेंज हो गया।
5: आज हम जो इस ट्रेन में बैठे और देख रहे बगैर एसी के, बिल्कुल क्रॉस वेंटिलेशन है इसके अंदर, और ये हिंदुस्तान की पहली ट्रेन जो है जींद से या सोनीपत के बीच में 89 किलोमीटर का सफर तय करेगी, और जींद के लिए नहीं, पूरे हरियाणा के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए ये पूरे गर्व की बात है। और इसका जो है क्रेडिट जो है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है।
6: और पहले का स्टेशन और आज के स्टेशन में कितना अंतर है। ये प्लेटफार्म हमारे जो लो लेवल के हुआ करते थे, चढ़ने में भी बड़ी दिक्कत हुआ करती थी, अब ये हमारे हाई लेवल रेल मतलब डिब्बे के बराबर के वो बन गए हैं और प्लेटफार्म, तो हमें बहुत सहूलियत दी है। ये स्टेशन की हालात देख रहे हैं, कितने शेड लग गए, कितना एफओबी बना है, बहुत चौड़ा 12 मीटर का एफओबी बना है, एक्सकलेटर लगा है, लिफ्ट लगी है, तो सभी को इतनी सहूलियत दे दी हमारे जींद को प्रधानमंत्री का, हम धन्यवाद करते हैं।
7: जींद वासियों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जींद पे इतनी बड़ी ट्रेन, हालांकि एशिया की सबसे लॉन्गेस्ट और सबसे स्ट्रांगेस्ट ट्रेन है, इसका हर एक पार्ट इंडिया में बनाया गया है, इसका डिजाइन लखनऊ में हुआ है और ये चेन्नई में बनाई गई है। इतनी लोकल डिस्ट्रिक्ट में इतनी बड़ी ट्रेन का एक लॉन्च हुआ है, ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। ये भारत ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि भारत किसी से कम नहीं। जो हमारे इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ये साबित किया है कि ये मिलकर भी और अकेले भी दोनों तरीके से बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, इतनी डेवलप कंट्री चाइना, जर्मनी, जापान में इतनी बड़ी ट्रेन नहीं बन पाई, हॉर्स पावर कम है, सीटिंग पावर कम है, पर हमारे भारत में इतने अच्छे इंजीनियर साइंटिस्ट हैं, लोग इतने अच्छे हैं कि हमने इतनी बढ़िया ट्रेन बनाई है।
8: आई वुड लाइक टू से दैट इट इज अ वेरी नाइस इनिशिएटिव दैट बिकॉज इट इज द ओनली ट्रेन दैट रिलीजेस वाटर वेपर्स बाय टेकिंग हाइड्रोजन गैस एंड दिस इनिशिएटिव इज टेकन टू रिड्यूस पॉल्यूशन।
3: डेटा ये बताता है कि भारतीय रेल नेटवर्क के 99% रूट का इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। ऐसे में क्या हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड ट्रेन की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? स्पीड, मेंटेनेंस और ऑपरेशन कॉस्ट के मामले में क्या ये पहले से मौजूदा ट्रेन से बेहतर है? आखिर क्यों हाइड्रोजन ट्रेन भारतीय रेल नेटवर्क के लिए जरूरी थी? इन तमाम सवालों का जवाब देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में।
9: न डीजल, न कोयला, न बाहर से कोई बिजली, इस ट्रेन को चलने के लिए सिर्फ हाइड्रोजन चाहिए। जैसे सोलर पैनल सूरज की रोशनी से बिजली बना देता है, वैसे ही ये तकनीक हाइड्रोजन को ईंधन बनाएगी और पटरी पर ट्रेन को सरपट दौड़ाएगी। और न केवल दौड़ाएगी बल्कि दूसरी तकनीक से चलने वाले इंजन की तुलना में ज्यादा दूर तक दौड़ाएगी। वंदे भारत जैसी शानदार ट्रेन को तैयार करने वाली टीम के चीफ इंजीनियर के मुताबिक डीजल और दूसरे फ्यूल की तुलना में हाइड्रोजन की उतनी ही मात्रा ज्यादा पावर सप्लाई कर सकती है।
1: हाइड्रोजन का कैलोरीफिक वैल्यू जो है, जो उसका जो हीट होता है जलने पर जो पैदा होती है, वो काफी हाई होती है, काफी ऊंचा होता है। तो मैं जैसे कंपेयर करूं डीजल से, मान लीजिए तो डीजल से जितनी बिजली पैदा होगी या जितनी दूर ट्रेन जाएगी, वैसी ट्रेन हाइड्रोजन से उसकी दुगनी जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन में एनर्जी ऑफ कम्बशन ज्यादा होती है।
9: भारत की ये पहली हाइड्रोजन ट्रेन है जो यात्रियों के लिए उपलब्ध है। ये सिर्फ एक नई ट्रेन नहीं बल्कि भारतीय रेलवे की अगली पीढ़ी की तकनीक है। दुनिया के कई देश जिस टेक्नोलॉजी के लिए सालों से संघर्ष कर रहे हैं, भारत ने उसे रिकॉर्ड समय में हासिल कर लिया है। अब अगला कदम इसके ऑपरेशन को किफायती बनाना है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक फिलहाल हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड ट्रांसपोर्ट को ऑपरेट करना दूसरे माध्यमों की तुलना में महंगा है। सारी दुनिया में इसकी कीमत को कम करने पर काम किया जा रहा है, नए प्रयास हो रहे हैं।
1: देखिए, जो दुनिया भर में ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर जो काम हो रहा है, वो एक होली ग्रेल बना रखा है कि हमें $1 प्रति किलोग्राम हाइड्रोजन अगर बनना शुरू हो जाए तो ये एक वायबल एनर्जी का सोर्स है या एनर्जी स्टोरेज का सोर्स है। तो अभी तो $1 प्रति किलोग्राम तो बहुत दूर है।
9: ऐसे में कई लोगों के मन में ये सवाल भी आ रहा है कि जब भारतीय ट्रेन नेटवर्क का 99% से ज्यादा रूट का इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, तो ऐसे में तुलनात्मक रूप से ज्यादा ऑपरेशनल खर्च वाली हाइड्रोजन ट्रेन चलाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो आपको बता दें कि इसकी मुख्य रूप से दो वजहें हैं। पहली है दुनिया के सामने मेक इन इंडिया और भारत की टेक्निकल एक्सपर्टीज का डेमो। दुनिया में अभी केवल 3-4 देशों के पास ही हाइड्रोजन ट्रेन संचालित करने की क्षमता है और वहाँ भी ये तकनीक अभी शुरुआती दौर में है। ऐसे में भारत की हाइड्रोजन तकनीक और क्षमता पूरे देश के लिए गर्व की बात है।
1: प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया, वो सस्ते महंगे के लिए नहीं किया, वो तो टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेशन था कि भारत भी वो कर सकता है जो जर्मनी ने और जापान ने और चाइना ने किया है। तो इसलिए तो हमारे लिए गर्व की बात है कि हमने ऐसा टेक्नोलॉजी पर एक बड़ी ट्रेन बनाई। छोटे मोटे मॉडल तो बहुत लोग बना चुके हैं।
9: साथ ही ये भी माना जा रहा है कि जिन रूट्स पर बिजली की लाइन खींचना मुश्किल है, वहाँ ये ट्रेन कामयाब होगी। यही वजह है कि जींद और सोनीपत रूट की पहली ट्रेन केवल एक डेमो है। सरकार की हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज योजना के तहत देश के अलग अलग हेरिटेज और पहाड़ी रूट्स पर ऐसी 35 ट्रेन चलाने की योजना है। ये सभी वे रूट्स होंगे जहां रेलवे लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन करना या तो संभव ही नहीं है या फिर चुनौतीपूर्ण है।
1: जैसे हिल रेलवे है, जैसे दार्जिलिंग रेलवे है या ऊटी की रेलवे है या पालमपुर हिमाचल की ट्रेन है, जो पहाड़ी इलाकों में है, हेरिटेज लाइन्स हैं जिनको इलेक्ट्रीफाई करने में वो यूनाइटेड यूएन हेरिटेज वालों से परमिशन लेनी पड़ी, वो मिलेगी भी नहीं। तो क्योंकि इलेक्ट्रिफिकेशन करने से जो लैंडस्केप है वो थोड़ा खराब हो जाता है देखने में, तो उन एरियाज के लिए ये ट्रेन बिल्कुल परफेक्ट है जहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ है और करना संभव भी नहीं है।
9: यही वजह है कि भारत की पहली नमो ग्रीन एक्सप्रेस का स्वागत बाहें फैलाकर किया जा रहा है। ये ट्रेन न केवल भविष्य के ट्रांसपोर्ट की झलक दिखाती है बल्कि क्लीन एनर्जी में भारत के बढ़ते कदमों की नजीर भी पेश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: दरअसल दुनिया इस समय तेजी से स्वच्छ ऊर्जा की तरफ बढ़ रही है। पेट्रोल और डीजल के विकल्प के रूप में हाइड्रोजन ईंधन की चर्चा लंबे वक्त से हो रही है। जब फ्यूल सेल में हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है तो उससे ऊर्जा बनती है और वेस्ट के रूप में केवल भाप यानी पानी निकलता है, और यही वजह है कि इसे भविष्य का सबसे स्वच्छ ईंधन माना जा रहा है, और यही वजह है कि कई देश इस पर काम भी कर रहे हैं। हाइड्रोजन तकनीक अपनाने वाले देशों में जापान सबसे आगे है। यहां हाइड्रोजन से चलने वाली कारें सड़कों पर दौड़ रही हैं। हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन बनाए जा चुके हैं और सरकार इस तकनीक को बढ़ावा देने के लिए लगातार निवेश कर रही है। कई शहरों में हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली बसें भी सार्वजनिक परिवहन का हिस्सा बन चुकी हैं। वहीं दक्षिण कोरिया ने हाइड्रोजन को अपनी राष्ट्रीय ऊर्जा रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया है। यहां हाइड्रोजन बसें, ट्रक और निजी वाहन बड़ी संख्या में उपयोग किए जा रहे हैं। सरकार का लक्ष्य हाइड्रोजन वाहनों और फ्यूलिंग स्टेशनों का बड़ा नेटवर्क तैयार करना है ताकि परिवहन क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम किया जा सके। इसी तरह जर्मनी में हाइड्रोजन से चलने वाली पैसेंजर ट्रेनें परिचालन में हैं। ये ट्रेनें बिना डीजल के लंबी दूरी तय करती हैं और केवल पानी छोड़ती हैं। जिन रेल मार्गों का विद्युतीकरण नहीं हुआ वहां हाइड्रोजन ट्रेनें पर्यावरण के अनुकूल विकल्प बन रही हैं। इसी कड़ी में भी चीन हाइड्रोजन तकनीक पर तेजी के साथ काम कर रहा है। कई शहरों में हाइड्रोजन से चलने वाली बसें और भारी ट्रक संचालित किए जा रहे हैं। लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक क्षेत्रों में हाइड्रोजन ईंधन का इस्तेमाल बढ़ रहा है।

0: हरियाणा के जींद से पानीपत के बीच इस नीली हाइड्रोजन ट्रेन के आगाज के साथ ही हिंदुस्तान में ग्रीन मोबिलिटी की दिशा में नया इतिहास रचा गया है। फिलहाल भले ही केवल एक सेक्शन पर ये ट्रेन दौड़ रही है, लेकिन आने वाले समय में इसका विस्तार होने के पूरे आसार है। और केवल रेल सेवा में ही नहीं, बल्कि सफर के दूसरे साधनों में भी हाइड्रोजन के भरपूर इस्तेमाल की संभावनाएं बढ़ रही हैं, चाहे बस हो या ट्रक या फिर वाटर टैक्सी ही क्यों ना हो। हर तरह से सफर को सुगम बनाने में हाइड्रोजन का इस्तेमाल होने जा रहा है, क्योंकि भारत में इसकी तैयारी तो पहले से ही हो चुकी है। वहीं आपको ये भी बता दें कि भारत की राजधानी दिल्ली में हाइड्रोजन ईंधन से बस चलाने की भी पहल की जा चुकी है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC ने इसी साल 2026 में 15 मई से सेंट्रल विस्टा एरिया में हाइड्रोजन फ्यूल आधारित शटल बस सेवा की शुरुआत की। केंद्रीय सचिवालय और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशन के बीच इस बस सेवा को इसीलिए शुरू किया गया ताकि सरकारी कर्मचारियों और आम लोगों की दफ्तरों तक आवाजाही आसान हो सके। इससे निजी गाड़ियों पर निर्भरता भी कम होगी और पेट्रोल डीजल CNG की बचत होगी और राजधानी की हवा भी शुद्ध रहेगी। इससे पहले पुणे की कंपनी ने 2021 में हाइड्रोजन से चलने वाली बस का विकल्प पेश किया था। न पेट्रोल की जरूरत, न डीजल डलवाने का टेंशन, केवल हवा और हाइड्रोजन की जरूरत और चल पड़ेगी ये बस। इस खास तरह की बस को रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन पर काम करने वाली एक लैब सेटियंट लैब्स ने तैयार किया। बताया जा रहा है कि भारत में लॉन्च की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस है। इसी तर्ज पर दिसंबर 2025 में वाराणसी में देश की पहली हाइड्रोजन वाटर टैक्सी को भी हरी झंडी दिखाई गई। हालांकि ये भी जानना जरूरी है कि जिस हाइड्रोजन ईंधन से अब ट्रेन चल रही है उसका हाइड्रोजन फ्यूल सेल है क्या और ये किस तरह से काम करता है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों में जिस तरह से बैटरी काम करती है ठीक उसी तरह फ्यूल सेल भी काम करते हैं, लेकिन इन्हें चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ती है। जब तक उन्हें हाइड्रोजन फ्यूल की सप्लाई होती रहेगी ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते रहेंगे। फ्यूल सेल में हाइड्रोजन गैस और हवा की ऑक्सीजन के बीच रासायनिक क्रिया होती है। इस क्रिया से सीधे बिजली बनती है जो ट्रेन की इलेक्ट्रिक मोटर को चलाती है। यानी फ्यूल सेल हाइड्रोजन और हवा को इस्तेमाल करके बस के लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है जिसका इस्तेमाल वाहनों को चलाने में किया जाता है। इसमें बाय प्रोडक्ट के तौर पर सिर्फ पानी बाहर आता है जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा। एक और बड़ा फायदा रिफ्यूलिंग में है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के नजरिए से देखें तो बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल की तुलना में इसे रिफ्यूल करना आसान है, क्योंकि ये कुछ ही मिनटों में रिफ्यूल हो जाता है जबकि बैटरी वाली बसों को चार्ज करने में घंटों लगते हैं। असल में ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी का सबसे साफ सोर्स है और इसको रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से तैयार किया जाता है। इसके तैयार होने और इस्तेमाल होने में पॉल्यूशन कम होता है, इसीलिए इसे लो कार्बन फ्यूल के तौर पर भी जाना जाता है, जिससे वातावरण को बेहतर करने में मदद मिलेगी और पेट्रोल डीजल की तुलना में लागत भी घटेगी और तो और कार्बन उत्सर्जन को घटाने में भी मदद मिलेगी। आगे का वक्त पेट्रोल डीजल रहित वाहनों का है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की लोकप्रियता तो तेजी से रफ्तार पकड़ ही रही है। ऐसे में अब हाइड्रोजन से चलने वाली बसें, ट्रक और वाटर टैक्सी भी बेहतरीन विकल्प के तौर पर उभर रही हैं। फिलहाल ये ट्रांसपोर्ट की वो तस्वीर है जो न केवल उम्मीद जगा रही है बल्कि सुनहरे भविष्य की कहानी भी बयां कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और चलिए इसी के साथ जीएनटी स्पेशल की इस खास कवरेज में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: Hi, everyone. Super Bowl champ Vernon Davis here from Legal Help Center. If you've been injured in an accident and think you deserve compensation, listen up, because we have legal professionals standing by right now to answer your questions for free. You can find out if you have a case and how much it's potentially worth.
1: Thanks, Vernon. You heard it, folks. If you've been injured, call and find out how much you qualify for. Call 800-702-1400. Advertisement sponsored by Legal Help Center. May not be available in all states. Not available in California.
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
3: गर्मी जब 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच जाए तो राहत की हर कोशिश किसी वरदान से कम नहीं होती। चीन में इन दिनों भीषण गर्मी लोगों के साथ साथ जानवरों के लिए भी परीक्षा ले रही है, लेकिन इस चुनौती से निपटने के लिए अलग अलग शहरों में अनोखे इंतजाम किए गए हैं।
4: कोई बर्फ की सिल्लियों के बीच रखे ताजा फलों के मजे ले रहा है, तो कोई बढ़ती तपिश में राहत की फुहार का आनंद ले रहा है, और तो और कहीं तो गलियारा ही गर्मी में सर्दी वाला एहसास करा रहा है। दरअसल चीन के कई हिस्सों में गर्मी की तपिश बढ़ी है, तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। ऐसे में लोगों और बेजुबानों को राहत देने के नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। अब जरा चीन के चोंगकिंग शहर के मशहूर शान चेंग लेन को देखिए। यहाँ 400 मीटर लंबा मिस्टिंग सिस्टम शुरू किया गया है। इस रास्ते पर हवा में बेहद महीन पानी के फुहारे फैल जाती हैं, जो पल भर में गर्मी में कूल कूल एहसास कराती हैं। सिर्फ इंसानों ही नहीं बल्कि हेफेई के चिड़ियाघर में जानवरों के लिए भी गर्मी से बचाव के खास इंतजाम किए गए हैं। यहाँ रेड पांडा को बर्फ की सिल्ली पर रखे ठंडे फल परोसे जा रहे हैं। बंदर बर्फ के बड़े टुकड़ों के साथ खेलते हुए गर्मी से राहत पा रहे हैं, तो वहीं हाथियों के लिए ठंडे पानी की फुहार चलाई जा रही है। इतना ही नहीं, जानवरों को ताजे फल और सब्जियां भी दी जा रही हैं, ताकि उनके शरीर में पानी की कमी न हो और वो इस भीषण गर्मी का सामना आसानी से कर सकें। कुल मिलाकर चाहे ऐतिहासिक गलियों में घूमते सैलानी हो या फिर पिंजरे के भीतर मजे लेते ये बेजुबान, गर्मी से निपटने के इन अनोखे और ठंडे ठंडे तरीकों ने सबका दिल जीत लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: पूरी में रथ यात्रा के दूसरे दिन भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मौसी घर पहुंचे महाप्रभु गुंडीचा मंदिर में। आज सुबह होंगे विराजमान, 7 दिन विश्राम के बाद 24 जुलाई को लौटेंगे अपने मंदिर। अंतरिक्ष में एक और ऐतिहासिक छलांग लगाने की तैयारी, देश का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 सुबह 11:30 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भरेगा उड़ान। देश को मिली पहली हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात, प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जींद में दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देश को मिली 4700 करोड़ से ज्यादा की विकास योजनाओं की सौगात, पीएम ने पंजाब से किया शुभारंभ, देश भर में 75 रेलवे स्टेशनों का हुआ कायाकल्प। आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए गुड न्यूज, पिछले हफ्ते 96,40,00,000 डॉलर बढ़ा विदेशी मुद्रा भंडार, 67,500 करोड़ डॉलर के पार पहुंचा कुल विदेशी मुद्रा भंडार।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
5: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक। देखिए, सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार से फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, तो कभी पुरानी तस्वीरों को नए साजिशी रंग में रंगकर पेश कर दिया जाता है और लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं रही। यहां हर किसी के हाथ में कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकेंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोस डोज दी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश कर दी जाती है, और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा इसका यह होता है कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे इन्हें सच मानकर शेयर करना शुरू कर देते हैं, और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल, और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। तो फैक्ट चेक में आज सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की, जिसके जरिए ये दावा किया जा रहा है कि एक्टर प्रकाश राज और रजनीकांत जंतर मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में पहुंचे। क्या है वायरल दावे और वीडियो की सच्चाई, आपको आगे बताएंगे। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई है, जिसके जरिए ये दावा किया जा रहा है कि मुंबई में डिलीवरी बॉय ने अपनी जान जोखिम में डालकर बच्चे की जान बचाई। क्या है वायरल दावे और वीडियो की सच्चाई, आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फैक्ट चेक।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़। और
5: दिल्ली के जंतर मंतर पर केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले अनिश्चितकालीन अनशन चल रहा है। यहां सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भूख हड़ताल कर रहे हैं। इस अनशन से जोड़कर सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें अभिनेता प्रकाश राज और कुछ दूसरे लोगों को देखा जा रहा है। कुछ यूजर्स इस वीडियो को शेयर कर ये दावा कर रहे हैं कि अभिनेता रजनीकांत और प्रकाश राज सीजेपी के